0: सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक, इंडिया गठबंधन का ज्ञानेश हटाओ मार।
1: बीजेपी को स्वीकार करना चाहिए कम से कम इलेक्शन कमीशन जो वोट के साथ हेरा फेरी कर रहे थे, धांधली कर रहे थे, लूट कर रहे थे, चोरी कर रहे थे वोट, उन्हें स्वयं स्वीकार कर लेना चाहिए।
0: राहुल गांधी का ऐलान, शिव की बारात में कोई भी आ सकता है।
2: ये शिव जी का डांस चल रहा है, इसमें शिव की बारात में कोई भी आ सकता है।
0: SIR में गड़बड़ी के खिलाफ विपक्ष की सुप्रीम कोर्ट में याचिका।
3: उठाना है, लड़ाई लड़ना है, लोकतंत्र को बचाना है, तो अंतिम मुकाम तक पहुंचाएंगे।
4: देखिए सुप्रीम कोर्ट से हमको उम्मीद है कि जरूर सुप्रीम कोर्ट हमारी बात सुन जाए।
0: लगातार ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा करवाने के लिए राहुल गांधी की जद्दोजहद जारी है। राहुल गांधी के विरोध प्रदर्शन वाले कैलेंडर में ये पांचवा दिन है। 6 अक्टूबर से राहुल गांधी ने CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन वाली जंग छेड़ी है और आज विपक्ष के ज्ञानेश हटाओ मार्च का आखिरी पड़ाव सुप्रीम कोर्ट तय किया। राहुल ने मार्च से पहले एक 40 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इसमें उन्होंने मार्च में सबको शामिल होने के लिए कहा। जी हाँ, राहुल गांधी ने कहा कि शिव की बारात में सब शामिल हो सकते हैं।
2: मेरी सिस्टर कहती है मुझे कि प्लान करना चाहिए, तो मैंने सिस्टर से कहा तुम बात समझ नहीं रही हो, ये तांडव है, ये शिव का डांस है, इसमें कोई प्लानिंग नहीं होती। आइडिया वो ऊपर लिखा हुआ है, प्लान की कोई जरूरत नहीं है। ये डांस चल रहा है, ये शिव जी का डांस चल रहा है, इसमें शिव की बारात में कोई भी आ सकता है, कोई भी जीव आ सकता है, हम रोकेंगे नहीं।
0: सैकड़ों की तादाद में विपक्ष के कार्यकर्ताओं की भीड़ है, जिसमें आपको दो बसें नजर आएंगी। एक ट्रक जिस पर तिरंगा लगा हुआ है वो नजर आएगा और आगे पीछे कारों का काफिला भी आप देख सकते हैं।
5: हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा।
4: देखिए सुप्रीम कोर्ट से हमको उम्मीद है
6: न्याय मिलेगा।
4: चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि आप पिटीशन लेकर आइए, हम आपकी बात सुनेंगे। ये उम्मीद की किरणें है, जैसा जिस तरह से पूरा देश आज सड़क पर है अपनी मांग के लिए, अधिकार के लिए, तो जरूर सुप्रीम कोर्ट हमारी बात सुन जाए।
3: इनकी मनमानी नहीं चलेगी, चोरी और सीनाजोरी नहीं चलेगी, लोकतंत्र को कुचलने वाला काम अब नहीं होगा। ये लोग बेईमान लोग हैं, इन्होंने चोरी नहीं बल्कि बहुत बड़ा पाप किया है।
0: दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से ये बात शुरू होता है। पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सभी दिग्गज नेता बसों और कारों से बाराखंबा रोड तक पहुंचते हैं।
7: आंदोलन, धरना, प्रदर्शन लगातार चलता रहेगा। हमारी जिम्मेदारी है लोकतंत्र बचाने की और भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन से मिलकर के संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। हमेशा हमेशा सरकार में रहना चाहती है। फर्जी वोट बनाते हैं, फर्जी वोट डालते हैं और फर्जी चुनाव का परिणाम बनाते हैं।
8: जिस हिसाब से इनकी गुंडागर्दी पूरे देश के लोग देख रहे हैं, अब ये लोग बचने वाले नहीं है, ज्यादा दिन तक टिकने वाले नहीं।
0: और फिर बाराखंबा से सुप्रीम कोर्ट के लिए पैदल मार्च शुरू होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ निकाले गए इस विरोध मार्च में दो गौर करने वाली बातें हैं। पहला तो आयशा की अध्यक्ष नेहा बोरा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ साथ पैदल चलते हुए नजर आती हैं। नेहा बोरा की राहुल प्रियंका के साथ काफी क्लोज बॉन्डिंग नजर आती है। राहुल गांधी भीड़ को पीछे हटाते हुए नजर आते हैं। दूसरी बड़ी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट तक इस मार्च में अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव से लेकर लेफ्ट के कई नेता और कांग्रेस की सरकार वाले तीन राज्यों के CM यानी हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू, तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी और कर्नाटक CM DK शिव कुमार ज्ञानेश कुमार हटाओ मार्च में शामिल होते हैं।
9: Our demand should be a re-poll, dismissal of that election commissioner.
10: डेमोक्रेसी को बचाना आगे जमहूरियत को, लोकतंत्र को, तो देशवासियों को भी आगे आना पड़ेगा, युवा पीढ़ी को आगे आना पड़ेगा, आई भी है।
0: क्योंकि राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के 10 नेताओं ने राष्ट्रपति मुर्मू को ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ज्ञापन देने के बाद CGI से मिलकर उन्हें भी ज्ञापन सौंपने का ऐलान किया था, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने मिलने से इनकार कर दिया और याचिका दाखिल करने के लिए कहा। इसके बाद राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करते हुए एसआईआर के खिलाफ अर्जी दाखिल करने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन विपक्ष के इस मार्च को सुप्रीम कोर्ट से पहले परिवहन भवन के पास बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया जाता है। ऐसे में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत विपक्ष के सभी नेता भीड़ में चल रहे ट्रक

0: ग्राउंड्स हैं जिसके अंतर्गत गैर कानूनी काम किया है, जो निर्णय है उनको क्वाश करना चाहिए। जो जो चीजें आपने पढ़ी हैं, सुनी हैं, उनके विषय में याचिका है।
1: थोड़ी देर तक हंगामा होता है, विपक्ष अपनी ताकत दिखाता है और ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगता है।
2: Amazing. Yeah, we've been out the whole afternoon seeing lakhs of people. Action will move to the Supreme Court tomorrow, I think.
3: So, क्या हुआ अंदर? क्या हुआ
4: अंदर? नो, ओनली पिटिशन हैज बीन गिवन।
3: देयर आर, आपने रजिस्ट्रार को दिया?
4: देयर आर ऑफिसर्स हु रिसीव द पिटिशन एंड आई एम गिवन टू अंडरस्टैंड टुमारो पिटिशन मे बी टेकन अप।
3: ये आपको बताया गया कि कल हो सकता है कि पिटिशन आ जाए।
5: कॉकरोच जनता पार्टी ने एक बार फिर से जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति दिल्ली पुलिस से मांगी है। साथ ही अल्टीमेटम दिया है कि 24 घंटे के अंदर अगर हमें अनुमति नहीं मिली तो हम बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही अब जंतर मंतर को डी नोटिफाई कर दिया गया, मतलब ये हुआ कि जंतर मंतर अब प्रदर्शन स्थल नहीं रहा। जंतर मंतर की जगह गृह मंत्रालय ने दिल्ली में 3 जगहों को चुना है।
6: जिस वक्त सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके हिंगोली में अपनी दादी के अंतिम संस्कार में थे, उस वक्त सीजेपी के बाकी के नेता दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में धरने की परमिशन मांगने पहुंचे थे। उन्होंने पुलिस को अपनी चिट्ठी सौंप दी, लेकिन चिट्ठी सौंपने के बाद जब वो बाहर आए तो प्रशासन को सीधे सीधे 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया।
7: पॉल दिल्ली पुलिस के पाले में है, आप बताइए कि जंतर मंतर पर किस दिन किस समय हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं? 5 दिन बाद, 7 दिन बाद, 10 दिन बाद, आप बताइए हमें। 24 घंटे में हमें आप जगह जंतर मंतर पे किस समय किस तारीख को कर सकते हैं बताइए, वरना 24 घंटे बाद हम लोग फिर से सड़कों पर उतरेंगे, फिर से मास प्रोटेस्ट का कॉल देंगे।
8: 24 घंटा टाइम ले लीजिए, लेकिन बॉल इज इन योर कोर्ट। आप बताइए किस दिन लोग डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट एट जंतर मंतर आ सकते हैं। फुल कोऑपरेशन के साथ पीसफुल तरीके से लोग गैदर होंगे एंड प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन प्रोटेस्ट तो जरूर होगा।
6: लेकिन अब मसला बदल गया है। सीजेपी जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना चाहती है, लेकिन जंतर मंतर को डी नोटिफाई कर दिया गया है, मतलब अब जंतर मंतर प्रदर्शन स्थल नहीं रहा, मतलब सीजेपी वाले जंतर मंतर पर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। अलबत्ता सरकार ने प्रदर्शन करने के लिए 3 जगहें निर्धारित कर दी हैं। ये जगहें हैं रामलीला मैदान, सीबीडी ग्राउंड और बुराड़ी मैदान। अब मसला यह है कि इन तीनों ग्राउंड को प्रदर्शन स्थल तो बना दिया गया, मगर 2 मैदानों में कार्यक्रम चल रहा है। रामलीला मैदान में रामलीला की तैयारी है और सीबीडी ग्राउंड में रामलीला की तैयारी हो रही है। बचा बुराड़ी का मैदान, जहां बारिश के बाद फिलहाल कहीं कहीं पानी भरा हुआ है। अब सवाल यह है कि प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कहां करेंगे? आज तक ब्यूरो।
5: खबर उत्तर प्रदेश की, जहां योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की लड़ाई में असदुद्दीन ओवैसी कूद गए। अखिलेश और योगी एक दूसरे को चैलेंज दे रहे हैं। मामला है अयोध्या से चुनाव लड़ने का। अब ओवैसी ने दोनों को अलग चैलेंज दे दिया। क्या है ओवैसी का ये चैलेंज, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में।
9: तो जो बड़े बड़े दावे करने वाले मुख्यमंत्री अगर इतना ही अस्वस्थ हैं, तो खुद अयोध्या से चुनाव लड़कर के दिखाएं।
10: और मैं तो आपको ऑफर करता हूं, आइए आप भी अयोध्या में नामांकन करिए और मैं भी अयोध्या से, चलो एक बार किस्मत अजमा लेते हैं।
11: अरे पवन की हवा में अहंकारी लोग उड़ जाएंगे।
12: क्या योगी को अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती देकर अखिलेश यादव फंस गए? क्या योगी और अखिलेश की लड़ाई में ओवैसी भी फायदा उठा लेंगे?
13: ओवैसी बोल रहा है बाबा से आ जाओ संभल, और ओवैसी अखिलेश से बोल रहा है जाओ गोरखपुर।
12: अभी तक तो यूपी में चुनौतियां चल रही थी। पहले अखिलेश ने योगी को चैलेंज किया कि अयोध्या से चुनाव लड़कर दिखाओ, फिर योगी ने अखिलेश को कह दिया कि चलो साथ में नामांकन करते हैं, आप भी अयोध्या आइए। और अब इस पूरी जुबानी जंग में असदुद्दीन

0: ओवैसी कूद गए हैं, उनका नया चैलेंज है। ओवैसी की योगी आदित्यनाथ को चुनौती है कि वो संभल से चुनाव लड़े, और वो अखिलेश को चैलेंज कर रहे हैं कि अखिलेश गोरखपुर से लड़कर दिखाएं। 2027 का यूपी का चुनाव भले ही अनाउंस न हुआ हो, लेकिन प्रचार फुल स्विंग में चल रहा है। अखिलेश, योगी, ओवैसी सभी प्लेयर पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर गए हैं। AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर से यूपी में अपने किस्मत आजमा रहे हैं। उन्होंने कोशिश तो बहुत की कि कहीं गठबंधन हो जाए अखिलेश से, मायावती से, लेकिन अभी तक तो हुआ नहीं। इसीलिए वो अकेले ही यूपी के अलग अलग मुस्लिम पॉकेट्स में रैलियां कर रहे हैं। कल आजमगढ़ में थे। सवाल यही है कि ओवैसी यूपी में क्या कर पाएंगे, क्योंकि 2022 में भी ओवैसी ने यूपी की 100 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 99 सीटों पर जमानत भी नहीं बचा पाए थे। इन 100 सीटों पर कुल 4.5 लाख वोट मिले थे, जो नोटा से भी कम थे। जाहिर तौर पर ओवैसी के सामने चुनौती ये है कि क्या मुस्लिम समाज उन्हें अपना नेता मानने को तैयार है, क्योंकि एक तरफ है अखिलेश यादव जो यूपी में मुसलमानों के सर्वमान्य नेता है। 2024 के लोकसभा चुनावों में अखिलेश और कांग्रेस के गठबंधन को यूपी में 92% मुस्लिम वोट मिला था। दूसरी तरफ है असदुद्दीन ओवैसी, जिन्हें 2022 के चुनावों में सिर्फ 0.49% वोट मिला। तो क्या यूपी के मुसलमान अखिलेश यादव को छोड़ करके ओवैसी को नेता मानने को तैयार हैं? ओवैसी इस चुनौती को जानते हैं, इसीलिए वो बात ही ऐसी करते हैं कि योगी के साथ साथ अखिलेश भी उनके निशाने पर आ जाए। आजमगढ़ में उन्होंने ताजा विवाद उठाया अयोध्या से चुनाव लड़ने का। पहले अखिलेश ने योगी को चुनौती दी थी, फिर योगी ने अखिलेश को उल्टा चुनौती दी थी, अब ओवैसी ने दोनों को नया चैलेंज दे दिया।
1: बाबा बोल रहे हैं अखिलेश को आ जाओ अयोध्या, बाबा अखिलेश को बोल रहे आ जाओ अयोध्या, ओवैसी बोल रहा है बाबा से आ जाओ संभल, और ओवैसी अखिलेश से बोल रहा है जाओ गोरखपुर। इंशाअल्लाह ताला अखिलेश तुम गोरखपुर जाओ, बाबा संभल आओ, इंशाअल्लाह ताला मजलिस दोनों को हराएगी इंशाअल्लाह ताला।
0: पूरा विवाद शुरू हुआ 8 अक्टूबर को, जब अखिलेश यादव अपने अयोध्या के प्रत्याशी पवन पांडे के भागवत में पहुंचे थे, और यहीं पर मंच से उन्होंने योगी आदित्यनाथ को अयोध्या आकर चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी। शनिवार को अखिलेश की इस चुनौती का जवाब योगी आदित्यनाथ ने भी दिया था।
2: सुनने में आ रहा है उन्हें अयोध्या में कोई नया प्रत्याशी ही नहीं मिल पा रहा है, और जो बड़े बड़े दावे करते हैं और जो बड़े बड़े दावे करने वाले मुख्यमंत्री अगर इतना ही अस्वस्थ हैं, तो खुद अयोध्या से चुनाव लड़कर के दिखाएं।
3: आइए आप भी अयोध्या में नामांकन करिए और मैं भी अयोध्या से चलो एक बार किस्मत आजमा लेते हैं, तय हो जाए। आप भी आइए और मैं भी आता हूं। लड़ाई चेलों से क्यों, लड़ाई तो आमने सामने होनी चाहिए, और उसके लिए मैं कह रहा हूं आइए आप भी। ये माफिया के सामने नाक रगड़ने वाले पेशेवर अपराधियों के सामने उनकी मौत पर उनकी कब्र में जाकर के फातिया पढ़ने वाले लोग, ये हम लोगों से क्या लड़ पाएंगे।
0: योगी के जवाब के बाद ये चैलेंज और बड़ा हो गया है। शायद अखिलेश को ये उम्मीद नहीं रही होगी, लेकिन चुनावी साल है तो योगी ने भी तुरंत जवाब दिया। अब अखिलेश फंस गए हैं योगी के चैलेंज पर। अब अखिलेश कह रहे हैं कि बीजेपी में खुद योगी आदित्यनाथ का टिकट कंफर्म नहीं है।
2: हमारे पवन की हवा में अहंकारी लोग उड़ जाएंगे। ये पवन देखिए आता नहीं भाता, ये तो पता ही होगा आपको, आता नहीं भाता। टिकट किसने तय किया? सबसे पहले टिकट किसकी तय हुई? अयोध्या से पवन पांडे जी आए तो थे, वो भी हमारे साथ हैं। पवन की हवा में ये अहंकारी सरकार के लोग बच नहीं पाएंगे। और फिर क्या मुख्यमंत्री जी टिकट देते हैं क्या? कहां आप लोग भूल गए हो ये बातें? उन्हें टिकट मांगनी पड़ती है, और जिस दल से वो टिकट मांगते हैं पहले उसका सदस्य बनते हैं, बताओ आप मुख्यमंत्री बनने से पहले क्या वो भाजपा के सदस्य थे? कभी भाजपा के लोगों से जाना पूछना जा करके? भाजपा के लोगों ने पसीना बहाया और उन्होंने संघर्ष किया, ये तो बस काला चश्मा लगा के आए हो मुख्यमंत्री बन गए।
0: चुनौतियों की इस राजनीति को असदुद्दीन ओवैसी नूरा कुश्ती बता रहे हैं। बकौल ओवैसी, अखिलेश ने बीजेपी पर सॉफ्ट हैंड रखा हुआ है और इसके लिए वो समाजवादी पार्टी के राज्यसभा प्रत्याशी धनराज परिमल नाथवानी को अपना उम्मीदवार बनाने का उदाहरण भी देते हैं।
4: ये दोनों में, नूरा कुश्ती और अखिलेश यादव में और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में, मुद्दा वहां पर हजारों करोड़ की चोरी है, वहां पर SIT की रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में नहीं है, जनता के हाथ में नहीं है, जो लोग जेल में है वो बेल पे निकलना चाह रहे, जो मेन बड़े बड़े लोग जो चोरी किए हैं वो बचने की कोशिश कर रहे हैं, बजाय उस पर फोकस करने के दोनों में नूरा कुश्ती हो रही है। ये बोल रहे हैं अयोध्या तुम आओगे, वो कह रहे हैं तुम आ जाओ, हम कह रहे हैं कि बस छोड़ो ना, तुम योगी आदित्यनाथ संभल लड़ लीजिए, हम वहां उनको हरा देंगे, आप गोरखपुर जाइए और जाकर गोरखपुर जनता से कहिए कि आपने अपने परिवार के लोगों को 30 साल से लोकसभा भिजा रहे हैं और आपने नरेंद्र मोदी के आदमी को अपना लोकसभा में कैंडिडेट बनाया, वो आदमी को जो मोदी के 25 साल मुकम्मल होने पर पब्लिकली मुबारकबाद देता है।
5: ओवैसी साहब चैलेंज कर रहे हैं अखिलेश को और योगी को चुनाव लड़ने के लिए सामने।
4: हाँ, अब दोनों कह रहे हैं ना, अयोध्या को तुम लड़ो आ जाओ बोल रहे हैं, तो जब पब्लिकली एक बात हो जाती है तो तबसरा करना हमारा काम है, इसीलिए तो हमसे पूछ रहे हैं। हमने कहा चलिए आइए आप संभल लड़िए मुख्यमंत्री, आप जाकर संभल में बोलिए कि हमने मस्जिद को तोड़ दिया था, देखिए बुलडोजर इस्तेमाल किया, आप जाकर गोरखपुर में बताइए कि आपने मोदी के एक चाहने वाले को हमने राज्यसभा दिया है और उनके पिताजी ने इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को हराया था झारखंड में, तब भी हमने उनको कैंडिडेट बना दिया।
0: कुल मिलाकर यूपी का संग्राम दिलचस्प हो गया है और ये हाल तब है जब अभी चुनाव घोषित नहीं हुए हैं। संतोष शर्मा के साथ समर श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
6: सवाल यह भी कि क्या ओवैसी को उत्तर प्रदेश के मुसलमान अपना नेता मान पाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो मुसलमान सर्वमान्य नेता के तौर पर अखिलेश यादव को ही मानते हैं और अखिलेश यादव भी मुसलमानों के वोटों के सहारे रहते हैं। अब ऐसे में अगर अखिलेश के इन मुसलमान वोटों में ओवैसी सेंध लगाएंगे तो मुसलमान किधर जाएंगे?
0: क्या यूपी के मुसलमान इस बार अखिलेश को छोड़कर असदुद्दीन ओवैसी का साथ देंगे? 2017 में 38 सीटों पर लड़े थे, 37 पर जमानत जब्त हुई, 2022 में 100 सीटों पर लड़े थे, 99 पर जमानत नहीं बचा पाए, तो 2027 में कितनी सीटों पर लड़ेंगे और रिजल्ट क्या रहेगा? यूपी का मुसलमान भी यही सवाल पूछ रहा है। उसके सामने एक तरफ अखिलेश यादव है जिन्होंने 24 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और बीजेपी को धूल चढ़ा, दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी हैं जो मुसलमानों को अब नेता बनाने को नहीं बल्कि नेता बनने को कह रहे हैं। ओवैसी का नैरेटिव साफ है कि मुसलमानों ने अखिलेश, मायावती जैसे बहुत से नेता बना दिए, वो अपनी रैलियों में सीधे पूछ रहे हैं कि इससे मुसलमानों को मिला क्या?
1: जो बात गांधी ने कही थी वो बात आज अखिलेश ने करके दिखा दी। सफाई में मेडिकल कॉलेज है, स्पोर्ट्स कॉलेज है, इतने डिग्री कॉलेज और स्कूल है कि आप गिनती भी नहीं कर सकते, और आजमगढ़ में तो डबल यादव है, MP भी है, विधायक भी है, बताओ क्या मिला? बताओ क्या मिला? लाल टोपी ने कुछ नहीं दिया, लड़ाई दरी बिछाने की रही, ये भी लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है मेरे अजीज दोस्तों।
0: ओवैसी की सभाओं में भीड़ भी बहुत जमा हो रही है, लेकिन ओवैसी का जो प्रयोग बिहार में सफल रहता है, यूपी में आकर यही प्रयोग फेल क्यों हो जाता है? और क्या इस बार यूपी में मुस्लिम वोटर ओवैसी का साथ देगा? क्या ओवैसी की तकरीरें मुस्लिम वोटर को अपनी ओर खींच पाने में कामयाब रहेंगी?
7: हमारे बैरिस्टर सुधीर साहब ने संदेश देके गया है कि नेता बनो, नेता बनाओ मत, अब हम लोग उनकी बात को अमल करेंगे और अपना खुद नेता पैदा करेंगे और चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे भी।
8: देखिए जिस तरीके का आजमगढ़ का माहौल है, खासतौर पे समाजवादी पार्टी से अपना गढ़ कहती है, कभी बसपा भी कहती थी,
3: ऐसे में आपकी लड़ाई कैसे है?
7: नहीं, अब समाजवादी के गढ़ को हम गढ़ाई बना देंगे और 200 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। जिस तरह से बिहार में इनका घमंड टूटा, उसी तरह यहाँ भी इनका घमंड टूट जाएगा।
9: आज की सभा से ये मालूम हो रहा है कि आने वाला वक्त मजलिस होने वाला है। नौजवान जिस तरीके से झूम रहा था, उत्साहित हो रहा था, ये बता रहा है कि मजलिस 2027 में कामयाब होगी और इसके विधायक विधानसभा पहुंचेंगे।
3: अच्छा, खास तौर पे ये इलाका बहुत संदेश देता है, संदेश देने ही के लिए शायद वो ऐसी साहब आए।
9: आज यहाँ पे वरिष्ठ साहब ने कहा तुमको वोट नहीं देना है, तुमको वोट लेने वाला बनना है, तुमको नेता बनना होगा, नेता बना चुके, तुमको हक लेना है तो अपने हाथ को मजबूत करनी होगी।
0: ओवैसी एक बहुत बढ़िया ओरेटर है, वो जानते हैं कि मुस्लिम वोटर की नब्ज कैसे पकड़नी है, कौन से मुद्दों को उठाना है। ये बात सही है कि वो ज्यादातर मुसलमानों से जुड़े मुद्दों पर ही बात करते हैं, लेकिन अब वो यूपी में हर किसी को अपने साथ जुड़ने का आह्वान कर रहे हैं। इसीलिए तो योगी आदित्यनाथ के 80-20 के जवाब में वो 99-1 का नारा गढ़कर लाए हैं।
10: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बात करते हैं 80 और 20 की। हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये बताना चाहती हैं कि अब मुकाबला इंशाअल्लाह ताला बाबा 80 और 20 का नहीं होगा, 99% बमुकाबला 1% का होगा। और बाबा आपकी पार्टी, आप मोदी अमित शाह उस 1% लोगों के साथ हैं और ओवैसी 99% लोगों के साथ है।
0: अपने वोटर के सामने नैरेटिव गढ़ने में ओवैसी बहुत हदें भी पार कर जाते हैं, जैसे आजमगढ़ में उन्होंने गांधी नेहरू के सामने मौलाना आजाद को खड़ा कर दिया। क्या इसे गांधी नेहरू के विरोध के तौर पर नहीं देखा जाएगा?
1: मैं देखता हूँ कि हमारे ही सपों से कोई बोलते हैं, अरे मुसलमानों इनका साथ दो, इन्हीं में से नेहरू और गांधी निकलेंगे। क्यों? क्या इनमें से मौलाना आजाद नहीं निकल सकता?
0: लेकिन ओवैसी की इन चुनावी तकरीरों का उनके वोटर्स पर असर हो रहा है। रैलियों के तुरंत बाद वो ओवैसी से प्रभावित नजर आते हैं और सबसे ज्यादा ये लाइन मुतासिर करती है कि अब्दुल कब तक दरी बिछाएगा, यानी कब तक मुस्लिम वोटर दूसरे को नेता बनाता रहेगा।
7: तो क्या मुस्लिम वोट में सेंध लगाने की बात कहेंगे कि वो की सपा कहती है कि मुस्लिम वोट हमारा है?
9: ये वोट हमारा है, सपा हमारे में सेंध लगाई है। अब तक हम लोग चुकी नहीं, हमारी समाज, हमारा समाज नहीं समझ पाया तो हमारे समाज को गुमराह करके हमारा वोट लिए। अब ये नहीं चलेगा, अब हमारा चलेगा। अब उनको अगर आना है उत्तर प्रदेश में हुकूमत अगर करना है तो हमारे साथ में आएंगे, हमारा झंडा हमारा झंडा होगा, वो उनको हुकूमत देंगे।
11: हम तो यही कहेंगे कि लोकतंत्र में हर समाज की अपनी आवाज का होना जरूरी है, हमारा संविधान भी यही कहता है। तो बैरिस्टर सुद्दीन ओवैसी आज आजमगढ़ में जो यहाँ से जो आवाज उठी है वो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की सियासत की दिशा दर्शाते हैं।
0: राजीव कुमार, आजमगढ़, आज तक।
6: सऊदी अरब की राजधानी रियाद में एयरपोर्ट पर एक बार फिर से हमला हुआ। ये मिसाइल रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 4 से टकराई, उसके बाद भयानक आग लग गई। एयरपोर्ट के पास एक क्रूज मिसाइल को हवा में ही नष्ट करने में सफलता हासिल की गई, वरना तबाही बहुत होती।

0: हूतियों का बड़ा हमला, रियाद फिर दहला। एयरपोर्ट पर एक हफ्ते में चौथा हमला। तीसरे हमले में घायल भारतीय की मौत। यमन में हुतियों के कई ठिकानों को बनाया निशाना। हुती किसी के रोके नहीं रुक रहे, न यमन सरकार के लगातार मिलिट्री एक्शन से, न सऊदी अरब के हमलों से और न ही पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक से। बेखौफ हुतियों ने सऊदी अरब के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक हफ्ते में चौथा हमला किया है। इसमें एक की जान चली गई है, जबकि कई घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। जिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पिछले हफ्ते तक हजारों लोग हर दिन सफर करते थे, वहां अब तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। जले हुए विमान, टूटी हुई इमारत, फ्लाइट ऑपरेशंस के बर्बाद उपकरण, खून के धब्बे और जगह जगह फैला मलबा हालात के हाहाकारी होने की गवाही दे रहा है। वैसे तो पिछले एक महीने में हुतियों ने कई बार अरामको रिफाइनरी के अलावा सऊदी अरब के दो एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया है, लेकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगातार चार दिन तक मिसाइल हमलों से हड़कंप मच गया है। हफ्ते भर में हुए इन हमलों में सऊदी अरब, भारत और अमेरिका समेत कई देशों के यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। पहले हमले में एयरपोर्ट को काफी नुकसान पहुंचा, जबकि दूसरे हमले में एक कैप्टन समेत तीन सऊदी नागरिक मारे गए थे। विमानों को नुकसान पहुंचा 100 अलग। तीसरा हमला इतना विनाशकारी था कि इसमें 13 लोगों की मौत हो गई और 309 लोग घायल हो गए। अब चौथे हमले में एक शख्स की मौत हुई है, जबकि 11 लोग घायल हुए हैं। उधर सऊदी अरब ने पलटवार करते हुए यमन के सना और टाइज इलाकों में हुतियों के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। अभी ये पता नहीं चल पाया है कि इन हमलों में हुतियों का कितना सैन्य नुकसान हुआ है। तुर्की और पाकिस्तान ने मक्का समझौते के तहत अपनी सैन्य मदद सऊदी अरब को दे दी है, लेकिन इसके बावजूद हुतियों के हमलों में कोई कमी नहीं आई है। उल्टे ईरान ने तो यमन में एयर स्ट्राइक करने वाले पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है, लेकिन हर किसी की नजर अब अमेरिका पर है कि आखिर इन हमलों में अपने नागरिक खोने के बाद क्या वो हुतियों का काम तमाम करने जा रहा है। बेलगाम हुतियों के इन हमलों का कई देशों ने विरोध किया है, लेकिन आक्रामक होते हुती हर दूसरे दिन लोगों की जान ले रहे हैं। बाब अल मंदेब पर पकड़ ढीली होने और सऊदी अरब की एयर स्ट्राइक के जवाब में उसके हमलों ने रियाद में हाहाकार मचा दिया है। एयरपोर्ट पर सारी फ्लाइट्स रोकी जा चुकी हैं और कई देश अपने नागरिकों को वहां न जाने देने की चेतावनी जारी कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
1: छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

लगातार धरना प्रदर्शन के बाद राहुल गांधी की नई रणनीति, आज इंडिया गठबंधन के नेताओं को चाय पर बुलाया, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी प्लान। ग्यारह याचिकाओं और याचिकाकर्ताओं के साथ ईसीआई के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका अब तक सुनवाई के लिए लिस्ट ही नहीं हुई, रजिस्ट्री ने बताई 14 खामियां, गलती सुधार के लिए 90 दिनों का वक्त दिया। सीजीआई विवाद में बैकफुट पर केरल कांग्रेस, चौतरफा घिरने के बाद हटाया इस्तीफे का पोस्ट, रिजिजू ने कहा एकजुट हुआ एंटी इंडिया गैंग, देशभक्त देंगे जवाब। अपने काफिले को शिव की बारात कहने पर राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी का अटैक, कहा ये अराजकों की जमात, नेता विपक्ष बोले ज्ञानेश के इस्तीफे तक नहीं रुकेंगे, संपर्क में सरकार के 200 अफसर। छह राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति, ओम प्रकाश माथुर को केरल, राजेंद्र आर्लेकर को मिली तमिलनाडु की कमान, सिक्किम के गवर्नर बने दुष्यंत गौतम।

नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। सुबह के 6 बज चुके हैं। देश और दुनिया की हर खबर लेकर हम हाजिर हैं और शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर ये कि राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने पांचवें दिन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर धावा बोला। इंडिया गठबंधन ने दिल्ली के बाराखंबा रोड से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ज्ञानेश हटाओ मार्च निकाला, चुनाव आयोग के खिलाफ याचिका दाखिल की। हालांकि इस याचिका वाली फाइल में 14 कमियां सामने आई हैं जिनके बारे में राहुल गांधी और उनकी टीम को बता दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने सुनवाई के लिए उस याचिका को लिस्ट नहीं किया है। हालांकि एसआईआर से जुड़े कई सारे मामलों पर जो पहली याचिकाएं चल रही हैं उन पर आज तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, लेकिन राहुल गांधी ने जो कल याचिका दाखिल की है उसे लिस्ट नहीं किया गया है। अब बताई गई है कमियों को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे का आईडी कार्ड मांगा गया है जो याचिका के साथ नहीं डाली गई है। कोर्ट की फीस ₹220 अभी कम है, उसको भी भरना पड़ेगा। रजिस्ट्री ने याचिका में अलग अलग चुनाव आयुक्तों का नाम शामिल करने का मुद्दा उठाया है और स्पष्टीकरण मांगा है कि आर्टिकल 32 के तहत रिट पिटीशन में निजी व्यक्तियों को प्रतिवादी क्यों बनाया गया है। तो रजिस्ट्री ने ऐसे कई सारे सवाल पूछे हैं। राहुल गांधी की लीगल टीम को इसका जवाब देना होगा, जिसके बाद याचिका सुनवाई के लिए लिस्ट हो सकती है।

0: लगातार राहुल गांधी का वार ज्ञानेश कुमार पर छिड़ा संग्राम। ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट तक आई। सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक इंडिया गठबंधन का ज्ञानेश हटाओ मार्च।
1: बीजेपी को स्वीकार करना चाहिए कम से कम इलेक्शन कमीशन जो वोट के साथ हेरा फेरी कर रहे थे, धांधली कर रहे थे, लूट कर रहे थे, चोरी कर रहे थे वोट, इन्हें स्वयं स्वीकार कर लेना चाहिए इस्तीफा देना।
0: राहुल गांधी का ऐलान, शिव की बारात में कोई भी आ सकता है।
2: ये शिव जी का डांस चल रहा है, इसमें शिव की बारात में कोई भी आ सकता है।
0: SIR में गड़बड़ी के खिलाफ विपक्ष की सुप्रीम कोर्ट में याचिका।
3: थाना है, लड़ाई लड़ना है, लोकतंत्र को बचाना है, अंतिम मुकाम तक पहुंचाएंगे।
4: देखिए सुप्रीम कोर्ट से हमको उम्मीद है कि जरूर सुप्रीम कोर्ट हमारी बात सुन जाए।
0: लगातार ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा करवाने के लिए राहुल गांधी की जद्दोजहद जारी है। राहुल गांधी के विरोध प्रदर्शन वाले कैलेंडर में ये पांचवा दिन है। 6 अक्टूबर से राहुल गांधी ने CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन वाली जंग छेड़ी है और आज विपक्ष के ज्ञानेश हटाओ मार्च का आखिरी पड़ाव सुप्रीम कोर्ट तय किया। राहुल ने मार्च से पहले एक 40 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इसमें उन्होंने मार्च में सबको शामिल होने के लिए कहा। जी हाँ, राहुल गांधी ने कहा कि शिव की बारात में सब शामिल हो सकते हैं।
2: मेरी सिस्टर कहती है मुझे कि प्लान करना चाहिए, तो मैंने सिस्टर से कहा तुम बात समझ नहीं रही हो, ये तांडव है, ये शिव का डांस है, इसमें कोई प्लानिंग नहीं होती। आइडिया वो ऊपर लिखा हुआ है, प्लान की कोई जरूरत नहीं है। ये डांस चल रहा है, ये शिव जी का डांस चल रहा है, इसमें शिव की बारात में कोई भी आ सकता है, कोई भी जीव आ सकता है, हम रोकेंगे नहीं।
0: सैकड़ों की तादाद में विपक्ष के कार्यकर्ताओं की भीड़ है, जिसमें आपको दो बसें नजर आएंगी। एक ट्रक जिस पर तिरंगा लगा हुआ है वो नजर आएगा और आगे पीछे कारों का काफिला भी आप देख सकते हैं।
5: हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा।
4: देखिए सुप्रीम कोर्ट से हमको उम्मीद है
6: न्याय मिलेगा।
4: चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि आप पिटीशन लेकर आइए, हम आपकी बात सुनेंगे। ये उम्मीद की किरणें है, जैसा जिस तरह से पूरा देश आज सड़क पर है अपनी मांग के लिए, अधिकार के लिए, तो जरूर सुप्रीम कोर्ट हमारी बात सुन जाए।
3: इनकी मनमानी नहीं चलेगी, चोरी और सीनाजोरी नहीं चलेगी, लोकतंत्र को चलने वाला काम अब नहीं होगा। ये लोग बेईमान लोग हैं, इन लोगों ने चोरी नहीं बल्कि बहुत बड़ा पाप किया है।
0: दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से ये बात शुरू होता है। पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सभी दिग्गज नेता बसों और कारों से बाराखंबा रोड तक पहुंचते हैं।
7: आंदोलन, धरना, प्रदर्शन लगातार चलता रहेगा। हमारी जिम्मेदारी है लोकतंत्र बचाने की और भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन से मिलकर के संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। हमेशा हमेशा सरकार में रहना चाहती है। फर्जी वोट बनाते हैं, फर्जी वोट डालते हैं और फर्जी चुनाव का परिणाम बनाते हैं।
8: जिस हिसाब से इनकी गुंडागर्दी पूरे देश के लोग देख रहे हैं, अब ये लोग बचने वाले नहीं है, ज्यादा दिन तक टिकने वाले नहीं।
0: और फिर बाराखंबा से सुप्रीम कोर्ट के लिए पैदल मार्च शुरू होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ निकाले गए इस विरोध मार्च में दो गौर करने वाली बातें हैं। पहला तो आयसा की अध्यक्ष नेहा बोरा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ साथ पैदल चलते हुए नजर आती हैं। नेहा बोरा की राहुल प्रियंका के साथ काफी क्लोज बॉन्डिंग नजर आती है। राहुल गांधी भीड़ को पीछे हटाते हुए नजर आते हैं। दूसरी बड़ी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट तक इस मार्च में अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव से लेकर लेफ्ट के कई नेता और कांग्रेस की सरकार वाले तीन राज्यों के CM यानी हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू, तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी और कर्नाटक CM DK शिव कुमार ज्ञानेश कुमार हटाओ मार्च में शामिल होते हैं।
9: Our demand should be a repoll, dismissal of that election commissioner.
10: डेमोक्रेसी को बचाना है, जमहूरियत को, लोकतंत्र को, तो देशवासियों को भी
6: आगे आना पड़ेगा, युवा पीढ़ी को आगे आना पड़ेगा, आई भी है।
0: क्योंकि राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के 10 नेताओं ने राष्ट्रपति मुर्मू को ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ज्ञापन देने के बाद सीजीआई से मिलकर उन्हें भी ज्ञापन सौंपने का ऐलान किया था, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने मिलने से इनकार कर दिया और याचिका दाखिल करने के लिए कहा। इसके बाद राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करते हुए एसआईआर के खिलाफ अर्जी दाखिल करने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन विपक्ष के इस मार्च को सुप्रीम कोर्ट से पहले परिवहन भवन के पास बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया जाता है। ऐसे में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत विपक्ष के सभी नेता भीड़ में चल रहे ट्रक पर एक साथ सवार हो जाते हैं और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन करते हैं।
10: याचिका सुपुर्द हो गई है, उसमें वो सभी ग्राउंड्स हैं जिसके अंतर्गत गैर कानूनी काम किया है, जो निर्णय है उनको क्वाश करना चाहिए, जो दो चीजें आपने पढ़ी हैं सुनी हैं उनके विषय में याचिका है।
0: थोड़ी देर तक हंगामा होता है, विपक्ष अपनी ताकत दिखाता है और ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगता है।
11: Amazing. Yeah, we've been out the whole afternoon seeing lakhs of people. Action will move to the Supreme Court tomorrow, I think.
12: So, क्या हुआ अंदर, क्या हुआ
13: अंदर? नो, ओनली पिटीशन हैज बीन गिवन।
12: देयर आर, आपने रजिस्ट्रार को दिया?
13: हां, देयर आर ऑफिसर्स
12: हु
13: रिसीव द पिटीशन एंड आई एम गिवन टू अंडरस्टैंड टुमारो पिटीशन मे बी टेकन अप।
12: ये आपको बताया गया कि कल हो सकता है कि पिटीशन आ जाए।
14: राहुल गांधी ने इस बात का ऐलान तो कर दिया कि सीसी के इस्तीफे तक लड़ाई जारी रहेगी, तो वहीं बीजेपी राहुल के आरोपों को निराधार बताते हुए देश विरोधी ताकतों का साथ देने का आरोप लगा रही है।
0: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर राहुल गांधी अड़े हैं और समर्थकों के साथ सड़क पर खड़े हैं। 2 अक्टूबर से ही राहुल की अगुवाई में आर पार की लड़ाई जारी है। सवाल यही है कि आगे क्या होगा, तो आज राहुल ने ज्ञानेश कुमार को लेकर अपना रोड मैप समझा दिया।
2: प्लान की कोई जरूरत नहीं है, ये डांस चल रहा है, ये शिव जी का डांस चल रहा है। इसमें शिव की बारात में कोई भी आ सकता है। जिस मैंने बोला गो बैक, देखिए ये शिव की बारात है, इसमें किसी को भी आना आ सकता है, कोई भी जीव आ सकता है, हम रोकेंगे नहीं।
15: अभी कह रहे थे कांग्रेस तो शिवजी की बारात है, ये राम का विरोध करने वाले शिवजी की बारात की बात कर रहे हैं, ये शिवजी की बारात नहीं है। अराजकता फैलाने वाले हुड़दंगियों की जमात है जो सड़कों पे अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही है।
0: राहुल के दावों पर बीजेपी ने सवाल उठाए, लेकिन ज्ञानेश कुमार को लेकर राहुल गांधी ना रुकने को तैयार हैं और ना ही अपनी मांगों को लेकर झुकने को। मतलब यही है कि सड़क पर उतरे राहुल गांधी अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।
2: अच्छा, आजकल हमें इन्फॉर्मेशन सब जगह से मिल रही है। ज्ञानेश कुमार जी, हम जानते हैं आपकी क्या हालत है, हम जानते हैं कि आप रात को सो नहीं पाते हो, और आप घबराइए मत, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। आप, मैं आपको डायरेक्टली कह रहा हूं, आप बचोगे नहीं एज ए इलेक्शन कमिश्नर।
15: चुनाव की हार का दोष भी कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं पर मढ़ने का पाप करती है, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस के मित्रों से, कांग्रेस की हार का कारण चुनाव आयोग नहीं है, कांग्रेस की हार का कारण स्वयं कांग्रेस का विचार शून्य नेतृत्व है।
0: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर राहुल गांधी ने एक बड़ा दावा किया। दावा ये कि ज्ञानेश कुमार की तरफ से उन्हें संदेश मिल रहे हैं। ऐसे में अगर मुख्य चुनाव आयुक्त सरकारी गवाह बन जाए तो बीच का रास्ता निकल सकता है।
2: मैसेजेस आते हैं और वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं।
16: जवाब क्या है आपका उनको?
2: turn approver. You have done a crime. And frankly, you are not the main criminal. You made a mistake. You have made a mistake. You are not the mind behind the mistake. We are after the people who are behind what you did.
0: राहुल का हमला सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त तक सीमित नहीं रहा। राहुल ने 10 अक्टूबर को दिल्ली की किलेबंदी को लेकर दिल्ली पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए, दावा किया कि दिल्ली पुलिस दबाव में काम कर रही है।
2: ये भी बड़े डिस्टर्ब हैं। ये कह रहे हैं कि हमसे हिंदुस्तान के युवाओं को क्यों पिटवाया जा रहा है, पुलिस में सवाल पूछा जा रहा है कि हमें युवाओं को रोकने के लिए कहा जा रहा है और फिर हमसे ही आरएसएस के लोगों को फ्री घूमने दिया जा रहा है। ये होम मिनिस्ट्री, दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ, आईटीबीपी के अंदर यह सवाल पूछा जा रहा है।
0: केंद्र सरकार पर राहुल गांधी के हमलों पर पलटवार के लिए बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने मोर्चा संभाला, आरोप लगाया कि चुनाव में जनता ने ठुकराया तो अब राहुल अराजकता के दम पर राज करना चाहते हैं।
16: आप महामहिम राष्ट्रपति जी के पास गए, वहां पर भी आपको कहा गया कि शिकायत के साथ सबूत दीजिए, तो आप बगले झांकने लगे, भाग गए, चुप्पी साध ली। और सुप्रीम कोर्ट ने तो श्रीमान राहुल गांधी जी से साफ साफ कह दिया कि कोर्ट को आप अपनी राजनीति का रणक्षेत्र नहीं बना सकते। इनका फंडा बहुत क्लियर है, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का, राज नहीं तो अराजकता फैला दो। 99 चुनाव हारने तक राहुल गांधी जी हर सीजन में ये देखते हैं कि किसके ऊपर आरोप लगाना है, ठीकरा कहां फोड़ना है। कभी इलेक्शन कमीशन, कभी ईवीएम, कभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो कभी कुछ और। और अब तो हालत यह हो गई है कि सड़क छाप भाषा का प्रयोग और निराधार आरोप लगाने का काम श्रीमान राहुल गांधी जी कर रहे हैं।
0: यूपी विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, लिहाजा अखिलेश यादव भी चुनावी एजेंडा सेट करने के लिए दिल्ली पहुंचे। राहुल के मार्च में शामिल होकर हुंकार भरी तो वहीं अखिलेश की सक्रियता को देखते हुए सीएम योगी ने ज्ञानेश कुमार को लेकर जारी प्रदर्शन पर सीधा प्रहार किया।
17: आश्चर्य है कि चुनाव जीते तो इनका पुरुषार्थ और हारे तो ईवीएम दोषी। इलेक्शन कमीशन दोषी। न्यायालय अगर मेरिट के आधार पर कोई फैसला देता है तो माननीय न्यायालय को कड़घरे में खड़ा करने का प्रयास।
14: उधर पश्चिम एशिया में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में एयरपोर्ट पर एक बार फिर हमला हुआ। यह मिसाइल रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 4 से जा टकराई, जिसके बाद वहां आग लग गई। हवाई ऑपरेशन को रोक दिया गया है।

0: हूतियों का बड़ा हमला, रियाद फिर दहला। एयरपोर्ट पर एक हफ्ते में चौथा हमला। तीसरे हमले में घायल भारतीय की मौत। यमन में हूतियों के कई ठिकानों को बनाया निशाना। हूती किसी के रोके नहीं रुक रहे, न यमन सरकार के लगातार मिलिट्री एक्शन से, न सऊदी अरब के हमलों से और न ही पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक से। बेखौफ हूतियों ने सऊदी अरब के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक हफ्ते में चौथा हमला किया है। इसमें एक की जान चली गई है, जबकि कई घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। जिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पिछले हफ्ते तक हजारों लोग हर दिन सफर करते थे, वहां अब तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। जले हुए विमान, टूटी हुई इमारत, फ्लाइट ऑपरेशंस के बर्बाद उपकरण, खून के धब्बे और जगह जगह फैला मलबा हालात के हाहाकारी होने की गवाही दे रहा है। वैसे तो पिछले एक महीने में हूतियों ने कई बार अरामको रिफाइनरी के अलावा सऊदी अरब के दो एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया है, लेकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगातार चार दिन तक मिसाइल हमलों से हड़कंप मच गया है। हफ्ते भर में हुए इन हमलों में सऊदी अरब, भारत और अमेरिका समेत कई देशों के यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। पहले हमले में एयरपोर्ट को काफी नुकसान पहुंचा, जबकि दूसरे हमले में एक कैप्टन समेत तीन सऊदी नागरिक मारे गए थे। विमानों को नुकसान पहुंचा 100 अलग। तीसरा हमला इतना विनाशकारी था कि इसमें 13 लोगों की मौत हो गई और 309 लोग घायल हो गए। अब चौथे हमले में एक शख्स की मौत हुई है, जबकि 11 लोग घायल हुए हैं। उधर सऊदी अरब ने पलटवार करते हुए यमन के सना और टाइज इलाकों में हूतियों के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। अभी ये पता नहीं चल पाया है कि इन हमलों में हूतियों का कितना सैन्य नुकसान हुआ है। तुर्की और पाकिस्तान ने मक्का समझौते के तहत अपनी सैन्य मदद सऊदी अरब को दे दी है, लेकिन इसके बावजूद हूतियों के हमलों में कोई कमी नहीं आई है। उल्टे ईरान ने तो यमन में एयर स्ट्राइक करने वाले पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है, लेकिन हर किसी की नज़र अब अमेरिका पर है कि आखिर इन हमलों में अपने नागरिक खोने के बाद क्या वो हूतियों का काम तमाम करने जा रहा है।
1: Have you decided whether to join the Saudi strikes on the Houthis?
2: We may. We're going to look at it.
1: How soon?
2: We just found out about the recent attack, so we'll make a decision. We move very quickly.
0: बेलगाम हूतियों के इन हमलों का कई देशों ने विरोध किया है, लेकिन आक्रामक होते हूती हर दूसरे दिन लोगों की जान ले रहे हैं। बाब अल मंदेब पर पकड़ ढीली होने और सऊदी अरब की एयर स्ट्राइक के जवाब में उसके हमलों ने रियाद में हाहाकार मचा दिया है। एयरपोर्ट पर सारी फ्लाइट्स रोकी जा चुकी हैं और कई देश अपने नागरिकों को वहां न जाने देने की चेतावनी जारी कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसें।

अक्टूबर में ही पहाड़ों पर सर्दी ने दस्तक दे दी है। हिमाचल लद्दाख सीमा पर शिंकुला टॉप में भारी बर्फबारी से 40 से ज्यादा गाड़ियां और करीब 25 बाइक सवार फंस गए। बर्फबारी से सड़क पर फिसलन बढ़ी और कई बाइक सवार गिर पड़े। केलोंग पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाला। कुल्लू और मनाली में बारिश से ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने 15 अक्टूबर तक हिमाचल के ज्यादातर इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया है। जम्मू में बेमौसम बारिश से कई इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। मेरठ में अचानक बारिश के साथ ओले गिरे, दोपहर में ही अंधेरा छा गया। करनाल में तेज बारिश से धान की फसल भीग गई, इससे किसानों को नुकसान की आशंका है। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानों में बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। अक्टूबर में ही सर्दी के तेवर दिखने लगे। कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा, जम्मू से मीर फरीद और मेरठ से उस्मान चौधरी के साथ कमलजीत, करनाल आज तक। ये तबाही की तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें डराती हैं, खौफ पैदा करती हैं। नेपाल पर एक बार फिर कुदरत का कहर बना। ये तस्वीरें नेपाल के गोरखा जिले की हैं, जहां बूढ़ी गंडकी नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया। अचानक बढ़े पानी के बहाव ने नदी किनारे बसे इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते मकान बह गए और कई पुल तबाह हो गए। जिन घरों में कभी खुशियां बसती थी, वो अब पानी में समा चुके हैं। गोरखा के चुमनुबरी और धारचे इलाकों में बाढ़ का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है। सैलाब का कहर सिर्फ मकानों तक सीमित नहीं रहा, लोगों को जोड़ने वाले पुल भी पानी के तेज बहाव में बह गए। जानकारी के मुताबिक कुल 6 पुल नष्ट हुए हैं, जिनमें 2 मोटर योग्य और 4 सस्पेंशन ब्रिज शामिल हैं। अरुघाट, त्रिपुर सुंदरी और सोती मानगू के पुलों के साथ एक बेली ब्रिज भी तबाह हो गया। बूढ़ी गंडकी नदी के उफान से सालेरी, पयुका और जगत के नदी किनारे बसे इलाकों में भी कई मकान बह गए। पुल टूटने से अब प्रभावित इलाकों तक पहुंचना और राहत पहुंचाना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। अधिकारियों के मुताबिक रविवार सुबह करीब 4 बजे जिले के उत्तरी हिस्से में अचानक बाढ़ आई। तेज बहाव और पानी की गर्जना सुनकर चुमलिंग और लोकपा जैसी बस्तियों में रहने वाले लोग और पर्यटक जान बचाने के लिए सुरक्षित जगहों की ओर भागे। पानी का बहाव कभी धीमा पड़ता तो कभी अचानक तेज हो जाता। लोगों को सामान समेटने तक का मौका नहीं मिला और वे अपनी जान बचाने के लिए घर छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। अब प्रशासन ने बूढ़ी गंडकी नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित ऊंचाई वाले स्थानों पर जाने की चेतावनी दी। सबसे बड़ी चुनौती लोगों की जान बचाने और प्रभावित इलाकों तक मदद पहुंचाने की। नेपाल में एक बार फिर पानी का कहर, उजड़ते घर, टूटते पुल और जान बचाकर भागते लोग। कुदरत के इस कहर ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। आज तक भी

माता त्रिपुर सुंदरी। माता त्रिपुर सुंदरी की क्या महिमा है, क्या है माता त्रिपुर सुंदरी का पूजा विधान और कैसे मिलेंगे इनसे वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।

0: फ्लाइट से सफर करने वालों के लिए आने वाला वक्त थोड़ा महंगा हो सकता है। वजह है हवाई जहाज का महंगा फ्यूल और कई रूट्स पर बढ़ती उड़ान की दूरी। वेस्ट एशिया में तनाव के चलते कुछ एयरलाइंस को अपने रूट बदलने पड़ रहे हैं। इससे एक तरफ फ्यूल खर्च बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ फ्लाइट और क्रू का खर्च भी बढ़ रहा है। इसके अलावा रुपए की कमजोरी से भी लागत बढ़ गई है। इसी बढ़ती लागत को लेकर भारतीय एयरलाइंस ने सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के सामने चिंता जताई है। एयरलाइंस का कहना है कि अगर लागत का दबाव लंबे समय तक बना रहा तो कुछ कम कमाई वाले रूट्स को चलाना मुश्किल हो सकता है और यही चिंता आगे चलकर यात्रियों के लिए हवाई किराए का दबाव बढ़ा सकती है। नोमुरा की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिगो की पैसेंजर यील्ड यानी प्रति यात्री औसत कमाई करीब 21% बढ़ी है। इसके साथ ही जेट फ्यूल कॉस्ट पर अवेलेबल सीट किलोमीटर करीब 80% बढ़ी है। यानी फ्यूल लागत में तेज बढ़ोतरी का असर एयरलाइंस की कमाई पर पड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडिगो ने बढ़ी हुई फ्यूल लागत का एक हिस्सा ज्यादा किराए के जरिए रिकवर किया है। नोमुरा का अनुमान है कि ये रिकवरी आगे और बढ़ सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि टिकट के दाम 80% बढ़ जाएंगे, लेकिन फ्यूल लागत का दबाव अगर बना रहता है तो एयरलाइंस के लिए किराए को ऊंचे स्तर पर रखना जरूरी हो सकता है। मुश्किल केवल महंगे फ्यूल की नहीं है। वेस्ट एशिया के एयर स्पेस रेस्ट्रिक्शंस की वजह से कुछ फ्लाइट्स को लंबे रूट से उड़ना पड़ रहा है। ज्यादा दूरी का मतलब है ज्यादा उड़ान समय और ज्यादा फ्यूल की खपत। इससे कुछ कम कमाई वाले रूट्स पर खतरा मंडरा रहा है। सरकार भी इस बढ़ती लागत को लेकर एयरलाइंस और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज यानी OMCs से बातचीत कर रही है। सिविल एविएशन मिनिस्टर के मुताबिक ATF की कीमतों का दबाव बड़ा मुद्दा है और सरकार प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड जैसे विकल्पों पर भी विचार कर रही है, लेकिन जब तक लागत का ये दबाव कम नहीं होता यात्रियों के लिए हवाई टिकट में बड़ी राहत की उम्मीद मुश्किल हो सकती है। खासकर फेस्टिव सीजन में जब फ्लाइट की डिमांड बढ़ती है तब महंगा फ्यूल और लंबे रूट मिलकर एयरलाइंस की लागत पर और दबाव डाल सकते हैं। यानी हवाई सफर करने वालों के लिए अब केवल टिकट की डिमांड ही नहीं ATF की कीमत और इंटरनेशनल एयर स्पेस की स्थिति भी मायने रखेगी, क्योंकि महंगा फ्यूल और लंबा रूट मिलकर हवाई सफर को महंगा बनाए रखने का दबाव बढ़ा रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: 2000 रुपए से ज्यादा की यूपीआई मर्चेंट पेमेंट पर एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 15 अक्टूबर से चुनिंदा 2000 रुपए से ऊपर के P2M यानी परसेंट टू मर्चेंट यूपीआई पेमेंट पर 0.4% MDR लागू होगा। हालांकि ये मर्चेंट से पेमेंट इकोसिस्टम में लिया जाने वाला MDR है और सरकार ने कहा है कि इसे ग्राहक पर नहीं डाला जा सकता, लेकिन अगर किसी मर्चेंट ने ये लागत ग्राहक से वसूलने की कोशिश की तो उसका असर यूपीआई की डिमांड पर पड़ सकता है। लोकल सर्कल्स के सर्वे के मुताबिक इस चार्ज से यूपीआई ट्रांजैक्शन की मंथली वैल्यू में 10% तक गिरावट का अनुमान है। वहीं मंथली ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में 4% तक कमी की आशंका है और केवल 14% यूजर्स ही 2000 रुपए से ज्यादा का यूपीआई पेमेंट जारी रखते हुए एक्स्ट्रा रकम देने को तैयार होंगे। अगर मर्चेंट MDR का बोझ ग्राहक पर डालते हैं तो लोकल सर्कल्स के सर्वे में दावा किया गया है कि 27% लोग कैश की तरफ चले जाएंगे, वहीं 26% क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करेंगे जबकि 14% डेबिट कार्ड चुनेंगे। इसी तरह 4% लोग बैंक ट्रांसफर NEFT या IMPS का इस्तेमाल करेंगे। कुल मिलाकर 76% यूजर्स बड़े पेमेंट के लिए दूसरे विकल्पों पर जाने की बात कह रहे हैं। यानी खतरा UPI पर चार्ज लगने से ज्यादा इस बात का है कि अगर ये लागत ग्राहक तक पहुंची तो बड़े पेमेंट में लोग UPI से दूरी बना सकते हैं। ऐसे में बड़े पेमेंट को लेकर मर्चेंट की चिंता बरकरार है। सर्वे के मुताबिक 41% मर्चेंट्स 2000 रुपए से ऊपर के UPI पेमेंट पर कोई MDR देने को तैयार नहीं है। वहीं केवल 17% 0.4% MDR वहन करने को तैयार है जबकि 15% अधिकतम 0.04% MDR देने को तैयार है और 9% मर्चेंट्स UPI पेमेंट स्वीकार ही नहीं करते हैं। UPI की ताकत को आंकड़ों के नजरिए से समझें तो अगस्त में UPI पर कुल 24.51 अरब ट्रांजैक्शन हुए जिनकी वैल्यू 29.82 ट्रिलियन रुपए रही। इसमें मर्चेंट पेमेंट्स की वैल्यू 8.95 ट्रिलियन रुपए थी और मर्चेंट ट्रांजैक्शन की कुल वैल्यू में 2000 रुपए से ऊपर के पेमेंट की हिस्सेदारी 67% थी। फिलहाल सरकार की कोशिश है कि MDR का बोझ सीधे ग्राहकों पर ना आए। सरकार और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के बीच ऐसा मैकेनिज्म तैयार करने पर काम हुआ है जिससे मर्चेंट्स की तरफ से ग्राहक से कोई एक्स्ट्रा चार्ज लेने की कोशिश पर नजर रखी जा सके। आदित्य के राणा आज तक।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: लगातार धरना प्रदर्शन के बाद राहुल गांधी की नई रणनीति, आज इंडिया गठबंधन के नेताओं को चाय पर बुलाया, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी प्लान। ग्यारह याचिकाओं और याचिकाकर्ताओं के साथ ईसीआई के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका अब तक सुनवाई के लिए लिस्ट ही नहीं हुई, रजिस्ट्री ने बताई 14 खामियां, गलती सुधार के लिए 90 दिनों का वक्त दिया। सीजीआई विवाद में बैकफुट पर केरल कांग्रेस, चौतरफा घिरने के बाद हटाया इस्तीफे का पोस्ट, रिजिजू ने कहा एकजुट हुआ एंटी इंडिया गैंग, देशभक्त देंगे जवाब। अपने काफिले को शिव की बारात कहने पर राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी का अटैक, कहा ये अराजकों की जमात, नेता विपक्ष बोले ज्ञानेश के इस्तीफे तक नहीं रुकेंगे, संपर्क में सरकार के 200 अफसर। छह राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति, ओम प्रकाश माथुर को केरल, राजेंद्र आर्लेकर को मिली तमिलनाडु की कमान, सिक्किम के गवर्नर बने दुष्यंत गौतम। ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर के लगातार हंगामा जारी है, राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने पांचवें दिन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर धावा बोला। इंडिया गठबंधन ने दिल्ली के बारखंबा रोड से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ज्ञानेश हटाओ मार्च निकाला, चुनाव आयोग के खिलाफ याचिका भी दाखिल कर दी। हालांकि याचिका की इस फाइल में 14 कमियां बताई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने सुनवाई के लिए इस याचिका को अब तक लिस्ट नहीं किया है। बताया गया है इन कमियों को लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे का आईडी कार्ड मांगा गया है, साथ ही कोर्ट की फीस 220 रुपए कम है उसकी भी जानकारी दी गई है। रजिस्ट्री ने याचिका में अलग अलग चुनाव आयुक्तों का नाम शामिल करने का मुद्दा उठाते हुए स्पष्टीकरण मांगा है कि आर्टिकल 32 के तहत रिट पिटीशन में निजी व्यक्तियों को प्रतिवादी क्यों बनाया गया है।
1: लगातार राहुल गांधी का वार, ज्ञानेश कुमार पर छिड़ा संग्राम। ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट तक आई। सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक इंडिया गठबंधन का ज्ञानेश हटाओ मार्च।
2: बीजेपी को स्वीकार करना चाहिए कम से कम इलेक्शन कमीशन जो वोट के साथ हेरा फेरी कर रहे थे, धांधली कर रहे थे, लूट कर रहे थे, चोरी कर रहे थे वोट, उन्हें स्वयं स्वीकार कर लेना चाहिए इस्तीफा देना।
1: राहुल गांधी का ऐलान, शिव की बारात में कोई भी आ सकता है,
3: ये शिव जी का डांस चल रहा है, इसमें शिव की बारात में कोई भी आ सकता है।
1: एसआईआर में गड़बड़ी के खिलाफ विपक्ष की सुप्रीम कोर्ट में याचिका।
4: ठाना है, लड़ाई लड़ना है, लोकतंत्र को बचाना है, अंतिम मुकाम तक पहुंचाएंगे।
5: देखिए सुप्रीम कोर्ट से हमको उम्मीद है कि जरूर सुप्रीम कोर्ट हमारी बात सुन जाए।
1: लगातार ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा करवाने के लिए राहुल गांधी की जद्दोजहद जारी है। राहुल गांधी के विरोध प्रदर्शन वाले कैलेंडर में ये पांचवा दिन है। 6 अक्टूबर से राहुल गांधी ने सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन वाली जंग छेड़ी है और आज विपक्ष के ज्ञानेश हटाओ मार्च का आखिरी पड़ाव सुप्रीम कोर्ट तय किया। राहुल ने मार्च से पहले एक 40 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, इसमें उन्होंने मार्च में सबको शामिल होने के लिए कहा। जी हाँ, राहुल गांधी ने कहा कि शिव की बारात में सब शामिल हो सकते हैं।
3: मेरी सिस्टर कहती है मुझे कि प्लान करना चाहिए, तो मैंने सिस्टर से कहा तुम बात समझ नहीं रही हो, ये तांडव है, ये शिव का डांस है, इसमें कोई प्लानिंग नहीं होती, आइडिया वो ऊपर लिखा हुआ है, प्लान की कोई जरूरत नहीं है, ये डांस चल रहा है, ये शिव जी का डांस चल रहा है, इसमें शिव की बारात में कोई भी आ सकता है, कोई भी जीव आ सकता है, हम रोकेंगे नहीं।
1: सैकड़ों की तादाद में विपक्ष के कार्यकर्ताओं की भीड़ है, जिसमें आपको दो बसें नजर आएंगी, एक ट्रक जिस पर तिरंगा लगा हुआ है वो नजर आएगा और आगे पीछे कारों का काफिला भी आप देख सकते हैं।
6: हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा।
5: देखिए सुप्रीम कोर्ट से हमको उम्मीद है
7: न्याय मिलेगा।
5: चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि आप पिटीशन लेकर आइए, हम आपकी बात सुनेंगे, ये उम्मीद की किरणें है। ऐसा जिस तरह से पूरा देश आज सड़क पर है, अपनी मांग के लिए, अधिकार के लिए, तो जरूर सुप्रीम कोर्ट हमारी बात सुन जाए।
4: इनकी मनमानी नहीं चलेगी, चोरी और सीनाजोरी नहीं चलेगी। लोकतंत्र को चलने वाला काम अब नहीं होगा। ये लोग बेईमान लोग हैं, इन्होंने चोरी नहीं बल्कि बहुत बड़ा पाप किया है।
1: दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से ये बात शुरू होता है। पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सभी दिग्गज नेता बसों और कारों से बाराखंबा रोड तक पहुंचते हैं।
7: आंदोलन, धरना, प्रदर्शन लगातार चलता रहेगा।

0: खत्म करना चाहती है, हमेशा हमेशा सरकार में रहना चाहती है। फर्जी वोट बनाते हैं, फर्जी वोट डालते हैं और फर्जी चुनाव का परिणाम बनाते हैं।
1: जिस हिसाब से इनकी गुंडागर्दी पूरे देश के लोग देख रहे हैं, अब ये लोग बचने वाले नहीं है, ज्यादा दिन तक टिकने वाले नहीं है।
2: और फिर बाराखंबा से सुप्रीम कोर्ट के लिए पैदल मार्च शुरू होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ निकाले गए इस विरोध मार्च में दो गौर करने वाली बातें हैं। पहला तो आयशा की अध्यक्ष नेहा बोरा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ साथ पैदल चलते हुए नजर आती हैं। नेहा बोरा की राहुल प्रियंका के साथ काफी क्लोज बॉन्डिंग नजर आती है। राहुल गांधी भीड़ को पीछे हटाते हुए नजर आते हैं। दूसरी बड़ी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट तक इस मार्च में अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव से लेकर लेफ्ट के कई नेता और कांग्रेस की सरकार वाले तीन राज्यों के सीएम यानी हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी और कर्नाटक सीएम डीके शिवकुमार, ज्ञानेश कुमार हटाओ मार्च में शामिल होते हैं।
3: Our demand should be a re-poll, dismissal of that election commissioner.
4: डेमोक्रेसी को बचाना है, जमहूरियत को, लोकतंत्र को, तो देशवासियों को भी आगे आना पड़ेगा, युवा पीढ़ी को आगे आना पड़ेगा, आई भी है।
2: क्योंकि राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के 10 नेताओं ने राष्ट्रपति मुर्मू को ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ज्ञापन देने के बाद सीजीआई से मिलकर उन्हें भी ज्ञापन सौंपने का ऐलान किया था, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने मिलने से इनकार कर दिया और याचिका दाखिल करने के लिए कहा। इसके बाद राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करते हुए एसआईआर के खिलाफ अर्जी दाखिल करने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन विपक्ष के इस मार्च को सुप्रीम कोर्ट से पहले परिवहन भवन के पास बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया जाता है। ऐसे में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत विपक्ष के सभी नेता भीड़ में चल रहे ट्रक पर एक साथ सवार हो जाते हैं और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन करते हैं।
5: याचिका सुपुर्द हो गई है, उसमें वो सभी ग्राउंड्स हैं जिसके अंतर्गत गैर कानूनी काम किया है, जो निर्णय है उनको क्वाश करना चाहिए, जो जो चीजें आपने पढ़ी हैं सुनी हैं उनके विषय में याचिका है।
2: थोड़ी देर तक हंगामा होता है, विपक्ष अपनी ताकत दिखाता है और ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगता है।
6: Amazing. Yeah, we've been out the whole afternoon seeing lakhs of people. Action will move to the Supreme Court tomorrow, I think.
7: So, क्या हुआ अंदर, क्या हुआ
8: अंदर? No, only petition has been given. There are officers who receive the petition. And I am given to understand tomorrow petition may be taken up.
7: ये आपको बताया गया कि कल हो सकता है कि petition आ जाए।
9: नेता विपक्ष राहुल गांधी ने यह तो साफ कर दिया है कि सीसी के इस्तीफे तक लड़ाई जारी रहेगी। वहीं बीजेपी राहुल के आरोपों को निराधार बताते हुए देश विरोधी ताकतों का साथ देने का आरोप लगा रही है।
2: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर राहुल गांधी अड़े हैं और समर्थकों के साथ सड़क पर खड़े हैं। 2 अक्टूबर से ही राहुल की अगुवाई में आर पार की लड़ाई जारी है। सवाल यही है कि आगे क्या होगा। तो आज राहुल ने ज्ञानेश कुमार को लेकर अपना रोड मैप समझा दिया।
10: प्लान की कोई जरूरत नहीं है, ये डांस चल रहा है, ये शिव जी का डांस चल रहा है। इसमें शिव की बारात में कोई भी आ सकता है। जिस मैंने बोला गो बैक, देखिए ये शिव की बारात है, इसमें किसी को भी आना आ सकता है, कोई भी जीव आ सकता है, हम रोकेंगे नहीं।
11: अभी कह रहे थे कांग्रेस तो शिवजी की बारात है, ये राम का विरोध करने वाले शिवजी की बारात की बात कर रहे हैं, ये शिवजी की बारात नहीं है। अराजकता फैलाने वाले हुड़दंगियों की जमात है जो सड़कों पे अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही है।
2: राहुल के दावों पर बीजेपी ने सवाल उठाए, लेकिन ज्ञानेश कुमार को लेकर राहुल गांधी ना रुकने को तैयार हैं और ना ही अपनी मांगों को लेकर झुकने को। मतलब यही है कि सड़क पर उतरे राहुल गांधी अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।
10: अच्छा, आजकल हमें इन्फॉर्मेशन सब जगह से मिल रही है।

0: ज्ञानेश कुमार जी, हम जानते हैं आपकी क्या हालत है, हम जानते हैं कि आप रात को सो नहीं पाते हो, और आप घबराइए मत, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। आप, मैं आपको डायरेक्टली कह रहा हूं, आप बचोगे नहीं एज ए इलेक्शन कमिश्नर।
1: चुनाव की हार का दोष भी कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं पर मढ़ने का पाप करती है, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस के मित्रों से, कांग्रेस की हार का कारण चुनाव आयोग नहीं है, कांग्रेस की हार का कारण स्वयं कांग्रेस का विचार शून्य नेतृत्व है।
2: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर राहुल गांधी ने एक बड़ा दावा किया। दावा ये कि ज्ञानेश कुमार की तरफ से उन्हें संदेश मिल रहे हैं, ऐसे में अगर मुख्य चुनाव आयुक्त सरकारी गवाह बन जाए तो बीच का रास्ता निकल सकता है।
0: मैसेजेस आते हैं और वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं।
3: जवाब क्या है आपका उनको?
0: टर्न अप्रूवर, यू हैव डन अ क्राइम एंड frankly you are not the main criminal, you have made a mistake, you are not the mind behind the mistake, we are after the people who are behind what you did।
2: राहुल का हमला सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त तक सीमित नहीं रहा। राहुल ने 10 अक्टूबर को दिल्ली की किलेबंदी को लेकर दिल्ली पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए, दावा किया कि दिल्ली पुलिस दबाव में काम कर रही है।
0: ये भी बड़े डिस्टर्ब हैं। ये कह रहे हैं कि हमसे हिंदुस्तान के युवाओं को क्यों पिटवाया जा रहा है, पुलिस में सवाल पूछा जा रहा है कि हमें युवाओं को रोकने के लिए कहा जा रहा है, और फिर हमसे ही आरएसएस के लोगों को फ्री घूमने दिया जा रहा है। ये होम मिनिस्ट्री, दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ, आईटीबीपी के अंदर यह सवाल पूछा जा रहा है।
2: केंद्र सरकार पर राहुल गांधी के हमलों पर पलटवार के लिए बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने मोर्चा संभाला, आरोप लगाया कि चुनाव में जनता ने ठुकराया तो अब राहुल अराजकता के दम पर राज करना चाहते हैं।
4: आप महामहिम राष्ट्रपति जी के पास गए, वहां पर भी आपको कहा गया कि शिकायत के साथ सबूत दीजिए, तो आप बगले झांकने लगे, भाग गए, चुप्पी साध ली। और सुप्रीम कोर्ट ने तो श्रीमान राहुल गांधी जी से साफ साफ कह दिया कि कोर्ट को आप अपनी राजनीति का रणक्षेत्र नहीं बना सकते। इनका फंडा बहुत क्लियर है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का, राज नहीं तो अराजकता फैला दो। 99 चुनाव हारने तक राहुल गांधी जी हर सीजन में ये देखते हैं कि किसके ऊपर आरोप लगाना है, ठीकरा कहां फोड़ना है। कभी इलेक्शन कमीशन, कभी ईवीएम, कभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो कभी कुछ और। और अब तो हालत ये हो गई है कि सड़क छाप भाषा का प्रयोग और निराधार आरोप लगाने का काम श्रीमान राहुल गांधी जी कर रहे हैं।
2: यूपी विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, लिहाजा अखिलेश यादव भी चुनावी एजेंडा सेट करने के लिए दिल्ली पहुंचे। राहुल के मार्च में शामिल होकर हुंकार भरी, तो वहीं अखिलेश की सक्रियता को देखते हुए सीएम योगी ने ज्ञानेश कुमार को लेकर जारी प्रदर्शन पर सीधा प्रहार किया।
5: आश्चर्य है कि चुनाव जीते तो इनका पुरुषार्थ, और हारे तो ईवीएम दोषी। इलेक्शन कमीशन दोषी। न्यायालय अगर मेरिट के आधार पर कोई फैसला देता है तो माननीय न्यायालय को कड़घरे में खड़ा करने का प्रयास।
6: बाकी छोटे से ब्रेक है, खबरें जारी, आप देखते रहिए आज तक।
7: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: आप महामहिम राष्ट्रपति जी के पास गए, वहां पर भी आपको कहा गया कि शिकायत के साथ सबूत दीजिए, तो आप बगले झांकने लगे, भाग गए, चुप्पी साध ली। और सुप्रीम कोर्ट ने तो श्रीमान राहुल गांधी जी से साफ साफ कह दिया कि कोर्ट को आप अपनी राजनीति का रणक्षेत्र नहीं बना सकते। इनका फंडा बहुत क्लियर है, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का, राज नहीं तो अराजकता फैला दो।
1: सत्ता में रहते हुए जिन्होंने देश को लगातार लूटा है, वह चोरी की बात कर रहे हैं। बार बार बार बार जिनको जनता ने हराया है, उनको तो आत्मचिंतन करना चाहिए, लेकिन हार हार के इतने कुंठित हो गए हैं कि अब धमकी देने पर उतर आए हैं, अमर्यादित आचरण कर रहे हैं। लोकतंत्र में विरोध की भी मर्यादा होती है, और विशेषकर जब कोई नेता प्रतिपक्ष जैसे पद पर हो, हार की खींच कुंठा में बदल रही है और संतुलन बिगड़ रहा है, हर किसी को धमकियां दी जा रही है।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

माता त्रिपुर सुंदरी। माता त्रिपुर सुंदरी की क्या महिमा है, क्या है माता त्रिपुर सुंदरी का पूजा विधान और कैसे मिलेंगे इनसे वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।

राहुल गांधी जी कहने के लिए तो नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन एक ऐसे नेता हैं जिनको न तथ्यों का पता है, न तर्क का पता है, न नियम कायदे कानून का पता है। उन्हें तो बस इतना पता है कि अराजकता फैलानी कैसे है, अस्थिरता लानी कैसे है, संवैधानिक पदों को और संस्थाओं को नीचे दिखाना कैसे है, और दुनिया भर में भारत का नाम बदनाम कैसे करना है, छवि को कमजोर कैसे करना है। यह दुर्भाग्य है देश को कभी इतना अस्थिर, अराजक, अगंभीर नेता प्रतिपक्ष के तमाशे और नखरे नहीं देखने पड़े। 99 चुनाव हारने तक राहुल गांधी जी हर सीजन में ये देखते हैं कि किसके ऊपर आरोप लगाना है, ठीकरा कहां फोड़ना है। कभी इलेक्शन कमीशन, कभी ईवीएम, कभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो कभी कुछ और। और अब तो हालत यह हो गई है कि सड़क छाप भाषा का प्रयोग और निराधार आरोप लगाने का काम श्रीमान राहुल गांधी जी कर रहे हैं। राहुल जी, देश को शोर नहीं सच चाहिए, आरोप नहीं प्रमाण चाहिए, राजनीतिक बयान नहीं स्पष्ट जवाब चाहिए।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: आ गया सोमवार और आ गए
1: चकमक चाचा।
0: एक कचौड़ी, दो समोसा, चकमक तेरा क्या भरोसा।
2: चकमक चाचा से सीधे चकमक है।
0: अरे नारा है, दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, महिला लोग एकदम नारा लगाए जा रही, बुझ रहा ना।
2: लेकिन भैया नारे अरे फालतू में सब बेकार, एकदम बेकार। अरे होते थे हमारे टाइम।
0: अच्छा
2: सुनाए, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, जेपी भाई छूटेंगे।
0: अच्छा तो हमारे टाइम वाले सुनिए, दो कुलचा एक बिरयानी, इन नेताओं की खत्म कहानी।
2: अरे जमीन के चकबंदी में, जमीन के चकबंदी में क्या फाइनेंस बंदी में,
0: ठंडी चाय गरम करो चकमक चाचा, शर्म करो।
2: अरे राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर।
0: अरे लाठी गोली खाएंगे, इस्तीफा देके जाएंगे।
2: अरे सुनो, इस दीपक में तेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं।
0: अरे लाल फूल, नीला फूल, जंजी नन्हे ब्यूटीफुल।
2: अरे बारी बारी सबकी बारी, अब की बारी अटल बिहारी।
0: चाय गरम, दूध गरम, चकमक चाचा भी शरम। हाँ,
2: जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है।
0: अरे मेरे सिर में दर्द है, जिसका कारण मर्द है आप जैसा।
3: हम जैसे, इधर आओ।
4: हम जैसे मर्द नहीं होते किसी नारे से ऑफेंड, हम तो भैया करते हैं हर सही मुद्दे को डिफेंड।
5: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

लगातार धरना प्रदर्शन के बाद राहुल गांधी की नई रणनीति, आज इंडिया गठबंधन के नेताओं को चाय पर बुलाया, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी प्लान। ग्यारह याचिकाओं और याचिकाकर्ताओं के साथ ईसीआई के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका अब तक सुनवाई के लिए लिस्ट ही नहीं हुई, रजिस्ट्री ने बताई 14 खामियां, गलती सुधार के लिए 90 दिनों का वक्त दिया। सीजीआई विवाद में बैकफुट पर केरल कांग्रेस, चौतरफा घिरने के बाद हटाया इस्तीफे का पोस्ट, रिजिजू ने कहा एकजुट हुआ एंटी इंडिया गैंग, देशभक्त देंगे जवाब। अपने काफिले को शिव की बारात कहने पर राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी का अटैक, कहा ये अराजकों की जमात, नेता विपक्ष बोले ज्ञानेश के इस्तीफे तक नहीं रुकेंगे, संपर्क में सरकार के 200 अफसर। छह राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति, ओम प्रकाश माथुर को केरल, राजेंद्र आर्लेकर को मिली तमिलनाडु की कमान, सिक्किम के गवर्नर बने दुष्यंत गौतम।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर हम 10 महाविद्या की बात कर रहे हैं और आज 10 महाविद्या के तीसरे स्वरूप की बात करेंगे, माता त्रिपुर सुंदरी की। इनकी महिमा क्या है, इनका पूजा विधान क्या है, इस विषय में चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना शुभ है, कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग।

2026 दिन मंगलवार, तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, रात के 11:27 तक। नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 7:12 तक। राहु काल का समय दोपहर 3 से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम 10 महाविद्या के तीसरे स्वरूप की बात कर रहे हैं, जिनका नाम है माता त्रिपुर सुंदरी। कौन है माता त्रिपुर सुंदरी और इनकी महिमा क्या है? देखिए, माता त्रिपुर सुंदरी 10 महाविद्या का तीसरा स्वरूप है। माता काली, माता तारा और उसके बाद माता त्रिपुर सुंदरी। माता त्रिपुर सुंदरी संपन्नता और समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं और माता त्रिपुर सुंदरी को षोडशी, राजराजेश्वरी और ललिता माँ भी कहा जाता है। 16 की उम्र और ऐश्वर्य की वजह से इनको षोडशी कहा जाता है। श्री यंत्र, जिसको हम माता लक्ष्मी का यंत्र समझते हैं, दरअसल वो माता त्रिपुर सुंदरी का यंत्र है। श्री यंत्र और श्री यंत्र की साधना, ये माता त्रिपुर सुंदरी की ही साधना है, माता त्रिपुर सुंदरी से जुड़ी हुई है। माता त्रिपुर सुंदरी की उपासना से ऐश्वर्य मिलता है जीवन में। इनका स्वरूप साज सज्जा और आभूषण से युक्त हैं। एक हाथ में फूलों के बाण हैं, एक हाथ में गन्ना है, एक हाथ में पाश है और इन ये श्री चक्र पर बैठी होती हैं या कमल पर बैठी होती हैं और इनका एक पैर श्री यंत्र के ऊपर रखा होता है। श्री यंत्र की अधिष्ठात्री देवी, श्री यंत्र की मुख्य देवी माता ललिता यानी माता त्रिपुर सुंदरी ही हैं। माता लक्ष्मी का श्री यंत्र से संबंध नहीं है। माता त्रिपुर सुंदरी पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य की और मन की समस्या दूर होगी, परिवार के रिश्तों में सुधार होगा, लेकिन आज यात्रा में सावधानी रखिएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं
वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृषभ राशि, सेहत में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार की समस्या हल होगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, करियर में सुधार होगा, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, देवी को लाल फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब ये जानते हैं कि माता त्रिपुर सुंदरी की उपासना के नियम क्या हैं और सावधानियां क्या हैं। देखिए, सामान्य रूप से माता त्रिपुर सुंदरी यानी माता राज राजेश्वरी की पूजा कोई भी कर सकता है, लेकिन श्री विद्या जो इनकी साधना है या तंत्र साधना जो माता राज राजेश्वरी की है वो बिना गुरु के नहीं की जा सकती। माता त्रिपुर सुंदरी की उपासना पुष्पों से, सुंदर वस्त्रों से, अलंकारों से और सुगंध से की जाती है। जीवन में ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए, संपन्नता और समृद्धि प्राप्त करने के लिए इनकी पूजा करनी चाहिए। आप दैनिक जीवन में भी, रेगुलर लाइफ में भी नियमित रूप से माता त्रिपुर सुंदरी की पूजा कर सकते हैं। हर महीने की पूर्णिमा या शुक्रवार को इनकी उपासना की जा सकती है। नवरात्रि में तो कर ही सकते हैं, नवरात्रि के अलावा पूर्णिमा तिथि को या शुक्रवार को अगर आप इनकी उपासना करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। माता त्रिपुर सुंदरी पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा।

योगी धन लाभ के योग बन रहे हैं, चोट चपेट से बचाव करें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंग।

रहे हैं, करियर की समस्या हल होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। देवी को लाल फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा बैंगनी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न शेषनाथ जी ने हमें लिखा है और शेषनाथ जी हमें लखनऊ से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 7 अक्टूबर 1961। जन्म का समय सुबह के 6:55, गोंडा, उत्तर प्रदेश। शेषनाथ जी कह रहे हैं कि आने वाले समय में मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा और बेहतर जीवन के लिए मुझे कौन से उपाय करने चाहिए। शेषनाथ जी, आने वाले समय में स्वास्थ्य में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। किडनी, यूरिन और प्रोस्टेट की समस्या का थोड़ा सा ध्यान बनाए रखिएगा। बाकी मामलों में दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। बेवजह की चिंता करने से भी आपको बचना चाहिए। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें। सुबह के समय रोज सूर्य देव को जल चढ़ाएं और एक बार सुबह राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो माता त्रिपुर सुंदरी के लिए श्री विद्या की साधना भी होती है, श्री यंत्र की साधना भी होती है और सामान्य पूजा भी होती है। तो माँ त्रिपुर सुंदरी की सामान्य पूजा कैसे करेंगे? स्वच्छ और सुंदर वस्त्र धारण करके आसन पर बैठिए। माँ त्रिपुर सुंदरी के सामने एक घी का दीपक जलाइएगा। चाहें तो सामने श्री यंत्र भी आप रख सकते हैं। माता त्रिपुर सुंदरी की एक बड़ी अद्भुत स्तुति है, ललिता सहस्त्र नाम। तो आप दीपक जलाने के बाद ललिता सहस्त्र नाम का 3 बार या 1 बार पाठ करिए या माता त्रिपुर सुंदरी के विशेष मंत्र का जप करिएगा। माता त्रिपुर सुंदरी की साधना का विशेष मंत्र स्क्रीन पर देखिए। मंत्र है ह्री।

कलरिंग, फिर से दोहराते हैं, ग्रीन क ए ई ल ग्रीन, ह स क ह ल ग्रीन, स क ल ग्रीन। ये माता त्रिपुर सुंदरी का बीजाक्षर है। इस मंत्र का जप भी आप एक माला, तीन माला या 11 माला कर सकते हैं, और नहीं तो ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करने से भी कल्याण होगा। पूजा के अंत में देवी से कृपा करने की प्रार्थना करिए, और अगर देवी आपके ऊपर कृपा करती हैं तो धन संपत्ति, ऐश्वर्य, समृद्धि और भोग ये आपको जीवन में सरलता से प्राप्त होगा। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, तृतीया तिथि है। आज देवी के किस स्वरूप की कैसे पूजा की जाएगी इस विषय पर आगे बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल।

काम पूरे होंगे, धन प्राप्त होगा, करियर में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा

बचाव करें, धन के लेन देन में सावधानी रखें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। धनु राशि।

से बचाव करें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। सामान्यतः नवरात्रि के तीसरे दिन या यूं कह लें कि तृतीया तिथि पर नव दुर्गा के तीसरे स्वरूप की पूजा की जाती है। इनकी महिमा क्या है और विधान क्या है? देखिए, नव दुर्गा के तीसरे स्वरूप में यानी अश्विन शुक्ल तृतीया तिथि पर तृतीया तिथि के दिन मां चंद्र घंटा की उपासना की जाती है। इनके सर पर घंटे के आकार का चंद्रमा है, इसीलिए इनको मां चंद्र घंटा कहा जाता है। ये देवी शक्ति देने वाली देवी हैं, इसीलिए अगर आप मां चंद्र घंटा की पूजा करते हैं तो इनकी कृपा से अपार साहस, शक्ति और आत्मविश्वास मिलता है। और माता चंद्र घंटा की अगर आप पूजा करें आज के दिन, आज तृतीया तिथि है, तो मां चंद्र घंटा की पूजा लाल फूलों से करनी चाहिए। और माता चंद्र घंटा की पूजा नवार्ण मंत्र से ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र से इनकी पूजा करें, या दुर्गा सप्तशती का पाठ करिएगा। अगर आप ऐसा करें आज के दिन, लाल फूलों से इनकी पूजा करें, नवार्ण मंत्र का जप करें, तो आपको साहस मिलेगा, डर घबराहट बेचैनी एंजाइटी ये आपकी समाप्त हो जाएगी। माता चंद्र घंटा को भोग लगाया जाता है दूध का या दूध से बनी हुई मिठाई का। ये भोग लगा करके माता चंद्र घंटा से कृपा करने की प्रार्थना करें और इस भोग को बाद में प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, मन प्रसन्न रहेगा, धन की समस्या दूर होगी, पारिवारिक समस्या दूर होगी। देवी को लाल फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा।

दबाव कम होगा। अनाज का दान कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा

व्यर्थ की चिंता हो सकती है। ऑफिस में विवादों से बचें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। श्री यंत्र माता लक्ष्मी का यंत्र माना जाता है और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप श्री यंत्र को सामने रखकर किया जाता है। क्या ऐसा करना उचित है? देखिए, श्री यंत्र वैसे तो माता त्रिपुर सुंदरी का यंत्र है। अगर आप श्री यंत्र को स्थापित करके माता त्रिपुर सुंदरी के मंत्र का जप करें या ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करें तो श्री यंत्र का पूरा लाभ आपको होगा। लेकिन अगर आप श्री यंत्र सामने रख करके माता लक्ष्मी की पूजा भी करें तो उससे कोई नुकसान या हर्ज नहीं है। लेकिन श्री यंत्र का पूरा फायदा लेने के लिए आपको उसके समक्ष माता त्रिपुर सुंदरी की उपासना करनी होगी। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 2, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। नंबर 3, करियर में लाभ के योग हैं। नंबर 4, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 5, वाद विवाद से बचाव करें। नंबर 6, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 7, धन लाभ के योग हैं। नंबर 8, करियर की रुकावट दूर होगी। नंबर 9, बड़े निर्णयों में सावधानी रखें। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6:07:30 तक। इस समय में मां दुर्गा की कपूर से आरती करिएगा।

वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। अगला प्रश्न आयशा जी ने हमें लिखा है और आयशा जी हमें मेल लिखती हैं बुलंदशहर से। अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हैं। इनके बेटे की जन्म तारीख है 21 जनवरी 1999। जन्म का समय शाम के 4:30। जन्म स्थान है बुलंदशहर। ये कह रही हैं कि मेरा बेटा अभी बीटेक कर रहा है, आगे उसे किस तरह के करियर में जाना चाहिए। देखिए, आपके बेटे की कुंडली के हिसाब से बीटेक करने के बाद उनको एमटेक भी करवाइएगा। बीटेक करने के बाद टेक्नोलॉजी में आगे और पढ़ाई करवाइएगा, क्योंकि उस क्षेत्र में जाना आपके बेटे के लिए बहुत सही होगा। आप उनको इंजीनियरिंग में ले जाने की चेष्टा करें, हायर इंजीनियरिंग में ले जाएं, उसमें बहुत अच्छा करियर ये बना सकते हैं। आपके सुपुत्र भटके नहीं, दोस्ती यारी के चक्कर में गलत ना हो जाएं, इसके लिए उनको एक मोती बनवा के आप पहनाइए। 8-10 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण करिएगा और रोज सुबह आप अपने बेटे के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करके प्रार्थना करिएगा, लाभ होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज कोई परीक्षा है तो गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है, कोई भी मिठाई अगर घर से खाकर जाएंगे सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है आज तो एक बार हनुमान चालीसा पढ़ के जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास इलाज या चिकित्सा के लिए जाना है तो जरा सा सिंदूर का तिलक लगाकर जाइएगा, आप स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो नारंगी रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किसको आज सावधान रहना होगा।

तुला राशि वालों के लिए कार्य में सफलता मिलेगी, मेहनत के अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आज का दिन मंगलमय होगा वृषभ राशि वालों के लिए। स्वास्थ्य और पारिवारिक स्थिति ठीक होगी, धन का लाभ होगा। आज सावधान रहना होगा कर्क राशि वालों को, तनाव और चिंताएं आपकी एकदम से बढ़ सकती हैं। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज तृतीया तिथि है, आज माता चंद्रघंटा की पूजा जरूर करिएगा थोड़ा समय निकाल कर। और आज माता दुर्गा की कपूर जलाकर आरती करिएगा, आपका कल्याण होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।

ब्लॉक के नेताओं के साथ आज राहुल गांधी की चाय पर चर्चा। सीसीएसआईआर के खिलाफ बनेगी आगे की रणनीति। ईसीआई के खिलाफ विपक्ष का सुप्रीम मार्च। 3 घंटे पैदल प्रदर्शन के बाद एससी पहुंचे राहुल गांधी। मार्च के बाद राहुल गांधी का तीखा बयान। बोले, भारत की जनता डरने वाली नहीं, हम सरकार की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। राहुल गांधी ने मार्च में शामिल होने वालों का जताया आभार। कहा, हम एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। विपक्ष का सुप्रीम मार्च के बाद अदालत में राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी समेत इंडिया गठबंधन के 11 नेता बने याचिकाकर्ता। सीसी के इस्तीफे की मांग तेज। अखिलेश यादव का बीजेपी चुनाव आयोग पर आरोप। बोले, बीजेपी हटेगी तभी लोकतंत्र बचेगा। शशि थरूर ने कहा, एसआईआर रोककर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो, समीक्षा, हटाए गए वोटरों के नाम बहाल हो। असम सीएम हेमंत बिश्व शर्मा एससी मार्च पर। बोले, राहुल का सिर्फ ड्रामा, हार के लिए कांग्रेस नेतृत्व जिम्मेदार। इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन से डीएमके, आप और एआईएम की दूरी। डीएमके नेता बोले, कांग्रेस गठबंधन में होते तो हम शामिल नहीं होते। वारिस पठान ने कहा, हम गठबंधन का हिस्सा नहीं, बीजेपी को हराने के लिए साथ चुनाव लड़ने को तैयार। इंडिया गठबंधन की याचिका सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं, ऐसी रजिस्ट्री ने तकनीकी 14 खामियां बताई। याचिका में खड़गे के आईडी कार्ड की कॉपी धुंधली है। इंडिया गठबंधन की याचिका में 9 नेताओं के वकालतनामे पर हस्ताक्षर नहीं। अखिलेश तेजस्वी समेत कई नेताओं के दस्तावेज अधूरे। याचिका में दस्तावेजों की स्पष्ट कॉपी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई के 24 जून के फैसले की डिजिटल कॉपी, पेन ड्राइव से जुड़े दस्तावेज मांगे। विपक्ष के सीरियल विरोध प्रदर्शन के बीच सरकार का बड़ा फैसला। जंतर मंतर पर आंदोलनकारियों की नो एंट्री। दिल्ली में रामलीला मैदान, बुराड़ी और सीबीडी ग्राउंड को तय किया गया धरने की जगह। सीजीआई विवाद में बैकफुट पर केरल कांग्रेस, चौतरफा गिरने के बाद हटाया इस्तीफे की मांग का पोस्ट। सीजीआई पर विवाद बयान, पोस्ट में लिखा था, अगर कानून व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी नहीं है तो आप भी इस्तीफा दीजिए। सीजीआई के इस्तीफे की मांग पर एससीबीए का बयान। कहा, ऐसे बयान न्यायपालिका को नीचा दिखाते हैं। केपीसीसी अध्यक्ष सनी जोसेफ ने कहा, पोस्ट बिना सहमति का किया गया, न्यायपालिका पर निष्पक्षता पर सवाल नहीं है। कांग्रेस पर बरसे किरण रिजिजू, पोस्ट साझा कर लिखा, एकजुट हुआ एंटी इंडिया गैंग, देशभक्त देंगे जवाब। असम सीएम हेमंता बिश्व शर्मा का कांग्रेस पर हमला। बोले, कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग पसंद नहीं है। राहुल के आरोपों पर बीजेपी का चौतरफा वार। शिवराज बोले, ये शिव की बारात नहीं, हुड़दंगियों की जमात है। शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर हमला। बोले, विदेशी ताकतों के हाथों का खिलौना बनी कांग्रेस। एसआईआर पर सियासी घमासान। बीजेपी बोली, राहुल सड़क छाप भाषा बोल रहे हैं, चुनाव आयोग के खिलाफ सबूत कहां है। नागपुर में देवेंद्र फडणवीस ने कहा, संविधान दिखा दिखा के संविधान को समाप्त करने का काम कर रही है कांग्रेस। फडणवीस ने कहा, राहुल देश के संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम कर रहे हैं, देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। मुंबई में बीजेपी नेता और मंत्री आशीष शेलार का राहुल गांधी पर निशाना। बोले, सीसी और एसआईआर मुद्दा गंभीर है तो संसद में चर्चा क्यों नहीं करते। शेलार ने कहा, राहुल गांधी देश में अराजकता फैलाने की साजिश रच रहे हैं। मुंबई में एफआईआर दर्ज होने पर आदित्य ठाकरे ने कहा, प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाना क्या ब्रिटिश राज है, अपने खिलाफ एफआईआर का स्वागत करता हूं। आदित्य और अमित ठाकरे के खिलाफ गैरकानूनी जमावड़े का मामला दर्ज होने के बाद सियासी विरोध जारी है। मुंबई में प्रदर्शन को लेकर सियासी घमासान तेज। राम कदम ने कहा, मतदाता सूची में मृत और दूसरी जगह जा चुके लोगों के नाम हटाने का विरोध क्यों हो रहा, शिवसेना को बड़ा झटका लगा है। राष्ट्रीय प्रवक्ता आनंद दुबे ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। आनंद दुबे ने कहा, शिवाजी महाराज और वीर सावरकर मेरे आदर्श हैं, उचित राजनीतिक मंच मिलने पर दूसरी पार्टी में होंगे शामिल। मुंबई में बीजेपी नेता किरीट सिमैया, अभिनेता इमरान खान के खिलाफ पुलिस में शिकायत। राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है। ओम प्रकाश माथुर को केरलम, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को तमिलनाडु की जिम्मेदारी दी गई। ब्रजमोहन राम को ओडिशा और डॉक्टर सुधा यादव को कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया। उत्तराखंड की बात करें तो डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को राज्यपाल बनाया गया। दुष्यंत गौतम को सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किया गया। दिल्ली में बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन। कांग्रेस सांसद अगमचा पर यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर जताया विरोध। कांग्रेस सांसद अगमचा के खिलाफ जेएनयू की 11 छात्राओं ने शिकायत की थी। ओवैसी ने योगी अखिलेश पर तंज कसते हुए कहा, नूरा कुश्ती छोड़े, योगी समय और अखिलेश गोरखपुर से लड़े चुनाव। यूपी में बढ़ सकता बुजुर्गों और दिव्यांगों का पेंशन, 1,000 से 1,500 करने की तैयारी। चुनाव से पहले योगी सरकार का बड़ा कदम, पावर कॉरपोरेशन बहाल होंगे, हटाएगा 25,000 कर्मचारी। जम्मू कश्मीर में लूसी पर घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम, बारूदी सुरंग विस्फोट में लश्कर कमांडर की मौत। दिवाली से पहले आम आदमी का निकला दिवाला, खुदरा महंगाई में उछाल, खाने पीने की चीजें बिगाड़ सकती है घर का बजट। पहाड़ों पर मौसम की मेहरबानी, हिमाचल प्रदेश के चंबा में जबरदस्त बर्फबारी। चंबा में पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, सैलानी उठा रहे मौसम का लुत्फ। धर्मशाला के दौलाधार पहाड़ियों पर सीजन की तीसरी बर्फबारी, बर्फ से ढकी चोटियां बनी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र। धर्मशाला में बारिश और हिमपात से मौसम बदला, बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई। धर्मशाला और मैक्लोडगंज में मौसम ने बढ़ाई पर्यटन कारोबारियों की उम्मीद, दौलाधार की पहाड़ियों पर बर्फबारी से खूबसूरती बढ़ी। सोनभद्र में कश्मीर घाटी में मौसम का मिजाज बदला, उत्तरी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से ठंड बढ़ी। शिमला में भारी बारिश से 14 डिग्री सेल्सियस तक गिरा तापमान, 15 अक्टूबर तक फिर बारिश के आसार। पंजाब में बेमौसम बारिश से धान की फसल पर मार, फाजिलका मंडी में 3 फीट तक भरा पानी। रोहतक में भारी बारिश से किसान परेशान, पानी में डूबे अनाज। सोनीपत में भी भारी बारिश से मंडी में जल भराव। बद्रीनाथ धाम में दर्शन का नया रिकॉर्ड, अब तक 20 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। मौसम की चुनौतियों के बीच श्रद्धालुओं का जोश आए, बड़ी संख्या में बद्रीनाथ पहुंच रहे हैं श्रद्धालु।
आज नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा हो रही है। मुंगेर में कलाकार ने 3 सेंटीमीटर पीपल के पत्ते पर माँ दुर्गा की कलाकृति बनाई। सात समंदर पार देखी नवरात्र की रौनक। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर बंगाली समुदाय ने माँ दुर्गा की भक्ति का रंग दिखाया। शारदीय नवरात्र पर गुजरात में गरबा की धूम। जामनगर पारंपरिक गरबा बना आकर्षण का केंद्र। बागपत में महिला ने बच्ची के संग हैवानियत की। मासूम के बाल नोचे और थप्पड़ बरसाए। श्रीगंगानगर में कार बाइक की भीषण टक्कर।

घेरकर मारपीट की, फिर चाकू से वार किया। विजयवाड़ा में इलेक्ट्रिक कार में भीषण आग लगी, हादसे में चार लोगों की जिंदा जलकर मौत हुई। दमोह जिला अस्पताल में महिला से सफाई कराने का आरोप, नर्सिंग स्टाफ के कहने पर स्टूल और फर्श साफ करती दिखी महिला। उदयपुर में तेज रफ्तार क्रेन ने बुजुर्ग को कुचला, हादसे में मौत, ड्राइवर मौके से फरार। गाजियाबाद में शहीद नगर में निर्माणाधीन इमारत गिरी, चार लोगों को बचाया गया, एसडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन जारी। गाजियाबाद में युवती से मिलने आए मुस्लिम युवक की पिटाई, लव जिहाद मामले में हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप। लखनऊ में एक होटल की 10वीं मंजिल से गिरकर युवती के संदिग्ध हालात में मौत, कमरे में मौजूद साथी फरार।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: How's the hostel? Settled?
3: Yes, Mark's really nice.
2: कोई आ रहा है क्या?
4: तुम मॉम डैड वाली ड्यूटीज तो निभा ली, अब फिर से थोड़ा रोमांस ले।
2: मयंक, फॉर रियल?
4: वन कैरेट फॉर माय वन ट्रू लव। नेचुरल डायमंड रियल लव सॉलिटेयर्स टू रीइग्नाइट योर न्यू सीजन ऑफ लव।
5: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार। सर एक बार रोटी थमका लगाने पर
6: मेरे पास एक आइडिया है।
5: क्या?
6: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
7: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता,
8: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
9: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
7: कौन सी बनानी है?
10: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।

0: what I can be.
1: Based on your notes, there are some great talking points for your interview.
2: माँ के पैरों की धूल माथे पर ले मैं परिंदा खुले आसमान जहाँ जीत रू सारा।
3: इतने पेमेंट ऐप्स पर सेफ कौन सा?
4: तो स्विच टू बीम, एकदम सेफ और भरोसेमंद। रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं, पाओ 40 रुपए का कैशबैक 40 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर। भीम ऐप से करो पे।
5: इट्स अ माय वे।
6: बच्चों के लिए अलग टीवी रूम बना सकते हैं।
7: कैसा लगा आप दोनों को अपना ड्रीम होम?
8: I love it. Absolutely amazing. तुम एक काम करो, तुम मिठाई ऑर्डर कर लो।
9: मिठाई से पहले कुछ और हो जाए
8: क्या?
9: इनकी राय।
10: नई सोच की नींव में हम, हर नई उम्मीद में हम। गैलेंट निर्माण का रियल हीरो।
11: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
12: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
11: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
13: हर बार वही गोल्ड ज्वेलरी कैसे पहन सकती हूँ? पर इस जमाने में नई नई गोल्ड ज्वेलरी खरीदना भी तो इम्प्रैक्टिकल है, तो फिर सेनको का ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज।
14: एंजॉय करें 0% डिडक्शन किसी भी ज्वेलर के गोल्ड ज्वेलरी एक्सचेंज पर और खरीदें अपने पसंदीदा सेंको गहने।
15: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार सर एक बार दो ठुमका लगाने बस बाय गॉड मजा आ जाएगा।
16: आप पे वो पीएमटी बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
17: मेरे पास एक आईडिया।
15: क्या?
17: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है।

0: ये एड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आई हैव वन, एक रॉकस्टार होता है अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता
1: क्योंकि वो मजबूत रूंगटा टीएमटी से बना है।
2: ओ नादान परिंदे, बैठो। मेरा ना सिंबल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है। लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बाहर से बना है।
3: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा। तो कौन सी बनानी है? थेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी।
4: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी।
2: I like this only.
5: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
6: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
5: असली शहद, असली स्वाद।
7: Love and Care, the world's finest range of rubber pet toys.

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: मेरी सिस्टर कहती है मुझे कि प्लान करना चाहिए. तो मैंने सिस्टर से कहा, तुम बात समझ नहीं रही हो, ये तांडव है, ये शिव का डांस है, इसमें कोई प्लानिंग नहीं होती. आज हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, कल कुछ और होगा. आइडिया वो ऊपर लिखा हुआ है, प्लान की कोई जरूरत नहीं है. ये डांस चल रहा है, ये शिव जी का डांस चल रहा है. इसमें शिव की बारात में कोई भी आ सकता है. जिस मैंने बोला गो बैक, देखिए ये शिव की बारात है, इसमें किसी को भी आना आ सकता है, कोई भी जीव आ सकता है, हम रोकेंगे नहीं.
3: इसलिए मैं बड़ी तकलीफ के साथ ही कह रहा हूं कि कांग्रेस अब देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ हाथ मिला रही है. कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व पूरी तरह दिशाहीन है. अभी कह रहे थे कांग्रेस तो शिवजी की बारात है, ये राम का विरोध करने वाले शिवजी की बारात की बात कर रहे हैं, ये शिवजी की बारात नहीं है. अराजकता फैलाने वाले हुड़दंगियों की जमात है जो सड़कों पे अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही है.
4: राहुल गांधी जी कहने के लिए तो नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन एक ऐसे नेता हैं जिनको न तथ्यों का पता है, न तर्क का पता है, न नियम कायदे कानून का पता है. उन्हें तो बस इतना पता है कि अराजकता फैलानी कैसे है, अस्थिरता लानी कैसे है, संवैधानिक पदों को और संस्थाओं को नीचे दिखाना कैसे है, और दुनिया भर में भारत का नाम बदनाम कैसे करना है, छवि को कमजोर कैसे करना है. यह दुर्भाग्य है देश को कभी इतना अस्थिर, अराजक, अगंभीर नेता प्रतिपक्ष के तमाशे और नखरे नहीं देखने पड़े. 99 चुनाव हारने तक राहुल गांधी जी हर सीजन में ये देखते हैं कि किसके ऊपर आरोप लगाना है, ठीकरा कहां फोड़ना है. कभी इलेक्शन कमीशन, कभी ईवीएम, कभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो कभी कुछ और. और अब तो हालत ये हो गई है कि सड़क छाप भाषा का प्रयोग और निराधार आरोप लगाने का काम श्रीमान राहुल गांधी जी कर रहे हैं. राहुल जी, देश को शोर नहीं सच चाहिए, आरोप नहीं प्रमाण चाहिए, राजनीतिक बयान नहीं स्पष्ट जवाब चाहिए.

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
1: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
2: उधर पहाड़ी इलाकों पर मौसम खुशनुमा हो चला है. मौसम की मेहरबानी के चलते हिमालय के तमाम सारे इलाकों में बर्फबारी हो रही है. हिमाचल प्रदेश के चंबा की तस्वीरें देखिए, जबरदस्त बर्फबारी हो रही है. वहीं धर्मशाला में बारिश और हिमपात से मौसम बदला है. बारिश के बाद तापमान में भी गिरावट आई है. धर्मशाला की धौलाधार पहाड़ियों पर सीजन की तीसरी बर्फबारी देखने को मिली है. बर्फ से ढकी चोटियां पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी है. वहीं कश्मीर के सोनमर्ग में भी मौसम का मिजाज बदला है. उत्तरी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से ठंड भी बढ़ी है. वक्त एक छोटे से ब्रेक का है. खबरें जारी, आप देखते रहिए आज तक.
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच. इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.

0: सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार। सर एक बार दो थमका लगाने बस।
3: मेरे पास एक आइडिया है।
2: क्या?
3: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है।
4: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला, पर स्टेज नहीं हिलता,
3: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
5: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
4: कौन सी बनानी है?
6: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।

0: Look what I can do.
1: Based on your notes, there are some great talking points for your interview.
2: बच्चों के लिए अलग टीवी रूम बना सकते हैं।
3: कैसा लगा आप दोनों को अपना ड्रीम होम?
4: आई लव इट, एब्सोल्युटली अमेजिंग। तुम एक काम करो, तुम मिठाई ऑर्डर कर लो।
5: मिठाई से पहले कुछ और हो जाए
4: क्या?
5: इनकी राय।
6: नई सोच की नींव में हम, हर नई उम्मीद में हम। गैलेंट निर्माण का रियल हीरो।
7: आप महामहिम राष्ट्रपति जी के पास गए, वहां पर भी आपको कहा गया कि शिकायत के साथ सबूत दीजिए, तो आप बगले झांकने लगे, भाग गए, चुप्पी साध ली। और सुप्रीम कोर्ट ने तो श्रीमान राहुल गांधी जी से साफ साफ कह दिया कि कोर्ट को आप अपनी राजनीति का रणक्षेत्र नहीं बना सकते। इनका फंडा बहुत क्लियर है, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का, राज नहीं तो अराजकता फैला दो।
8: सत्ता में रहते हुए जिन्होंने देश को लगातार लूटा है, वह चोरी की बात कर रहे हैं। बार बार बार बार जिनको जनता ने हराया है, उनको तो आत्मचिंतन करना चाहिए, लेकिन हार हार के इतने कुंठित हो गए हैं कि अब धमकी देने पर उतर आए हैं, अमर्यादित आचरण कर रहे हैं। लोकतंत्र में विरोध की भी मर्यादा होती है, और विशेषकर जब कोई नेता प्रतिपक्ष जैसे पद पर हो, हार की खींच कुंठा में बदल रही है और संतुलन बिगड़ रहा है, हर किसी को धमकियां दी जा रही है।
9: अच्छा, आजकल हमें इंफॉर्मेशन सब जगह से मिल रही है। ज्ञानेश कुमार जी, हम जानते हैं आपकी क्या हालत है, हम जानते हैं कि आप रात को सो नहीं पाते हो, और आप घबराइए मत, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। आप, मैं आपको डायरेक्टली कह रहा हूं, आप बचोगे नहीं एज ए इलेक्शन कमिश्नर, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो हो रहा है, ये लाखों लोग जो हैं, ये आपके बारे में, आपके बिहेवियर के बारे में सवाल पूछ रहे हैं, और ये रुकेंगे नहीं। रुकेंगे क्यों नहीं? क्योंकि आपके सामने भी लोग हैं, और उन तक पहुंचने के लिए हमें आपको हटाना है।
8: एक के बाद एक चुनाव हारना और उसकी खींच आंदोलन करके सड़क पे निकालना, ये कांग्रेस की नियति बन गई है, और चुनाव की हार का दोष भी कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं पर मढ़ने का पाप करती है। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस के मित्रों से, कांग्रेस की हार का कारण चुनाव आयोग नहीं है, कांग्रेस की हार का कारण स्वयं कांग्रेस का विचार शून्य नेतृत्व है।

0: शेयर बाजार में पैसा लगाने वालों के लिए विदेशी नागरिकों की हर चाल काफी मायने रखती है। ये निवेशक जब बाजार में पैसा लगाते हैं तो खरीदारी को सपोर्ट मिलता है, लेकिन जब लगातार बिकवाली करते हैं तो बाजार पर दबाव बढ़ जाता है। भारतीय शेयर बाजार में इन दिनों कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर के शुरुआती 6 दिनों में विदेशी नागरिकों ने भारतीय शेयर बाजार से 44,166 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। इसके साथ ही 2026 में उनकी कुल बिकवाली 3,00,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गई है। NSDL के आंकड़ों के मुताबिक 2026 में अब तक विदेशी निवेशकों ने शेयर बाजार से 3.04 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। 2025 में ये निकासी 1.66 लाख करोड़ रुपए थी। वहीं सितंबर 2026 में विदेशी निवेशकों ने 35,861 करोड़ रुपए के शेयर बेचे थे, जबकि जुलाई में 20,200 करोड़ और अगस्त में 29,631 करोड़ रुपए का निवेश किया था। यानी जुलाई और अगस्त में खरीदारी करने वाले विदेशी निवेशक सितंबर से फिर बिकवाली की तरफ मुड़ गए हैं। भारतीय बाजार से इतनी बड़ी रकम निकालने की एक बड़ी वजह भारत के बाहर निवेश के दूसरे विकल्पों का आकर्षक होना है। महंगा कच्चा तेल, मजबूत अमेरिकी डॉलर और अमेरिकी सरकारी बॉन्ड पर ऊंचा रिटर्न विदेशी निवेशकों को भारतीय शेयरों से पैसा निकालने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। दरअसल अमेरिका की 10 साल के सरकारी बॉन्ड पर 5.2% से ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। वहीं महंगे कच्चे तेल से भारतीय अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ने की आशंका है। उधर एशियाई बाजारों में AI कंपनियों के शेयरों की तेजी भी विदेशी निवेशकों को आकर्षित कर रही है। विदेशी निवेशकों का पैसा निकालना अपने आप में इस बात का संकेत नहीं है कि भारतीय बाजार में कोई बड़ी कमजोरी आ गई है। दुनिया भर में निवेशक बेहतर रिटर्न के मौके तलाश रहे हैं। हालांकि विदेशी निवेशकों की बिकवाली के बीच भारतीय बाजार को घरेलू निवेशकों से सहारा मिल रहा है। फिलहाल माना जा रहा है कि विदेशी निवेशकों की वापसी के लिए कच्चे तेल की कीमतों में नरमी खास रोल निभाएगी। वहीं अमेरिकी बॉन्ड पर रिटर्न घटने से भारतीय शेयरों की तरफ पैसा लौटने की संभावना है। भारतीय कंपनियों के शेयर आकर्षक कीमतों पर मिलने से भी विदेशी निवेश बढ़ सकता है। विदेशी निवेशकों की बिकवाली और भारत में गिरावट के बीच सीधा रिश्ता होने के बावजूद हर गिरावट की वजह केवल विदेशी निवेशक नहीं होते। जानकारों के मुताबिक निवेशकों को बाजार की चाल समझने के लिए कंपनियों के नतीजे, शेयर की कीमत और वैश्विक हालात पर भी नजर रखनी चाहिए। आदित्य केराड़ा, आज तक।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

पहली बार विपक्षी काफिले के साथ सुप्रीम कोर्ट मार्च करने के बाद राहुल गांधी की नई रणनीति। आज इंडिया गठबंधन के नेताओं को चाय पर बुलाया, दोपहर में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी प्लान। 11 याचिकाकर्ताओं के साथ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका, अब तक सुनवाई के लिए लिस्ट नहीं। रजिस्ट्री ने बताई 14 खामियां, गलती सुधार के लिए 90 दिनों का वक्त। सीजीआई विवाद में बैकफुट पर केरल कांग्रेस, चौतरफा घिरने के बाद हटाया इस्तीफे का पोस्ट। रिजिजू बोले, एकजुट हुआ एंटी इंडिया गैंग, देशभक्त देंगे जवाब। यूपी कांग्रेस मुख्यालय में हुए जूतम पैजार की जांच करेगी 5 सदस्यों की कमेटी। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष होंगे समिति के प्रमुख अजय राय पर महिला पार्षद ने लगाए हैं गाली गलौच और मारपीट के आरोप। छह राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति। ओम प्रकाश माथुर को केरल और राजेंद्र आर्लेकर को मिली तमिलनाडु की कमान। सिक्किम के गवर्नर बने दुष्यंत गौतम।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आपके साथ पूजा शर्मा। इस खास बुलेटिन सुपर 8 में आपको अगले आधे घंटे में कई अहम खबरों से कराएंगे रूबरू। बात करेंगे विपक्षी मोर्चे की, कैसे राहुल गांधी चाय पर चर्चा कर बनाएंगे रणनीति, और इस पर पूरी डिटेल आपको देंगे। खबर सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष की दायर याचिका को लेकर भी आपको दिखाएंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि विपक्षी याचिका में क्या क्या खामी सामने आई है। साथ ही विपक्ष पर बीजेपी के हमले की खबर भी दिखाएंगे। सवालों के घेरे में केरल कांग्रेस है, आखिर क्यों, ये पूरी खबर डिटेल के साथ आपको बताएंगे। एक खबर यूपी के गाजियाबाद की भी होगी, जहां पर मुस्लिम युवक पर हमला किया गया। इसमें खबर पहाड़ों के मौसम की भी आगे आपको दिखाएंगे। खबर न्यूयॉर्क में नवरात्रि की धूम की भी तस्वीरों के साथ बयां करेंगे। तो सबसे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ करते शुरुआत। वोटर लिस्ट से नामों की कटौती और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली के खिलाफ इंडिया ब्लॉक आज भी बड़ा सियासी हमला बोलने की तैयारी में है। राहुल गांधी समेत विपक्षी गठबंधन के कई नेताओं ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR के मुद्दे पर चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्तों के खिलाफ कल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, और अब आज इंडिया ब्लॉक के नेता इस मुद्दे पर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसके बाद हाईटी का कार्यक्रम भी रखा गया है। माना जा रहा है कि इसमें विपक्षी दल याचिका को लेकर जानकारी देंगे, तो आज याचिका पर विपक्ष बयान दे सकता है, विपक्ष की तरफ से बयान सामने आ सकता है। आज SIR पर इंडिया ब्लॉक की एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसके बाद राहुल का हाईटी का कार्यक्रम भी होगा। तो माना जा रहा है कि इसमें विपक्षी दल याचिका को लेकर जानकारी दे सकते हैं। वोटर लिस्टों से नाम की कटौती और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली के खिलाफ इंडिया ब्लॉक आज एक बड़ा सियासी हमला बोलने की पूरी तैयारी में है। राहुल गांधी और इसी के साथ विपक्षी गठबंधन के जो कई नेता हैं, वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के मुद्दे पर चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्तों के खिलाफ कल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, और उस पर साझा बयान अब सामने आ सकता है। इस पर और जानकारी भी आपको दे देते हैं। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक हाईटी का प्रोग्राम भी राहुल गांधी की तरफ से रखा गया है। शाम 4 बजे इंडिया ब्लॉक नेताओं की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। SIR और वोटर लिस्ट से जुड़े मुद्दे, उन पर विपक्ष अपना पक्ष आज रखने वाला है। तो आप समझिए क्या कार्यक्रम इंडिया ब्लॉक का होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका के बाद पहली कॉन्फ्रेंस आज होने वाली है, जिसके बाद एक हाईटी का कार्यक्रम भी होगा, और याचिका को लेकर विपक्ष जानकारी दे सकता है, यानी विपक्ष की तरफ से आज बयान सामने आ सकता है। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राहुल का चाय का भी न्योता राहुल की तरफ से रखा गया है, यानी हाईटी का प्रोग्राम होगा। शाम 4 बजे इसकी शुरुआत होगी, शाम 4 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तो विपक्ष की याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के फैसले लेने के तरीके, वोटर लिस्ट से नाम हटाने की प्रक्रिया और चुनावी डेटाबेस की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए हैं। याचिका में मांग की गई है कि SIR से जुड़े फैसलों की फाइल नोटिंग, साथ ही बैठक के मिनट और दूसरे जो जरूरी दस्तावेज है उनके सार्वजनिक किए जाएं, साथ ही वोटर लिस्ट में नामों की कटौती और बदलावों की स्वतंत्र ऑडिट कराने की मांग भी रखी गई है। इंडिया ब्लॉक ने एक रिटायर्ड जो सुप्रीम कोर्ट जज की अगुवाई है, उसमें तकनीकी विशेषज्ञों वाली स्वतंत्र समिति बनाने की मांग भी की है। हालांकि इस फाइल में 14 खामियां भी बताई गई हैं, और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने अब तक सुनवाई के लिए वो याचिका लिस्ट ही नहीं की है, ये कहा गया है। बताया गया है कि खामियों को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे का आईडी कार्ड भी मांगा गया है, साथ ही कोर्ट फीस भी 220 रुपए कम होने का हवाला दिया गया है। तो रजिस्ट्री ने याचिका में अलग अलग चुनाव आयुक्तों का नाम शामिल करने का मुद्दा भी उठाया और स्पष्टीकरण मांगा है कि आर्टिकल 32 के तहत रिट याचिका में निजी व्यक्तियों को प्रतिवादी क्यों बनाया गया है। तो कुछ खामियां भी सामने आई हैं। वोटर लिस्ट से नाम हटाने को लेकर SIR से जुड़े फैसलों की फाइल नोटिंग और मीटिंग मिनट्स की मांग की गई है विपक्ष की तरफ से। तो सोमवार को सुप्रीम कोर्ट मार्च के बाद राहुल गांधी ने प्रदर्शन में शामिल सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। लगे हाथ उन्होंने बीजेपी और RSS पर भी हमला बोला है। सुप्रीम कोर्ट मार्च के बाद राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया और पोस्ट के जरिए RSS पर हमला बोला गया है। विरोध प्रदर्शन कल हमने देखा विपक्षी पार्टियों का, और उसके बाद अब RSS पर हमला बोलते हुए एक्स पर पोस्ट राहुल गांधी ने किया।
1: I'd like to thank every single person who came out for this protest. I'd also like to thank the millions of people who showed support in their own way at 3 o'clock. The leaders of India Bloc, all the workers of the Congress Party, workers of the India Bloc, this was a very important thing because we needed to show the government that the people of India are not going to be intimidated. You cannot beat us, you cannot threaten us, you cannot frighten us. We will not accept being bullied.
0: देखिए एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने के बाद विपक्षी नेताओं ने अदालत पर भरोसा जताया और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की बात की जाए तो उन्होंने भी यही बातें कही हैं। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि विपक्ष लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, तो शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा है कि यह मामला देश, संविधान और जनता के अधिकारों से जुड़ा हुआ है। तो ये बयान सामने आए हैं अलग अलग लोगों की तरफ से, और वही राहुल गांधी और विपक्ष पर भी आगे करेंगे बात।
2: पिटीशन फाइल हो गई है, आप आए थे,
3: हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा।
2: ठीक है सर,
4: लोगों ने पिटीशन जो है दायर किया है एसआईआर के खिलाफ, ज्ञानेश्वर कुमार के खिलाफ, इनकी मनमानी नहीं चलेगी, चोरी और सीनाजोरी नहीं चलेगी, लोकतंत्र को चलने वाला काम अब नहीं होगा। ये लोग बेईमान लोग हैं, इन लोगों ने चोरी नहीं बल्कि बहुत बड़ा पाप किया है।
5: सुप्रीम कोर्ट जाके क्या करना,
4: देश के नेचर को जानते नहीं है। जब भी लोकतंत्र संविधान पे खतरा होगा तब तक देश की जनता सड़कों पे आती है और किसी माइक लान में दम नहीं जो लोकतंत्र को खत्म करता।
0: तो राहुल गांधी और विपक्ष पर बीजेपी ने जोरदार हमला बोला है। अनुराग ठाकुर और सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी और विपक्ष देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी ने विपक्ष पर संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाने और लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने का भी आरोप लगाया है। राहुल गांधी पर बीजेपी ने बड़ा पलटवार करते हुए आरोप लगाया है कि वो लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर कर रहे हैं। बीजेपी का राहुल पर अराजकता का भी आरोप है।
6: कभी इलेक्शन कमीशन, कभी ईवीएम, कभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो कभी कुछ और अब तो हालत यह हो गई है कि सड़क छाप भाषा का प्रयोग और निराधार आरोप लगाने का काम श्रीमान राहुल गांधी जी कर रहे हैं। कहने के लिए तो नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन एक ऐसे नेता हैं जिनको न तथ्यों का पता है, न तर्क का पता है, न नियम कायदे कानून का पता है। उन्हें तो बस इतना पता है कि अराजकता फैलानी कैसे है, अस्थिरता लानी कैसे है, संवैधानिक पदों को और संस्थाओं को नीचे दिखाना कैसे है, और दुनिया भर में भारत का नाम बदनाम कैसे करना है, छवि को कमजोर कैसे करना है। यह दुर्भाग्य है देश को कभी इतना अस्थिर, अराजक, अगंभीर नेता प्रतिपक्ष के तमाशे और नखरे नहीं देखने पड़े।
7: मुझे लगता है करोड़ों देशवासियों को ध्यान रखना चाहिए कि ये भारत की संवैधानिक संस्थाओं के लिए और भारत के संविधान के लिए इस समय कांग्रेस पार्टी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं।
0: तो योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि विपक्ष संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और देश में अस्थिरता का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। देखिए,
8: भारत में अराजकता न फैलाएं, भारत की संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करने का कुत्सित प्रयास न करें, अन्यथा जो बचा खुचा है भारत की जनता लोकतांत्रिक दृष्टि से बहुत जागरूक है, वह इस अराजकता को स्वीकार नहीं करेगी। ऐसा नहीं कि जनता बहुत दिनों तक और बहुत देर तक इसको बर्दाश्त करेगी। अगर उसकी ये अराजकता और असंवैधानिक कृत्य और लोकतांत्रिक तरीके से इसी प्रकार से अराजकता पैदा करेंगे तो जो कुछ बचा खुचा है वह भी उन्हें गंवाना पड़ेगा। देश के अंदर अराजकता से बाज आएं, जनता जनार्दन को और युवाओं को गुमराह करने से बाज आएं, मेरिट के आधार पर और मुद्दों पर चर्चा करके एक स्वस्त्र लोकतांत्रिक व्यवस्था का पाठ बने, ये भारत के लोकतंत्र के हित में भी होगा और देश की जनता के हित में भी होगा।
0: तो वहीं सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करने से पहले राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने लोगों से अपील की कि उनके मार्च में सभी लोग शामिल हों। राहुल गांधी ने कहा कि उनका मार्च शिव की बारात है जिसमें कोई भी शामिल हो सकता है। अब राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है।
9: मेरी सिस्टर कहती है मुझे कि प्लान करना चाहिए, तो मैंने सिस्टर से कहा तुम बात समझ नहीं रही हो, ये तांडव है, ये शिव का डांस है, इसमें कोई प्लानिंग नहीं होती। आज हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, कल कुछ और होगा, आइडिया वो ऊपर लिखा हुआ है, प्लान की कोई जरूरत नहीं है। ये डांस चल रहा है, ये शिव जी का डांस चल रहा है, इसमें शिव की बारात में कोई भी आ सकता है। जिस मैंने बोला गो बैक, देखिए ये शिव की बारात है, इसमें किसी को भी आना आ सकता है, कोई भी जीव आ सकता है, हम रोकेंगे नहीं।
10: इसलिए मैं बड़ी तकलीफ के साथ ये कह रहा हूं कि कांग्रेस अब देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ हाथ मिला रही है। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व पूरी तरह दिशाहीन है। अभी कह रहे थे कांग्रेस तो शिवजी की बारात है, ये राम का विरोध करने वाले शिवजी की बारात की बात कर रहे हैं, ये शिवजी की बारात नहीं है। अराजकता फैलाने वाले हुड़दंगियों की जमात है जो सड़कों पे अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही है।
0: तो वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने जंतर मंतर को प्रदर्शन स्थल के रूप में बंद किए जाने के खिलाफ मामला अदालत तक पहुंचा चुका है। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है, साथ ही अदालत में दूसरी याचिका पर भी सुनवाई होने वाली है, जिसमें कहा गया है कि वीकेंड पर हुए विरोध प्रदर्शन में बाहरी लोग घुस आए थे और उन्होंने प्रदर्शनकारियों को परेशान भी किया था। तो वही सुप्रीम कोर्ट सीजेआई सूर्यकांत पर केरल कांग्रेस के बयान पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने आपत्ति दर्ज किया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा है कि सोशल मीडिया पर इस तरह के बयान न्यायपालिका की गरिमा को कम करते हैं। एससीबीए ने कहा है कि न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करने के प्रयास के समान है और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने सभी से सुप्रीम कोर्ट की गरिमा और मर्यादा बनाए रखने की अपील भी की है। आपको ये बता दें कि केरल कांग्रेस ने सीजेआई सूर्यकांत के खिलाफ एक्स पर बयान पोस्ट किया था जिसमें लिखा था कि अगर कानून व्यवस्था आपके दायरे में नहीं है तो आप अभी इस्तीफा दें। हालांकि केरल कांग्रेस ने अपने इस बयान को सोशल मीडिया एक्स से हटा दिया है।
11: माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो सलाह भी कलम दी, हमने सलाह मानी और हमने आज अपनी पिटीशन फाइल की। इस पूरे देश के लोकतांत्रिक ढांचे की नींव रखने वाली कांग्रेस पार्टी है, किरण रिजिजू को शायद ये नहीं पता है, उनको मैं उनका ज्ञान को दुरुस्त कर दूं, तो बोलने से पहले उन्हें भी सोचना चाहिए।
0: तो वहीं केरल कांग्रेस के सीजेआई सूर्यकांत से इस्तीफा की मांग वाले डिलीटेड पोस्ट पर कांग्रेस ने असहमति जताई। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा है कि यह बयान पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करती है, ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया। वहीं कांग्रेस पर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया है।
12: मैं पहले से कहता रहा हूं कि राहुल गांधी भले ही संविधान दिखा रहे हैं लेकिन उनका प्लान, उनकी बोनस ऑपरेटिव दूसरी है। संविधान सामने करके जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको बदनाम करना, उनके बारे में लोगों के मन में प्रश्न तैयार करना, लोगों का विश्वास संवैधानिक संस्थाओं से उड़ जाए इस प्रकार की व्यवस्था तैयार करना, इस व्यवस्था को तैयार करके अराजकता एनार्की और फिर एनार्की लाकर लोगों के मन में ये भावना तैयार करना कि संविधान में तैयार की हुई डेमोक्रेटिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था हमको न्याय नहीं दे सकती और फिर ये सारी व्यवस्था को जो साम्यवादी व्यवस्था है, कम्युनिस्ट व्यवस्था है, उस व्यवस्था की ओर ले जाना, इस प्रकार का डिजाइन ये राहुल गांधी ने तैयार किया है।
0: चलिए अब खबर यूपी के गाजियाबाद की, जहां पर एक युवक के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरोप है कि हिंदू युवती से मिलने आए मुस्लिम युवक को हिंदू रक्षा दल से जुड़े कार्यकर्ताओं ने लव जिहाद का आरोप लगाकर पीटा। बताया जा रहा है कि युवक और युवती की दोस्ती इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। दोनों होटल में मिलने के लिए पहुंचे थे, जहां कमरा नहीं मिलने के बाद वो दूसरे होटल भी गए, तभी उसी दौरान युवक के साथ मारपीट की गई। पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए जांच आगे शुरू कर दी है। तो वहीं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कहीं पर ऊंची चोटियां बर्फ से ढकी हैं, तो कहीं पर बर्फबारी के बीच सर्दी बढ़ गई है। सोनमर्ग से लेकर हिमाचल, लद्दाख और उत्तराखंड तक ये तस्वीरें देखिए, बर्फ से ढके पहाड़ों की खूबसूरत तस्वीरें। सोनमर्ग, धर्मशाला, कुल्लू मनाली, चमोली, चंबा, शिंकुला दर्रा और लेह बद्रीनाथ में बर्फबारी हो रही है। तो उत्तर भारत में बेमौसम बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जम्मू में रिकॉर्ड बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, तो आरएसपुरा में बासमती धान की फसल को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा। पंजाब के फाजिलका में अनाज मंडी पानी में डूब गई है। दिल्ली में रामलीला मैदान और नोएडा के अंडरपास में जलभराव देखने को मिला। यानी बारिश के बाद स्थिति लोगों के लिए खराब हो गई है। अब खबर नवरात्रि की, दरअसल आज तीसरा दिन है। देश भर में मां चंद्रघंटा की पूजा हो रही है। उधर आस्था का एक रंग न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर भी दिख रहा है। तस्वीर देखिए, दुर्गा पूजा मनाई जा रही है। ये तस्वीरें 10 से 11 अक्टूबर को आयोजित धार्मिक अनुष्ठान की है। दो दिनों तक चले इस आयोजन में अमेरिका के कोने कोने से रहने वाले बंगाल के लोग भी पहुंचे।

0: इसी के साथ सुपर 8 में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते
2: यार, लोन भूल गया। मैरी,
3: सजेस्ट
2: अ गुड बैंक ना।
3: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
2: स्मॉल फाइनेंस बैंक,
3: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन कार लोन, टू व्हीलर लोन।
4: There's nothing small about it.
2: Ujjivan, nothing small about us.
5: आगे आगे,
6: अरे उधर
5: उधर गया।
6: करेक्ट करेक्ट,
7: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
8: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार सर, एक बार दो ठुमका लगाने बस।
9: मेरे पास एक आइडिया है।
8: क्या?
9: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा TMT बार से जो बना है,
10: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता,
11: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा TMT से बना है।
12: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही TMT बार से बना है।
10: कौन सी बनानी है?
13: हमारे नेबर मिस्टर कुमार बात बात पे कार मांगते रहते हैं।
14: वो इन लॉस को लाना है, कार मिल जाएगी।
15: अरे यार कुमार, अब तो अपनी कार ले लो यार।
16: कैनरा व्हीकल लोन से
17: अप टू 90% फाइनेंसिंग,
18: क्विक प्रोसेसिंग एंड नो प्री क्लोजर पेनल्टी।
19: कैनरा व्हीकल लोन, अपनी वाली गाड़ी के लिए।
20: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। Signature Finest Silver Elaichi, a premium product from Dilbagh Group.

0: जितने पेमेंट ऐप्स पर सेफ कौन सा?
1: तो स्विच टू बीम, एकदम सेफ और भरोसेमंद, रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं। पाओ 40 रुपए का कैशबैक 40 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर, भीम ऐप से करो पे।
2: इट्स अ माय वे।
3: How's the hostel? Settled?
4: Yes, Mark's really nice.
3: कोई आ रहा है क्या?
5: तुम मॉम डैड वाली ड्यूटीज तो निभाली, अब फिर से थोड़ा रोमांस है।
3: मयंक, for real?
5: One carat for my one true love. Natural diamond real love solitaires to reignite your new season of love.
6: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं।
7: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
8: बच्चों के लिए अलग टीवी रूम बना सकते हैं।
9: कैसे लगा आप दोनों को अपना ड्रीम होम?
10: I love it, absolutely amazing. तुम एक काम करो, तुम मिठाई ऑर्डर कर लो।
11: मिठाई से पहले कुछ और हो जाए
10: क्या?
11: इनकी राय।
12: नई सोच की नींव में हम, हर नई उम्मीद में हम, गैलेंट निर्माण का रियल हीरो।
13: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
14: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
15: सोच बदलो और बैंक भी।
16: Love and Care, the world's finest range of rubber pet toys.
17: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
18: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
17: असली शहद, असली स्वाद।
19: माँ के पैरों की धूल माथे पर लगा, परदेश की गलियों में अपने वतन के गीत सुनो।
20: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है, ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
21: ये है एक लेगेसी।
22: यू नो डिजाइन्स कितने हैं? लाख से भी ज्यादा डोर,
23: और सारे हैं BIS हॉलमार्क सर्टिफाइड। खूबसूरत कारीगरी भी, हाई क्वालिटी भी।
24: एक परिवार, अटूट भरोसा।
25: In association with Canara Bank, together we can.
26: Anmol biscuits, swad jo banaye har pal anmol. Signature finest cardamom seeds.
27: E3 HDMR, ye rishta lamba chalega.
28: Ye tabahi ki tasveerein hain, ye tasveerein darati hain, khauf paida karti hain. नेपाल पर एक बार फिर कुदरत का कहर बन। ये तस्वीरें नेपाल के गोरखा जिले की हैं, जहां बूढ़ी गंडकी नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया। अचानक बढ़े पानी के बहाव ने नदी किनारे बसे इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते मकान बह गए और कई पुल तबाह हो गए। जिन घरों में कभी खुशियां बसती थी, वो अब पानी में समा चुके हैं। गोरखा के चुमनुबरी और धारचे इलाकों में बाढ़ का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है। सैलाब का कहर सिर्फ मकानों तक सीमित नहीं रहा, लोगों को जोड़ने वाले पुल भी पानी के तेज बहाव में बह गए। जानकारी के मुताबिक कुल 6 पुल नष्ट हुए हैं, जिनमें 2 मोटर योग्य और 4 सस्पेंशन ब्रिज शामिल हैं। अरुघाट, त्रिपुर सुंदरी और सोती मानगू के पुलों के साथ एक बेली ब्रिज भी तबाह हो गया। बूढ़ी गंडकी नदी के उफान से सालेरी, पयुका और जगत के नदी किनारे बसे इलाकों में भी कई मकान बह गए। पुल टूटने से अब प्रभावित इलाकों तक पहुंचना और राहत पहुंचाना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। अधिकारियों के मुताबिक रविवार सुबह करीब 4 बजे जिले के उत्तरी हिस्से में अचानक बाढ़ आई। तेज बहाव और पानी की गर्जना सुनकर चुमलिंग और लोकपा जैसी बस्तियों में रहने वाले लोग और पर्यटक जान बचाने के लिए सुरक्षित जगहों की ओर भागे। पानी का बहाव कभी धीमा पड़ता तो कभी अचानक तेज हो जाता। लोगों को सामान समेटने तक का मौका नहीं मिला और वे अपनी जान बचाने के लिए घर छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। अब प्रशासन ने बूढ़ी गंडकी नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित ऊंचाई वाले स्थानों पर जाने की चेतावनी दी। सबसे बड़ी चुनौती लोगों की जान बचाने और प्रभावित इलाकों तक मदद पहुंचाने की। नेपाल में एक बार फिर पानी का कहर, उजड़ते घर, टूटते पुल और जान बचाकर भागते लोग। कुदरत के इस कहर ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। आज तक व्यू।
0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: पहली बार विपक्षी काफिले के साथ सुप्रीम कोर्ट मार्च करने के बाद राहुल गांधी की नई रणनीति, आज इंडिया गठबंधन के नेताओं को चाय पर बुलाया, दोपहर में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी प्लान। 11 याचिकाकर्ताओं के साथ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका, अब तक सुनवाई के लिए लिस्ट नहीं, रजिस्ट्री ने बताई 14 खामियां, गलती सुधार के लिए 90 दिनों का वक्त। सीजीआई विवाद में बैकफुट पर केरल कांग्रेस, चौतरफा घिरने के बाद हटाया इस्तीफे का पोस्टर, रिजिजू बोले एकजुट हुआ है एंटी इंडिया गैंग, देशभक्त देंगे जवाब।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: इंडिया ब्लॉक के नेताओं के साथ आज राहुल गांधी की चाय पर चर्चा, सीएसी एसआईआर के खिलाफ बनेगी आगे की रणनीति। ईसीआई के खिलाफ विपक्ष का सुप्रीम मार्च, 3 घंटे के पैदल प्रदर्शन के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी। सुप्रीम कोर्ट मार्च के बाद राहुल गांधी का तीखा बयान, बोले भारत की जनता डरने वाली नहीं, हम सरकार की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। राहुल गांधी ने मार्च में शामिल होने वालों का जताया आभार, कहा हम एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। विपक्ष का सुप्रीम कोर्ट मार्च के बाद अदालत में राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी समेत इंडिया गठबंधन के 11 नेता बने याचिकाकर्ता। सीईसी के इस्तीफे की मांग तेज, अखिलेश यादव का बीजेपी और चुनाव आयोग पर आरोप, बोले बीजेपी हटेगी तभी तंत्र बचेगा, आंदोलन जारी रखने का ऐलान। शशि थरूर बोले एसआईआर रोक कर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो समीक्षा, हटाए गए वोटर्स के नाम बहाल हों। असम सीएम हिमंत बिस्व शर्मा सुप्रीम कोर्ट मार्च पर, बोले राहुल का सिर्फ ड्रामा, हार के लिए कांग्रेस नेतृत्व जिम्मेदार। इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन से डीएमके, आम आदमी पार्टी और एआईएमआईएम की दूरी, डीएमके नेता बोले कांग्रेस गठबंधन में नहीं होती तो हम शामिल होते। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान बोले हम गठबंधन का हिस्सा नहीं, बीजेपी को हराने के लिए 7 चुनाव लड़ने को तैयार। इंडिया गठबंधन की याचिका, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध तरीके से नहीं, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने बताई 14 तकनीकी खामियां। याचिका में खड़गे के आईडी कार्ड की कॉपी थी धुंधली, सुप्रीम कोर्ट ने आईडी की स्पष्ट कॉपी और ₹220 की अतिरिक्त कोर्ट फीस जमा करने को कहा। इंडिया गठबंधन की याचिका में 9 नेताओं के वकालतनामे पर हस्ताक्षर नहीं, अखिलेश तेजस्वी समेत कई नेताओं के दस्तावेज अधूरे। याचिका में दस्तावेजों की स्पष्ट कॉपी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के 24 जून के फैसले की डिजिटल कॉपी और पेन ड्राइव में एसआईआर से जुड़े दस्तावेज मांगे। वहीं विपक्ष के सीरियल विरोध प्रदर्शन के बीच सरकार का बड़ा फैसला, जंतर मंतर पर आंदोलनकारियों की नो एंट्री। दिल्ली में अब सिर्फ रामलीला मैदान, बुराड़ी और सीबीडी ग्राउंड को तय किया गया है धरने की जगह, 4 हफ्ते के लिए बढ़ी सुरक्षा व्यवस्था। सीजीआई विवाद में बैकफुट पर केरल कांग्रेस, चौतरफा घिरने के बाद हटाया इस्तीफे की मांग का पोस्ट, सीजीआई पर विवादित पोस्ट में लिखा था अगर कानून व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी नहीं है तो अभी इस्तीफा दे दीजिए। सीजीआई के इस्तीफे की मांगों पर एससीबीए का बयान, कहा ऐसे बयान न्यायपालिका को नीचा दिखाते हैं। केपीसीसी अध्यक्ष सनी जोसेफ बोले पोस्ट बिना सहमति के किया गया, न्यायपालिका की निष्पक्षता पर कोई भी संदेह नहीं। कांग्रेस पर बरसे किरेन रिजिजू, पोस्ट साझा कर लिखा एकजुट हुआ एंटी इंडिया गैंग, देशभक्त देंगे जवाब। असम सीएम हेमंत बिस्व शर्मा का कांग्रेस पर हमला, बोले कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग पसंद नहीं। राहुल के आरोपों पर बीजेपी का चौतरफा वार, शिवराज सिंह चौहान बोले कि ये शिव की बारात नहीं, हुड़दंगियों की जमात, पूछा राष्ट्रपति को सबूत क्यों नहीं दिए गए। शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर हमला, बोले विदेशी ताकतों के हाथों का खिलौना बनी कांग्रेस। एसआईआर पर सियासी घमासान, बीजेपी बोली राहुल सड़क छाप भाषा बोल रहे हैं। तो वहीं नागपुर में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि संविधान दिखा दिखा के संविधान को समाप्त करने का काम कर रही है कांग्रेस। सीएम फडणवीस ने कहा राहुल गांधी देश की संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम कर रहे हैं और देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। मुंबई में बीजेपी नेता और मंत्री आशीष शेलार का राहुल गांधी पर निशाना, बोले सीएसी और एसआईआर का मुद्दा गंभीर है तो संसद में चर्चा क्यों नहीं करते। आशीष शेलार का आरोप, राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने की साजिश रचने का आरोप। मुंबई में एफआईआर दर्ज होने पर आदित्य ठाकरे का बयान, बोले प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाना क्या ब्रिटिश राज है। तो वहीं आदित्य और अमित ठाकरे के खिलाफ गैर कानूनी जमावड़े का मामला दर्ज होने के बाद सियासी विरोध जारी हुआ। मुंबई में प्रदर्शन को लेकर सियासी घमासान तेज, राम कदम बोले मतदाता सूची में मृत और दूसरी जगह जा चुके लोगों के नाम हटाने का विरोध क्यों। शिवसेना यूबीटी को बड़ा झटका, राष्ट्रीय प्रवक्ता आनंद दुबे ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और प्रवक्ता पद से दिया इस्तीफा। आनंद दुबे बोले, शिवाजी महाराज और वीर सावरकर मेरे आदर्श, उचित राजनीतिक मंच मिलने पर दूसरी पार्टी में होगा शामिल। वहीं मुंबई में बीजेपी नेता किरीट सोमया की अभिनेता इमरान खान के खिलाफ पुलिस में शिकायत, भारत में रहकर राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने का लगाया आरोप। 6 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति, ओम प्रकाश माथुर को केरलम, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को तमिलनाडु की जिम्मेदारी, ब्रजमोहन राम को ओडिशा और डॉक्टर सुधा यादव को कर्नाटक का राज्यपाल किया गया नियुक्त। उत्तराखंड की बात करें तो डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को बनाया गया है राज्यपाल। वहीं दिल्ली में बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन, कांग्रेस सांसद अंगोमचा पर यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर विरोध जताया गया। कांग्रेस सांसद अंगोमचा के खिलाफ जेएनयू की 11 छात्राओं ने की थी शिकायत, तो विश्वविद्यालय से हो चुके हैं बर्खास्त। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम, बारूदी सुरंग विस्फोट में लश्कर कमांडर मोहम्मद फैजान सहित 4 आतंकवादी ढेर। दिवाली से पहले आम आदमी का निकला दिवाला, खुदरा महंगाई में उछाल, खाने पीने की चीजें बिगाड़ सकती है घर का बजट। एमपी के सागर में अतिक्रमण रोकने आई विभाग की टीम पर बदमाशों ने किया जानलेवा हमला। हमले के दौरान बदमाशों ने युवक को भी कुचलने की कोशिश की। वन विभाग की शिकायत पर पुलिस ने 3 के खिलाफ केस दर्ज किया। नोएडा में जिंदल पैंथर कैंप पर विमल अचीवर्स का कब्जा, फाइनल में 9-6 से दी जिंदल पैंथर को मात। पहाड़ों पर भी मौसम की मेहरबानी बरकरार, हिमाचल प्रदेश के चंबा में जबरदस्त बर्फबारी। बर्फबारी के बाद बड़ी संख्या में चंबा पहुंचे पर्यटक, सैलानी उठा रहे हैं मौसम का लुत्फ। धर्मशाला की धौलाधार पहाड़ियों पर सीजन की तीसरी बर्फबारी, बर्फ से ढकी चोटियां बनी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र। हिमाचल के धर्मशाला में बारिश और हिमपात से बदला मौसम, बारिश के बाद तापमान में आई गिरावट। धर्मशाला और मैक्लोडगंज में मौसम ने बढ़ाई पर्यटन कारोबारियों की उम्मीद, धौलाधार की पहाड़ियों पर बर्फबारी से बढ़ी खूबसूरती। सोनमर्ग में कश्मीर घाटी में मौसम का मिजाज बदला, उत्तरी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से बड़ी ठंड। शिमला में भारी बारिश के कारण 14 डिग्री सेल्सियस तक गिरा तापमान, 15 अक्टूबर तक फिर से बारिश के आसार। पंजाब में बेमौसम बारिश से धान की फसल पर मार, फाजिल का मंडी में 3 फीट तक भरा पानी। रोहतक में भारी बारिश से किसान परेशान, पानी में डूबे अनाज। सोनीपत में भी भारी बारिश से मंडी में जल भरा, किसानों की बढ़ी चिंता। बद्रीनाथ धाम में दर्शन का नया रिकॉर्ड, अब तक 20 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। मौसम की चुनौतियों के बीच श्रद्धालुओं का जोश है, बड़ी संख्या में बद्रीनाथ पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। आज नवरात्र के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा। वहीं मुंगेर में कलाकार ने 3 सेमी के पीपल के पत्ते पर मां दुर्गा की छोटी सी कलाकृति बनाई। 7 समंदर पार दिखी नवरात्र की रौनक, न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर पर बंगाली समुदाय ने जमाया मां दुर्गा की भक्ति का रंग। शारदीय नवरात्र पर गुजरात में गरबा की धूम, जामनगर में पारंपरिक गरबा बना आकर्षण का केंद्र। बागपत में एक महिला ने बच्चे संग की हैवानियत, मासूम के बाल नोचे बरसाए थप्पड़। श्रीगंगानगर में कार बाइक की भीषण टक्कर, बाइक सवार की मौत हुई। बांका में 2 बाइकों की जोरदार भिड़ंत के कारण 2 युवकों की मौत, हादसे में आरजेडी नेता की गई जान। टोंक में आइसक्रीम खाने आए युवक पर बदमाशों का हमला, घेर कर की मारपीट फिर चाकू से किया वार। विजयवाड़ा में इलेक्ट्रिक कार में लगी भीषण आग, हादसे में 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत। दमोह जिला अस्पताल में महिला से सफाई करने का आरोप, वहीं नर्सिंग स्टाफ के कहने पर स्टूल और फर्श साफ करती दिखी महिला। उदयपुर में तेज रफ्तार क्रेन ने बुजुर्ग को कुचला, हादसे में मौत हुई, ड्राइवर मौके से फरार। गाजियाबाद में शहीद नगर में निर्माणाधीन इमारत गिरी, 4 लोगों को बचाया गया। गाजियाबाद में युवती से मिलने आए मुस्लिम युवक की पिटाई, लव जिहाद मामले में हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप। लखनऊ में एक होटल की 10वीं मंजिल से गिरकर युवती की संदिग्ध हालत में मौत, कमरे में मौजूद साथी फरार। राजसमंद में बेकाबू हुई थार, डिवाइडर तोड़कर सड़क किनारे पहुंची। भुवनेश्वर में विवाद के बीच चालक ने पैदल चल रहे लोगों पर चढ़ाई कार, 3 लोग हुए घायल। राजकोट में बेकाबू कार ने पानी की डिलीवरी कर रहे युवक को मारी टक्कर, हादसे से सीसीटीवी फुटेज आया सामने। रेवाड़ी में ट्रॉमा सेंटर के सामने निजी बस ने स्कूटी सवार महिला को कुचला, मौके पर दर्दनाक मौत। पुणे में एफडी अधिकारी बनकर किनाना, दुकानदार से 5 लाख रूपये की वसूली मांगने का आरोप लगा। तो वहीं राजकोट में मामा के 11 लाख रुपए हड़पने के लिए भांजे ने रचा लूट का झूठा नाटक, भांजे समेत 3 लोग गिरफ्तार। कोटपुतली में घर के बाहर खड़ी कार में पेट्रोल डालकर लगाई गई आग, सीएनजी किट में विस्फोट होने के कारण हो सकता था बड़ा हादसा। आरा में थाना परिसर के अंदर फायरिंग, गोली लगने की वजह से होमगार्ड जवान की मौत हुई। सहारनपुर में वजू करते समय अचानक से गिरा एक शख्स, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। अकोला में देवदूत बनी महिला, आरपीएफ जवान, चलती ट्रेन में बुजुर्ग की बचाई जान।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग।

रात के 11:27 तक नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 7:12 तक। राहु काल का समय दोपहर 3 से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।

दूर होगी, परिवार के रिश्तों में सुधार होगा, लेकिन आज यात्रा में सावधानी रखिएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला।

राशि, सेहत में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार की समस्या हल होगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, करियर में सुधार होगा, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, देवी को लाल फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। कर्क राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाब।

होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, चोट चपेट से बचाव करें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी।

बन रहे हैं, करियर की समस्या हल होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। देवी को लाल फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा बैंगनी।

काम पूरे होंगे, धन प्राप्त होगा, करियर में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा

से स्थितियों में सुधार होगा। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। धनु राशि करी

पेट से बचाव करें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मकर राशि, मन प्रसन्न रहेगा, धन की समस्या दूर होगी, पारिवारिक समस्या दूर होगी। देवी को लाल फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा

का धन लाभ की स्थिति रहेगी, करियर का दबाव कम होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा

की चिंता हो सकती है। ऑफिस में विवादों से बचें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार। सर एक बार दो ठुमका लगाने बस।
3: मेरे पास एक आइडिया है।
2: क्या?
3: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है।
4: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला, पर स्टेज नहीं हिलता,
5: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
6: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
7: कौन सी बनानी है?
8: गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
9: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
10: बच्चों के लिए अलग टीवी रूम बना सकते हैं।
11: कैसा लगा आप दोनों को अपना ड्रीम होम?
12: आई लव इट, एब्सोल्युटली अमेजिंग। तुम एक काम करो, तुम मिठाई ऑर्डर कर लो।
13: मिठाई से पहले कुछ और हो जाए
12: क्या?
13: इनकी राय।
14: नई सोच की नींव में हम, हर नई उम्मीद में हम। गैलेंट निर्माण का रियल हीरो।

0: क्या योगी को चैलेंज करके फंस गए अखिलेश? सीएम योगी ने स्वीकार की अखिलेश की चुनौती। पवन का नाम आगे कर अखिलेश ने पलट दी बाजी। जैसे जैसे यूपी का विधानसभा चुनाव पास आता जा रहा है, वैसे वैसे जुबानी जंग तेज होती जा रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती को स्वीकार करते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को ही अयोध्या के सियासी दल क्षेत्र में उतरने और चुनाव लड़ने का चैलेंज दे दिया।
1: सुनने में आ रहा है उन्हें अयोध्या में कोई नया प्रत्याशी ही नहीं मिल पा रहा है, और जो बड़े बड़े दावे करते हैं और जो बड़े बड़े दावे करने वाले मुख्यमंत्री अगर इतना ही अस्वस्थ हैं तो खुद अयोध्या से चुनाव लड़ करके दिखाएं।
2: आइए आप भी अयोध्या में नामांकन करिए और मैं भी अयोध्या से चलो एक बार किस्मत आजमा लेते हैं। तय हो जाए, आप भी आइए और मैं भी आता हूं। लड़ाई चेलों से क्यों? लड़ाई तो आमने सामने होनी चाहिए और उसके लिए मैं कह रहा हूं आइए आप भी। ये माफिया के सामने नाक रगड़ने वाले पेशेवर अपराधियों के सामने उनकी मौत पर उनकी कब्र में जाकर के फातिया पढ़ने वाले लोग, ये हम लोगों से क्या लड़ पाएंगे?
0: अयोध्या के सियासी रण क्षेत्र में अखिलेश यादव और सीएम योगी के बीच जुबानी जंग में पवन की एंट्री हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने सीएम योगी पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री टिकट नहीं बांटते, बीजेपी में उन्हें खुद टिकट मांगने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। सीएम योगी की चुनौती को लेकर बैकफुट पर नजर आ रहे अखिलेश यादव ने पवन पांडे का नाम आगे करके कहा कि हमारे पवन की हवा में अहंकारी सरकार के लोग उड़ जाएंगे। तो साफ है कि 2027 की चुनावी लड़ाई अब अयोध्या के सियासी रण को लेकर और दिलचस्प हो गई है। अब देखना होगा कि सीएम योगी के चैलेंज को अखिलेश यादव अपने उम्मीदवार पवन पांडे से काउंटर कर पाएंगे। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
3: आम जन को परेशान कर रही है अव्यवस्था पैदा करके, अराजकता पैदा करके, बल्कि भारत के संवैधानिक संस्थाओं को भी कटघरे में खड़ा करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। आश्चर्य है कि चुनाव जीते तो इनका पुरुषार्थ और हारे तो ईवीएम दोषी। इलेक्शन कमीशन दोषी। न्यायालय अगर मेरिट के आधार पर कोई फैसला देता है तो माननीय न्यायालय को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास, उन्हें तमाम प्रकार की धमकी देने का प्रयास, ऐसे ही तमाम अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करना, गाली गलौज करना, अव्यवस्था फैलाना, ये कांग्रेस की नियति का पाठ बन चुका है। कांग्रेस के लोगों को चाहिए कि वे अपने नेतृत्व की अकर्मण्यता, भ्रष्ट आचरण, विश्वास खो चुके नेतृत्व को बदले। भारत में अराजकता न फैलाएं, भारत की संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करने का कुत्सित प्रयास न करें, अन्यथा जो बचा खुचा है भारत की जनता लोकतांत्रिक दृष्टि से बहुत जागरूक है, वह इस अराजकता को स्वीकार नहीं करेगी। ऐसा नहीं कि जनता बहुत दिनों तक और बहुत देर तक इसको बर्दाश्त करेगी। अगर उसकी ये अराजकता और असंवैधानिक कृत्य और लोकतांत्रिक तरीके से इसी प्रकार से अराजकता पैदा करेंगे तो जो कुछ बचा खुचा है वह भी उन्हें गंवाना पड़ेगा। देश के अंदर अराजकता से बाज आए, जनता जनार्दन को और युवाओं को गुमराह करने से बाज आए, मेरिट के आधार पर और मुद्दों पर चर्चा करके एक स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था का पाठ बने, ये भारत के लोकतंत्र के हित में भी होगा और देश की जनता के हित में भी होगा।
4: जबरदस्त हंगामा बरपा है, यह है कांग्रेस का युद्ध अपने ही विरुद्ध। लखनऊ में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए हैं, कोई किसी को धक्का मार रहा है, कोई किसी पर जूता चला रहा है, मारपीट का फुल माहौल है। बता दें कि हाथापाई यूपी में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय राय के समर्थक और कांग्रेस की पार्षद ममता चौधरी के समर्थकों के बीच हो रही है। दरअसल यहां पर यूपी कांग्रेस की अध्यक्ष आराधना मिश्रा को आना था, लेकिन वर्तमान अध्यक्ष आए उसके पहले पूर्व अध्यक्ष अजय राय अपने समर्थकों के साथ यहां पहुंच गए। बताया जा रहा है कि अजय राय के समर्थकों ने कहा कि अध्यक्ष जी के लिए रास्ता दीजिए, जिस पर पार्षद ममता चौधरी ने पूछ लिया कौन अध्यक्ष। बस इसी बात पर समर्थकों में भिड़ंत हो गई। बताया जा रहा है कि ममता चौधरी पर जूता फेंका गया है। इस बवाल के बाद कांग्रेस के सांसद अजय राय से पूछ रहे हैं कि हुआ क्या। लेकिन जिन लोगों ने ये बवाल देखा, सुनिए वो क्या कह रहे हैं।
5: कुछ दो तीन लड़के तो थे भैया, लेकिन अभी हम आपके ही कैमरे से उनको छानेंगे, देखेंगे वो कौन लोग थे। जहां तक है वो भाजपा के ही लोग थे, अजय राय जी के साथ किसी तरह अंदर आ गए थे और अजय राय जी का भी नाम खराब कर रहे हैं।
6: इधर महिलाएं सब लेके दोनों लोग के स्वागत में खड़ी थी, दोनों लोग में, तो उनके आदमी कहे कि आप लोग थोड़ा रास्ता जीत दीजिए, तो इसी पे ममता जी कही कि रास्ता दिए तो हैं, जाए ना, हम लोग कहाँ चले जाए। और कुछ एक शब्द और क्या बोली हमें नहीं ध्यान है, तो उस पर अध्यक्ष जी कहे कि ए ममता पार्षद होश में बात करिए।
4: 27 में यूपी में चुनाव है और ऐसे में कांग्रेस के प्रदेश के नेता अगर खुद में ही लड़ते रहेंगे तो बीजेपी से कैसे लड़ेंगे। संतोष शर्मा, लखनऊ आज तक।
7: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
9: In association with
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

पहली बार विपक्षी काफिले के साथ सुप्रीम कोर्ट मार्च करने के बाद राहुल गांधी की नई रणनीति। आज इंडिया गठबंधन के नेताओं को चाय पर बुलाया, दोपहर में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी प्लान। 11 याचिकाकर्ताओं के साथ TCI के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका, अब तक सुनवाई के लिए लिस्ट नहीं। रजिस्ट्री ने बताई 14 खामियां, गलती सुधार के 90 दिन का वक्त। दो हजार छब्बीस तेजी से बढ़ सकती है भारत की अर्थव्यवस्था। GDP ग्रोथ को लेकर IMF का बड़ा अनुमान, 7% की हो सकती है रफ्तार। वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद हिंदुस्तान रहेगा सबसे आगे। यूपी कांग्रेस मुख्यालय में हुए जूतम पैजार की जांच करेगी 5 सदस्यों की कमेटी। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष होंगे समिति के प्रमुख। अजय राय पर महिला पार्षद ने लगाए हैं गाली गलौज और मारपीट के आरोप। लखनऊ के कारोबारी की डेथ मिस्ट्री में नया मोड़। शिवम गुप्ता की मौत मामले में फरार 11 पार्टनर और मॉडल श्रद्धा दुबे की तलाश। कई हाई प्रोफाइल लोगों से हैं कनेक्शन।

0: स्वागत है आपका। घड़ी भी 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बादम। सुबह का सबसे पहला संपूर्ण न्यूज बुलेटिन लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं खबरें रफ्तार से और विस्तार से, लेकिन सबसे पहले खबरों की झलकियों पर एक नजर। सुप्रीम कोर्ट मार्च के बाद आज विपक्ष का टी ब्रेक। राहुल गांधी ने घर शाम में बुलाई है चाय पार्टी। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जारी आंदोलन में आज और क्या क्या होने वाला है, आपसे कुछ ही देर बाद ये पूरी डिटेल। क्या कांग्रेस को टाटा बाय बाय करेंगे यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय राय पर अटकलें तेज हैं। यूपी की सियासत से जुड़ी इस बड़ी खबर पर नजर होगी। पंजाब हरियाणा की मंडियों पर बेमौसम बारिश की मार, डूबा खुले में रखा अनाज। बुलेटिन के आखिरी हिस्से में खबर दिखाएंगे और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। कल के विपक्ष के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। दिल्ली के बाराखंबा और तिलकबाग थाने में FIR दर्ज हुई है। इसमें सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, किन धाराओं में किस वजह से FIR हुई है इसका फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, FIR किन धाराओं में हुई है इसके बारे में जानकारी मिली है क्या?
1: अभी देखिए, अभी बहुत डिटेल तो सामने नहीं आई है, लेकिन दो FIR दर्ज हुई हैं और उनके लोकेशन से समझा जा सकता है। पहली FIR नेहा, आप देखिए, ये जो बाराखंबा रोड थाना है यहीं पर दर्ज हुई है। और बाराखंबा रोड थाने में FIR क्यों दर्ज हुई है, क्योंकि जो पूरा प्रोटेस्ट था उसकी शुरुआत ही बाराखंबा रोड से हुई थी। कनॉट प्लेस के आउटर सर्किल के बाद जो पूरी बाराखंबा रोड शुरू थी वहां से प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई थी और पूरा रोड यहां पर ट्रैफिक बंद हो गया था। अब यहां पर परमिशन नहीं ली गई थी, तो यानी कि परमिशन न लेना एक वजह तो यह है। और जब प्रोटेस्ट यहां से बढ़ करके आप देखिए मार्च वो सुप्रीम कोर्ट तक गया। अब जब सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट का जो लोकल थाना ज्यूरिडिक्शन पड़ता है वो तिलक मार्ग का पड़ता है। एक FIR तिलक मार्ग थाने में दर्ज की गई है, यानी दो FIR की जो जानकारी है। और इसमें जो मुख्यतः जो बातें हैं वो यही है कि परमिशन न लेना, सड़क को ब्लॉक करना, ट्रैफिक को अवरुद्ध करना, क्योंकि हालांकि पुलिस को इन्फॉर्मेशन थी लेकिन परमिशन नहीं ली गई थी और इस वजह से ये FIR दर्ज की गई है। जो एक्यूज का कॉलम है नेहा, वो अभी पूरी तरीके से खाली है, लेकिन डिटेल में उन तमाम सभी लोगों के नाम है, उसमें बड़े नाम भी शामिल है जो इस प्रोटेस्ट में शामिल थे। अब ये कोई पहली FIR नहीं हुई है नेहा, पिछले अगर हम एक हफ्ते की बात करें तो इस तरीके की एक एक दिन में हमने देखा है कि 15 से 20 FIR तक दिल्ली पुलिस ने दर्ज की है। अब देखना ये होगा कि पुलिस जो ये लंबी चौड़ी एक FIR की लिस्ट उनके सामने खड़ी हो गई है तकरीबन 40 से 50 FIR की, इन सारे FIR पर पुलिस एक्शन किस तरीके से लेती है, क्या जांच आगे बढ़ेगी, क्या जिन लोगों का नाम दर्ज है उनको बुलाया भी जाएगा पूछताछ के लिए कि नहीं। क्योंकि आप देखिए, उन मामलों में तो हम कार्रवाई देखते हैं जिसमें किसी पुलिसकर्मी को लोग पीट रहे होते हैं या कभी किसी प्रदर्शनकारी के साथ बस सलूकी होती है, तो ऐसे मामलों में तो एक्शन होता है। लेकिन बाकी जो FIR होती है, खास तौर से जिसमें परमिशन न लेना या बड़े नाम शामिल होते हैं, तो ऐसी FIR पर आमतौर पर एक्शन कुछ खास होता नहीं है। जी नेहा,
0: बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और कल के बाराखंबा रोड से सुप्रीम कोर्ट मार्च के बाद आज विपक्ष के लिए टी ब्रेक का दिन है। जी हां, आज शाम लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी अपने घर पर चाय पार्टी देने वाले हैं। इसमें इंडिया ब्लॉक के सांसदों के अलावा सिविल सोसाइटी के लोगों और छात्र यूनियन के नेताओं को बुलाया गया है। शाम 4 बजे की चाय पार्टी से पहले इंडिया ब्लॉक की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें आगे की रणनीति का खुलासा होगा। कल विपक्ष की तरफ से SIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई थी जिसमें 14 खामियां पाई गई। उधर आज जंतर मंतर प्रदर्शन के लिए बंद करने के लिए दिल्ली पुलिस के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी।
2: ये तांडव है, ये शिव का डांस है, इसमें कोई प्लानिंग नहीं होती। ये शिव की बारात है, इसमें किसी को भी आना आ सकता, प्लान की कोई जरूरत नहीं है।
3: राहुल गांधी कह रहे हैं कि शिव की बारात में प्लान की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन राहुल गांधी का आज का प्लान तो तय हो चुका है। जी हां, आज दोपहर इंडिया ब्लॉक के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और फिर शाम 4 बजे राहुल गांधी के आवास पर चाय पार्टी होगी। सूत्रों के मुताबिक इस हाई टी में इंडिया ब्लॉक के सांसदों के अलावा सिविल सोसाइटी के सदस्य और छात्र संगठन के नेताओं को भी न्योता दिया गया है। आज की चाय पार्टी विपक्षी नेताओं के कल के सुप्रीम कोर्ट मार्च के बाद हो रही है।
4: आई एम प्राउड ऑफ एवरीबॉडी Everybody worked like a team. As I said in my press conference, there are no parallel protests. There is one protest, and it's a protest where everybody is standing together. Every single person is going to stand against these killers of our constitution, these killers of our democracy, and we're not going to back down.
3: हाइटी का आयोजन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सरकार के खिलाफ कांग्रेस के आंदोलन के बदले बदले तेवर की नई कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। 7 अक्टूबर को जंतर मंतर मार्च से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सागर रत्ना में लंच दिया था। अगले दिन 8 अक्टूबर को राजघाट जाने से पहले कनॉट प्लेस मोइट्स रेस्टोरेंट में इंडिया गठबंधन के नेताओं को लंच दिया गया था और अब आज चाय पार्टी।
4: द लीडर्स ऑफ इंडिया ब्लॉक, ऑल द वर्कर्स ऑफ द कांग्रेस पार्टी, वर्कर्स ऑफ द इंडिया ब्लॉक, दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज वी नीडेड टू शो द गवर्नमेंट दैट द पीपल ऑफ इंडिया आर नॉट गोइंग टू बी इंटिमिडेटेड। यू कैन नॉट beat us, you cannot threaten us, you cannot frighten us. We will not accept being bullied.
3: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जारी आंदोलन में कल बाराखंबा से सुप्रीम कोर्ट तक विपक्ष का बड़ा मार्च देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट तक इस मार्च में अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव से लेकर लेफ्ट के कई नेता और कांग्रेस की सरकार वाले तीन राज्यों के मुख्यमंत्री यानी हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी और कर्नाटक सीएम डीके शिवकुमार तो शामिल हुए ही। आईसा अध्यक्ष नेहा बोरा भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ पैदल चलती हुई नजर आई।
5: आंदोलन, धरना, प्रदर्शन लगातार चलता रहेगा। हमारी जिम्मेदारी है लोकतंत्र बचाने की और भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन से मिलकर के संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। हमेशा हमेशा सरकार में रहना चाहती है। फर्जी वोट बनाते हैं, फर्जी वोट डालते हैं और फर्जी चुनाव का परिणाम बनाते हैं।
3: इस मार्च के साथ विपक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है। 10 विपक्षी पार्टियों के 11 नेता इसमें याचिका करता है। उनमें शामिल हैं राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सौगत राय, अखिलेश यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव, संजय राउत, सीपीआईएम के एमए बेबी, सीपीआई के डी राजा, जेएमएम की महुआ मांझी, एनसीपी शरद पवार गुट की सुप्रिया सुले, आईयूएमएल के नेता ईटी मोहम्मद बशीर। आज तक ब्यूरो।
0: और विपक्ष के कल के सुप्रीम कोर्ट मार्च पर बीजेपी ने तीखा हमला किया है। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को अराजक तत्व बता दिया है।
6: साथियों, राहुल गांधी जी कहने के लिए तो नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन एक ऐसे नेता हैं जिनको न तथ्यों का पता है, न तर्क का पता है, न नियम कायदे कानून का पता है। उन्हें तो बस इतना पता है कि अराजकता फैलानी कैसे है, अस्थिरता लानी कैसे है, संवैधानिक पदों को और संस्थाओं को नीचे दिखाना कैसे है और दुनिया भर में भारत का नाम बदनाम कैसे करना है, छवि को कमजोर कैसे करना है। यह दुर्भाग्य है देश को कभी इतना अस्थिर, अराजक, अगंभीर नेता प्रतिपक्ष के तमाशे और नखरे नहीं देखने पड़े। राहुल जी, जिनके लबों पर लफ्ज हैं वोट चोरी, दरअसल वो कर रहे हैं जनादेश की जनादेश से सीना जोरी।
0: अमित भारद्वाज में सहयोगी जुड़ गए इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। अमित, आज की चाय पार्टी का क्या प्लान है, कौन कौन इसमें शामिल होने वाला है?
7: नया देखिए, चाय पार्टी के साथ साथ इंडिया गठबंधन का एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है। सूत्रों ने मुझे कंफर्म किया है कि आज शाम राहुल गांधी के ही आवास पर इंडिया गठबंधन के जो बड़े नेता हैं वो एक साथ मिलकर अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो चाय पार्टी में जहां तमाम सांसदों को, लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को बुलाया गया है, विपक्षी दलों के बड़े नेताओं को इनवाइट किया गया है राहुल गांधी द्वारा, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष जो है उनके द्वारा, वहीं दूसरी तरफ एक रणनीति पर चर्चा होगी क्योंकि एक लंबा कैंपेन बीते हफ्ते 10 दिन से विपक्षी दलों ने दिल्ली में चलाया है सीसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, वोट चोरी का आरोप लगाते हुए, इलेक्टोरल रोल्स के छेड़खानी का आरोप लगाते हुए। अब उस कैंपेन को अगले मोड में शिफ्ट करना है, इसकी वजह से आज ये साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अब बीच में दशहरा पड़ रहा है तो मोमेंटम भी वहां पे ब्रेक होने की संभावना है। तो क्या एक नवंबर की रैली को लेकर भी आज चर्चाएं होने जा रही हैं। दिल्ली में किस तरह से बड़ी भीड़ इकट्ठा की जाएगी और कैसे ये कैंपेन नीचे आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा, उस पर भी चर्चा हो सकती है। तो चार बजे सभी सांसद और विपक्षी नेता राहुल गांधी के आवास पर मिलेंगे और उसके बाद एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। बात करेंगे सरकार और विपक्ष के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त लेकर जो घमासान है उसकी कुछ प्रतिक्रियाएं आपको देखते हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष की।
8: देश को अराजकता की आग में झोंकने के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार राहुल गांधी और उनके साथियों के द्वारा आज दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय में जिस प्रकार का अशोभनीय दृश्य दिखाया गया, ये भारत के इतिहास में इसकी कोई मिसाल नहीं है। जिस प्रकार से हुजूम लेकर न्यायालय को प्रभावित करना, आतंकित करना, मुझे लगता है आज तक कोई नेता प्रतिपक्ष ऐसा नहीं रहा होगा। और उतर कर दूसरी तरफ भाग कर अपने सिक्योरिटी कॉर्डन को ब्रेक करते हुए दूसरे गेट से अंदर जाने का प्रयास, ये दर्शाता है कि या तो वो मानसिक संतुलन खो चुके हैं या संदिग्ध शक्तियों के द्वारा इस सीमा तक संचालित हैं कि वो किसी भी हद तक नीचे गिरने को तैयार हैं ताकि भारत की सड़कों पर अव्यवस्था दिख सके।
9: याचिका सुपुर्द हो गई है, उसपे वो सभी ग्राउंड्स हैं जिसके अंतर्गत गैर कानूनी काम किया है, जो निर्णय है उनको क्वाश करना चाहिए। जो जो चीजें आपने पढ़ी है सुनी है उनके विषय में याचिका है।
10: हम लोगों ने पेटिशन जो है दायर किया है SIR के खिलाफ, ज्ञानेश्वर कुमार के खिलाफ। इनकी मनमानी नहीं चलेगी, चोरी और सीनाजोरी नहीं चलेगी, लोकतंत्र को चलने वाला काम अब नहीं होगा। ये लोग बेईमान लोग हैं, इन लोगों ने चोरी नहीं बल्कि बहुत बड़ा पाप किया है।
11: सुप्रीम कोर्ट जाके क्या कहना,
10: देश के नेचर को जानते नहीं है। जब भी लोकतंत्र संविधान पे खतरा होगा तब तक देश की जनता सड़कों पे आती है और किसी माई के लाल में दम नहीं जो लोकतंत्र को खत्म करता।
12: यदि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटना है, एक ही रास्ता है, वो रास्ता ये है कि महाभियोग लाइएगा और पार्लियामेंट में उनको इम्पीच करिएगा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया याचिका सुनेंगे, आप SLP फाइल करिएगा, आप रिट पिटीशन फाइल करिएगा और आपके तरफ से कोई वकील जाएंगे केस लड़ने के लिए, या इस तरह से धरना प्रदर्शन करके जो है, आपने कभी देखा कि सुप्रीम कोर्ट जाता है, आप इसको क्या कहिएगा? ये पागल है और पागल से भी बड़ा पागल है उसके पीछे जितने अपोजिशन के लोग हैं उनको क्या है, उनका नेतृत्व खत्म हो गया है।
0: और अब बात सुप्रीम कोर्ट में दाखिल विपक्ष की अर्जी की करेंगे। SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल विपक्ष की अर्जी में 14 खामियां पाई गई हैं और इस वजह से आज उस पर सुनवाई की उम्मीद कम है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने अब तक सुनवाई के लिए वो याचिका लिस्ट नहीं की है। रजिस्ट्री ने याचिका में अलग अलग चुनाव आयुक्तों का नाम शामिल करने का मुद्दा उठाया और स्पष्टीकरण मांगा है कि आर्टिकल 32 के तहत रिट याचिका में निजी व्यक्तियों को प्रतिवादी क्यों बनाया गया। जानकारी के मुताबिक अर्जी में मल्लिकार्जुन खड़गे के परिचय पत्र की कॉपी साफ नहीं है। जिन दस्तावेजों को आधार बनाकर अर्जी दाखिल की गई उनकी कॉपी साफ नहीं है, साथ ही वकालतनामे पर कई याचिकाकर्ताओं के हस्ताक्षर ही नहीं पाए गए। संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, कुछ खामियां तो मैंने बता दी हैं, इसके अलावा और क्या खामियां हैं इस अर्जी में?
13: कुल 14 खामियां हैं। कई याचिकाओं में जो कोर्ट फीस होती है वो कोर्ट फीस ही जमा नहीं की गई है। कई ने अपने जो दस्तावेज अपनी पहचान के लिए जो दस्तावेज दिए, जैसे खड़गे जी का आधार कार्ड है वो इतना पुराना है और कि उसमें वो नजर ही नहीं आ रहे, पहचान ही नहीं की जा सकती, तस्दीक नहीं की जा सकती कि आधार कार्ड उन्हीं का है या किसी और का है। इसके साथ ही और भी छोटी मोटी जैसे पुराने ऑर्डर्स हैं जिनको चैलेंज किया है, उसकी कॉपियां उसमें लगाई जानी चाहिए, वो कॉपियां उसमें लगी हुई नहीं है। और भी बहुत सारी 14 खामियां हैं जिसमें एक दो हो तो आदमी याद रखे और गिनाए। 14 खामियां हैं, जिन 14 खामियों को जैसा आपने बताया कि आज सुनवाई की उम्मीद कम है, तो आज सुनवाई होगी ही नहीं क्योंकि अभी तक याचिका सूचीबद्ध नहीं है तो उसमें सुनवाई नहीं होगी। जब तक डिफेक्ट करेक्ट होगा उसके बाद ही इनको, अभी तो डायरी नंबर मिला है, फिर बाद में केस नंबर मिलेगा और केस नंबर मिलने के बाद ही फिर वो सुनवाई के लिए रजिस्टर होगा।
0: ठीक है,
13: चाहें तो ये लोग याचिका दायर होने के बाद ही चाहें तो ये उसमें अर्जेंसी का हवाला देके सुनवाई की अपील कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब ये मामला या तो बुधवार को सुनवाई को आएगा नहीं तो फिर शुक्रवार तक जाएगा।
0: ठीक है, एक लंबा प्रोसेस है क्योंकि कई खामियां बनी हुई हैं। आज एक और अहम सुनवाई होनी है, प्रदर्शन के जंतर मंतर बंद करने के खिलाफ एक अर्जी दाखिल की गई है, इसकी सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट करेगा। संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं दिल्ली हाई कोर्ट में, आज इस अर्जी पर सुनवाई होनी है। संजय, क्या तर्क दिए गए हैं कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन बंद ना किया जाए, इसके लिए क्या अर्जी में लिखा गया है?
13: देखिए ये मामला कई दिनों से चल रहा है, मतलब कई महीनों से सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित था। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान ये कहा भी था कि एक ऐसी जगह जो खुली जगह हो वहां पर उसको ईयर मार्क किया जाए आम प्रदर्शनों के लिए। तो कपिल सिब्बल जिस समय उस समय कोर्ट में पेश थे, उन्होंने चीफ जस्टिस से कहा कि वो जगह ऐसी होनी चाहिए जहां पर आने जाने की सुविधा हो, साथ ही वहां पर सुरक्षा हो, सफाई हो, पीने का पानी हो और रोशनी हो, ये तमाम चीजें बताई गई, खाने पीने का इंतजाम हो, ये तमाम चीजें बताई गई। और जब सरकार से जुड़े सूत्रों से हमने बात की तो उनका ये कहना था कि हमने तो पहले से प्रपोजल दे रखा है कि बुराड़ी में बहुत बड़ा मैदान है, वहां पर की जा सकती है, वहां पर प्रदर्शन किए जा सकते हैं। लेकिन जो याचिका, जो आपका सवाल था, अब उस पर आता हूं, जिस उसमें याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, हमें तो ऐसी जगह चाहिए जहां से हम अपनी आवाज सरकार तक पहुंचा सके, जहां तक हम सरकार के दरवाजे तक जा सके और उनको बोल सके। जो सरकार नहीं सुन रही है ऐसे सिर्फ अलग अलग जगह धरने प्रदर्शन, क्या वो बुराड़ी में और किसी दूसरे जगह में प्रदर्शन करने से सुनेगी? हम तो ऐसी जगह चाहते हैं जहां से हम तुरंत थोड़ा सा आगे बढ़े और सरकार के दरवाजे तक पहुंच जाएं। सरकार का दरवाजा वहां से बहुत दूर होगा, लिहाजा हमें वो जगह मंजूर नहीं।
0: बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो जहां एक तरफ यूपी कांग्रेस ऑफिस में हंगामे और मारपीट को लेकर कांग्रेस आलाकमान एक्शन में दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली चलो मार्च में अजय राय के शामिल होने पर सियासी हलचल तेज है। अजय राय की नाराजगी की खबरों के साथ साथ उनके पार्टी छोड़ने की चर्चा भी तेज है।
3: क्या अजय राय से कांग्रेस आला कमान नाराज? चलो दिल्ली मार्च में अजय राय को क्यों नहीं बुलाया गया? क्या दलित महिला नेता से गाली गलौज करना पड़ा महंगा? ये तस्वीरें राहुल गांधी और विपक्षी दलों के चलो दिल्ली मार्च की हैं। इस मार्च को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरने की कोई कसर नहीं छोड़ी। देश के अलग अलग राज्यों से कांग्रेस नेताओं को बुलाया गया और मार्च में शामिल किया गया, लेकिन यूपी कांग्रेस के जाने माने चेहरे और डंके की चोट पर अपनी ठसक पर राजनीति करने वाले अजय राय कहीं नहीं दिखे, जिसके बाद दिल्ली से लेकर यूपी तक सियासी गलियारों में अजय राय को लेकर चर्चा का बाजार गर्म हो चुका है। अजय राय से यूपी कांग्रेस की कमान लेकर आराधना मिश्रा को देने के बाद अजय राय के समर्थक काफी नाराज दिख रहे हैं, जिसकी बानगी लखनऊ में यूपी कांग्रेस मुख्यालय में दिखी, जहां अजय राय के समर्थकों को महिला पार्षद ममता चौधरी और उनके कार्यकर्ताओं के बीच कमेंट को लेकर जमकर मारपीट हुई। हालात तो ऐसे बन गए कि धक्का मुक्की और जूते भी चल गए। बताया जा रहा है कि अजय राय के समर्थकों ने कहा कि अध्यक्ष जी के लिए रास्ता दीजिए, जिस पर पार्षद ममता चौधरी ने पूछ लिया कौन अध्यक्ष। बस इसी बात पर समर्थक गुस्सा हो गए और ममता चौधरी और उनके कार्यकर्ताओं से भिड़ गए, जिसके बाद कांग्रेस की महिला पार्षद ममता चौधरी ने अजय राय के समर्थकों पर सुनियोजित तरीके से मारपीट करने, दलित विरोधी गालियां देने और मां बहन की गालियां देने का आरोप लगाया।
14: मैंने उनसे तो कुछ कहा नहीं, मेरी उनसे कोई टिप्पणी नहीं हुई, मैंने किस बात पे ये कहा होगा या मैं भीड़ इतनी थी इसलिए कहा, और उसके बाद वो पलट के आके पर्सनल कमेंट कर रहे हैं तो, और उसके बाद जूता चप्पल चला रहे हैं, तो ये बताइए कहाँ का न्याय है?
15: क्या कमेंट क्या कर रहे थे आप लोगों से?
14: इन्होंने कहा कि औकात में रहना अपनी औकात में, ठीक, जबकि मैंने मेरी नजर से नजर नहीं मिली उनसे, मैंने उनको वास्तव में नहीं देखा, अभी भी यही कहूंगी, ठीक। भीड़ इतनी थी, जो फुटेज ये लोग चला रहे उस भीड़ में अगर मैंने ये बोला है कि नहीं मुझे देखने का शौक नहीं है तो ये कौन सा बड़ा गुनाह हो गया?
3: अब कांग्रेस आला कमान भी इस मारपीट को लेकर एक्शन में नजर आ रहा है। यूपी के प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने 5 सदस्यों की एक जांच टीम बना दी है और इस टीम की कमान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजलाल खाबरी को दे दी गई है, जो 7 दिनों के अंदर आला कमान को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। लेकिन अजय राय को यूपी कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाने और यूपी कांग्रेस मुख्यालय में हुए विवाद के बाद अब अजय राय के नाराजगी की खबरें जंगल में आग की तरह फैल रही हैं। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को पूरा भरोसा है कि वो अजय राय को मना लेंगे।
16: अध्यक्ष जी हमारे बहुत, अजय राय जी बहुत ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, निश्चित रूप से उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, पार्टी को संगठन को बहुत मजबूत किया है।
17: आप मान मनोबल करते?
16: हाँ, तो ठीक है, नाराज हो जाता है कोई साथी तो उसे मनाया ही जाता है।
3: लखनऊ के यूपी कांग्रेस मुख्यालय में जो हुआ उसके बाद अब कई सवाल उठ रहे हैं। क्या अजय राय कांग्रेस छोड़ देंगे या फिर उन्हें कोई दूसरा पद देकर मना लिया जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन कांग्रेस नेता अगर खुद नहीं लड़ते रहेंगे तो चुनाव में कैसे लड़ेंगे? लखनऊ से कुमार अभिषेक और आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
0: कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। कुमार अभिषेक, अजय राय का नाराज होना, अजय राय का पार्टी छोड़ना, ये तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच क्या कोई बड़ा पद प्रदेश अध्यक्ष से भी बड़ा उनको दिया जा सकता है मनाने के तौर पर?
17: देखिए नेहा, निश्चित तौर पर नाराज है, बेहद नाराज है। नाराजगी इस कदर है कि कल जब राहुल गांधी ने पूरे देश भर से नेताओं को बुलाया तो भी अजय राय दिल्ली नहीं गए जब वो प्रोटेस्ट होना था, तो उनकी नाराजगी कैसे कम होगी। प्रदेश अध्यक्ष के तौर से पद से उन्हें हटा दिया गया है। अब ये कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें दूसरे राज्य का प्रभारी बनाया जाएगा। याद करिए, कुछ वक्त पहले अजय सिंह लल्लू जो थे उनको भी हटाया गया था, नाराज थे तो उन्हें दूसरे प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था। लेकिन क्या अजय राय इससे मानेंगे? देखिए, अजय राय की जड़ें तो पुरानी भाजपा में है, 3 बार के बीजेपी से विधायक रहे हैं, लेकिन बेहद करीबी है राहुल गांधी के। माना यह जा रहा है कि उनको हटाने के पीछे की सबसे बड़ी वजह जो रही वो गठबंधन को लेकर के उनका एक हट रहा, और कांग्रेस पार्टी को लगता है था, समाजवादी पार्टी को, कि इनके रहते शायद स्मूथ गठबंधन नहीं हो पाएगा। लेकिन जिस तरीके से उन्हें हटाया गया, उनको कोई मालूमात नहीं थे, उनको बताया नहीं गया और अचानक हटाया गया, इससे वो बेहद नाराज हैं। और बाकी जो पार्टी दफ्तर पर हुआ वो तो सबने देखा, उनकी नाराजगी से ज्यादा उनका गुस्सा दिखाई दिया है। और अभी जो जिस तरीके के कांड हुए उसके बाद एक अनुशासन समिति का गठन किया गया पूर्व अध्यक्ष के नेतृत्व में। क्या फैसला लेती है, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, ये कहना मुश्किल है। लेकिन ऐसे नाराज नेताओं को और नाराज करने की उम्मीद कम दिखाई देती है। मुझे लगता है उन्हें पेसिफाई करने, उन्हें मनाने की कोशिश होगी।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। बात यूपी की सियासत से जुड़ी एक और खबर की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के 54 वाले तंज पर राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी ने पलटवार किया। आगरा में स्वाभिमान सभा को संबोधित करते हुए जयंत ने अखिलेश पर निशाना साधा, कहा कि जयंत चौधरी ने, आइए आपको दिखाते हैं दरअसल क्या कुछ उन्होंने कहा।
18: ना सोच समझ के अगर बोलोगे, 24 घंटे व्यंग में रहोगे, बातों को गंभीरता से नहीं लोगे, रिश्तों को निभाना नहीं सीखोगे तो कौन खड़ा होगा साथ। बात कीमत की थी, जो लोग मुझे 54 भी नहीं मान रहे हैं, कह रहे हैं कि 54 थू, मैं उनको बताना चाहता हूं मैं तो 54 भी नहीं, ब्रज रज के एक चुटकी लायक भी मैं अपने आप को नहीं मानता हूं, ब्रज रज की अहमियत।
0: अब आपको सुनवाते हैं अखिलेश यादव का 54 वाला बयान, जिस पर अब जयंत भड़क गए।
19: जाने कहां कहां से आ गए थे गठबंधन वाले, हम लोगों ने 54 का रुपया बना दिया तब भी हमें छोड़ के चले गए। जाने कहां कहां से आ गए थे गठबंधन वाले, हम लोगों ने 54 का रुपया बना दिया तब भी हमें छोड़ के चले गए।
0: आशीष श्रीवास्तव में सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशीष, देखिए व्यंग वाली बात जो कही है जयंत ने, दरअसल उसी को लेकर ये घमासान भी चढ़ सकता है, क्योंकि लगातार 54 वाला स्टेटमेंट देना और जयंत को नीचा दिखाना ये अखिलेश ने किया है, बात बात में घुमाकर ही सही, लेकिन ये विवाद अब बढ़ गया है।
20: अब बिल्कुल नया, देखिए सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मामले पर राज्य की, यानी आगरा से जो स्वाभिमान रैली में कहा है वो रज की मिट्टी के बराबर भी नहीं, यानी कि अब मथुरा की भी एक एंट्री हो चुकी है, और यहाँ एक तरफ 54 से कंपेयर किया गया, कहा गया कि रुपया बन गए, वहीं पर अब रज की धूल मिट्टी के बराबर भी नहीं। अखिलेश यादव जिस तरीके से वो बातें करते हैं, जिस तरीके से वो व्यंग करते हैं, इस तरीके की उन्होंने सारी बातें कही, यानी कि वो साफ कर दिया है कि जो भी ये पूरा मामला है जिसमें लेकर अखिलेश यादव भले सीरियस ना हो, लेकिन ये तो जरूर है कि वो रज की धूल, बहुत बड़ी बात कह दी है जयंत चौधरी ने, और ये कनेक्शन कह सकते हैं आगरा मथुरा और पश्चिम उत्तर प्रदेश का है, जहां से राजनीति अब नया मोड़ ले रही है नया, और ये 54 से लेकर रज की धूल तक पहुंच गया है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। बात बेमौसम बारिश की, जिसकी वजह से पंजाब और हरियाणा की मंडियों में भारी मात्रा में अनाज का नुकसान हुआ है, देखिए ये रिपोर्ट।
21: पंजाब सरकार ने कहा किसान का दाना ना लेंगे, की पंजाब सरकार दाना ना लेगी?
22: पंजाब सरकार से किसानों की ये नाराजगी बद इंतजामी की वजह से है। बेमौसम बारिश में किसानों की मेहनत डूबी तो किसानों का गुस्सा सातवें आसमान तक पहुंच गया।
21: बोरियां रखो तुसी, ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ
1: ਜੀ।
21: ਹੁਣ ਬੋਰੀ ਕੌਣ ਤੁਲਾਏਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਾਲਾ ਵਾਲਾ ਤੁਲਾਏਗਾ, ਆਰਜੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਕੱਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲੀ ਮੰਡੀ ਪਹਿਲੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਯਾਰਡ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੰਡੀ ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੰਡੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਾਰਡ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਆਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਰੁਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਆਪ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇ ਨਾ।
22: पानी के ऊपर तैरते हुए धान को समेटने की ये नौबत नहीं आती अगर मंडी में पानी की निकासी का सही इंतजाम होता, लेकिन कुछ ही घंटों की बारिश में किसानों के सपने बह गए।
2: पर जो ये पानी की निकासी नहीं हुई ना, इसके लिए हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। 50 किलो माल है वो, देखो ये बोरी अपनी है, ये भी हाँ ये बोरी अपनी है, वो भी अपनी है, वो भी है, कुछ उधर साइड के पास पड़ा है जी। अब देख लो आपके सामने ही है, बहुत नुकसान।
4: पानी में
2: 6 महीने खेती की है जी, अब ये हाल है, अब क्या हाल है देखो।
22: पंजाब में बेमौसम की बारिश ने एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी की भी पोल खोल दी, जहां बेमौसम बारिश से बचाने तक के इंतजाम नहीं है। नतीजा खुले आसमान के नीचे रखी धान की बोरियां भीग गईं। आपको धान की बोरियों पर दिख रहा ये तिरपाल भी किसानों ने लगाया है, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि किसान अपनी फसल पूरी तरह से बचाने में नाकाम रहे।
23: पता ही है बहुत हालत खराब है, ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਤਰਪਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਉੱਚੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਢੇਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਉੱਚੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੜਨਾ ਹੀ ਵੜਨਾ ਹੈ।
22: ਕਿਸਾਨੋਂ ਕਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਬਚ ਸਕਦਾ ਥਾ ਅਗਰ ਤੈਅ ਵਕਤ ਪਰ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਧਾਨ ਖਰੀਦ ਹੋ ਜਾਤੀ। ਕਿਸਾਨੋਂ ਕਾ ਇਹ ਵੀ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਧਾਨ ਕੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕਟੌਤੀ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 3 ਸੇ 5 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਧਾਨ ਕਾਟਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੋ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਨਾ ਪੜ ਰਹਾ ਹੈ।
23: ਗੁਲਵਾਨ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤਰਪਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜੀ।
22: मंडी में किसानों की मेहनत पानी में जाने के सवाल पर खन्ना मार्केट कमेटी के सचिव कमलदीप सिंह मान रहे हैं कि उन्होंने तो बारिश से फसल को बचाने के निर्देश पहले ही दे दिए थे।
24: मेरे वालों आड़तियों मुलाजमान नूं ते अपने सिविल विंग के अधिकारियों लिखती ते जवानी तौर पर पहले ही हदायतां कीतियां हुई सन, उन्होंने वालों यह प्रबंध पुख्ता तौर पर किए हुए सन।
22: पंजाब जैसा हाल हरियाणा में भी दिखा, अंबाला में बारिश का पानी अनाज मंडी में भर गया, धान की बोरियां पानी में डूब गई, किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। अंबाला में किसानों का आरोप है कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण उन्हें नुकसान हुआ है।
25: रात सारी रात नहीं बैठे रहे, जगह नहीं थी, फिर आरती ने जगह बनवाई, फिर दोपहरा बरसात है 10 बजे
26: भिजगी,
25: हटका सारी लेबर पड़ेगी दोबारा।
27: नुकसान
25: तो काफी है।
22: किसान कह रहे हैं कि मंडी में सरकारी लापरवाही ने बर्बाद कर दिया, वहीं मंडी बोर्ड की तरफ से अब नालियां साफ करवाई जा रही हैं।
28: मंडी में जल भराव है, उसमें हमने कर्मचारी लगाए हुए हैं, जो भी नालियों में कहीं जीरी का कबाड़ वगैरह फंसा हुआ था उसको निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि किसान को की जीरी ना गिली हो और जो माल बोरियों में पैक है वो भी गिला ना।
22: इसे कहते हैं सांप निकल जाने के बाद लाठी पीटना। पंजाब और हरियाणा में किसान परेशान हैं, बारिश में उनका धान डूब गया और जिनकी जिम्मेदारी है वो अब आगे सब ठीक करने का दावा करते फिर रहे हैं। सवाल ये है कि किसान अब इस दावे का क्या करे।
0: तो बिना ब्रेक की खबरों का सिलसिला लगातार 9 बजे में जारी रहेगा। वक्त हो गया हेडलाइंस का।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस।
29: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

पहली बार विपक्षी काफिले के साथ सुप्रीम कोर्ट मार्च करने के बाद राहुल गांधी की नई रणनीति। आज इंडिया गठबंधन के नेताओं को चाय पर बुलाया, दोपहर में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी प्लान। 11 याचिकाकर्ताओं के साथ ईसीआई के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका तक सुनवाई के लिए लिस्ट नहीं, रजिस्ट्री ने बताई 14 खामियां, गलती सुधार के लिए 90 दिन का वक्त। 2026-27 में तेजी से बढ़ सकती है भारत की अर्थव्यवस्था, जीडीपी ग्रोथ को लेकर आईएमएफ का बड़ा अनुमान, 7% की हो सकती है रफ्तार। वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद हिंदुस्तान रहेगा सबसे आगे। यूपी कांग्रेस मुख्यालय में हुए जूतम पैजार की जांच करेगी 5 सदस्यीय कमेटी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष होंगे समिति के प्रमुख। अजय राय पर महिला पार्षद ने लगाए हैं गाली गलौच और मारपीट के आरोप। लखनऊ के कारोबारी की डेथ मिस्ट्री में नया मोड़, शिवम गुप्ता की मौत मामले में फरार 11 पार्टनर और मॉडल श्रद्धा दुबे की तलाश, कई हाई प्रोफाइल लोगों से हैं कनेक्शन।

0: दिल्ली के रणहौला में सरेआम फायरिंग, 11 अक्टूबर की घटना, हत्या का खौफनाक सीसीटीवी फुटेज आया सामने। दो बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम, आपसी रंजिश के तहत हत्या की आशंका, केस दर्ज कर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। बदायूं के गन हाउस में धमाके के बाद लगी आग, 3 कर्मचारी झुलसे, 1 की हालत गंभीर। कानपुर में रेस्टोरेंट में उनका न मिलने पर दरोगा सिपाही समेत 4 लोगों ने जमकर हंगामा किया, कर्मचारियों के साथ मारपीट, दरोगा सिपाही सस्पेंड। मुजफ्फरनगर में पैसे को लेकर पति और पत्नी के बीच विवाद, सड़क पर पत्नी और बेटी ने मिलकर व्यक्ति को पीटा। बागपत में एक महिला ने बच्ची संग की हैवानियत, मासूम के बाल नोचे और बरसाए थप्पड़, मासूम के साथ मारपीट का वीडियो आया सामने। श्रीगंगानगर में कार बाइक की भीषण टक्कर, बाइक सवार की मौत, कार पलटने से 4 लोग घायल। बांका में 2 बाइक की जोरदार भिड़ंत, 2 युवकों की मौत, हादसे में आरजेडी नेता की भी गई जान। टोंक में आइसक्रीम खाने आए युवक पर बदमाशों का हमला, घेर कर की मारपीट, चाकू से किया वार। विजयवाड़ा में इलेक्ट्रिक कार में लगी भीषण आग, हादसे में 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत। दमोह जिला अस्पताल में महिला से सफाई कराने का आरोप, नर्सिंग स्टाफ के कहने पर स्टूल और फर्श साफ करती दिखी महिला। उदयपुर में तेज रफ्तार ट्रेन ने बुजुर्ग को कुचला, हादसे में मौत, ड्राइवर मौके से फरार। गाजियाबाद में शहीद नगर में निर्माणाधीन इमारत गिरी, 4 लोगों को बचाया गया, एसडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन जारी। गाजियाबाद युवती से मिलने आए मुस्लिम युवक की पिटाई, लव जिहाद मामले में हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं का मारपीट का आरोप। लखनऊ के एक होटल की 10वीं मंजिल से गिरकर युवती की संदिग्ध हालत में मौत, कमरे में मौजूद साथी फरार। राजसमंद में बेकाबू हुई थार, डिवाइडर तोड़कर सड़क किनारे पहुंची, हाईवे के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ हादसा। भुवनेश्वर में विवाद के बाद चालक ने पैदल चढ़े लोगों पर चढ़ाई कार, 3 घायल, हत्या के प्रयास में गिरफ्तार। राजकोट में बेकाबू कार ने पानी की डिलीवरी कर रहे युवक को मारी टक्कर, हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। रेवाड़ी में ट्रॉमा सेंटर के सामने निजी बस से स्कूटी सवार महिला ने कुचला, मौके पर दर्दनाक मौत। पुणे में एफडी अधिकारी बनकर किराना दुकानदार से 5 लाख रुपए की वसूली मांगने का आरोप, अन्य दुकानदारों को भी निशाना बनाए जाने की आशंका। झांसी में दुर्गा पंडाल के पास जमकर मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अलवर में जमीन विवाद में पूर्व सैनिक की मौत से बवाल, पीट पीट कर हत्या का आरोप, न्याय की मांग को लेकर लोगों ने सड़क पर लगाया जाम। नवादा में रेलवे ट्रैक पर रील बनाना महिला को पड़ा भारी, पहचान उजागर होने के बाद महिला ने स्वयं रेलवे पुलिस के सामने किया सरेंडर। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सौरभ दास और आशुतोष रांका को हिरासत में ले लिया गया है। इन दोनों को पहले भी हिरासत में लेकर छोड़ दिया गया था, एक बार फिर से पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिसमें आशुतोष रांका और सौरभ दास शामिल हैं। आशुतोष रांका को हिरासत में लिया गया है, पहले भी इन्हें हिरासत में लिया गया था और इसको लेकर दिल्ली पुलिस की आलोचना भी हुई थी, लेकिन एक बार फिर से दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। किसी भी गड़बड़ी की आशंका को रोकने के मद्देनजर इन दोनों सीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। ये देखिए हिरासत में लेने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सौरभ दास को भी हिरासत में ले लिया गया है। भारत माता की जय के नारे और हाथ में तिरंगा लिए हुए ये लोग सड़कों पर निकले थे, उसके बाद पुलिस बल की मौजूदगी भी आप वहां पर देख सकते हैं। हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं और सबसे पहले आपको सुना देते हैं अभिजीत दीपके क्या कुछ कह रहे हैं।
1: तो अभी उन्होंने कुछ दिन पहले ये भी कहा कि लॉ एंड ऑर्डर कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर उन्होंने क्या एक्शन लिया, कुछ भी एक्शन नहीं लिया है। बंगाल में हमने देखा वोट डिलीट होने के बाद क्या बोले कि कोई बात नहीं, अगर अभी वोट नहीं कर सकते तो बाद में वोट कर देना। क्या सुप्रीम कोर्ट यही बात नरेंद्र मोदी से कहेंगे कि इस बार इलेक्शन मत लड़ना, अगली बार इलेक्शन लड़ लो? अगर नहीं कह सकते तो वोटर्स को आप किस हिसाब से कह रहे हो? और कल जो इंडिया ब्लॉक का दिल्ली में विरोध प्रदर्शन हुआ, उसकी मैं इंडिया ब्लॉक को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। काफी बड़ा प्रोटेस्ट था और बहुत जरूरी प्रोटेस्ट था, जरूरी है सारे देश को इकट्ठा होकर ऐसे प्रोटेस्ट करने की, और खास करके इंडिया ब्लॉक को, क्योंकि वो अपोजिशन में है और आगे भी ऐसे ही प्रोटेस्ट चलते रहेंगे। देश भर में जब तक ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं होता इसकी हम उम्मीद है।
0: हिमांशु, क्या डिटेल्स मिल रही हैं, कहां से और क्यों हिरासत में लिया गया इन दोनों को?
2: देखिए, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट पूरी तरीके से बंद है और इस दौरान जानकारी मिली कि अपने कुछ समर्थकों के साथ, जैसा कि पहले भी लगातार सीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे, तो अचानक से जो बैक साइड है जंतर मंतर का, वहां से वो एंट्री करते हैं और एंट्री करके कुछ समर्थकों के साथ जंतर मंतर पहुंचते हैं। और उसके पास जब वो पहुंचते हैं तो चूंकि पुलिस, आप देखिए इस वक्त भी आप देखिए पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर की तस्वीरें कैसी हैं, तो हर जगह पर पुलिस वहां पर मौजूद थी। और जैसे ही सौरभ दास पहुंचते हैं, नारेबाजी शुरू करते हैं, उनको तुरंत हिरासत में लिया जाता है। बसें तैनात हैं, आप देखिए इस पूरे इलाके में सिक्योरिटी में कहीं कोई कमी नहीं आई है, तो बसें तैनात थी और फौरन उनको डिटेन करने के बाद जो बसों में रखा गया और इसी रास्ते से अभी कुछ देर पहले उन लोगों को लेके जाया गया है। तो डिटेन करने के बाद, चूंकि देखिए 10 अक्टूबर को पुलिस ने कई सारे डिटेंशन सेंटर भी बनाए थे, तो डिटेन करने के तुरंत बाद उन सभी लोगों को लेके जाया गया है। और लगातार पुलिस इस पूरे इलाके में, नई दिल्ली इलाके में खासतौर से अगर मैं कहूं तो यही आपको तस्वीर ज्यादातर जगह नजर आएगी। बैरिकेड सड़क पर किनारे हैं, तो जरूरत पड़ी अगर प्रोटेस्ट अचानक होता है तो तुरंत उसको हैंडल करने के लिए प्रोटेस्ट के जो प्रदर्शनकारी पहुंचते उनको डिटेन करने की पूरे इंतजाम पुलिस ने किए हुए हैं। सौरभ दास को, उनके तमाम समर्थकों को डिटेन किया गया है और डिटेन करने के बाद पुलिस उन लोगों को लेकर के गई है। इस पूरे मामले में हम आपको बताएं तो कल जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें 2 FIR की जानकारी मिली है। अब आगे पुलिस किस तरीके का एक्शन लेती है, क्योंकि पुलिस ने क्लियर किया था कि इस धारा 163 तो लागू ही है, अगर कोई भी प्रोटेस्ट करेगा इस तरीके की तो उसके खिलाफ लीगल कार्रवाई होगी। अगर आप प्रोटेस्ट करते हैं, रोड ब्लॉक करते हैं, पुलिस के काम में बाधा पहुंचाते हैं, ऐसा कोई भी अगर आप काम करते हैं तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले में पुलिस आगे किस तरीके की कार्रवाई करती है। और पुलिस लगातार नजर बनाए रखी, आप देखिए ये तस्वीरें
0: नजर बनाए रखिए। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ, देखते रहिए आज तक।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: How's the hostel? Settled?
3: Yes, Mom, really nice.
2: कोई आ रहा है क्या?
4: तुम मॉम डैड वाली ड्यूटीज तो निभा ली, अब फिर से थोड़ा रोमांस है।
2: मयंक, फॉर रियल?
4: वन कैरेट फॉर माय वन ट्रू लव। नेचुरल डायमंड रियल लव सॉलिटेयर्स टू रीइग्नाइट योर न्यू सीजन ऑफ लव।
5: Maddie, I need to open a savings account.
6: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो।
5: स्मॉल बैंक?
6: स्मॉल Privilege savings account, Garima savings account, Maxima business, Edge current account, business, Maxima business, Privilege, RDF, there's nothing small about them.
5: Okay.
6: Oh, Jeevan, nothing small about us.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार। सर एक बार दो ठुमका लगाने बस।
3: मेरे पास एक आइडिया है।
2: क्या?
3: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है।
4: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता,
5: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
6: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
7: कौन सी बनानी है?

0: What I can be.
1: Based on your notes, there are some great talking points for your interview.
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: माँ के पैरों की धूल माथे पर ले मैं परिंदा खुले आसमान जहाँ जीत रू सारा।
5: इतने पेमेंट ऐप्स पर सेफ कौन सा?
6: तो स्विच टू बीम, एकदम सेफ और भरोसेमंद। रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं। पाओ 40 रुपए का कैशबैक 40 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर। भीम ऐप से करो पे।
7: इट्स द माही वे।
8: बच्चों के लिए अलग टीवी रूम बना सकते हैं।
9: कैसा लगा आप दोनों को अपना ड्रीम होम?
10: आई लव इट, एब्सोल्युटली अमेजिंग। तुम एक काम करो, तुम मिठाई ऑर्डर कर लो।
11: मिठाई से पहले कुछ और हो जाए
10: क्या?
11: इनकी राय।
12: नई सोच की नींव में हम, हर नई उम्मीद में हम। गैलेट निर्माण का रियल हीरो।
13: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
14: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
13: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
15: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।

0: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
1: मेरी सिस्टर कहती है मुझे कि प्लान करना चाहिए। तो मैंने सिस्टर से कहा, तुम बात समझ नहीं रही हो, ये तांडव है, ये शिव का डांस है, इसमें कोई प्लानिंग नहीं होती। आज हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, कल कुछ और होगा, आइडिया वो ऊपर लिखा हुआ है, प्लान की कोई जरूरत नहीं है। ये डांस चल रहा है, ये शिव जी का डांस चल रहा है, इसमें शिव की बारात में कोई भी आ सकता है। जिस मैंने बोला गो बैक, देखिए ये शिव की बारात है, इसमें किसी को भी आना आ सकता है, कोई भी जीव आ सकता है, हम रोकेंगे नहीं।
2: इसलिए मैं बड़ी तकलीफ के साथ ही कह रहा हूं कि कांग्रेस अब देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ हाथ मिला रही है। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व पूरी तरह दिशाहीन है। अभी कह रहे थे कांग्रेस तो शिवजी की बारात है, ये राम का विरोध करने वाले शिवजी की बारात की बात कर रहे हैं, ये शिवजी की बारात नहीं है। अराजकता फैलाने वाले हुड़दंगियों की जमात है जो सड़कों पे अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही है।
3: यो राहुल गांधी जी कहने के लिए तो नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन एक ऐसे नेता हैं जिनको न तथ्यों का पता है, न तर्क का पता है, न नियम कायदे कानून का पता है। उन्हें तो बस इतना पता है कि अराजकता फैलानी कैसे है, अस्थिरता लानी कैसे है, संवैधानिक पदों को और संस्थाओं को नीचे दिखाना कैसे है, और दुनिया भर में भारत का नाम बदनाम कैसे करना है, छवि को कमजोर कैसे करना है। ये दुर्भाग्य है देश को कभी इतना अस्थिर, अराजक, अगंभीर नेता प्रतिपक्ष के तमाशे और नखरे नहीं देखने पड़े। 99 चुनाव हारने तक राहुल गांधी जी हर सीजन में ये देखते हैं कि किसके ऊपर आरोप लगाना है, ठीकरा कहां फोड़ना है। कभी इलेक्शन कमीशन, कभी ईवीएम, कभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो कभी कुछ और। और अब तो हालत ये हो गई है कि सड़क छाप भाषा का प्रयोग और निराधार आरोप लगाने का काम श्रीमान राहुल गांधी जी कर रहे हैं। राहुल जी, देश को शोर नहीं सच चाहिए, आरोप नहीं प्रमाण चाहिए, राजनीतिक बयान नहीं स्पष्ट जवाब चाहिए।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: ट्रेन में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें आज 10 बजे आज सुबह में आपको दिखाएंगे लखनऊ की कातिल हसीना।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबा केसरी।
1: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार सर एक बार दो तीन थमका लगाने बस।
2: मेरे पास एक आइडिया है।
1: क्या?
2: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है।
3: एक रॉकस्टार होता है अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता
4: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
5: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
3: कौन सी बनानी है?
6: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
7: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
8: बच्चों के लिए अलग टीवी रूम बना सकते हैं।
9: कैसा लगा आप दोनों को अपना ड्रीम होम?
10: आई लव इट, एब्सोल्युटली अमेजिंग। तुम एक काम करो, तुम मिठाई ऑर्डर कर लो।
11: मिठाई से पहले कुछ और हो जाए
10: क्या?
11: इनकी राय।
12: नई सोच की नींव में हम, हर नई उम्मीद में हम। गैलेट निर्माण का रियल हीरो।
13: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
14: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
13: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
15: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
16: आप महामहिम राष्ट्रपति जी के पास गए, वहां पर भी आपको कहा गया कि शिकायत के साथ सबूत दीजिए, तो आप बगले झांकने लगे, भाग गए, चुप्पी साध ली। और सुप्रीम कोर्ट ने तो श्रीमान राहुल गांधी जी से साफ साफ कह दिया कि कोर्ट को आप अपनी राजनीति का रणक्षेत्र नहीं बना सकते। इनका फंडा बहुत क्लियर है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का, राज नहीं तो अराजकता फैला दो।
17: सत्ता में रहते हुए जिन्होंने देश को लगातार लूटा है वह चोरी की बात कर रहे हैं। बार बार बार बार जिनको जनता ने हराया है उनको तो आत्मचिंतन करना चाहिए, लेकिन हार हार के इतने कुंठित हो गए हैं कि अब धमकी देने पर उतर आए हैं, अमर्यादित आचरण कर रहे हैं। लोकतंत्र में विरोध की भी मर्यादा होती है और विशेषकर जब कोई नेता प्रतिपक्ष जैसे पद पर हो, हार की खींच कुंठा में बदल रही है और संतुलन बिगड़ रहा है, हर किसी को धमकियां दी जा रही है।
18: अच्छा, आजकल हमें इंफॉर्मेशन सब जगह से मिल रही है। ज्ञानेश कुमार जी, हम जानते हैं आपकी क्या हालत है, हम जानते हैं कि आप रात को सो नहीं पाते हो, और आप घबराइए मत, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। आप, मैं आपको डायरेक्टली कह रहा हूं, आप बचोगे नहीं एज ए इलेक्शन कमिश्नर, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो हो रहा है, ये लाखों लोग जो हैं, ये आपके बारे में, आपके बिहेवियर के बारे में सवाल पूछ रहे हैं, और ये रुकेंगे नहीं। रुकेंगे क्यों नहीं? क्योंकि आपके सामने भी लोग हैं और उन तक पहुंचने के लिए हमें आपको हटाना है।
17: एक के बाद एक चुनाव हारना और उसकी खींच आंदोलन करके सड़क पे निकालना, ये कांग्रेस की नियति बन गई है, और चुनाव की हार का दोष भी कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं पर मढ़ने का पाप करती है। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस के मित्रों से, कांग्रेस की हार का कारण चुनाव आयोग नहीं है, कांग्रेस की हार का कारण स्वयं कांग्रेस का विचार शून्य नेतृत्व है।

शेयर बाजार में पैसा लगाने वालों के लिए विदेशी नागरिकों की हर चाल काफी मायने रखती है। ये निवेशक जब बाजार में पैसा लगाते हैं तो खरीदारी को सपोर्ट मिलता है, लेकिन जब लगातार बिकवाली करते हैं तो बाजार पर दबाव बढ़ जाता है। भारतीय शेयर बाजार में इन दिनों कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर के शुरुआती 6 दिनों में विदेशी नागरिकों ने भारतीय शेयर बाजार से 44,166 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। इसके साथ ही 2026 में उनकी कुल बिकवाली 3,00,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गई है। NSDL के आंकड़ों के मुताबिक 2026 में अब तक विदेशी निवेशकों ने शेयर बाजार से 3.04 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। 2025 में ये निकासी 1.66 लाख करोड़ रुपए थी। वहीं सितंबर 2026 में विदेशी निवेशकों ने 35,861 करोड़ रुपए के शेयर बेचे थे, जबकि जुलाई में 20,200 करोड़ और अगस्त में 29,631 करोड़ रुपए का निवेश किया था। यानी जुलाई और अगस्त में खरीदारी करने वाले विदेशी निवेशक सितंबर से फिर बिकवाली की तरफ मुड़ गए हैं। भारतीय बाजार से इतनी बड़ी रकम निकालने की एक बड़ी वजह भारत के बाहर निवेश के दूसरे विकल्पों का आकर्षक होना है। महंगा कच्चा तेल, मजबूत अमेरिकी डॉलर और अमेरिकी सरकारी बॉन्ड पर ऊंचा रिटर्न विदेशी निवेशकों को भारतीय शेयरों से पैसा निकालने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। दरअसल अमेरिका के 10 साल के सरकारी बॉन्ड पर 5.2% से ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। वहीं महंगे कच्चे तेल से भारतीय अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ने की आशंका है। उधर एशियाई बाजारों में AI कंपनियों के शेयरों की तेजी भी विदेशी निवेशकों को आकर्षित कर रही है। विदेशी निवेशकों का पैसा निकालना अपने आप में इस बात का संकेत नहीं है कि भारतीय बाजार में कोई बड़ी कमजोरी आ गई है। दुनिया भर में निवेशक बेहतर रिटर्न के मौके तलाश रहे हैं। हालांकि विदेशी निवेशकों की बिकवाली के बीच भारतीय बाजार को घरेलू निवेशकों से सहारा मिल रहा है। फिलहाल माना जा रहा है कि विदेशी निवेशकों की वापसी के लिए कच्चे तेल की कीमतों में नरमी खास रोल निभाएगी। वहीं अमेरिकी बॉन्ड पर रिटर्न घटने से भारतीय शेयरों की तरफ पैसा लौटने की संभावना है। भारतीय कंपनियों के शेयर आकर्षक कीमतों पर मिलने से भी विदेशी निवेश बढ़ सकता है। विदेशी निवेशकों की बिकवाली और भारत में गिरावट के बीच सीधा रिश्ता होने के बावजूद हर गिरावट की वजह केवल विदेशी निवेशक नहीं होते। जानकारों के मुताबिक निवेशकों को बाजार की चाल समझने के लिए कंपनियों के नतीजे, शेयर की कीमत और वैश्विक हालात पर भी नजर रखनी चाहिए। आदित्य राणा, आज तक।

जंतर मंतर जा रहे सीजेपी के सौरभ दास और आशुतोष रांका को दिल्ली पुलिस ने फिर हिरासत में लिया। रोक के बावजूद अपने साथियों के साथ पीछे की तरफ से जंतर मंतर में घुसने की कोशिश। पहली बार विपक्षी काफिले के साथ सुप्रीम कोर्ट मार्च करने के बाद राहुल गांधी की नई रणनीति। आज इंडिया गठबंधन के नेताओं को चाय पर बुलाया, दोपहर में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी प्लान। 11 याचिकाकर्ताओं के साथ ईसीआई के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका अब तक सुनवाई के लिए लिस्ट नहीं। रजिस्ट्री ने बताई 14 खामियां, गलती सुधार के लिए 90 दिन का वक्त। 2026-27 में तेजी से बढ़ सकती है भारत की अर्थव्यवस्था। जीडीपी ग्रोथ को लेकर आईएमएफ का बड़ा अनुमान 7% की हो सकती है रफ्तार। वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद हिंदुस्तान रहेगा सबसे आगे। लखनऊ के कारोबारी की डेथ मिस्ट्री में नया मोड़। शिवम गुप्ता की मौत मामले में फरार लिव इन पार्टनर और मॉडल श्रद्धा दुबे की तलाश। कई हाई

0: आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पाबंदी के बावजूद कॉकरोच जनता पार्टी के नेता आशुतोष रंका, सौरभ दास और अजिंक्य शिंदे ने जंतर मंतर जाने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने सीजीपी के नेताओं को हिरासत में ले लिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। हमारे सहयोगी अरविंद ओझा हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आइए सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अरविंद, क्या पता चल रहा है इस हिरासत के बारे में?
1: देखिए, ये बहुत हैरानी की भी बात है। और देखिए, इतनी सुरक्षा चाक चौबंद के बावजूद भी जो सौरभ दास, आशुतोष रंका और उनके समर्थक, वो जंतर मंतर तक पहुंचने में कामयाब रहे। दिल्ली पुलिस ने इन सभी को हिरासत में लिया है, जिसमें सौरभ दास, आशुतोष रंका और अजिंक्य, इन तीनों को और कुछ जो समर्थक थे उनको दिल्ली पुलिस ने अब से कुछ देर पहले हिरासत में ले लिया है। सीजेपी ने एक वीडियो भी जारी किया है और जो दिल्ली पुलिस है उनके मुताबिक जंतर मंतर के पास जेडीयू पार्टी का एक दफ्तर है, उसके परिसर से ये अंदर जाते हुए उसके बाद गेट कूदकर जंतर मंतर के साइट पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद इन लोगों ने नारेबाजी की। हालांकि पुलिस की भारी टीम वहां पर तैनात है और जैसे ही इन सबको देखा गया, इन सभी को हिरासत में लिया गया और अब दिल्ली पुलिस इनको बस में बिठाकर जो एक साइट है जहां पर सभी प्रोटेस्टर को रखा जाता है वहां पर लेकर गई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि तकरीबन एक दिन पहले ही सौरभ दास पार्लियामेंट थाने पहुंचा था और बाकी और लोग भी पहुंचे थे और दिल्ली पुलिस से बातचीत की थी, इंटीमेशन दिया था कि हम प्रोटेस्ट करेंगे जंतर मंतर, लेकिन जंतर मंतर पर अब जो प्रोटेस्ट है वो नहीं हो सकता। तीन अलग प्रोटेस्ट के लिए जो साइट नोटिफाइड किया गया है, लेकिन आज सुबह सीजेपी के जो सौरभ दास हैं, आशुतोष रंका और कुछ नेता और कुछ समर्थक, वो जंतर मंतर पहुंचने में कामयाब रहे, हालांकि कम थी।
0: अरविंद, सवाल ये उठता है, जैसे कि आप कह रहे हैं 20,000 तो वहां अभी सुरक्षा कर्मी तैनात है दिल्ली में, एक महीने तक उन्हें और रखा जाएगा, इस सब के बावजूद सीजेपी के जो नेता हैं वो आसपास का, मेरे ख्याल से जेडीयू का जो दफ्तर है सात जंतर मंतर, उसके अंदर घुस करके और पीछे से उसके दरवाजे से कूद करके, गेट से कूद कर वहां पहुंच गए। तो क्या दिल्ली पुलिस स्ट्रेटेजाइज नहीं कर पा रही है कि किस तरीके से इन्हें रोकना है?
1: देखिए, एक तरह का ये फ्लैश प्रोटेस्ट है अचानक से, और ये बीते अगर आप देखें 4 से 5 दिन में हमने ग्राउंड पर देखा कि 10-15 की संख्या में अलग अलग जगहों से जो प्रोटेस्टर हैं वो आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, हालांकि पुलिस उनको तुरंत हिरासत में लेती है। अगर इसकी बात की जाए जो ये सौरभ दास है, आशुतोष रंका, तो ये जो जेडीयू का दफ्तर है वो परिसर है बड़ा सा, अमूमन वो खाली सा रहता है और वहां से चुपके से ये अंदर दाखिल होते हैं, गेट है, गेट के अंदर से गेट को कूदते हैं, उसके बाद जंतर मंतर की तरफ चले जाते हैं। हालांकि पुलिस वहां पर मौजूद थी, पुलिस ने हिरासत में लिया। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस मामले में FIR भी दर्ज हो सकती है इन सब के खिलाफ। अब फिलहाल इंक्वायरी की जा रही है, जो जेडीयू का दफ्तर है उसके आसपास भी अब पुलिस की टीम तैनात कर दी गई है, लेकिन ये एक तरह का फ्लैश प्रोटेस्ट है और बीते 4 से 5 दिन में ये देखने को मिला है। फिलहाल सौरभ दास, आशुतोष रंका और सभी जो प्रोटेस्टर हैं उनकी संख्या 10 से 15 रही होगी, उनको हिरासत में लिया गया है और उनको पुलिस टीम जंतर मंतर के पास से ले गई है।
0: जी, आप हमारे साथ बने रहे, आइए एक बार सुन लेते हैं कि अभिजीत दिबके क्या कह रहे हैं।
2: जंतर को डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट से हटा दिया है। नरेंद्र मोदी को लगता है कि जंतर मंतर को डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट नहीं रखेंगे तो प्रोटेस्ट रुक जाएंगे, ऐसा नहीं है। जंतर मंतर अब पूरे देश में बनेगा। नरेंद्र मोदी को प्रॉब्लम जंतर मंतर एक लोकेशन से नहीं है, उनको प्रॉब्लम है प्रोटेस्ट से, ये हमें समझना पड़ेगा। एक डिक्टेटर को हमेशा प्रॉब्लम होती है प्रोटेस्ट से, द आइडिया ऑफ प्रोटेस्ट, उससे नरेंद्र मोदी को दिक्कत है। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि जंतर मंतर को डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट से हटाकर वो आंदोलन को खत्म कर सकते हैं, इस गलतफहमी में मत रहना। अब पूरे देश में आंदोलन होगा, पूरे दिल्ली भर में आंदोलन होगा, तुम्हारे इन सारी हरकतों से देश अब डरने वाला नहीं है।
0: चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे सहयोगी अरविंद ओझा का। अरविंद, अभिजीत की बात से एक बात तो साफ है कि वो नहीं चाहते कि जंतर मंतर, जिसे कि हटाया गया है, डी नोटिफाई कर दिया गया है धंडा प्रदर्शन के एक स्पॉट के तौर पर, वो हो। और ये जो आज किया गया है सुबह, इससे साफ है कि वो जंतर मंतर, वो और कॉकरोच जनता पार्टी के लोग जंतर मंतर को छोड़ने को तैयार नहीं है।
1: बिल्कुल, और देखिए अगर प्रोटेस्ट की बात करें तो कांग्रेस ने कल बड़ा प्रोटेस्ट किया, काफी बड़ा, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत तमाम बड़े नेता थे और बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हुआ, उसमें ठीक ठाक भीड़ भी जमा हो गई थी। उसके बाद आज सीजेपी की टीम जो वो पहुंची, सौरभ दास, आशुतोष रंका, तो अलग अलग पार्टियों का प्रोटेस्ट भी जारी है। सामूहिक के प्रोटेस्ट नहीं है, एक तरफ इंडी गठबंधन है वो प्रोटेस्ट कर रही है, तो दूसरी तरफ दूसरे दिन सीजेपी ने भी अपनी मौजूदगी दिखाने की कोशिश की। हालांकि 10 से 15 की संख्या थी, जिसमें सौरभ दास, आशुतोष रंका और कुछ और अन्य नेता प्रोटेस्टर वो पहुंचे चुपके से। फ्लैश प्रोटेस्ट की को इस आप कह सकते हैं, और जेडीयू का जो दफ्तर परिसर है वहां से पहुंचे और गेट से कूद करके फिर नारेबाजी की। हालांकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा कम थी और पुलिस ने उनको
0: जी
1: तुरंत
0: अरविंद
1: हिरासत में लिया और बस में
0: जी
1: बिठाकर
0: बिल्कुल, लेकिन पहुंच तो वो गए ही और उसका वीडियो भी उन्होंने ट्विटर पर साझा कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुनावी गड़बड़ी के आरोपों और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी मोर्चाबंदी तेज होती जा रही है। आज शाम इंडिया ब्लॉक के सांसदों की राहुल गांधी के घर पर बैठक होनी है, जिसमें चुनाव आयोग के खिलाफ आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। वहीं एक दिन पहले ही इंडिया ब्लॉक के नेताओं की ओर से एसआईआर पर तमाम सवाल उठाए हुए सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका है उसे लगा दिया गया है। इसके साथ आपको बताएंगे कि आखिर विपक्ष के हमलों के बीच बीजेपी कैसे पलटवार कर रही है। साथ ही ये भी आपको बताएंगे कि आखिर केरल कांग्रेस की सीजीआई को लेकर किया गया एक पोस्ट आखिर क्यों सियासी रंग ले रहा है। अब आपको बता दें, इस वक्त बड़ी खबर जो आ रही है, दिल्ली में हुए मार्च फॉर डेमोक्रेसी के बाद अब विपक्षी नेता आगे की रणनीति पर मंथन करने वाले हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज अपने सरकारी आवास पर इंडिया ब्लॉक के सांसदों, सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों और छात्र संगठनों को हाई टी यानी कि एक चाय पार्टी के लिए बुलाया है जो शाम 4 बजे होगी। इससे पहले विपक्षी गठबंधन के नेता संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। राहुल गांधी की ओर से यह बैठक ऐसे वक्त में बुलाई गई है जब विपक्षी दल चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी और एसआईआर के मुद्दे पर निर्वाचन आयोग के खिलाफ अपना विरोध तेज कर रहे हैं।
3: ये तांडव है, ये शिव का डांस है, इसमें कोई प्लानिंग नहीं होती। ये शिव की बारात है, इसमें किसी को भी आना आ सकता। प्लान की कोई जरूरत नहीं है।
4: राहुल गांधी कह रहे हैं कि शिव की बारात में प्लान की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन राहुल गांधी का आज का प्लान तो तय हो चुका है। जी हाँ, आज दोपहर इंडिया ब्लॉक के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और फिर शाम 4 बजे राहुल गांधी के आवास पर चाय पार्टी होगी। सूत्रों के मुताबिक इस हाई टी में इंडिया ब्लॉक के सांसदों के अलावा सिविल सोसाइटी के सदस्य और छात्र संगठन के नेताओं को भी न्योता दिया गया है। आज की चाय पार्टी विपक्षी नेताओं के कल के सुप्रीम कोर्ट मार्च के बाद हो रही है।
5: I am proud of everybody. Everybody worked like a team. As I said in my press conference, there are no parallel protests. There is one protest, and it's a protest where everybody is standing together. Every single person is going to stand against these killers of our constitution, these killers of our democracy, and we're not going to back down.
4: हाईटी का आयोजन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सरकार के खिलाफ कांग्रेस के आंदोलन के बदले बदले तेवर की नई कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। 7 अक्टूबर को जंतर मंतर मार्च से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सागर रत्ना में लंच दिया था। अगले दिन 8 अक्टूबर को राजघाट जाने से पहले कनॉट प्लेस मोइट्स रेस्टोरेंट में इंडिया गठबंधन के नेताओं को लंच दिया गया था और अब आज चाय पार्टी।
0: और चलिए रुक करते हैं हमारी सहयोगी मौसमी सिंह का। मौसमी, ये चाय पार्टी जो है इसका न्योता सिर्फ इंडिया गठबंधन के जो उनके साथी है उनके लिए नहीं है, सिविल सोसाइटी के लोगों को भी बुलाया गया है। अब इसका मतलब क्या ये भी हो सकता है कि एक तरीके से जो छात्र संगठन है या प्रेशर ग्रुप्स हैं उनके साथ भी किसी तरह का गठबंधन और हाथ मिलाने की कोशिश हो, हाथ आगे बढ़ाया जा रहा हो?
6: अंजलि देखिए, कल राहुल गांधी से मैंने एक सवाल पूछा था कि सीजेपी का आपने जिक्र नहीं किया, सीजेपी का क्या मतलब, सीजेपी को भी आप बुला रहे हैं? तो तब राहुल गांधी ने एक लाइन बोली थी कि ऑल प्रोटेस्ट आर वन, और यानी कि उनका ये इशारा था कि चाहे सीजेपी हो या आयसा हो, नेहा बोरा हो या दिपके हो, सब लोग एक ही मकसद पर हैं, एक ही उनका मुद्दा है, और इसलिए सारा आंदोलन बटा हुआ नहीं है, एक है। ये एक बड़ी बात है क्योंकि कहा जा रहा था कि सीजेपी को जो है आम आदमी पार्टी की बैकिंग है और लगातार सीजेपी का नाम लेने से राहुल गांधी से पहले बच रहे थे। तो ये एक एक एक एडिशन है या एक बदलाव है जो हमने कल देखा, और वही चीज शायद आज की चाय पार्टी में झलकेगी। कल नेहा बोरा के साथ प्रियंका गांधी खड़ी थी और वो उनको जैसे वो पैदल चल रहे थे तो राहुल गांधी पीछे खड़े हुए थे, नेहा बोरा के कंधे पर प्रियंका गांधी ने हाथ रखा और उसी ट्रक में नेहा बोरा थी। तो एक तरीके से चाहे वो योगेंद्र यादव हो तो सिविल सोसाइटी के मेंबर्स भी नजर आए उसी बस में जिसमें से तमाम सांसद थे। तो एक तरीके से इसको बड़ा करने की कोशिश, एक अम्ब्रेला क्रिएट करने की कोशिश है राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से कि सिर्फ ये एक सियासी आंदोलन ना रहे, जनता भी इससे जुड़े, युवा भी उससे जुड़े। वो जानते हैं कि सीजेपी हो या नेहा बोरा हो, तमाम जो जेंजी है वो इनके साथ उनका जुड़ाव है या कनेक्शन है और रिलेट करते हैं। तो राहुल गांधी एक तरीके से फ्रंट फुट पर बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, उससे पहले इंडिया ब्लॉक की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है।
0: जी बिल्कुल, और जो अतिथि लिस्ट रहेगी, गेस्ट लिस्ट रहेगी, उस पर बिल्कुल सबकी नजर बनी रहेगी आपके पास, लगातार हम आते रहेंगे दिन भर। फिलहाल बात करते हैं एसआईआर प्रक्रिया और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई विपक्ष की याचिका की। बड़ी खबर आ रही है कि राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं की ओर से लगाई गई याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के फैसले लेने के तरीके, वोटर लिस्ट से नाम हटाने की प्रक्रिया और चुनावी डेटाबेस की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए हैं। इसके साथ ही वोटर लिस्ट में नामों की कटौती और बदलावों की स्वतंत्र ऑडिट कराने की मांग भी की गई है। हालांकि ये याचिका अब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लिस्ट नहीं हुई है। इस फाइल में 14 खामियां बताई गई हैं। जो कमियां हैं उनको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आईडी कार्ड मांगा गया है, साथ ही कोर्ट फीस भी 220 रुपए कम होने का हवाला दिया गया है। आइए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी संजय शर्मा का। संजय, जो पिटिशन फाइल की गई, याचिका फाइल की गई, थोड़ा जल्दीबाजी में की गई होगी, लेकिन फिर भी 14 खामियां
7: इसमें 14 खामियां हैं और जो 11 याचिकाएं दाखिल की गई हैं उसमें 220 रुपए कम पड़ रहे हैं कोर्ट फीस के, इसलिए भी वो याचिकाएं अभी पेंडिंग पड़ी हैं। कई लोगों के जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे वरिष्ठ कांग्रेस नेता, उनका जो साथ में उनकी पहचान के लिए सत्यापन के लिए जो आधार कार्ड दिया गया है उसकी फोटोकॉपी बहुत पुरानी है, उसमें पता ही नहीं चल रहा कि खड़गे जी हैं, उनके नाम पर कोई और याचिका फाइल कर रहा है। कई लोगों के वकालतनामे पर हस्ताक्षर नहीं है। तो ये तमाम चीजें, ऐसी 14 खामियां हैं जिसमें कई लोगों ने पुराने फैसले जो कोर्ट के हैं जिसको चैलेंज कर रहे हैं वो, उनको उनकी कॉपी नहीं लगाई गई है। तो ऐसे एक दो नहीं, 14 खामियां हैं जिन्हें उंगलियों पे गिना जाना बहुत मुश्किल है। तो अब सरकार की तरफ से ये आरोप लगाए जाने के नारे तो पूरे थे लेकिन कागज अधूरे थे, तो ऐसे में कैसे याचिका सुनवाई के लिए आएगी। और जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री से जुड़े सूत्र बता रहे हैं कि जब तक ये डिफेक्ट करेक्ट नहीं होंगे तब तक याचिकाओं को सुनवाई के लिए लगाना मुश्किल होगा। ऐसे में सिर्फ एक ही उपाय है कि वो शीघ्र सुनवाई के लिए कोर्ट के सामने अपील करें और वो मेंशन करें, अगर कोर्ट की मर्जी होगी तो आधे अधूरे कागजों को पूरा बाद में कर लिया जाएगा, सुनवाई पहले होगी, लेकिन कोर्ट ये तय करेगा कि क्या ये अर्जेंट मैटर है या नहीं।
0: बिल्कुल, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन ये जो याचिकाएं दायर की गई हैं, इसके जो याचिकाकर्ता हैं वो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव भी इसमें शामिल हैं। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा है।
8: पिटीशन फाइल हो गई है, आप आए थे,
9: हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा।
10: लोगों ने पिटीशन जो है दायर किया है एसआईआर के खिलाफ, ज्ञानेश्वर कुमार के खिलाफ, इनकी मनमानी नहीं चलेगी, चोरी और सीनाजोरी नहीं चलेगी, लोकतंत्र को चलने वाला काम अब नहीं होगा। ये लोग बेईमान लोग हैं, इन लोगों ने चोरी नहीं बल्कि बहुत बड़ा पाप किया है।
11: सुप्रीम कोर्ट जाके क्या कहना,
10: देश के नेचर को जानते नहीं है। जब भी लोकतंत्र संविधान पे खतरा होगा तब तक देश की जनता सड़कों पे आती है और किसी माई के लाल में दम नहीं, जो लोकतंत्र को खत्म करता।
0: तो एक दिन पहले राहुल गांधी की अगुवाई में इंडिया ब्लॉक ने दिल्ली के बारखंबा रोड से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकाला। इस मार्च में विपक्षी एकता की झलक भी मिली। चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्षी हमलों को धार मिली तो बीजेपी की ओर से भी हमलों की झड़ी लग गई।
5: I'd like to thank every single person who came out for this protest. I'd also like to thank the millions of people who showed support in their own way at 3 o'clock. The leaders of India Bloc, all the workers of the Congress Party, workers of the India Bloc, this was a very important thing because we needed to show the government that the people of India are not going to be intimidated. You cannot beat us, you cannot threaten us, you cannot frighten us. We will not accept being bullied.
12: देश को अराजकता की आग में झोंकने के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार राहुल गांधी और उनके साथियों के द्वारा आज दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय में जिस प्रकार का अशोभनीय दृश्य दिखाया गया, ये भारत के इतिहास में इसकी कोई मिसाल नहीं है। जिस प्रकार से हुजूम लेकर न्यायालय को प्रभावित करना, आतंकित करना, मुझे लगता है आज तक कोई नेता प्रतिपक्ष ऐसा नहीं रहा होगा। और उतर कर दूसरी तरफ भागकर अपने सिक्योरिटी कॉर्डन को ब्रेक करते हुए दूसरे गेट से अंदर जाने का प्रयास, ये दर्शाता है कि या तो वो मानसिक संतुलन खो चुके हैं या संदिग्ध शक्तियों के द्वारा इस सीमा तक संचालित हैं कि वो किसी भी हद तक नीचे गिरने को तैयार हैं ताकि भारत की सड़कों पर अव्यवस्था दिख सके।
13: याचिका सुपुर्द हो गई है, उसमें वो सभी ग्राउंड्स हैं जिसके अंतर्गत गैर कानूनी काम किया है, जो निर्णय है उनको क्वॉश करना चाहिए। जो जो चीजें आपने पढ़ी है सुनी है उनके विषय में याचिका है।
10: हम लोगों ने पेटिशन जो है दायर किया है एसआईआर के खिलाफ, ज्ञानेश्वर कुमार जी के खिलाफ। इनकी मनमानी नहीं चलेगी, चोरी और सीनाजोरी नहीं चलेगी। लोकतंत्र को चलने वाला काम अब नहीं होगा। ये लोग बेईमान लोग हैं। इन लोगों ने चोरी नहीं बल्कि बहुत बड़ा पाप किया है।
11: सुप्रीम कोर्ट जाके क्या करना?
10: देश के नेचर को जानते नहीं है। जब भी लोकतंत्र संविधान पे खतरा होगा तब तक देश की जनता सड़कों पे आती है और किसी मायके लाल में दम नहीं, जो लोकतंत्र को खत्म करता है।
14: यदि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटना है, एक ही रास्ता है, वो रास्ता ये है कि महाभियोग लाइएगा और पार्लियामेंट में उनको इम्पीच करिएगा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया याचिका सुनेंगे, आप SLP फाइल करिएगा, आप रिट पिटीशन फाइल करिएगा और आपके तरफ से कोई वकील जाएंगे केस लड़ने के लिए, या इस तरह से धरना प्रदर्शन करके जो है, आपने कभी देखा कि सुप्रीम कोर्ट जाता है? आप इसको क्या कहिएगा? ये पागल है और पागल से भी बड़ा पागल है। उसके पीछे जितने अपोजिशन के लोग हैं उनको क्या है, उनका नेतृत्व खत्म हो गया है।
0: और इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं, आइए सीधा उन्हीं का रुख करते हैं।
15: भारत के प्रति उनका प्रेम, वैश्विक मंचों पर भारत के प्रति उनकी भावनाएं हमेशा बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा देने वाली रही है और इसके लिए मैं श्रीमान आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हर साल यह फोरम दुनिया के बेहतरीन माइंड्स को एक साथ लाता है। यहां इकोनॉमी पर चर्चा होती है, टेक्नोलॉजी, एनर्जी और ग्लोबल अफेयर्स पर विमर्श होता है और इस बार पहली बार यह आयोजन भारत में हो रहा है। मैं मिस्टर ब्लूमबर्ग और उनकी पूरी टीम को इस निर्णय के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपने सही समय पर सही जगह चुना है। फ्रेंड्स, इस साल ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक फोरम की थीम दुनिया में उभरती नई पावर्स पर केंद्रित है। हर युग में पावर के अपने स्रोत रहे हैं। अपनी परिभाषा रही है, लेकिन 21वीं सदी में, खासकर तीसरे दशक में, एक बड़ा बदलाव हो रहा है। टुडे टेक्नोलॉजी इज पावर, डेटा इज पावर, नॉलेज इज पावर, इनोवेशन इज पावर। लेकिन साथियों, असली सवाल यह नहीं है कि पावर किसके पास है, बल्कि सवाल यह है कि इसका यूज कैसे हो रहा है। क्या टेक्नोलॉजी सिर्फ कुछ लोगों को आगे बढ़ाएगी या करोड़ों लोगों के लिए नए अवसर बनाएगी? क्या नॉलेज केवल कुछ लोगों की ताकत बनी रहेगी या सबकी क्षमता बढ़ाएगी? यहीं से एक नया विचार जन्म लेता है, और ये विचार है पावर टू एम्पावर, पावर टू एम्पावर, पावर टू कंट्रोल से आगे पावर टू एनेबल, पावर टू कॉम्पीट से आगे पावर टू कोलैबोरेट, पावर टू सक्सीड से आगे पावर टू हेल्प अदर सक्सीड। और इसलिए आज मैं यहां जिस विजन के साथ आया हूं वो है पावर टू एम्पावर। साथियों, ये विचार भारत के लिए नया नहीं है। हमारे यहां कहा गया है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इसका भाव यही है कि ज्ञान, धन और शक्ति जिसके पास भी हो, वो इनको यूज कैसे करता है, ये महत्वपूर्ण है। यानी पावर का असली मूल्य उसके पर्पज में है, और इसी सोच को आज के दौर में समझना बहुत जरूरी है। साथियों, पावर टू एम्पावर करने वाला जो ये मानवीय भाव है, ये सिर्फ दूसरों को उपदेश देने के लिए नहीं है, ये हजारों वर्षों की हमारी परंपरा ने हमें सिखाया है। और भारत में हमने इसे अपनी गवर्नेंस में, अपनी कार्य संस्कृति में लागू करके दिखाया है। इसलिए मैं भारत के उदाहरणों से ही अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। साथियों, आप सभी जानते हैं भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। भारत में 100 से ऊपर भाषाएं हैं, करीब 80,000 रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पब्लिकेशंस हैं, 1,000 से ज्यादा सैटेलाइट टीवी चैनल्स हैं, और इतना ही नहीं, सोशल मीडिया के इस दौर में भारत में 500 मिलियन से अधिक यूट्यूब यूजर्स हैं, 500 मिलियन से ज्यादा इंस्टाग्राम यूजर्स हैं। हमारे यहां अलग अलग मुद्दों पर खुलकर बहस होती है, अलग अलग दृष्टिकोण पर जनता चर्चा करती है, और वर्तमान समय में इसमें जिसने एक बड़ी भूमिका निभाई है वो है डिजिटल पावर। साथियों 12-13 साल पहले तक भारत में एक समय वो भी था जब मोबाइल और इंटरनेट तक पहुंच भी अपने आप में एक शक्ति हुआ करती थी। जिसके पास एक्सेस था उसके पास इंफॉर्मेशन थी, नॉलेज थी, अपॉर्चुनिटीज थी। 2014 के बाद जब भारत में नई सरकार बनी, हमें सेवा करने का अवसर मिला, तो भारत ने मोबाइल डेटा को एफोर्डेबल बनाने पर जोर दिया। इसी का नतीजा है कि आज एक छोटे शहर का विद्यार्थी भी डिजिटल लर्निंग से जुड़ सकता है, किसी गांव में एक छोटा दुकानदार भी नए कस्टमर्स तक पहुंच सकता है, एक युवा भी ऑनलाइन नए कोर्सेज ज्वाइन कर सकता है। यानी भारत में कनेक्टिविटी ने सिर्फ लोगों को कनेक्ट नहीं किया, उसने अपॉर्चुनिटीज को भी कनेक्ट किया है। यही पावर टू एम्पावर है। साथियों आप में से जो अतिथि विदेश से आए हैं उन्हें मैं कहूंगा कि आप भारत के डिजिटल पेमेंट्स इकोसिस्टम को भी आजमा कर देखिए। हमारे यहां एक स्ट्रीट वेंडर और एक बड़े कार शोरूम का कारोबार अलग अलग है, उनका स्केल अलग है, लेकिन भारत में ये दोनों डिजिटल पेमेंट्स के एक ही इकोसिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। यही इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी की ताकत है। साथियों भारत का जो भी सामर्थ्य है उसे हम अपने घर में ही रखने के समर्थक नहीं है, उसे हम ग्लोबल साउथ के साथ, अन्य पार्टनर कंट्रीज के साथ निरंतर साझा करते हैं। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अनुभव को हम दूसरे देशों से शेयर कर रहे हैं ताकि वे अपनी जरूरतों के अनुसार अपने डिजिटल सिस्टम्स विकसित कर सके। हमने कोविड के समय भी कोविन प्लेटफॉर्म बनाया था जो ओपन सोर्स था। यानी हमारे ये निरंतर प्रयास है कि भारत की कैपेबिलिटी दूसरे देश के लिए भी पॉसिबिलिटीज के नए दरवाजे खोले। यानी हमारा सामर्थ्य मानवता को एम्पावर करें। साथियों इनोवेशन की पावर भी ऐसी ही है, एक आइडिया को प्रोडक्ट में बदलना, एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में बदलना, यह अपने आप में एक बड़ी क्षमता है। लेकिन जब यह अवसर समाज के अधिक से अधिक लोगों को मिलता है तो शक्ति का संतुलन बनता है और इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। भारत की स्टार्टअप जर्नी इसी बदलाव का उदाहरण है। वर्ष 2014 से पहले भारत में कुछ 100 स्टार्टअप ही हुआ करते थे, अब देश में इनकी संख्या 2.5 लाख से अधिक हो गई है। करीब आधे स्टार्टअप छोटे शहरों और कस्बों से आते हैं। 45% से अधिक स्टार्टअप्स में कम एक महिला डायरेक्टर या पार्टनर है। यानी इनोवेशन के अवसर अधिक लोगों तक पहुंच रहे हैं, नई प्रतिभाएं सामने आ रही हैं, नए सॉल्यूशंस बन रहे हैं। साथियों पावर के पर्पज पर जो फोकस है, यही सोच गवर्नेंस में भी जरूरी है। सरकार के पास अथॉरिटी है, लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि देश का नागरिक सिस्टम पर ही निर्भर हो जाए, बल्कि इसका मकसद ये होना चाहिए कि देश के नागरिक सक्षम हो, सशक्त हो, और भारत इसी रास्ते पर चल रहा है। इसी रास्ते पर चलते हुए भारत ने बीते एक दशक में 25 करोड़ लोगों को दुनिया के कई देशों की आबादी से भी ज्यादा 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। साथियों, आपने जेम ट्रिनिटी और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के बारे में भी सुना होगा। हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमने बेनिफिशियरीज के बैंक अकाउंट तक सरकारी मदद सीधे पहुंचाने की व्यवस्था बनाई है। इससे करप्शन कम हुआ है, देश के नागरिक की सुविधा बढ़ी है, गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच सीधा रास्ता बना है। साथियों, पावर टू एम्पावर की यही सोच भारत की ग्लोबल एंगेजमेंट में भी दिखाई देती है। कोविड महामारी के दौरान वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का बहुत बड़ा महत्व था। तब सवाल था कि क्या इस ताकत का फायदा भी कुछ ही देशों तक सीमित रह जाएगा, या फिर जिनके पास ये सुविधा और ये सामर्थ्य नहीं है उन देशों, उन लोगों तक भी वैक्सीन पहुंचेगी। भारत ने मानवता को एम्पावर करने वाला रास्ता चुना। हमने 100 से अधिक देशों को वैक्सीन की सप्लाई की। हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी दूसरे देशों के लिए भी सहायता का माध्यम बनी। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल दूंगा। कुछ महीने पहले भारत में एआई इंपैक्ट समिट हुई और श्रीमान ब्लूमबर्ग जी ने भी उस एआई समिट की अभी बहुत तारीफ भी की है। इसमें हमने ह्यूमैनिटी के लिए एआई के उपयोग के साथ ही एनिमल्स को कैसे एआई का फायदा हो, इससे भी चर्चा का विषय बनाया। नंदन यहां बैठे हैं, आपको बाद में काफी जानकारी वो दे सकती हैं ये कैसे किया। यानी भारत जितना सक्षम होगा मानवता के लिए, दुनिया के लिए उतना ही फायदेमंद होगा। फ्रेंड्स, पावर इज नॉट जस्ट एबिलिटी टू मूव अहेड, इट इज ऑल्सो द एबिलिटी टू एम्पावर अदर्स टू मूव अहेड। भारत का मानना है कंपटीशन जरूरी है, लेकिन कंपेशन भी होना चाहिए। इनोवेशन जरूरी है, लेकिन उसके लाभ का विस्तार भी होना चाहिए। नेशनल स्ट्रेंथ जरूरी है, लेकिन ग्लोबल चैलेंजेस के लिए सॉल्यूशंस में भी योगदान देना होगा। क्लाइमेट चेंज हो, वाटर गवर्नेंस हो, पब्लिक हेल्थ हो, या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का रिस्पॉन्सिबल यूज हो, दुनिया को ऐसा सामर्थ्य चाहिए जो सॉल्यूशन दे, नए अवसर पैदा करे। साथियों, मैं आप सभी को एक और उदाहरण देता हूं। पेरिस एग्रीमेंट के तहत क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए भारत ने एक बड़ा कमिटमेंट किया था। साल 2015 में हमने लक्ष्य रखा था कि 2030 तक अपनी इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी का 40% नॉन फोसिल सोर्सेज से हासिल करेंगे और भारत ने यह उपलब्धि नवंबर 2021 में ही हासिल कर ली। यानी तय समय से 9 साल पहले भारत ऐसा करने वाला पहला G20 देश बना। यह केवल एक कमिटमेंट पूरा करने की बात नहीं थी, यह भारत की बदलती हुई एनर्जी जर्नी का भी संकेत था। साथियों, 2014 में भारत की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी करीब 75 गीगावाट थी, आज ये करीब 300 गीगावाट हो चुकी है। यानी हमने लगभग 4 टाइम ज्यादा कैपेसिटी ऐड की है। साथियों, भारत में हो रहे इस एनर्जी ट्रांजिशन के नए अवसर भी बन रहे हैं। आज हमारे यहां पीएम सूर्यघर और पीएम कुसुम जैसी स्कीम्स चल रही है। एक योजना घरों को सोलर पावर से जोड़ रही है, दूसरी योजना किसानों को सोलर एनर्जी पैदा करने और उसके यूज से इनपुट कॉस्ट कम करने का सामर्थ्य दे रही है। इन दोनों योजनाओं के माध्यम से भारत को 30 गीगावाट से अधिक सोलर कैपेसिटी हासिल हुई है। इनसे हर साल करीब 30 मिलियन टन से अधिक कार्बन एमिशन कम होने का अनुमान है। यानी सोलर पावर प्रकृति की रक्षा करने का माध्यम भी बन रहा है और लोगों को एम्पावर भी कर रहा है। साथियों, दुनिया में पावर की इस भागदौड़ में भारत एक अलग मिजाज लेकर चल रहा है और उसका गवाह ये दशक भी है। साथियों, 21st सेंचुरी का ये डिकेड अभूतपूर्व ग्लोबल चैलेंजेस लेकर आया है। हम अगर पिछले 6 वर्षों को देखें, हमने ग्लोबल पैंडेमिक देखी, फिर अलग अलग रीजन्स में युद्ध छिड़ गए, जैसे इतना ही काफी नहीं था, फिर ट्रेड हो, क्रिटिकल मिनरल्स हो।

दुनिया को जोड़ा था वही आज वेपन बन रहे हैं. सप्लाई चेन्स हो, एनर्जी हो, मिनरल्स हो, पेमेंट्स हो या टेक्नोलॉजी, ये दबाव और दबदबे का माध्यम बन रहे हैं. बीते दशकों में ग्लोबलाइजेशन ने जो रूट्स बनाए वो कब और कहां चौक पॉइंट्स बन गए, ये हम सब देख रहे हैं. इन सब के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर सेक्टर में काम करने के तरीके बदल रही है. अनेक देशों में एजिंग से जुड़े चैलेंजेस भी तेजी से बढ़ रहे हैं. ऐसे में आज दुनिया के सामने एक बड़ा सवाल ट्रस्ट का है, भरोसे का है. भरोसा ये कि जरूरत के समय सप्लाई जारी रहेगी. भरोसा ये कि जो प्रॉमिस किए हैं वो निभाए भी जाएंगे. भरोसा ये कि संकट के समय हमारा पार्टनर कंट्री साथ खड़ा रहेगा. और यहीं पर भारत एक अलग मिजाज, एक अलग सोच के साथ आपके सामने है. साथियों, 21st सेंचुरी में भारत की प्रगति सबके साथ मिलकर, सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की कहानी है. जब दुनिया को एफोर्डेबल मेडिसिन्स की जरूरत होती है तो हर 5 में से 1 जेनरिक मेडिसिन भारत से आती है. जब डिजिटल आइडेंटिटी और पेमेंट के सॉल्यूशन चाहिए तो भारत में विकसित मॉडल दिखता है. जब दुनिया को टैलेंट की जरूरत होती है तो भारत के स्किल युवाओं पर भरोसा होता है. आज भारत में 2000 से अधिक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं जो दुनिया भर की कंपनीज को अपनी सर्विसेज दे रहे हैं. साथियों, ये स्पष्ट है कि जब भी दुनिया को एक स्टेडी पिलर की जरूरत होती है तो भारत अपना दायित्व समझते हुए हाथ आगे बढ़ाता है. We do not grow at anyone's cost. We grow with the world and for the world. और साथियों, भारत जो करता है उसका क्रेडिट भी नहीं चाहता. दुनिया गर्व से कहती है कि भारत ने दुनिया को जीरो दिया. इस जीरो ने पूरी मानवता का लाभ किया, लेकिन भारत ने इसके लिए कभी भी रॉयल्टी नहीं मांगी है. और आज भी भारत इसी भावना के साथ काम करता है. और आज की चुनौतियों से निपटने के लिए हमारे जो विचार हैं उनमें भी वो सारी बातें दिखती है. इतिहास में अनेक वैश्विक संगठन बने हैं, उनके अपने अपने हित रहे हैं, लेकिन भारत ने किस तरह के ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स बनाए आप भी गौर कीजिए. हमने कैसी कैसी संस्थाओं को जन्म दिया और दुनिया में क्या क्या हुआ है उसका जरा एक बार तुलना करके देख लेना. हमने क्या दिया? इंटरनेशनल सोलर अलायंस. हमने क्या दिया? कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर. हमने क्या दिया? बिग कैट अलायंस, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC, मिशन लाइफ

0: लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, यानी जिनसे सबका भला हो, हर जीवन का भला हो, ऐसे इनिशिएटिव भारत ने लिए हैं। साथियों, भारत किन विचारों को लेकर सामने आया है ये भी आपके सामने है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का विजन, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, यह हमारी सोच, वन अर्थ वन हेल्थ, यह हमारी दूरदृष्टि, यानी भारत जोड़ने पर और जुड़ने पर बल देता है। और इसमें भी पावर का इस्तेमाल दूसरों को एम्पावर करने के लिए ही है। साथियों, अनिश्चितताओं से भरी इस दुनिया में भारत रिलायबिलिटी और स्टेबिलिटी का विश्वास देता है। इस साल अप्रैल जून क्वार्टर में भारत की ग्रोथ रेट 7.8% रही है और यह ग्रोथ मजबूत नींव पर खड़ी है। 12-13 साल पहले भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट जीडीपी के 4% से भी अधिक था। पिछले साल यह घटकर लगभग आधा प्रतिशत यानी 0.61% रह गया है। आज हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $700 बिलियन से अधिक है। हमारा बैंकिंग सिस्टम अनेक देशों में सबसे मजबूत स्थिति में है। साथियों, इसी मजबूती का परिणाम है कि भारत की सॉवरेन रेटिंग्स अपग्रेड की जा रही है। आज भारत का कॉन्फिडेंस अभूतपूर्व ऊंचाई पर है। हमें क्लियर पॉलिसी डायरेक्शन के साथ रिफॉर्म कर रहे हैं। जीएसटी के जरिए हमने टैक्सेस के एक कॉम्प्लेक्स वेब को नेशनल मार्केट में बदला है। हमने इंसॉल्वेंसी लॉ बनाया है। 29 लेबर कोड्स अब 4 सिंपल कोड्स में सिमट चुके हैं। बिजनेस से जुड़े सैकड़ों छोटी मोटी गलतियों को डिक्रिमिनलाइज किया गया है। और हम यहां रुके नहीं है, भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस तेज गति से आगे बढ़ रही है। हमारे लिए रिफॉर्म्स कोई कंपल्सन नहीं है, रिफॉर्म्स हमारा कन्विक्शन है। साथियों, हजारों वर्ष पहले हमारे वेदों ने हमें एक मंत्र दिया था, संगच्छत्वम संवदत्वम संवो मनासी जानताम। आइए आज फिर उस मंत्र को दोहराएं। लेट अस वॉक टुगेदर, लेट अस स्पीक टुगेदर, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड वन अनदर, क्योंकि साथ चलने से हमारी शक्ति बढ़ती है, संवाद से हमारी समझ बढ़ती है और एक दूसरे को समझने से हम मिलकर बड़ी चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं। यही है पावर टू एम्पावर। अपनी पावर को केवल अपनी प्रगति तक सीमित न रखना, बल्कि उसे दूसरों के लिए भी नए अवसर बनाए। मुझे विश्वास है कि ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक फोरम का यही मंच इसी भावना को आगे बढ़ना का एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा। एक बार फिर आप सभी पार्टिसिपेंट्स को इस कार्यक्रम के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
1: तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री को। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: How's the hostel? Settled?
3: Yes, Mark, really nice.
2: कोई आ रहा है क्या?
4: तुम मॉम डैड वाली ड्यूटीज तो निभा ली, अब फिर से थोड़ा रोमांस है।
2: मयंक, for real?
4: One carat for my one true love. Natural diamond, real love, solitaires to reignite your new season of love.
5: यार लोन भूल गया मैरी।
6: It's
5: just a good bank ना।
7: Ujjivan Small Finance Bank.
5: Small finance bank.
7: Small. Working capital loan, home loan, loan against property, micro mortgage loan, gold loan, pre-owned car loan, two-wheeler loan. There's nothing small about them.
8: Ujjivan, nothing small about us.
9: आगे आगे।
10: अरे उधर
9: उधर क्या?
10: Correct correct.
11: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
12: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।

0: SBI celebrations unlimited. Is festive season ko banaye special car loan, personal loan, gold loan or loan against mutual funds pe special offers ke saath.
1: Itne payment apps par safe kaun sa?
2: To switch to Bheem. एकदम सेफ और भरोसेमंद रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं. पाओ 40 रुपए का कैशबैक 40 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर. भीम ऐप से करो पे.
3: इट्स अ माय वे.
4: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने.
5: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ.
6: सोच बदलो और बैंक भी.
7: Love and Care, the world's finest range of rubber pet toys.
8: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.

0: SBI Celebrations Unlimited. इस festive season को बनाएं special. Car loan, personal loan, gold loan और loan against mutual funds पे special offers के साथ.
1: AU Savings Account में मिलते हैं amazing benefits, paperless banking and higher interest. वो भी हर महीने.
2: Money, money, money, money, every month.
3: सोच बदलो और बैंक भी.
4: बच्चों के लिए अलग टीवी रूम बना सकते हैं.
5: कैसा लगा आप दोनों को अपना ड्रीम होम?
6: I love it. Absolutely amazing. तुम एक काम करो, तुम मिठाई ऑर्डर कर लो.
7: मिठाई से पहले कुछ और हो जाए
6: क्या?
7: इनकी राय.
8: नई सोच की नींव में हम, हर नई उम्मीद में.

0: गैलेंट, निर्माण का रियल हीरो।
1: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
2: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
1: असली शहद, असली स्वाद।
3: ये डायबिटीज मुझे बार बार थका देता है,
4: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
3: अब मुझे जल्दी थकान नहीं होती। कपीवा डायबिटीज जूस।
5: माँ के पैरों की धूल माथे पर लगा, परदेश की गलियों में अपने वतन के गीत सुनो।

0: जबरदस्त हंगामा बरपा है। ये है कांग्रेस का युद्ध अपने ही विरुद्ध। लखनऊ में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए हैं। कोई किसी को धक्का मार रहा है, कोई किसी पर जूता चला रहा है। मारपीट का फुल माहौल है। बता दें कि हाथापाई यूपी में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय राय के समर्थक और कांग्रेस की पार्षद ममता चौधरी के समर्थकों के बीच हो रही है। दरअसल यहां पर यूपी कांग्रेस की अध्यक्ष आराधना मिश्रा को आना था, लेकिन वर्तमान अध्यक्ष आए उसके पहले पूर्व अध्यक्ष अजय राय अपने समर्थकों के साथ यहां पहुंच गए। बताया जा रहा है कि अजय राय के समर्थकों ने कहा कि अध्यक्ष जी के लिए रास्ता दीजिए, जिस पर पार्षद ममता चौधरी ने पूछ लिया कौन अध्यक्ष। बस इसी बात पर समर्थकों में भिड़ंत हो गई। बताया जा रहा है कि ममता चौधरी पर जूता फेंका गया है। इस बवाल के बाद कांग्रेस के सांसद अजय राय से पूछ रहे हैं कि हुआ क्या। लेकिन जिन लोगों ने ये बवाल देखा, सुनिए वो क्या कह रहे हैं।
1: कुछ दो तीन लड़के तो थे भैया, लेकिन अभी हम आपके ही कैमरे से उनको छानेंगे, देखेंगे वो कौन लोग थे। जहां तक है वो भाजपा के ही लोग थे, अजय राय जी के साथ किसी तरह अंदर आ गए थे और अजय राय जी का भी नाम खराब कर रहे हैं।
2: इधर महिलाएं सब लेके दोनों लोग के स्वागत में खड़ी थी, दोनों लोग में। तो उनके आदमी कहे कि आप लोग थोड़ा रास्ता जीत दीजिए, तो इसी पे ममता जी कही कि रास्ता दिए तो हैं, जाएं ना, हम लोग कहां चले जाएं। और कुछ एक शब्द और क्या बोली हमें नहीं ध्यान है। तो उस पर अध्यक्ष जी कहे कि ए ममता पार्षद, होश में बात करिए।
0: 27 में यूपी में चुनाव है और ऐसे में कांग्रेस के प्रदेश के नेता अगर खुद में ही लड़ते रहेंगे तो बीजेपी से कैसे लड़ेंगे। संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक।

0: सकती है रफ्तार। वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद हिंदुस्तान रहेगा सबसे आगे।
1: जंतर मंतर जा रहे सीजेपी के सौरभ दास और आशुतोष जांगा को दिल्ली पुलिस ने फिर हिरासत में लिया। रोक के बावजूद अपने साथियों के साथ पीछे की तरफ से जंतर मंतर में घुसने की कोशिश।
0: पहली बार विपक्षी काफिले के साथ सुप्रीम कोर्ट मार्च करने के बाद राहुल गांधी की रही नई रणनीति। आज गठबंधन इंडिया के नेताओं को चाय पर बुलाया, दोपहर में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी।
1: लखनऊ के कारोबारी की डेथ मिस्ट्री में नया मोड़। शिवम गुप्ता की मौत मामले में फरार लिविन पार्टनर और मॉडल श्रद्धा दुबे की तलाश। कई हाई प्रोफाइल लोगों से है कनेक्शन।

0: डबल डोज एक और 11 आपके साथ हूं मैं नेहा बात।
1: नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राजीव ढांडिया। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। वक्त हो गया है शतक आज तक का। पीएम मोदी 2026 ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में शामिल हुए और सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह फोरम दुनिया के बेहतरीन दिमाग का साथ लेकर आता है और तकनीक का फायदा सभी को मिलना चाहिए। पीएम मोदी ने इस दौरान ब्लूमबर्ग का आभार जताया, कहा कि भारत में आयोजन करने के लिए मैं बधाई देता हूं, अपने सही समय पर सही जगह चुने। सभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि पावर का असली मूल्य उसके लक्ष्य में है और इसी सोच को आगे के दौर में समझाना भी जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में डेटा, ज्ञान और नवाचार ताकत के नए स्रोत, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है, ये बड़ा सवाल। 3 दिन का यह कार्यक्रम 15 अक्टूबर को खत्म होगा और इस साल की फोरम की थीम बदलती दुनिया में ताकत के नए स्रोत तय करना है। पाबंदी के बावजूद कॉकरोच जनता पार्टी के नेता आशुतोष नाका, सौरभ दास और अजिंक्य शिंदे जंतर मंतर जाने का प्रयास करते दिखे और पुलिस ने तीनों को हिरासत में लिया। दोनों सीजेपी समर्थकों के साथ जंतर मंतर पर पहुंचे, नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस ने सभी को पकड़ा। पुलिस ने जंतर मंतर के पास बैरिकेडिंग कर रखी थी, सभी गेट्स बंद थे, लेकिन प्रदर्शनकारी गेट के ऊपर चढ़कर वहां पहुंचे। जंतर मंतर पर प्रदर्शन नहीं हो सकते, केंद्र सरकार ने सोमवार को इसे निर्धारित प्रदर्शन स्थल की लिस्ट से हटाया। अभिजीत दीपके का बड़ा बयान, कहा कि उन्हें लगता है कि जंतर मंतर अब विरोध प्रदर्शन का स्थल नहीं रहेगा और यह बंद हो जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं।
0: अभिजीत दीपके ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा, लोगों के मन में आंदोलन करने की जो भावना है, पीएम मोदी से को उससे दिक्कत है और ये एक तानाशाह की निशानी है। 12 अक्टूबर के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक बाराखंबा पुलिस स्टेशन और तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में प्रदर्शन के लिए तैनात 20,000 अर्धसैनिक जवानों की तैनाती की समय सीमा 4 हफ्ते बढ़ा दी गई है। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर साधन निशाना, सीसी पर हमला बोलते हुए कहा, जन विश्वास का कत्ल और लोकतंत्र की हत्या हुई है। खुदरा महंगाई दर को लेकर कांग्रेस का सरकार पर हमला, जयराम रमेश ने ट्वीट कर लिखा, वो चोरी सच्चाई है, कमर तोड़ महंगाई है। इंडिया ब्लॉक के नेताओं के साथ आज राहुल गांधी की चार पर चर्चा, सीसीएसआईआर के खिलाफ बनेगी आगे की रणनीति। ईसीआई के खिलाफ विपक्ष और सुप्रीम मार्च, 3 घंटे के पैदल प्रदर्शन के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी। सुप्रीम कोर्ट मार्च के बाद राहुल गांधी का तीखा बयान, बोले भारत की जनता डरने वाली नहीं है, हम सरकार की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। राहुल गांधी ने मार्च में शामिल होने वाले का जताया आभार, कहा हम एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। विपक्ष और सुप्रीम मार्च के बाद अदालत में राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी समेत इंडिया गठबंधन के 11 नेता बने याचिकाकर्ता।
1: सीसी की इस्तीफे की मांग तेज, अखिलेश यादव का बीजेपी और चुनाव आयोग पर आरोप, बोले कि बीजेपी हटेगी तभी लोकतंत्र बचेगा, आंदोलन जारी रखने का ऐलान। शशि थरूर बोले, एसआईआर रोकर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में समीक्षा हो, हटाए गए वोटर्स के नाम बहाल हो, निष्पक्ष चुनाव की मांग की। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा सुप्रीम कोर्ट मार्च पर बोले कि राहुल गांधी का सिर्फ ड्रामा है, हार के लिए कांग्रेस नेतृत्व जिम्मेदार है। इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन से डीएमके आप और एआईएमआईएम की दूरी, डीएमके नेता बोले कि कांग्रेस गठबंधन में नहीं होती तो हम शामिल होते। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान बोले कि हम गठबंधन का हिस्सा नहीं, बीजेपी को हराने के लिए साथ में चुनाव लड़ने को तैयार है। इंडिया गठबंधन की याचिका सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं और ऐसी रजिस्ट्री ने बताई 14 तकनीकी खामियां। याचिका में खड़गे के आईडी कार्ड की कॉपी थी धुंधली और सुप्रीम कोर्ट ने आईडी की स्पष्ट कॉपी मांगी, ₹220 के अतिरिक्त कोर्ट फीस भी जमा करने को कहा। इंडिया गठबंधन की याचिका में 9 नेताओं के वकालतनामे पर हस्ताक्षर नहीं, अखिलेश, तेजस्वी समेत कई नेताओं के दस्तावेज अधूरे हैं। याचिका में दस्तावेजों की स्पष्ट कॉपी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के 24 जून के फैसले की डिजिटल कॉपी और पेन ड्राइव में एसआईएस से जुड़े हुए दस्तावेज मांगे। विपक्ष के सीरियल विरोध प्रदर्शन के बीच में सरकार का बड़ा फैसला, जंतर मंतर पर आंदोलनकारियों की अब नो एंट्री।
0: दिल्ली में अब सिर्फ रामलीला मैदान, बुराड़ी और सीबीटी ग्राउंड को तय किया गया है धरने की जगह। हफ्ते के लिए बड़ी सुरक्षा व्यवस्था, 20,000 सीएपीएफ जवानों की तैनाती। सीजीआई विवाद में बैकफुट पर केरल कांग्रेस, चौतरफा गिरने के बाद हटा इस्तीफे की मांग का पोस्ट। सीजीआई पर विवाद में पोस्ट में लिखा था, अगर कानून व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी नहीं है तो अभी इस्तीफा दे दीजिए। सीजीआई के इस्तीफे की मांग पर एससीबीए का बयान, कहा ऐसे बयान न्यायपालिका को नीचा दिखाते हैं। केपीसीसी अध्यक्ष सनी जोसेफ बोले, पोस्ट बिना सहमति के किया गया, न्यायपालिका की निष्पक्षता पर कोई संदेह नहीं है। कांग्रेस सदस्य किरण रिजिजू पोस्ट साझा कर लिखा, एकजुट हुआ एंटी इंडिया गैंग, देशभक्त देंगे जवाब। हेमंत शर्मा का कांग्रेस पर हमला, बोले कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग पसंद नहीं है। राहुल के आरोपों पर बीजेपी का चरित्रवार, शिवराज बोले यह शिव की बारात नहीं है और दंगियों की जमात है। शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर हमला, बोले विदेशी ताकतों के हाथ का खिलौना बनी कांग्रेस, सत्ता के लिए वामपंथियों का लेती है सहारा। एसआर पर सियासी घमासान तेज, बीजेपी बोली राहुल सड़क छाप भाषा बोल रहे हैं, चुनाव आयोग के खिलाफ सबूत कहां है, अखिलेश को सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद।
1: नागपुर में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि संविधान दिखा दिखा कि संविधान को समाप्त करने का काम कांग्रेस कर रही है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राहुल देश की संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम कर रहे हैं, देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। मुंबई में बीजेपी नेता और मंत्री आशीष सेलार का राहुल गांधी पर निशाना, बोले कि सीसी और एसआईआर का मुद्दा गंभीर है तो संसद में चर्चा क्यों नहीं करते। आशीष सेलार ने आरोप लगाया राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने की साजिश का और एमपीएससी छात्रों पर उनकी टिप्पणी को बचकाना बताया। मुंबई में एफआईआर दर्ज होने पर आदित्य ठाकरे का बयान, बोले प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाना क्या ब्रिटिश राज है, अपने खिलाफ एफआईआर का स्वागत करता हूं। आदित्य और अमित ठाकरे के खिलाफ गैर कानूनी जमावड़े का मामला दर्ज होने के बाद सियासी विरोध जारी, शिवसेना यूबीटी कार्यकर्ताओं का काली पट्टी बांधकर प्रोटेस्ट। मुंबई में प्रदर्शन को लेकर सियासी घमासान, राम कदम बोले मतदाता सूची में मृत और दूसरी जगह जा चुके लोगों का नाम हटाया गया तो विरोध क्यों, शिवसेना यूबीटी का विरोध प्रदर्शन। और इस बीच में एक बड़ा झटका भी लगा, राष्ट्रीय प्रवक्ता आनंद दुबे ने पार्टी छोड़ी और इस्तीफा दिया, एसआईआर पर पार्टी की भूमिका पर जताई असहमति। आनंद दुबे बोले शिवाजी महाराज और वीर सावरकर मेरे आदर्श हैं, उचित राजनीतिक मंच मिलने पर दूसरी पार्टी में होऊंगा शामिल। मुंबई में बीजेपी नेता किरीट सोमैया के अभिनेता इमरान खान के खिलाफ पुलिस में शिकायत, भारत में रहकर राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने का लगाया आरोप, देश से रिपोर्ट करने की मांग।
0: दिल्ली के रणहौला में सरेआम फायरिंग, 11 अक्टूबर की वारदात, हत्या का खौफनाक सीसीटीवी फुटेज आया सामने, दो बाइक सवार चार बदमाश ने वारदात को दिया अंजाम, आपसी रंजिश के तहत हत्या की आशंका। बदायूं के गन हाउस में धमाके के बाद लगी आग, तीन कर्मचारी झुलसे, एक की हालत गंभीर। कानपुर में रेस्टोरेंट में उपकरण मिलने पर दरोगा सिपाही समेत चार लोगों ने जमकर हंगामा किया, कर्मचारियों के साथ मारपीट, दोनों सस्पेंड। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पैसों को लेकर पति और पत्नी के बीच भयंकर मारपीट, सड़क पर पत्नी और बेटी ने मिलकर व्यक्ति को पीटा। झांसी में दुर्गा पंडाल के पास जमकर मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अलवर में जमीन विवाद, पूर्व सैनिक की मौत के बाद बवाल, पीट पीट कर हत्या का आरोप, न्याय की मांग को लेकर सड़क पर लगाया गया जाम। नवादा में रेलवे ट्रैक पर रील बनाना महिला को पड़ा भारी, पहचान उजागर होने के बाद महिला ने स्वयं रेलवे पुलिस के सामने किया सरेंडर। पंचकुला में कुख्यात गैंग के दो शूटर्स का एनकाउंटर, बड़ी वारदात की साजिश नाकाम करने के लिए मुठभेड़ के दौरान आरोपियों ने पुलिस टीम पर 5 गोलियां चलाई। पुलिस को आशंका है कि दोनों मोहाली, पंचकुला और चंडीगढ़ में किसी टारगेट को निशाना बनाने के इरादे से यहां पहुंचे थे।
1: बागपत में एक महिला ने बच्चे के साथ हैवानियत की और मासूम के बाल नोचे, थप्पड़ बरसाए, मासूम के साथ मारपीट का वीडियो अब सामने आया है। श्रीगंगानगर में बाइक कार की जबरदस्त टक्कर, बाइक सवार की मौत, कार पलटने से चार लोग घायल। बांका में दो बाइकों में जबरदस्त भिड़ंत, दो युवकों की मौत, हादसे में आरजेडी नेता की भी गई जान। टोंक में आइसक्रीम खाने आए युवक पर बदमाशों ने हमला कर दिया, घेर कर मारपीट की, चाकू से किया वार। विजयवाड़ा में इलेक्ट्रिक कार में लगे भीषण आग, हादसे में चार लोगों की जिंदा जलकर मौत। दमोह जिला अस्पताल में महिला से सफाई करवाने का आरोप है, नर्सिंग स्टाफ के कहने पर स्टूल और फर्श साफ करती दिखी महिला। उदयपुर में तेज रफ्तार क्रेन ने बुजुर्ग को कुचला, हादसे में मौत, ड्राइवर मौके से फरार। गाजियाबाद में शहीद नगर निर्माणाधीन इमारत गिर गए, चार लोगों को बचाया गया, एसडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन। गाजियाबाद में युवती से मिलने के लिए आए एक मुस्लिम युवक की पिटाई कर दी गई, लव जिहाद मामले में हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप है। लखनऊ में खूंटल में 10वीं मंजिल से गिरकर युवती की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, कमरे में साथी मौजूद था।
0: राजसमंद में बेकाबू हुई थार, डिवाइडर तोड़कर सड़क किनारे पहुंची, हाईवे के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ ये हादसा। भुवनेश्वर विवाद के बाद चालक ने पैदल चल रहे लोगों पर चढ़ाई कार, तीन घायल, हत्या के प्रयास में गिरफ्तार। राजकोट में बेकाबू कार ने पानी की डिलीवरी कर रहे युवक को मारी टक्कर, हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। रेवाड़ी में ट्रॉमा सेंटर में सामने निजी बस ने स्कूटी सवार महिला कुचला, मौके पर दर्दनाक मौत। पुणे में एफडी अधिकारी बनकर किराना दुकानदार से 5 लाख रुपए की वसूली मांगने का आरोप, अन्य दुकानदारों को भी निशाना बनाए जाने की आशंका। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम, भारतीय सुरंग विस्फोट में लश्कर कमांडर मोहम्मद फैजान सहित 4 आतंकवादी ढेर। दिवाली से पहले आम आदमी का निकला दिवाला, खुदरा महंगाई उछाल में खाने पीने की चीजें बिगाड़ रही है हर घर का बजट। एमपी के सागर में अतिक्रमण रोकने आई वन विभाग की टीम पर बदमाशों ने किया जानलेवा हमला, डिप्टी रेंजर का सर फटा। हमले के दौरान बदमाशों ने युवक को कुचलने की कोशिश की, वन विभाग की शिकायत पर पुलिस ने 3 के खिलाफ केस दर्ज किया। नोएडा में जिंदल पैंथर कैंप पर विमल अचीवर्स का कब्जा, फाइनल में 9-6 से दी जिंदल पैंथर्स को मात।

0: सनी देओल की अगली फिल्म सूर्य का मोशन पोस्टर जाने 20 नवंबर 2026 को रिलीज होगी। फिल्म राजकुमार राव के प्रहार का गाना मुंबई सपनों का समंदर हुआ रिलीज। फिल्म 16 अक्टूबर को आएगी। नेशनल अवार्ड जीतने वाले विनोद कापरे की अगली फिल्म पायर का ट्रेलर हुआ जारी। 30 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में हिंदी और मलयालम में होगी रिलीज। दृश्यम 3 ने रचा 10 दिनों में ही इतिहास। बॉर्डर 2 को पछाड़कर बनी दूसरी धांसू फिल्म। 300 करोड़ के क्लब में एंट्री। 30 अक्टूबर को रिलीज होगी फिल्म नखरे वाली। फिल्म में अंश दुग्गल और प्रगति श्रीवास्तव मुख्य भूमिकाओं। भारत के विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, होर्मुज में पेट्रो डॉल्फिन नाम का मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमला हुआ और हमले के समय जहाज में मौजूद थे 11 भारतीय नाविक। हुती विद्रोहियों को लेकर सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री का बड़ा बयान, कहा कि हाल के हफ्तों में हुई घटनाएं गंभीर हैं, सऊदी अरब का जवाब भी उतना ही गंभीर होना चाहिए। अमेरिका से शांति पर ईरान का बड़ा बयान, कहा कि होर्मुज को फिर से खोलने के प्रस्ताव पर अमेरिका के जवाब की समीक्षा हो रही है। यूरोपियन यूनियन का बड़ा फैसला, यूरोप के हथियार उद्योग से जुड़े हुए 1600 लोगों और कंपनियों पर लगाए गए प्रतिबंध। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान, कहा कि रूस अगर तैयार तो यूक्रेन भी ऊर्जा ठिकानों पर हमला रोकने के लिए समझौते का करेगा पालन। यूक्रेन के खार्किव पर रूस का बड़ा हमला, रिहायशी इमारतों पर हुए हमले में 22 लोग घायल हैं। रूस ने कहा कि यूक्रेन में राष्ट्रपति चुनाव और हमला तक नहीं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने हाई स्कूल के छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा की निंदा की है। चीन पर ताइवान के विदेश मंत्रालय की नाराजगी, कहा ताइवान के कूटनीतिक संबंधों में दखल देने का चीन का कोई अधिकार नहीं। पोप लियो को रोम के जेमेली हॉस्पिटल में फेफड़ों की उनकी सर्जरी होगी और फेफड़ों में गांठ निकालने के लिए जल्द ही सर्जरी हो सकती है।
1: प्रभात, लखनऊ में हुए एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस की लखनऊ में 28 साल के करोड़पति कारोबारी शिवा शर्मा की मौत मामले में जांच में कई बड़े खुलासे हुए हैं। पुलिस को फ्लैट की जांच में कई आपत्तिजनक चीजें मिली हैं। साथ ही शिवा शर्मा की लिव इन पार्टनर श्रद्धा दुबे को लेकर कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही है। श्रद्धा के चैट से पता चला है कि वो कई नेताओं के संपर्क में थी। शिवा की मौत के बाद से वो फरार है। उसकी तलाश दिल्ली के साथ साथ नेपाल की कई जगहों पर की जा रही है। 9 अक्टूबर लखनऊ के अवध ग्रीन अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से गिरकर शिवा शर्मा की मौत हो गई थी। शिवा की मां रंजना शर्मा का आरोप है कि श्रद्धा दुबे ने ही शिवा को धक्का देकर उसकी हत्या की है। मां का आरोप है कि श्रद्धा कई बड़े नेताओं से जुड़ी हुई है, उनके बेटे को ब्लैकमेल किया जा रहा था और उसे जेल भिजवाने की धमकी वो देती थी। शिवा की मां की शिकायत पर श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि, ड्राइवर आदिल समेत 5 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। शिवा की मां से श्रद्धा दुबे के कई चैट्स और उसके खिलाफ कई सबूत भी पुलिस को सौंपे गए।
2: क्या नाम है आपका और आज आपके बेटे के साथ क्या हुआ?
3: मेरा नाम रंजना शर्मा है और मेरे बेटे का नाम शिवा शर्मा है। 27 साल की उम्र है। आज 8:30 बजे के आसपास मुझे रश्मि दुबे नाम की एक लड़की का कॉल आया कि शिवा शर्मा का एक्सीडेंट हो गया है और मैं हजरतगंज से राम मनोहर हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ पता चला कि मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में लेके जाया गया है। जब मैं मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी पे पहुंची तो एम्बुलेंस के पास श्रद्धा दुबे नाम की लड़की का ड्राइवर सौरभ कश्यप खड़ा था और जो कि मुझे देखते साथ ही वहां से छोड़कर भाग गया। जब मैंने ड्राइवर से पूछने की कोशिश की तो ड्राइवर ने बताया कि मैं 3 घंटे से पहले राम मनोहर लोहिया और फिर यहां लेके आया हूं और इससे ज्यादा मुझे नहीं पता। तो
0: और अब पंजाब से बड़ी खबर आपको देते हैं। पंजाब के मानसा में नशे के खिलाफ बड़े स्तर पर सामाजिक मुहिम चलाने वाले एक्टिविस्ट, मशहूर नशा विरोधी एक्टिविस्ट परमिंदर सिंह झोट को गोली मार दी गई है, उनकी हत्या कर दी गई है। पंजाब में लगातार गोलीकांड और बड़े बड़े सवाल। और अब एक एक्टिविस्ट की, वो एक्टिविस्ट जो कि ड्रग्स के खिलाफ लगातार मुहिम उठा रहे थे, आवाज उठा रहे थे, एंटी ड्रग्स एक्टिविटीज एक्टिविस्ट, उनकी गोली मारकर परमिंदर सिंह की हत्या कर दी गई है।
1: कंवल जी संधू मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कंवल जी, जाहिर तौर पर बेहद सनसनीखेज ये मामला, जिस तरीके से गोली मारकर हत्या की गई है, जाहिर तौर पर ये ड्रग्स का माफिया इसमें संलिप्त नजर आ रहा है।
4: देखिए, परमिंदर झोटा जो कि अब वारिस पंजाब दे के साथ एसोसिएटेड थे, उन्होंने ड्रग्स का मुद्दा बहुत बड़े पैमाने पे उठाया था और 2023 से वो एंटी ड्रग कैंपेन भी लगातार चला रहे थे और उसी बीच में वो एक्सपोजर लगातार कर रहे थे कि किस तरह से खुलेआम ड्रग्स बिक रहा है पंजाब में। मानसा के इस इलाके में वो वहां पे गए और केमिस्ट के साथ उनका आर्ग्यूमेंट काफी चला, कुछ लोगों के साथ वहां पे गए और आप देख सकते हैं कि वीडियो में भी जो सामने बात आई है कि काफी देर वो दुकानदार के साथ बहस करते रहे और अंदर से एक साथी है वो पिस्तौल लेकर आया और उसके बाद उसी आर्गुमेंट के बीच में उसने गोली तान दी और ऐसा बताया जाता है कि गोली आर पार होगी और उसी से परमिंदर झोटा की मौत होगी। हालांकि जब गंभीर हालत में उनको ले जाया गया कुछ देर तक तो उनकी सांसें चलती रही लेकिन उसके बाद उनकी मौत हो चुकी है और उससे काफी बड़ी सवालिया निशान एक बार फिर उठ रहे हैं। एक तो कानून व्यवस्था पे कि किस तरह से गोलीबारी हो रही है, किस तरह से जो लोग बात उठा रहे हैं, ड्रग्स की आवाज उठा रहे हैं, उनको ही टारगेट किया जा रहा है, और दूसरी ओर जिस तरह से ड्रग्स खुलेआम कर रहे हैं। तो ये जो दो पहलू हैं, कानून व्यवस्था और ड्रग्स, एक बड़ा मुद्दा उभर के निकला है। अब आप देखिए, चाहे हम बात करें विक्रम मजीठिया की जिन्होंने ये मुद्दा उठाया है, चाहे राजा अमरिंदर वड़िंग है, तो विपक्ष लगातार निशाना बना रहा है आम आदमी पार्टी को। और
0: कमल जी, सवाल तो उठेंगे लेकिन आप एक बार फिर इस केस के बारे में बताएं। कमल जी, आपके पास लौटते हैं, पहले हम तस्वीर दिखा देते हैं जिसका आप जिक्र कर रही थी। ये वो तस्वीर है, यहाँ पर जो ड्रग एक्टिविस्ट हैं वो गए थे और वहीं पर दुकान में एक व्यक्ति आता है, गोली लेकर, बंदूक लेकर उनको उन पर फायर कर देता है। ये विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं, मानसा की तस्वीरें हैं। परविंदर सिंह झोटा की गोली मारकर पंजाब में हत्या कर दी गए हैं। एसआई की हत्या होना और अब एक एंटी ड्रग एक्टिविस्ट को मार दिया गया है।
1: वक्त एक से ब्रेक का हौसला, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: Love and Care, the world's finest range of rubber pet toys.
1: बच्चों के लिए अलग टीवी रूम बना सकते हैं।
2: कैसा लगा आप दोनों को अपना ड्रीम होम?
3: I love it, absolutely amazing. तुम एक काम करो, तुम मिठाई ऑर्डर कर लो।
4: मिठाई से पहले कुछ और हो जाए।
3: क्या?
4: इनकी राय।
5: नई सोच की नींव में हम, हर नई उम्मीद में हम, गैलेंट निर्माण का रियल हीरो।
6: डायबिटीज की वजह से मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ता है,
7: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
6: अब मैं चैन की नींद सो पाता कपीवा डायबिटीज जूस।
8: वक्त के साथ कदम मिलाकर सेनको ने नए टेक्नोलॉजीज भी अपनाए, पर बिना अपने रूट्स को भूले।
9: टिन रूट्स की बुनियाद है 100% प्योर गोल्ड, ऑनेस्ट प्राइसिंग, कस्टमर फर्स्ट एटीट्यूड,
10: एंड सेनको सपोर्ट्स एनवायरमेंट केयर और वुमेन एम्पावरमेंट।
11: एक परिवार, अटूट भरोसा।
12: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। एयू
13: सोच बदलो और बैंक भी।

अक्टूबर में ही पहाड़ों पर सर्दी ने दस्तक दे दी है। हिमाचल लद्दाख सीमा पर शिंकुला टॉप में भारी बर्फबारी से 40 से ज्यादा गाड़ियां और करीब 25 बाइक सवार फंस गए। बर्फबारी से सड़क पर फिसलन बढ़ी और कई बाइक सवार गिर पड़े। केलांग पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाला। कुल्लू और मनाली में बारिश से ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने 15 अक्टूबर तक हिमाचल के ज्यादातर इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया है। जम्मू में बेमौसम बारिश से कई इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। मेरठ में अचानक बारिश के साथ ओले गिरे, दोपहर में ही अंधेरा छा गया। करनाल में तेज बारिश से धान की फसल भीग गई, इससे किसानों को नुकसान की आशंका है। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानों में बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। अक्टूबर में ही सर्दी के तेवर दिखने लगे। कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा, जम्मू से मीर फरीद और मेरठ से उस्मान चौधरी के साथ कमलजीत, करनाल आज तक।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी। सो
4: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
5: डायबिटीज की वजह से मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ता है,
6: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
5: अब मैं चैन की नींद सो पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
7: वक्त के साथ कदम मिलाकर सेनको ने नए टेक्नोलॉजीज भी अपनाए, पर बिना अपने रूट्स को भूले।
8: जिन रूट्स की बुनियाद है 100% प्योर गोल्ड, ऑनेस्ट प्राइसिंग, कस्टमर फर्स्ट एटीट्यूड,
9: एंड सेनको सपोर्ट एनवायरमेंट केयर और वुमेन एम्पावरमेंट।
10: एक परिवार, अटूट भरोसा।
11: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
12: AU सोच बदलो और बैंक भी।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: ये तबाही की तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें डराती हैं, खौफ पैदा करती हैं। नेपाल पर एक बार फिर कुदरत का कहर बना। ये तस्वीरें नेपाल के गोरखा जिले की हैं, जहां बूढ़ी गंडकी नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया। अचानक बढ़े पानी के बहाव ने नदी किनारे बसे इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते मकान बह गए और कई पुल तबाह हो गए। जिन घरों में कभी खुशियां बसती थी, वो अब पानी में समा चुके हैं। गोरखा के चुमनुबरी और धारचे इलाकों में बाढ़ का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है। सैलाब का कहर सिर्फ मकानों तक सीमित नहीं रहा, लोगों को जोड़ने वाले पुल भी पानी के तेज बहाव में बह गए। जानकारी के मुताबिक कुल 6 पुल नष्ट हुए हैं, जिनमें 2 मोटर योग्य और 4 सस्पेंशन ब्रिज शामिल हैं। अरुघाट, त्रिपुर सुंदरी और सोती मानबू के पुलों के साथ एक बेली ब्रिज भी तबाह हो गया। बूढ़ी गंडकी नदी के उफान से सालेरी, पयुका और जगत के नदी किनारे बसे इलाकों में भी कई मकान बह गए। पुल टूटने से अब प्रभावित इलाकों तक पहुंचना और राहत पहुंचाना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। अधिकारियों के मुताबिक रविवार सुबह करीब 4 बजे जिले के उत्तरी हिस्से में अचानक बाढ़ आई। तेज बहाव और पानी की गर्जना सुनकर चुमलिंग और लोकपा जैसी बस्तियों में रहने वाले लोग और पर्यटक जान बचाने के लिए सुरक्षित जगहों की ओर भागे। पानी का बहाव कभी धीमा पड़ता तो कभी अचानक तेज हो जाता। लोगों को सामान समेटने तक का मौका नहीं मिला और वे अपनी जान बचाने के लिए घर छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। अब प्रशासन ने बूढ़ी गंडकी नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित ऊंचाई वाले स्थानों पर जाने की चेतावनी दी। सबसे बड़ी चुनौती लोगों की जान बचाने और प्रभावित इलाकों तक मदद पहुंचाने की। नेपाल में एक बार फिर पानी का कहर, उजड़ते घर, टूटते पुल और जान बचाकर भागते लोग। कुदरत के इस कहर ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। आज तक भी
3: आ गया सोमवार और आ गए
4: चकमक चाचा।
3: एक कचौड़ी, 2 समोसा, चकमक तेरा क्या भरोसा।
5: चकमक चाचा से सीधे चकमक है?
3: अरे नारा है, दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, महिला लोग एकदम नारा लगाए जा रही, बुझ रहा ना।
5: लेकिन भैया नारे अरे फालतू में सब बेकार, एकदम बेकार। नारे होते थे हमारे टाइम।
3: अच्छा
5: सुनाए, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, जेपी भाई छूटेंगे।
3: अच्छा तो हमारे टाइम वाले सुनिए, 2 कुलचा 1 बिरयानी, इन नेताओं की खत्म कहानी।
5: अरे जमीन के चकबंदी में क्या फाइनेंस बंदी में,
3: ठंडी चाय गरम करो चकमक चाचा, शर्म करो।
5: अरे राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर।
3: अरे लाठी गोली खाएंगे, इस्तीफा लेके जाएंगे।
5: अरे सुनो, इस दीपक में तेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं।
3: अरे लाल फूल, नीला फूल, जंजी नंगे ब्यूटीफुल।
5: अरे बारी बारी, सबकी बारी, आपकी बारी, अटल बिहारी।
3: चाय गरम, दूध गरम, चकमक चाचा भी शर्म
5: है।
3: हाँ,
5: जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है।
3: अरे मेरे सिर में दर्द है, जिसका कारण मर्द है आप जैसा।
6: हम जैसे, इधर आओ।
7: हम जैसे मर्द नहीं होते किसी नारे से ऑफेंड, हम तो भैया करते हैं हर सही मुद्दे को डिफेंड।
0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: बड़ी खबर के साथ शुरुआत करें जो कि पंजाब के मानसा से आ रही है। यहाँ पर नशे के खिलाफ बड़े स्तर पर सामाजिक मुहिम चलाने वाले मशहूर नशा विरोधी एक्टिविस्ट परमिंदर सिंह झोट की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
1: ये बहुत बड़ी खबर है और जानकारियों के मुताबिक परमिंदर सिंह झोटा पर आज सुबह फायरिंग की गई जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हुए और फिर उसके बाद उन्हें मानसा सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन उनकी जान बचाई नहीं जा सकी।
0: घटना के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है और इस हत्या के पीछे क्या वजह है इसको लेकर पुलिस की जांच तेज है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज बेहद अहम है जिसमें उन्हें गोली मारते हुए देखा जा सकता है।
1: हमारी संवाददाता कमलजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलजीत, पहले तो हमें विस्तार से बताएं कि क्या हो रहा था, ये जिनके जहां पर गए हुए थे वहां पर ये कौन लोग थे जिन्होंने गोली चलाई और क्या मैटर हो रहा था उस समय?
2: देखिए, परमिंदर झोटा जो कि एक बड़े फेमस एक्टिविस्ट हैं, खासतौर पे मानसा की बात करें जहां पे ड्रग्स के खिलाफ मुहिम चला रहे थे, सेंटर भी चला रहे थे, तो वहां पे ऐसा लग रहा है कि एक आर्गुमेंट हुआ जहां पे केमिस्ट में और एक ऐसा दावा किया जा रहा था कि वहां पे ड्रग्स मिलते हैं और ये आर्गुमेंट काफी देर तक चला जहां पे वो लाइव जा रहे थे और वही सूचना काफी लोगों को मिल रही थी और इसी वजह से ये पूरा जो पूरा मामला है वो कैद हो चुका है कैमरे पे। और आप देखिए किस तरह से वो कई मिनट आर्गुमेंट चलता रहा। जो केमिस्ट का सहयोगी है वो अंदर जाता है, वो पिस्तौल लेकर आता है और अचानक से गोली दाग देता है और उसी वक्त क्योंकि आर्गुमेंट चल रहा होता है आस पड़ोस के जो लोग हैं वो परमिंदर को अस्पताल सिविल अस्पताल लेके जाते हैं जहां पे वो दम तोड़ देता है। लेकिन बात वही आ जाती है कि सवालिया निशान जो उठा रहा है खासतौर पर कानून व्यवस्था पे और दूसरा ड्रग्स, ये दोनों चीजें हैं जो कि चुनाव में भी बड़ा मुद्दा है। लेकिन जिस तरह खुलेआम गोली चल रही है, ये एक्सेस टू वेपन कहां से आ रहा है क्योंकि ये बात है कि इजिली एक्सेसिबल वेपन है और इसी वजह से जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं। और दूसरी ओर जो चुकाने वाली बात यह है कि एक आम जो आर्गुमेंट है वो किस तरह से इतना खतरनाक हो जाता है, इतना सनसनीखेज हो जाता है कि एक मर्डर किया जाता है खासतौर पे उस वक्त जहां पे उजागर किया जा रहा है ड्रग्स का मामला और वहीं पे सवालिया निशान उठते हैं आम आदमी पार्टी पे। जाहिर सी बात है जितने विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार अपना हमला तेज कर रही हैं आम आदमी पार्टी पे, कह रहे हैं कि एक के बाद एक घटनाक्रम होती जा रही है और उसको रोकने के लिए कुछ कर नहीं पा रही है। वहां पे दूसरी ओर कई कैंपेन चलाए करें, जहां बात करें युद्ध नशे विरुद्ध का एक बड़ा कैंपेन आम आदमी पार्टी ने चलाया है लेकिन अब बात आ रही है कि ग्राउंड सिचुएशन में क्या कोई बदलाव आया है। इस तरह की घटना है वो पूरी तरह से फोकस फिर से ड्रग्स के ऊपर लेकर आ रही है और चिंताजनक बात यह है कि किस तरह से खुलेआम गोली दागी जा रही है खासतौर पर उस व्यक्ति पे जो पूरी ड्रग्स के ऊपर लड़ाई लड़ रहा है।
0: इसके अलावा कमलजीत सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या उस समय कोई नोकझोंक हुई थी इसलिए अचानक इंस्टेंटली उन पर गोली बरसाई गई या फिर एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया?
2: देखिए ऐसा वीडियो में देखने में लग रहा है कि स्पर ऑफ द मोमेंट है, यानी अचानक से ये घटनाक्रम हुई कि एक आर्गुमेंट हुआ वहां पर और वो बात कर रहे थे कि एक्सपोजे करेंगे और उस केमिस्ट शॉप के बाहर जिस तरह से एक तरह से आर्गुमेंट चलता रहा और वहां पर गुस्से में आके काफी कुछ शब्द बोले गए। पर अगर आप ध्यान से उस वीडियो में देखें जो सहयोगी होता है जो केमिस्ट में अंदर असिस्टेंट होता है वो अचानक से अंदर जाता है और कुछ समय बाद वो बाहर आता है तो उसके हाथ में पिस्तौल होती है और वो बोलता भी है कि आप मुझे डराने की कोशिश मत करिए और उसी बीच में वो गोली दाग दी जाती है। तो अपने आप में ये बड़ा सवाल उठ रहा है और क्योंकि उसी समय अफड़ा तफड़ी का माहौल हुआ, शटर डाउन किया गया और वो वहां से फरार हो गया। इसी बीच में जो SSP है, आला अधिकारी है, वो सब पहुंचे हैं। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है पंजाब में, इतना बुरा हाल क्यों है, चाहे हम कानून व्यवस्था की बात करें चाहे हम ड्रग्स की बात करें, खुलेआम बिक रहा है ड्रग्स, इस तरह के आरोप लगातार लगते आ रहे हैं।
1: ड्रग वाले कितना गहरे अपनी जड़ें जमा चुके हैं ये भी अंदाजा है कि उनको कोई खौफ भी नहीं है, मतलब वो दुकानों में पिस्तौल लेकर रख रहे हैं, घूम रहे हैं और कोई विरोध कर रहा है तो उसको गोली मारी जा रही है। मान सरकार क्या कर रही है, अब तक एक्शन क्या हुआ है?
2: देखिए आला अधिकारी वहां पे पहुंचे हैं और ऐसा है कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो लगातार किया जा रहा है। लेकिन आप देखिए कि पिछले कुछ समय से घटनाक्रम इस तरह रही है कि पुलिस वालों को निशाना बनाया जा रहा है, सरपंचेस हैं, एक सरपंच हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, तो कानून व्यवस्था पे सवाल उठ रहे हैं। साथ में इससे पहले गुलजार सिंह वाला मामला हुआ, मोहनजीत वाला मामला हुआ कि जो ड्रग्स पे मामला उजागर करते हैं उनके ऊपर भी एक तरह का प्रेशर बनाया जाता है और यहां पे एक ड्रग एक्टिविस्ट है वो अपनी जान इसलिए खो रहा है क्योंकि वो मामला उजागर कर रहा था। हालांकि कि इसको एक पर्सनल मामले के तौर पे भी पुलिस देख सकती है, लेकिन बात वही आती है कि जो एक्सपोजे कर रहा है क्या वो अंडर थ्रेट है, किस तरह से खुलेआम जिस तरह से धमकी मिल रही है और उसके ऊपर गोली दागना अपने आप में कई सवाल खड़े कर जाता है। जाहिर सी बात है हमने कई बार सुना है, चाहे मुख्यमंत्री भगवंत मान हो चाहे इनके जो स्पोक्स पर्सन है, वो लगातार कहते आए हैं कि भाई हमारा जीरो टॉलरेंस है ड्रग्स को मामले पे और हम बिल्कुल सख्त कार्रवाई करेंगे, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा है कि केसेस कई हद तक बढ़ते जा रहे हैं और जो बात की जा रही थी कि भाई ड्रग्स यहाँ पे सिमट के रह जाएंगे, अब ये बात आ रही है कि ड्रग्स अक्रॉस द बॉर्डर भी आ रहे हैं और सिंथेटिक ड्रग्स भी आ रहे हैं, तो एक तरह से ब्लेम गेम है क्योंकि अब आम आदमी पार्टी का कहना है कि सिंथेटिक ड्रग्स जो है वो आस पड़ोस के प्रदेश से आ रहे हैं जिनमें से कई प्रदेश बीजेपी स्टेट भी है और उनके जो बीजेपी रूल राज्य हैं चाहे गुजरात हो चाहे राजस्थान हो बाकी इलाके हैं वहां से लगातार ड्रग्स आ रहे हैं, लेकिन बात यह आती है कि कानून व्यवस्था या फिर उसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की बनती है। चुनाव कुछ महीने दूर हैं और उस बीच में इतना कुछ होना अपने आप में कई सवालिया निशान।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कंवल जी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बात सियासत की तीन बड़ी खबरों की, सबसे अहम खबर विपक्षी मोर्चे की, चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्षी दलों ने एक दिन पहले याचिका दायर की है और अब आज इंडिया गठबंधन नेता साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, उन सभी को राहुल गांधी ने चाय पर बुलाया है। दूसरी अहम खबर, जेएनयू में प्रोफेसर है कांग्रेस सांसद पर लगे यौन शोषण आरोप की, जिसे लेकर अब उन पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, उसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
1: और साथ ही आज बीजेपी की महिला सांसद राष्ट्रपति से मिलने भी जाने वाली है, तो ये तीन सियासत की बड़ी खबरें हैं। और दिल्ली की सड़कों पर जो बीते दिनों संग्राम देखने को मिला था, चाय पर चर्चा भी इनकी होने वाली है। तो दिल्ली की सड़कों पर चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन जारी है। सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक मोर्चा सोमवार को भी दिखा जब राहुल गांधी और अन्य विपक्षी दलों के नेता मार्च करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और चुनाव आयोग के खिलाफ उन्होंने याचिका दाखिल
0: की। और ये अलग बात है कि 14 खामियों की वजह से याचिका अब तक लिस्ट नहीं हुई, लेकिन विपक्षी मोर्चे को लेकर सियासी घमासान तेज है। आज इंडिया ब्लॉक के नेता साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, तो राहुल ने सभी सहयोगी दलों के नेताओं को चाय पर बुलाया है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस अराजकता फैलाने में जुट गई है।
3: विपक्ष ने इस मार्च को लोकतंत्र बचाओ मार्च नाम दिया, आवाज उठी चुनाव आयोग के खिलाफ, लेकिन अब सियासत शिव की बारात बनाम हुड़दंगियों की जमात वाली होने लगी है। एक दिन पहले राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक के नेता मार्च निकालते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। एसआईआर और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ये बड़ा मोर्चा था। उस मार्च से पहले ही राहुल ने ऐसा बयान दिया जो विरोधियों को पलटवार का मौका दे गया। राहुल ने इंडिया गठबंधन के मार्च को शिव की बारात बताया, तो शिवराज ने इसे अराजक हुड़दंगियों की जमात करार दिया।
4: मेरी सिस्टर कहती है मुझे कि प्लान करना चाहिए, तो मैंने सिस्टर से कहा तुम बात समझ नहीं रही हो, ये तांडव है, ये शिव का डांस है, इसमें कोई प्लानिंग नहीं होती। आज हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, कल कुछ और होगा, आइडिया वो ऊपर लिखा हुआ है, प्लान की कोई जरूरत नहीं है, ये डांस चल रहा है, ये शिव जी का डांस चल रहा है, इसमें शिव की बारात में कोई भी आ सकता है। जिस मैंने बोला गो बैक, देखिए ये शिव की बारात है, इसमें किसी को भी आना आ सकता है, कोई भी जीव आ सकता है, हम रोकेंगे नहीं।
5: इसलिए मैं बड़ी तकलीफ के साथ ये कह रहा हूं कि कांग्रेस अब देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ हाथ मिला रही है। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व पूरी तरह दिशाहीन है। अभी कह रहे थे कांग्रेस तो शिवजी की बारात है, ये राम का विरोध करने वाले शिवजी की बारात की बात कर रहे हैं, ये शिवजी की बारात नहीं है।

0: फैलाने वाले हुड़दंगियों की जमात है जो सड़कों पे अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही है।
1: बीजेपी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर अराजकता फैलाने के गंभीर आरोप लगाए हैं, तो विपक्ष ऐसे आरोपों से बेपरवाह है। सोमवार को ही विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दे दी, जिसमें आयोग को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि अब तक वो याचिका लिस्ट नहीं हुई है, क्योंकि उसमें 14 खामियां बताई गई हैं। ऐसे तमाम गतिरोध के बीच इंडिया ब्लॉक के नेता आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। शाम 4 बजे सभी विपक्षी दलों के नेता राहुल गांधी की आवाज पर जुटेंगे, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और फिर चाय पार्टी भी करेंगे। हाईटी का आयोजन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सरकार के खिलाफ कांग्रेस के आंदोलन के बदले तेवर की नई कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। 7 अक्टूबर को जंतर मंतर मार्च से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सागर रत्ना में लंच दिया था। अगले दिन 8 अक्टूबर को राजघाट जाने से पहले कनॉट प्लेस के मोइट्स रेस्टोरेंट में इंडिया गठबंधन के नेताओं को लंच दिया गया था और अब आज चाय पार्टी। सूत्रों के मुताबिक इस हाईटी में इंडिया ब्लॉक के सांसदों के अलावा सिविल सोसाइटी के सदस्य और छात्र संगठन के नेताओं को भी न्योता दिया गया है। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।
2: और एक दिन पहले राहुल गांधी की अगुवाई में इंडिया ब्लॉक ने दिल्ली के बाराखंबा रोड से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकाला है
3: और इस मार्च में विपक्षी एकता की झलक मिली। विपक्षी दलों के नेताओं ने चुनाव आयोग के साथ साथ बीजेपी को भी घेरा।
4: आई'd लाइक टू थैंक एवरी सिंगल पर्सन हु केम आउट फॉर दिस प्रोटेस्ट। आई'd ऑल्सो लाइक टू थैंक द मिलियंस ऑफ पीपल हु शोड सपोर्ट इन देयर ओन वे एट 3 o'clock। The leaders of India Bloc, all the workers of the Congress Party, workers of the India Bloc, this was a very important thing because we needed to show the government that the people of India are not going to be intimidated. You cannot beat us, you cannot threaten us, you cannot frighten us. We will not accept being bullied.
2: और इस पूरे मामले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने, सुनिए।
5: देश को अराजकता की आग में झोंकने के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार राहुल गांधी और उनके साथियों के द्वारा आज दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय में जिस प्रकार का अशोभनीय दृश्य दिखाया गया, ये भारत के इतिहास में इसकी कोई मिसाल नहीं है। जिस प्रकार से हुजूम लेकर न्यायालय को प्रभावित करना, आतंकित करना, मुझे लगता है आज तक कोई नेता प्रतिपक्ष ऐसा नहीं रहा होगा। और उतर कर दूसरी तरफ भाग कर अपने सिक्योरिटी कॉर्डन को ब्रेक करते हुए दूसरे गेट से अंदर जाने का प्रयास, ये दर्शाता है कि या तो वो मानसिक संतुलन खो चुके हैं या संदिग्ध शक्तियों के द्वारा इस सीमा तक संचालित हैं कि वो किसी भी हद तक नीचे गिरने को तैयार हैं ताकि भारत की सड़कों पर अव्यवस्था दिख सके।
6: याचिका सुपुर्द हो गई है, उसमें वो सभी ग्राउंड्स हैं जिसके अंतर्गत गैर कानूनी काम किया है, जो निर्णय है उनको क्वॉश करना चाहिए। जो जो चीजें आपने पढ़ी है, सुनी है, उनके विषय में याचिका है।
3: और सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर, जेएनयू में 11 छात्राओं से यौन शोषण के आरोपों में गिरे कांग्रेस सांसद के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। आज बीजेपी की महिला सांसद राष्ट्रपति से मिलने वाले हैं।
2: 2 दिन पहले कांग्रेस सांसद अगमचा बिबोल के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। इस मामले को लेकर 1 दिन पहले बीजेपी ने दिल्ली में प्रदर्शन किया। बीजेपी की लोकसभा राज्यसभा महिला सांसद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से 1:30 बजे मुलाकात करेंगी।
7: दिल्ली की सियासत में ये दूसरा मोर्चा है। कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोईजाम के खिलाफ ये गुस्सा फूटा है। कांग्रेस दफ्तर के बाहर बीजेपी की महिला मोर्चा ने कांग्रेस सांसद के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी कांग्रेस सांसद की गिरफ्तारी की मांग करते रहे। इस प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के निशाने पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी रहे। इनर मणिपुर से कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोईजाम पर जेएनयू की 11 छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल अकोईजाम जेएनयू में प्रोफेसर थे। वहां की 11 छात्राओं ने उन पर यौन शोषण जैसे गंभीर इल्जाम लगाए। तमाम आरोपों के बाद जेएनयू ने आंतरिक जांच बिठाई। इस जांच में अकोईजाम पर तमाम आरोप सही साबित पाए गए। उसी रिपोर्ट के आधार पर जेएनयू ने 9 अक्टूबर को प्रोफेसर पद से उन्हें हटा दिया। उसके दो दिन बाद यानी 11 अक्टूबर को आरोपी कांग्रेस सांसद के खिलाफ

0: अलग अलग धाराओं में FIR भी दर्ज करा दी। दिल्ली पुलिस का FIR दर्ज करते ही कांग्रेस सांसद के खिलाफ BJP ने मोर्चा खोल दिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कांग्रेस पर हमला बोला।
1: हमारे 9 अक्टूबर को 2026 को बिमल अकबरजम जो कांग्रेस के सांसद हैं उनके खिलाफ बहुत संगीन सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोपों में तथ्य पाए गए और इसीलिए JNU की इंटरनल कमिटी ने उनको तुरंत नौकरी से बर्खास्त करा। बहुत अजीब बात है कि इस पर चुप्पी साधे हुए हैं राहुल गांधी जी भी, माननीय प्रियंका गांधी जी भी, खड़गे जी भी और माननीय सोनिया गांधी, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी ने कोई डिसिप्लिनरी एक्शन इनिशिएट नहीं करा। इसीलिए मैं आज पूछना चाहती हूं उनसे, राहुल गांधी जी क्या स्मैश द पेट्रियार्की आपके लिए केवल एक चुनावी जुमला है, केवल एक पॉलिटिकल रेटोरिक है?
0: BJP नेता विनोद तावड़े ने दिल्ली में BJP के प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं पर हमले के आरोप भी लगाए। JNU के प्रोफेसर रहे कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोजाम के खिलाफ सियासी संग्राम सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, देश के अन्य हिस्सों में भी BJP के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी जगहों से गिरफ्तारी की मांग उठी है, लेकिन कांग्रेस अपने सांसद पर लगे गंभीर आरोप और दर्ज FIR को लेकर अब तक तमाम आरोपों को लेकर चुप है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और पीयूष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
2: आरोपी कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल पर आरोप लगे, इन आरोपों के बाद उन्होंने क्या कहा है वो भी आपको सुनाते हैं।
3: No, this is nothing but harassment. They know that once this Kha Panchayat style of doing by JNU, if it is challenged in a court of law, the court will take notice of the complete disregard for norms and rules and regulations. So they are trying to drag it to a court, which will not also not stand. And I have said before, if you go into the merit of the case, in itself also people will get exposed. What is this so-called harassment allegation? So
4: rukiye actually is a break ke liye forward honge hazir dikhte rahiye aaj tak.
5: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health ka Sach in association with
6: Bharat ki apni electric sawari Sokudo.
7: AU करेंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
8: सोच बदलो और बैंक भी।
9: आप महामहिम राष्ट्रपति जी के पास गए, वहां पर भी आपको कहा गया कि शिकायत के साथ सबूत दीजिए, तो आप बगले झांकने लगे, भाग गए, चुप्पी साध ली। और सुप्रीम कोर्ट ने तो श्रीमान राहुल गांधी जी से साफ साफ कह दिया कि कोर्ट को आप अपनी राजनीति का रणक्षेत्र नहीं बना सकते। इनका फंडा बहुत क्लियर है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का, राज नहीं तो अराजकता फैला दो।
10: सत्ता में रहते हुए जिन्होंने देश को लगातार लूटा है वह चोरी की बात कर रहे हैं। बार बार बार बार जिनको जनता ने हराया है उनको तो आत्मचिंतन करना चाहिए, लेकिन हार हार के इतने कुंठित हो गए हैं कि अब धमकी देने पर उतर आए हैं, अमर्यादित आचरण कर रहे हैं। लोकतंत्र में विरोध की भी मर्यादा होती है, और विशेषकर जब कोई नेता प्रतिपक्ष जैसे पद पर हो, हार की खींच कुंठा में बदल रही है और संतुलन बिगड़ रहा है, हर किसी को धमकियां दी जा रही है।
11: अच्छा, आजकल हमें इंफॉर्मेशन सब जगह से मिल रही है। ज्ञानेश कुमार जी, हम जानते हैं आपकी क्या हालत है, हम जानते हैं कि आप रात को सो नहीं पाते हो, और आप घबराइए मत, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। आप, मैं आपको डायरेक्टली कह रहा हूं, आप बचोगे नहीं एज इलेक्शन कमिश्नर, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो हो रहा है, ये लाखों लोग जो हैं ये आपके बारे में, आपके बिहेवियर के बारे में सवाल पूछ रहे हैं, और ये रुकेंगे नहीं। रुकेंगे क्यों नहीं? क्योंकि आपके सामने भी लोग हैं, और उन तक पहुंचने के लिए हमें आपको हटाना है।
10: एक के बाद एक चुनाव हारना और उसकी खीज आंदोलन करके सड़क पे निकालना, ये कांग्रेस की नियति बन गई है, और चुनाव की हार का दोष भी कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं पर मढ़ने का पाप करती है। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस के मित्रों से, कांग्रेस की हार का कारण चुनाव आयोग नहीं है, कांग्रेस की हार का कारण स्वयं कांग्रेस का विचार शून्य नेतृत्व है।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: शेयर बाजार में पैसा लगाने वालों के लिए विदेशी नागरिकों की हर चाल काफी मायने रखती है। ये निवेशक जब बाजार में पैसा लगाते हैं तो खरीदारी को सपोर्ट मिलता है, लेकिन जब लगातार बिकवाली करते हैं तो बाजार पर दबाव बढ़ जाता है। भारतीय शेयर बाजार में इन दिनों कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर के शुरुआती 6 दिनों में विदेशी नागरिकों ने भारतीय शेयर बाजार से 44,166 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। इसके साथ ही 2026 में उनकी कुल बिकवाली 3,00,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गई है। NSDL के आंकड़ों के मुताबिक 2026 में अब तक विदेशी निवेशकों ने शेयर बाजार से 3.04 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। 2025 में ये निकासी 1.66 लाख करोड़ रुपए थी। वहीं सितंबर 2026 में विदेशी निवेशकों ने 35,861 करोड़ रुपए के शेयर बेचे थे, जबकि जुलाई में 20,200 करोड़ और अगस्त में 29,631 करोड़ रुपए का निवेश किया था। यानी जुलाई और अगस्त में खरीदारी करने वाले विदेशी निवेशक सितंबर से फिर बिकवाली की तरफ मुड़ गए हैं। भारतीय बाजार से इतनी बड़ी रकम निकालने की एक बड़ी वजह भारत के बाहर निवेश के दूसरे विकल्पों का आकर्षक होना है। महंगा कच्चा तेल, मजबूत अमेरिकी डॉलर और अमेरिकी सरकारी बॉन्ड पर ऊंचा रिटर्न विदेशी निवेशकों को भारतीय शेयरों से पैसा निकालने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। दरअसल अमेरिका के 10 साल के सरकारी बॉन्ड पर 5.2% से ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। वहीं महंगे कच्चे तेल से भारतीय अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ने की आशंका है। उधर एशियाई बाजारों में AI कंपनियों के शेयरों की तेजी भी विदेशी निवेशकों को आकर्षित कर रही है। विदेशी निवेशकों का पैसा निकालना अपने आप में इस बात का संकेत नहीं है कि भारतीय बाजार में कोई बड़ी कमजोरी आ गई है। दुनिया भर में निवेशक बेहतर रिटर्न के मौके तलाश रहे हैं। हालांकि विदेशी निवेशकों की बिकवाली के बीच भारतीय बाजार को घरेलू निवेशकों से सहारा मिल रहा है। फिलहाल माना जा रहा है कि विदेशी निवेशकों की वापसी के लिए कच्चे तेल की कीमतों में नरमी खास रोल निभाएगी। वहीं अमेरिकी बॉन्ड पर रिटर्न घटने से भारतीय शेयरों की तरफ पैसा लौटने की संभावना है। भारतीय कंपनियों के शेयर आकर्षक कीमतों पर मिलने से भी विदेशी निवेश बढ़ सकता है। विदेशी निवेशकों की बिकवाली और भारत में गिरावट के बीच सीधा रिश्ता होने के बावजूद हर गिरावट की वजह केवल विदेशी निवेशक नहीं होते। जानकारों के मुताबिक निवेशकों को बाजार की चाल समझने के लिए कंपनियों के नतीजे, शेयर की कीमत और वैश्विक हालात पर भी नजर रखनी चाहिए। आदित्य के राणा आज तक।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

की गई नशे के खिलाफ उठी एक और आवाज। मानसा में ड्रग एक्टिविस्ट की गोली मारकर हत्या, कैमरे में फायरिंग की तस्वीरें, विपक्ष ने कहा कानून व्यवस्था चौपट। ब्लूमबर्ग न्यू इकॉनमी फोरम में बोले पीएम मोदी, दुनिया में आज भरोसे का संकट, चुनौतियों में साथ खड़ा होने वाला ही असली दोस्त, जोड़ने और जुड़ने में यकीन रखता है भारत, हमारी शक्ति से मानवता को सामर्थ्य।

की अर्थव्यवस्था जीडीपी ग्रोथ को लेकर आईएमएफ का बड़ा अनुमान 7% की हो सकती है रफ्तार। वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद हिंदुस्तान सबसे आगे। जंतर मंतर जा रहे सीजेपी के सौरभ दास और आशुतोष रांका को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। रोक के बावजूद अपने साथियों के साथ पीछे की तरफ से जंतर मंतर में घुसने की थी कोशिश। पहली बार विपक्षी काफिले के साथ सुप्रीम कोर्ट मार्च करने के बाद राहुल गांधी की नई रणनीति। आज गठबंधन इंडिया के नेताओं को चाय पर बुलाया। चर्चा के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्लान।

0: साथ गृहमंत्री अमित शाह की बैठक के बाद उनका संबोधन चल रहा है।
1: एक सदस्य देश की सुरक्षा व्यवस्था दूसरे सदस्य देशों की सुरक्षा में सहायक बने, हमारा साझा संकल्प हो कि क्षेत्र के किसी भी हिस्से में आतंकवादी नेटवर्क को आश्रय, भर्ती और प्रशिक्षण, इसके साथ साथ संसाधन जुटाने या पड़ोसी देशों के विरुद्ध गतिविधियों चलाने की गुंजाइश और जगह न मिले। राष्ट्रीय कानूनों और लागू संधियों के अनुरूप पारस्परिक विविध सहायता और प्रत्यार्पण में हम लोग एक दूसरे का सहयोग करें। अपराधियों को न्याय के समक्ष लाने के हमारे प्रयासों को हम इससे और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। मित्रों, मुझे 13 फरवरी 2020 का अवसर स्मरण है, जब मैंने दिल्ली में बिम्स्टेक की कॉन्फ्रेंस ऑन कॉम्बेटिंग ड्रग ट्रैफिकिंग को संबोधित किया था। उस अवसर पर मैंने सदस्य देशों के प्रयासों को पूरक बनाने और समन्वय रणनीति अपनाने पर जोर दिया था। मानव तस्करी भी, भारत का मानना है कि ड्रग ट्रैफिकिंग एक प्रकार की डेट ट्रैफिकिंग है। इस भावना के साथ मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि मादक पदार्थों की तस्करी में कुछ भी गोल्डन नहीं है, इसलिए हम गोल्डन ट्रायंगल के रूप में जिस क्षेत्र को जानते थे उसे मैं हमेशा डेथ ट्रायंगल कहना पसंद करता हूं। यह केवल नशे का कारोबार नहीं है, बल्कि हमारे युवाओं के जीवन, हमारे समाज, हमारी संस्कृति और आने वाली पीढ़ियों पर हमला है। यह एक देश के प्रयासों से रुक नहीं सकता। हमें होल ऑफ रीजन अप्रोच अपनाना होगा। ड्रग की अवैध कमाई संगठित अपराध को आर्थिक शक्ति देती है और आतंकवादी वित्त पोषण में भी इसका इस्तेमाल होता है। प्रीकर्सर्स रसायनों का डायवर्जन और डार्क वेब के माध्यम से लेनदेन इस चुनौती को और जटिल बनाते हैं। मानव तस्करी भी हमारे साझा सुरक्षा और मानव अधिकारों के समक्ष गंभीर चुनौती है। पीड़ितों की पहचान, बचाव, सहायता, पुनर्वसन और सुरक्षित वापसी में सहयोग हमारे सामूहिक प्रयास का महत्वपूर्ण हिस्सा रहना चाहिए।
0: तो जहां ड्रग्स के खिलाफ केंद्र सरकार सख्त है, सख्ती की और बात कर रही, तो दूसरी तरफ पंजाब में जो ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठा रहे थे उनकी हत्या कर दी जा रही है। और पंजाब के मानसा से खबर, जहां पर नशे के खिलाफ बड़े स्तर पर सामाजिक मुहिम चलाने वाले मशहूर नशा विरोधी एक्टिविस्ट परमिंदर सिंह झोटा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक परमिंदर सिंह झोटा पर आज सुबह फायरिंग की गई, जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हुए। फिर उन्हें मानसा सिविल हॉस्पिटल भर्ती करवाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी।

0: हमारी संवाददाता कमलजीत संधू इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। कमलजीत, ये आखिर पंजाब में हो क्या रहा है? ड्रग्स का जाल जो आवाज उठा रहा है उसके खिलाफ उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है?
1: कानून व्यवस्था के ऊपर कई सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि कई बार तो पुलिस वाले निशाने पे रहे हैं, कई बार सरपंच एक सरपंच निशाने पे रहे हैं, लेकिन अब दुखद समाचार ये है कि जिस तरह से गोलियों से मार दिया गया, खासतौर पे सोशल एक्टिविस्ट जो ड्रग्स के ऊपर काम कर रहे थे, जो एंटी ड्रग कैंपेन चला रहे थे, वो ही निशाने पे आ गए हैं। और आप अगर वीडियो को ध्यान से देखें तो कई मिनट ये आर्ग्यूमेंट होता है जहां पे परविंदर अपने फेसबुक पे लाइव जाते हैं और उसके बाद वो कन्फ्रंट करते हैं केमिस्ट को और बोलते हैं कि यहां से नशा बिकता है, और वहां पे आप देखिए कि कई मिनट आर्ग्यूमेंट चलता है। उसके बाद जो सहयोगी है वो अंदर जाता है, जो केमिस्ट का सहयोगी है, असिस्टेंट है, और अंदर से पिस्तौल लेके जाता है और उसी बीच में बोला जाता है कि आप गोली चला के दिखाइए। तो इस तरह से जो आर्ग्यूमेंट है वो लगातार बढ़ती जा रही है और अचानक से वो असिस्टेंट है वो गोली दाग देता है। और उसी वक्त अगर आप फेसबुक का भी पूरी घटनाक्रम देखें तो वहां पे जो आखिरी वक्त जहां पे परविंदर जिंदा नजर आ रहा है वहां पे भी उनकी चेहरा नजर आ रहा है और ऐसा लगता है कि सीधा जो गोली है वो छाती पे लगे है। अब जो एसएसपी हैं वैभव चौधरी वो सिविल अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक परविंदर ने दम तोड़ दिया था। लोग गुस्से में आके उन्होंने घेराव किया, खासतौर पे सिविल अस्पताल का। वो मांग कर रहे हैं कि इसमें स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जाए। और इसी तरह से एसएसपी का भी यही कहना है कि जो अक्यूज है उन्हें आइडेंटिफाई कर लिया गया है, छापेमारी चल रही है और एक एग्जेम्पलरी पनिशमेंट दी जाएगी। लेकिन बात वही आ जाती है कि कानून व्यवस्था का क्या और ड्रग्स इस तरह से खुलेआम क्यों बिक रहे हैं?
0: जो आवाज उठा रहा है उसकी जान जा रही है, खुद पुलिस वाले सेफ नहीं है, बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया कमलजीत आपका जानकारी के लिए। 12:12 रिपोर्ट। अब मैं आप खबर दिल्ली से जाएं। एक सनसनीखेज रिपोर्ट सामने आई, दिल्ली के जखीरा इलाके में एक नाइट क्लब में बाउंसर की पिटाई से 29 साल के शख्स की मौत हो गई है और उसकी शिनाख्त दलजीत के रूप में हुई है। घटना के समय मृतक के साथ मौजूद उसके परिवार वालों और दोस्तों का आरोप है कि यह घटना तब हुई जब मृतक के बियर क्लब में मालिक के साथ आई एक महिला पर गिर गए, बियर गिर गए। और पुलिस का कहना है कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, एफआईआर दर्ज कर ली गई।
2: दिल्ली के सराय रोहिला थाना इलाके में एक क्लब के बाउंसर्स पर एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर देने का आरोप लगा है। ये वाकया शनिवार रात का है। बताया जा रहा है कि दलजीत नाम का एक शख्स अपने दोस्तों के साथ क्लब गया था और वहां पर दलजीत के हाथ से कुछ बियर एक महिला के ऊपर गिर गई, जिसके बाद झगड़ा शुरू हो गया। क्लब के बाउंसरों के साथ पहले धक्का मुक्की हुई और उसके बाद मारपीट की गई दलजीत और उसके दोस्तों के साथ। दोस्त फिर दलजीत को लेकर उसके घर पहुंचे जहां दलजीत गिर पड़ा और उसके बाद दलजीत को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने दलजीत के परिवार वालों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली है और 5 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है, दलजीत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है ताकि ये साफ हो सके कि मौत किन चोट की वजह से हुई, और साथ ही साथ सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं।
0: प्रदर्शन के लिए बंद होने के अगले ही दिन आज दिल्ली में जंतर मंतर पर सुबह सुबह बेहद नाटकीय नजारा देखने को मिला। कॉकरोच जनता पार्टी के नेता सौरभ दास और आशुतोष शांका को प्रदर्शन करने की कोशिश में दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कुछ साथियों के साथ दोनों ही जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे।
3: जंतर मंतर पर आज सुबह सुबह हड़कंप उस वक्त मच गया जब कांग्रेस जनता पार्टी के लीडर सौरभ दास आशुतोष रांका अपने कुछ समर्थकों के साथ जंतर मंतर पर पहुंच गए और वहां पर नारेबाजी करने लगे। दिल्ली पुलिस की टीम वहां पर पहुंची और सभी को हिरासत में ले लिया। कांग्रेस जनता पार्टी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि सौरभ दास, आशुतोष रांका और उनके समर्थक एक गेट को फांदकर जंतर मंतर पर पहुंचे हैं और वहां नारेबाजी कर रहे हैं। और ये भी दिखाई दे रहा है कि दिल्ली पुलिस की टीम वहां पर पहुंची, सौरभ दास, आशुतोष रांका और सभी को हिरासत में ले लिया। जांच में पता चला है कि जंतर मंतर के पास जेडीयू का एक दफ्तर है, उस दफ्तर के परिसर से ये सभी अंदर दाखिल हुए, उसके बाद गेट कूदते हैं और जंतर मंतर पर पहुंच जाते हैं। फिलहाल सभी को दिल्ली पुलिस ने अपनी हिरासत में रखा है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि जांच के बाद इस मामले में एफआईआर भी दर्ज हो सकती है।
0: अगली खबर जंतर मंतर को लेकर ही है। जंतर मंतर को लेकर होने वाली सुनवाई पर दिल्ली हाईकोर्ट आज प्रदर्शन के लिए जंतर मंतर को बंद करने के खिलाफ दाखिल अर्जी की सुनवाई करने वाला है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन नहीं हो पाएंगे और इस पर अब आज हाईकोर्ट में सुनवाई है क्योंकि इसी के खिलाफ कोर्ट पहुंच गए।
4: राजधानी दिल्ली में सरकार तक अपनी बातें और विरोध प्रदर्शन करने की जगह की सूची से जंतर मंतर को हटाए जाने को लेकर दाखिल याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई करने जा रहा है। हालांकि इसी मसले पर कि जगह नहीं बदली जाए, इसी मसले पर सुप्रीम कोर्ट में भी चर्चा हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा कि एक ऐसी जगह होनी चाहिए धरना प्रदर्शन के लिए जब राजधानी दिल्ली को इस तरह से चौक कर दिया जाता है तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है, तो ऐसे में कोई ऐसी जगह सरकार तय करे जहां पर लोग आसानी से पहुंच सकें और अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए धरने प्रदर्शन कर सकें, क्योंकि उनकी आजादी है धरना प्रदर्शन करने की, विरोध प्रदर्शन करने की। इस पर सरकारी सूत्र तो बता रहे हैं कि उन्होंने ईयर मार्क करने का प्रस्ताव दिया है जिसे बुराड़ी के मैदान में ऐसा किया जा सकता है, लेकिन याचिकाकर्ताओं का कहना है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, हम जंगल में जाकर प्रदर्शन नहीं करेंगे, हम सरकार के दरवाजे पर प्रदर्शन करना चाहते हैं ताकि हम प्रदर्शन करते समय सरकार तक पहुंच सके और सरकार के कानों तक अपनी आवाज पहुंचा सके।
0: तो जंतर मंतर को लेकर अब घमासान नया देखने को मिल रहा है क्योंकि कांग्रेस जनता पार्टी और दूसरे लीडर्स कह रहे हैं कि जंतर मंतर की पहचान प्रदर्शन को लेकर है और अब पूरा देश जंतर मंतर बनेगा। कल बाराखंबा रोड से सुप्रीम कोर्ट तक एक मार्च हुआ और उस मार्च के बाद अब आज विपक्षी दलों की क्या प्लानिंग आपको बताते हैं। आज टी ब्रेक का दिन है और आज शाम 4 बजे लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी अपने घर पर चाय पार्टी हाई टी देने वाले हैं और इसमें इंडिया ब्लॉक के सांसदों के अलावा सिविल सोसाइटी के लोगों को, छात्र यूनियन के नेताओं को भी बुलाया गया और पूरी खबर बता रहे हैं संवाददाता मौसमी सिंह।

0: राहुल गांधी ने कल ये मार्च निकाला, प्रियंका गांधी और ऑपोजिशन के लीडर साथ में दिखाई दिए, एकजुट होकर उन्होंने अपनी बात रखी और उसके बाद अब ये जो रणनीति आगे बढ़ती चली जा रही, क्योंकि आज शाम 4 बजे ये प्लानिंग है और इंडिया ब्लॉक की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस साझा होने वाली है। हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा की रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं।
1: सोमवार को सीसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में सुप्रीम कोर्ट तक का मार्च और मंगलवार को चाय पार्टी। राहुल गांधी ने इंडिया ब्लॉक के तमाम सहयोगियों को न्योता दिया, साथ रखा। विरोध प्रदर्शन में इस सड़क पर जब मार्च निकाला तब भी इंडिया ब्लॉक के सहयोगी साथ थे और मंगलवार को चाय पार्टी में भी न्योता दिया कि आइए चाय पियेंगे, साथ में चर्चा करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल होंगे। संदेश राहुल गांधी ये दे रहे हैं कि विपक्षी दलों को एक साथ लाना है हर उस मुद्दे पर जहां बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यूनिटी सबसे बड़ा सवाल रहा इंडिया ब्लॉक के लिए कि कई बार कई दल अलग अलग मुद्दों पर अलग थलग पड़ गए, फिर चाहे वैसी हो आम आदमी पार्टी और दूसरे कई सारे ऐसे घटक दल जो इस ब्लॉक में इस मार्च में उस समय शामिल नहीं थे, लेकिन चाय पार्टी के साथ राहुल गांधी एक बार फिर कर रहे हैं कि जो भी सरकार के खिलाफ उन मुद्दों पर एक साथ खड़ा है उसे एक छाते के नीचे एक साथ आना चाहिए। तो आगे 5 राज्यों के चुनाव हैं और इसमें कई सारे गठबंधन और घटक वो दल हैं जिनके साथ कांग्रेस की अपनी अनबन है, लेकिन संदेश देने की कोशिश ये है कि मुद्दा बड़ा है। एसआईआर से लेकर के ज्ञानेश कुमार जहां तक बीजेपी को घेरने की कोशिश होगी, ऐसे में वो अपने उन तमाम साथियों को साथ रखना चाहते हैं और चाय से बेहतर शुरुआत आखिर राहुल गांधी के लिए क्या हो सकती है।
0: अब आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल विपक्ष के अर्जी के एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल विपक्ष के अर्जी में 14 खामियां पाए गए हैं। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने अब तक सुनवाई के लिए यह याचिका लिस्ट नहीं की है और अर्जी में क्या क्या खामियां हैं बता रही संवाददाता अनिशा माथुर।
2: पूरी भीड़ के साथ विपक्ष के इंडिया ब्लॉक के नेता कल सुप्रीम कोर्ट तो पहुंच गए, लेकिन उनकी जो याचिका दाखिल की गई है वो बहरहाल सुनवाई पर नहीं आ पाएगी, क्योंकि याचिका में कई खामियां सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने निकाली हैं। याद रखिएगा, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सुप्रिया सुले, अखिलेश यादव और भी बहुत सारे नेता जो इंडिया ब्लॉक के नेता हैं, जो पक्षकार बने हैं इस याचिका में, 11 नेताओं के नाम बतौर पक्षकार याचिका में हैं, लेकिन 11 में से 9 लोगों का वकालतनामा, यानी कि जो कागज होता है कि हम वकील को ऑथराइज कर रहे हैं याचिका डालने के लिए, वो वकालतनामा ही याचिका के साथ दाखिल नहीं किया गया। साथ ही साथ कोर्ट फीस में भी कुछ कमी थी, मल्लिकार्जुन खड़गे की जो आईडी प्रूफ दिया गया उसकी फोटोकॉपी सही नहीं थी और भी कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स दी गई जिनकी फोटोकॉपी साफ नहीं है। तो हालांकि याचिका में सीईसी की फंक्शनिंग पर, इलेक्शन कमीशन की फंक्शनिंग पर और ज्ञानेश कुमार के यूनिलैटरल यानी कि एक तरफा डिसीजन मेकिंग को खटघरे में लाया गया है, याचिका में ये भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने जो भी निर्णय लिए हैं इस तरह से उनको खारिज किया जाए, लेकिन ये याचिका आखिर कब सुनी जाएगी ये देखना बाकी रहेगा।
0: बगैर इजाजत मार्च निकालने के खिलाफ कल के विपक्ष के प्रदर्शन को लेकर अब दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और दिल्ली के बाराखंबा और तिलक मार्ग थाने में एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट मार्च के लिए कोई इजाजत नहीं मिली थी। आरोप है कि मार्च के दौरान कई विपक्षी नेता मिनी ट्रक से बैरिकेडिंग तोड़ते नजर आए।
3: कल राजधानी दिल्ली में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने मार्च निकाला, शक्ति प्रदर्शन किया और सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ उनके कैंपेन को और भी ज्यादा मजबूत किया। इंडिया गठबंधन के इस मार्च में राहुल गांधी नेतृत्व करते हुए दिखे तो गठबंधन के कई बड़े नेता जिसमें अखिलेश यादव से लेकर तेजस्वी यादव तक शामिल थे, ये सब मार्च में शामिल हुए। अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 2 नए एफआईआर दर्ज कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि मार्च के लिए कोई अनुमति नहीं थी और कई जगह पे बैरिकेड्स को तोड़कर विपक्षी नेता आगे बढ़े थे और अंततः पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में सीसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ फाइल हुई थी। राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि इस तरह के एफआईआर उनके लिए मेडल की तरह है। फिलहाल 45 एफआईआर हो चुके हैं और उनका खुद का टारगेट 100 एफआईआर का है।
0: अगली रिपोर्ट लखनऊ से, जहां पर दिल्ली चलो मार्च में यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय राय के शामिल न होने पर सियासी हलचल बढ़ गई है। अजय राय की नाराजगी की खबरों के साथ साथ उनके पार्टी छोड़ने की भी चर्चाएं तेज हो गई हैं।
4: तो अजय राय नाराज हैं, बेहद नाराज हैं। तो क्या अजय राय कांग्रेस छोड़ देंगे और छोड़कर क्या अपने पुराने जड़ों की ओर यानी बीजेपी की ओर लौट जाएंगे, इसकी चर्चा सियासी गलियारे में चल रही है। लेकिन अजय राय की नाराजगी का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि राहुल गांधी के बुलाए गए दिल्ली में प्रोटेस्ट में भी वो शामिल नहीं हुए। उन्हें मनाने की कोशिश पार्टी की तरफ से चल रही है। कहा यह जा रहा है कि उन्हें दूसरे राज्य का प्रभार दिया जा सकता है, मगर क्या अजय राय मानेंगे? उनके ऊपर चार्जेज, जो आरोप लगाए गए हैं, वो भी एक दलित महिला अध्यक्ष ने आरोप लगाए हैं। ऐसे में उनके खिलाफ जांच समिति भी बैठ गई है। नाराज इस कदर हैं और इस वजह से हैं कि जिस तरीके से उनको हटाया गया वो अजय राय को गवारा नहीं हुआ। और एक तरीके से उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ तो कुछ नहीं बोला, लेकिन उनके गुस्से से साफ है कि उनकी नाराजगी पार्टी और प्रदेश के शीर्ष नेताओं से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो क्या वो कांग्रेस में रहकर दूसरे राज्य का प्रभार संभालेंगे या फिर 2027 के लिए कहीं और ठिकाना तलाशेंगे? नजरें रहेंगी कि क्या वो बीजेपी वापस आते हैं या फिर कांग्रेस में ही रहते हैं।
0: अब बात महंगाई की। देश पर महंगाई की मार पड़ी और खाने पीने की चीजें महंगी हो गई। कल महंगाई पर एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट की जानकारी दे रहे हैं संवाददाता चेतन भूटानी।
5: इंडिया में महंगाई एक बार फिर बढ़ गई है। सितंबर में रिटेल इन्फ्लेशन बढ़कर 5.54% पर पहुंच गया, जबकि अगस्त में 4.83% थी। लेकिन सबसे बड़ी चिंता फूड इन्फ्लेशन को लेकर है। खाने पीने की चीजों की महंगाई अगस्त के महीने में लगभग 5.97% से बढ़कर सितंबर में 7.74% हो गई है। सबसे बड़ा झटका प्याज की कीमतों से लगा है। सितंबर में अनियन इन्फ्लेशन लगभग 108% रही, यानी पिछले साल के मुकाबले प्याज की कीमतें दुगने से भी ज्यादा बढ़कर हो गई हैं। अदरक और लहसुन की कीमतों में भी तेजी दर्ज की गई है, लेकिन आने वाले समय में देखना पड़ेगा सरकार कैसे मैनेज कर रही है। रूरल एरियाज में रिटेल इन्फ्लेशन लगभग 6% रही, जबकि अर्बन एरियाज में 4.88% दर्ज की गई। ये आंकड़े रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के लिए भी अहम है, क्योंकि इससे वो अनुमान लगा सकता है कि इन्फ्लेशन लगातार 14 महीने RBI के 4% टारगेट से भी ऊपर रही है। हालांकि ये अभी RBI के 6% के अपर टॉलरेंस लिमिट के अंदर है। RBI ने अक्टूबर में रेपो रेट 5.5% पर रखा है, हालांकि 0.25 ही बढ़ाया गया है। अब देखना होगा कि फूड प्राइसेस में ये तेजी आने वाले महीनों में कितनी देर तक बनी रहती है और आम आदमी को कितना इसके बजट पे इम्पैक्ट पड़ता है।
0: वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: आगे आगे करेक्ट करेक्ट
9: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: माँ के पैरों की धूल माथे पर लगा, परदेश की गलियों में अपने वतन के गीत सुनो।
3: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
4: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
5: सोच बदलो और बैंक भी।
6: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार। सर एक बार दो थमका लगाने बस।
7: मेरे पास एक आइडिया है।
6: क्या?
7: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा TMT बार से जो बना है,
8: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला, पर स्टेज नहीं हिलता,
9: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा TMT से बना है।
10: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही TMT बार से बना है।
11: कौन सी बनानी है?
12: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।

0: Love and Care, the world's finest range of rubber pet toys.
1: बच्चों के लिए अलग टीवी रूम बना सकते हैं।
2: कैसा लगा आप दोनों को अपना ड्रीम होम?
3: I love it, absolutely amazing. तुम्हें काम करो, तुम मिठाई ऑर्डर कर लो।
4: मिठाई से पहले कुछ और हो जाए?
3: क्या?
4: इनकी राय?
5: नई सोच की नींव में हम, हर नई उम्मीद में हम, गैलेंट निर्माण का रियल हीरो।
6: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
7: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
6: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
8: हाउस द हॉस्टल सेटल्ड?
9: यस मैम, रियली नाइस।
8: कोई आ रहा है क्या?
10: तुम मॉम डैड वाली ड्यूटीज तो निभा ली, अब फिर से थोड़ा रोमांस ले।
8: मयंक, फॉर रियल?
10: वन कैरेट फॉर माय वन ट्रू लव। नेचुरल डायमंड रियल लव सॉलिडाइज टू रीइग्नाइट योर न्यू सीजन ऑफ लव।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार सर एक बार रोटी ठुमका लगाने बस।
3: मेरे पास एक आइडिया।
2: क्या?
3: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
4: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता,
5: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
6: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
7: कौन सी बनानी है?
8: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।

0: बच्चों के लिए अलग टीवी रूम बना सकते हैं।
1: कैसा लगा आप दोनों को अपना ड्रीम होम?
2: आई लव इट, एब्सोल्युटली अमेजिंग। तुम एक काम करो, तुम मिठाई ऑर्डर कर लो।
3: मिठाई से पहले कुछ और हो जाए
2: क्या?
3: इनकी राय।
4: नई सोच की नींव में हम, हर नई उम्मीद में हम, गैलेंट निर्माण का रियल हीरो।
5: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
6: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
5: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
7: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
8: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
9: सोच बदलो और बैंक भी।
10: In association with Canara Bank, together we can.
11: Anmol biscuits, swad jo banaye har pal anmol. Signature finest cardamom seeds. E3 HDMR, ye rishta lamba chalega.
12: घर में कोई बीमार पड़ जाए तो इलाज का खर्च अलग चिंता बन जाता है, लेकिन अब कई परिवारों को दवाओं का बिल भी पहले से ज्यादा भारी लग रहा है। एक नए सर्वे में बड़ी संख्या में लोगों ने कहा है कि जिन दवाओं का इस्तेमाल वो पहले से कर रहे हैं उनका खर्च पिछले कुछ साल में बढ़ गया है। लोकल सर्कल्स के सर्वे के मुताबिक 71% लोगों ने कहा है कि समान दवाओं पर उनका खर्च 3 साल पहले के मुकाबले बढ़ गया है। वहीं 16% ने इसमें 20% से ज्यादा बढ़ोतरी बताई है, जबकि 8% ने 50% से ज्यादा की बढ़ोतरी का दावा किया है और महज 3% ने खर्च घटने की बात कही है। इसका असर खास तौर पर उन परिवारों पर ज्यादा पड़ सकता है जहां लंबे समय तक दवाएं लेनी पड़ती हैं। सर्वे में अलग अलग तरह की दवाओं को लेकर भी सवाल पूछा गया, जिसके जवाब में 70% ने स्पेशलाइज दवाओं में 20% से ज्यादा बढ़ोतरी बताई, 52% ने सामान्य दवाओं में 20% से ज्यादा बढ़ोतरी की बात कही, 19% ने आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाओं में 20% से ज्यादा बढ़ोतरी का दावा किया और 85% ने कम से कम एक कैटेगरी में 20% से ज्यादा बढ़ोतरी महसूस की। डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों में दवाएं अक्सर बरसों तक चलती हैं।
13: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस।
15: इन एसोसिएशन विद
16: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
17: यूपी में आगामी चुनाव से पहले नाराज नेताओं को मनाने के मिशन में जुटे सीएम योगी, बागी और नाराज नेताओं और उनके परिवार वालों से मुलाकात का डैमेज कंट्रोल में जुटे। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए दोहरी रणनीति तैयार की, 4,03,000 ओबीसी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई। यूपी के कांग्रेस मुख्यालय में हुई मारपीट पर एक्शन में आला कमान, और विवाद और हंगामे की छानबीन के लिए राज्य प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने 5 सदस्यों की जांच टीम बनाई। इसकी कमान प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी को सौंपी गई है, जो कि 7 दिनों के भीतर आला कमान को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। अजय राय और उनके समर्थकों ने ममता चौधरी पर अपमान करने का आरोप लगाया, तो ममता चौधरी ने दलित विरोधी गाली देने, मारपीट करने का आरोप लगाया। बीजेपी सांसद अमर फर मौर्य ने अखिलेश यादव को एक खुला पत्र लिखा, परिवारवाद पर दागे सवाल। अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए उन्होंने लिखा कि पद आपके परिवार को दावा समाज का, सामाजिक न्याय के नाम पर परिवारवाद नहीं चलेगा। समाजवादी पार्टी ने यूपी के 100 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूचियों की जांच कर हजारों डुप्लीकेट और फर्जी वोटर्स पकड़ने का दावा किया है। सपा पार्टी के नेताओं ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंप कर इन फर्जी नामों को हटाने और विधानसभा चुनावों से पहले भौतिक सत्यापन कराने की मांग की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के 54 वाले तंज पर राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी ने एक बार फिर किया पलटवार, बोले कि मैं ब्रज की रज के बराबर भी नहीं। लखनऊ के चर्चित कारोबारी शिवा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस की जांच तेज, सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद मुख्य आरोपी गर्लफ्रेंड श्रद्धा दुबे और उसके सहयोगियों की तलाश में दबिश। शुरुआती जांच में सामने आया कि मॉडल श्रद्धा रसूख और ब्लैकमेलिंग के जरिए शिवा पर दबाव बनाती थी। पुलिस उसके पुराने मुकदमों और संपर्कों की कड़ियां खंगाल रही है। पुलिस को फ्लैट में जांच में कई आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई और साथ ही श्रद्धा के चैट से पता चला कि वो कई नेताओं के साथ संपर्क में थे। मृतक की मां रंजन शर्मा ने गर्लफ्रेंड और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर श्रद्धा दुबे पर बेटे को धक्का देकर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया। पुलिस ने मां की शिकायत पर श्रद्धा, उसकी बहन और ड्राइवर समेत 5 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा किया दर्ज। ओवैसी ने ट्वीट करके सीएम योगी पर साधा निशाना, कहा कि सीवेज प्लांट के नाम पर योगी सरकार ने आजमगढ़ के लोगों को धोखा दिया। यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा का कार्यक्रम घोषित किया। 5 फरवरी से 24 फरवरी तक 10वीं 12वीं की परीक्षा होगी। जौहर ट्रस्ट मामले में जेल में बंद आजम खान से पूछताछ होगी। बेटे अब्दुल्ला आजम पर भी ईडी की नजर, आजम खान के करीबियों से हो चुकी है पूछताछ। ईडी ट्रस्ट के फैसलों, जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण कार्यों और कथित अनियमितताओं से जुड़े पहलुओं पर करेगी जांच। योगी में खाद्य सुरक्षा पर जोर, 15 अक्टूबर 2026 से मिठाइयों पर उपयोग होने वाली अंतिम तिथि प्रदर्शित करना अनिवार्य भी होगा।

0: हम अपने खास कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले पटना से एक बड़ी खबर देते हैं, जहां पर प्रोटेस्ट प्रदर्शन देखने को मिला है और यहां पर भी चुनाव आयोग के खिलाफ, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ भी प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। लाल झंडे भी तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं और प्रोटेस्टर्स आप देखेंगे कि बैरिकेड करके उनको रोका गया आगे जाने से और वो वहीं पर धरना देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये समय आप पटना की तस्वीरें देख रहे हैं तो माहौल अपोजिशन के दल लगातार बनाए रखना चाहते हैं। सीसी ज्ञानेश कुमार पर लगातार दबाव बना रहे हैं कि महाभियोग लाएं, उससे पहले आप खुद ही दबाव में इस्तीफा दीजिए। ये मांग उनकी है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि वो पार्टी विशेष को मदद कर रहे हैं और वो लगातार प्रदर्शन रखे सीसी के खिलाफ। ये मोर्चा और ये मोर्चा लेफ्ट दलों के स्टूडेंट विंग का आहिस्सा का प्रोटेस्ट है और आहिस्सा ने कल भी प्रोटेस्ट किया था। कल तो राहुल गांधी के विपक्षी दलों के मोर्चा में भी वो दिखाई दिए थे और वहां नेहा बोरा दिखी। और आप पटना की सड़कों पर आप एक प्रोटेस्ट देख रहे हैं लगातार, चाहे कांग्रेस जनता पार्टी हो, पॉलिटिकल पार्टियां हो, गठबंधन इंडिया हो, और अब ये पटना में प्रोटेस्ट, तो एक पूरी की पूरी रणनीति तैयार है और कई महीनों की रणनीति तैयार है कि कैसे अब इस प्रोटेस्ट को गांव-गांव तक पहुंचाना है। तो ऐसे पहले देश की राजधानी दिल्ली, राजधानी के बाद पटना में प्रोटेस्ट देख रहे हैं और सभी शहरों में फिर जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, गांव स्तर पर इस प्रोटेस्ट को पहुंचाने का प्लान जरूर है। और पटना में आप चुनाव आयोग के खिलाफ, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ये प्रोटेस्ट देख रहे हैं इस समय और ये आयशा के समर्थक है, ये आयशा के कार्यकर्ता है जो हल्ला बोलते दिख रहे हैं और पुलिस को इस प्रदर्शन की आप देखें कि भनक थी तो ऐसे में बैरिकेडिंग की गई थी और इसमें बल भी आपको पूरी तरह से मुस्तैद तैयार दिखाई देगा। और ये लाल झंडों के साथ आयशा के कार्यकर्ता नारेबाजी करते हो, ज्ञानेश कुमार जिन्होंने अभी तक इस्तीफा दिया नहीं है वो अपने पद पर बने हुए हैं और ऑपोजिशन स्टूडेंट विंग लगातार दबाव बना रहे हैं, जो छात्र संगठन है वो लगातार दबाव बना रहे हैं। वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है कि SIR गलत तरीके से हो रही है, आरोप उनके बहुत सारे हैं और ज्ञानेश कुमार पर खासतौर पर हमलावर इस समय विपक्ष दिख रहा है। शशि भूषण हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ गए। शशि भूषण, तस्वीर तो हम देख ही रहे हैं लेकिन अब आप बताइए कि कैसे नियंत्रित किया जा रहा है, क्या क्या मांगे हो रही हैं, क्या प्लान है प्रदर्शनकारियों का?
1: राजीव, देखिए पहले से कॉल किया था जो वामपंथी लेफ्ट का स्टूडेंट विंग है आयशा और RYA, इन दोनों संगठनों ने आज राजभवन मार्च, जो पटना का लोकभवन है वहां तक मार्च करने का अपना कॉल बुलाया है और 10 बजे हालांकि इन्होंने समय दिया था लेकिन थोड़ी देरी हुई इनको निकलने में। पटना के गांधी मैदान से ये लोग निकले हैं और निकलते ही पुलिस ने इनको रोका है, जो पटना के गांधी मैदान के पास ही JP गोलंबर है वहीं पर इनको पुलिस ने रोका है। और ये जो तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं वो यहीं की तस्वीरें हैं और पुलिस कोशिश कर रही है कि अब जो प्रदर्शनकारी हैं उनको आगे न जाने दिया जाए। हालांकि केवल JP गोलंबर पे ही पुलिस का इंतजाम नहीं है या बैरिकेड्स यहाँ ही नहीं लगे हैं, इसके आगे जब आप जाते हैं तो डाक बंगला चौराहा वहां पर भी बहुत सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। तो देखना होगा कि प्रदर्शनकारी यहीं रोक लिए जाते हैं या फिर आगे तक जाते हैं, लेकिन हाँ जो उनकी डिमांड है वो वही है जो दिल्ली में हम हंगामा देखते हैं लगातार पिछले एक हफ्ते से, श्री ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और साथ ही साथ जो SIR का सवाल रहा है, क्योंकि बिहार में जब चुनाव हुए राजीव तो सबसे पहले SIR यही लागू किया गया था, तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं रोल बैक करने की मांग जो है वो लेफ्ट के स्टूडेंट।
0: ठीक है, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट्स के लिए लौटेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बरेली दौरे के, जहां पर लगभग 7,000 ग्राम प्रहरियों के सम्मान समारोह में शामिल है। और इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि वो 2017 से पहले यूपी में उत्सव नहीं उपद्रव हुआ करते थे और आज यूपी पूरी तरह बदल गया है।
2: व्यवस्था का संकट नहीं कड़ाने वाला, एक टीम भावना धोनी चाहिए कार्य करने की और उस दिशा ये सम्मान आज आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है कि याद करिए जो काम 17 तक उपेक्षित पड़ा हुआ था, जिसके बारे में कोई सोचता ही नहीं था, आज उसी कार्य को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया। और मैंने तो इस बारे में भी कहा है गृह विभाग से कि हर जिले में एक व्यवस्था बनाओ, जो पद खाली पड़े हुए हैं वहां पर भी तत्काल नियुक्ति कर देनी चाहिए, स्थानीय व्यवस्था के अंतर्गत उनकी भी नियुक्ति वहां पे कर देनी चाहिए और उनकी एक नियमित बैठकों का क्रम भी सुनिश्चित करवा दीजिए, सप्ताह में एक बार बैठक का क्रम सुनिश्चित हो, जिससे एक बेहतरीन संवाद के माध्यम से समस्याओं का समाधान का भी रास्ता निकल सके। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है संवाद, केवल आक्षेप करना नहीं, संवाद के माध्यम से समस्या का समाधान, और उसी संवाद के माध्यम से समस्या के समाधान की दिशा में आज हम सब आगे बढ़ रहे हैं। और मैं तो इस बारे में कह रहा था, अभी यहां पे डीजीपी साहब ने जिन कुछ ग्राम प्रहरियों ने अच्छा काम किया उनको उनका सम्मान दे रहे थे, सम्मान देने के साथ साथ उनको और पुख्ता व्यवस्था के साथ जोड़ने के लिए उन्होंने वहां पे उनको इनाम स्वरूप मोबाइल फोन भी उपलब्ध किया। बहन और भाइयों, मैं आप सबसे कहूंगा, आप अपने गांव की व्यवस्था के प्रति सजग बनिए, और हम एक व्यवस्था जरूर आपसे करेंगे कि मानदेय तो आपका बढ़ेगा ही, लेकिन अगर आप अपने कार्य के प्रति सजग और सचेत होते हैं, गांव सुरक्षित होता है।
0: अब बात बीजेपी के मिशन 2027 की, जहां बीजेपी के नाराज नेताओं को मनाने की जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री योगी ने अपने हाथ में ले ली है। और बीजेपी सूत्रों की अगर माने तो मुख्यमंत्री योगी खुद नाराज नेताओं को बुलाकर बात कर रहे हैं, और पिछले कुछ दिनों में सीएम योगी ने कौशल किशोर, उनके परिवार से मुलाकात की। इसके अलावा रीता बहुगुणा जोशी और चरखारी के विधायक ब्रजभूषण राजपूत के पिता गंगाचरण राजपूत से मुलाकात की। बीजेपी के रुहेलखंड के सबसे बड़े पिछड़े चेहरों में से एक धर्मेंद्र कश्यप ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया था, जिसके बाद बीजेपी के अंदर सियासी हलचल मचे थे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दूसरे भी नाराज नेता इसी राह पर चल पड़े और दूसरे दल में शामिल हो जाए, क्योंकि ज्यादातर नाराज नेता बच्चों के लिए टिकट चाहते हैं, और अब सीएम योगी एक एक करके उनसे मुलाकात कर रहे हैं। हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार अभिषेक, आप पहले तो ये जिन लोगों से मुलाकात हुई उनके साथ बातचीत क्या हुई है, और क्या ये बातचीत करने वालों की संख्या भी और बढ़ सकती है?
3: निश्चित तौर पर राजीव, देखिए 2022 के चुनाव में बहुत सारे नाराज नेताओं ने अखिलेश यादव का रुख किया था, सपा गए थे। इस बार बीजेपी थोड़ी सतर्क दिखाई देती है, जिन जिन नेताओं की नाराजगी है उन्हें बुलाकर इस बार खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिल रहे हैं, उन्हें समझने, उनसे उनकी नाराजगी को समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों में उन्होंने 3 ऐसे नेताओं से मुलाकात की है जो कि नाराज पाए जाते रहे। कौशल किशोर दलित नेता है, अवध क्षेत्र में उनका प्रभाव है, 2 बार के सांसद हैं, मोदी सरकार में मंत्री रहे, पासी बिरादरी से आते हैं, उनकी नाराजगी बड़ी खुलेआम थी। उनको मुख्यमंत्री ने बुलाया पूरे परिवार के साथ, उनकी पत्नी विधायक है, उनसे मुलाकात की, बेटे से मुलाकात की। उसके बाद रीता बहुगुणा जोशी, जो पहले योगी सरकार में मंत्री थी, योगी सरकार 1 में, लेकिन फिर सांसद हुई, और पिछले बार 2022 में

0: तमाम नेता जो ओबीसी दलित और ब्राह्मण बिरादरी से आ रहे हैं, इनकी नाराजगी को अपने स्तर पर मुख्यमंत्री दूर करते दिख रहे हैं, कम से कम बुला करके लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि ये तमाम जो नेता है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव के निशाने पर हैं कि कहें तो समाजवादी पार्टी चले जाए। ऐसे लोगों को मनाने का जिम्मा लगता है इस बार अखिलेश मुख्यमंत्री ने खुद अपने कंधों पर लिया है और डैमेज कंट्रोल में जुटे हैं। राजीव
1: जी, बहुत शुक्रिया कुमार अभिषेक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात यूपी के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के ओबीसी प्लान की करते हैं। यूपी के 403 विधानसभा सीटों पर बीजेपी सम्मेलन करने जा रही है, जिसके जरिए ओबीसी मोर्चा ने पिछड़ा वर्ग को साधने की रणनीति तैयार की है। बीजेपी ने प्लान 403 और सबसे ऊंचे सरदार अभियान की जिम्मेदारी 4 लाख से ज्यादा ओबीसी कार्यकर्ताओं को सौंपी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती यानी 31 अक्टूबर को सभी बूथों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमर पाल मौर्य और ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश पाल के नेतृत्व में यह होगा। अब आज समाजवादी पार्टी के बड़े दावे की, समाजवादी पार्टी ने यूपी के 100 विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता सूचियों की जांच करके हजारों डुप्लीकेट और फर्जी वोटर्स पकड़ने का दावा किया है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपकर फर्जी नामों को हटाने और विधानसभा चुनावों से पहले भौतिक सत्यापन कराने की मांग की है। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि 100 विधानसभाओं में पोलिंग स्टेशन पर एक ही व्यक्ति के नाम पर कई कई बार अलग अलग वोटर आईडी नंबर के साथ दर्ज है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि 27 अक्टूबर 2025 से 166 दिनों तक तो एसआईआर हुआ और एसआईआर के बावजूद 100 विधानसभाओं में बूथों पर बड़े पैमाने पर डुप्लीकेट मतदाता मौजूद है, जिससे आयोग की साफ एसआईआर कटघरे में। अब बीजेपी के प्लान 403 को लेकर समाजवादी पार्टी ने हमला भी बोला है और अखिलेश यादव का बयान है। अखिलेश यादव ने कहा प्रदेश की 403 सीटों पर बीजेपी की 420 उनकी नहीं चलने वाली है। और अखिलेश यादव ने मुख्य चुनाव आयुक्त को भी घेरा, चुनाव आयोग पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप भी लगाया और कहा कि एसआईआर के बाद भी कई विधानसभा क्षेत्र में एक ही व्यक्ति के डबल ट्रिपल और पांच पांच वोट बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे जयंत चौधरी को लेकर। अखिलेश यादव ने जो 54 वाला बयान दिया था उस पर तंज कसा गया। अखिलेश पर पलटवार किया गया है। जयंत चौधरी की तरफ से कहा कि जो लोग मुझे 154 के बराबर भी नहीं मान रहे और कह रहे हैं कि 54 था, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मैं 54 भी नहीं हूं, मैं खुद को रज के बराबर भी नहीं मानता। साथ ही कहा कि बिन सोचे समझे बोलोगे, 24 घंटे व्यंग करोगे और रिश्ते निभाना नहीं सीखोगे तो कोई साथ खड़ा नहीं होगा।
2: जाने कहां कहां से आ गए थे गठबंधन वाले, हम लोगों ने 54 का रुपया बना दिया तब भी हमें छोड़ के चले गए।
3: बात कीमत की थी, जो लोग मुझे 54 भी नहीं मान रहे कह रहे हैं कि 54 थू, मैं उनको बताना चाहता हूँ मैं तो 54 भी नहीं, ब्रज रज के एक चुटकी लायक भी मैं अपने आप को नहीं मानता हूँ, ब्रज रज की अहमियत।
1: अब आज परिवारवाद को लेकर समाजवादी पार्टी पर बीजेपी की रणनीति की। बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अमरपाल मौर्य ने अखिलेश यादव को खुला पत्र लिखा है और इस पत्र में अखिलेश यादव पर उन्होंने परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने पूछा है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संघर्ष करने का अब तक लाभ क्या मिला। अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए पत्र में लिखा है, पद आपके परिवार को दावा समाज का, टिकट आपके परिवार को ताली बजाने का काम कार्यकर्ता का, सत्ता आपके परिवार को संघर्ष कार्यकर्ता का। इसके अलावा बीजेपी ने अब की बारी बांके बिहारी के नारे के साथ यादव समाज के बीच में जाने का प्लान बनाया है और अखिलेश यादव के परिवारवाद का मुद्दा उठाया जाएगा। अब आज यूपी के कांग्रेस मुख्यालय में हुई मारपीट के, जिस पर कांग्रेस आला कमान अब एक्शन में दिख रहा है। विवाद हंगामे की छानबीन के लिए राज्य प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने 5 सदस्यों की एक जांच टीम बना दी और इसकी कमान पूर्व प्रदेशाध्यक्ष ब्रजलाल खाबड़ी को सौंपी गई है, जो 7 दिनों के भीतर आला कमान को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। वहीं अजय राय और उनके समर्थकों के द्वारा ममता चौधरी पर अपमान करने का आरोप लगाया गया है। ममता चौधरी ने दलित विरोधी गाली देने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की चुनौती को लेकर समाजवादी पार्टी ने पलटवार कर दिया है। समाजवादी पार्टी के विधायक ओम प्रकाश सिंह ने ओवैसी को राजनीति का वास्को डिगामा बताया है और कहा कि वो चुनावों के दौरान घूम घूम कर

0: जाति धर्म के नाम पर माहौल खराब करना चाहते हैं। साथ ही बोले कि वो राजनीति नहीं गिरोह चलाते हैं और पार्टी और संगठन तय करता है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा।
1: हमारे साथ समाजवादी पार्टी विधायक ओम प्रकाश सिंह इस वक्त मौजूद हैं। ओम प्रकाश जी, असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में चहलकदमी बढ़ाई है और उन सीट्स पर खासकर उनकी रैलियां हो रही हैं जहां समाजवादी पार्टी मजबूत है। आप देखें, आजमगढ़ कल वो थे, अगला दौरा उनका रामपुर लग रहा है, फिर वो कैराना जा चुके हैं, इससे पहले श्रावस्ती भी वो जा चुके हैं। तो किस तरीके से देख रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी के इस चुनावी अभियान को?
2: देखिए ओवैसी साहब राजनीति के वास्को डिगामा है, वो खाली घूम घूम कर कैसे जात धर्म का नारा दे के इनको सरकार न बनाना, न सरकार से कोई मतलब है, इनका धंधा से मतलब है।
1: एक समाजवादी पार्टी है, बीजेपी है, सीएम और अखिलेश के बीच में एक तरीके से आप देखें, अगर योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच में चुनाव लड़ने को लेकर एक शुरू हुआ, अयोध्या से लड़ेंगे, इनवाइट कर रहे हैं, वो वहां कह रहे हैं हम लड़ेंगे, आप आ जाइए, ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री संभल आ जाएं और अखिलेश यादव गोरखपुर आ जाएं, मजलिस उन्हें हरा देगी, दोनों नेताओं को।
2: अभी सर क्या बोला जा सकता, आप बताओ टिकट किसे बटता है? हम तो पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी रहे हैं, हम पर संगठन में भी रहे हैं, हम बचपन से संगठन से आगे बढ़े हैं, हम आप विश्वास जगह में छात्र जनता का यूनिट का अध्यक्ष भी है चुका, और राजीव गांधी का 14 जून 85 को मैंने बंद किया बनारस, तो हम युवा जनता दल में जब शरद यादव जी थे तब मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हुआ, हम लोग संगठन से जुड़े हैं। अभी लोग बस संगठन ही तो गिरोह चलाते हैं, दल चलाते नहीं है। अब वो वैसी कहेंगे कि के कहां से लड़ेगा, हमारा पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि वो तय करेंगे।
0: अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: आ गया सोमवार और आ गए
6: चकमक चाचा,
5: एक कचौड़ी दो समोसा चकमक तेरा क्या भरोसा।
7: चकमक चाचा से सीधे चकमक है?
5: अरे नारा है, दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, महिला लोग एकदम नारा लगाए जा रही, बुझ रहा ना।
7: लेकिन भैया नारे अरे फालतू सब बेकार, एकदम बेकार बा? अरे होते थे हमारे टाइम।
5: अच्छा
7: सुनाए, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, जेपी भाई छूटेंगे।
5: अच्छा तो हमारे टाइम वाले सुनिए, दो कुलचा एक बिरयानी इन नेताओं की खत्म कहानी।
7: अरे जमीन की चकबंदी में, जमीन की चकबंदी में क्या फाइनेंस बंदी में,
5: ठंडी चाय गरम करो चकमक चाचा शर्म करो।
7: अरे राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर।
5: अरे लाठी गोली खाएंगे, इस्तीफा दे के जाएंगे।
7: अरे सुनो, इस दीपक में तेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं।
5: अरे लाल फूल नीला फूल जंजी नन्हे ब्यूटीफुल।
7: अरे बारी बारी सबकी बारी, अब की बारी अटल बिहारी,
5: चाय गरम दूध गरम चकमक चाचा भी शरम
7: है।
5: हाँ
7: जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है।
5: अरे मेरे सिर में दर्द है जिसका कारण मर्द है आप जैसा।
8: हम जैसे? इधर आओ।
9: हम जैसे मर्द नहीं होते किसी नारे से ऑफेंड, हम तो भैया करते हैं हर सही मुद्दे को डिफेंड।
5: आई चाचा।

0: क्या योगी को चैलेंज करके फंस गए अखिलेश? सीएम योगी ने स्वीकार की अखिलेश की चुनौती। पवन का नाम आगे कर अखिलेश ने पलट दी बाजी। जैसे जैसे यूपी का विधानसभा चुनाव पास आता जा रहा है, वैसे वैसे जुबानी जंग तेज होती जा रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती को स्वीकार करते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को ही अयोध्या के सियासी दल क्षेत्र में उतरने और चुनाव लड़ने का चैलेंज दे दिया।
1: सुनने में आ रहा है उन्हें अयोध्या में कोई नया प्रत्याशी ही नहीं मिल पा रहा है, और जो बड़े बड़े दावे करते हैं और जो बड़े बड़े दावे करने वाले मुख्यमंत्री अगर इतना ही अस्वस्थ हैं तो खुद अयोध्या से चुनाव लड़ करके दिखाएं।
2: आइए आप भी अयोध्या में नामांकन करिए और मैं भी अयोध्या से चलो एक बार किस्मत अजमा लेते हैं, तय हो जाए। आप भी आइए और मैं भी आता हूं। लड़ाई चेलों से क्यों? लड़ाई तो आमने सामने होनी चाहिए और उसके लिए मैं कह रहा हूं आइए आप भी। ये माफिया के सामने नाक रगड़ने वाले पेशेवर अपराधियों के सामने उनकी मौत पर उनकी कब्र में जाकर के फातिया पढ़ने वाले लोग, ये हम लोगों से क्या लड़ पाएंगे?
0: अयोध्या के सियासी रण क्षेत्र में अखिलेश यादव और सीएम योगी के बीच जुबानी जंग में पवन की एंट्री हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने सीएम योगी पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री टिकट नहीं बांटते, बीजेपी में उन्हें खुद टिकट मांगने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। सीएम योगी की चुनौती को लेकर बैकफुट पर नजर आ रहे अखिलेश यादव ने पवन पांडे का नाम आगे करके कहा कि हमारे पवन की हवा में अहंकारी सरकार के लोग उड़ जाएंगे। तो साफ है कि 2027 की चुनावी लड़ाई अब अयोध्या के सियासी रण को लेकर और दिलचस्प हो गई है। अब देखना होगा कि सीएम योगी के चैलेंज को अखिलेश यादव अपने उम्मीदवार पवन पांडे से काउंटर कर पाएंगे। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: आम जन को परेशान कर रही है अव्यवस्था पैदा करके, अराजकता पैदा करके, बल्कि भारत के संवैधानिक संस्थाओं को भी कटघरे में खड़ा करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। आश्चर्य है कि चुनाव जीते तो इनका पुरुषार्थ और हारे तो ईवीएम दोषी। इलेक्शन कमीशन दोषी। न्यायालय अगर मेरिट के आधार पर कोई फैसला देता है तो माननीय न्यायालय को कड़घरे में खड़ा करने का प्रयास, उन्हें तमाम प्रकार की धमकी देने का प्रयास, ऐसे ही तमाम अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कड़घरे में खड़ा करना, गाली गलौज करना, अव्यवस्था फैलाना, ये कांग्रेस की नियति का पाठ बन चुका है। कांग्रेस के लोगों को चाहिए कि अपने नेतृत्व की अकर्मण्यता, भ्रष्ट आचरण, विश्वास खो चुके नेतृत्व को बदले। भारत में अराजकता न फैलाएं, भारत की संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करने का कुत्सित प्रयास न करें, अन्यथा जो पचा खुचा है भारत की जनता लोकतांत्रिक देश से बहुत जागरूक है, वह इस अराजकता को स्वीकार नहीं करेगी। ऐसा नहीं कि जनता बहुत दिनों तक और बहुत देर तक इसको बर्दाश्त करेगी। अगर उसकी ये अराजकता और असंवैधानिक कृत्य और लोकतांत्रिक तरीके से इसी प्रकार से अराजकता पैदा करेंगे तो जो कुछ बचा खुचा है वह भी उन्हें गंवाना पड़ेगा। देश के अंदर अराजकता से बाज आए, जनता जनार्दन को और युवाओं को गुमराह करने से बाज आए, मेरिट के आधार पर और मुद्दों पर चर्चा करके एक स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था का पाठ बने, ये भारत के लोकतंत्र के हित में भी होगा और देश की जनता के हित में भी होगा।

कोरावास बंसा में ड्रग एक्टिविस्ट की गोली मारकर हत्या, कैमरे में फायरिंग की तस्वीरें कैद। विपक्ष ने कहा प्रदेश बन चुका है कसाई खाना। ड्रग्स कार्टल के खिलाफ भारत ने छेड़ी सबसे बड़ी जंग। बिम्स्टेक देशों के गृहमंत्रियों की बैठक में अमित शाह का ऐलान, नशा मानव तस्करी आतंकी और भगोड़ों के विरुद्ध बने साझा रणनीति। दो हजार 26-27 में भारत की जीडीपी ग्रोथ को लेकर आईएमएफ का अनुमान, वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद 7% की रफ्तार से सबसे आगे होगा हिंदुस्तान। पीएम बोले भारत में दौड़ रही है रिफॉर्म एक्सप्रेस। जंतर मंतर जा रहे सीजेपी के सौरभ दास और आशुतोष टांका को दिल्ली पुलिस ने फिर हिरासत में लिया। रोक के बावजूद अपने साथियों के साथ पीछे की तरफ से जंतर मंतर में घुसने की कोशिश। पहली बार विपक्षी काफले के साथ सुप्रीम कोर्ट मार्च करने के बाद राहुल गांधी की नई रणनीति। आज इंडिया गठबंधन के नेताओं को चाय पर बुलाया, चर्चा के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्लान।

0: हिमाचल से जुड़ी हुई है, जहां पर एक और इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली में बीजेपी की महिला सांसदों का प्रदर्शन चल रहा है। ये प्रदर्शन दरअसल बस के अंदर अभी किया जा रहा था थोड़ी देर पहले, अब ये महिलाएं बस से बाहर आ गई हैं। ये सब राष्ट्रपति से मिलने जा रही हैं, सांसद हैं सभी। पहले से ऐलान किया गया था कि इस तरह की मुलाकात होगी। अकोई जम पर कार्रवाई की मांग को लेकर ये महिला मोर्चा निकाला गया है। कांग्रेस सांसद के इस्तीफे की मांग की जा रही है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी क्यों उनका साथ दे रहे हैं। पीयूष मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, इस बस में मौजूद हैं। पीयूष, क्या कह रही हैं महिला सांसद, कितनी देर बाद मुलाकात है?
1: जी बिल्कुल नया, इस वक्त हमारी मौजूदगी उसी बस के अंदर है जिसमें महिला कार्यकर्ता और सांसद हैं। ये सभी महिला कार्यकर्ता जो है वो बीजेपी मुख्यालय से निकलकर राष्ट्रपति भवन की तरफ जा रही हैं। मैं एक बार तस्वीरें दिखा दूं, आप देखिए कैसे जो महिला सांसद बैठी हुई है बस के अंदर वो लगातार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। और कल से ही हमने देखा दिल्ली में कैसा माहौल है जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि विमोल अंगोनकर जो है उनका इस्तीफा होना चाहिए। कुछ जो यहाँ पर महिला कार्यकर्ता हैं उनसे बात कर लेते हैं, समझते हैं कि इस वक्त उनकी क्या मांग है। मैम, आप लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या मांग लेके जा रहे हैं? और कल से मैं देख रहा हूँ आप लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अब तक आपकी मांग कुछ?
2: ये बात आपकी सच है कि आपने कहा कल से आप देख रहे हैं और ये लड़ाई जारी रहेगी। जिस तरह कांग्रेस के सांसद ने 11 बच्चियों के साथ जिस तरह सेक्स और मांस की उत्पीड़न करे, ये वो नहीं सहनीय। गुरु एक भगवान के रूप में होता है, पर जिस तरह उस उल्लंघन किया गया है। आज प्रियंका और सोनिया गांधी क्यों मौन बैठी हैं? राहुल गांधी स्टूडेंट्स को बरगलाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, पर आज क्यों नहीं मैदान में उन 11 बच्चियों के लिए उनकी मांग को क्यों नहीं? और उनका खुद का सांसद है जिसके इस्तीफा की मांग हम सब बहने कर रहे हैं और ये लड़ाई जारी रहेगी।
1: कांग्रेस एमपी विमोल अंगोमचा, आपको याद होगा नेहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी और जेएनयू ने इंटरनल कमेटी ने इन्वेस्टिगेट किया था और निकल के सामने आया था कि वो आरोपी है, उसके बाद उनको बर्खास्त कर दिया गया था। उसके बाद से ही जो महिला कार्यकर्ता है बीजेपी की वो मांग कर रही है कि उनका इस्तीफा हो, उनकी मेंबरशिप जाए, और इसीलिए सभी के सभी जो कार्यकर्ता है वो राष्ट्रपति भवन की तरफ कूच कर रही है। क्या मांग आज आप रखेंगे जब आप राष्ट्रपति जी से?
3: देखिए, हमारा देश नारी को पूजता है और ऐसे देश में जहां पर एक सांसद उसके साथ बच्चियों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करता है, उसके साथ सेक्सुअल हरेसमेंट करता है, तो उसका इस्तीफा होना चाहिए। राहुल गांधी इसमें चुप्पी साधे हुए, ये सबसे शर्मनाक बात है। एक इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी के सदस्य होने के नाते उन्होंने चुप्पी साधी हुई है, प्रियंका ने चुप्पी साधी हुई है, तो इसका मतलब है कि नारी सम्मान में ये लोग नहीं, कभी से इन्होंने नारी का सम्मान किया। आज ये सारी महिलाएं राष्ट्रपति से उनके के पास विज्ञापन देने जा रही है ताकि उनका इस्तीफा हो सके और एक सबक मिल सके कि किसी के भी ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, नारी का अपमान नहीं सहेगा इस तरह की चीजों को।
1: मैम, ये कहा जा रहा है कि इस्तीफा जो है वो नहीं, अब तक नहीं हुआ है और राहुल गांधी प्रियंका गांधी ने इसने चुप्पी साधी है। आप खुद एक विधायक हैं दिल्ली से, क्या लग रहा है आपको कि क्यों चुप्पी साधी है प्रियंका गांधी राहुल?
4: बिल्कुल साफ दोहरा चरित्र जो है, जो इनकी दोगलापन जो है साफ नजर आता है। महिलाओं के प्रति कांग्रेस पार्टी की नेता राहुल की क्या संवेदनशीलता है साफ नजर आती है। और हमें राहुल गांधी कांग्रेस से कोई उम्मीद भी नहीं है क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों में हमने देखा है।
0: लो रही है आपके पास, क्योंकि 1:30 बजे लगभग ये मुलाकात बताई जा रही है। वक्त हो गया है नॉन स्टॉप 100 का।

पंजाब में एंटी ड्रग एक्टिविस्ट परविंदर झोटा की गोली मारकर हत्या, घटना का सीसीटीवी वीडियो वायरल। बताया जा रहा है वीडियो में झोटा उनके साथ ही दवा दुकान के मालिक के साथ नशीली दवाओं को लेकर बहस करते दिखाई दिए। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है, पता लगाने में जुटी है विवाद किस वजह से हुआ था। डॉक्टर के मुताबिक एक गोली झोटा के लीवर को भेदते हुए निकल गई थी, जिसके कारण उनकी मौत हुई। घायल हुए अन्य चार लोगों को मामूली गोली लगी। घटना की खबर फैलते ही मानसा के सिविल अस्पताल में बड़ी संख्या में लोग जुटने लगे। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल। पीएम मोदी 2026 ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए कहा, ये फोरम दुनिया के बेहतरीन दिमाग को साथ लाता है, तकनीक का फायदा सभी को मिलना चाहिए। इस दौरान ब्लूमबर्ग का बताया आभार, भारत में आयोजन करने के लिए बधाई देता हूं, आपने सही समय पर सही जगह को चुना है। भारत को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि पावर का असली मूल्य उसके लक्ष्य में है और इसी सोच को आज के दौर में समझना होगा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसी सदी में डेटा, ज्ञान और नवाचार ताकत के लिए स्रोत हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है ये बड़ा सवाल है। 3 दिन का यह कार्यक्रम 15 अक्टूबर को खत्म होगा। इस साल फोरम की थीम बदलती दुनिया में ताकत के नए स्रोत तय करना है। पाबंदी के बावजूद कॉकरोच जनता पार्टी के नेता आशुतोष रांका, सौरभ दास और अजिंक्य शिंदे ने जंतर मंतर जाने की कोशिश की। पुलिस ने तीनों नेताओं को हिरासत में लिया। दोनों सीजेपी समर्थकों के साथ जंतर मंतर पर पहुंचे और नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस ने सभी को पकड़ा। पुलिस ने जंतर मंतर के पास बैरिकेडिंग कर रखी है, सभी गेट्स बंद है, लेकिन प्रदर्शनकारी गेट के ऊपर से चढ़कर वहीं पहुंचे। जंतर मंतर पर प्रदर्शन नहीं हो सकते, केंद्र सरकार ने सोमवार को इसे निर्धारित प्रदर्शन स्थल की लिस्ट से हटा दिया है। अभिजीत दीपके का बड़ा बयान, कहा उन्हें लगता है कि जंतर मंतर अब विरोध प्रदर्शन का स्थल नहीं रहेगा और ये बंद हो जाएगा तो ऐसा होने वाला नहीं है। अभिजीत दीपके ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा, लोगों के मन में आंदोलन करने की भावना है, पीएम मोदी को उससे दिक्कत है, ये एक तानाशाह निशानी है। 12 अक्टूबर के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक बाराखंबा पुलिस स्टेशन और तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में प्रदर्शन के लिए 20,000 अर्धसैनिक जवानों की तैनाती की समय सीमा 4 हफ्ते बढ़ा दी गई है। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर सवाल निशाना, सीसी पर हमला बोलते हुए कहा, जनविश्वास का कत्ल और लोकतंत्र की हत्या हुई है। खुदरा महंगाई दर को लेकर कांग्रेस का सरकार पर हमला, जयराम रमेश ट्वीट कर लिखा, वोट चोरी से चाहिए, कमर तोड़ महंगाई। इंडिया गठबंधन की याचिका सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं है। एससी रजिस्ट्री ने बताई 14 तकनीकी खामियां। याचिका में खड़गे के आईडी कार्ड की कॉपी थी धुंधली। सुप्रीम कोर्ट ने आईडी की स्पष्ट कॉपी और ₹220 की अतिरिक्त कोर्ट फीस जमा करने के लिए कहा। इंडिया गठबंधन की याचिका में 9 नेताओं के वकालतनामे पर हस्ताक्षर नहीं, अखिलेश तेजस्वी समेत कई नेताओं के दस्तावेज अधूरे। याचिका में दस्तावेजों की स्पष्ट कॉपी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई के 24 जून के फैसले की डिजिटल कॉपी और पेन ड्राइव में से जुड़े दस्तावेज मांगे हैं। विपक्षी सीरियल विरोध प्रदर्शन के बीच सरकार का फैसला, जंतर मंतर पर आंदोलनकारियों को नो एंट्री। दिल्ली में अब सिर्फ रामलीला मैदान, बुराड़ी और सीबीडी ग्राउंड को तय किया गया है धरने की जगह, हफ्ते के लिए बढ़ी सुरक्षा व्यवस्था। सीजीआई विवाद में बैकफुट पर केरल कांग्रेस, चौतरफा गिरने के बाद हटाया इस्तीफे की मांग का पोस्ट। सीजीआई पर विवाद पोस्ट पर लिखा था, अगर कानून व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी नहीं है तो अभी इस्तीफा दे दीजिए। सीजीआई के इस्तीफे की मांगों पर एससीबीए का बयान, कहा ऐसे बयान न्यायपालिका को नीचा दिखाते हैं। केपीसीसी अध्यक्ष सनी जोसेफ बोले, पोस्ट बिना सहमति के किया गया, न्यायपालिका की निष्पक्षता पर कोई संदेह नहीं है। यूपी में आगामी चुनाव से पहले नाराज नेताओं को बुलाने मिशन में जुटे सीएम बागिया, नाराज नेताओं और उनके परिवार से मुलाकात कर डैमेज कंट्रोल में जुटे। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए दोहरी रणनीति तैयार की। 4,03,000 ओबीसी कार्यकर्ताओं को सौंपी गई है जिम्मेदारी। कांग्रेस मुख्यालय में हुई मारपीट का एक्शन, आलाकमान विवाद और हंगामे की छानबीन के राज प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने 5 सदस्यों की जांच टीम बनाई है।

0: अजय राय उनके समर्थकों ने ममता चौधरी पर अपमान करने का आरोप लगाया तो ममता चौधरी ने दलित विरोधी और गाली देने और मारपीट करने का आरोप लगाया। बीजेपी सांसद अमरपाल मौर्य ने अखिलेश यादव को लिखा खुला पत्र, परिवारवाद पर दागे सवाल। अखिलेश यादव पर तंग कसते हुए लिखा पद आपके परिवार को दावा समाज का, सामाजिक न्याय के नाम पर परिवारवाद नहीं चलेगा। समाजवादी पार्टी ने यूपी के 100 विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों की जांच कर हजारों डुप्लीकेट और फर्जी वोटर्स पकड़ने का दावा किया है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर फर्जी नामों को हटाने और विधानसभा चुनाव से पहले भौतिक सत्यापन कराने की मांग की है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के चवन्नी वाले तंज पर राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी ने एक बार फिर पलटवार किया है। लखनऊ के चर्चित कारोबारी शिवा शर्मा की संदिग्ध मौत मामले पुलिस की जांच तेज। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मुख्य आरोपी गर्लफ्रेंड श्रद्धा दुबे उसके सहयोगी की तलाश। शुरुआती जांच में सामने आया कि मॉडल श्रद्धा रसूख और ब्लैकमेलिंग के जरिए शिवा पर दबाव बनाती थी। पुलिस उसके पुराने मुकदमों और संपर्कों की कड़ियां जोड़ रही है। पुलिस को फ्लैट की जांच में कई आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई। श्रद्धा के चैट से पता चला कई नेताओं के संपर्क में थी। मृतक की मां रंजना शर्मा ने गर्लफ्रेंड और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर श्रद्धा दुबे पर बेटे को धक्का देकर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया। पुलिस ने मां की शिकायत पर श्रद्धा, उसकी बहन और ड्राइवर समेत 5 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया। वैसी ने ट्वीट कर सीएम योगी पर निशाना साधा, कहा सीवेज प्लान के नाम पर योगी सरकार ने आजमगढ़ के लोगों को धोखा दिया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा का कार्यक्रम घोषित किया गया। 5 फरवरी से 24 फरवरी तक होगी 10वीं और 12वीं की परीक्षा। जौहर ट्रस्ट मामले में जेल में बंद आजम खान से होगी पूछताछ। बेटे अब्दुल्ला आजम की ईडी की नजर, आजम खान करीबियों से हो चुकी है पूछताछ। ईडी ट्रस्ट के फैसलों, जौहर यूनिवर्सिटी में निर्माण कार्यों और कथित अनियमितताओं से जुड़े पहलुओं पर जांच करेगी। उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा पर जोर, 15 अक्टूबर 2026 से मिठाइयों पर उपयोग की अंतिम तिथि प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। दिल्ली के रणहौला में सरेआम फायरिंग, 11 अक्टूबर की वारदात, हत्या का खौफनाक सीसीटीवी आया सामने। 2 बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम, आपसी रंजिश के तहत हत्या की आशंका। बदायूं के गन हाउस में धमाके के बाद लगी आग, 3 कर्मचारी झुलसे, 1 की हालत गंभीर। कानपुर में रेस्टोरेंट में हुक्का न मिलने पर दरोगा सफाई समेत 4 लोगों ने जमकर हंगामा किया, कर्मचारियों के साथ मारपीट, दोनों सस्पेंड। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पैसों को लेकर पति और पत्नी के बीच विवाद, सड़क पर पत्नी और बेटी ने व्यक्ति को जमकर पीटा। झांसी में दुर्गा पंडाल के पास जमकर मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, ई रिक्शा हटाने को लेकर विवाद। अलवर में जमीन विवाद में पूर्व सैनिक की मौत के बाद बवाल, पीट पीट कर हत्या का मामला। न्याय की मांग को लेकर लोगों ने सड़क पर लगाया जाम। नवादा में रेलवे ट्रैक पर डील बनाना, महिला को पड़ा भारी, पहचान जागर होने के बाद महिला ने रेलवे पुलिस के सामने किया सरेंडर। पंचकुला में कुख्यात गैंग के 2 शूटर्स का एनकाउंटर, बड़ी वारदात की साजिश नाकाम, मुठभेड़ के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर 5 गोलियां चलाई। पुलिस को आशंका है कि दोनों मोहाली, पंचकुला, चंडीगढ़ में किसी टारगेट को निशाना बनाने के इरादे से यहां आए थे। बागपत सिंह महिला ने बच्ची संग किया एवानित, मासूम के बालों से थप्पड़ बरसाए। श्रीगंगानगर में कार बाइक की भीषण टक्कर, बाइक सवार की मौत, कार पलटने से 4 घायल। बांका में 2 बाइक की जोरदार भिड़ंत, 2 युवकों की मौत, हादसे में आरजेडी नेता की गई जान। टोंक में आइसक्रीम खाने आए युवक पर बदमाशों का हमला, घेर कर की मारपीट, चाकू से किया वार। विजयवाड़ा में इलेक्ट्रिक कार में लगी भीषण आग, हादसे में 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत। दमोह जिला अस्पताल में महिला ने सफाई कराने का आरोप, नर्सिंग स्टाफ के कहने पर स्टूल और फर्श साफ करती दिखी महिला। उदयपुर में तेज रफ्तार ट्रेन ने बुजुर्ग को कुचला, हादसे में मौके पर बुजुर्ग की मौत, ड्राइवर मौके से फरार। गाजियाबाद में शहीद नगर के निर्माणाधीन इमारत गिरी, 4 लोगों को बचाया गया, एसटीआरएफ का सर्च ऑपरेशन जारी। गाजियाबाद में युवती से मिलने आए मुस्लिम युवक की पिटाई, लव जहाद मामले में हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप। लखनऊ के होटल की 10वीं मंजिल से गिरकर युवक की, चंबा में मौसम की मेहरबानी, हिमाचल प्रदेश में जबरदस्त बर्फबारी। बर्फबारी के बाद बड़ी संख्या में चंबा पहुंचे पर्यटक, सैलानी उठा रहे मौसम का लुत्फ। धर्मशाला की धौलाधार पहाड़ियों पर सीजन की 3री बर्फबारी, बर्फ से ढकी चोटियां बनी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र। धर्मशाला में बारिश और हिमपात से बदला मौसम, बारिश के बाद तापमान में गिरावट। मैकलोडगंज मौसम बढ़ाई पर्यटकों की उम्मीद, धौलाधार पहाड़ियों पर बर्फबारी से बड़ी खूबसूरती, पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने की उम्मीद। सोनभद्र कश्मीर घाटी में मौसम का बदला मिजाज, उत्तरी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से बड़ी ठंड। शिमला में भारी बारिश से 14 डिग्री तक गिरा तापमान, 15 अक्टूबर तक फिर बारिश के आसार। पंजाब में बेमौसम बारिश से धान की फसल पर मार, फजलका मंडी में 3 फीट तक भरा पानी, खड़ी फसल बर्बाद। रोहतक में भारी बारिश से किसान परेशान, पानी में डूबे अनाज। सोनीपत में भारी बारिश से मंडी में जलभराव, किसानों की बड़ी चिंता। सनी देओल की अगली फिल्म सूर्या का मोशन पोस्टर जारी, 20 नवंबर 2026 को रिलीज होगी फिल्म। राजकुमार राव की प्रहार का गाना, मुंबई सपनों का समंदर हुआ लॉन्च। नेशनल अवार्ड जीतने वाले विनोद काफ्री की अगली फिल्म पायर का ट्रेलर जारी, 30 अक्टूबर को होगी रिलीज। दृश्यम 3 ने 10 दिनों में रचा इतिहास, बॉर्डर 2 को पछाड़ कर बनी दूसरी धांसू फिल्म, 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई। 30 अक्टूबर को रिलीज होगी फिल्म नखरे वाली, फिल्म में अंश दुग्गल और प्रगति श्रीवास्तव की मुख्य भूमिका।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
0: और दिल्ली में इस वक्त बीजेपी की महिला सांसदों का प्रदर्शन चल रहा है, ये सांसद राजपुरी से मिलने जा रही है, खबर है करीब 1:30 बजे सांसद राजपुरी से मिलेंगी। कांग्रेस सांसद और जेएनयू प्रोफेसर है बिमोल अखोईजाम पर लगे यौन उत्पीड़न मामले में ये सांसद लगातार प्रदर्शन कर रही थी, अब कार्रवाई के लिए ये राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगी। इनकी मांग है कि ये जल्द से जल्द इस्तीफा दें आरोपी सांसद। पीयूष मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। पीयूष, क्या प्रोटोकॉल फॉलो होने वाला है, किस तरह से मुलाकात होगी?
3: जी बिल्कुल नेहा, बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता इस वक्त एक बस में बैठकर राष्ट्रपति से मिलने जा रही हैं और इन सभी कार्यकर्ताओं की मांग ये है कि बिमोल अंगोमचा का इस्तीफा हो, उनको कांग्रेस निष्कासित करे, उनकी सदस्यता जो है वो जाए, क्योंकि वो एक सांसद है, उनकी सदस्यता जानी भी बेहद जरूरी है। और इस चीज को लेकर कल से ही हम देख रहे हैं दिल्ली में काफी प्रदर्शन हुआ, लेकिन आज अपनी मांग को लेकर देश की राष्ट्रपति से मिलने के लिए महिला मोर्चा की कार्यकर्ता निकल पड़ी और इस बस में काफी कार्यकर्ताएं मौजूद हैं, इनसे बात भी करेंगे। लगातार जो बस है वो आगे बढ़ रही है, बात हम कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि किस तरह की मांग इन महिला कार्यकर्ताओं की है। मैम, मैं देख रहा हूँ आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी जवाब दें, अगर नहीं जवाब दे सकते तो शर्म करें, क्या मांग आप लोगों की और आज आप राष्ट्रपति जी से क्या कहने वाले?
4: देखिए, हम भारत से आते हैं, भारतीय संस्कृति में आप सभी जानते हैं कि नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रों में बेटियों को पूजा जाता है, उन्हें देवी कहा जाता है। एक ऐसा देश जो अपने मातृत्व को देवी का रूप मानता है, उसकी पूजन करते हैं, उस राष्ट्र में शिक्षक के नाम को कलंकित करते हुए अंगोमचा जो कि सांसद है कांग्रेस से, जेएनयू में प्रोफेसर रहे, उन्होंने सेक्स फॉर मार्क्स जैसी घटिया हरकत की है। हमारी 11 बेटियों ने उनके खिलाफ आवाज उठाई है, जेएनयू ने उन्हें दोषी पाया है तभी सस्पेंड किया है। लेकिन कांग्रेस जहां सिर्फ राजनीति करता है महिलाओं के मुद्दे पर, उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा जो ये कहती है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो प्रदर्शन में दोनों भाई बहन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बहनों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, चाहे वो हमारी पुलिस कर्मी हो, और कल तो हद ही कर दी उन्होंने। हमारी मीडिया की एक बहन जो कि प्रेग्नेंट थी, उन्हें राहुल गांधी जी ने कोनी मारा है, धक्का मारा है, हमारी वो बहन हॉस्पिटल में है। ऐसी मानसिकता, शर्म आनी चाहिए इन्हें, ऐसी मानसिकता के चलते ये जो हरकतें कर रहे हैं। हमारी मांग है कि ऐसे सांसद को तुरंत प्रभाव से निष्कासित किया जाए, राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी जिम्मेदारी ले, और जिम्मेदारी लेते हुए राहुल गांधी अपनी इस करतूत के चलते हमारी बहन से माफी भी मांगे और अपना इस्तीफा भी दे। यही मांग लेकर हम माननीय हमारी द्रौपदी मुर्मू जी के पास जा रहे हैं, क्योंकि वो हमारे राष्ट्र की राष्ट्रपति है और एक बहन है। बहन की पीड़ा अगर कोई समझ सकता है तो वो बहन ही समझ सकती है। यही हमारी मांग है, ये राष्ट्र, ये भारत राष्ट्र है जहाँ बहनों को देवी के रूप में पूजा जाता है, ऐसी बहनों के सम्मान के लिए आज सारी बहनें यहाँ एकत्रित हैं।
3: मैं आपको तस्वीर भी दिखा दूँ चारों तरफ बस की, मेरे सहयोगी अगर विनोद कैमरा को पैन करके आपको दिखा दें, ये देखिए इस बस के अंदर पूरी जो बस जो है वो खचाखच भरी हुई है महिला कार्यकर्ताओं की, महिला कार्यकर्ताओं से, और ये कार्यकर्ता धीरे धीरे जो है नारेबाजी करते हुए राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ रही है नेहा। और इस वक्त जो कनॉट प्लेस का कस्तूरबा गांधी मार्ग है वहां पहुंचे हैं, और कस्तूरबा गांधी मार्ग पर जो प्राचीन हनुमान मंदिर है वहां से ये बस सब आगे बढ़ती हुई राष्ट्रपति भवन की तरफ जा रही है। तो सीधी मांग ये है कि राहुल गांधी जो है वो इस पर अपनी चुप्पी तोड़े, निष्कासित करें बिमोल अंगोमचा को, और इस पूरे मुद्दे को लेकर हमने देखा दिल्ली में भी कार्यकर्ता उनसे बात कर लेते हैं। मैम, क्या आपको लग रहा है कि इस पूरे मुद्दे में अब क्यों नहीं की कांग्रेस पार्टी?
5: देखिए, कांग्रेस पार्टी ने इसलिए नहीं की क्योंकि उन्हीं के पार्टी के सांसद है वो, तभी वो इस तरह की चुप्पी लगा करके बैठ गए हैं। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि हमारे आज भारत में जहां कहते हैं कि नारी पूजी जाती वहीं पे हमारे देवता रमन करते हैं, और लेकिन ये आज बड़े अपमान की बात है कि आज हमारे देश में 11-11 बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न जैसा मामला आया है, जो कि बड़े शर्मनाक है कि आप मार्क्स बढ़ाने के लिए सिर्फ आप यौन उत्पीड़न की करते हैं, यौन शोषण हमारे लिए, हमारे हम जैसे नारी हैं, हमें भी लज्जा आ रही है, हमें भी शर्म आ रही है। और राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी जो कहती है कि मैं बच्चों की लड़ाई के लिए खड़ी हूँ, तो आज ये दोनों की चुप्पी लगा करके बैठे हैं। और आज हम राष्ट्रपति जी को जाकर के ज्ञापन देंगे कि इनको निलंबित करें, राहुल गांधी का त्याग पत्र लेंगे और साथ ही सांसद को भी आप वहां से हटाइए, इस यौन शोषण करने वाले को सांसद को निलंबित करें, डूब मरे आप शर्म के मारे।
3: जब आपकी मुलाकात होगी राष्ट्रपति जी से, आपकी जब मुलाकात होगी राष्ट्रपति जी से, क्या कहेंगे आप उनको?
6: हम केवल न्याय मांगने जा रहे हैं उन महिलाओं के साथ जो शोषण, बच्चों का शोषण जो किया गया है कांग्रेस पार्टी के सांसद ने, आज हम उन बच्चों के लिए न्याय मांगने जा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि इस देश में जब कन्या पूजन का इस दौरान समय चल रहा है, कन्याओं को देवी रूप माना जाता है, उनके साथ में इतना घिनौना अपराध कांग्रेस पार्टी ने किया है, आज हम केवल न्याय की मांग करते हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमें उन बच्चियों के साथ में न्याय मिलेगा।
0: वक्त एक छोटी सी ब्रेक का उजला है, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: How's the hostel? Settled?
2: Yes, Mart, really nice.
1: कोई आ रहा है क्या?
3: तुम मॉम डैड वाली ड्यूटी तो निभाली, अब फिर से थोड़ा रोमांस ले।
1: मयंक, for real?
3: One carat for my one true love. Natural diamond, real love, solitaires to reignite your new season of love.
4: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार सर एक बार दो तीन थमका लगाने बस।
5: मेरे पास एक आइडिया है।
4: क्या?
5: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
6: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाती पर स्टेज नहीं हिलता,
7: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
8: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
6: कौन सी बनानी है?
9: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
10: सोच बदलो और बैंक भी।

0: माँ के पैरों की धूल माथे पर ले, मैं परिंदा खुले आसमान जहाँ जीत रू सारा।
1: Maddie, I need to open a savings account.
2: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो।
1: स्मॉल बैंक?
2: स्मॉल Privilege savings account, Garima savings account, Maxima business, H current account, business, Maxima business, Privilege, RDF, there's nothing small about them.
1: Okay.
2: Ujjivan, nothing small about us.
1: बच्चों के लिए अलग टीवी रूम बना सकते हैं।
3: कैसा लगा आप दोनों को अपना ड्रीम होम?
4: I love it. Absolutely amazing. तुम एक काम करो, तुम मिठाई ऑर्डर कर लो।
5: मिठाई से पहले कुछ और हो जाए।
4: क्या?
5: इनकी राय।
6: नई सोच की नींव में हम, हर नई उम्मीद में हम, गैलेंट निर्माण का रियल हीरो।
7: डायबिटीज की वजह से मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ता है,
8: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
7: मैं चैन की नींद सो पाता कपिवा डायट्री जूस।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। एयू,
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: बच्चों के लिए अलग टीवी रूम बना सकते हैं।
6: कैसे लगा आप दोनों को अपना ड्रीम होम?
7: आई लव इट, एब्सोल्युटली अमेजिंग। तुम एक काम करो, तुम मिठाई ऑर्डर कर लो।
8: मिठाई से पहले कुछ और हो जाए
7: क्या?
8: इनकी राय।
9: नई सोच की नींव में हम, हर नई उम्मीद में हम, गैलेंट निर्माण का रियल हीरो।
10: डायबिटीज की वजह से मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ता है,
11: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
10: अब मैं चैन की नींद सो पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
12: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है, ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
13: ये है एक लेगेसी।
14: यू नो डिजाइंस कितने हैं? लाख से भी ज्यादा डोज,
15: और सारे हैं BIS हॉलमार्क सर्टिफाइड। खूबसूरत कारीगरी भी, हाई क्वालिटी भी।
16: एक परिवार, अटूट भरोसा।
17: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार। सर एक बार दो ठुमका लगाने बस।
18: मेरे पास एक आइडिया है।
17: क्या?
18: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रूंगटा TMT बार से जो बना है,
19: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता,
18: क्योंकि वो मजबूत रूंगटा TMT से बना है।
20: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही TMT बार से बना है।
19: कौन सी बनानी है?
21: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: क्या कहती है आपकी राशि? कैसा बीतेगा आपका दिन? किस दिन क्या करें क्या ना करें? क्या है आपके लिए शुभ रंग? कौन सा उपाय आपके दिन को बनाएगा बेहतर? देखिए राशि चक्र सिर्फ एस्ट्रो तक पर।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

के आरोपी कांग्रेस सांसद और जेएनयू के बर्खास्त प्रोफेसर पर बीजेपी महिला मोर्चे का आर पार। अब डेलीगेशन पहुंचा राष्ट्रपति के दरबार, पार्टी से बाहर करने की मांग, फिर पूछा राहुल चुप क्यों। पंजाब में बंदूक के दम पर खामोश की गई नशे के खिलाफ उठी एक और आवाज। मनसा में ड्रग्स एक्टिविस्ट की गोली मारकर हत्या, कैमरे में फायरिंग की तस्वीरें। विपक्ष ने कहा प्रदेश बन चुका है कसाई खाना।

भारत ने छेड़ी सबसे बड़ी जंग। बिम्स्टेक देशों के गृहमंत्रियों की बैठक में अमित शाह का ऐलान, नशा, मानव तस्करों, आतंकी और भगोड़ों के विरुद्ध बने साझा रणनीति। 2026-27 से भारत की जीडीपी ग्रोथ को लेकर IMF का अनुमान, वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद 7% की रफ्तार से सबसे आगे होगा हिंदुस्तान। पीएम बोले, भारत में दौड़ रही है रिफॉर्म एक्सप्रेस। पहली बार विपक्षी काफले के साथ सुप्रीम कोर्ट मार्च करने के बाद राहुल गांधी की नई रणनीति, आज इंडिया गठबंधन के नेताओं को चाय पर बुलाया, चर्चा के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्लान।

0: सांसद के इस्तीफे की मांग को लेकर आज सरकार की सांसदों का मुलाकात है राष्ट्रपति से, लगभग 1:30 बजे मुलाकात बताई जा रही है। और इसी को लेकर अब ये तमाम बीजेपी की सांसदों का प्रदर्शन चल रहा है। सुबह से ही सभी एक बस में हमें दिखाई दी थी। अब ये बीजेपी की महिला सांसद राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगी, आरोपी कांग्रेसी सांसद के इस्तीफे की मांग करेंगी। अंगोमचा पर एक्शन की मांग की जा रही है। हालांकि उनकी जेएनयू के पद से बर्खास्तगी तो हो चुकी है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वो सांसद पद से भी इस्तीफा दें। 11 छात्रों की शिकायत के बाद बवाल मचा था जेएनयू में। उसके बाद 11 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पीयूष मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। पीयूष, इस वक्त कहां पर हैं सभी महिला सांसद?
1: जी हाँ, इस वक्त महिला सांसद पहुंच गई हैं रकाबगंज रोड पर। और आपको बता दें कि आज धरना प्रदर्शन का यह दूसरा दिन है, और कल हमने वो तस्वीरें देखी थी जब काफी भारी संख्या में बीजेपी महिला मोर्चा की जो कार्यकर्ता हैं और सांसद सड़कों पर उतरी थी और कांग्रेस मुख्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए ये मांग की थी कि विमोल अंगोमचा के खिलाफ कार्रवाई हो, उनको सांसद के पद से जो है निलंबित किया जाए और कांग्रेस पार्टी को इस पर अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। अब तक प्रियंका गांधी राहुल गांधी की तरफ से इस पर कुछ नहीं बोला गया और इस वजह से आक्रोश और ज्यादा बढ़ता हुआ महिला कार्यकर्ताओं का दिख रहा है। मैं आपको सीधी तस्वीरें भी दिखा दूं और लगातार नारेबाजी जो है वो यहां पर महिला कार्यकर्ताओं के द्वारा की जा रही है और सिर्फ एक ही मांग है कि न्याय मिले। जो 11 छात्राएं हैं जेएनयू की, उनको न्याय मिले। कुछ जो कार्यकर्ता हैं उनसे बात भी कर लेते हैं, नेता भी इस पूरे बस के अंदर मौजूद हैं, इसलिए समझ लेते हैं कि आज राष्ट्रपति जी से मिलके वो क्या अपनी मांग रखेंगे। मैम, हम लगभग पहुंच गए हैं राष्ट्रपति भवन, क्या मांग आप रखने वाली है जब आप राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे?
2: हम मांग रखेंगे उनकी सदस्यता राज्यसभा से रद्द करने की। इतनी शर्म की बात है, जो व्यक्ति भविष्य निर्माता होना चाहिए वो सेक्स पर मार्क्स करता है, वो रात देर रात को आवास पे बुलाता है, उनके ऊपर आरोप साबित होते हैं 4 साल की गहन इन्वेस्टिगेशन के बाद, उन्हें यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज सस्पेंड बर्खास्त करती है, उसके बावजूद भी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देने वाली ये कांग्रेस चुप है। उसे अपना रुख साफ करना होगा, चुप्पी तोड़नी होगी और निष्कासित करना होगा कांग्रेस पार्टी।
1: क्या क्या लग रहा है, मैं काफी देर से देख रहा हूँ आपको लगातार नारेबाजी आप कर रही है, क्या लग रहा है क्यों चुप्पी साधी हुई है कांग्रेस के नेता?
3: देखिए, ये चुप्पी कांग्रेस पार्टी की जो महिला विरोधी मानसिकता है उसको बयान करती है। एक तरफ प्रियंका गांधी कहती है मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं महिलाओं के साथ, हमारी बेटियों के साथ, जो बेटियां घर से कॉलेजेस में पढ़ने के लिए जाती हैं उनके साथ हरेसमेंट की जाती है। तो ऐसे सांसदों को, ऐसी पार्टी को निष्कासित किया जाना चाहिए। आज हम राष्ट्रपति मैम से मिलने जा रहे हैं और ज्ञापन देंगे कि जल्दी जल्दी इस कांग्रेस सांसद को निष्कासित किया जाना चाहिए।
1: तो कांग्रेस सांसद का निष्कासन हो, इसी मांग को लेकर यहाँ पर महिला कार्यकर्ता जो है बस के अंदर बैठकर राष्ट्रपति भवन के पास पहुंची गई। और एक बार तस्वीर आप देख सकते हैं कि लगातार राहुल गांधी के खिलाफ जो है नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। मैम, क्या मांग आज आप रखने वाली है और अब तक आपको क्या लग रहा है कि जब से जेएनयू की तरफ से फैसला किया गया तब से अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, क्यों नहीं लिया गया?
4: देखिए, बहुत निंदनीय घटना है। हम आज राष्ट्रपति जी के घर पर आए हैं और ये बोलने आए हैं कि जो उनके राज्यसभा सांसद हैं उनको उनके कांग्रेस से निष्कासित किया जाए। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी दोहरी राजनीति अपनाते हैं, एक तरफ पितृसत्ता को हटाने की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ महिलाओं को जो अपमान हुआ है उस पर चुप्पी साधे हुए, मुंह पर टेप लगाई हुई है। प्रियंका गांधी कहती है कि मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देती है, लेकिन दूसरी तरफ ये लोग महिलाओं पर जो अत्याचार कर रहे हैं उनको संरक्षण दे रहे हैं अपनी पार्टी में। तो इस तरह की दोहरी राजनीति नहीं चल सकती। जो छात्राएं कॉलेज में पढ़ने आती है, गुरु को अपना गुरु मानती है, वो कहती है कि पहले सेक्स करो उसके बाद हम मार्क्स देंगे, तो कितनी निंदनीय घटना है। तो आज सभी महिलाएं राष्ट्रपति जी के यहाँ जा रही है और उसकी मांग करेंगे कि किस तरह से राहुल गांधी जी अपनी पार्टी में गुंडों को संरक्षण दे रहे हैं।
1: तो ये दोहरा मापदंड नहीं हो सकता, इस तरह की बात कई कार्यकर्ताओं की तरफ से कही जा रही है और कई नेता भी इस पूरे जो पूरी जो मीटिंग है उसमें शामिल है। और ये दोहरे मापदंड की बात इसलिए कही जा रही है नेहा, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी छात्रों की गूंज की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर वो छात्राएं जो है जेएनयू की उनके लिए कुछ नहीं बोल रहे, इसलिए आक्रोशित कहीं ना कहीं बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ पर नजर आ रही है। मैम आपके हाथ में माइक है और लगातार अब नारेबाजी कर रही है, क्या बात अपने नारों के माध्यम से?
2: मैं कहती हूँ जो 11 छात्राएं हैं उन्होंने इन पे यौन शोषण का जो आरोप लगाया है, तो इनका इस्तीफा जो राहुल गांधी से हम ये कहना चाहते हैं कि इनका इस्तीफा जल्दी से जल्दी होना चाहिए, जब ये उनको छात्राओं का इंसाफ मिले, क्योंकि ये घिनौना छात्राओं के साथ ये घिनौना जो अत्याचार है वो अभी नहीं हो रहा, वो बहुत टाइम से हो रहा है, तो हमें जल्दी से जल्दी इनका इस्तीफा चाहिए। नारी छात्राओं का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान,
1: नेहा इसी तरह की बात करती हुई जो महिला कार्यकर्ता आगे बढ़ रही है और राष्ट्रपति भवन कुछ देर में सबके साथ पहुंचने जा रहे हैं।
0: ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, 1:30 बजे मुलाकात बताई जा रही है। और ये एक पंक्ति में आप सभी महिला सांसदों को देख रहे हैं, उनकी यही मांग है कि जल्द से जल्द इस्तीफा आरोपी सांसद का लिया जाए। प्रोफेसर अकोएम जिन पर मार्क्स के बदले यौन संबंध का आरोप लगा है, खाप पंचायत स्टाइल में फैसला लिया गया क्योंकि जांच के बाद 9 अक्टूबर को बर्खास्तगी हुई, FIR दर्ज की गई, अनचाहे शारीरिक संपर्क का एक पैटर्न था जो मैसेजेस के जरिए ट्रेस हुआ, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न एक्ट के तहत जांच हुई, एक्ट महिलाओं से जुड़ी हुई और 3 पुरुष छात्र इस पूरी जांच में शामिल रहे, मेरे 8 गवाहों ने आरोपों को खारिज किया है, ये प्रोफेसर अकोइन कह रहे हैं। और मणिपुर की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। इकतीस मई को उन्होंने लिखित जवाब दिया, 16 जुलाई को खुद पेश हुए, मार्क्स के बदले यौन संबंध का जिक्र नहीं है, ये उन्होंने अपनी सफाई में कहा है। बात लखनऊ में हुए एक हाई प्रोफाइल मर्डर की, लखनऊ में 28 साल के करोड़पति कारोबारी शिवा शर्मा की मौत मामले में कई बड़े खुलासे हुए, पुलिस को फ्लैट की जांच में आपत्तिजनक चीजें मिली, साथ ही शिवा शर्मा की लिव इन पार्टनर श्रद्धा दुबे को लेकर भी कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई। श्रद्धा के चैट से पता चला कि वो कई नेताओं के संपर्क में थी, शिवा की मौत के बाद से श्रद्धा दुबे फरार है, उसकी तलाश में दिल्ली के साथ साथ नेपाल भी कई जगहों पर छापेमारी हो रही है। दरअसल 9 अक्टूबर को लखनऊ के अवध ग्रीन अपार्टमेंट में 4th मंजिल से गिरकर शिवा शर्मा की मौत हो गई थी। शिवा की मां रंजना शर्मा का आरोप है कि श्रद्धा दुबे ने शिवा को धक्का देकर उसकी हत्या की। शिवा की मां ने यह भी आरोप लगाया कि श्रद्धा कई बड़े नेताओं के नाम लेकर उनके बेटे को ब्लैकमेल करती थी और उसे जेल भिजवाने की धमकी तक देती थी। शिवा की मां की शिकायत पर श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि, ड्राइवर आदिल समेत 5 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हुआ है। शिवा की मां से श्रद्धा दुबे के कई चैट्स और उसके खिलाफ कई सबूत पुलिस को सौंपे गए।

वहीं कारोबारी शिवा शर्मा की हत्या जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। जांच के दौरान लखनऊ पुलिस के हाथ एक बड़ा सुराग मिला है। श्रद्धा दुबे अपने पुराने दोस्त आमिर के साथ नेपाल बॉर्डर पहुंच गई है। ये बड़ा सुराग सामने आया है। अब नेपाल बॉर्डर पे उसकी तलाश की जा रही है। हत्या के बाद से ही वो फरार है। पुलिस जांच में जुटी हुई है, उसकी तलाश कर रही है। उसकी बहन की भी तलाश की जा रही है, वो भी इस पूरे मामले में आरोपी है।

0: क्या लखनऊ के कारोबारी शिवा शर्मा की मौत से पहले उसे टॉर्चर किया गया था? क्या मौत से पहले शिवा के शरीर को सिगरेट से दागा गया था? क्या यही जुल्म, यही टॉर्चर शिवा की मौत की वजह बना? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ये गंभीर आरोप खुद शिवा शर्मा की मां रंजना की ओर से लगाया गया है
1: कि डेथ हो चुकी है, मेरे बेटे के बदन पे काफी सारे मारपीट के निशान, कान से ब्लड, दोनों आंखें टूटी हुई थी, कान से काफी खून था, नाक थी, जबड़ा टूटा हुआ था, पूरे बदन पे सिगरेट से जलाने के निशान थे, पैर टूटा हुआ था, रिप्स टूटी हुई थी, रिप्स के पास काफी खरोंचों के निशान और चीजें थी।
0: इन सनसनीखेज आरोपों के बीच लखनऊ के कारोबारी शिवा शर्मा की मौत का मामला अब सिर्फ एक मर्डर केस नहीं रह गया है, ये हाई प्रोफाइल केस, रसूख, ब्लैकमेलिंग और एक बड़े सिंडिकेट का खतरनाक कॉकटेल दिख रहा है जिसका शिकार युवा कारोबारी शिवा शर्मा बना। इस पूरे जाल को लेकर जो जो खुलासे हो रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। पता ये भी चला है कि शिवा की मौत के बाद भी श्रद्धा और उसके साथियों ने परिवार वालों को सही जानकारी नहीं दी, काफी देर तक इस पूरे केस को छुपाने की कोशिश करते रहे।
1: आज 8:30 बजे के आसपास मुझे रश्मि दुबे नाम की एक लड़की का कॉल आया कि शिवा शर्मा का एक्सीडेंट हो गया है और मैं हजरतगंज से राम मनोहर हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ।

0: पहुंची तो एम्बुलेंस के पास श्रद्धा दुबे नाम की लड़की का ड्राइवर सौरभ कश्यप खड़ा था और जो कि मुझे देखते साथ ही वहां से छोड़कर भाग गया। जब मैंने ड्राइवर से पूछने की कोशिश की तो ड्राइवर ने बताया कि मैं 3 घंटे से पहले राम मनोहर लोहिया और फिर यहां लेके आया हूं और इससे ज्यादा मुझे नहीं पता। तो जब एडमिट कराने के लिए अंदर लेके मैं गई तो डॉक्टर ने बताया।
1: पुलिस को अंदेशा है कि घटना के बाद मेडिकल कॉलेज से निकलते ही आरोपियों ने आपस में संपर्क साधा और एक सोची समझी साजिश के तहत शहर से फरार हो गए। पुलिस श्रद्धा दुबे और उसके कनेक्शन की पड़ताल कर रही है। इस बीच उसके कई बड़े नेताओं से संपर्क की बात भी सामने आ रही है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या किसी ने लखनऊ से फरार होने में श्रद्धा की मदद की।
2: दुबे अभी फरार है, पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस उसकी तलाश उत्तर प्रदेश के बाहर यानी दिल्ली, साथ ही साथ नेपाल बॉर्डर पर भी की जा रही है। बताया गया है कि उसका बॉयफ्रेंड श्रद्धा का सनी उसके साथ महाराजगंज के बॉर्डर पर देखी गई। अब इस पूरे मामले पर अगर बात करें तो यह हाई प्रोफाइल केस किस तरीके से श्रद्धा दुबे के आसपास घूम रहा है, क्योंकि क्या वजह है चौथी फ्लोर से शिवा की गिरने की, क्या वजह है कि वो नीचे गिरता है और उसकी मौत हो जाती है, क्यों उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे।
1: जांच के बीच पुलिस को श्रद्धा को लेकर कई और जानकारियां भी मिली हैं। पता चला है कि श्रद्धा को शुरुआत से ही ग्लैमर वर्ल्ड का शौक था। उसके पति ने हैदराबाद से उसे एक्टिंग का कोर्स करवाया, जिसके बाद वो लखनऊ आकर मॉडलिंग करने लगी। यहां रसूखदार और हाई प्रोफाइल लोगों से संपर्क बढ़ते ही उसने पति को छोड़ दिया और यही बस गई।
2: अगर श्रद्धा दुबे की बात करें तो वो इंस्टाग्राम पर उसके लाखों फॉलोअर्स हैं। बताया गया उसका संबंध कई ब्यूरोक्रेट से है, कई नेताओं से है, कई क्रिकेट की हस्तियों से है उसका संबंध। कई फोटोज और वीडियोस ऐसे सामने आए जिसमें श्रद्धा दुबे को देखा गया। शिवा को किस तरीके से वह अपने साथ रखे थी ये भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि शिवा कारोबारी था, उसका रेस्टोरेंट था, उसका होटल था, अलीगंज लखनऊ में रहता था एक बहन और अपनी माँ के साथ में। लेकिन ग्रीन अपार्टमेंट जो बालू अड्डे पर है वहां पर वो चौथी फ्लोर पर लिव इन में रहता था ऐसा बताया गया।
1: पुलिस अब श्रद्धा के पुराने मुकदमों, उसके बैंक खातों के लेन देन और संदिग्ध संपर्कों की कड़ियां जोड़कर पूरे नेटवर्क को बेनकाब करने में जुट गई है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
3: आशा संवाददाता आशीष श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, श्रद्धा दुबे नेपाल में है या नेपाल में उसका कोई कनेक्शन निकला है, क्या जानकारी सामने आ रही है, क्या पुलिस वहां पर पहुंचेगी?
2: नया देखिए, सबसे बड़ी बात है कि श्रद्धा दुबे का कनेक्शन जो है वो कई ब्यूरोक्रेट से, कई नेताओं से और बड़ी बड़ी हस्तियों से था, और यही वजह बनी है कि जब ये संदिग्ध मौत होती है तब उसको फरार होने में बताया गया है कि कई लोगों ने उसकी मदद की। कई लोग ऐसे थे जो इंस्टाग्राम पर उसको फॉलो करते थे, जैसे ही ये कांड हुआ उसके बाद अनफॉलो करके वहां से चले गए। अब ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो श्रद्धा दुबे को बचाने की कवायद में लगे हुए हैं। इसमें माना गया है कि श्रद्धा दुबे महाराजगंज के पास, जहां पर नेपाल है, नेपाल भागने की कोशिश कर रही थी, वहां पर उसको देखा गया है अपने किसी और बॉयफ्रेंड के साथ में। अब ऐसे में पुलिस उधर दिशा में भी तलाश कर रही है। एक टीम दिल्ली गई हुई है और एक टीम अदर स्टेट में गई हुई, यानी कि पुलिस की कई टीमें श्रद्धा दुबे को तलाश कर रही हैं, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल जो केस है इसके पीछे कौन ऐसे लोग हैं जो कि इस पूरे घटनाक्रम में शामिल हैं, क्योंकि पूरा घटनाक्रम संदिग्ध है और हर समय इस चीज को जरूर देखा जा रहा था कि इस पूरे गैंग में कई लोग शामिल हैं जिससे कि श्रद्धा दुबे के कनेक्शन में रहे हैं, क्योंकि बराबर ये भी है श्रद्धा दुबे कई लोगों की धमकियां देती थी शिवा को कि उनसे शिकायत कर दी जाएगी और तुम्हें जेल भिजवा दिया जाएगा। आखिर वो नकाबपोश कौन है, वो पर्दे के पीछे कौन लोग
3: आपके पास
2: हैं?
3: इस बीच पुलिस की जांच के बीच आज तक शिवा शर्मा को मिली धमकी का एक ऑडियो मिला है जिसमें हिस्ट्री शीटर ऋषभ राय शिवा को धमकी देता सुनाई दे रहा, सुनिए।
4: हेलो
5: भाई, नमस्कार।
4: नमस्कार भाई, कौन?
5: भाई ऋषभ बोल रहे हैं।
4: हाँ भाई बताओ।
5: भाई पहचान रहे?
4: हाँ यार, पहचाने के नहीं?
5: नहीं नहीं, पहचानेंगे भाई आप तब, जब हम आपको के साथ कुछ करवाएंगे तभी आप पहचानेंगे, ऐसे आप कहाँ पहचानेंगे? क्यों, क्या समझ रहे हैं?
4: हैं?
5: कुछ करवाएंगे आपके, जैसे बाल वाल बहुत बड़े होंगे, टकला वकला करवा देंगे आपको, तब आप मानेंगे कि ऋषभ बोल रहे, कौन बोल रहे, तब आप पहचानेंगे, ऐसे कहाँ पहचानेंगे? क्यों क्यों भाई?
4: भाई सही बात
5: है। सही नहीं, तुम गलत फहमी में हो उसी बात, समझे? तुम्हारी गलत, तुम्हारी इतनी अच्छी गलत फहमी मैं दूर करूंगा कि तुमने सोचा नहीं होगा, और तुमको लिख

0: बस तुम थोड़ा सा हाथ में नहीं आ रहे ना, हम भी अभी बाहर आ पा रहे हैं, बात समझ रहे हो? और बहुत जल्दी गलतफहमी तुम्हारी दूर करेंगे हम, ठीक?
1: किसी से अगर दूर होना उसको कुछ वो होता है, ठीक है भाई, तो वो चीज
0: वो हम तुमको बताएंगे वो क्या होता है नहीं होता है, वो हम तुमको बता, अभी फोन पे तुमको हम ज्यादा बताना सही नहीं, हम लोग कुछ करेंगे तभी समझ में आएगा, इसे तुम्हारी समझ में नहीं आएगा।
2: रुकना होगा यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। एयू
6: सोच बदलो और बैंक भी।
7: आ गया सोमवार और आ गए
8: चकमक चाचा।
7: एक कचौड़ी दो समोसा चकमक, तेरा क्या भरोसा?
9: चकमक चाचा से सीधे चकमक है?
7: अरे नारा है, दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, महिला लोग एकदम नारा लगाए जा रहे, बुझ रहा ना।
9: लेकिन भैया नारे, अरे फालतू में सब बेकार, एकदम बेकार नारे होते थे हमारे टाइम।
7: अच्छा
9: सुनाए, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, जेपी भाई छूटेंगे।
7: अच्छा तो हमारे टाइम वाले सुनिए, दो कुलचा एक बिरयानी, इन नेताओं की खत्म कहानी।
9: अरे जमीन की चकबंदी में, जमीन की चकबंदी में क्या फाइनेंस बंदी में,
7: ठंडी चाय गरम करो चकमक चाचा, शर्म करो।
9: अरे राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर।
7: अरे लाठी गोली खाएंगे, इस्तीफा लेके जाएंगे।
9: अरे सुनो, इस दीपक में तेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं।
7: अरे लाल फूल नीला फूल, जंजी नंगे ब्यूटीफुल।
9: अरे बारी बारी सबकी बारी, अब की बारी अटल बिहारी।
7: चाय गरम दूध गरम चकमक चाचा भी शर्म
9: है।
7: हाँ,
9: जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है।
7: अरे मेरे सिर में दर्द है जिसका कारण मर्द है आप जैसा।
10: हम जैसे? इधर आओ।
11: हम जैसे मर्द नहीं होते किसी नारे से ऑफेंड, हम तो भैया करते हैं हर सही मुद्दे को डिफेंड।
7: आई चाचा।

0: दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं।
1: पहले भरपेट भोजन, बाद में आंदोलन।
2: डोंट ट्विस्ट।
0: क्या हुआ?
2: डोंट ट्विस्ट लप से।
0: हर आदमी में
3: होते हैं 10-20 आदमी, जब भी देखियो गौर से देखियो।
1: कितना घटिया था यार तुम्हारे तरीके से पढ़ा।
2: लप लप लप।
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: आप महामहिम राष्ट्रपति जी के पास गए, वहां पर भी आपको कहा गया कि शिकायत के साथ सबूत दीजिए, तो आप बगले झांकने लगे, भाग गए, चुप्पी साध ली। और सुप्रीम कोर्ट ने तो श्रीमान राहुल गांधी जी से साफ साफ कह दिया कि कोर्ट को आप अपनी राजनीति का रणक्षेत्र नहीं बना सकते। इनका फंडा बहुत क्लियर है, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का, राज नहीं तो अराजकता फैला दो।
8: सत्ता में रहते हुए जिन्होंने देश को लगातार लूटा है, वह चोरी की बात कर रहे हैं। बार बार जिनको जनता ने हराया है, उनको तो आत्मचिंतन करना चाहिए, लेकिन हार हार के इतने कुंठित हो गए हैं कि अब धमकी देने पर उतर आए हैं, अमर्यादित आचरण कर रहे हैं। लोकतंत्र में विरोध की भी मर्यादा होती है, और विशेषकर जब कोई नेता प्रतिपक्ष जैसे पद पर हो, हार की खींच कुंठा में बदल रही है और संतुलन बिगड़ रहा है, हर किसी को धमकियां दी जा रही है।
9: अच्छा, आजकल हमें इंफॉर्मेशन सब जगह से मिल रही है। ज्ञानेश कुमार जी, हम जानते हैं आपकी क्या हालत है, हम जानते हैं कि आप रात को सो नहीं पाते हो, और आप घबराइए मत, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। मैं आपको डायरेक्टली कह रहा हूं, आप बचोगे नहीं एज इलेक्शन कमिश्नर, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो हो रहा है, ये लाखों लोग जो हैं, ये आपके बारे में, आपके बिहेवियर के बारे में सवाल पूछ रहे हैं, और ये रुकेंगे नहीं। रुकेंगे क्यों नहीं? क्योंकि आपके सामने भी लोग हैं, और उन तक पहुंचने के लिए हमें आपको हटाना है।
8: एक के बाद एक चुनाव हारना और उसकी खींच आंदोलन करके सड़क पे निकालना, ये कांग्रेस की नियति बन गई है, और चुनाव की हार का दोष भी कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं पर मढ़ने का पाप करती है। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस के मित्रों से, कांग्रेस की हार का कारण चुनाव आयोग नहीं है, कांग्रेस की हार का कारण स्वयं कांग्रेस का विचार शून्य नेतृत्व है।
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: शेयर बाजार में पैसा लगाने वालों के लिए विदेशी नागरिकों की हर चाल काफी मायने रखती है। ये निवेशक जब बाजार में पैसा लगाते हैं तो खरीदारी को सपोर्ट मिलता है, लेकिन जब लगातार बिकवाली करते हैं तो बाजार पर दबाव बढ़ जाता है। भारतीय शेयर बाजार में इन दिनों कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर के शुरुआती 6 दिनों में विदेशी नागरिकों ने भारतीय शेयर बाजार से 44,166 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। इसके साथ ही 2026 में उनकी कुल बिकवाली 3,00,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गई है। NSDL के आंकड़ों के मुताबिक 2026 में अब तक विदेशी निवेशकों ने शेयर बाजार से 3.04 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। 2025 में ये निकासी 1.66 लाख करोड़ रुपए थी। वहीं सितंबर 2026 में विदेशी निवेशकों ने 35,861 करोड़ रुपए के शेयर बेचे थे, जबकि जुलाई में 20,200 करोड़ और अगस्त में 29,631 करोड़ रुपए का निवेश किया था। यानी जुलाई और अगस्त में खरीदारी करने वाले विदेशी निवेशक सितंबर से फिर बिकवाली की तरफ मुड़ गए हैं। भारतीय बाजार से इतनी बड़ी रकम निकालने की एक बड़ी वजह भारत के बाहर निवेश के दूसरे विकल्पों का आकर्षक होना है। महंगा कच्चा तेल, मजबूत अमेरिकी डॉलर और अमेरिकी सरकारी बॉन्ड पर ऊंचा रिटर्न विदेशी निवेशकों को भारतीय शेयरों से पैसा निकालने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। दरअसल अमेरिका के 10 साल के सरकारी बॉन्ड पर 5.2% से ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। वहीं महंगे कच्चे तेल से भारतीय अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ने की आशंका है। उधर एशियाई बाजारों में AI कंपनियों के शेयरों की तेजी भी विदेशी निवेशकों को आकर्षित कर रही है। विदेशी निवेशकों का पैसा निकालना अपने आप में इस बात का संकेत नहीं है कि भारतीय बाजार में कोई बड़ी कमजोरी आ गई है। दुनिया भर में निवेशक बेहतर रिटर्न के मौके तलाश रहे हैं। हालांकि विदेशी निवेशकों की बिकवाली के बीच भारतीय बाजार को घरेलू निवेशकों से सहारा मिल रहा है। फिलहाल माना जा रहा है कि विदेशी निवेशकों की वापसी के लिए कच्चे तेल की कीमतों में नरमी खास रोल निभाएगी। वहीं अमेरिकी बॉन्ड पर रिटर्न घटने से भारतीय शेयरों की तरफ पैसा लौटने की संभावना है। भारतीय कंपनियों के शेयर आकर्षक कीमतों पर मिलने से भी विदेशी निवेश बढ़ सकता है। विदेशी निवेशकों की बिकवाली और भारत में गिरावट के बीच सीधा रिश्ता होने के बावजूद हर गिरावट की वजह केवल विदेशी निवेशक नहीं होते। जानकारों के मुताबिक निवेशकों को बाजार की चाल समझने के लिए कंपनियों के नतीजे, शेयर की कीमत और वैश्विक हालात पर भी नजर रखनी चाहिए। आदित्य राणा, आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

यौन उत्पीड़न के आरोपी कांग्रेस सांसद और जेएनयू के बर्खास्त प्रोफेसर पर बीजेपी महिला मोर्चे का आर पार, अब डेलीगेशन पहुंचा राष्ट्रपति के दरबार, सदस्यता रद्द करने और गिरफ्तारी की मांग। पंजाब में बंदूक के दम पर खामोश की गई नशे के खिलाफ उठी एक और आवाज, मनसा के ड्रग एक्टिविस्ट की गोली मारकर हत्या, कैमरे में फायरिंग की तस्वीरें, विपक्ष ने कहा प्रदेश बन चुका है कसाई खाना। दो हजार 26-27 में भारत के जीडीपी ग्रोथ को लेकर आईएमएफ का अनुमान, वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद 7% की रफ्तार से सबसे आगे होगा हिंदुस्तान, पीएम बोले भारत में दौड़ रही है रिफॉर्म एक्सप्रेस। पहली बार विपक्षी काफिले के साथ सुप्रीम कोर्ट मार्च करने के बाद राहुल गांधी की नई रणनीति, आज इंडिया गठबंधन के नेताओं को चाय पर बुलाया, चर्चा के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी प्लान। अब दिवाली के बाद लगेगा यूपीआई पेमेंट पर सरचार्ज, त्योहार के सीजन में सरकार ने दी कारोबारियों को बड़ी राहत, पहले 15 अक्टूबर से 2000 के ऊपर पेमेंट पर लगना था चार्ज।

0: नमस्कार, मैं हूं अंशुलि इस्टवाल और आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर, सीधा उसी का रुख करते हैं। MDR जो कि लागू होना था UPI पेमेंट्स पर, फिलहाल उसे टाल दिया गया है। अब दिवाली के बाद ही उसे लागू किया जाएगा, ये साफ कर दिया गया है। ये एक सरचार्ज था जो कि UPI पेमेंट्स पर लागू होना था, लेकिन त्योहार को देखते हुए, त्योहार के सीजन को, फेस्टिव सीजन और खरीदारी को देखते हुए कारोबारियों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि अब इस UPI सरचार्ज को टाल दिया गया है। 15 अक्टूबर से लागू होने वाला यह सरचार्ज इस वक्त अभी लागू नहीं किया जाएगा, इसे डिले कर दिया गया है, ये खबर इस वक्त आ रही है। UPI MDR को लेकर लगातार विवाद भी चलते रहे हैं, लेकिन अब इस वक्त की बड़ी खबर, इसे टाला गया है। और हमारी सहयोगी साक्षी बत्रा, बिजनेस टुडे की हमारी संवाददाता, हमारे साथ जुड़ गई है फोन लाइन पर। साक्षी, कितनी बड़ी राहत रहेगी ये फेस्टिव सीजन को मद्देनजर रखते हुए?
1: डेफिनेटली अंजलि, आपने सही कहा। बहुत सारे मर्चेंट्स की ये चिंताएं थी कि जिस तरीके से UPI पर MDR फी लगाई जाएगी, फेस्टिव सीजन पर इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि लोगों के भीतर अभी भी काफी ज्यादा डर बना हुआ है कि उनको तो कहीं ये फी नहीं देनी पड़ जाएगी, और UPI के जरिए जो पेमेंट होती शायद उसकी वॉल्यूम्स कम हो सकती थी। इसलिए मर्चेंट्स ने ये रिक्वेस्ट किया था NPCI से कि एटलीस्ट फेस्टिव सीजन के लिए इसे रोक दिया जाए। काफी सारी क्लैरिटी उनको कंज्यूमर्स तक भी पहुंचानी है और खुद भी उनको लेनी है कि किस किस पैमाने पर, किस किस कैटेगरी पर ये पैसे लगेंगे। और खासतौर पर अगर आप क्लियरली देखें तो इस बार राहत की खबर है कि जो फेस्टिव सेंटिमेंट है वो बरकरार रहेगा। दिवाली के बाद ही अब ये फी लागू होगी, हालांकि उसके बाद क्लैरिटी आ चुकी है कि इसे और डिले नहीं किया जाएगा। NPCI ने दिवाली के बाद का समय दिया है। जो पहले खबरें चल रही थी कि शायद जनवरी तक इसे टाला जाएगा, लेकिन केवल दिवाली तक ही इसे पोस्टपोन किया गया है। उसके बाद जो मर्चेंट्स हैं, पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजेक्शन 2000 रुपए के ऊपर के, उसके ऊपर 0.4% तक की फी लगेगी, जो कि मर्चेंट्स को देनी होगी। कंज्यूमर्स के ऊपर इसका असर नहीं आएगा। लगातार सरकार भी और मर्चेंट्स भी ये कह रहे हैं कि आपको ये फी नहीं देनी होगी, तो कंज्यूमर्स के लिए कोई चेंज नहीं है।
0: जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए साक्षी। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर है, क्योंकि बड़ी चिंताएं थी कारोबारियों की इसको लेकर के, क्योंकि फेस्टिव सीजन में खरीदारी बढ़ जाती है, ऐसे में UPI पे लगने वाला सरचार्ज उनके लिए एक सरदर्द बन गया था। ऐसे में अब राहत की खबर है, क्योंकि अगर ये सरचार्ज टाल दिया जाता है दिवाली के बाद तक के लिए, तो एक बड़ा शॉपिंग का जो विंडो है उससे उनको फायदा होगा। तो आपको बताते हैं इसके बारे में कि दरअसल ये पूरा मामला क्या था। ये एक चार्ज है जो कि व्यापारियों को दरअसल देना था, ग्राहक को नहीं, लेकिन चार्ज जो था वो 2000 की जो पेमेंट है उसके ऊपर, और अधिकतम 300 की उस पर लिमिट रखी गई थी। पर्सन टू पर्सन आप जितनी भी पेमेंट करें कोई चार्ज नहीं था, लेकिन अगर आप मर्चेंट को पेमेंट करते थे 2000 रुपए से ऊपर, तो आपको उसमें पेमेंट देनी पड़ती, सरचार्ज देना पड़ता था, ये मर्चेंट पे लगाया जाता था। तो ऐसे में ये कारोबारियों के लिए एक बड़ी राहत है, लोगों पर वैसे ही इस चार्ज का कोई बोझ नहीं आने वाला था।

0: और अब रुक करते हैं पंजाब से आ रही एक बड़ी खबर का। नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले एक शख्स परमिंदर सिंह झोटा की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। खबर आ रही है कि उन्हें गोली मार दी गई और ये दिन दहाड़े एक बाजार में हुआ है, जिसे लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है लगातार। आपको बता दें कि पंजाब में ड्रग्स को लेकर कई खबरें सामने आ रही थी और क्राइम भी हाल के दिनों में बढ़ा है, जहां पर बड़ी बड़ी हत्याएं देखी गई थी, चाहे वो पुलिस वालों पर हमला हो। लेकिन अब नशा, जो कि एक बड़ा सियासी मुद्दा भी है पंजाब में, उसे लेकर के ये एक एक्टिविस्ट जो थे उनके ऊपर हमला किया गया और इस मामले में कुल 4 लोग जख्मी हुए हैं। तो इसमें बड़ी खबर यह भी है कि इस मामले में मारे गए शख्स, जो कि ड्रग्स के खिलाफ लड़ने वाली लड़ाई के एक्टिविस्ट थे, उनके पिता का आरोप है कि इसमें सरकार भी मिली भगत है।
1: तुगा नशा कौन बचाऊंगा? वो पंजाब सरकार ने विजय सिंगले वर्गे मंत्री बचाए ने। सुनो भाई, हुण पौंदी जेल चोवे मुंडा पासी छज बनाउण वाले दा मुंडा है, दयालपुरा रोड बरेटा। एक कुड़ी है ज्योति, ज्योति दयालपुरा रोड बरेटा, सुखे दे घर दे नेड़े दा घर है। सतानक पुलिस पता नहीं क्यों नहीं फड़दी। दूजी कुड़ी है सरजीत कौर, पंड दे कंडे दे नेड़े दयालपुरा रोड ते है। पुलिस जांदी है उल्टा मेनू फोन करदी है, सानू घर नहीं लभदा। ओ इहनां नशे तरसां दा घर नहीं लभदा, ओ झोटे दा घर इहनां नूं ओदी लभ जांदा है। मानसा दे विच हरेक वार्ड दे विच ਜਵਾਰ ਕੇ ਫੁੱਲ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਜਵਾਰ ਰੋਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਪੈਂਦੇ, ਰੋਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਈਵ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰੀ ਨਾ, ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜੋ ਵਾਪਸ ਆਤਾ
0: पंजाब के मनसा इलाके में हुई इस हत्या को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक अहम बैठक इस वक्त बुलाई है। ये बैठक दरअसल SSPs और DCs को बुलाई गई है, उनको बुलाया गया है इस बैठक के लिए और कोशिश ये की जा रही है कि इस उच्च स्तरीय बैठक के जरिए इस मामले की गहन जांच की जा सके, क्योंकि ये हत्या का मामला अब सियासी रंग लेता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि अलग अलग जो नेता हैं पार्टियों के वो इस पर सवाल उठा रहे हैं और सीधी उंगली जो उठ रही है वो सरकार की तरफ उठ रही है। चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक पार्टियों के लोग हों, नेता हों, या फिर परिवार की तरफ से भी जो उंगली उठी है वो सरकार की तरफ है। तो आइए सुन लेते हैं कि किस तरीके से विपक्ष के नेता सरकार पर सवाल उठा रहे हैं।
2: मैं इस वारदात की निखेधी करदा, परमिंदर सिंह झोटा एक होनहार नौजवान सी, जिहड़ा पंजाब दे विच वध रहे नशियां नूं रोकण वास्ते संघर्ष कर रहा सी, सरकार नाल लड़ाई लड़ रहा सी। सरकार ते नशा बेचण वाले उन्हूं बार बार दबा रहे सी, लेकिन अज आखर नूं उस दे गोलियां मार के मार दिता है। बहुत ही घिनौनी हरकत हुई है, सरकार वास्ते डुब के मरने वाली गल है।
3: मानसा शहर दे विच परविंदर झोटे दा जो दिन दिहाड़े गोलियां मार के कतल किया गया, उन्हें एक बार फिर पंजाब दे विच माड़े लॉ एंड ऑर्डर की जिहड़ी तस्वीर है वो देश के सामने रख दी। वह व्यक्ति जिहड़ा 5-6 साल तो नशियां दे खिलाफ जहाद खड़ा करके बैठा सी, जिहड़ा थां थां ते जिते किते कैमिस्ट नशा बेचते सी जाके विरोध करता सी, पहला पुलिस ने उन्हें ते केस दर्ज करके जेल च पाया। हुण जेल तो बाहर आके अज वह लाइव हो के एक कैमिस्ट की दुकान ते जाके उन्हूं चैलेंज कर रहा सी कि तेरी दुकान तो नशे का समान गाहक लैके गया, जिहड़ा लैके गया सी वह कोल खड़ा। और हिम्मत देखो कि कैमिस्ट ने शरेआम फेसबुक ते जदों लाइव हो के उहदे नाल गल कर रहा सी ते पिस्टल कढ के गोली मार के उन्हूं मौत दे घाट उतार दित्ता। यह है सरकार का युद्ध नशिया विरुद्ध।
0: और इस सारे मामले पर पंजाब में मंत्री अमन अरोड़ा क्या कह रहे हैं, आइए सुन लीजिए।
4: देखिए, मुझे अभी आपसे पता चला है, वेरी अनफॉर्चुनेट, किसी भी तरह की वायलेंस या लॉ एंड ऑर्डर को अगर कोई विशिएट करेगा तो वो ऑलरेडी किया जाएगा, पुलिस इसमें अपना एक्शन लेगी।
0: और आइए सीधा रुक करते हैं हमारी सहयोगी कमलजीत संधू का। कमलजीत, खुलेआम दिन दहाड़े जिस तरीके से हत्या की गई है, जाहिर तौर पर उस पर सवाल उठने लाजमी है। ऐसे में ये मामला सियासी भी बेहद होता जा रहा है, क्योंकि नशा एक चुनाव का मुद्दा भी रहा है। फिलहाल क्या पता चल रहा है, जो लोग जिनके ऊपर गोली चली थी उनकी तबीयत कैसी है, वो कैसे हैं, साथ ही में ये मामला कितना आगे पहुंच गया है?
5: दो समस्याएं हैं जो कि उभर के आ रही हैं, एक तो कानून व्यवस्था है, दूसरा है जो ड्रग्स का इशू है। और यहाँ पे क्योंकि परविंदर झोटा जो है वो एक सोशल एक्टिविस्ट थे, एंटी ड्रग कैंपेनर थे, और जिस तरह से वो कन्फ्रंट कर रहे थे केमिस्ट की दुकान में जहां पे ऐसे एलिगेशन आ रहे हैं कि खुलेआम ड्रग्स मिल रहा था, वहां पे आर्ग्यूमेंट काफी हद तक चलती रही और उसके बाद असिस्टेंट ने आके बाहर आके सीधा परविंदर के ऊपर गोली दागी। और आप देख सकते हैं कि वीडियो में वो परविंदर छोटा उस टाइम लाइव थे फेसबुक पे और वो द्वारा कैप्चर हो गया, और जो उनके आसपास के लोग थे उनको भी चोटें आई। तकरीबन चार लोग हैं जिनको चोटें आई और उनको अस्पताल में अब भर्ती कराया गया है, उनकी ट्रीटमेंट चल रही है। लेकिन बात वही आ रही है जहां पे परविंदर छोटा के पिता हैं वो लगातार बोल रहे हैं कि खुलेआम ड्रग्स मिल रहे थे और उनका जो बेटा है वो लगातार मुहिम चला रहा था कि ड्रग्स यहां से खत्म होने चाहिए। उन्होंने कहा कि खुलेआम, उन्होंने कई ड्रग पेडलर्स का नाम भी लिया, और उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था ऐसी बनी हुई है कि जो तो आवाज उठाता है उस पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन जो ड्रग्स बेच रहा है, जो ड्रग पेडलर्स हैं, उन पे कार्रवाई नहीं हुई है। और अभी भी उनका कहना है कि जो क्रिमेशन है या लास्ट राइट्स है वो तब तक नहीं किया जाएगा, अंतिम संस्कार जब तक कि जो अक्यूज्ड हैं ये गिरफ्तार नहीं हो जाते हैं। उनको पुलिस ने आइडेंटिफाई कर लिया है। वैभव चौधरी हैं जो कि एसएसपी हैं मानसा के, उन्होंने कहा कि 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हो जाएगी और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वही चीज बलतेज पन्नू कह रहे हैं और अमन अरोड़ा भी कह रहे हैं, लेकिन बात ये नहीं है, एक के बाद एक, चाहे हम सुसाइड की बात करें, फिर एक के बाद एक जहां पे टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो पुलिस वाले हैं, चाहे सरपंच हैं, चाहे हम इन्फ्लुएंसर्स की बात करें, और अब जो एक्टिविस्ट की बात कर रहे हैं, तो ये एक चिंताजनक बात है। और वहां पे विपक्ष है वो पूरी तरह से घेर आया इन पूरे मुद्दों
0: जी, बिल्कुल हिंसा का दौर बिल्कुल थम नहीं रहा है और ये जाहिर तौर पर एक चिंता की बात बनती जा रही है। चलिए अब रुक करते हैं दिल्ली का, दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुआ, जो प्रदर्शन हुआ, उसको लेकर अब एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि ये सामने आ रहा है कि एक पाकिस्तानी टूल किट है जो चल रहा था, जिसकी वजह से कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनके तरफ से एक नैरेटिव खड़ा किया जा रहा था। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस अब इन पर क्लैम्प डाउन करने की कोशिश कर रही है। उसकी कोशिश ये है कि दिल्ली में अराजकता फैलाने की कोशिश कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स जो कर रहे थे, चाहे वो गलत खबरों के जरिए हो, फेक न्यूज के जरिए हो, उन पर अब किसी न किसी तरह की कार्रवाई की जाए। हमारे सहयोगी अरविंद ओझा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अरविंद, ये सोशल मीडिया अकाउंट्स कौन से थे, किस तरह की ये खबरें फैलाने की कोशिश कर रहे थे और इनकी मंशा क्या थी?
6: देखिए, आपको याद होगा 10 अक्टूबर को जब सीजेपी ने प्रोटेस्ट का ऐलान किया था और दिल्ली छावनी में, खासतौर से नई दिल्ली छावनी में तब्दील हो गई थी, उस दौरान पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल से उस वक्त ऑनगोइंग प्रोटेस्ट के दौरान फैलाया गया कि दिल्ली में 13 लोगों की गोली मार के हत्या कर दी गई, वो नौजवान थे, जो फेक न्यूज था, लेकिन उसके साथ एक वीडियो भी, मिसलीडिंग वीडियो भी पोस्ट किया गया था। उसके अलावा राहुल गांधी प्रोटेस्ट कर रहे थे जब, उस दौरान एक फेक वीडियो और फेक मैसेज चलाया गया उन्हीं पाकिस्तानी टूल किट के जरिए कि राहुल गांधी घायल हो गए हैं, दिल्ली पुलिस ने ओपन फायर कर दिया। तो इस तरह के मल्टीपल जो पाकिस्तानी अकाउंट हैं जो विदेशों से चल रहे हैं, उसके जरिए इस प्रोटेस्ट के दौरान फेक न्यूज और फेक वीडियोस फैलाए जा रहे हैं, जिस पर दिल्ली पुलिस ने FIR भी दर्ज की है, उन अकाउंट को डिलीट भी करवाया जा रहा है, डीएक्टिवेट भी करवाया जा रहा है। लेकिन ऐसे कई मल्टीपल अकाउंट है, उनका मकसद यह है ऑनगोइंग प्रोटेस्ट के दौरान फेक वीडियो के जरिए, फेक न्यूज फैलाने के जरिए, कि बाकी लोग देखे, वो भड़के और उसके बाद फिर हिंसा फैले, अराजकता फैले। तो दिल्ली पुलिस, उसके अलावा खुफिया एजेंसी भी इस तरह के टूल किट पर, खासतौर से जो सोशल मीडिया पर एक्टिव है, फेक न्यूज फैला रहे हैं, ऑनगोइंग प्रोटेस्ट के दौरान फेक न्यूज फैला रहे हैं, फेक वीडियोस फैला रहे हैं, उन पर दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसियों की नजर है। और ऐसे कई अकाउंट की पहचान भी की गई, कई को डीएक्टिवेट किया गया, कई ऐसे अकाउंट हैं जो अभी भी एक्टिव है और उनके जरिए ये फेक न्यूज फैलाया जा रहा है। तो सभी को सावधान रहने की जरूरत है, खासतौर से जो प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं, जो प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं, नहीं हो रहे, वो भी सावधान रहे। इस तरह के किसी फेक न्यूज और किसी फेक वीडियो पर वो बिल्कुल भी भरोसा ना करें, और दिल्ली पुलिस भी फैक्ट चेक कर रही है इस तरह के फेक न्यूज और फेक वीडियो का। अंजलि,
0: जी अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आइए रुक करते हैं एक और खबर का, ये भी दिल्ली पुलिस से जुड़ी हुई, क्योंकि अब दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की है कल हुए विपक्ष के जो विरोध प्रदर्शन है उसके मामले में। इसमें FIR दर्ज की गई है तिलक नगर थाना और बाराखंबा पुलिस थाने में। और आइए आपको बताते हैं कि इन FIR के बारे में क्या कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता राजीव राय।
7: दो FIR नामजद लोग नहीं है उनमें, अननोन लोगों के खिलाफ हुआ, क्योंकि बिना परमिशन आप लोगों का ये मार्च निकला, दिल्ली पुलिस के सूत्र कह रहे हैं। आप लोगों का क्या?
8: इतना हास्यास्पद है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में शांतिपूर्ण ढंग से गांधीवादी रास्ते पे चलकर कहीं भी आवाज उठाने पे आप स्थान बदल देंगे, FIR कर देंगे, धमकाएंगे। ये दिखता है कि सरकार भीतर से कितनी हिली हुई है। अगर ताकतवर होती पहले की तरह तो करने दो, जो होगा हम देख लेंगे। तो पहले स्थान परिवर्तन किया। ये लोगों का इतिहास कभी भी लड़ाई वाला नहीं रहा है, झूठ जुमला धोखा फसाना पहले अंग्रेजों के साथ किया, अब देश के साथ कर रहे हैं। आवाज तो नहीं दब पाएगी। अब जो आवाज उठ गई है उस दिन से, जन्मंतर मंत्र से जुलाई में जो उठी, वो आवाज नहीं दब गई। इनकी विदाई करके कहीं चाहे कुछ भी कर ले।
0: और रुक करते हैं इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर का, खबर पटना से, जहां पर आईसा ने आज विरोध प्रदर्शन किया है पटना में। तो ये पहले से तय एक विरोध प्रदर्शन था जो आज सड़कों पर उतर आया है। आईसा के छात्र जो हैं वो आज CEC के मुद्दे पे, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त के मुद्दे पर ही, और SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिविजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स के मुद्दे पर ही आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं पटना में। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, इस वक्त आनी शुरू हो गई है, जहां आईसा के छात्र पहुंच चुके हैं और चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कोशिश उनकी थी गांधी मैदान से मार्च करने की, और इस कोशिश के दौरान आप वहां देख सकते हैं कि पुलिस भी वहां पहुंच गई है, तख्ती लेकर के वहां आयसा के छात्र पहुंच चुके हैं और वो वही बातें वही नारे लगा रहे हैं जो हम लगातार दिल्ली की सड़कों पर भी देखते आए हैं।
9: CEC ज्ञानेश कुमार और SIR के सवाल को लेकर जो हंगामा अब तक आपने दिल्ली में देखा, लगभग उसी तरह की तस्वीर अब पटना में देखने को मिल रही है, क्योंकि पटना में जो लेफ्ट के छात्र संगठन है आईसा और साथ ही साथ RYA, इन दो संगठनों ने आज राजभवन मार्च का ऐलान किया। और देखिए, गांधी मैदान से मार्च की शुरुआत हुई और अब जो कई छात्र हैं वो पहुंच गए हैं डाक बंगला चौराहे पर। यहां पर पुलिस ने जो बैरिकेड्स लगाए थे इस वक्त, उस पर जो लेफ्ट के छात्र संगठन के कार्यकर्ता हैं वो नजर आ रहे हैं, हाथों में वही प्ले कार्ड्स हैं, उसी तरह के जैसे प्ले कार्ड्स हमने दिल्ली में देखा लगातार विपक्षी दलों और अन्य संगठनों के प्रदर्शन में। और आज पटना में भी इसको लेकर के एक तरह से प्रशासन ने हाई अलर्ट रखा हुआ है। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, ये डाक बंगला चौराहा है और यहीं से आगे की तरफ सड़क जो है वो राजभवन की तरफ जाती है, और जो पुलिस है उसकी बड़ी तैनाती आज सुबह से ही देखने को मिल रही थी। पटना के गांधी मैदान की बात करें, फ्रेजर रोड की बात करें, या फिर डाक बंगला चौराहे की जहां इस वक्त हम खड़े हैं, तमाम जो वाटर कैनन व्हीकल्स हैं वो भी तैनात किए गए हैं। अगर कोई ऐसी स्थिति होती है, अगर प्रदर्शनकारी आगे बढ़ना चाहते हैं तो कैसे उनको रोका जाएगा, इसको लेकर के यहां पर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। लेकिन फिलहाल जो कई छात्र हैं वो अभी पीछे हैं, शायद जो आगे की तरफ बढ़कर आए हैं उनको ऐसा लगता है कि पीछे से दूसरे उनके सहयोगी आ जाएं तो यहां से एक बार फिर वो आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन हाँ, SIR और CEC, इन दो सवालों पर पटना में आज जो लेफ्ट के छात्र संगठन है उनकी तरफ से सड़क पर हंगामा देखने को मिल रहा है। सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण, आज तक पटना।
0: और विरोध प्रदर्शन के दौरान एक दिलचस्प तस्वीर भी सामने आई, जो पुलिस की गाड़ी वहां लाई गई थी छात्रों को उठाने के लिए, उसकी चाबी गायब हो गई। ऐसे में बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने छात्रों को दूसरे वाहन में शिफ्ट किया है और ये खबर आ रही है, आइए देखिए इसे।
10: ये पटना में आज SIR को लेकर लेफ्ट छात्र संगठनों का आज प्रदर्शन था, बखूब बवाल हुआ। लेकिन एक फिर से बिहार में एक अनोखी तस्वीर, अनोखी घटना सामने आई है। ये वज्र वाहन है जहां पर छात्रों को डिटेन करके इसमें रखा गया था, और बड़ी बात यह है कि इस वज्र वाहन की गाड़ी की चाबी लेकर के जो छात्र हैं वो भाग गए हैं, ये तस्वीर देखिए। और इस वजह से इस गाड़ी को जो है यहीं पर लगाया गया है, ये तस्वीर देखिए, ये वज्र वाहन है और यहाँ पे जो गाड़ी की चाबी थी उसको लेकर के छात्र फरार हो गए हैं। ये बड़ी खबर बिहार से मैं आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर आज प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन में छात्रों को वज्र वाहन में जो है आज डिटेन किया गया था और इस डिटेन करने के बाद वज्र वाहन से पुलिस इन्हें लेकर के जाने वाली थी। इसी बीच इसका दरवाजा खुला था या शायद संभवतः खिड़की खुली थी और इसकी चाबी जो है वो चोरी हो गई है। छात्र जो है वो वज्र वाहन की गाड़ी की चाबी जो है वो लेकर के भागे और यही वजह की देखिये अब इस वज्र वाहन से छात्रों को जो है दूसरी गाड़ी में डिटेन किया जा रहा है। तस्वीर देखिए इस वज्र वाहन से दूसरी गाड़ी में जो है वो डिटेन किया जा रहा है, रखा जा रहा है, क्योंकि अब इस गाड़ी के लिए अब दूसरी चाबी जो है वो मंगवानी पड़ेगी।
0: वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
12: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आगे आगे
3: उधर
2: करेक्ट करेक्ट
4: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार। सर एक बार दो थमका लगाने बस।
6: मेरे पास एक आइडिया।
5: क्या?
6: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा TMT बार से जो बना है,
7: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता,
8: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा TMT से बना है।
9: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही TMT बार से बना है।
10: कौन सी बनानी है?
11: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
12: यार लोन भूल गया। मैरी
13: सजेस्ट अ गुड बैंक ना।
14: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
12: स्मॉल फाइनेंस बैंक,
14: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन कार लोन, टू व्हीलर लोन।
15: There's nothing small about
12: us. Oh, Jeevan, nothing small about us.

0: बच्चों के लिए अलग टीवी रूम बना सकते हैं।
1: कैसा लगा आप दोनों को अपना ड्रीम होम?
2: I love it, absolutely amazing. तुम एक काम करो, तुम मिठाई ऑर्डर कर लो।
3: मिठाई से पहले कुछ और हो जाए
2: क्या?
3: इनकी राय।
4: नई सोच की नींव में हम, हर नई उम्मीद में हम, गैलेट निर्माण का रियल हीरो।
5: माँ के पैरों की धूल माथे पर लगा, परदेश की गलियों में अपने वतन की गीत सुनो।
6: ये डायबिटीज मुझे बार बार थका देता है।
7: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
6: अब मुझे जल्दी थकान नहीं होती। कपीवा डायफ्री जूस।
8: हर बार वही गोल्ड ज्वेलरी कैसे पहन सकती हूँ? पर इस जमाने में नई नई गोल्ड ज्वेलरी खरीदना भी तो इम्प्रैक्टिकल है, तो फिर सेनको का ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज।
9: एंजॉय करें 0% डिडक्शन किसी भी ज्वेलर के गोल्ड ज्वेलरी एक्सचेंज पर और खरीदें अपने पसंदीदा सेंको गहने।
10: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
11: सोच बदलो और बैंक भी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
3: ये डायबिटीज मुझे बार बार थका देता है,
4: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
3: अब मुझे जल्दी थकान नहीं होती। कपीवा डायबिटीज जूस।
5: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार सर, एक बार दो तीन थमका लगाने पर।
6: मेरे पास एक आइडिया है।
5: क्या?
6: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
7: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता,
8: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
9: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
7: कौन सी बनानी है?

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: यौन उत्पीड़न के आरोपी कांग्रेस सांसद और जेएनयू के बर्खास्त प्रोफेसर पर बीजेपी महिला मोर्चा का आर पार। अब डेलीगेशन पहुंचा राष्ट्रपति के दरबार, सदस्यता रद्द करने और गिरफ्तारी की मांग। पंजाब में बंदूक के दम पर खामोश की गई नशे के खिलाफ उठी एक और आवाज। मनसा में ड्रग्स एक्टिविस्ट की गोली मारकर हत्या, कैमरे में फायरिंग की तस्वीरें। विपक्ष ने कहा प्रदेश बन चुका है कसाई खाना। छब्बीस सत्ताईस में भारत के जीडीपी ग्रोथ को लेकर आईएमएफ का अनुमान, वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद 7% की रफ्तार से सबसे आगे होगा हिंदुस्तान। पीएम बोले भारत में दौड़ रही है रिफॉर्म एक्सप्रेस। पहली बार विपक्षी काफिले के साथ सुप्रीम कोर्ट मार्च करने के बाद राहुल गांधी की नई रणनीति। आज इंडिया गठबंधन के नेताओं को चाय पर बुलाया, चर्चा के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी प्लान। अब दिवाली के बाद लगेगा यूपीआई पेमेंट पर सरचार्ज। त्योहार के सीजन में सरकार ने दी कारोबारियों को बड़ी राहत। पहले 15 अक्टूबर से 2000 के ऊपर पेमेंट पर लगना था सरचार्ज।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस।
1: न्यूज रूम लाइव में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है दिल्ली से, जहां पर लगातार विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। आज भी NSUI के छात्र पहुंच चुके हैं कनॉट प्लेस और उनकी कोशिश है कि आज भी विरोध प्रदर्शन किया जाए। तस्वीरें इस वक्त जो आ रही हैं कनॉट प्लेस से, उसमें देखा जा सकता है कि छात्र जो है NSUI के, वो पहुंच रहे हैं कनॉट प्लेस में अपनी एक बार फिर से अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराने के लिए। तो NSUI के कार्यकर्ता हिरासत में लिए जा रहे हैं, ये खबर आ रही है इस वक्त। आपको बता दें कि दिल्ली के कई इलाकों में धारा 163 लागू है, ऐसे में खास तौर पर सेंट्रल दिल्ली के, ऐसे में NSUI के कार्यकर्ता जो विरोध करने के लिए पहुंच रहे थे, उन्हें अब हिरासत में लिया जा रहा है। आज सुबह भी CJP के कुछ कार्यकर्ताओं और नेताओं ने कोशिश की थी जंतर मंतर तक पहुंचने की, उन्हें भी हिरासत में लिया गया था। और अब खबर आ रही है कि NSUI जो कि कांग्रेस का छात्र संघ है, उसके कार्यकर्ता दिल्ली में कनॉट प्लेस के आसपास विरोध के लिए जाने की कोशिश कर रहे थे, इस दौरान उन्हें हिरासत में ले लिया गया है दिल्ली पुलिस द्वारा। तो बड़ी खबर ये, क्योंकि आज ही राहुल गांधी का चाय पर चर्चा का कार्यक्रम भी है।
2: जो संस्थापक सदस्य है वो पहुंचे थे और अब ये प्रदर्शनकारी अचानक से CP में फ्लैश प्रोटेस्ट करने के लिए आते हैं और उनको अब दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर लिया है। ये जनपद की सड़क है जो जंतर मंतर की तरफ जाती है, उसी सड़क पे प्रदर्शनकारी 40 से 50 प्रदर्शनकारी आप कह सकते हैं एक तरह से पहुंचे थे। उनको एक एक करके पुलिस ने उठाया और बस के अंदर डिटेन करके ले गए हैं। सुबह से कई बार इस तरह से फ्लैश प्रोटेस्ट करने की कॉल छात्र संगठनों द्वारा दी जा रही है। उनका कहना है कि जंतर मंतर जिस तरह से पहले डेजिग्नेटेड स्पॉट ऑफ प्रोटेस्ट था, उसको रीइंस्टेट करना चाहिए। हम CC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहते हैं और जंतर मंतर में ही करना चाहते हैं, ये छात्र संगठन कह रहे हैं। खासतौर पर जो लेफ्ट संगठन है छात्रों के, उनकी तरफ से कहा जा रहा है, एक बार तस्वीर देखिए, ये जो सड़क है बिल्कुल सीधे आपको जनपद से ले जाती है, वहां पे हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट आपको दिखाई देगी। उसका कारण ये है कि फ्लैश प्रोटेस्ट यहां पे शुरू हुआ। फ्लैश प्रोटेस्ट यानी कि अचानक से युवा प्रदर्शनकारी यहां पहुंचे, उन्होंने नारेबाजी की, हाथ में पोस्टर बैनर लेकर वो पहुंचे थे। अब वो तमाम पोस्टर बैनर सड़कों पे गिरे हुए हैं। ये दिशा छात्र संगठन है संभवतः जो प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पे पहुंचे थे, उनको यहाँ से हटा लिया गया है। अब उनको यहाँ से हटाया गया है, इसकी वजह से सड़क बाधित है, सड़क बाधित है इसकी वजह से, और प्रदर्शनकारियों को डिटेन करके यहाँ से ले जाया गया है। तो सुबह पहले कॉकरोच जनता पार्टी के आशुतोष रांका, सौरभ दास, अजिंक्य शिंदे के साथ कुछ प्रदर्शनकारी जंतर मंतर के अंदर जा पहुंचे थे, उनको सुबह सुबह डिटेन करके दिल्ली पुलिस ले गई। उसके बाद से लगातार फ्लैश प्रोटेस्ट के कॉल दिए जा रहे हैं जंतर मंतर पहुंचने के लिए, लेकिन ये जंतर मंतर के बेहद ही करीब ये सड़क जनपद की सड़क है जहां पे प्रदर्शनकारी पहुंचे, दिल्ली पुलिस ने उन्हें डिटेन करके अब यहां से हटा दिया है। तो कुल मिला के छात्र संगठनों द्वारा कोशिश हो रही है फिर से एक बार CC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलने की और जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन करने के लिए पहुंचने की। वीडियो सहयोगी मनीष बिधूड़ी के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।
1: और आइए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी अनमोल बाली का, जो कि उसी जगह पर मौजूद है जहां ये पूरी कोशिश की गई विरोध प्रदर्शन की। अनमोल, क्या पता चल रहा है, आपको क्या दिख रहा है अपने आसपास?
3: अंजलि, समय में कनॉट प्लेस के ब्लॉक ए की तस्वीरें आपको अपने पीछे दिखाना चाहूंगा, जहां NSUI का फ्लैश प्रोटेस्ट था। आप देख सकते हैं कैसे भारी संख्या में तकरीबन 100 के आसपास जो NSUI के जो कार्यकर्ता हैं यहां पर हाथ में झंडे लेकर इकट्ठे हुए हैं। वो अपना जो प्रोटेस्ट मार्च है CP से निकालना चाहते थे, पर वही मैं दिखाना चाहूंगा कि पुलिस एक्शन और जो पैरामिलिट्री का जो एक्शन है यहां पर शुरू हो गया है। जो NSUI के कार्यकर्ता है उनको डिटेन करना दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री के जवानों ने यहां पर शुरू कर दिया, क्योंकि प्रोटेस्ट को देखते हुए पिछले एक हफ्ते से देखा जा रहा है कि CP के अंदर भारी तैनाती जो है की गई है पुलिसकर्मियों। क्या मांगे हैं आप?
4: देखिए, हमारी मांग है कि जो वोट चोर ज्ञानेश कुमार और EVM से बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे, क्योंकि उन्हें पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं। उन्हें वोट चोरी करके देश के प्रधानमंत्री बने, और ये वोट चोर सहयोग करने वाला ज्ञानेश कुमार, इसका जब तक इस्तीफा नहीं होता जब तक हमारी लड़ाई।
3: तो अंजलि, एसआईआर के मुद्दे को लेकर जो एनएसवाई का फ्लैश प्रोटेस्ट है, तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि सीपी के इनर सर्कल ए ब्लॉक के पास की आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहां कैसे आप देख सकते हैं हाथ में झंडे लेके जो कांग्रेस पार्टी है अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है, जो एनएसवाई के लोग हैं अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है। तस्वीरों में मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो एनएसवाई के कार्यकर्ता अंजलि यहां पर बैठ चुके हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि यहां पर वो जो अपना सिट इन प्रोटेस्ट है वो करें, पर तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि जो महिला प्रदर्शनकारी हैं उनको भी यहां पर डिटेन करना शुरू कर दिया। देखिए तस्वीरों में जो एनएसवाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको भी यहां से डिटेन कर लिया। आप देख सकते हैं पीछे तस्वीरों में कैसे यहां पर दिल्ली पुलिस पहले ही बसेस लाकर यहां पर पहले ही रखी गई थी ताकि जो प्रदर्शनकारी है उनको डिटेन किया जा सके। भारी संख्या में आपको दिल्ली पुलिस की जो महिला कर्मचारी है, महिला कांस्टेबल्स हैं यहां पर नजर आएंगे, साथ ही पैरामिलिट्री के जो जवान है, सीआरपी के जवान आपको अंजलि यहां पर नजर आएंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दिल्ली का कनॉट प्लेस अब नया जंतर मंतर बनता दिख रहा है, जहां लेफ्ट के लोग तो यहां पर धरना प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं, वही जो अब कांग्रेस पार्टी का छात्र संगठन है एनएसवाई उनके लोग भी यहां पर अपना जो फ्लैश प्रोटेस्ट है बुला रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा पीछे तस्वीरों में जो एनएसवाई के कार्यकर्ता थे उनको डिटेन करके यहां पर बस में भर लिया गया, और भी जो कार्यकर्ता है, मैं आपको अंजलि दूसरी तस्वीर दिखाना चाहूंगा, जो और भी कार्यकर्ता है जो अंदर थे इनर सर्कल कनॉट प्लेस की मार्केट की तरफ थे उनको भी अब जो बाहर ला लाकर डिटेन कर रही है दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो सिट इन प्रोटेस्ट है एनएसवाई के कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस की छात्र का ही है, उनका यहां पर शुरू हो चुका है। जो दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री है वो कोशिश कर रही है इनको उठाने की, हालांकि इनको अभी मौका दिया गया है, पर अभी भी अगर नहीं उठेंगे तो देखा जाएगा कि जल्द ही इन पर जो है दिल्ली पुलिस का जो एक्शन है वो शुरू हो जाएगा। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देख सकते हैं कैसे कनॉट प्लेस जो दिल्ली का दिल है, दिल्ली का सबसे बड़ा बाजार है अंजलि, दिल्ली के सेंट्रल दिल्ली का सबसे बड़ा बाजार है, प्रदर्शनकारियों के लिए नया अड्डा बन चुका है, और पिछले 3 से 4 दिन से देखा जा रहा है कि जो प्रदर्शनकारी है, जो लेफ्ट की आईसा है, एआईएसएफ है, एसएफआई से जुड़े हुए जो लोग हैं यहां पर अपना प्रदर्शन कर रहे थे, और यहीं किससे कल देखा गया कि बाराखंबा से कनॉट प्लेस से ही राहुल गांधी की जो सुप्रीम कोर्ट की यात्रा है वो शुरू होती है, उसी बीच कनॉट प्लेस की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो कुछ प्रदर्शनकारी थे उनको यहां से डिटेन कर लिया गया, और भारी संख्या में आप देख सकते हैं दोनों तरफ पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंजलि आपको जवान नजर आएंगे, आप देख सकते हैं इस तरफ महिला आपको जवान नजर आएंगे, सबने बॉडी कैम जो है ज्यादातर महिला जवानों ने लगा रखे हैं ताकि कल उन पर अगर कोई आरोपबाजी होती है तो वो अपना जो है सबूत, अपना जो आर्ग्यूमेंट है वो रख सके। वही मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि फिर जो एनएसओआई के कार्यकर्ता हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर भारी संख्या में कैसे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको डिटेन करने की कोशिश करी। पर मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कुछ कार्यकर्ता जो हैं बसेस के आगे चढ़ गए हैं अंजलि, आप देख सकती हैं तस्वीरों में जो एनएसओआई के कार्यकर्ता हैं यहां बसेस के आगे चढ़ गए, कोशिश कर रहे हैं जिन बसेस में जो इनके लोगों को डिटेन कर रखा गया है, डिटेन कर ले जाया जा रहा है, वो बस आगे ना बढ़ पाए तो कहीं ना कहीं पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए अंजलि बड़ी चुनौती दिल्ली का कनॉट प्लेस बनता दिख रहा है, जहां लेफ्ट के लोग तो धरना प्रदर्शन कर रहे थे पर अब कांग्रेस की छात्र का ही एनएसयूआई भी यहां पर अपना धरना प्रदर्शन कर रही है अंजलि।
1: जी बिल्कुल अनमोल, जिस तरह की तस्वीरें इस वक्त दिखाई दे रही हैं हमें कनॉट प्लेस से, उससे जाहिर हो रहा है कि विपक्ष किसी भी तरीके से पीछे
5: ट्रैक रिकॉर्ड को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार ने इलेक्शन कमीशन को स्वावलंबी तरीके से देशहित और जनहित में अपने काम करने के लिए पूरी तरीके से ऑटोनॉमी दी है, और कोई भी इलेक्शन कमिश्नर जो अपॉइंट हुआ हो उसको कोई राजनीतिक लाभ दिए कभी भी देने का प्रयास नहीं किया, उनको अब ईमानदारी से काम करने दिया और जो कानूनी प्रावधान है उसके हिसाब से उनको कोई राजनीतिक पद देने का कभी गुनाह नहीं किया। लेकिन राहुल गांधी जी की अगर ट्रैक रिकॉर्ड को देखें, जिसको वो बड़ा कन्वीनियंटली नजरअंदाज कर देते हैं, तो उन्होंने एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पार्टी टिकट पे कैंडिडेट बनाया, एक को यूनियन कैबिनेट में लिया, 2 इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को गवर्नर बनाया, और एक बार तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के कहने पे कि उनके नीचे काम करने वाला इलेक्शन कमिश्नर पूरी तरीके से कांग्रेस की एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, उसको निकालने से इनकार कर दिया। मेरे इतना पक्षपात हमने शायद ही कभी कोई सरकार में देखा हो जितना कांग्रेस ने अपने रवैये में दिखाया। आप शुरू में देखें तो टीएन सेशन जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, कांग्रेस बड़ा उनका गुणगान गाते थे कि ईमानदारी की उनकी फियरलेसनेस पे, और उसके बाद क्या किया, 1999 में श्री एल के अडवाणी जी के सामने उनको खड़ा रहने के लिए मौका दिया कांग्रेस के टिकट पे। अब अगर वो इतनी ईमानदारी व्यवस्था चलाते थे इलेक्शन कमिश्नर के रूप में, तो फिर एक पार्टी के कैंडिडेट वो भी इतने इंपॉर्टेंट इलेक्शन में क्या अडवाणी जी के खिलाफ खड़े करना, क्या ये एक प्रकार से उनको रिवॉर्ड करने का काम नहीं है? श्री एम एस गिल चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे 1996 से 2001 तक, 5 वर्ष के लिए, और मजेदार बात उनको पद्म विभूषण से नवाजा गया जब वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उस वक्त, यानी 2000 में, सन 2000 में सिटिंग सीईसी को पद्म विभूषण देना, क्या ये लालच नहीं है? क्या ये एक प्रकार से उनको रिश्वत देने का काम नहीं हुआ? और आप एक आप देखें तो ये सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है भारत का, ये उनकी चापलूसी कारनामों का एक प्रकार से रिवॉर्ड देने का काम कांग्रेस पार्टी

रिटायरमेंट के बाद वो कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, राज्यसभा में आ जाते हैं 2004 में, और फिर 2008 में उनको केंद्रीय कैबिनेट में यूनियन मिनिस्टर बनाया जाता है। अब इससे ज्यादा आपको क्या प्रूफ चाहिए कि कांग्रेस ने इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस को कितने निचले स्तर पर गिरा दिया और कैसे मिसयूज किया इलेक्शन कमिश्नर्स को, और राजनीतिक रिवॉर्ड देके उनके जो सेवा थी कांग्रेस को उसको रिवॉर्ड किया। एक प्रकार से एमएस गिल जी का तो कभी सरकार में है, कभी इलेक्शन कमिश्नर बनते हैं, कभी पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं, कभी यूनियन कैबिनेट में जाते हैं। ये कोई सौदेबाजी का भी प्रतीक लगता है। आर के त्रिवेदी जी को देखें, इनका चीफ इलेक्शन कमिश्नर का टेन्योर 31 दिसंबर 1985 में खत्म हुआ और दो महीने के अंदर 26 फरवरी 1986 में राजीव गांधी जी की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने इनको गुजरात का गवर्नर बना दिया। चौथा किस्सा देखें, 2005 में आप अखबार निकाल लीजिए, टीवी के क्लिपिंग्स देखिए, चीख चीख के उस समय की सरकार कह रही थी सोनिया गांधी जी ने नवीन चावला को इलेक्शन कमिश्नर बनाया। सोनिया गांधी जी कैसे बना सकती है, वो तो कोई सरकार में थी नहीं। उस समय तो व्यवस्था ये थी कि प्रधानमंत्री और सरकार नियुक्त करती थी इलेक्शन कमिश्नर को, तो सोनिया गांधी जी कब से तय करने लगी कि किसको क्या पद देना चाहिए, कौन चला रहा था सरकार तब। पांचवा किस्सा, 2009 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री एन गोपाल स्वामी जी ने नवीन चावला जी को निकाला जाए ऐसा अनुरोध किया सरकार की। उन्होंने कहा कि इनका कंडक्ट बड़ा एकतरफा है, पार्टीसन कंडक्ट है, फेवरेटिज्म का आरोप लगाया कि पक्षपात करते हैं कांग्रेस के फेवर में, पर कांग्रेस ने उस पर काम नहीं किया। उस समय की वर्तमान कांग्रेस की मनमोहन सिंह जी की सरकार, जो वैसे सोनिया गांधी जी चलाती थी, राहुल गांधी जी जिसकी कोई इज्जत नहीं करते थे, हमने वो तो सब किससे देखे ही है। गोपाल स्वामी जी के रिक्वेस्ट के बाद, उनकी रिकमेंडेशन के बाद नवीन चावला को निकालना तो छोड़ो, क्योंकि वो इतने लॉयल थे कांग्रेस पार्टी के प्रति, उनको जाके चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया। ये उनकी लॉयल्टी जो थी सोनिया गांधी जी के प्रति, कांग्रेस के प्रति, जो पार्शियलिटी से वो काम करते थे खुलेआम, उसका रिवॉर्ड उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया। और देखिए, कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर तक सीमित नहीं है। टीकाराम मीना केरल के चीफ इलेक्शन ऑफिसर थे, एक वर्ष के बाद उनको कांग्रेस के राजस्थान के मैनिफेस्टो टीम में ले लिया, कांग्रेस पार्टी का सदस्य बना दिया। दूसरा किस्सा तो और भी खराब है। हाल में मई 2026 का, रतन यू केलकर केरला के चीफ इलेक्शन ऑफिसर थे, हाल की बात है, अभी जो केरल में चुनाव हुआ, चुनाव के तुरंत बाद एक महीने के भीतर वर्तमान में चीफ मिनिस्टर, वर्तमान मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने उनको अपना सेक्रेटरी घोषित कर दिया मई 2026 में, चुनाव के तुरंत बाद। अब क्या ये कुछ राजनीतिक पुलाव नहीं सेका जा रहा है, क्या आप हमें हेल्प करो इलेक्शन में और हम आपको तुरंत पद की नियुक्ति कर देंगे। तो इस प्रकार से चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर, साथ ही साथ इलेक्शन ऑफिसर्स को भी कांग्रेस ने समय समय पर दुरुपयोग किया, पक्षपात करवाया, और अंत में जाके उनको या तो कोई पद दिया, गवर्नर बनाया, यूनियन मिनिस्टर बनाया, पार्टी के अंदर ले लिया, इलेक्शन लड़वाया, पूरी तरीके से ध्वस्त किया इलेक्शन कमीशन के बिना कोई

0: पक्ष को फेवर किए, इम्पार्शियल वर्किंग को उन्होंने पूरी तरीके से ध्वस्त किया उनके कार्यकाल में। मित्रों, पहले तो इलेक्शन कमीशन कैसे अपॉइंट होते थे? कमिश्नर सरकार अपॉइंट करती थी, कोई उसमें सलाह मशवरा नहीं होता था, किसी प्रकार की किसी से बातचीत नहीं होती थी। जिसने सरकार को बना दिया वो इलेक्शन कमिश्नर बन गया, जिसे चाहा उसे चीफ बना दिया। ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिसने 2023 में कानूनी प्रावधान किया, नया कानून लाए और उस कानून के तहत जो नेता प्रतिपक्ष है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, उनको भी सिलेक्शन कमेटी का मेंबर बनाया और प्रधानमंत्री जी के साथ अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन साथ बैठ के चुनते हैं कि कौन इलेक्शन कमिश्नर बने, कौन चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने। मैं 10 प्रश्न आज राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, और मुझे लगता है राहुल गांधी जी के पास इन 10 प्रश्नों में से एक का भी जवाब नहीं होगा। जिस प्रकार का हमने व्यवहार उनका देखा, जिस प्रकार से वो शूट और स्कूट पॉलिसी कि बेबुनियाद झूठे आरोप लगा के भाग जाने का काम करते हैं, उसको मद्देनजर रखते तो उनके पास एक का भी जवाब नहीं होगा। मैं चैलेंज करता हूं राहुल गांधी जी को कि आके इन 10 सवालों का जवाब दें। पहला, वो रोज वोट चोरी की बात करते हैं, रोज इलेक्शन कमीशन को बुरा भला बोलते हैं, बुरे बड़े शब्दों में उनका अपमान करते हैं, पर बार बार मांगने के बाद भी एक बार भी एक भी एफिडेविट उन्होंने फाइल नहीं किया इलेक्शन कमीशन में। कुछ प्रमाण दे, कुछ एविडेंस दे, जो वो क्लेम कर रहे हैं उसको ओथ पे क्लेम करके बोले तो सही, एक जिम्मेदारी तो दिखाए अपने झूठे आरोप लगाने के पहले। ये कावड़ की तरह जो उनका बिहेवियर है, एक डरपोक व्यक्ति ही ऐसे शूट करके भाग जाता है बजाय के जिम्मेदारी उठाने के अपने आरोपों की। अगर इतना सीरियस, दूसरा, अगर इतनी सीरियस प्रॉब्लम थी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर से, तो जब बिहार में हो रहा था तब चुप्पी क्यों मार साजी, तब क्यों नहीं आवाज उठाई? जब तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में हो रहा था तब क्यों नहीं एक भी बार क्लेम फाइल किया इंक्लूजन के लिए या एक्सक्लूजन के लिए एसआईआर के समय? कांग्रेस पार्टी ने, कहां थी कांग्रेस पार्टी उस समय? तीसरा, कांग्रेस के खुद के मंत्री, पूर्व मंत्री, कांग्रेस के खुद के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के खुद के वर्तमान में सांसद या एमएलए जैसे अभिषेक मनु संघवी जी आंध्र प्रदेश में, अशोक गहलोत, सचिन पायलट और सीपी जोशी जी राजस्थान में, रमेश चेन्नीथाला जी केरल में, इन सब ने पब्लिकली ये कहा है, मीडिया के समक्ष ये कहा है कि लाखों नाम डुप्लीकेट है, ढेर सारे नाम निकालने की आवश्यकता है, इतने सारे लोग मर गए हैं, देहांत हो चुका है, पर उनके नाम अभी भी इलेक्टोरल लिस्ट में, और इससे संदेह आता है कि कोई मिसयूज कर सकता है, कोई गलत नाम के सामने जाके वोट डाल सकता है। इन सबको हटाना चाहिए। जब एसआईआर ने ये काम किया तब कांग्रेस उसका विरोध कर रही है, या तो कांग्रेस इन सब नेताओं को पार्टी से बहाल कर दे जो एसआईआर मांग रहे थे, जो मांग रहे थे इलेक्ट्रल रोल को शुद्धिकरण किया जाए। आज इलेक्शन कमिश्नर जो एसआईआर के माध्यम से वर्षों से लंबित था, वर्षों से जो आवश्यकता थी कि जो लोग शिफ्ट हो गए हैं, जिनके नाम डुप्लीकेट हैं, जिनका देहांत हो गया है, उन सबको निकाल के एक शुद्ध लिस्ट बने, और हमने उसका लाभ देखा ही है। अब 90% इलेक्शन वोटिंग होती है, स्पष्ट दिखाते हैं कि ये लोग थे ही नहीं। चौथा सवाल, कांग्रेस के कई लीडर्स उन्हीं के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ अपनी बात रख रहे हैं। शशि थरूर जी ने तो स्वयं कहा कि एसआईआर की वजह से कांग्रेस केरल में जीती, क्योंकि ये सब डुप्लीकेट नाम, मरे हुए लोगों के नाम, जो लोग वहां से शिफ्ट हो गए वो नाम निकल गए, तो कोई मैल प्रैक्टिस होने की संभावना नहीं थी केरल में। ये शशि थरूर जी का दावा है। रमेश चेन्नीथाला जी ने खुद कहा कि एसआईआर की वजह से ही आज कांग्रेस जीत पाई है केरल में, और केरल के मुख्यमंत्री स्वयं श्री वीडी सतीशन जी ने एसआईआर की तारीफ की है। आधीर रंजन चौधरी जी ने इलेक्शन कमीशन की तारीफ करी कि पश्चिम बंगाल के चुनाव उन्होंने अच्छी तरीके से लड़ाए, ईमानदार व्यवस्था से लड़े गए, और जो गलत काम ममता बनर्जी जी करती थी उसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने भी किया और इलेक्शन कमीशन की तारीफ की। अब उनकी खुद की पार्टी बेबुनियाद और झूठे वोट चोरी के दावे ला रही है, और जो ममता बनर्जी को अपोज करते थे आज ममता बनर्जी के साथ कंधे से कंधा मिला के अब इलेक्शन कमीशन के विरोध करने निकल उठे हैं। इनके दोहरे मापदंड बार बार देखने को मिलते हैं। पांचवा, अगर वास्तव में ये मानते हैं कि इलेक्शन रिग्ड है या इलेक्शन कमीशन ठीक से काम नहीं कर रही है या एसआईआर ठीक नहीं है, तो इनकी चारों कांग्रेस सरकार कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल और केरल, और साथ में जो झारखंड और तमिलनाडु की सरकार में शामिल है, इसमें सत्ता का क्या उनको लोभ है? अगर वो सही माने में मानते हैं इलेक्शन कमीशन ने ईमानदार व्यवस्था नहीं रखी है, तो क्यों नहीं रिजाइन करते हैं इनके छह के छह मुख्यमंत्री? तुरंत रिजाइन करना चाहिए। और ये कई लोग ये बात रख रहे हैं कि कांग्रेस तय करे, ऐसा नहीं हो सकता है जहां जीते वहां तो सही काम हुआ, वहां इलेक्शन कमीशन ने पक्षपात नहीं किया, और जहां हारे वहां एसआईआर को गाली देना। छठा, अगर ये सही माने में मानते हैं कि एसआईआर रिग्ड है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि जब वो जीत रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन का काम ठीक है, इलेक्शंस आर परफेक्ट, और जब हार रहे हैं तो इलेक्शंस आर रिग्ड। इसको आजकल एक लोग, युवा हमारे साथी बोलते हैं, डेलुलू इज द सोलुलू। ये माइंडसेट, ये जो मानसिकता इनकी, इसको डेल्यूजन में रहने के वाले जो लोग हैं उनको ये डेल्यूजन में ही सोल्यूशन दिखता है। डेलुलू इज द सोलुलू, ये ऐसी मानसिकता है कांग्रेस की, और इसीलिए लोग इनको पसंद नहीं कर रहे, इसीलिए बार बार ये चुनाव हारते हैं, और झूठ बोल बोल के कभी जनता का आशीर्वाद नहीं प्राप्त करेंगे, झूठ झूठ बोल के ये कभी जनता का विश्वास नहीं प्राप्त कर सकेंगे। और इसीलिए कई लोग मानते हैं कि राहुल गांधी स्वयं सबसे बड़े रेड फ्लैग है, ही इज द बिगेस्ट रेड फ्लैग, जिसके कारण कांग्रेस बार बार हार रही है। कई युवा साथी बैड ओमेन को कहते हैं बिगेस्ट रेड फ्लैग, और वो राहुल गांधी कांग्रेस के लिए सबसे बड़े रेड फ्लैग है जिसके कारण कांग्रेस बार बार हार रही है। सातवां, कल का जो भद्दा व्यवहार था, और स्वयं राहुल गांधी और उनके साथियों ने जिस प्रकार से एक पत्रकार बहन के साथ दुर्व्यवहार किया, बहन 3 महीने प्रेग्नेंट थी, गर्भ से थी, बार बार कह रही थी कि संभल के मैं गर्भवती हूं, लेकिन जिस तरीके से उसका धक्कम धक्की की, जमीन पे फेंका, फिर उन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, सिर्फ गुनाह क्या था कि उनका प्रोटेस्ट कवर कर रही थी, 2 सवाल पूछ रही थी। ऐसा व्यवहार मैं नहीं मानता हूं देश के 140 करोड़ जनता कभी माफ करेगी, मैं नहीं मानता हूं एक भी पत्रकार भाई बहन इस व्यवहार को कभी माफ कर सकती है। आठवां सवाल, कभी ममता बनर्जी को गाली गलौज करते हैं, इलेक्शन में उनके विरोध लड़ते हैं, कहते हैं कि ममता बनर्जी ने द्वार खोल दिया बीजेपी को पश्चिम बंगाल जीतने का, उनके गलत कारनामों से, उनके मैल प्रैक्टिसेस से। और चुनाव के बाद जब दोनों हार जाते हैं तो क्या है वो चोर चोर मुसेरे भाई, तो अब दोनों शेमलेसली बेशर्मी से यू टर्न करके अब SIR को और इलेक्शन कमीशन को ब्लेम करने लग जाते हैं। अब साथ में एक कमरे में बैठ के एक ही टेबल पे ढूंढ रहे हैं दोनों कि हम हारने का कोई कारण ढूंढे तो SIR को ब्लेम कर दो, इलेक्शन कमीशन को दे दो। थोड़ी तो रीढ़ की हड्डी दिखाएं राहुल गांधी और ममता बनर्जी, कभी तो एक स्टोरी पे स्टिक करें बजाय के अपना नैरेटिव ही बार बार बदलने के। नाइन्थ सवाल, जब सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के SIR का मई 2026 में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी अपहोल्ड किया है, कहा ये संवैधानिक तौर पे ये सही हुआ है, जब फॉर्म 6 के ऊपर कोर्ट में कार्रवाई चल रही है, तो अगर ये वास्तव में संविधान का सम्मान करते हैं तो फिर सड़कों पे क्यों उतरे? जुडिशियल प्रोसेस तो चल ही रहा है, कोर्ट देख रहा है कि फॉर्म 6 ठीक है, कुछ सुधार की आवश्यकता है तो कोर्ट बताएगी, और SIR तो संवैधानिक तौर से ठीक है बोल ही चुका है कोर्ट, तो ये सड़कों पे उतर के एनार्की क्यों फैलाने की कोशिश कर रहे, लोगों को क्यों भड़काने की कोशिश कर रहे। वैसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक वाक्य इस्तेमाल किया था और मैं कोट करता हूं, व्हेन कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स आर अवेलेबल अबैंडनिंग देम इज द ग्रामर ऑफ एनार्की अनकोट, जब संवैधानिक रास्ते संवैधानिक मार्ग आपके पास उपलब्ध है तब आप उसको जब नहीं फॉलो करते हो, उसकी जब इज्जत नहीं करते हो, आप दर्शाते हो कि आप एनार्किस्ट हो और एनार्की के रास्ते में विश्वास करते हो। और मुझे लगता है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी वास्तव में सबसे बड़ा संविधान का अपमान करती है और एनार्की सड़कों पे दिखाती है, ये देश की जनता देख रही है। और फाइनल दसवां सवाल, अगर सही माने में उनके पास कोई प्रूफ है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, अगर सही माने में कोई वोट चोरी का प्रमाण है उनके पास, तो कोर्ट को क्यों नहीं दिया, इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं दिया? अरे यहां इनकी तो इतनी बेवकूफी है कि एक पिटीशन भी ठीक से फाइल नहीं कर सकते, इतने बड़े बड़े कानूनी वकीलों को इन्होंने पार्लियामेंट में राज्यसभा की सीटें दे रखी हैं, फिर भी सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन फाइल करते हैं उसमें 14 कमजोरियां हैं, 14 डिफेक्ट्स कोर्ट ने सामने लाया है, यहां तक कि कोर्ट फी भी ठीक से नहीं भर सकते हैं, उसमें भी पैसे कम भरे हैं। मैं समझता हूं कांग्रेस अपनी नाकामियों के लिए खुद जिम्मेदार है, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का भविष्य अंधेरे में है, जनता भी देख चुकी है, कांग्रेस के नेता भी देख चुके हैं। जो व्यक्ति एनार्की में बिलीव करे, झूठ और फरेब पे अपनी पूरी राजनीति करे, और जो पार्टी के नेता एक कोर्ट का एफिडेविट कोर्ट का पिटीशन ठीक से नहीं फाइल कर पाते हैं, एक आईडी का जेरोक्स ठीक से भर नहीं सकते कोर्ट में, मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी का आईडी भी पढ़ा नहीं जा रहा है, 220 रुपए भी ठीक से कोर्ट फी नहीं पे की, ऑथराइजेशन भी मिसिंग है एफिडेविट में, मुझे लगता है ऐसी पार्टी और ऐसा नेता क्या देश को भविष्य देगा, क्या देश के 140 करोड़ लोगों के आशा अपेक्षाओं को पूरा करेगा, क्या नेतृत्व विश्व के सामने देश का रखेगा? ये उन्होंने पूरी तरीके से अपने आप को बेनकाब करके चंद दिनों के अपने व्यवहार से पूरी तरीके से साबित कर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद आदरणीय पीयूष गोयल जी। मेरा भारत सरकार में मंत्री आदरणीय राजीव रंजन सिंह जी से आग्रह कि अपना संबोधन करें।
2: एसआईआर पर जो बवाल मचा हुआ है और जो कल प्रोटेस्ट हुआ उस पर बीजेपी की डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस और उन्होंने कटाक्ष भी किया, जमकर निशाना भी साधा है और जिन राज्यों में कांग्रेस जीती है उस पर प्रश्न चिन्ह भी खड़े जहां एसआईआर हुई है, तब आपने सवाल नहीं पूछे। बहुत इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बड़ी बातें थी। अब आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करेंगे 100 शहर 100 खबर की। विपक्ष के प्रदर्शन पर बीजेपी का वार, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी और विपक्ष पर साधा निशाना। राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि बचकानी हरकत कर रहे हैं, चुनाव आयोग ने हमेशा ईमानदारी से किया काम। विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि कांग्रेस अपने दावे प्रमाण के साथ दें। नॉट प्लेस पर एनएसयूआई का प्रोटेस्ट, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफे की मांग। अचानक कैनॉट प्लेस पर पहुंचे प्रदर्शनकारी और पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। पाबंदी के बावजूद कांग्रेस जनता पार्टी के नेता आशुतोष नाकम, सौरभ दास, अजिंक्य शिंदे जंतर मंतर जाने की कोशिश करते दिखे, पुलिस ने तीनों को हिरासत में लिया। दोनों सीजेपी समर्थकों के साथ जंतर मंतर पर पहुंचे और नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने जंतर मंतर के पास बैरिकेडिंग कर रखी थी, सभी गेट्स बंद, लेकिन प्रदर्शनकारी गेट के ऊपर से चढ़कर पहुंच गए। जंतर मंतर पर अब प्रदर्शन नहीं हो सकता, केंद्र सरकार ने सोमवार को इसे निर्धारित प्रदर्शन स्थल की लिस्ट से हटा दिया है। अभिजीत दीपके का बयान कि उन्हें लगता है कि जंतर मंतर पर अब विरोध प्रदर्शन स्थल वो नहीं रहेगा तो ये बंद हो जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। अभिजीत दीपके ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि लोगों के मन में आंदोलन करने की जो भावना है पीएम मोदी को, उससे दिक्कत है और ये एक तानाशाह की निशानी है। 12 अक्टूबर के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक बाराखंबा पुलिस स्टेशन, तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में प्रदर्शन के लिए तैनात कई हजार अर्धसैनिक बलों की तैनाती के समय सीमा जो है 4 हफ्ते और बढ़ाई गई है और मौजूदा हालात को देखते हुए निर्णय लिया गया। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना, सीएसी पर हमला बोलते हुए कहा कि जनविश्वास का कत्ल और लोकतंत्र की हत्या की। प्रदर्शन के दौरान महिला पत्रकारों से मारपीट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई सख्ती, सीजेआई ने दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को अगली सुनवाई पर तलब किया। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने वरिष्ठ अधिकारियों को कोर्ट में मौजूद रहने और आरोपों का स्पष्टीकरण देने पर आदेश दिया, गुरुवार को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली में प्रोटेस्ट के दौरान पाकिस्तानी टूल किट एक्टिव और पाकिस्तानी आईएसआई से एक्टिव किए गए सोशल मीडिया पर कई अकाउंट, खुफिया एजेंसी की सभी पर नजर। फेक न्यूज, फेक वीडियो से दिल्ली में अराजकता फैलाने की साजिश, पाकिस्तानी अकाउंट से लगातार सोशल मीडिया पर ये फेक न्यूज फैलाई जा रही है। एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहे राहुल गांधी के मानहानि के मामले में सुनवाई पूरी, 26 अक्टूबर को आएगा फैसला। खुदरा महंगाई दर को लेकर कांग्रेस का सरकार पर बड़ा हमला, जयराम रमेश का ट्वीट, वोट चोरी सच्चाई है, कमर तोड़ महंगाई है। इंडिया गठबंधन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हुई, ऐसी रजिस्ट्री ने बताई 14 तकनीकी खामियां। याचिका में खड़गे की आईडी कार्ड की कॉपी धुंधली थी, सुप्रीम कोर्ट ने आईडी की स्पष्ट कॉपी मांगी, 220 रुपए के अतिरिक्त कोर्ट फीस भी जमा करने को कहा। गठबंधन इंडिया की याचिका में 9 नेताओं के वकालतनामे पर हस्ताक्षर ही नहीं, अखिलेश तेजस्वी समेत कई नेताओं के दस्तावेज अधूरे थे। याचिका में दस्तावेजों की स्पष्ट कॉपी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के 24 जून के फैसले के डिजिटल कॉपी और पेन ड्राइव में एसआईए से जुड़े दस्तावेज मांगे। विपक्ष के सीरियल विरोध प्रदर्शन के बीच में सरकार का बड़ा फैसला, जंतर मंतर पर आंदोलनकारियों की नो एंट्री। दिल्ली में अब सिर्फ रामलीला मैदान, बुराड़ी और सीबीडी ग्राउंड को तय किया गया धरने का स्थल और सुरक्षा कुछ हफ्तों के लिए बढ़ाई गई, 20,000 सीएपीएफ जवानों की तैनाती रहेगी। सीजेआई विवाद में बैकवुड पर केरल कांग्रेस चौतरफा घिरने के बाद हटाया इस्तीफे वाली मांग वाला पोस्ट। सीजेआई पर विवादित पोस्ट में लिखा था अगर कानून व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी नहीं है तो अभी इस्तीफा दे दीजिए। सीजेआई के इस्तीफे की मांगों पर एससीबीए का बयान, कहा कि ऐसे बयान न्यायपालिका को नीचा दिखाते हैं। केपीसीसी अध्यक्ष सनी जोसेफ का बयान बिना पोस्ट जो है बिना सहमति के किया गया, न्यायपालिका की निष्पक्षता पर कोई संदेह नहीं। जेएनयू में 11 छात्राओं से यौन शोषण के आरोपों में घिरे कांग्रेस सांसद अंगूमचा बिमोल के खिलाफ बीजेपी ने खुला मोर्चा, जोरदार नारेबाजी करते हुए राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे। अंगूमचा बिमोल अकोविजोम ने जेएनयू प्रशासन की कार्रवाई की आलोचना की, बोले विश्वविद्यालय का प्रशासन तरीका खाप पंचायत जैसे नियमों और रेगुलेशन की अनदेखी की गई। कांग्रेस सांसद ने वाइस चांसलर पर उठाए सवाल, कहा कि ये मुझे फंसाने की साजिश, ओबीसी मीडिया के सामने झूठ बोल रहे हैं। एसआईआर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर पटना में जोरदार विरोध प्रदर्शन, जेपी गोलंबर पर छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ी। बिहार प्रदर्शन में फिर से अनोखी घटना घटी, वज्र वाहन की चाबी लेकर प्रदर्शनकारी छात्र भाग गए। सीएम योगी ने बरेली में जनसभा को किया संबोधित, कहा कि 2017 से पहले कोई भी पर्व त्योहार आता था तो उपद्रव शुरू हो जाता था, अब लोग उपद्रव भूल चुके हैं। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा 2017 से पहले पुलिस मजबूर थी किसे पकड़े, क्योंकि सत्ता में थे वही लूट खसोट करते थे। नारी सुरक्षा को लेकर सीएम योगी का बयान, कहा कि अब बेटी इज्जत पर हाथ डालने वालों को अगले चौराहे पर हम लोग का टिकट उनका काट दिया जाता है। नई दिल्ली में बिम्स्टेक गृहमंत्रियों की बैठक में गृहमंत्री अमित शाह हुए शामिल, आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराई। अमित शाह ने आतंकवादियों को पनाह देने वाले, भर्ती करने, पड़ोसी देशों के खिलाफ गतिविधियां चलाने की कोई गुंजाइश न छोड़ने की अपील की। पीएम मोदी 2026 ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में शामिल हुए, सभा को संबोधित करते हुए कहा यह फोरम दुनिया के बेहतरीन दिमागों को साथ लाता है, तकनीक का फायदा सबको मिलना चाहिए। पीएम मोदी ने इस दौरान ब्लूमबर्ग का आभार जताया, भारत में आयोजन करने के लिए कहा मैं बधाई देता हूं, आपने सही समय पर सही जगह चुनी। सभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि पावर का असली मूल्य उसके लक्ष्य में है और इसी सोच को आज के दौर में समझना जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा कि किसवीं सदी में डेटा, ज्ञान और नवाचार ताकत के लिए नए स्रोत, इसका इस्तेमाल कैसे हो ये बड़ा सवाल है। 3 दिन का यह कार्यक्रम 15 अक्टूबर को खत्म होगा और इस साल फोरम की थीम बदलती दुनिया में ताकत के नए स्रोत तय करना है। पंजाब में एंटी ड्रग एक्टिविस्ट परमिंदर झोटा की गोली मारकर हत्या, घटना का लाइव वीडियो वायरल। बताया जा रहा है कि वीडियो में छोटा और उसके साथी जो है दवा दुकान के मालिक के साथ नशीली दवाइयों को लेकर बहस करते नजर आ रहे थे। घटना के बाद पुलिस मामले की छानबीन कर रही है, पुलिस यह पता लगाने में जुटे कि विवाद किस बात पर शुरू हुआ, गोली चलाने के पीछे असल वजह क्या थी। डॉक्टर्स के मुताबिक ये गोली छोटा के लीवर को भेदते हुए निकल गई जिसके कारण उनकी मौत हो गई, घायल हुए अन्य 4 लोगों को मामूली गोली लगी। घटना की खबर फैलते ही मानसा में सिविल हॉस्पिटल में बड़ी संख्या में लोग जुटने लगे, घटना के बाद इलाके में तनाव। यूपी में आगामी चुनाव से पहले नाराज नेताओं को मनाने के मिशन में जुटे सीएम योगी, बागी और नाराज नेताओं और उनके परिवार वालों से मिलकर डैमेज कंट्रोल करने में जुटे। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने पिछले वर्ग को साधने के लिए दोहरी रणनीति तैयार की, 4,03,000 ओबीसी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई। यूपी में कांग्रेस मुख्यालय में हुई मारपीट पर एक्शन में आलाकमान और विवाद और हंगामे की छानबीन के लिए राज्य प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने 5 सदस्यों की एक जांच कमेटी बनाई। इसकी कमान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी को सौंपी गई जो 7 दिनों के भीतर आला कमान को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। अजय राय और उनके समर्थकों ने ममता चौधरी पर अपमान करने का आरोप लगाया तो ममता चौधरी ने दलित विरोधी गाली देने और मारपीट करने का आरोप लगाया। बीजेपी सांसद अमरपाल मौर्य ने अखिलेश यादव को खुला पत्र लिखा, परिवारवाद पर सवाल दागे। अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए लिखा कि पद अपने परिवार को दावा समझ कर सामाजिक न्याय के नाम पर परिवारवाद नहीं चलेगा। समाजवादी पार्टी ने यूपी के 100 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूचियों की जांच करके हजारों डुप्लीकेट फर्जी वोटर्स पकड़ने का दावा किया। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर फर्जी नामों को हटाने और विधानसभा चुनाव के पहले भौतिक सत्यापन कराने की मांग की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के चवन्नी वाले बयान पर राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी का तंज, का मैं ब्रज की रज के बराबर भी नहीं। लखनऊ के चर्चित कारोबारी शिवा शर्मा की संदिग्ध मौत मामले में जांच तेज, सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद अब मुख्य आरोपी श्रद्धा दुबे और उसके सहयोगियों की तलाश में दबिश। शुरुआती जांच में सामने आया कि मॉडल श्रद्धा रसूख और ब्लैकमेलिंग के जरिए शिवा पर दबाव बनाती थी और पुलिस उसके पुराने मुकदमों और संपर्कों की कड़ियां खंगाल रही है। पुलिस को फ्लैट की जांच में आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई, साथ ही श्रद्धा के चैट से पता चला कि वो कई नेताओं के साथ संपर्क में थी। मृतक की मां रंजन शर्मा ने गर्लफ्रेंड और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर श्रद्धा दुबे पर बेटे को धक्का देकर हत्या करने का आरोप लगाया। पुलिस ने मां की शिकायत पर श्रद्धा, उसकी बहन और ड्राइवर समेत 5 लोगों पर हत्या का मुकदमा लिखवाया। ओवैसी ने ट्वीट करके सीएम योगी पर साधा निशाना, सीवेज प्लांट के नाम पर योगी सरकार ने आजमगढ़ के लोगों को धोखा दिया है। यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा का कार्यक्रम किया घोषित, 5 फरवरी से 24 फरवरी तक 10वीं और 12वीं की परीक्षा होगी। जौहर ट्रस्ट मामले में जेल में बंद आजम खान से होगी पूछताछ, बेटे अब्दुल्ला आजम पर भी ईडी की नजर, आजम खान के करीबियों से हो चुकी है पूछताछ। ईडी ट्रस्ट के फैसलों, जौहर यूनिवर्सिटी में निर्माण कार्य और कथित अनियमितताओं से जुड़े हुए पहलुओं पर जांच करेगी। यूपी में खाद्य सुरक्षा पर जोर, 15 अक्टूबर 2026 से मिठाइयों पर उपयोग अंतिम तिथि प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। दिल्ली के कालका जी मंदिर में नवरात्र के तीसरे दिन उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मां के किए दर्शन। गुजरात के खेड़ में नवरात्र के तीसरे दिन मां अंबा की विशेष आरती, पारंपरिक मणिपुरी वेशभूषा में सजी बेटियों ने दी शानदार प्रस्तुति। झांसी में नवरात्र का सीजन और पहला गरबा डांडिया कार्यक्रम आयोजित, लगभग 1000 महिला पुरुषों ने पारंपरिक परिधानों में गरबा डांडिया किया। मुंगेर में कल्याणपुर में मां दुर्गा की 250 फीट ऊंचा एक भव्य पांडाल बना, 50,000 बांस से बनाई विशाल पांडाल आकर्षण का केंद्र। हैदराबाद में पिता और बेटी के लिए देवदूत बनी आरपीएफ कांस्टेबल रीना कुमारी, ट्रेन में चढ़ने के दौरान यात्री का पैर फिसला, जवान ने जान बचा दी। दिल्ली के रणहौला में सरेआम फायरिंग, 11 अक्टूबर की वारदात, हत्या का खौफनाक सीसीटीवी फुटेज आया सामने। दो बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम, आपसी रंजिश के तहत हत्या की आशंका पर केस दर्ज कर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। बदायूं के गन हाउस में धमाके के बाद लगी आग, 3 कर्मचारी झुलसे, 1 की हालत गंभीर। कानपुर में रेस्टोरेंट में हुक्का न मिलने पर दरोगा और सिपाही समेत 4 लोगों ने जमकर हंगामा कर दिया, कर्मचारियों के साथ मारपीट की, दरोगा सिपाही सस्पेंड। यूपी के मुजफ्फरनगर में पैसों को लेकर पति और पत्नी के बीच में भयंकर मारपीट, सड़क पर ही पत्नी और बेटी ने मिलकर व्यक्ति को पीट दिया। झांसी में दुर्गा पंडाल के पास में जमकर मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, ई रिक्शा हटाने को लेकर शुरू हुआ विवाद, दोनों पक्षों ने गंभीर आरोप एक दूसरे पर लगाए। अलवर में जमीन विवाद में पूर्व सैनिक की मौत से बवाल, पीट पीट कर हत्या का आरोप है, न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर लोगों ने लगाया जाम। नवादा में रेलवे ट्रैक पर रेल बनाना, महिला को पड़ा भारी, पहचान उजागर होने के बाद महिला ने खुद रेल पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। पंचकुला में कुख्यात गैंग के 2 शूटर्स का एनकाउंटर, बड़ी वारदात की साजिश नाकाम, मुठभेड़ के दौरान आरोपियों ने पुलिस की टीम पर 5 गोलियां चलाई। पुलिस को आशंका है कि दोनों ही मोहाली, पंचकुला या चंडीगढ़ में किसी टारगेट को निशाना बनाने के इरादे से यहां पर आए थे। बागपत में एक महिला ने बच्चे के साथ की हैवानियत, मासूम के बाल नोचे, थप्पड़ बरसाए, मासूम के साथ मारपीट का वीडियो वायरल। श्रीगंगानगर में कार बाइक की जबरदस्त टक्कर, बाइक सवार की मौत, कार पलटने से 4 लोग घायल। बांका में 2 बाइकों की जबरदस्त भिड़न, 2 युवकों की मौत, हादसे में आरजेडी नेता की भी मौत। टोंक में आइसक्रीम खाने आए युवक पर बदमाशों ने हमला कर दिया, घेर कर मारपीट, चाकू से किया वार। विजयवाड़ा में इलेक्ट्रिक कार में लगी भीषण आग, हादसे में 4 लोगों की जिंदा जलने से मौत। दमोह में जिला अस्पताल में महिला से सफाई करवाने का आरोप है, नर्सिंग स्टाफ के कहने पर स्टूल फर्श साफ करती दिखी महिला। उदयपुर में तेज रफ्तार क्रेन ने बुजुर्ग को कुचला, हादसे में मौत, ड्राइवर मौके से फरार। गाजियाबाद में शहीद नगर में निर्माणाधीन इमारत गिरी, 4 लोगों को बचाया गया, एसडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन जारी। गाजियाबाद में युवती से मिलने के लिए आए मुस्लिम युवक की पिटाई, लव जिहाद मामले में हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप। लखनऊ में एक होटल में 10वीं मंजिल से गिरकर युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, कमरे में एक साथी मौजूद था। फिल्म रजनी द जेलर 2 का ट्रेलर हुआ रिलीज, 15 अक्टूबर को रिलीज होगी फिल्म। रश्मिका मंदाना, विजय देवरकोंडा ने अपनी अगली फिल्म रणबाली की रिलीज से पहले सीएम विजय से की मुलाकात और देवरकोंडा ने मुख्यमंत्री विजय की जमकर तारीफ की। तिरुपति बालाजी के दरबार में पहुंचे विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना, भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद लिया। सैफ अली खान ने इंस्टाग्राम पर पटौदी लाइब्रेरी की दिखाई झलक, कैप्शन में लिखा पटौदी लाइब्रेरी किताबों को उनके कवर से आंकते हुए। फिल्म गाड़ी का धर्मशाला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में होगा प्रीमियर, 29 अक्टूबर को महोत्सव की शुरुआत।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर मात्र।
2: अब बात लखनऊ में हुए हाई प्रोफाइल मर्डर केस की। लखनऊ में 28 साल के करोड़पति कारोबारी शिवा शर्मा की मौत की जांच में अब कई बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। पुलिस को फ्लैट की जांच में अब कई आपत्तिजनक चीजें मिली हैं। साथ ही शिवा शर्मा की लिव इन पार्टनर श्रद्धा दुबे को लेकर भी कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं। श्रद्धा के चैट से पता चला है कि वो कई नेताओं के साथ संपर्क में थी। शिवा की मौत के बाद से ही श्रद्धा दुबे फरार है। उसकी तलाश में दिल्ली के साथ साथ नेपाल तक में कई जगहों पर छापेमारी जारी है। इस बीच जांच के दौरान लखनऊ पुलिस के हाथ एक बड़ा सुराग लगा है। पता चला है कि श्रद्धा दुबे अपने पुराने दोस्त आमिर के साथ नेपाल बॉर्डर पहुंच गई है। इन्वेस्टिगेशन अभी रुकी नहीं है। लखनऊ में कारोबारी शिवा शर्मा की मौत से जुड़े हुए मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको देते हैं कि जांच के बीच पुलिस को श्रद्धा और शिवा के बातचीत का एक ऑडियो मिला है जिसमें श्रद्धा शिवा को धमका रही है।
3: गया, दो मिनट रुको, आ गया बस।
4: मेरे घर से चोरी करके भाग गए हो तुम, कोई ज्वेलरी वेलरी मुझे लग रहा है।
3: बेफर्जी की बात है यार,
4: मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगी अब तुम्हारी इस बात पे। मैंने इसीलिए मैसेज डाला सबको, अभी सबको बता दिया कि तुम मुझे लॉक करके भाग गए हो।
3: यार एक बात बताइए, आप ऐसे कहा, आपने खुद बोला था दरवाजा खुला छोड़ दो
4: तो
3: खुला
4: छोड़ नहीं बोला था, तुम लॉक करके भाग गए मुझे।
3: यार मैं कौन सा लॉक करके भाग गया यार, कौन कौन कौन चला गया, कहाँ चला गया बताओ।
4: तुम मुझे ज्यादा परेशान कर रहे हो, तुम्हें ऐसा फील नहीं हो रहा है?
3: अरे यार तो एक बात बता दो, वो लोग मिल गए, रैंडमली मिले हैं भाई, वो लोग यार चाय सिगरेट पी रहे थे।
2: और वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: SBI Celebrations Unlimited. इस फेस्टिव सीजन को बनाए स्पेशल कार लोन, पर्सनल लोन, गोल्ड लोन और लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स पे स्पेशल ऑफर्स के साथ।
8: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार सर, एक बार दो ठुमका लगाने बस।
9: मेरे पास एक आइडिया है।
8: क्या?
9: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
10: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिला, पर स्टेज नहीं हिलता
11: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
12: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
10: कौन सी बनानी है?
13: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।

0: Love and Care, the world's finest range of rubber pet toys.
1: माँ के पैरों की धूल माथे पर ले, मैं परिंदा खुले आसमान जहाँ जीत रू सारा।
2: बच्चों के लिए अलग टीवी रूम बना सकते हैं।
3: कैसा लगा आप दोनों को अपना ड्रीम होम?
4: I love it, absolutely amazing. तुम एक काम करो, तुम मिठाई ऑर्डर कर लो।
5: मिठाई से पहले कुछ और हो जाए
4: क्या?
5: इनकी राय।
6: नई सोच की नींव में हम, हर नई उम्मीद में हम, गैलेंट निर्माण का रियल हीरो।
7: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
8: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
7: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
9: हाउस द हॉस्टल सेटल्ड?
10: कोई आ रहा है क्या?
11: तुम मॉम डैड वाली ड्यूटीज तो निभा ली, अब फिर से थोड़ा रोमांस ले।
10: मयंक, फॉर रियल?
11: वन कैरेट फॉर माय वन ट्रू लव। नेचुरल डायमंड रियल लव सॉलिटेयर्स टू रीइग्नाइट योर न्यू सीजन ऑफ लव।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।

0: दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं।
1: पहले भरपेट भोजन, बाद में आंदोलन। डोंट ट्विस्ट।
0: क्या हुआ?
1: डोंट ट्विस्ट लप से।
0: हर आदमी में
2: होते हैं 10-20 आदमी, जब भी देखियो गौर से देखियो।
1: कितना घटिया था यार।
2: लप लप लप।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: SBI Celebrations Unlimited. इस फेस्टिव सीजन को बनाए स्पेशल कार लोन, पर्सनल लोन, गोल्ड लोन और लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स पे स्पेशल ऑफर्स के साथ।
4: बच्चों के लिए अलग टीवी रूम बना सकते हैं।
5: कैसा लगा आप दोनों को अपना ड्रीम होम?
6: I love it. Absolutely amazing. तुम एक काम करो, तुम मिठाई ऑर्डर कर लो।
7: मिठाई से पहले कुछ और हो जाए
6: क्या?
7: इनकी राय।
8: नई सोच की नींव में हम, हर नई उम्मीद में हम। गैलेंट निर्माण का रियल हीरो।
9: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
10: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
11: सोच बदलो और बैंक भी।

0: इन एसोसिएशन विद विमल बोलो जुबा केसरी। हिंट, एक हिंट तो देते।
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।

0: जम्मू में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें और रिहायशी इलाके पानी में डूबे नजर आए। आरएसपुरा के धान के खेतों में बारिश से फसल को नुकसान पहुंचा है। कटाई से पहले फसल बर्बाद होने से किसान परेशान हैं और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। पंजाब के फाजिल्का में अनाज मंडी में पानी भरने से धान की फसल भीग गई। पानी के बीच अपनी उपज बचाने के लिए किसान मशक्कत करते नजर आए। दिल्ली के किशनगढ़ में रामलीला मैदान में पानी भरने से मंच और कलाकारों का सामान भीग गया। वहीं नोएडा के सेक्टर 95 अंडरपास में पानी में फंसी कार से लोगों को शीशा तोड़कर बाहर निकलना पड़ा। सभी लोग सुरक्षित बताए गए। हिमाचल में बारिश के बाद मौसम साफ होने के साथ तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पहाड़ी इलाकों में ठंड बढ़ने लगी है। बारिश ने किसानों की फसल से लेकर शहरों की व्यवस्थाओं तक को प्रभावित किया है। अब नजरें राहत मुआवजे और जल निकासी के इंतजामों पर हैं। आज तक ब्यूरो।
1: अक्टूबर में ही पहाड़ों पर सर्दी ने दस्तक दे दी है। हिमाचल लद्दाख सीमा पर शिंकुला टॉप में भारी बर्फबारी से 40 से ज्यादा गाड़ियां और करीब 25 बाइक सवार फंस गए। बर्फबारी से सड़क पर फिसलन बढ़ी और कई बाइक सवार गिर पड़े। केलांग पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाला। कुल्लू और मनाली में बारिश से ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने 15 अक्टूबर तक हिमाचल के ज्यादातर इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया है। जम्मू में बेमौसम बारिश से कई इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। मेरठ में अचानक बारिश के साथ ओले गिरे, दोपहर में ही अंधेरा छा गया। करनाल में तेज बारिश से धान की फसल भीग गई, इससे किसानों को नुकसान की आशंका है। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानों में बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। अक्टूबर में ही सर्दी के तेवर दिखने लगे। कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा, जम्मू से मीर फरीद और मेरठ से उस्मान चौधरी के साथ कमलजीत, करनाल आज तक।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
4: इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

कैसे बना सीसी, राहुल गांधी से पूछे 10 तीखे सवाल। दिल्ली में सड़कों पर एनएसयूआई का हंगामा, हिरासत में कई प्रदर्शनकारी, राहुल गांधी के आवास पर इंडिया गठबंधन के दिग्गजों का जुटान, चाय पर चर्चा के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस।

पेरल मामले में बर्खास्त प्रोफेसर और कांग्रेस सांसद के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, राष्ट्रपति से महिला सांसदों की गुहार, गिरफ्तारी और सदस्यता रद्द करने की मांग। पंजाब के मानसा में ड्रग्स माफिया बेकाबू, नशा विरोधी एक्टिविस्ट परविंदर झोटा की ऑन कैमरा गोली मारकर हत्या, विपक्ष बोला कसाई खाना बना है प्रदेश। यूपीआई पर 0.4% चार्ज, दिवाली तक तला, 2000 रुपए से ज्यादा की पेमेंट पर 15 अक्टूबर से होना था लागू, त्योहारी सीजन को देखते हुए लिया गया फैसला।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरें असरदार, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। बुलेटिन की शुरुआत करें, जंतर मंतर प्रदर्शन स्थल से हटाने के बाद नई सियासत जो शुरू हो गई है उसी खबर के साथ। यहां सीजेपी और कांग्रेस समेत विपक्षी दल जंतर मंतर पर दोबारा प्रदर्शन करने की मांग कर रहे थे। सीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जंतर मंतर पर जाने की कोशिश की, जिसके बाद उनको हिरासत में ले लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ रामलीला मैदान में प्रदर्शन को लेकर मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि रामलीला मैदान में रामलीला चल रही है और 2 महीने तक बुकिंग फुल है। सबसे पहले बात लेकिन जंतर मंतर को दोबारा प्रोटेस्ट साइट की मांग को लेकर जो कांग्रेस का एक्शन नजर आ रहा है, उसमें कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई ने जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की रोक के खिलाफ नारेबाजी की है और जंतर मंतर जाने की वो कोशिश कर रहे हैं। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।
1: समय में कनॉट प्लेस के ब्लॉक ए की तस्वीरें आपको अपने पीछे दिखाना चाहूंगा, जहां एनएसयूआई का फ्लैश प्रोटेस्ट था। आप देख सकते हैं कैसे भारी संख्या में तकरीबन 100 के आसपास जो एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं यहां पर हाथ में झंडे लेकर इकट्ठे हुए हैं। वो अपना जो है प्रोटेस्ट मार्च है सीपी से निकालना चाहते थे, पर वही मैं दिखाना चाहूंगा कि पुलिस एक्शन और जो पैरामिलिट्री का जो एक्शन है यहां पर शुरू हो गया है। जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता है उनको डिटेन करना दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री के जवानों ने यहां पर शुरू कर दिया। एसआईआर के मुद्दे को लेकर जो एनएसयूआई का फ्लैश प्रोटेस्ट है, तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि सीपी के इनर सर्कल ए ब्लॉक के पास की आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहां कैसे आप देख सकते हैं हाथ में झंडे लेकर जो कांग्रेस पार्टी है अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है, जो एनएसयूआई के लोग हैं अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है। तस्वीरों में मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता अंजलि यहां पर बैठ चुके हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि यहां पर वो जो अपना सिटिंग प्रोटेस्ट है वो करें, पर तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि जो महिला प्रदर्शनकारी हैं उनको भी यहां पर डिटेन करना शुरू कर दिया। देखिए तस्वीरों में जो एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको भी यहां से डिटेन कर लिया। आप देख सकते हैं पीछे तस्वीरों में कैसे यहां पर दिल्ली पुलिस पहले ही बसेस लाकर यहां पर पहले ही रखी गई थी ताकि जो प्रदर्शनकारी हैं उनको डिटेन किया जा सके। भारी संख्या में आपको दिल्ली पुलिस की जो महिला कर्मचारी हैं, महिला कांस्टेबल्स हैं यहां पर नजर आएंगे, साथ ही पैरामिलिट्री के जो जवान हैं सीआरपी के जवान आपको अंजलि यहां पर नजर आएंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दिल्ली का कनॉट प्लेस अब नया जंतर मंतर बनता दिख रहा है, जहां लेफ्ट के लोग तो यहां पर धरना प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं, वहीं जो अब कांग्रेस पार्टी का छात्र संगठन है एनएसयूआई उनके लोग भी यहां पर अपना जो फ्लैश प्रोटेस्ट है बुला रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा पीछे तस्वीरों में जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता थे उनको डिटेन करके यहां पर बस में भर लिया गया।
0: और बात सीजेपी की करेंगे, जंतर मंतर प्रदर्शन की मनाही के बाद भी सीजेपी के नेताओं ने जंतर मंतर पर जाने की कोशिश की, जिसके बाद सौरभ दास, आशुतोष रांका और अजिंक्य शिंदे को हिरासत में ले लिया गया। आज सुबह गेट और बैरिकेड को फान कर सीजेपी के नेताओं और समर्थकों ने जंतर मंतर पर जाने की कोशिश की और नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस ने सभी को पकड़ लिया है। सीजेपी ने हिरासत में ले गए नेताओं का वीडियो जारी किया। जंतर मंतर पर प्रदर्शन नहीं हो सकता है, केंद्र सरकार ने सोमवार को इसे निर्धारित प्रदर्शन स्थल की लिस्ट से हटा दिया था।
2: उन्होंने जंतर मंतर को डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट से हटा दिया है। नरेंद्र मोदी को लगता है कि जंतर मंतर को डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट नहीं रखेंगे तो प्रोटेस्ट रुक जाएंगे, ऐसा नहीं है। जंतर मंतर अब पूरे देश में बनेगा। नरेंद्र मोदी को प्रॉब्लम जंतर मंतर एक लोकेशन से नहीं है, उनको प्रॉब्लम है प्रोटेस्ट से, ये हमें समझना पड़ेगा। एक डिक्टेटर को हमेशा प्रॉब्लम होती है प्रोटेस्ट से, द आइडिया ऑफ प्रोटेस्ट, इससे नरेंद्र मोदी को दिक्कत है। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि जंतर मंतर को डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट से हटाकर वो आंदोलन को खत्म कर सकते हैं, इस गलतफहमी में मत रहना। अब पूरे देश में आंदोलन होगा, पूरे दिल्ली भर में आंदोलन होगा, तुम्हारे इन सारी हरकतों से देश अब डरने वाला नहीं है।
0: और इस बीच आपको बता दें कि सौरभ दास को भी हिरासत में ले लिया है पुलिस ने, लेकिन अब चुनाव आयोग पर मचे घमासान के बीच बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर जमकर उन्होंने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को लेकर राहुल गांधी के आरोप बेबुनियाद है, चुनाव आयोग का काम निष्पक्ष रहा है, इसी ने हमेशा ईमानदारी से काम किया है। साथ ही कहा उन्होंने कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में चुनाव आयोग के दफ्तर को निचले स्तर पर गिराया है, देश इनका बचकाना रवैया देख रहा है। उन्होंने 2 मुख्य चुनाव आयोग को राज्यपाल बनाया, 1 सीसी को कैबिनेट में लिया।
3: कांग्रेस इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता के ऊपर सवाल उठाती है, पर पूरी तरीके से नजरअंदाज करती है अपने खुद के काम को, अपने खुद के पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार ने इलेक्शन कमीशन को स्वावलंबी तरीके से देशहित और जनहित में अपने काम करने के लिए पूरी तरीके से ऑटोनॉमी दी है, और कोई भी इलेक्शन कमिश्नर जो अपॉइंट हुआ हो उसको कोई राजनीतिक लाभ दिए कभी भी देने का प्रयास नहीं किया है। उनको अब ईमानदारी से काम करने दिया और जो कानूनी प्रावधान है उसके हिसाब से उनको कोई राजनीतिक पद देने का कभी खुला नहीं किया। लेकिन राहुल गांधी जी की अगर ट्रैक रिकॉर्ड को देखें, जिसको वो बड़ा कन्वीनियंटली नजरअंदाज कर देते हैं, तो उन्होंने एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पार्टी टिकट पे कैंडिडेट बनाया, एक को यूनियन कैबिनेट में लिया, दो इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को गवर्नर बनाया, और एक बार तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के कहने पे कि उनके नीचे काम करने वाला इलेक्शन कमिश्नर पूरी तरीके से कांग्रेस की एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, उसको निकालने से इनकार कर दिया। मैंने इतना पक्षपात हमने शायद ही कभी कोई सरकार में देखा हो जितना कांग्रेस ने अपने रवैये में दिखाया।
0: और बात जंतर मंतर के प्रदर्शन पर रोक की करेंगे। अब दिल्ली के रामलीला मैदान में भी प्रदर्शन मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगले 2.5 महीने तक बुकिंग के लिए कोई तारीख ही नहीं है। वहां जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाता था, लेकिन रामलीला मैदान में बुकिंग के लिए 1,00,000 रुपए से ज्यादा की फीस चुकानी पड़ेगी। और इसके अलावा रामलीला धरना प्रदर्शन को लेकर लोगों के साथ साथ व्यापारी भी नाराज हैं।

0: दिल्ली के जंतर मंतर पर अब धरना नहीं, रामलीला मैदान में भी प्रदर्शन मुश्किल। अगले ढाई महीने तक बुकिंग फुल और फीस भी लाखों पार। दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर जंतर मंतर अब इतिहास बन गया है, क्योंकि जंतर मंतर को डी नोटिफाई कर दिया गया है। मतलब अब जंतर मंतर प्रदर्शन स्थल नहीं रहा। सरकार ने प्रदर्शन करने के लिए तीन जगह निर्धारित कर दी हैं। ये जगह हैं रामलीला मैदान, सीबीडी ग्राउंड, पुरानी मैदान। अब मसला यह है कि इन तीनों ग्राउंड को प्रदर्शन स्थल तो बना दिया गया, मगर दो मैदानों में कार्यक्रम चल रहा है। रामलीला मैदान और सीबीडी ग्राउंड में भी रामलीला की तैयारी हो रही है। बचा बुराड़ी का मैदान, वहाँ बारिश के बाद फिलहाल कहीं कहीं पानी भरा हुआ है।
1: हम जिस रामलीला मैदान पर हैं, इस समय नवरात्रि के चलते आप देखेंगे कि यहाँ रामलीला का मंचन हो रहा है। इस तरफ स्टेज लगा हुआ है और ठीक इसके पीछे यहाँ पर देखिए सैकड़ों लोगों के बैठने की व्यवस्था है और साथ ही मेला लगा हुआ है। कारोबार मेले का और लोगों के बचपन की यादें ताजा हो जाती है। इस रामलीला मैदान का अपना बहुत इतिहास रहा है। इस रामलीला मैदान ने बहुत सारे आंदोलन देखे हैं, लेकिन अब इसे एक आंदोलन धरना प्रदर्शन स्थल घोषित किए जाने को लेकर के व्यापारी चिंता जता रहे हैं, स्थानीय लोगों में भी नाराजगी है और ऊपर से जंतर मंतर को जिसकी एक अपनी पहचान रही है कि वहां पर धरने प्रदर्शन होते थे जिसकी वजह से सरकार सत्ता तक आवाज पहुंचती थी, उसको लेकर के जो प्रदर्शनकारी हैं, जो सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते आवाज उठाते हैं, वो भी नाराज हैं।
0: जाहिर तौर पर रामलीला मैदान नई दिल्ली से बेहद नजदीक है और ऐतिहासिक रूप से दशकों तक धरना स्थल भी रहा है, लेकिन मैदान के चारों ओर अस्पताल हैं, सरकारी दफ्तर हैं और सैकड़ों साल पुरानी दिल्ली के बाजारों की विरासत भी इसी रामलीला मैदान के इर्द गिर्द है।
1: पूरा रामलीला मैदान है, इस समय यहाँ पर रामलीला चल रही है, मेले लगे हुए हैं क्योंकि नवरात्रि दशहरा में मेला लगता है। इसी के साथ साथ अब इसके बगल में क्या है, यहाँ पर ये नगर निगम का सिविक सेंटर है। आप समझिए यहाँ से नगर निगम संचालित होता है। बीच में महानगर का जो MTNL है आप देख रहे हैं उसकी बिल्डिंग है। इसी के ठीक बगल में यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस तरफ अस्पताल है, आंखों का अस्पताल है, बड़े सारे कई अस्पताल हैं। अब अगर 360 डिग्री आपको ले जाता हूं तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा वर्धमान प्लाजा, ट्रेडर टावर है और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो ट्रेड सेंटर है वो बनाया गया है। ठीक इसके पीछे दरअसल ये दिल्ली 6 शुरू होता है। दिल्ली 6 सबसे पुराने बाजारों में से एक है। यहाँ से रास्ता जो है आप आगे पुरानी दिल्ली की ओर जाता है, चांदनी चौक की ओर जाता है, चावड़ी बाजार की ओर जाता है, तो ये पूरा इलाका बाजारों से घिरा हुआ है जहां पर रोज लाखों नहीं बल्कि करोड़ों का कारोबार होता है।
0: जहां एक तरफ रामलीला मैदान को धरना स्थल बनाए जाने पर CJP समेत विपक्षी दल नाराज नजर आ रहे हैं, वहीं रामलीला मैदान के आसपास व्यापारियों में भी नाराजगी दिख रही है, क्योंकि रामलीला मैदान में प्रदर्शन होने से उनके व्यापार को नुकसान पहुंचेगा।
2: अगर भीड़ उग्र हो गई या भीड़ अधिक तादाद में आ गई किसी प्रदर्शन को लेकर के, तो यहाँ पर पूरा होलसेल व्यापार, जो थोक व्यापार है, वह खत्म हो जाएगा, वह समाप्त हो जाएगा उतने दिनों के लिए, और उसके अंदर क्या क्या नुकसान होगा। कहीं उग्र भीड़ किसी मार्केट में घुस गई तो वहां पर संभालना पुलिस के लिए मुश्किल हो जाएगा। आसपास छोटी छोटी गलियां हैं पुरानी दिल्ली की, अगर भीड़ उग्र भीड़ अगर वहां घुस गई तो पुलिस कहां उन्हें खदेड़ेगी।
0: व्यापारियों को लगता है कि अगर रामलीला मैदान में धरने होते रहे तो उनके कारोबार में नुकसान होगा।
3: जब जंतर मंतर की भीड़ यहां आ सकती है तो रामलीला मैदान तो बहुत पास है।
1: कामकाज पर असर पड़ेगा,
3: बहुत ज्यादा असर पड़ेगा जी, बहुत ज्यादा।
1: आप लोगों को पता चल गया कि रामलीला
3: वो तीन ग्राउंड फिक्स करे, एक रामलीला, एक बुराड़ी का है, एक और है जमुना पार का।
1: भी आप लोगों को भी चिंता हो रही है?
3: अब चिंता हो रहे हैं, हमें तो रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना।
0: रामलीला मैदान पर भी धरना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि रामलीला मैदान में विरोध प्रदर्शन करना महंगा और मुश्किल हो गया है, क्योंकि अगले ढाई महीने तक बुकिंग के लिए कोई तारीख नहीं है। वहीं जहां जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए कोई चार्ज नहीं दिया जाता था, रामलीला मैदान में बुकिंग के लिए 1,00,000 रुपए से ज्यादा की फीस चुकानी पड़ेगी। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
4: और अब बात करेंगे JNU में 11 छात्राओं से यौन शोषण मामले की। इनके आरोपों में घिरे कांग्रेस सांसद अगुमचा बिमोल की, जिनके खिलाफ

0: एफआईआर दर्ज हुई है। उस मामले को लेकर एक दिन पहले बीजेपी ने दिल्ली में प्रदर्शन किया। अब आज बीजेपी की लोकसभा और राज्यसभा महिला सांसद राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर रहे हैं।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने के बाद बीजेपी की महिला सांसद अब बाहर निकलती हुई नजर आ रही हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे महिला सांसदों के हाथ में वो ज्ञापन की कॉपी है जो आज राष्ट्रपति को सौंपी गई है। उनके साथ कई बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं, महिला कार्यकर्ता हैं, और ये सभी कार्यकर्ता यहाँ पर कांग्रेस सांसद बिमोल अंगोमचर के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने के लिए यहाँ पर आए। और आप देखिए रूप कुमारी जो बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता है उनके हाथ में एक ज्ञापन भी है जो ज्ञापन आज सौंपा गया है। देख सकते हैं कि कैसे जो महिला सांसद हैं वो अब राष्ट्रपति से मिलने के बाद इन्हीं बसेस में बैठकर वापस जाती हुई नजर आ रही हैं। और 16 ऐसी महिला सांसद थी जो आज पहुंची राष्ट्रपति से मिलने के बाद और अपनी मांग आज रखी गई।
0: वही आज बीजेपी सांसदों ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। यौन पीड़न मामले में घिरे जेएनयू के बर्खास्त प्रोफेसर कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोईजाम को लेकर सियासी घमासान तेज है। बीजेपी ने एक दिन पहले ही कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया, साथ ही कांग्रेस पर महिला सुरक्षा को लेकर दोहरा रवैया अपनाने के गंभीर आरोप लगाए।
2: दिल्ली की सियासत में ये दूसरा मोर्चा है। कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोईजाम के खिलाफ ये गुस्सा फूटा है। कांग्रेस दफ्तर के बाहर बीजेपी की महिला मोर्चा ने कांग्रेस सांसद के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी कांग्रेस सांसद की गिरफ्तारी की मांग करते रहे। इस प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के निशाने पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी रहे। इनर मणिपुर से कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोईजाम पर जेएनयू की 11 छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल अकोईजाम जेएनयू में प्रोफेसर थे। वहां की 11 छात्राओं ने उन पर यौन शोषण जैसे गंभीर इल्जाम लगाए। तमाम आरोपों के बाद जेएनयू ने आंतरिक जांच बिठाई। इस जांच में अकोईजाम पर तमाम आरोप सही साबित पाए गए। उसी रिपोर्ट के आधार पर जेएनयू ने 9 अक्टूबर को प्रोफेसर पद से उन्हें हटा दिया। उसके दो दिन बाद यानी 11 अक्टूबर को आरोपी कांग्रेस सांसद के खिलाफ अलग अलग धाराओं में एफआईआर भी दर्ज करा दी।
0: खबरें ऐसेदार मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
3: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
6: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
7: सोच बदलो और बैंक भी।
8: आ गया सोमवार और आ गए
9: चकमक चाचा।
8: हाँ चाचा, अखबार बांच रहे हैं।
10: टेस्ट
8: चल रहा है, भैया के चले गए, दीदी पहुंच गई है, चिचा कब जाएंगे?
10: अरे भैया प्रोटेस्ट में हिस्सा दे लेते हैं, ये सब तुम लोग का ऐसा, हम अपना मुद्दा उठा चुके पुराने।
8: अच्छा, कब उठाए?
10: जेपी के टाइम पे मुद्दा उठाए।
8: अच्छा
10: हाँ, तो जहाँ वो मुद्दा जब हम ऐसा रख देते थे तो फिर रख देते थे फिर मुद्दा। ये नहीं तुम लोग तरह इधर आए तो मतलब पुलिस आई इधर भागने लगे दन दन दन दन करके, ऐसा ये सब नहीं था अपना मामला
8: जी।
10: मुद्दा मजबूती से रखते थे।
8: हम तो सुने मुद्दा टूटा भी है आपका।
10: टूटा भी था, सही बात है, जब कभी ऐसे कार्रवाई चलती थी दर्द बिता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन बोलता रखे था हाँ, एकदम पुत्ता मजबूती के साथ रखे, सरकार हिला दिया एकदम।
8: अच्छा
10: और क्या
8: आपका मतलब, हम लोग डर जाते हैं?
10: और क्या डर जाते हैं, बिल्कुल जहाँ पुलिस सिटी में भेजे उसमें भागने लगता हूँ।
8: बढ़िया, आप डरते नहीं है, पुलिस आ रही
10: है। किधर?
8: चाचा हम खेल गए अब की।
11: पेटिशन जो है दायर किया है एसआईआर के खिलाफ, ज्ञानेश्वर कुमार जी के खिलाफ, इनकी मनमानी नहीं चलेगी, चोरी और सीनाजोरी नहीं चलेगी, लोकतंत्र को कुचलने वाला काम अब नहीं होगा। ये लोग बेईमान लोग हैं, इन लोगों ने चोरी नहीं बल्कि बहुत बड़ा पाप किया है।
12: सुप्रीम कोर्ट जाके क्या करना?
11: देश के नेचर को जानते नहीं है। जब भी लोकतंत्र संविधान पे खतरा होगा तब तक देश की जनता सड़कों पे आती है और किसी माई के लाल में दम नहीं जो लोकतंत्र को खत्म करता है।
13: यदि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटना है एक ही रास्ता है, वो रास्ता ये है कि महाभियोग लाइएगा और पार्लियामेंट में उनको इम्पीच करिएगा।

0: और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया याचिका सुनेंगे, आप एसएलपी फाइल करिएगा, आप रिट पिटीशन फाइल करिएगा और आपके तरफ से कोई वकील जाएंगे केस लड़ने के लिए, या इस तरह से धरना प्रदर्शन करके जो है, आपने कभी देखा कि सुप्रीम कोर्ट जाता है? आप इसको क्या कहिएगा? ये पागल है, और पागल से भी बड़ा पागल है उसके पीछे जितने अपोजिशन के लोग हैं, उनको क्या है, उनका नेतृत्व खत्म हो गया है।
1: आप महामहिम राष्ट्रपति जी के पास गए, वहां पर भी आपको कहा गया कि शिकायत के साथ सबूत दीजिए, तो आप बगले झांकने लगे, भाग गए, चुप्पी साध ली। और सुप्रीम कोर्ट ने तो श्रीमान राहुल गांधी जी से साफ साफ कह दिया कि कोर्ट को आप अपनी राजनीति का रणक्षेत्र नहीं बना सकते। इनका फंडा बहुत क्लियर है, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का, राज नहीं तो अराजकता फैला दो।
2: सत्ता में रहते हुए जिन्होंने देश को लगातार लूटा है, वह चोरी की बात कर रहे हैं? बार बार बार बार जिनको जनता ने हराया है, उनको तो आत्मचिंतन करना चाहिए, लेकिन हार हार के इतने कुंठित हो गए हैं कि अब धमकी देने पर उतर आए हैं, अमर्यादित आचरण कर रहे हैं। लोकतंत्र में विरोध की भी मर्यादा होती है, और विशेषकर जब कोई नेता प्रतिपक्ष जैसे पद पर हो, हार की खींच कुंठा में बदल रही है और संतुलन बिगड़ रहा है, हर किसी को धमकियां दी जा रही है।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: अच्छा आजकल हमें इंफॉर्मेशन सब जगह से मिल रही है। ज्ञानेश कुमार जी हम जानते हैं आपकी क्या हालत है, हम जानते हैं कि आप रात को सो नहीं पाते हो और आप घबराइए मत, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। आप मैं आपको डायरेक्टली कह रहा हूं, आप बचोगे नहीं एज इलेक्शन कमिश्नर, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो हो रहा है, ये लाखों लोग जो हैं ये आपके बारे में आपके बिहेवियर के बारे में सवाल पूछ रहे हैं और ये रुकेंगे नहीं। रुकेंगे क्यों नहीं, क्योंकि आपके सामने भी लोग हैं और उन तक पहुंचने के लिए हमें आपको हटाना है।
3: एक के बाद एक चुनाव हारना और उसकी खींच आंदोलन करके सड़क पे निकालना, ये कांग्रेस की नियति बन गई है और चुनाव की हार का दोष भी कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं पर मढ़ने का पाप करती है। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस के मित्रों से, कांग्रेस की हार का कारण चुनाव आयोग नहीं है, कांग्रेस की हार का कारण स्वयं कांग्रेस का विचार शून्य नेतृत्व है।

शेयर बाजार में पैसा लगाने वालों के लिए विदेशी नागरिकों की हर चाल काफी मायने रखती है। ये निवेशक जब बाजार में पैसा लगाते हैं तो खरीदारी को सपोर्ट मिलता है, लेकिन जब लगातार बिकवाली करते हैं तो बाजार पर दबाव बढ़ जाता है। भारतीय शेयर बाजार में इन दिनों कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर के शुरुआती 6 दिनों में विदेशी नागरिकों ने भारतीय शेयर बाजार से 44,166 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। इसके साथ ही 2026 में उनकी कुल बिकवाली 3,00,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गई है। NSDL के आंकड़ों के मुताबिक 2026 में अब तक विदेशी निवेशकों ने शेयर बाजार से 3.04 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। 2025 में ये निकासी 1.66 लाख करोड़ रुपए थी। वहीं सितंबर 2026 में विदेशी निवेशकों ने 35,861 करोड़ रुपए के शेयर बेचे थे, जबकि जुलाई में 20,200 करोड़ और अगस्त में 29,631 करोड़ रुपए का निवेश किया था। यानी जुलाई और अगस्त में खरीदारी करने वाले विदेशी निवेशक सितंबर से फिर बिकवाली की तरफ मुड़ गए हैं। भारतीय बाजार से इतनी बड़ी रकम निकालने की एक बड़ी वजह भारत के बाहर निवेश के दूसरे विकल्पों का आकर्षक होना है। महंगा कच्चा तेल, मजबूत अमेरिकी डॉलर और अमेरिकी सरकारी बॉन्ड पर ऊंचा रिटर्न विदेशी निवेशकों को भारतीय शेयरों से पैसा निकालने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। दरअसल अमेरिका की 10 साल के सरकारी बॉन्ड पर 5.2% से ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। वहीं महंगे कच्चे तेल से भारतीय अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ने की आशंका है। उधर एशियाई बाजारों में AI कंपनियों के शेयरों की तेजी भी विदेशी निवेशकों को आकर्षित कर रही है। विदेशी निवेशकों का पैसा निकालना अपने आप में इस बात का संकेत नहीं है कि भारतीय बाजार में कोई बड़ी कमजोरी आ गई है। दुनिया भर में निवेशक बेहतर रिटर्न के मौके तलाश रहे हैं। हालांकि विदेशी निवेशकों की बिकवाली के बीच भारतीय बाजार को घरेलू निवेशकों से सहारा मिल रहा है। फिलहाल माना जा रहा है कि विदेशी निवेशकों की वापसी के लिए कच्चे तेल की कीमतों में नरमी खास रोल निभाएगी। वहीं अमेरिकी बॉन्ड पर रिटर्न घटने से भारतीय शेयरों की तरफ पैसा लौटने की संभावना है। भारतीय कंपनियों के शेयर आकर्षक कीमतों पर मिलने से भी विदेशी निवेश बढ़ सकता है। विदेशी निवेशकों की बिकवाली और भारत में गिरावट के बीच सीधा रिश्ता होने के बावजूद हर गिरावट की वजह केवल विदेशी निवेशक नहीं होते। जानकारों के मुताबिक निवेशकों को बाजार की चाल समझने के लिए कंपनियों के नतीजे, शेयर की कीमत और वैश्विक हालात पर भी नजर रखनी चाहिए। आदित्य राणा, आज तक।

0: दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं।
1: पहले भरपेट भोजन, बाद में आंदोलन। डोंट ट्विस्ट।
0: क्या हुआ?
1: डोंट ट्विस्ट लप से।
0: हर आदमी में
2: होते हैं 10-20 आदमी, जब भी देखियो गौर से देखियो।
3: कितना घटिया था यार। हाँ।
2: लप लप लप।
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

पास तीखे सवाल। दिल्ली की सड़कों पर एनएसयूआई का हंगामा, हिरासत में गई प्रदर्शनकारी, राहुल गांधी के आवास पर इंडिया गठबंधन के दिग्गजों का जुटान, चाय पर चर्चा के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस।

सांसद के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, राष्ट्रपति से महिला सांसदों की गुहार गिरफ्तारी और सदस्यता रद्द करने की मांग। पंजाब के मानसा में ड्रग माफिया बेकाबू, नशा विरोधी एक्टिविस्ट परविंदर झोटा की ऑन कैमरा गोली मारकर हत्या, विपक्ष बोला कसाई खाना बन गया है पंजाब प्रदेश।

0: Pesla.
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
2: Bharat ki apni electric sawari, so good.
3: ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे पर संग्राम में नया मोड़। आज राहुल के घर चाय पार्टी में बनेगी रणनीति। विपक्ष की एकजुटता का एजेंडा, बीजेपी बोली फैला रहे अराजकता। जंतर मंतर पर सीजेपी नेताओं ने अचानक बोला धावा। एक्शन में दिल्ली पुलिस घर पकड़ के बाद हिरासत का शिकंजा। बीजेपी ने यौन उत्पीड़न मामले में कांग्रेस को फिर घेरा। बीजेपी महिला सांसदों ने राष्ट्रपति से मिलकर बनाया दबाव। दिल्ली में बढ़ती तकरार, सरकार विपक्ष में आर पार।
4: नमस्कार, मैं हूं गौरव सावंत, आप देख रहे हैं रणभूमि। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष अपनी अगली रणनीति समय तैयार कर रहा है और इस वक्त लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के सरकारी आवास पर विपक्ष का जो इंडिया गठबंधन है उसके नेताओं का, विपक्ष के सांसदों का, छात्र संगठनों और सिविल सोसाइटी के लोगों का इकट्ठा होना शुरू हो गया है। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक इस बैठक में विपक्ष अपनी आगे की रणनीति को तय करेगा और इस बैठक के बाद विपक्ष के नेता मीडिया से बात करेंगे और बताएंगे कि उनकी अगली रणनीति क्या है। राहुल गांधी ने इस चाय पार्टी को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में कह दिया कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए जन आंदोलन में हम सब एक साथ हैं और यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा। यह भी कहा कि चाय के बाद हम सब मिलकर मीडिया के सामने सभी नेता अपनी बात रखेंगे। राहुल गांधी का जो पूरा जोर है वो विपक्षी एकता पर है कि सारे प्रदर्शनों में विपक्ष के नेता, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, या फिर बंगाल की बात करें तो टीएमसी हो, बिहार की बात करें तो आरजेडी हो, महाराष्ट्र की बात हो तो एनसीपी शरद पवार का फैक्शन हो, ये सभी नेता एक साथ हो और कांग्रेस के मुख्यमंत्री एकजुट दिखे। यही वजह है कि उन्होंने अपनी पोस्ट के आखिर में लिखा, ऑल प्रोटेस्ट आर वन हैशटैग यूनिटी। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं कि पिछले कई दिनों में जो प्रदर्शन हो रहे थे आज भी प्रदर्शन चल रहे हैं। हम आपको इस समय अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे 6 अक्टूबर के बाद से राहुल गांधी लगातार मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी जंग को आगे बढ़ा रहे हैं। जिस तरह से 6 अक्टूबर को उन्होंने आकाशवाणी भवन पर औचक धरना दिया, सडनली वो वहां पहुंचे। 7 अक्टूबर को जंतर मंतर मार्च हुआ, 8 अक्टूबर को राजघाट पहुंचे। इसके बाद कल विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकाला और एक याचिका दायर की। इसमें याचिका में 14 खामियां आज सामने आई। आज राहुल गांधी ने अपने आवास पर जो चाय पार्टी दी है यहां पर विपक्ष अपनी अगली रणनीति तय कर रहा है। लेकिन सुनिए इस बैठक के लिए जो नेता जुट रहे हैं उनका आगे की रणनीति को लेकर क्या कहना है। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। मौसमी, लगातार विपक्ष की अगर बात करें तो पहले न केवल नेता बल्कि अब अलग अलग राज्यों से उनके काडर जुट रहे हैं, चाहे राजस्थान से हो, हरियाणा से हो, कांग्रेस का काडर और उनका मनोबल काफी ऊंचा दिख रहा है, तो किस तरह से उनको आगे की रणनीति के लिए तैयार किया जा रहा है।
5: तो
0: देखिए गौरव, पहले तो आपको ग्राउंड पर दिखाते हैं कि हम लोग सुनहरी बाग लेन में खड़े हैं। कुछ महीने पहले हम लोग जब यहाँ पे खड़े थे तो काफी कन्फ्रंटेशन हुआ था, बसें थी, बैरिकेड थे और राहुल गांधी उस बस में सवार थे, आपको याद हो। सड़क पर पुलिस का पहरा था और गांधी स्मृति तक राहुल गांधी गए थे। लेकिन आज रोड पे आप वो तस्वीर दिखाइए कुंज, वहां से लेके यहाँ तक अखिलेश प्रसाद सिंह हम लोग के साथ है, उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से ये देखते हैं, क्या ये दौर अलग है, क्या एक लंबी लड़ाई की तैयारी है, क्या ये सिर्फ आगाज है? अखिलेश,
5: नहीं नहीं, ये बिल्कुल लंबी लड़ाई है। देश का संविधान खतरे में है, जमहूरियत खतरे में है, जनतंत्र लोकतंत्र खतरे में है। तो इस लड़ाई को पहले भी हम लोगों के पुरखों ने लड़ा था ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ और देश को आजादी दिलाई थी। आज SRI के माध्यम से, SIR के माध्यम से 13-14 करोड़ लोगों का नाम वोट से वंचित करने का, वोट के अधिकार से वंचित किया गया। तो इस लड़ाई को तो कांग्रेस पार्टी लड़ेगी चाहे कुछ भी हो।
0: सब लोग यही सवाल पूछ रहे हैं, हम लोग भी आपसे यही सवाल पूछ रहे हैं, आगे क्या? क्योंकि रोज आप लोग कारपेट बॉम्बिंग कर रहे हैं, इधर चले जा रहे हैं, उधर चले जा रहे हैं, अभी यहाँ से तो नहीं चले जाएंगे गृहमंत्री के घर?
5: नहीं, अब ये तो अंदर से जब बाहर निकलेंगे चाय पर चर्चा के बाद जो तय होगा रणनीति उसके अनुसार करेंगे हम लोग। लेकिन CEC का जब तक इस्तीफा नहीं हो जाता है, जब तक SIR पर रोक नहीं लगती है, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी।
0: देखिए आपके फुट सोल्जर्स भी यहाँ पे हैं, विनोद झाकड़ जो है आपके NSUI के अध्यक्ष हैं। तो ये कांग्रेस को ओल्ड स्कूल वाली पार्टी माना जाता था, आजकल जमीन पर आप लोग ज्यादा मेहनत नहीं हो गई आप लोग?
5: कांग्रेस ही जमीनी लड़ाई की पार्टी रही है, कांग्रेस देश के स्वतंत्रता आंदोलन की पार्टी रही है। ब्रिटिश हुकूमत को यहाँ से भगाने का काम कांग्रेस ने किया था, RSS और ये लोग तब मुखबिरी करते थे पुलिस का।
0: राहुल गांधी की स्ट्रेंथ और जो स्टैमिना है, क्या आगे तक चल पाएगी? मतलब 2029 का रण तो बहुत दूर है ना।
5: जब तक रहेगा तब तक राहुल गांधी जी पूरी मजबूती से इस लड़ाई को लड़ते हैं और सभी इंडिया गठबंधन के सभी लीडर उनका साथ दे रहे हैं, कोई उसमें कठिनाई नहीं।
0: अच्छा देखिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यहाँ पे देखिए जो टोपियाँ आपको नजर आ रही है गौरव, ये टोपियाँ झक सफेद हैं, ये सेवा दल है और आजकल सेवा दल को भी नई ऊर्जा मिली हुई है क्योंकि श्रीनिवास जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे अब वो सेवा दल में चले गए हैं और टोपियाँ भी नई है, हाव भाव भी और अंदाज भी बड़ा नया नजर आ रहा है। और ये देखिए जो ट्विटर पे पॉपुलर है, मीडिया में पॉपुलर है, ऊपर से दिखाओ तो शशि थरूर साहब कुछ इस तरह से घिरे हुए आ रहे हैं मीडिया से के पास में। हम लोग वाकई में बाद में आराम से उनसे बात करेंगे, पीछे आ जाओ, बाद में आराम से बात कर लेंगे। पर देखिए शशि थरूर भी आ गए और शशि थरूर वो सांसद हैं जिनको खड़गे साहब ने चुटकी लेके बोला था कि हम लोग कुछ कार्यक्रम करेंगे, तो आप नजर आएंगे कि नहीं नजर आएंगे? तो बर्क साहब भी आ गए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता सांसद। तो किस तरीके से ये दौर है जब वो नेता भी जो ट्विटर और न्यूज़पेपर में ज्यादा पॉपुलर और हिट है खड़गे साहब के मुताबिक, गौरव वो भी है और तमाम घटक दल के नेता भी।
4: तो आगे की रणनीति मौसमी यहाँ पर तय हो रही है और इस लड़ाई को किस तरह से आगे ले जाया जाएगा क्योंकि इसके दो पहलू हैं, संसद, सड़क और अब सुप्रीम कोर्ट। अब अलग अलग पहलुओं पर या अलग अलग मोर्चों पर यह लड़ाई आगे किस तरह से लड़ी जा रही है, क्या कहना है पवन खेड़ा का और अभिषेक मनु सिंघवी का, हम आपको वो भी सुनवाते हैं।
6: हर पिटीशन में हर प्रकार के डिफेक्ट्स का एक चेक होता है, कॉमा, फुल स्टॉप, कागज फीका, फोटोकॉपी फीका, वो जानते हैं ये सब, लेकिन अपनी इग्नोरेंस दिखा रहे हैं। इस प्रकार के बेहुदा ऑब्जेक्शन देखिए, उन्होंने एक भी आपको कुछ बताया एक सब्सटेंस का कोई भी विरोध? ये बोला कि उसमें जो लिखा है वो गलत है, कि ज्ञानेश कुमार जी इतना ये गलत गैर कानूनी काम कर रहे हैं, इस पर कुछ बोला? ये बोला कि कॉमा नहीं है, फुल स्टॉप नहीं, फोटोकॉपी वीक है।
7: फॉर्म 6 के बारे में भी कुछ गलत है सर, 6 के बारे में भी पहले कहा था कि
8: क्या ऑप्शन लेफ्ट बचा है आपके पास?
6: ऑप्शन तो उच्चतम न्यायालय में कानूनी होगा और बाकी ऑप्शन अभियान है, राजनीति, यहाँ पर अलग अलग चीजें हैं, आप देख रहे हैं, हर दिन देख रहे हैं।
9: FIR से डरते हैं क्या?
10: राहुल गांधी के ऊपर
9: करो करो, हम कह रहे हैं अभी एक ही क्या 100 करो। राहुल जी ने तो कहा ये तमगा है, बैज ऑफ ऑनर है, लगाइए जितना बैज ऑफ ऑनर आपको लगता है।
10: सर आज कोई प्लान है क्या?
9: ये तो आजादी का आंदोलन है, उसमें तो जितना दमन होगा हमारे साथ उतना हमारे लिए अच्छा है।
4: तो एक लंबी लड़ाई के लिए इस समय खेमेबंदी चल रही है। अब से थोड़ी देर पहले केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला किया, उन्होंने राहुल गांधी से 10 तीखे सवाल किए और पूछा कि अगर SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिविजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स और चुनावों में इतनी धांधली हुई तो जहां कांग्रेस और उनके सहयोगी की सरकारें हैं SIR के बाद वो इस्तीफा क्यों नहीं देती थी। पीयूष गोयल ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त MS Gill को केंद्रीय कैबिनेट में, कांग्रेस पार्टी ने उन्हें केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किया था, TN Sheshan को कांग्रेस का टिकट दिया था, चुनाव लड़ने पर उन्होंने सवाल खड़े किए कि किसी को पद्म पुरस्कार दिए गए और किसी को चुनाव में खड़ा कराया गया, किसी को मंत्री बनाया गया। सुनिए क्या कहना है पीयूष गोयल का।
11: वो रोज वोट चोरी की बात करते हैं, रोज इलेक्शन कमीशन को बुरा भला बोलते हैं, बुरे बड़े शब्दों में उनका अपमान करते हैं, पर बार बार मांगने के बाद भी एक भी एफिडेविट उन्होंने फाइल नहीं किया इलेक्शन कमीशन में। कुछ प्रमाण दे, कुछ एविडेंस दे, जो वो क्लेम कर रहे हैं उसको ओथ पे क्लेम करके बोले तो सही, एक जिम्मेदारी तो दिखाए अपने झूठे आरोप लगाने के पहले। ये कावड़ की तरह जो उनका बिहेवियर है, एक डरपोक व्यक्ति ही ऐसे शूट करके भाग जाता है बजाय के जिम्मेदारी उठाने के अपने आरोपों की। अगर वास्तव में ये मानते हैं कि इलेक्शन रिग्ड है या इलेक्शन कमीशन ठीक से काम नहीं कर रही है या SIR ठीक नहीं है, तो इनकी चारों कांग्रेस सरकार कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल और केरल और साथ में जो झारखंड और तमिलनाडु की सरकार में शामिल है, इसमें सत्ता का क्या उनको लोभ है। अगर वो सही माने में मानते हैं इलेक्शन कमीशन ने ईमानदार व्यवस्था नहीं रखी है, तो क्यों नहीं रिजाइन करते हैं इनके 6 के 6 मुख्यमंत्री, तुरंत रिजाइन करना चाहिए। और ये कई लोग ये बात रख रहे हैं कि कांग्रेस तय करे, ऐसा नहीं हो सकता है जहां जीते वहां तो सही काम हुआ, वहां इलेक्शन कमीशन ने पक्षपात नहीं किया, और जहां हारे वहां SIR को गाली देना।
4: तो शूट एंड स्कूट यानी आरोप लगाओ और भाग जाओ, जो आरोप पीयूष गोयल इस समय कांग्रेस पर लगा रहे हैं उसी तर्ज पर कांग्रेस और जो कांग्रेस का छात्र संगठन है इस वक्त देश की राजधानी में उनके औचक प्रदर्शन कभी इधर तो कभी उधर हो रहे हैं। अब से जैसे थोड़ी देर पहले कांग्रेस का जो छात्र संगठन है NSUI, उसने कनॉट प्लेस में एक फ्लैश प्रोटेस्ट किया, मौके पर मौजूद पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने उन्हें तुरंत काबू में किया, तो कुछ देर के लिए अफरा तफरी मची, ट्रैफिक कुछ समय के लिए रुका। इस दौरान वहां आज तक संवाददाता अनमोल बाली मौजूद थे, देखिए उनकी एक ग्राउंड रिपोर्ट।
12: हमें अब दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस देख रहे हैं मेरे पीछे, जहां NSUI जो कांग्रेस की छात्र इकाई है उनका धरना प्रदर्शन चल रहा है। CEC गणेश कुमार के खिलाफ, SIR के खिलाफ जो कांग्रेस का पिछले एक हफ्ते से धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसी बीच लेफ्ट की पार्टीज भी जो देखा जा रहा है कि दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस को प्रदर्शन का स्थल बना रही है। देखा जाता है देर देर तक जो है लेफ्ट की पार्टीज जो है अपना यहाँ पर फ्लैश प्रोटेस्ट बुलाती है, उसी बीच तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो NSUI कांग्रेस की छात्र इकाई है उनके जो कुछ कार्यकर्ता थे यहाँ ए ब्लॉक के पास इकट्ठे होते हैं, हाथ में झंडे और तख्तियां लेकर यहाँ पर वो पहुंचते हैं। और आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि जो NSUI का फ्लैश प्रोटेस्ट है यहाँ पर चल रहा था, पर देख सकते हैं भारी संख्या में कैसे यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेज और दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं यहाँ पर तैनात कर रखे हैं ताकि जो इन कार्यकर्ता इनको डिटेन कर लिया जाए, और बहुत से कार्यकर्ताओं को यहाँ से डिटेन कर लिया गया है, बस में भरकर इनको जो है डिटेंशन सेंटर लेके जाया जाएगा। और पहली बार नहीं, पिछले 3 से 4 दिन से देखा जा रहा है कि जो लेफ्ट के जो लोग हैं वो भी प्रदर्शन करें, ISA, AISF, SFI जैसे जो छात्र संगठन है वो भी अपना धरना प्रदर्शन करें। उसी बीच कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI का दिल्ली के कनॉट प्लेस में SIR और CEC गणेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी। आपको मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि कैसे जो NSUI के कार्यकर्ता हैं उनको यहां पर डिटेन किया जा रहा है, भारी मात्रा में पैरामिलिट्री के जवान है, दिल्ली पुलिस के जो जवान है, महिला पुलिस फोर्सेज यहां पर लगा रखी है ताकि जो महिला प्रदर्शनकारी है उनको भी डिटेन किया जाए। तो CEC गणेश कुमार और SIR के मुद्दे को लेकर देखा जा रहा है राजनीति गरमाई हुई है, जहां एक तरफ तो विपक्षी दलों का सड़कों पर विरोध प्रदर्शन जारी और वहीं भारतीय जनता पार्टी का, दूसरी तरफ विपक्षी दलों पर बड़ा आरोप कि आप इस मामले को लेकर राजनीति कर रहे हो। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ अनमोल बाली की दिल्ली से रिपोर्ट।
4: मौसमी सिंह मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मौसमी, जिस तरह से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 10 तीखे सवाल पूछे कि अगर कांग्रेस को लगता है कि यह सारी प्रक्रिया गैर कानूनी है तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे देते, वो भी तो इसी प्रक्रिया से चुनकर आए हैं, क्या कांग्रेस इस पर अपनी सफाई दे रही है?
0: बिल्कुल, देखिए सियासी रूप से लगातार इमरान मसूद इस पर बहुत वार करते आए हैं और जैसे कि मैं बता रही थी कि अभी भी सांसदों का और तमाम जिनको न्योता मिला है उनके आने का सिलसिला पीछे आप देख रहे जारी है। इमरान साहब यहां पे गृह मंत्री कह रहे हैं कि अगर इतना ही यही बात है तो फिर कांग्रेस के मुख्यमंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे देते, उनको लगता है कि इतनी धांधली हो रही है, वोट चोरी हो रही है।
13: प्रधानमंत्री से इस्तीफा दिलाओ, सारे सब देंगे इस्तीफा। प्रधानमंत्री से दिलाओ इस्तीफा, प्रधानमंत्री इस्तीफा दें और पूरे देश में तुम्हारा चुनाव दोबारा कराओ।
0: आप देंगे बतौर सांसद? आप देंगे?
13: हाँ देंगे इस्तीफा। प्रधानमंत्री से दिलाओ इस्तीफा, भी इस्तीफा दूंगा। दिलाओ प्रधानमंत्री से इस्तीफा, अभी इस्तीफा दूंगा।
0: तो ये कहाँ रुकेगी बात, ये तू तू मैं कहाँ रुकेगी?
13: कोई तू तू मैं नहीं है। जब तक ये लूट के ऊपर लूट तंत्र जो बना लिया है, हम इसे उखाड़ के नहीं फेंकेंगे तब तक ये रुकेगा नहीं।
0: पर यहाँ पे बीजेपी कह रही है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, आप लोग वोट चोरी कर रहे हैं, कितने राज्यों में आपका सूखा है, अकाल है, चुनाव जीत नहीं पाते तो किसान बिलैया खंबान हो।
13: कह तो रहा हूँ, ये चुनाव जीत रहे हैं ना जिस तंत्र से, उस तंत्र को उखाड़ फेंकेंगे। और ये जो कैसीनो होते हैं ना, ये कैसीनो में पहले पैसा निकाल जिता देते हैं और फिर उसके बाद हराना शुरू करते हैं और जब जेब खाली हो जाती है वो बेचारा दिवालिया होके भागता है, ये इस देश का हाल होना है।
0: तो आप कहा
4: मौसमी, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, ताजा जानकारी के लिए फिर आपके पास लौटेंगे। इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है, क्या है कांग्रेस और विपक्ष के इंडिया गठबंधन की अगली रणनीति, यह खबर ब्रेक के बाद, देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
14: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आगे आगे
3: उधर
2: करेक्ट करेक्ट
4: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार सर एक बार दो धमका लगाने बस।
6: मेरे पास एक आइडिया है।
5: क्या?
6: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा TMT बार से जो बना है,
7: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता,
8: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा TMT से बना है।
9: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही TMT बार से बना है।
10: कौन सी बनानी है?

0: SBI Celebrations Unlimited. इस festive season को बनाए special car loan, personal loan, gold loan और loan against mutual funds पे special offers के साथ.
1: माँ के पैरों की धूल माथे पर ले, मैं परिंदा खुले आसमान जहाँ जीत रू सारा.
2: वक्त के साथ कदम मिलाकर सेनको ने नए टेक्नोलॉजीज भी अपनाए, पर बिना अपने रूट्स को भूले.
3: जिन रूट्स की बुनियाद है 100% प्योर गोल्ड, ऑनेस्ट प्राइसिंग, कस्टमर फर्स्ट एटीट्यूड
4: एंड सेनको सपोर्ट्स एनवायरमेंट केयर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट.
5: एक परिवार, अटूट भरोसा.
6: बच्चों के लिए अलग टीवी रूम बना सकते हैं.
7: कैसा लगा आप दोनों को अपना ड्रीम होम?
8: आई लव इट, एब्सोल्युटली अमेजिंग. तुम एक काम करो, तुम मिठाई ऑर्डर कर लो.
9: मिठाई से पहले कुछ और हो जाए
8: क्या?
9: इनकी राय.
10: नई सोच की नींव में हम, हर नई उम्मीद में हम. गैलेंट, निर्माण का रियल हीरो.
11: हाउस द हॉस्टल सेटल्ड?
12: यस मैम, रियली नाइस.
11: कोई आ रहा है क्या?
13: तुम मॉम डैड वाली ड्यूटी तो निभा ली, अब फिर से थोड़ा रोमांस ले.
11: मयंक, फॉर रियल?
13: वन कैरेट फॉर माय वन ट्रू लव. Natural Diamond Real Love Solitaires to reignite your new season of love.

0: in association with Canara Bank. Together we can.
1: Anmol Biscuits. Swad jo banaye har pal anmol. Signature finest cardamom seeds. E3 HDMR. Ye rishta lamba chalega.
2: बिजनेस सिर्फ स्टॉक मार्केट का नाम नहीं है, ये है आपके पैसे की बात,
3: आपके बिजनेस की बात और उन डिसीजंस की बात जो आपके कल को इम्पैक्ट करते हैं।
4: मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सा बिजनेस ग्रो कर रहा है,
2: इकोनॉमी में क्या बदल रहा है और इसका असर आप पर क्या होगा। हर ट्रेंड, हर अपडेट,
4: हर अपॉर्चुनिटी
3: एक जगह।
5: बिज तक, बिजनेस की हर बात सीधी आप तक।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: वक्त के साथ कदम मिलाकर सेनको ने नए टेक्नोलॉजीज भी अपनाए, पर बिना अपने रूट्स को भूले।
1: टिन रूट्स की बुनियाद है 100% प्योर गोल्ड, ऑनेस्ट प्राइसिंग, कस्टमर फर्स्ट एटीट्यूड
2: एंड सेनको सपोर्ट्स एनवायरमेंट केयर और वुमेन एम्पावरमेंट।
3: एक परिवार, अटूट भरोसा।
4: बच्चों के लिए अलग टीवी रूम बना सकते हैं।
5: कैसा लगा आप दोनों को अपना ड्रीम होम?
6: आई लव इट, एब्सोल्युटली अमेजिंग। तुम एक काम करो, तुम मिठाई ऑर्डर कर लो।
7: मिठाई से पहले कुछ और हो जाए
6: क्या?
7: इनकी राय।
8: नई सोच की नींव में हम, हर नई उम्मीद में हम। गैलेंट, निर्माण का रियल हीरो।
9: सर, एक इंफॉर्मेशन शेयर करना, थोड़ा अनफॉर्चुनेट है, बट सॉरी फॉर दैट। आपकी किरानी मदर का नेट गेम, इसी के लिए आप जैसा बोलोगे बता दो कैसे आपका पैसे।
10: अभी इंफॉर्मेशन है,
11: दिल्ली पुलिस के इस वीडियो को जरा गौर से देखिएगा।
9: इंफॉर्मेशन शेयर करना,
11: दिल्ली पुलिस ने इसे सबूत के तौर पर पेश किया है। ये साबित करने की कोशिश की है कि अभिजीत दीपके को दादी की मौत की जानकारी पूरी संवेदनशीलता से दी गई थी।
10: बस, फ्लाइट वगैरह जो भी है हम आपको अरेंज करवा देंगे।
11: और उन्हें ये प्रस्ताव भी दिया गया था कि अगर वो जाना चाहें तो उनके लिए ट्रांसपोर्ट का इंतजाम किया जा सकता है।
10: सर, ऐसा है कि आपने अपना अगर माइंड मेकअप किया हो, अगर आपको भी अगर आपकी ग्रैंड मदर के उसमें फंडल में अगर जाना है, बस जो भी ट्रांसपोर्ट मतलब बस फ्लाइट वगैरह जो भी है हम आपको अरेंज करवा देंगे।
12: yes,
10: आप यहीं रुकेंगे?
12: yes,
10: जाना नहीं चाहते?
12: yes,
10: okay.
11: दिल्ली पुलिस का ये भी दावा है कि दीपके को अपने परिवार वालों से बातचीत करने की सुविधा दी गई थी। ये भी कहा गया था कि अगर वो अपने पिता से बातचीत करना चाहे तो इसकी भी व्यवस्था की जा सकती है, लेकिन दीपके ने खुद इनकार कर दिया।
10: और सेकंड थिंग ये है कि अगर आप अपने किसी फैमिली मेंबर से बात करना चाहते हैं तो वो कि हम एक व्यक्ति से जिससे भी आप बात करना चाहते हैं तो हम आपको अपने ऑफिशियल मेंबर से बात करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो नंबर नोट करके दे दीजिए। फादर का तो नंबर आप
12: फादर से बाद में कर पाऊंगा।
10: ठीक है, लेट्स सी।
11: ये तो तस्वीर का एक पहलू है, दूसरी तरफ दीपके का कुछ और ही कहना है। दीपके का कहना है कि उन्होंने अपना फोन मांगा था अपने चचेरे भाई का नंबर निकालने के लिए, लेकिन पुलिस ने फोन देने से इनकार कर दिया।
13: दिल्ली पुलिस ने आकर मुझे बताया कि मेरी दादी का देहांत हो चुका है। उसके बाद मैंने दिल्ली पुलिस को बोला कि मुझे मेरा जो गाँव में मेरा कजन रहता है उसको फोन लगाने दीजिए, मेरा फोन दो मिनट के लिए लाकर दे दीजिए। उन्होंने बोला फोन नहीं लाकर दे सकते, आप नंबर बताइए। मैंने बोला मुझे नंबर याद नहीं मेरे कजन का, तो आप फोन दो मिनट के लिए लाकर दे दीजिए, मैं उसमें से नंबर निकाल कर दे देता हूँ आपको। फिर भी उसके बाद भी उन्होंने मुझे फोन दिया नहीं।
11: दीपके का ये भी आरोप है कि पुलिस ने उनसे अपने पिता से सुबह 3:30 बजे बातचीत करने के लिए दबाव डाला और ये कहने को कहा कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।
13: दिल्ली पुलिस ने मुझे तब भी फोन नहीं दिया। रात के 3:30 बजे दिल्ली पुलिस आकर कहती है तुम्हारे माँ बाप को फोन लगाओ और बताओ तुम गिरफ्तार हो चुके हो, क्या इंटेंशन है इसके पीछे। रात के 3:30 बजे मुझे उठाकर कहते हैं तुम्हारे माँ बाप को भी फोन लगाकर उठाओ और उन्हें बताओ तुम गिरफ्तार हो चुके हो। मैंने बोला आपने ये दिन भर क्यों नहीं बोला मेरे माँ बाप को कि मैं गिरफ्तार हूँ, कहाँ पर गिरफ्तार करके रखा है, दिन भर क्यों नहीं बताया आपने? आप रात के 3:30 बजे मुझे क्यों बोल रहे हो, सुबह तक का इंतजार क्यों नहीं कर रहे हो?
11: तो इस कहानी में दीपके के अपने आरोप हैं और दिल्ली पुलिस की अपनी सफाई। सवाल ये है कि इन दोनों में कौन सच्चे हैं, अभिजीत दीपके या दिल्ली पुलिस? आज तक ब्यूरो।

0: दिल्ली पुलिस तुम लट्ठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं।
1: पहले भरपेट भोजन, बाद में आंदोलन।
2: डोंट ट्विस्ट।
0: क्या हुआ?
2: डोंट ट्विस्ट लप से।
0: हर आदमी में
2: होते हैं 10-20 आदमी, जब भी देखियो गौर से देखियो।
1: कितना घटिया था यार।
2: लप लप लप।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

तीखे सवाल। दिल्ली में राहुल गांधी के आवास पर इंडिया गठबंधन के दिग्गजों का जुटान, एसआईआर सीसी के खिलाफ मंथन, चाय पर चर्चा के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। जेएनयू यौन उत्पीड़न केस में बर्खास्त प्रोफेसर और कांग्रेस सांसद के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, राष्ट्रपति से महिला सांसदों की गुहार, गिरफ्तारी और सदस्यता रद्द करने की मांग। पंजाब के मानसा में ड्रग माफिया बेकाबू, नशा विरोधी एक्टिविस्ट परविंदर झोटा की ऑन कैमरा गोली मारकर हत्या, बोला विपक्ष कसाई खाना बन चुका है पंजाब प्रदेश।

0: कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। अब वो अपनी अगली रणनीति तय कर रहे हैं और इस वक्त लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के सरकारी आवास पर इंडिया गठबंधन के नेताओं की, विपक्षी सांसदों की, छात्र संगठनों की और सिविल सोसाइटी के लोगों का इकट्ठा होना शुरू हो गया है, क्योंकि 5 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक होगी जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक इस बैठक में विपक्ष यह तय करेगा कि आगे किस तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का विरोध करना है, संसद में भी, सड़क में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। बैठक के बाद विपक्षी नेता मीडिया से बात करेंगे और बताएंगे कि उनकी अगली रणनीति क्या है। हालांकि सरकार की ओर से लगातार और भारतीय जनता पार्टी लगातार यह कह रही है कि देश विरोधी ताकतें एकजुट हो रही हैं और विदेशी दबाव में कुछ ऐसी विदेशी शक्तियां हैं जो भारत को सशक्त होते नहीं देखना चाहती, और ऐसी ही विदेशी ताकतों के दबाव में इस समय ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही है। मौसमी, एक लंबी लड़ाई की तैयारी विपक्ष तो कर रहा है, लेकिन ये जो आरोप लगातार सरकार की तरफ से लग रहे हैं कि ये विदेशी दबाव में हो रहा है उस पर, और या इस समय डीके शिव कुमार भी हम देख सकते हैं इन तस्वीरों में। मौसमी,
1: I just left this space. People were very strong. I fell down. So Rahul Gandhi was advising me, DK, be slow. Nothing. Why he will push me? No. He asked me to go to the vehicle, to stand in the vehicle.
2: Result. Karnataka BJP is saying insult.
1: No. They care. Karnataka BJP loves me, no. They love me a lot. That is why.
2: So, yeah, DK Shiv Kumar, Gaurav, bada bayan DK Shiv Kumar ka, ki Rahul Gandhi unko advise kar rahe the ki main aap truck mein chale jaiye, yahan aapko dhakka lag jayega, aur jis tarike se BJP keh rahi hai ki Rahul Gandhi ne apmaan kiya Karnataka ke mukhyamantri ka, ye sarasar galat hai. Rahul Gandhi unko ulta, hum log aaj tak se khas baatcheet mein DK Shiv Kumar ye kehte hue, hum dobara replay kar sakte hain agar aap chahein उनका वो बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि हमें ट्रक में जाने के लिए कह रहे थे राहुल गांधी, जिस तस्वीर को बीजेपी वायरल कर रही है।
0: मौसमी, ये पहली सफाई डीके शिवकुमार की सामने आई है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री की जो पहली सफाई है, और मेरी सहयोगी मौसमी सिंह से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने उन्हें धक्का नहीं दिया था। राहुल गांधी तो ये कह रहे थे कि आप सुरक्षित जाकर, आप इतना तेज मत चलिए, आप सुरक्षित जाकर बस में बैठ जाइए। एक तरह से कांग्रेस पार्टी का बड़ा शक्ति प्रदर्शन, और जिस तरह से मौसमी बीजेपी विरोध कर रही थी, या बीजेपी ये कह रही थी कि राहुल गांधी केवल परिवारवाद को देखते हैं, पार्टी तक को नहीं देते, उसका जवाब आपके जरिए आया है मौसमी।
2: बिल्कुल गौरव, हम चाहेंगे कि दोबारा उनका वो इंटरव्यू प्ले आउट हो। जैसे ही डीके शिवकुमार उतरे हैं, हम लोग ने उनसे पूछा, क्योंकि वो एक संवैधानिक पद पे हैं और राहुल गांधी संविधान की बात कर रहे थे, बीजेपी लगातार उस वीडियो को दिखा रही है जहां ऐसा प्रतीत होता है कि डीके शिवकुमार को धक्का देके राहुल गांधी खींच रहे हैं और उनको साइड कर रहे हैं, तो डीके शिवकुमार ने उस पर बयान दिया है और ये बड़ा बयान है। मुस्कुराते हुए कहा, नो बीजेपी मुझे प्यार करती है। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी ने मुझे कोई धक्का नहीं दिया, वो मुझे कह रहे थे आप ट्रक में बैठिए जाके, बहुत धक्का मुक्की हो रही थी और उल्टा राहुल गांधी मुझे सेफ रहने की सलाह दे रहे थे।
0: मौसमी, रहिए मेरे साथ, अमित भारद्वाज भी जुड़ रहे हैं। ये वार और पलटवार दोनों तरफ से अमित जबरदस्त चल रहा है। जिस तरह से पीयूष गोयल ने कहा कि संविधान की दुहाई देने वाली कांग्रेस पार्टी पहले ये सफाई तो दे कि नवीन चावला को मुख्य चुनाव आयुक्त कैसे सोनिया गांधी ने बनवाया, या कैसे एमएस गिल को पद्म विभूषण दिया गया, सांसद बनाया, राज्यसभा का केंद्रीय मंत्री बनाया, संविधान की दुहाई देने वाले सीईसी का इस्तेमाल तो खुद कर रहे थे, इस आरोप पर क्या कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की कोई सफाई आ रही है?
3: गौरव, देखिए फिलहाल जवाब तो नहीं आया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन मुझे लगता है कि अपने सेट एजेंडा से बियॉन्ड भी जाने की कोशिश नहीं करेगी। वो सीसी ज्ञानेश कुमार के मुद्दे पर टिके रहना चाहते हैं और वो इस बात को जो हम कह रहे थे बीते एक हफ्ते से कि इंडिया गठबंधन की स्ट्रैटेजी बड़ी क्लियर है कि अग्रेसिवली दिल्ली में पॉलिटिक्स करनी है, इस पे विरोध प्रदर्शन करना, और इसके बाद जो सेकेंड फेज होगा कि ये नैरेटिव ट्रिकल डाउन करे आम आदमी तक, यानी कि देश भर में गाँवों में जो कस्बे हैं जिले हैं वहां पर आम आदमी के मन में अगर एक संशय भी आ जाता है इलेक्शन कमीशन को लेकर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को लेकर, तो भी उनको लगेगा कि उनका कैंपेन सक्सेसफुल है। तो इस लिहाज से भी चीजें जो नैरेटिव है जहां तक जो कैंपेन है उसी डायरेक्शन में आपको जाता हुआ दिखाई देगा। निश्चित रूप से बीजेपी की तरफ से जो है वो पलटवार हो रहा है, अटैक हो रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद मुझे दिखाई दे रहे हैं, प्रिया सरोज हैं, और साथ में सर चलते चलते आज मीटिंग में आप लोग जा रहे हैं, एजेंडा क्या रहेगा, कैंपेन इसी तरह से चलता
4: इस्तीफा एजेंडा है, लोकतंत्र को बचाना है, सबको पता है, पूरा देश इसके लिए तैयार है।
3: बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने अपने टाइम पे सीसी को जो है वो पद्म विभूषण दिया था, क्या इस पे भी कुछ कहना चाहेंगे आप? बीजेपी कह रही है कि आप लोग हिपोक्रेसी है आपकी बात में, कांग्रेस पार्टी ने अपने दौर के सीईसी को पद्म विभूषण दिया था।
4: देखिए चोरी किसने की है, लोकतंत्र को लूटने का काम किसने किया है, पूरे देश के सामने सार्वजनिक हो गया, सिर्फ विपक्षी पार्टी नहीं आम जनता भी अब सड़कों पे है, उनको डिटेन किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, लोकतंत्र को बचाने के लिए पूरा हिंदुस्तान एक हो गया।
3: तो समाजवादी पार्टी के सांसद थे वो कह रहे हैं कि देखिए हमने तस्वीरें देखी हैं आखिरकार प्रदर्शनकारियों के साथ क्या हुआ, जैसा मैं कह रहा था इंडिया गठबंधन अपने एजेंडे से आपको हटता हुआ नहीं दिखाई देगा। गौरव
0: रहिए मेरे साथ, चर्चा हम जारी रखेंगे। इस बीच जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से बर्खास्त किए गए प्रोफेसर बिमोल ओकाइजम जो कांग्रेस पार्टी के सांसद भी हैं, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसदों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। प्रोफेसर ओकाइजम पर जेएनयू की 11 छात्राओं के साथ कथित रूप से यौन उत्पीड़न का आरोप है। इन आरोपों की जांच जेएनयू की ओर से गठित की गई एक समिति ने पॉश एक्ट यानी प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट के तहत जांच की और उन्हें दोषी पाया। 9 अक्टूबर को उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। विवाद ने इस वजह से तूल पकड़ा क्योंकि वो मणिपुर से लोकसभा के सांसद भी हैं। भारतीय जनता पार्टी अब यह प्रश्न उठा रही है कि महिलाओं के हक की बात करने वाले और स्मैश पैट्रियार्की की बात करने वाले राहुल गांधी अपने सांसद को पार्टी से कब बर्खास्त करेंगे। आज बीजेपी की महिला सांसदों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर बिमोल ओकाइजम के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।
5: डॉक्टर बिमोल ओकाइजम और जो मणिपुर से कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने जेएनयू की हमारी महिला 11 युवतियों के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार किया था उसकी लिखित में शिकायत उन बच्चियों ने किया था, और एक आंतरिक कमेटी ने उसकी जांच बिठाई और आंतरिक कमेटी के जांच में ये सच्चाई पाया गया कि वो अपराधी है, दोषी है, उसको वहां से बर्खास्त भी किया गया है।
6: बीजेपी महिला सांसद और कार्यकर्ता राष्ट्रपति से मिलकर बाहर आ चुके हैं और अब बस में बैठकर वापस बीजेपी मुख्यालय की तरफ महिला सांसद जा रही है। हमारे साथ एनसीडब्ल्यू की पूर्व चेयरपर्सन और बीजेपी राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा जी हैं। मैम आपकी मुलाकात हुई राष्ट्रपति जी से, क्या बात हुई, क्या आपने मांग रखी, उन्होंने क्या आश्वासन?
7: देखिए मांग हमारी वही थी कि जो डॉक्टर बिमल है उनके अगेंस्ट प्रूवन है कि 11 महिला बच्चियों को उन्होंने सेक्सुअली हैरेस किया और उनको निकाल दिया गया जेएनयू से, लेकिन आज भी वो एमपी बने हुए हैं और उनको एमपीशिप की बर्खास्त किया जाए और उनको हटाया जाए, यही डिमांड थी हमारी से।
6: क्या आश्वासन आपको मिला इसमें?
7: देखिए उन्होंने कहा आई विल सी अकॉर्डिंग टू द लॉज क्या स्टेप ले सकती हूँ और मैं देखूंगी कि क्या बनता है इसमें, वो वैसे ही लेंगे।
0: और अपने ऊपर लगे बेहद गंभीर आरोपों पर कांग्रेस पार्टी के सांसद ओकाइजम ने भी अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर जितने भी आरोप लगे थे वो बेबुनियाद हैं। उन्होंने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया और कहा कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पर किसी खाप पंचायत की तरह फैसला उन्होंने सुनाया है, इसका उन्होंने आरोप मढ़ा।
8: No, this is nothing but harassment. They know that once this khap panchayat style of doing by JNU, if it is challenged in a court of law, the court will take notice of the complete disregard for norms and rule and regulations. And BJP is using this because I know that I have spoken out. They expect Manipur or the Northeast in general to be silent, docile, and you know, submissive and all that. I'm not used to that one. I said I have asked for 6 more marks. Even in their leak allegation, is it there? It is not there. It's not in the complaint. And they're saying 11. There are 15 of them out of 97 students, including 3 boys. Our boys can be complaining under POS Act. Ask the JNU authorities, anybody. And, you know, this kind of complete mockery of a system which is established in order to protect the and do gender justice.
0: और इस सफाई के बावजूद भारतीय जनता पार्टी हमलावर बनी हुई है. सुनिए बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने अब से थोड़ी ही देर पहले इस मुद्दे पर क्या कहा.
2: एक इंटरनल कमिटी ने गिल्टी पाया 11 छात्राओं की कंप्लेंट पर बिमल अकोइजम के खिलाफ. जितनी भी एलिगेशन सेक्सुअल हैरेसमेंट की थी उनमें सच्चाई पाई और इसीलिए उनको नौकरी से बर्खास्त करा. उस पर भी चुप्पी साधे हुए हैं राहुल गांधी.
0: अच्छा, इस बीच आज सवेरे कांग्रेस जनता पार्टी के 3 नेता अचानक जंतर मंतर पहुंच गए. आशुतोष रांका, सौरव दास, अजिंक्य शिंदे, वो दबे पांव पीछे के रास्ते से जंतर मंतर के पास पहुंचे. वहां लगा एक गेट था, उसे फांदकर वो अंदर चले गए और वहां नारेबाजी शुरू की. आप इन तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि सबसे पहले अजिंक्य शिंदे गेट को फांदते हैं, फिर आशुतोष रांका उनके पीछे, फिर सौरव दास और कुछ और सीजेपी के कार्यकर्ता और नेता. अंदर पहुंचते ही उन्होंने नारेबाजी की. वहां तैनात दिल्ली पुलिस पहले तो चौंक गई, लेकिन तुरंत ही उन्होंने हालात को और इन नेताओं को काबू किया. आशुतोष रांका, सौरव दास और अजिंक्य शिंदे समेत सभी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया है. एक छोटा सा ब्रेक, देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक.

दिल्ली की सियासत में ये दूसरा मोर्चा है। कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोईजाम के खिलाफ ये गुस्सा फूटा है। कांग्रेस दफ्तर के बाहर बीजेपी की महिला मोर्चा ने कांग्रेस सांसद के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी कांग्रेस सांसद की गिरफ्तारी की मांग करते रहे। इस प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के निशाने पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी रहे।

0: दिल्ली की सियासत में ये दूसरा मोर्चा है। कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोईजाम के खिलाफ ये गुस्सा फूटा है। कांग्रेस दफ्तर के बाहर बीजेपी की महिला मोर्चा ने कांग्रेस सांसद के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी कांग्रेस सांसद की गिरफ्तारी की मांग करते रहे। इस प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के निशाने पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी रहे। इनर मणिपुर से कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोईजाम पर जेएनयू की 11 छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल अकोईजाम जेएनयू में प्रोफेसर थे। वहां की 11 छात्राओं ने उन पर यौन शोषण जैसे गंभीर इल्जाम लगाए। तमाम आरोपों के बाद जेएनयू ने आंतरिक जांच बिठाई। इस जांच में अकोईजाम पर तमाम आरोप सही साबित पाए गए। उसी रिपोर्ट के आधार पर जेएनयू ने 9 अक्टूबर को प्रोफेसर पद से उन्हें हटा दिया। उसके दो दिन बाद यानी 11 अक्टूबर को आरोपी कांग्रेस सांसद के खिलाफ अलग अलग धाराओं में FIR भी दर्ज करा दी। दिल्ली पुलिस के FIR दर्ज करते ही कांग्रेस सांसद के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कांग्रेस पर हमला बोला।
1: हमारे 9 अक्टूबर को 2026 को बिमल अकोईजाम जो कांग्रेस के सांसद हैं, उनके खिलाफ बहुत संगीन सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोपों में तथ्य पाए गए और इसीलिए जेएनयू की इंटरनल कमिटी ने उनको तुरंत नौकरी से बर्खास्त करा। बहुत अजीब बात है कि इस पर चुप्पी साधे हुए हैं राहुल गांधी जी भी, माननीय प्रियंका गांधी जी भी, खड़गे जी भी और माननीय सोनिया गांधी। पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी ने कोई डिसिप्लिनरी एक्शन इनिशिएट नहीं करा। इसीलिए मैं आज पूछना चाहती हूँ उनसे, राहुल गांधी जी, क्या स्मैश द पेट्रियार्की आपके लिए केवल एक चुनावी जुमला है, केवल एक पॉलिटिकल रेटोरिक है?
0: बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने दिल्ली में बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं पर हमले के आरोप भी लगाए। जेएनयू के प्रोफेसर रहे कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोईजाम के खिलाफ सियासी संग्राम सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, देश के अन्य हिस्सों में भी बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी जगहों से गिरफ्तारी की मांग उठी है, लेकिन कांग्रेस अपने सांसद पर लगे गंभीर आरोप और दर्ज FIR को लेकर अब तक तमाम आरोपों को लेकर चुप है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और पीयूष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
2: ये कौन से संविधान में लिखा है? क्या कभी चीफ जस्टिस किसी मोर्चे को सामने जाते हैं? मैं ये मानता हूँ कि जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है वो बिल्कुल सही है। आपको ग्रीवियंस है, आप कोर्ट आइए, कोर्ट में लड़िए। मैं जो बार बार कहता हूँ कि इनका संविधान पर विश्वास नहीं है, संविधान विरोधी लोग है, इन्होंने प्रूव कर दिया। जब ये मोर्चा लेकर जाते हैं और चीफ जस्टिस ने लॉफुली वाइल डिस्चार्जिंग हिज कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज, संवैधानिक उनको जो ड्यूटीज दिए उसका डिस्चार्ज करते हैं, उन्होंने कहा कि मैं किसी मोर्चे को नहीं मिल सकता, तो उनके खिलाफ भद्दी भद्दी गालियां ये लोग कह रहे हैं। ये भारत की संस्थाओं को, न्यायिक संस्थाओं को डिमोनाइज करना चाहते हैं। ये लोगों का विश्वास उनमें से उड़ जाए, इस प्रकार का षड्यंत्र कर रहे हैं।

0: दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं।
1: पहले भरपेट भोजन, बाद में आंदोलन। डोंट ट्विस्ट।
0: क्या हुआ?
1: डोंट ट्विस्ट लप से।
0: हर आदमी में
2: होते हैं 10-20 आदमी, जब भी देखियो गौर से देखियो।
1: कितना घटिया था यार।
2: लप लप लप।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: आ गया सोमवार और आ गए
3: चकमक चाचा।
2: आ चाचा अखबार भाँच रहे हैं।
4: टेस्ट
2: चल रहा है, भैया के चले गए, दीदी पहुंच गई है, चिचा कब जाएंगे?
4: अरे भैया प्रोटेस्ट उटेस्ट में हिस्सा ले लेते हैं, ये सब तुम लोग का ऐसा, हम अपना मुद्दा उठा चुके
2: पुराने। अच्छा कब उठाए?
4: जेपी के टाइम पे मुद्दा उठाए।
2: अच्छा
4: हाँ, तो जहाँ वो मुद्दा जब हम ऐसा रख देते थे तो फिर रख देते थे फिर मुद्दा। ये नहीं तुम लोग इधर आए तो मतलब पुलिस आई इधर भागने लगे दन दन दन दन कर गया, ऐसा नहीं, ये सब नहीं था अपना मामला
5: जी,
4: मुद्दा मजबूती से रखते थे।
2: हम तो सुने मुद्दा टूटा भी है आपका।
4: टूटा भी था, सही बात है, जब कभी ऐसे कार्रवाई चलती थी दर्द होता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन फिर मुद्दा रखे थे हाँ एकदम मुद्दा मजबूती के साथ रखे, सरकार हिला दिया एकदम।
2: अच्छा
4: और क्या
2: आपका मतलब, हम लोग डर जाते हैं?
4: और क्या डर जाते हैं, बिल्कुल जहाँ पुलिस सिटी में बचे उसमें भागने लगते हो।
2: बढ़िया, आप डरते नहीं है, पुलिस आ रही है।
4: किधर?
2: चाचा हम खेल गए अब की।
6: अनिश्चितताओं से भरी इस दुनिया में भारत रिलायबिलिटी और स्टेबिलिटी का विश्वास देता है। इस साल अप्रैल जून क्वार्टर में भारत की ग्रोथ रेट 7.8% रही है और यह ग्रोथ मजबूत नींव पर खड़ी है। 12-13 साल पहले भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट जीडीपी के 4% से भी अधिक था, पिछले साल यह घटकर लगभग आधा प्रतिशत यानी 0.61% रह गया है। आज हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $700 बिलियन से अधिक है। हमारा बैंकिंग सिस्टम अनेक देशों में सबसे मजबूत स्थिति में है। साथियों, इसी मजबूती का परिणाम है कि भारत की सॉवरेन रेटिंग्स अपग्रेड की जा रही है। साथियों, आप सभी जानते हैं भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। भारत में 100 से ऊपर भाषाएं हैं, करीब 80,000 रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पब्लिकेशंस हैं, 1,000 से ज्यादा सैटेलाइट टीवी चैनल्स हैं और इतना ही नहीं, सोशल मीडिया के इस दौर में भारत में 500 मिलियन से अधिक यूट्यूब यूजर्स हैं, 500 मिलियन से ज्यादा इंस्टाग्राम यूजर्स हैं। हमारे यहां अलग अलग मुद्दों पर खुलकर बहस होती है, अलग अलग दृष्टिकोण पर जनता चर्चा करती है और वर्तमान समय में इसमें जिसने एक बड़ी भूमिका निभाई है वो है डिजिटल पावर।

0: क्या योगी को चैलेंज करके फंस गए अखिलेश? सीएम योगी ने स्वीकार की अखिलेश की चुनौती। पवन का नाम आगे कर अखिलेश ने पलट दी बाजी। जैसे जैसे यूपी का विधानसभा चुनाव पास आता जा रहा है, वैसे वैसे जुबानी जंग तेज होती जा रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती को स्वीकार करते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को ही अयोध्या के सियासी रण क्षेत्र में उतरने और चुनाव लड़ने का चैलेंज दे दिया।
1: सुनने में आ रहा है उन्हें अयोध्या में कोई नया प्रत्याशी ही नहीं मिल पा रहा है, और जो बड़े बड़े दावे करते हैं और जो बड़े बड़े दावे करने वाले मुख्यमंत्री अगर इतना ही अस्वस्थ हैं तो खुद अयोध्या से चुनाव लड़कर के दिखाएं।
2: आइए आप भी अयोध्या में नामांकन करिए और मैं भी अयोध्या से चलो एक बार किस्मत आजमा लेते हैं। तय हो जाए, आप भी आइए और मैं भी आता हूं। लड़ाई चेलों से क्यों? लड़ाई तो आमने सामने होनी चाहिए और उसके लिए मैं कह रहा हूं आइए आप भी। ये माफिया के सामने नाक रगड़ने वाले पेशेवर अपराधियों के सामने उनकी मौत पर उनकी कब्र में जाकर के फातिया पढ़ने वाले लोग, ये हम लोगों से क्या लड़ पाएंगे?
0: अयोध्या के सियासी रण क्षेत्र में अखिलेश यादव और सीएम योगी के बीच जुबानी जंग में पवन की एंट्री हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने सीएम योगी पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री टिकट नहीं बांटते, बीजेपी में उन्हें खुद टिकट मांगने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। सीएम योगी की चुनौती को लेकर बैकफुट पर नजर आ रहे अखिलेश यादव ने पवन पांडे का नाम आगे करके कहा कि हमारे पवन की हवा में अहंकारी सरकार के लोग उड़ जाएंगे। तो साफ है कि 2027 की चुनावी लड़ाई अब अयोध्या के सियासी रण को लेकर और दिलचस्प हो गई है। अब देखना होगा कि सीएम योगी के चैलेंज को अखिलेश यादव अपने उम्मीदवार पवन पांडे से काउंटर कर पाएंगे। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।

0: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का कांग्रेस पर बड़ा हमला। सोनिया गांधी ने नवीन चावला को कैसे बनाया सीसी, राहुल गांधी से पूछे 10 सवाल। दिल्ली में राहुल गांधी के आवास पर इंडिया गठबंधन के दिग्गजों का जुटान, एसआईआर सीसी के खिलाफ मंथन, चाय पर चर्चा के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। जेएनयू यौन उत्पीड़न केस में बर्खास्त प्रोफेसर और कांग्रेस सांसद के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, राष्ट्रपति से महिला सांसदों की गुहार, गिरफ्तारी और सदस्यता रद्द करने की मांग। पंजाब के मानसा में ड्रग्स माफिया बेकाबू, नशा विरोधी एक्टिविस्ट परमिंदर छोटा को की ऑन कैमरा गोली मारकर हत्या, विपक्ष बोला कसाई खाना बना प्रदेश। यूपीआई पर 0.4% चार्ज दिवाली तक टला, ₹2000 से ज्यादा के पेमेंट पर 15 अक्टूबर से होना था लागू, त्योहारी सीजन को देखते हुए फैसला।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: सही माने में मानते हैं इलेक्शन कमीशन ने ईमानदार व्यवस्था नहीं रखी है, चुनी रिजाइन करते हैं इनके छह के छह मुख्यमंत्री।
3: ऑनरेबल सीजेआई हैज रिस्पॉन्डेड एंड इंस्ट्रक्टेड अस टू फाइल ए पिटीशन।
2: जहां हारे वहां एसआईआर को गाली दे,
3: ये कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, ये राहुल गांधी नरेंद्र मोदी इन चीजों की बात है।
2: सन 2000 में सिटिंग सीसी को पद्म विभूषण देना क्या ये लालच नहीं है?
3: आप बचोगे नहीं एज ए इलेक्शन कमीशन।
0: नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी, दंगल में आपका स्वागत है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष अब अपनी अगली रणनीति तय कर रहे हैं। इस वक्त लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के सरकारी आवास पर इंडिया गठबंधन के नेताओं, विपक्षी सांसदों, छात्र संगठनों और सिविल सोसाइटी के लोग इस वक्त मौजूद है। राहुल गांधी हाईटी के बहाने ज्ञानेश कुमार को घेरने की एक खास रणनीति बना रहे हैं। राहुल सहयोगी दलों के साथ मिलकर आगे की रणनीति तय करेंगे। बैठक के बाद सारे विपक्षी नेता मीडिया से बात करेंगे और बताएंगे कि आखिरकार उनका अगला कदम क्या होगा। राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि कोई भी प्लानिंग नहीं है, ये शिव तांडव है और हर रोज एक नया तांडव देखने मिलेगा। राहुल गांधी ने आज इस चाय पार्टी को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा है कि लोकतंत्र की रक्षा के इस जन आंदोलन में हम सब एक साथ हैं और इस आंदोलन में वो साथ एक साथ जारी रहेगा। चाय के बाद हम साथ ही मिलकर मीडिया के सामने अपनी बात रखेंगे। राहुल का जोर विपक्षी एकता के साथ साथ सभी प्रदर्शन जो इस वक्त चल रहे हैं उन सभी को एकजुट करना है। यही वजह है कि उन्होंने अपने पोस्ट के आखिर में लिखा है कि सारे प्रदर्शन एक है। और आज हम दंगल में इस बात की चर्चा करेंगे कि क्या चुनाव आयोग विपक्ष के दबाव में या आंदोलनों के दबाव के बाद जो बदलाव के कदम उठा रहा है क्या वो पहले नहीं उठाए जा सकते। लेकिन इस वक्त चलते हैं सीधे मौसमी सिंह के पास, लेकिन उससे पहले दिल्ली में राहुल गांधी के घर पर चाय पार्टी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता और उसके साथ साथ इंडिया गठबंधन के बड़े नेता भी वहां पर उनके निवास स्थान पहुंच चुके हैं। यह नेता विपक्ष का अधिकृत निवास स्थान है। चाय पर राहुल गांधी उनके साथ चर्चा करेंगे और आंदोलन की अगली दिशा भी तय करेंगे। हाईटी पर खड़गे समेत कई विपक्षी नेता इस वक्त शामिल है। इससे पहले कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ मार्च करते हुए 11 विपक्षी नेताओं ने एक साथ मिलकर, जिसमें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल है, एक पिटीशन दायर की है सुप्रीम कोर्ट के सामने और जिसमें उन्होंने मांग रखी है कि चुनाव आयोग में जो फैसले लिए जा रहे हैं उस पर पुनर्विचार किया जाए। तो इस वक्त मौसमी सिंह हमारे साथ सुनहरी रोड इस निवास स्थान से इस वक्त मौजूद है। मौसमी, सभी नेता वहां पर इकट्ठा हुए हैं, हर रोज एक नया सरप्राइज, एक गर्म चाय की प्याली और उसके बाद एक नया सरप्राइज, आंदोलन का एक नया सरप्राइज, नया डोज। आज क्या प्लानिंग हो रही है?
4: एक गरम चाय की प्याली या चाय से ज्यादा केतली गरम साहिल, ये सवाल लगातार बरकरार है। जिस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ता और तमाम पार्टियों के कार्यकर्ता सड़क पर नजर आ रहे हैं, हमारे पीछे राहुल गांधी का आवास है और ये पहली बार है कि चाय के साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस का निमंत्रण भी सुनहरी बाग लेन से दिया गया है। पीछे आप देख रहे हैं कि मीडिया का तांता और चाय भी बैरिकेडो और पुलिस पहरे के बीच में पी जा रही है, क्योंकि पूरी सुनहरी बाग लेन अगर टॉप एंगल में कुंज दिखाएंगे तो पूरी कॉर्डन ऑफ हो गई है, आवाजाही रोक दी गई है और दाएं और बाएं तरफ पूरा बैरिकेड लगा है। जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री कार्यालय यहाँ पे बिल्कुल 10 कदम की दूरी पर, गृह मंत्री अमित शाह का आवास 50 कदम की दूरी पर और काफी संवेदनशील हाई सिक्योरिटी ये इलाका। तो चाय के बाद क्या होगा, गुफ्तगू के बाद क्या होगा, ये सवाल लगातार, पर बहरहाल अभी ये बताया गया है कि कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ से।
0: लेकिन मौसमी, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो एक्स पर राहुल गांधी का जो पोस्ट है उसमें उन्होंने कहा है कि सभी आंदोलन एक है, यानी कहीं ना कहीं जो अलग अलग आंदोलन चल रहे हैं उनको साथ में लाने की कोशिश। और एक और एक चीज राहुल गांधी इस वक्त इंश्योर कर रहे हैं, क्योंकि आकाशवाणी केंद्र पर जाकर उन्होंने जिस तरीके से प्रदर्शन किया था, धरना प्रदर्शन, उसमें कई विपक्षी नेता नहीं दिखे थे। उसके बाद अब यह लग रहा है कि सभी विपक्षी नेता और उसके साथ साथ सभी आंदोलनों को एक साथ एक मंच पर लाने की क्या वहां पर कोशिश रहेगी?
4: बिल्कुल, देखिए पिछले कुछ दिनों में ये तेजी से बदला है। पहले कांग्रेस का प्रदर्शन, फिर इंडिया ब्लॉक का प्रदर्शन, उसके बाद कल आपने देखा कि तमाम सिविल सोसाइटी और यूथ लीडर्स जो है, नेहा बोरा जैसे जो नेत्रियां हैं वो बस में साथ में बैठी थी, ट्रक में साथ में दिखी, कंधे से कंधा मिलाते हुए दिखे। तो एक एक राहुल गांधी एक बड़ी लकीर खींचने की कोशिश में है, लेकिन अभी भी इसमें एक कड़ी जो है CJP की वो मिसिंग है। और यही सवाल जो कल हमने उनसे पूछा था, आज उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में दोहराया है, क्योंकि कल हमने कहा था CJP का क्या, आप सबको कह रहे हैं कि आंदोलन में आओ, तो उन्होंने कहा था सारे आंदोलन ऑल प्रोटेस्ट आर वन। तो आप ये देखना होगा कि क्या ये जो एक कड़ी मौजूद नहीं है उसको भी एनरोल करेंगे राहुल गांधी। ये भी चर्चा हो रही होगी कि नवरात्र का दौर है, दशहरा आ रहा है, त्योहारों का ये पूरा सप्ताह रहेगा आने वाला, तो आगे कैसे प्लानिंग करें कि आम लोगों को इसमें डिसरप्शन ना हो, तमाम सांसदों को, लोगों को अपने घरों में जाना होगा, एक कल्चरल फेस्ट के तौर पर है, तो कैसे प्लानिंग हो आगे की रणनीति भी आज इस चाय पर चर्चा करते हुए जो है इसका फैसला लिया जाएगा।
0: ठीक है, ठीक है, जल्दी से, क्योंकि अभी थोड़ी देर में मुझे लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शुरू हो जाएगी। उम्मीद है कि समय 5 बजे का समय दिया था, लेकिन लगता है कि थोड़ी देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने में समय लगेगा। एक जल्दी से जवाब मौसमी आपसे एक बात का चाहेंगे कि क्या कल राहुल गांधी जो दावा कर रहे थे कि सरकार की तरफ से कुछ फीलर्स भेजे जा रहे हैं, क्या सचमुच में किसी कांग्रेस नेता का यह दावा है, किसने उनसे बात करने की कोशिश की है, क्या इस बात पर कोई बात साफ हो चुकी है?
4: साहिल, जितना राहुल गांधी की पॉलिटिक्स को हम लोग ने पढ़ा है, देखा है, अगर ऐसे फीलर्स होंगे तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी उनको कह देंगे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने प्रेसिडेंट से मुलाकात के बाद कहा कि प्रेसिडेंट भी अग्री ने डिनाई नहीं किया, और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोहराया कि जो सूत्रों के हवाले से डिनायल आया वो सरकार की तरफ से आया, ना कि प्रेसिडेंट ऑफिस से, PMO से आया। तो मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी को जानते हुए कोई बैक चैनल टॉक्स यहाँ पे चलने वाली है, क्योंकि राहुल गांधी उसकी पोल बहुत जल्दी खोलने में माहिर है कि कोई पुलिस कर्मी उनको क्या कह रहा है, कोई BJP का सांसद उनको क्या कह रहा है, ये कई बारी वो कर चुके हैं, तो ये जोखिम सरकार उठाएगी मुझे ऐसा नहीं लगता साहिल। लेकिन फिर भी पॉलिटिक्स में कुछ भी संभव है। हम लोग इंतजार करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का, आप देखिए किस तरह से तमाम पत्रकार और सब लोग इंतजार कर रहे हैं। राहुल गांधी के आवास पे इस तरह की तस्वीर,
0: इंडिया लाइंस के नेता भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बार शामिल होंगे। इस बार की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, तो जो पिटीशन करता है यानी याचिका करता है वो सभी एक साथ एक मंच पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिखाई देंगे, और अगली रणनीति अब विपक्ष की क्या होगी वो भी शायद इससे उजागर होगा। तीन सवाल इस पूरे मीटिंग से यहां पर निकल रहे हैं। पहला सवाल कि राहुल गांधी चाय पर चर्चा करके क्या खास रणनीति बना रहे हैं, क्योंकि अभी तक वो कह रहे हैं कि कोई प्लानिंग नहीं है, हर बार चाय पे बुलाया जाता है और उसके बाद एक नई रणनीति का फैसला लिया जाता है। दूसरा सवाल जो बड़ा अहम है, चुनाव आयोग बदलाव के जो कदम उठा रहा है, हर रोज नए नए बदलाव की घोषणा सोशल मीडिया के जरिए की जा रही है, क्या वो पहले नहीं हो सकते थे। तीसरा सवाल, क्या फॉर्म 6 की दलील पर सियासी तकरार अब और आगे बढ़ेगी, क्योंकि अब अदालत ने भी कहा है कि जो मंजूरी दी गई थी वो बिहार के भीतर जो फॉर्म नंबर 6 के साथ डिक्लेरेशन फॉर्म जोड़ने की बात कही थी उसको मंजूरी दी थी। इस साल जुलाई महीने में उस डिक्लेरेशन फॉर्म में जो दो सवाल जोड़े गए उस बारे में सुप्रीम कोर्ट को कोई जानकारी नहीं है, यह बड़ी दिलचस्प बात है। पिटीशन को लेकर भी बात होगी। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं, डॉक्टर अजय आलोक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, पूजा त्रिपाठी कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस चर्चा में शामिल होंगी, आशुतोष और रजत सेठी हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट भी चर्चा में रहेंगे। अजय आलोक, भारतीय जनता पार्टी की हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और एक बार फिर आप ये सवाल उठा रहे हैं कि इससे पहले खास करके नवीन चावला पर आपका, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा ध्यान रहा है, क्या आपको लगता है कि अब पुरानी बातें करके आज का जो मुद्दा है वो डाइवर्ट हो पाएगा, क्योंकि आज की स्थिति में विपक्ष एक साथ एकजुट नजर आ रहा है और हर रोज नए सिरे से आंदोलन की धमकी भी आपको दे रहा है, यह दबाव क्या इसी तरीके से बढ़ता रहेगा, क्योंकि चुनाव आयोग पर तो दबाव साफ नजर आ रहा है जिस तरीके से वो बदलाव कर रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा।
5: साहिल जी आप पूछ रहे हैं कि आज का मुद्दा क्या है। आज के मुद्दे को तो आपको उसी वक्त समझ जाना चाहिए था जब राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़ा साफ साफ कहा कि हमें लगता नहीं, हमें लगता है, हम मानते हैं वोट चोरी हो रही है, चुनाव आयोग वोट चोरी करवा रहा है, नहीं तो चुनाव आयोग हमें प्रूफ करके दे दे कि वोट चोरी नहीं हो रही है। मुझे लगता है, मैं मानता हूं, साहिल जी पैसे खा के पत्रकारिता करते हैं, नहीं तो साहिल जी प्रूफ करके बताएं पैसे नहीं खाते हैं। बेसिर पैर बातों का उसको आप मुद्दा बना रहे हैं, बेसिर पैर की बातें हो रही हैं यहां पे। क्या आप मुझे बताइए इंडिया ब्लॉक के किस नेता को इतनी संवैधानिक समझ नहीं है कि चुनाव आयोग और सीईसी को सुप्रीम कोर्ट नहीं हटा सकता है। क्यों गए सुप्रीम कोर्ट मार्च लेके, 1947 से लेके आजादी के बाद से लेके आज तक जब से सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आया किसी राजनीतिक दल ने सुप्रीम कोर्ट में मार्च निकाला? कहीं संविधान खटाखट में लिखा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर पिटीशन दे सकते हैं, अर्जी दे सकते हैं, याचिका फाइल की जाती है, केस दर्ज किया जाता है, अर्जी नहीं दी जाती? क्यों किया ये ड्रामा? इसके पीछे भी एक कारण था, ये आदमी की सोच गंदी है। नवरात्र शुरू हो चुके हैं, नवरात्र के दूसरे दिन 12 तारीख को आप सुप्रीम कोर्ट का मार्च निकालते हैं। नवरात्र में आमतौर पर पूरा हिंदू मन शांत रहता है, कोई अप्रिय घटना ना हो, कोई गंदी हरकत ना करें, यह जानबूझ के नवरात्रों को भी डिस्टर्ब करने का एक इनका प्लान रहता है ताकि इनका घोषित वोट बैंक खुश हो जाए। हर हद तक ये गिर सकते हैं किसी भी तरह असंवैधानिक कार्य करते करते। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें नवीन चावला पर सिर्फ ध्यान नहीं था, ध्यान यह था कि जब यह पार्टी कांग्रेस पार्टी थी तो पहली बात तो कि चुनाव आयोग से प्रधानमंत्री चुनते थे, कैबिनेट की संख्या पर राष्ट्रपति नियुक्त कर देते थे, कोई और तीसरा व्यक्ति नहीं था। पार्लियामेंट में 2023 तक कानून क्यों नहीं आया? जरा ये साहिल जी, कभी आपने कांग्रेस से नहीं पूछा कि भाई 1947 में आजादी मिली, 51 से हम चुनाव लड़वा रहे हैं, क्यों नहीं ये कानून बनाया कि चुनाव आयोग को चुनने का, कि एक एक टाइम में सीजीआई को इसमें आना पड़ा, फिर सीजीआई ने कहा कि आप लोग जब पार्लियामेंट कानून बनाइएगा तो उसके हिसाब से चलेगा, तो हमने कानून बना दिया, दो मंत्री एक नेता विपक्ष।
0: नहीं तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जो पहले कानून नहीं था, लोकतांत्रिक
5: मतों को देखते हुए विपक्ष का एक बनाया, एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए,
0: जो पहले चलता था वही अभी भी चलना चाहिए, यही आपको लगता है क्या? आपको यही लगता है क्या 2023 में जो कानून में बदलाव किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि भाई सीजीआई भी रहेगा, नहीं, आप क्या चाहते हैं कि इस बार भी सरकार को यही अधिकार होने चाहिए कि प्रधानमंत्री तय करे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होना चाहिए?
5: भाई हम तो ये चाहते हैं,
0: देश आगे बढ़ता है, उसमें बदलाव भी आते रहते हैं, सुधार भी आते रहते हैं, और अच्छी बात है कि अगर चुनाव आयोग की नियुक्ति निष्पक्ष तरीके से हो तो वो तो एक लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है, ये तो देश आगे बढ़ रहा है, यही उसका मतलब निकाला जाए।
5: अच्छी बात है भाई, आप भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के आने के पहले भी 6 साल सत्ता में रह चुकी थी, कभी आपने देखा कि किसी चुनाव आयोग या मुख्य चुनाव आयोग को हमने कोई राजनीतिक लाभ दिया? नहीं दिया। 12 साल से मोदी जी हैं, कोई लाभ मिला? नहीं मिला। कितने आए, कितने रिटायर हो गए? हम यही बात तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीयूष जी बता रहे थे कि आपने लाभ के कारण चुनाव आयोगों को अपने टट्टुओं की तरह नचाया है, चाहे वो टी एन सेशन हो, चाहे वो जिनका आप नाम ले रहे थे वो हो, चाहे एम एस गिल हो, किसी को मंत्री, किसी को गवर्नर, जेएम लिंगदो हो, जिन्होंने गुजरात के चुनाव को 6 महीने पोस्टपोन कर दिया बिना कोई रीजन, जबकि चीफ मिनिस्टर डिसॉल्व कर रहा है गवर्नमेंट, आपको करवाना है चुनाव, नहीं करवाएंगे? इस देश ने ऐसे गैर संवैधानिक काम होते हुए देखे हैं। और आज जब कुछ संवैधानिक नहीं हो रहा है, गैर संवैधानिक नहीं हो रहा है, आप सुप्रीम कोर्ट मार्च निकालने की नौटंकी कर रहे हैं, और भी नवरात्रों के दिन, जानबूझ के।
6: बड़ी दिलचस्प बात है,
5: मैं प्रमाणित करके कह रहा हूं कि यह इंटेंशनल था।
6: जो बड़ी दिलचस्प बात है कि बड़ी अनप्रेसिडेंटेड चीजें इस देश में हो रही है। वन नेशन वन इलेक्शन की कमिटी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन पीपी चौधरी चीफ जस्टिस से समय मांगते हैं 6 अगस्त के लिए, और उनको यह मौका भी दिया जाता है मिलने के लिए। 6 अक्टूबर का उनको समय दिया गया था, और उसके बाद कपिल सिब्बल प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं और फिर वो रद्द की जाती है उनकी मीटिंग। यह भी बड़ी दिलचस्प बात है। इस देश में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है कि जिस पार्लियामेंट्री कमेटी पर ये उनकी भूमिका यह है कि भाई कानून बनाए, वन नेशन वन इलेक्शन का कानून कैसे आए, जो कानून सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकता है उस पर सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि यह कानून के तहत है कि नहीं है, उनकी मीटिंग पहले ही मांग ली जाती है। यह भी पहली बार हुआ है। लेकिन इस बात का जिक्र जरूर किया जाएगा पूजा त्रिपाठी जी कि ऐसा क्या है। इससे पहले अजय आलोक एक बात तो सही कह रहे हैं, इससे पहले वाजपेयी सरकार रह चुकी है 6 साल तक, तब भी चुनाव आयोग रहा है, तब तो कभी कांग्रेस पार्टी ने इस पर कभी सवाल नहीं उठाया। इस बार क्या है, क्या जो आज पीयूष गोयल कह रहे थे एक के बाद एक चुनाव हारना, यह सबसे बड़ा कारण है इसका, जिस तरीके से चीजें हो रही है?
7: मुझे लगता है इनकी हताश और निराश प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे कमेंट करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपने कहा अनप्रेसिडेंटेड, इस बार मोदी सरकार है, और मोदी सरकार भारत इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर जिस तरीके से लोकतंत्र का गला दबाने में चुकी हुई है, ये अनप्रेसिडेंटेड। चाहे फॉर्म 6 के एनेक्शन हो, फॉर्म 7 प्री फिल्ड भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर से निकल रहे हैं, एक बूथ में 3,000 लोगों के नाम कटने के बीजेपी से प्री फिल्ड आ रहे हैं, ये अनप्रेसिडेंटेड है। ये अनप्रेसिडेंटेड है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री को इलेक्शन कमिश्नर के सामने धरने पे बैठना पड़ता है सिर्फ ताकि वो FIR करवा सके, क्योंकि लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। ये अनप्रेसिडेंटेड है। ये अनप्रेसिडेंटेड है कि जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स के 11 जज चीफ इलेक्शन कमिश्नर और हाईकोर्ट के जज को लिखते हैं कि उनके पास कोई पावर ही नहीं है, ना नोटिस देने की, ना किसी का रेस्टोर करने की, और कुछ भी करने का कोई पावर नहीं है। और ACI नेट का पूरा जो कमांड एंड कंट्रोल है वो दिल्ली से है। ये अनप्रेसिडेंटेड है। पर आप इनसे सवाल पूछिए, नवरात्रों को ले आएंगे तो ये अच्छा हुआ नवरात्रों को लेकर आए। नवरात्र में ये बहुत देवी भक्त बनने का पूरा नाटक करेंगे, सनातन का पूरा नाटक करेंगे, कि अभी चंदा चोरी पे पूछ लो तो ये अगले बगले जाटने लगेंगे। पर नवरात्र में अंकिता भंडारी का की जो स्पेशल VIP ट्रीटमेंट उसके माता पिता ने नामजद किया था दुष्यंत कुमार को, उनको ये प्रमोशन देकर सिक्किम का गवर्नर बना रहे। नवरात्र में दिल्ली का मेल पुलिस ऑफिसर ठीक वीडियो में, मैं अपनी भाषा के लिए माफी नहीं मांगूंगी साहिल जी, मैं एक महिला हूं और वो सेक्सुअली असॉल्ट कर रहा था वहां पे पूरी भीड़ के सामने, जिस्ट के रिपोर्टर के ब्रेस्ट को टच कर रहा था, सत्ता समर्थित गुंडे लड़कियों पर अत्याचार कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे, ये सब नवरात्र में हो रहा था जालू जी। पर आप औरतों को देवी बनाइए, लड़कियों को देवी बनाइए, और लड़कियों को घसीट कर मारिए दिल्ली में, क्योंकि यही तो आपका है, यही तो आपका संस्कार है। तो आप नवरात्रों को बीच में मत लाइए। तो जिस तरीके का
6: अब तो आरोप ये भी लग रहा है, जो पीयूष गोयल की प्रेस कॉन्फ्रेंस रही उसमें आरोप तो यह भी लग रहा है कि विदेशी ताकतों का टूलकिट इसमें दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से ये पूरा आंदोलन तैयार किया जा रहा है, विदेशी ताकतों का टूलकिट भी देखा जा रहा है।
7: साहिल जी, पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई होगी, मैं सुबह से डिबेट में थी, मुझे वक्त नहीं मिला फॉलो करने का, शायद पाकिस्तान की एंट्री हो गई होगी, कोई जॉर्ज सोरोस की फंडिंग ला देगा। बात यह है कि इनके पास कोई जवाब नहीं है। कल की इनकी टर्नआउट देख के ये बिल्कुल ही बौखला गए हैं, बिल्कुल ही बौरा गए हैं। तो ये जिस तरीके का वो जर्नलिस्ट का ये मुद्दा उठा के लाए थे, भागते बूट की लंगोट बनी, वे वैसा ये वही हरकतें कर रहे हैं। और ये बैठ के अनप्रेसिडेंटेड नवीन चावला से कांग्रेस ये सब कुछ बातें करेंगे। बात यह है कि यह वक्त है अनप्रेसिडेंटेड।
5: देखिए
7: साहिल जी, वक्त है अनप्रेसिडेंटेड, और
6: कल की रैली के बाद यह जवाब है।
5: साहिल जी, सबसे पहली बात, बौराते हम नहीं हैं, क्योंकि हम डिसिल्यूजन में नहीं रहते हैं, डिलीरियम में नहीं रहते हैं, ठीक है ना, हम अपने मन में नहीं रहते हैं कि मैं जो कर रहा हूं इसलिए हम बौराते नहीं हैं। जहां तक रही महिला की बात, तो हमारा एक डेलीगेशन आज राष्ट्रपति जी से मिलने गया था। ये कांग्रेसी सांसद हैं इनके, मणिपुर के। 11-11 लड़कियों से यौन अत्याचार के साबित हो चुके मामले जेएनयू से बर्खास्त कर दिया गया। ये हमें लड़कियों पे ज्ञान दे रही है। राहुल गांधी जी का वीडियो नहीं देखा कैसे उस पुलिस कर्मियों को छू रहे पीठ से और बाकी सब जगह पर? कल उनको रैली में नहीं देखा किस तरह से महिला पत्रकार के साथ क्या किया उन्होंने, और कैसे कोहनी मार रहे हैं, कैसे थप्पड़ मार रहे हैं अपने कार्यकर्ता को? अरे आप लोग कार्यकर्ता हो ना कांग्रेस के? कांग्रेस में मार खाने के लिए हो क्या? चप्पल ढोने देर तक ठीक था, आप मार भी खाने लगिएगा और उसमें भी आवाज नहीं उठाइएगा? आत्मसम्मान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मर गया है क्या? क्या कर रहे हैं ये लोग? और आप इस तरह से बात करिए, विदेशी टूल किट तो थे ही आप लोग, इसमें डाउट कहाँ है? विदेशी टूल किट तो याद से है। एंडरसन का केस होता है भोपाल में, उसको भगा देते हैं। कॉकरोची को इतनी भगा देते हैं जब वो फोर्स का केस होता है। विदेशी टूल को याद से है? विदेशी टूल आज से नहीं है साहिल जी, विदेशी टूल का बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है। CIA की फाइल देखेंगे ना, बहुत सारा चीज
7: मिलेगा। छोड़ दीजिए इंसान की,
5: ठीक है ना? राहुल गांधी जी को बोलिए जरा आप सहूर से रहे, सहूर से, डिसिल्यूजन में नहीं, इल्यूजन में नहीं रहना।
7: आपके गैंडी
5: कोलंबियन इफेक्ट लाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। कोलंबियन इफेक्ट से निकले बाहर, चाय पी रहे हैं अच्छा तो चाय पिए।
6: लेकिन जो मुद्दा मैंने पहले छेड़ा था अजय आलोक जी, चलिए इन मुद्दों पर अलग से बहस होती रहेगी। ठीक है, ठीक है पूजा जी, एक मिनट।
5: सांसद को क्यों नहीं बर्खास्त किया? 11-11 लड़कियों के यौनाचार में जेएनयू की कमेटी ने, हम नहीं किया, हमने नहीं कहा,
7: किसी ने कहा है कि वो, पर आप लोग तो प्रमोशन करके सिक्किम का गवर्नर बना रहे हैं, कहां से लाते हैं इतना?
5: अरे जेएनयू की कमेटी ने उसे बर्खास्त कर दिया। ये देखिए साहिल जी, उस सांसद को देखिए, अपने सांसद को बचाने के लिए, क्योंकि वो गांधी परिवार का फेवरेट है, ये लोग यौनाचार या बलात्कारी के साथ खड़े हो जाएंगे।
6: एक मिनट पूजा जी, एक मिनट पूजा जी, एक मिनट नहीं, मैं जो मुद्दा है उसी पर कायम रहना चाहूंगा। पूजा जी एक मिनट। अगर किसी ने यौन शोषण का मामला उसके खिलाफ है, पुलिस की कार्रवाई करिए, सरकार आपकी है, आपको कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। और उस पर एक मिनट पूजा जी
7: हम थी फीमेल प्रोटेस्टर की, वो गलत था।
6: पूजा जी एक मिनट, ये वॉट अबाउटरी नहीं होगा। पूजा जी एक मिनट प्लीज, पूजा जी एक मिनट प्लीज, जरा एक मिनट उनका उनका फेडर डाउन करिए प्लीज। पूजा जी आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि मैं कुछ मुद्दा यहां पर रखने की कोशिश कर रहा हूं, और हमारा मुख्य मुद्दा चुनाव आयोग को लेकर है। ठीक है, अगर किसी ने भी यौन शोषण किया है तो उस पर बाकायदा सरकार आपकी है अजय आलोक जी, दिल्ली पुलिस आपकी है, FIR दर्ज करिए, गिरफ्तार करिए, जो कार्रवाई करनी है आप कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ इस बात की भी चर्चा होगी कि जो तस्वीरें दिल्ली की सड़क पर रोज दिखाई दे रही है, उसकी भी चर्चा कहीं ना कहीं होगी। लेकिन मेरा मुद्दा अलग है, आप इस बात को स्वीकारें या ना स्वीकारें, लेकिन जिस तरीके से इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपने के बाद चुनाव आयोग के कदम पड़ रहे हैं, वो जरा मैं दिखाना चाहता हूं। और यहां पर रजत सेठी और आशुतोष, आप दोनों को इस चर्चा में मिलाना चाहूंगा। जरा एक बार एक एक करके हम ग्राफिक्स पर दिखाना चाहते हैं, फुल फ्रेम दिखाइए, ताकि सबको पता चले कि किस तरीके से अखबार में खबर छपने के बाद चुनाव आयोग का रवैया पूरी तरीके से बदल गया है, जो मुद्दे को लेकर एक साल से लगातार चुनाव आयोग को सवाल पूछे जा रहे थे। पहली बात देखिए, चुनाव आयोग ने क्या किया है। सबसे पहले निर्देश दिया कि BLO घर घर जाकर, जरा फुल फ्रेम में दिखाइएगा जरा, उसके बाद वो हम दिखा पाएंगे उसको। पहली बात उन्होंने की है कि गड़बड़ी दूर करने के लिए BLO घर घर जाएंगे, सबसे पहली बात उन्होंने घोषणा की है। निर्देश दिया गया है कि लोगों को ERO और AERO के ऑफिस में ना बुलाया जाए, लंबी लंबी कतारें छोड़ दी है। ठीक है, अब सबको बोला जा रहा है कि आप उनके घर जाइए, उनसे बात करिएगा। ठीक है, दूसरी बात, तीसरी बात, लोग दफ्तरों के चक्कर ना लगाए, ऑनलाइन करने की कोशिश करें। अब दफ्तरों के चक्कर नहीं लगेंगे, पहले नोटिस देकर BLO को बुलाए, उस वोटर को बुलाया जाता था, कतार में खड़ा किया जाता था। बेघर लोगों के लिए हेल्प डेस्क, स्पेशल कैंप लगाए जाएंगे, और यह बंगाल के भीतर भी अब लगाया गया है, कहा गया है कि वहां पर भी देखिए। नियमों के पालन के लिए ECI नेट की समीक्षा की जाएगी, जो सवाल उठाए गए थे। चुनाव आयोग की बैठकों का एजेंडा दिया जाएगा दोनों चुनाव आयुक्तों को, बैठक में क्या हुआ उसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग जारी किए जाएंगे। एक पिटिशन में यह भी मुद्दा है कि मिनट्स बताइए हमको कि क्या कैसे फैसला हुआ है। Form 7 बड़ी संख्या में आप नहीं भर सकते, लिमिट डाल दी गई है। पहले भी सवाल उठाए गए थे कि एक साथ सैकड़ों Form 7 के तहत नाम हटाने का फॉर्म कैसे भरा जाता है, अब उस पर लिमिट डाली गई है। बंगाल के भीतर देखिए, बड़ी दिलचस्प बात है, बंगाल में जो नाम कटे हैं उसको फिर से जोड़ने का अभियान चलाया गया है। और दिल्ली में बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि तार्किक विसंगति के नाम पर यानी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर 33 लाख वोटर्स को जो नोटिस दी गई थी, अब चुनाव आयोग कह रहा है कि उसमें से 20 लाख एप्लीकेशन तो हमने ही सुलझा दिए, लेकिन बंगाल में 27 लाख वो एप्लीकेशन अब ट्रिब्यूनल्स के सामने है, 19 ट्रिब्यूनल्स के सामने सुप्रीम कोर्ट ने कहने के बाद, क्योंकि उनको चुनाव आयोग ने कहा था कि हमारा सॉफ्टवेयर तो कह रहा है कि आपका नाम नहीं जुड़ रहा है और इसी के वजह से आपको अब नहीं वोट दिया जाने जाएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ना भाई, इनको ट्रिब्यूनल लगाइए, 19 ट्रिब्यूनल के सामने सुनवाई चल रही है, लेकिन दिल्ली के भीतर 33 लाख में से 22 लाख वोटर लिस्ट में वापस जुड़ गए सॉफ्टवेयर ने मना करने के बावजूद, जिस तरीके से बंगाल के भीतर हुआ था। और आखिर में एसआईआर में जो वोटर के नाम कटे हैं उसका आवेदन सीमित हो जाएगा। आशुतोष जी, ये क्या दिखाता है, ये क्या दिखाता है? और ये बीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है जिसका जिक्र अजय आलोक कर रहे थे कि ये बीजेपी का प्रदर्शन
8: लगातार आप देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जब तक सांस नहीं लेगा तब तक वो गिरफ्तार नहीं
6: कांग्रेस दफ्तर के बाहर भी यह प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेस दफ्तर के बाहर यह प्रदर्शन, जो कांग्रेस के सांसद हैं उन पर जो आरोप लगे हैं उस मामले में यह प्रदर्शन यहां पर चल रहा है। तो मुद्दा यहां पर आशुतोष जी, यहां पर और एक प्रदर्शन यहां पर शुरू हो चुका है। अब दिल्ली की सड़कों पर दो दो प्रदर्शन चलेंगे। एक एसआईआर को लेकर प्रदर्शन चल रहा है चुनाव आयोग के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है कांग्रेस के खिलाफ क्योंकि वो एक्शन नहीं ले रहे हैं अपने सांसद के बारे में। लेकिन जो मुद्दा मैंने रखा हुआ है यहां पर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा नहीं देंगे नहीं देंगे वो नहीं पता, लेकिन जो बदलाव चुनाव आयोग बार बार कर रहा है ये क्या दिखाता है?
9: देखिए, पहले तो जो कांग्रेस के सांसद हैं, हिंदुस्तान की किस सरकार ने उनको रोका है कि आप जाके उसको गिरफ्तार ना करिए? केंद्र में सरकार आपकी है, अरेस्ट करिए उस सांसद को, राहुल गांधी से पूछ रहे उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, केंद्र सरकार कार्रवाई नहीं करेगी। ये जो द्वैत है इसको समझने की जरूरत है कि सिर्फ राजनीतिक मुद्दा और जो ज्ञानेश कुमार को लेके जो पूरा विपक्ष आंदोलनरत है उससे लोगों का ध्यान हटाने की एक कोशिश है, इसके अलावा कुछ नहीं। साहिल, दो तीन जो सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की उस दिन फॉर्म 6 को लेके, क्या उससे ज्यादा ब्लेटेंट ब्रेजन कोई चीज हो सकती है क्या? और अभी आज के अखबार में फिर छपा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा कहा है कि फॉर्म 6 को लेकर किसी तरीके का फैसला उन्होंने नहीं दिया है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इलेक्शन कमीशन अपनी तीसरी प्रेस रिलीज में बाकायदा कहता है कि उसको तो सुप्रीम कोर्ट का अनुमोदन प्राप्त है। ये सेंटेंस अपने आप में काफी है ज्ञानेश कुमार को इम्पीच करने के लिए। आपने न केवल देश को गुमराह किया बल्कि आपने सुप्रीम कोर्ट को भी गलत साबित करने की कोशिश की है कि आपने सुप्रीम कोर्ट का मिसकोट किया है। अब इससे ज्यादा अगर कोई चीज हो सकती है तो कोई मुझे बता दे। देखिए, 4 सवालों के जवाब अभी भी नहीं मिले प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। जो संधु, इलेक्शन कमीशन संधु पूछते हैं कि वो 16 लाख वोटरों के नाम डिलीट करने का आदेश किसने दिया, संधु पूछ रहे हैं ये सवाल, कोई जवाब नहीं। यारोस को नाम ऐड और डिलीट करने का अधिकार किसने दिया, ये कोई जवाब इसका नहीं मिलता है। 97 लोगों के नाम जो गोवा के थे उनके नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर संजय कुमार के कहने के नाद के बाद भी लिस्ट में नहीं जोड़ा गया, किसके कहने पे? और फॉर्म 6 में बदलाव जिसको खुद संधु और जोशी दोनों ने कहा इलीगल हुआ, वो किसके कहने पर हुआ? इलेक्शन कमीशन ने अभी तक इन 4 सवालों के जवाब नहीं दिए जो कि उस रिपोर्ट का फंडामेंटल था। और यह मान लिया है जो संधु और जोशी कह रहे थे कि ना तो मीटिंग के पहले एजेंडा दिया जाता था ना मीटिंग के बाद मिनट्स वो आते थे, आप समझ लीजिए इसका क्या अर्थ है। उसके बावजूद अगर कोई
6: नहीं तो सबसे बड़ी बात क्या है ना कि
9: साहिल एक दस
6: मैंने आपको अभी जो बताया, चुनाव आयोग ने अपने रवैये में चेंज कर दिया ना पूरा एकदम, एक साल के बाद चुनाव आयोग अब यह कहने की कोशिश कर रहा है कि देखिए हमने यह बदलाव कर दिया है, अब तो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में चुनाव आयोग खुद ही मामले निपटा रहा है। नो ट्रिब्यूनल,
9: इसलिए क्योंकि अब डर समा गया है। अगर और डर इस बात का है कि चुनाव के पद से हटने के बाद भी इनके खिलाफ कार्रवाई हो सक्ती है। क्यों कार्रवाई हो सकती? क्योंकि जो 2023 का एक इम्यूनिटी मिली हुई है वो लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से अपने काम को करने के लिए मिली है। इलीगल या एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल या कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर काम करने के लिए आपको इम्यूनिटी नहीं मिली है। इसलिए पद पर हैं या पद के बाहर हैं, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ क्रिमिनल केस हो सकता है, उनको कोई इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। और आखिरी बात, मैं बार बार कह रहा हूं,
6: लेकिन आशुतोष,
9: अगर अगर अगर अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है तो भारतीय जनता पार्टी को भी प्रोटेस्ट करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी आउट ऑफ द वे जाके क्यों ज्ञानेश कुमार को डिफेंड करती है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये तो क्लियर होना चाहिए।
6: ठीक है, अजय आलोक इसका जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले रजत सेठी के पास, क्योंकि पिटीशन जो फाइल किया हुआ है उस पिटीशन में भी यही लिखा हुआ है कि जिन लोगों का नाम कट रहा है वो भले किसी भी पार्टी के वोटर हो लेकिन वो अपना अधिकार खो रहे हैं, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के पास 11 विपक्षी पार्टियों के नेता एक पिटीशन दायर करके, याचिका दायर करके आपके पास आ रहे हैं। लेकिन रजत सेठी, मुद्दे यहां पर दो है। एक तो चुनाव आयोग पर सवाल उठाया जा रहा है, खास करके SIR के प्रोसेस पर। गुस्सा किस बात पर है सरकार का? क्या जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा है उस बात पर, या SIR की प्रक्रिया पर जो सवाल खड़े किए हैं न्यूज़पेपर के रिपोर्ट ने भी, और उसके बाद जो बदलाव आप सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के रवैये में नजर आ रहे हैं, किस बात पर?
10: देखिए साहिल जी नमस्कार, मैं आपके चैनल पे पहले भी आके मैंने बोला है कि जब ओनस था इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के बाद, ओनस पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन के पास था। उनको आकर उस समय प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से ये चीज साफ करनी चाहिए थी कि दरअसल हुआ क्या। लेकिन उस दौरान से लेकर आज तक में कई सारी चीजें बदली भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा, ना हमने फॉर्म 6 के बदलाव के लिए कुछ कहा या कुछ नहीं कहा, दोनों चीजें बोली हैं सुप्रीम कोर्ट ने। क्योंकि जो इसके पहले जो रिटन ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का वो बहुत क्लियर था, उन्होंने ये बोला था कि डिक्लेरेशन इज नॉट फॉर्म 6। जो डिक्लेरेशन मांग रहे हैं आप कुछ भी मांग सकते हैं क्योंकि रेसिडुअल पावर इलेक्शन कमीशन के पास लिखित में, आप चाहेंगे तो मैं पढ़ सकता हूं उस चीज को, ये सुप्रीम कोर्ट के लिखित रिटन ऑर्डर में है, ओरल में नहीं है। आज जो बोला उसने इलेक्शन कमीशन को कॉन्ट्रडिक्ट बिल्कुल नहीं किया क्योंकि फॉर्म 6 इंटैक्ट है, ये चीज समझनी जरूरी है। और मैं बोलता हूं बाकी बचे हुए मुद्दों पर भी लगातार बात होनी चाहिए।
6: लेकिन मैं आपको एडिशन में यहां पर करना चाहूंगा, क्योंकि मामला जब दोबारा गया सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का क्लैरिफिकेशन भी दिया है कि जो पहली मंजूरी दी गई थी वो बिहार के समय पे जो उसका प्रारूप रखा गया था उनके सामने, उस बात को मंजूरी दी थी। जुलाई महीने में उसी डिक्लेरेशन में जो चीजें ऐड की गई वो उनके संज्ञान में नहीं था, ये बात कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट।
10: तो जिस पावर से ड्रॉ करके वो सुप्रीम कोर्ट इस कंक्लूजन तक पहुंचा होगा कि आप जाके डिक्लेरेशन मांग सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या ये एक्सप्लिसिटली तो ये भी नहीं लिखा कि आप बंगाल के चुनाव में ये नहीं कर सकते या दिल्ली के चुनाव में नहीं कर सकते, SIR में नहीं कर सकते? देखिए ये डिबेटेबल और बहुत बारीक विषय है, इस पे ये नहीं बोल देना चाहिए कि बहुत लंबा बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर दी, नंबर एक। नंबर दो, दूसरी चीज जो मुझे सबसे ज्यादा लगती है, कांग्रेस पार्टी ने ये सोचा कि इलेक्शन कमीशन से के माध्यम से तख्ता पलट करेंगे, वो पॉलिटिसाइजेशन है विषय का। उनकी बात जहां तक कि इलेक्शन कमीशन को साफ साफ बताना चाहिए कि कहीं पे प्रोसीजरल लैप्सेस हुए कि नहीं हुए, उस पे स्पष्टता से बताना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, नहीं बताया ये उनकी गलती है। लेकिन उन्होंने रूल्स अगर फ्लाउट नहीं किए उनको कॉन्फिडेंटली आना चाहिए ताकि ये बड़ा विषय ना बने। लेकिन इस दौरान कांग्रेस पार्टी ने उनको ये लगा कि अगर हम आए या हमारे जो बी टीम सी टीम है कॉकरोच जनता पार्टी ये आए और कहीं ना कहीं अगर ऐसा कुछ हो जाए जिसमें कि हिंसा भड़क जाए, कुछ बच्चों की के साथ ऐसा हो जाए कि मृत्यु हो जाए, तो ये चीज कहीं बवंडर रुकेगा नहीं। और जो चोक होल्ड था जंतर मंतर,
6: लेकिन रजत इस मामले में के पास चुनाव आयोग का रवैया देखिए ना आप, ये बात बड़ी दिलचस्प है कि आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन कमीशन को जाके ये बताना चाहिए था कि वो जो कर रहे हैं उसको लेकर सवाल है। अब देखिए बंगाल का एग्जांपल मैंने देने की यहां पर कोशिश की कि बंगाल के भीतर नहीं, मैं बस ऐड कर दूं ना आपको, 27 लाख वोटर जो अचानक लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर फाइनल लिस्ट बनने के बाद चुनाव आयोग ने कहा कि हमारे सॉफ्टवेयर में दिख रहा है कि 27 लाख वोटर ये तो हमारे सॉफ्टवेयर में जुड़ ही नहीं पा रहे और इसी के वजह से लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में उनको हटाना पड़ेगा हमें। तब चुनाव आयोग ने उसमें सुधार करने की कोशिश नहीं की क्योंकि समय ही नहीं था उनके पास। अब जब दिल्ली की बारी आई है तब 33 लाख में से 22 लाख वोटर्स अपने आप ठीक हो जाते हैं, उनको समझ में आ गया कि भाई जो उनका सॉफ्टवेयर है वो छोटी छोटी गलती पकड़ रहा है, बिना वजह की गलती पकड़ा है, उसके वजह से वोटर्स को वोटिंग के राइट से वंचित रहना पड़ेगा। यही बात तो कहने की कोशिश कर रही थी राजनीतिक पार्टियां।
10: 30 लाख एक बंगाल जैसे स्टेट में जिसमें 12 करोड़ की जनसंख्या है उसके एक औसत को आप उसको प्रोपोर्शनली देखिए, और आप दिल्ली में देखिए 33 लाख का जो नंबर था वो बहुत ही बड़ा नंबर था, जिसमें कि मेरा खुद का SIR में नाम कटा था और जिसके बेसिस पे मैंने पेपर वर्क किया और मुझे समझ में आ रहा था कि क्यों कटा था, वहां पर सॉफ्टवेयर में ग्लिच था, आइडेंटिफाई किया, त्रुटि का समाधान किया, लेकिन जवाबदेही बनती है इलेक्शन कमीशन की। लेकिन साथ ही साथ अगर विपक्ष यह सोच रहा है कि इसको मुद्दा बना के वो चीफ जस्टिस को सड़कों पे खींच सकते हैं जैसा कि केरला कांग्रेस ने किया, तो वो आग के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो प्रेसिडेंट से जाके मिलते हैं, प्रेसिडेंट बोलती है आप मुझको लेकर आइए एविडेंसेस, कितने दिन हो गए प्रेसिडेंट के पास गए हुए एविडेंसेस, क्या आप सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आप उन तक गए और खाली हाथ गए, जब आपसे बोला गया कि आप लेकर आओ एविडेंसेस मैं देखूंगी, उसके बाद आपके पास दोबारा मुड़ के जाने के लिए समय नहीं मिला कि आपको कि आपका तमाशा खत्म हो गया, कि आपको लगता है कि
6: कॉन्स्टिट्यूशनल रजत सेठी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे मुद्दे को पॉलिटिसाइज किया गया है और इसके तहत राजनीतिक दृष्टि से कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स को टारगेट करने की कोशिश हो रही है। अजय आलोक कुछ जवाब देना चाह रहे थे, पहले आशुतोष को, उसके बाद पूजा त्रिपाठी जवाब देंगे रजत सेठी का।
5: साहिल, आपने बोला कि आरोप लगे हैं और अगर आरोप हैं तो दिल्ली पुलिस इस पर कार्रवाई करे, ये आरोप नहीं लगे हैं। JNU की कमेटी ने उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो उनकी कमेटी में प्रोफेसर था उसको बर्खास्त कर दिया गया है, 11 लोग के यौनाचार में। पुलिस जो काम करेगी करेगी, हम कांग्रेस पार्टी से कह रहे हैं स्मैश द पेट्रियार्की के नाम पे बकवास करने वाली ये पार्टी अभी तक अपने MP को स्मैश नहीं कर पाई, उनको निलंबन नहीं कर पाई, ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। प्रियंका गांधी अन महिला नहीं है, पूजा जी नहीं है वहां पे, सबको है ना, महिला ही है ना, ठीक है, नैतिकता इनसे उम्मीद ही मत रखिए। और दूसरे हमारे ज्ञानी प्रभु आशुतोष जी इतना ज्ञान जब बरसा रहे हैं, अभी तो खैर रजत जी ने आपको बता दिया कि रेजिडुअल पावर क्या होते हैं, डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे लेगा, तो और जब इतना ज्ञान आपको है तो ये भी ज्ञान होना चाहिए प्रभु कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी नोटिस भेज दिया है CEC को, EC को, MD IT को, सबको जवाब देने के लिए कहा है, सबका जवाब सामने आएगा। कल तक तो आप ये ज्ञान दे रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का एक भी बड़ा नेता, कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर आके नहीं बोलता, ऐसे प्रवक्ता आके बोलते हैं इलेक्शन कमीशन को बचाते हैं। आज जब हमारे नेता लोग भी कल से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे, हमारे मिनिस्टर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे, तब आपकी ये राय कहां चली गई, कल तक तो बहुत ज्ञान दे रहे थे। तो प्रभु उतना ही ज्ञान दीजिए ना जो कल को अपने आप ही पे भारी ना पड़े, और इतनी ही राहुल गांधी जी से मोहब्बत है तो रखिए अपनी मोहब्बत अपने पास, लेकिन अराजकता की छूट नहीं दी जा सकती आप लोग को कि आप सड़कों पर अराजक बन के निकलेंगे। और जिस ढंग से हम बोल रहे हैं कि फॉरेन एलिमेंट्स का हाथ है वो साबित हो रहा है, क्योंकि जब बांग्ला साहिब गुरुद्वारे में 150 लड़के पकड़ाए, उनको 3,000-3,000 रुपया दे के लाया गया था प्रोटेस्ट करने के लिए, 3,000 रुपए दे के पंजाब से आप ला रहे हैं, छात्रों के कंधे का इस्तेमाल कर रहे हैं, हर तरह की अराजक हरकत कर रहे हैं आप, चीफ जस्टिस को लिख रहे हैं रिजाइन कर दो, केरला कांग्रेस लिख रही है, प्रेसिडेंट के पास जा रहे हैं, प्रेसिडेंट को झूठा कोट कर दे रहे हैं कि प्रेसिडेंट साहब ने हमारी बातों का खंडन नहीं किया, प्रेसिडेंट साहब ने एविडेंस लाई
6: है, बेसिकली कह रहे हैं कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिसेस दी है तो प्रोसेस को फॉलो करने के लिए समय दीजिएगा। ये सड़क पर उतर कर आप जिस तरीके से दबाव बनाने की राजनीति कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? दरअसल आशुतोष जी वो उनका आर्ग्यूमेंट है।
9: नहीं देखिए, अभी मोहब्बत की बात की अजय आलोक जी ने, मैं इनका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जिस पार्टी में है वहां मोहब्बत की अलग परिभाषा है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता ना उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी करना चाहता हूं। देखिए, ये जब पॉलिटिकल पार्टी मैदान हारने लगती है तब वो इस तरीके की बातें करती है। अरे भाई, वो MP के खिलाफ आपकी पुलिस क्या कर रही, सो रही है क्या? अरेस्ट करो उसको, जेल में डालो, वो नहीं करेंगे, राहुल गांधी कार्रवाई करें, आपकी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, वो चुपचाप बैठी हुई है, वो चुपचाप बैठी हुई है, राहुल गांधी कार्रवाई करें। अरे कुलदीप सेंगर को बचाव करने वाली पार्टी से क्या उम्मीद करते हैं आप? राम रहीम को पैरोल देने वाली पार्टी से क्या उम्मीद करते हैं आप? वो जो बेंगलोर का जो लड़का है, वो बेंगलोर का जो लड़का है जिसने मुस्लिम महिलाओं के बारे में जो टिप्पणी की थी सोशल मीडिया पे, आपको याद है ना उसका उस पर भारत के विदेश मंत्रालय को जवाब देना पड़ा था, भारत के रिश्ते खराब हो गए थे। उस पार्टी को अजय आलोक बिलोंग करते हैं भाई, कुलदीप सेंगर से आपकी दोस्ती है ना, आपकी कुलदीप सेंगर से दोस्ती है, तो आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए ना, आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा जालुक जी, आपकी पार्टी में मोहब्बत की परिभाषा बहुत अलग है, हमको मत सिखाइए मोहब्बत की परिभाषा। मैं नाम लूंगा, एक एक आदमी का नाम लूंगा जो रंगे हाथों पकड़े गए हैं। बता दूं मध्य प्रदेश के वो नेता क्या थे, मध्य प्रदेश के वो बीजेपी के नेता कौन थे जो मोहब्बत में पकड़े गए थे रंगे हाथों?
6: आलोक जी ने आपको उनके डिबेट पर ला दिया आशुतोष जी, आज आलोक जी ने आपको उनके डिबेट पर ला दिया।
9: बिल्कुल सही बात है, मोहब्बत की बात कर रहे हैं,
6: रजत सेठी जो सवाल उठा लेता हूँ मैं,
9: आशुतोष जी तो मोहब्बत कर रहे थे।
6: पूजा त्रिपाठी, रजत सेठी सवाल उठा रहे हैं, जब सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के सामने है तो ये सड़क पर उतरकर अनार्की का क्या मतलब है, रजत सेठी का सवाल था।
7: तो रजत सेठी मुझे ये बता दें कि पॉलिटिकल पार्टीज किस लिए होती हैं? घर घर मोदी हर हर मोदी करने के लिए, राम रहीम को परोल देने के लिए, दुष्यंत कुमार को सिक्किम का गवर्नर बनाने के लिए। देखिए अभी रजत ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही जिसपे ध्यान करना जरूरी है कि दो चार बच्चों की मौत हो जाती। कल दिल्ली में कम से कम 2.5 लाख लोग जमा हुए थे, बिल्कुल ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। मुझे पता है भारतीय जनता पार्टी फुटेज पे फुटेज खंगाल रही होगी, किसी ने मोदी जी को गाली तो नहीं दी, फिर वो लेके आ गए एक नया एंगल। पर आप चाह रहे हैं कि दो चार बच्चों की मौत हो जाए इस प्रदर्शन में, आप चाह रहे हैं कि एक जब विदेश का सिटीजन सड़कों पे उतर रहा है अपने वोट के अधिकार के लिए, और आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। आपके पास वेज एंड मीन्स थे, आपने सॉफ्टवेयर ग्लिच से अपना नाम करवा दिया, पर यहाँ पे जो इतने सारे लोग करोड़ों लोगों के नाम हटे हैं शायद उनके पास वेज और मींस नहीं थे, और इसके खिलाफ ही विपक्ष सड़क पे है। और हम नहीं चाहते दो चार बच्चे भी नहीं, हम नहीं चाहते कि किसी की भी मौत हो, हम नहीं चाहते कि
6: ये टकराव कैसे रुकेगा। रजत
7: ये तरीका है, अगर आपका ये इरादा है
6: ये टकराव कैसे रुकेगा आखिर में, 30 सेकंड बचे हैं मेरे पास, ये टकराव कैसे रुकेगा फिर?
10: देखिए कुतर्क की एक सीमा होती है, मतलब उसकी जो आयु होती है ना बहुत छोटी होती है। तो आप जब विषय उठाया, जब कांग्रेस जनता पार्टी ने नीट का उठाया, सब लोग अंदर से हिले थे, जो बच्चों की ने आत्महत्या करी, जिस तरह से हो रहा था, कोई सलूशन नहीं निकल रहा था।
6: ठीक है, टकराव कैसे रुकेगा, टकराव कैसे रुकेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। और आज की स्थिति में विपक्ष पूरी तरीके से तैयार है, एक साथ है और सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार चुनाव आयोग पर कार्रवाई कब होगी, मुख्य चुनाव आयुक्त पर कार्रवाई कब होगी, क्या कार्रवाई होगी या उनके सवालों के जवाब उनको मिल पाएंगे। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होंगी, सीधे वहां पर भी चलेंगे, लेकिन फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: यार लोन भूल गया। मैरी
3: इट्स
2: जस्ट अ गुड बैंक ना।
4: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
2: स्मॉल फाइनेंस बैंक,
4: स्मॉल वर्किंग कैपिटल।
5: इंडिया गठबंधन के सारे नेतागण और यहाँ पर पधारे हुए हमारे जर्नलिस्ट भाइयों और बहनों, हम आपको अगला प्रोग्राम क्या है इसके बारे में भी बताएंगे। और जो चार दिन में जो प्रोग्राम्स इंडिया गठबंधन के ओर से चलाया गया, राहुल जी और दूसरे नेता भी इसको बहुत ही गंभीरता से लेके जनता के समस्याओं को सुलझाने के लिए वो काम किए और बहुत ही बढ़िया सक्सेस आपने देखा होगा। शायद ही इतनी बड़ी संख्या में लोग कभी नहीं जुड़े दिल्ली में। ये पहली बार है जो खुद अपने आप को सारे नौजवान लोग, साथियों, सभी लोग मिलके आए, आप देखे हैं। फिर उसके बारे में मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। जो मोदी का प्लान है वोट चोरी का, उसको पूरा एक्सपोज करने के लिए सारे लोग तैयार हो गए। इसीलिए मैं खुद ज़्यादा बोलने से मैं विनती करूँगा कि राहुल गांधी जी,
6: तेजस्वी जी
5: आपके सामने अपनी बात रखेंगे, प्लीज आप सुनिए।
7: आप सब लोगों का धन्यवाद, सभी लोगों को नमस्कार। आप सब लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने जिस प्रकार से लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया है, साफ और साफ बीजेपी, अमित शाह और मोदी जी के इशारे पे हम सब लोग एकजुट हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए। और इसके लिए जो कुर्बानी देना होगा हम सब लोग जो है मिलकर के देंगे। ये देश गांधी जी का देश है, ये देश लोहिया जी का देश है, ये देश भगत सिंह का देश है, ये देश कर्पूरी ठाकुर जी का देश है। और इस देश को जो लोग संवैधानिक संस्था है जो इस देश की, उसको हाईजैक करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो। लेकिन इलेक्शन कमीशन और ज्ञानू गुप्ता जी तो और आगे बढ़कर के चले गए 10 कदम। जिस हिसाब से एक कठपुतली की तरह ज्ञानेश गुप्ता जी ने जो काम किया है उसको जो है सजा जरूर मिलेगी। ये लोग बचने वाले लोग नहीं है, ये लोग डरे हुए लोग हैं। और ये डर इनका दिखाता है कि जंतर मंतर को जो है अब प्रोटेस्ट जहां होना चाहिए था, जो होता रहा है, जिसका ऐतिहासिक महत्व रहा है, उसको बदल करके जो है दिल्ली के बॉर्डर पे जो है कर दिया गया है। ये इनका डर दिखाता है। तो हम सब लोग आगे इस लड़ाई को जारी रखेंगे, हम सब लोग मिल करके लड़ेंगे और जीतेंगे। और जिन लोगों ने षड्यंत्र किया है, चाहे वो मोदी जी हों या ज्ञानेश गुप्ता हों या अमित शाह हों, वो चोरी कराई है, फर्जी चुनाव कराया है, देश की जनता के सामने ये मामला उजागर हो गया है और हर एक व्यक्ति देश का अब इनसे हिसाब मांग रहा है। इनको जवाब देना होगा, इन पे कार्रवाई ज़रूर होगी। और हम सब लोग लोकतंत्र

0: एक्सपोज करने के लिए सारे लोग तैयार हो गए। इसीलिए मैं खुद ज़्यादा बोलने से मैं विनंती करूंगा कि राहुल गांधी जी
1: तेजस्वी जी
0: आपके सामने अपनी बात रखेंगे, प्लीज आप सुनिए।
2: आप सब लोगों का धन्यवाद, सभी लोगों को नमस्कार। आप सब लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने जिस प्रकार से लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया है, साफ और साफ बीजेपी अमित शाह और मोदी जी के इशारे पे हम सब लोग एकजुट हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए, और इसके लिए जो कुर्बानी देना होगा हम सब लोग जो है मिलकर के देंगे। ये देश गांधी जी का देश है, ये देश लोहिया जी का देश है, ये देश भगत सिंह का देश है, ये देश कर्पूरी ठाकुर जी का देश है, और इस देश को जो लोग संवैधानिक संस्था है जो इस देश की उसको हाईजैक करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो। लेकिन इलेक्शन कमीशन और ज्ञानू गुप्ता जी तो और आगे बढ़कर के चले गए 10 कदम। जिस हिसाब से एक कठपुतली की तरह ज्ञानेश गुप्ता जी ने जो काम किया है उसको जो है सजा जरूर मिलेगी। ये लोग बचने वाले लोग नहीं हैं, ये लोग डरे हुए लोग हैं, और ये डर इनका दिखाता है कि जंतर मंतर को जो है अब प्रोटेस्ट जहां होना चाहिए था, जो होता रहा है, जिसका ऐतिहासिक महत्व रहा है, उसको बदल करके जो है दिल्ली के बॉर्डर पे जो है कर दिया गया है, ये इनका डर दिखाता है। तो हम सब लोग आगे इस लड़ाई को जारी रखेंगे, हम सब लोग मिल करके लड़ेंगे और जीतेंगे। और जिन लोगों ने षड्यंत्र किया है, चाहे वो मोदी जी हों या ज्ञानेश गुप्ता हों या अमित शाह हों, वो चोरी कराई है, फर्जी चुनाव कराया है, देश की जनता के सामने ये मामला उजागर हो गया है, और हर एक व्यक्ति देश का अब इनसे हिसाब मांग रहा है। इनको जवाब देना होगा, इन पे कार्रवाई जरूर होगी, और हम सब लोग लोकतंत्र और संविधान को बचाने में कामयाब जरूर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अब आपके सामने
1: डी राजा जी
0: बोलेंगे, अपनी बात को रखेंगे।
3: फ्रेंड्स, वी आर द मीटिंग ऑफ सीनियर लीडर्स ऑफ इंडिया ब्लॉक। वी डिस्कस्ड the prevailing situation in the country. We discussed how to carry forward the campaign demanding the resignation of Chief Election Commissioner Ganeshwar. During this period, the whole country is agitating. People across the country are angry and agitating, demanding that Chief Election Commissioner should go. Delhi is national capital, and Delhi is our city, but you see everywhere barricades and people are not allowed to move freely, and they say it is because of protests. Yes, protests will take place, and you cannot suppress, crush protests. Now government has denotified Jantar Mantar. We strongly condemn this. Jantar Mantar should remain as place for our protest by the people. Because earlier, Rajpath, we used to have protest, it was banned. Earlier, we used to have protest in Parliament Street, it was banned. Now, Jantar Mantar, then where do they want people to go? The national capital people. So we strongly condemn the denotification of Jantar Mantar. We will fight to regain the Jantar Mantar for the place for protest by the people. We are not asking anything new. It is constitution which has been given to us by Dr. Ambedkar makes it clear people have the right to express their dissent, express their opposition to the policies of government of the day, and for that people should have space, and they cannot stretch away.

0: space, we will fight and regain Jantar Mandar to be the place for protests for the people.
1: हमने आपके सामने सुप्रिया सुले जी बात करी है.
2: सबको नमस्कार. इंडिया अलायंस की तरफ से हम पूरी ताकत से साथ हैं. और जो संविधान की हत्या हुई है और संविधान आज इस देश में खतरे में है, इसीलिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी. हम आंदोलन करते रहेंगे. और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान में हम सब भारतीयों को अधिकार दिया है, एक आदमी एक सरकार, उसे कुचलने की बहुत बड़ी भूल कर रही है. और इसके लिए इस खिलाफ, इस अन्याय और अत्याचार के खिलाफ हम पूरी ताकत से साथ हैं और लड़ते रहेंगे. और आंदोलन जारी रहेगा दिल्ली में लेके गली तक. NCP SP और शिवसेना और हम सारे इंडिया अलायंस पूरी ताकत से साथ में रहेंगे और हर भारतीय को उसका अधिकार दे के रहेंगे. धन्यवाद.
1: अब आपके सामने
3: हरेंद्र मालिक
1: जी बात करेंगे, समाजवादी पार्टी के.
4: सम्मानित पत्रकार और छायाकार साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद. समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ अटूट खड़ी है. हम अन्याय की इस लड़ाई में विपक्ष की एकता को बना करके रखते हुए, जो लोकतंत्र के हत्यारे हैं, जो लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, जिन्होंने संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करके चुनाव को प्रभावित किया है और वोट चोरी का काम किया, घृणित काम किया, जो संविधान के प्रतिकूल काम करते हैं, हम उस लड़ाई में इंडिया गठबंधन के साथ, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश है, हम मजबूती के साथ खड़े रहेंगे और आखिरी क्षण तक लड़ाई लड़ेंगे, न्याय की लड़ाई लड़ेंगे. और निश्चित रूप से जब जब राजा का पतन होता है तो अत्याचार बढ़ते हैं, अत्याचार इनके बढ़े हैं, इन अत्याचारों के खिलाफ हम लड़ेंगे और जीतेंगे, ये बिल्कुल बहुत बहुत साफ. धन्यवाद.
5: देखिए, 2 अक्टूबर से दिल्ली में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, वोट चोरी के खिलाफ, हमारी लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ एक आंदोलन शुरू हुआ है. और उस आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने पैरामिलिट्री फोर्सेस बुला लिए, मेट्रोज बंद कर दी, रेलें बंद कर दी, इंटरनेट शटडाउन कर दिया, दुकानें बंद कर दी, सब कुछ बंद कर दिया. कोई नहीं रोक सकता. ये सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि सड़क और पार्क सब प्रोटेस्ट के लिए ज़रूरी होते हैं और प्रोटेस्ट के लिए दिए जाने चाहिए. लेकिन ये सरकार सोचती है कि इनको डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट से दिए जाएंगे. एनीवे, देखिए, ये लड़ाई जो है, ये बहुत बड़ी बात है कि अब सारा UPA अलायंस ऑपोजिशन साथ में आ गया है, सिविल सोसाइटी साथ में आ गई है और सब लोग मिलकर ये आंदोलन लड़ेंगे. और अब देखिएगा कि फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस भी आएंगे, वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रेड यूनियंस भी आएंगे, हर तरह के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस तो ऑलरेडी हैं, सब तरह के ऑर्गेनाइजेशन सिविल सोसाइटी के आएंगे, क्योंकि हमारे ये लोकतंत्र की लड़ाई है. सब लोग साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और हम लोग जीतेंगे.
1: अब आपके सामने CPM के नेता बेबी बात करें.
6: दिस अनएक्सपेक्टेड दिस. यू सी, वी ऑल नो, जो आदमी निष्पक्ष अंबेडकर का काम करना था, ज्ञानेश कुमार, वो रूलिंग पार्टी का टीम में ज्वाइन किया, इसलिए इनका खिलाफ हमारा संघर्ष आगे जाता है. और जो संघर्ष करने के लिए एक डेसिग्नेटेड जगह था जंतर मंतर, इनका चोरी भी करता है, वोट चोरी करता है, संघर्ष का जगह का चोरी करता है, जनतंत्र का चोरी करता है. इसका खिलाफ एकजुटा हमारा संघर्ष आगे जाएगा. आप सबका मदद इसके लिए मांग करके मैं खत्म करता है.
1: थैंक यू. सागरिका घोष जी,
6: ओके जी, आप बाइक से
1: बैठूंगा.
7: थैंक यू वेरी मच. एवरी डे इट इज बिकमिंग क्लियर दैट द ज्ञानेश कुमार हेडेड इलेक्शन कमीशन इज डिस्ट्रॉइंग फ्री एंड फेयर पोल्स इन इंडिया. as long as the Gyanesh Kumar headed election commission continues, there will be no free and fair polls in India. Therefore, we stand completely united with all the leaders, all the parties of the India Alliance, and we will not stop until Mr. Gyanesh Kumar is removed and criminal proceedings are launched, not just against Mr. Gyanesh Kumar, but against all the election officials of the Election Commission who have supervised elections in Haryana, Maharashtra, Bengal and Bihar, because these have been the vote chori elections. And as Mr. Rahul Gandhi has been repeatedly pointing out, these states have seen vote chori on a massive scale. We, the TMC, have been continuously also pointing out that the SIR exercise is designed only for deletions and only to manipulate the elections. The Bengal government that exists at the moment is an illegitimate government. It is there in power through vote chori. As you know, today the protest by the All India Trinamool Congress was stopped. So they're not only doing vote chori, they're also stopping protests. You've seen how protests were repressed in Delhi, protests in Bengal were repressed. The Election Commission is not fair. Two officers of the Election Commission are functioning as officers in the Bengal government at the moment. So we have a set of demands. Halt the SIR process, stop it, go back to the old roles. Gyanesh Kumar must be dismissed and criminal proceedings must be launched against him, and all the officers such as Seema Khanna who have been involved in this vote chori, all of them must be investigated and criminal proceedings must be brought against all of them. We will not rest until this election commission is entirely removed.
1: Thank you, Sanjay.
3: नैनेश कुमार एक माफिया है. नैनेश कुमार एक ऐसा माफिया है जिसने पूरे सिस्टम का अपराधीकरण किया, और ऐसे माफिया से कैसा लड़ना है और कैसा निपटना है हमको मालूम है. 10-12 साल तक मोदी और शाह ने ये देश को डराकर धमकाकर रखा था. अब डरने की बारी उनकी है. अब डर कर बैठे हैं. पूरा 4 लाख आर्म फोर्सेस यहाँ लगाकर अंदर बैठे हैं. लेकिन ये जो संघर्ष है राहुल जी के लीडरशिप में, वो जारी रहेगा. दिल्ली में रहेगा, स्टेट में रहेगा, हर शहर में रहेगा, और हम पूरे लोग यहाँ जो है एक साथ है और एक साथ रहेंगे.
1: थैंक यू. अब स्टूडेंट लीडर नेहरा जी बात करें.
8: थैंक यू सर. व्हेन वी से वी द पीपल वर्सेस द बीजेपी, वी आर टॉकिंग अबाउट वन फाइट. वी आर टॉकिंग अबाउट वन कॉमन एनिमी, वन एनिमी ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री, वन एनिमी ऑफ द डेमोक्रेसी, ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, वन एनिमी of the constitution, and the name of that enemy is the BJP. If the BJP thinks that it can attack the foundation of what it means to be a democracy, and then when the people come onto the streets to protest and demand their voting rights, and then our right to protest can also be taken away from us and we will be quiet, then the BJP has something else on its head. They can compromise democracy, they can compromise what the constitution stands for, because they have never had a role in making India a democracy. They have never had a role in what the constitution stands for. But the common people of this country who have fought for, sacrificed their lives for making India this democracy and for this constitution, are not ready to settle for a stolen mandate, are not ready to settle for a compromised democracy. And that is why it is wonderful that all the opposition parties, all the parties in the opposition are united. We as students, as the young people of this country, are also united. And we know that in the coming few years, in the coming few months, our fight, our battle is going to be only and only against the BJP, because the attack on voter rights is an attack on India, is an attack on democracy. And for all their proclamations of people speaking against them or criticizing them, all their proclamations that we are anti-national, we are gaddars, it has truly been revealed that the people who have actually committed treason against the people of this country is the BJP and the people who have facilitated this treason. The Election Commission of India and the CEC, Yanesh Kumar, needs to go. The SIR process, it's been a long time. Opposition parties have been continuously saying that this entire procedure is compromised and it is being undertaken not to ensure that the voter rolls are updated, but to ensure that for once, citizens are being elected by the Election Commission, citizens are being elected by the ruling party, and then those citizens are being told to elect the ruling party. So that is why we are all united, and it is great that all the students, young people, opposition parties are together. Thank you.
1: Thank you. Ab ye aapke samne hamare neta Shri Rahul Gandhi ji apni baat rakhenge.
9: Thank you. Namaskar. How are you?
1: How are you? He's asking. No response.
9: No, sir. They have to, after yesterday, they have to be careful. Because I have asked a question, so they have to be careful. We are all standing here together as one. As I said yesterday, there are no parallel protests. There is one singular protest. And the protest has one mission: restoration of democracy in India. Democracy has been destroyed in this country. The election system has been destroyed. The constitution has been torn up and thrown away. We are fighting together to restore democratic rule, genuine democratic rule in this country. The one method of expression of democracy was Jantar Mantar, and now the government has decided that Jantar Mantar can no longer be used to express democratic feelings. Well, we are going to challenge that idea. It is not going to be so simple for the government to decide that the Indian people will not fight for their voice. The people who have done this, Mr. Modi, who is the main architect, Mr. Amit Shah, who is the implementer, Mr. Gyanesh Kumar and others, they need to understand that the net is closing around them. It is not going to be so simple that you can destroy the Indian constitution and get away with it. Yesterday, you saw an expression, not of the political party standing here, but an expression of the people of India. We were there, but what happened yesterday could not have happened without the expression of the average citizen of this country, non-political citizen of this country. So the first thing as a group we would like to do is we'd like to thank the people of Delhi, the people of India, who stood with us against what is being done. This is not about us. This is about the people of India. This is about the future of the people of India. And we, all of us together, because we love you and we respect you, are going to fight to the end to restore democratic process in this country. And it is our commitment to you that the people who have done this, Mr. Modi, Mr. Shah, Mr. Gyanesh Kumar, the lady who's hiding right now in Dehradun, and others, are going to be brought to justice. I'd like to thank the press also, because you also are playing a very important role in this. You are showing a lot of courage. So, thank you very much. Jai Hind. Yes, Supreme Court. Sorry, last आखिरी बात. देखिए, मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था. मैंने perseverance शब्द यूज़ किया कि ये जो हमारी टीम है, ये रुकने वाली नहीं. आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तीन महीने बाद नहीं तो तीन, छः महीने बाद नहीं तो एक साल, नहीं तो दो साल, ये रुकने वाली नहीं. ये एंड गोल तक जाएगी. कैसे जाएंगे वो हम आपको बता नहीं सकते, क्योंकि फिर आपको सारा मतलब सरप्राइज ख़त्म हो जाएगा. और हम चाहते हैं कि आपके लिए और देश के लिए ये माहौल बना रहे, इंटरेस्टिंग रहे और सरप्राइजिंग रहे. मगर मैं आपको गारंटी देता हूं कि जिस प्रकार से हम सब ने मोबिलाइज किया, जिस एनर्जी से, जिस शक्ति से हमने मोबिलाइज किया, जिस यूनिटी के साथ हमने मोबिलाइज किया, उसी प्रकार से हम सब मिलकर लड़ते रहेंगे. थैंक यू. सुप्रीम कोर्ट, सॉरी अगेन, सुप्रीम कोर्ट वी हैव extreme respect for the Supreme Court, for the Chief Justice of India, for the judicial system of India. They have a role to play. We hope they will play that role. But we are also political people, and no matter what happens, no matter which institution plays a role or does not play a role, political resistance will continue. People's resistance will continue and it will triumph. Okay. Thank you.
10: Thank you.
11: Sir, जब आप लोग निकलते हैं, सर जी, राहुल सर, एक एक बड़ा सवाल है सर.
12: संघर्ष में हम सभी साथ हैं, ये कहते हुए राहुल गांधी विपक्षी नेताओं की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें तमाम नेता शामिल थे. तेजस्वी यादव को आपने सुना, आपने सुप्रिया सुले को सुना, आपने राहुल गांधी को सुना. जंतर मंतर को प्रदर्शन साइट से हटाना ठीक नहीं है, इस पर सभी नेताओं ने उस मंच से आवाज उठाई है कि जंतर मंतर एक प्रदर्शन साइट था और लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर देश की संसद से. ऐसे में इसको प्रदर्शन के लिए हमेशा के लिए खत्म कर देना लोकतंत्र में अच्छा नहीं है. संघर्ष में हम सभी साथ हैं कहते हुए राहुल गांधी, उन्होंने ये भी कहा कि कुछ महीने, साल, जितने भी लग जाएं, ये प्रदर्शन विपक्षी नेताओं का जारी रहे.

0: विमल को मेंबरशिप से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरह से हटाया जाए, बर्खास्त किया जाए, क्योंकि 11 बच्चियों को न्याय चाहिए।
1: लोकसभा से भी उसकी उसको पद से निष्कासित करना चाहिए।
2: राहुल गांधी में कुछ भक्ता की मैं उठी हूँ, मैं चिल्ला रही हूँ कि एक जर्नलिस्ट के साथ ये बताओ, आई स्पीक अबाउट दिस, मैं नहीं चुप बैठी हूँ।
3: नमस्कार, हल्ला बोल में आपके साथ मैं हूं अंजना ओमकश्यप। सीसी के खिलाफ राहुल गांधी की चाय पर जो चर्चा है वो खत्म हुई। इंडिया गठबंधन के नेताओं और सिविल सोसाइटी के सदस्यों को राहुल गांधी ने अपने घर पर चाय पर बुलाया था, और चाय पर इस चर्चा के बाद इंडिया गठबंधन के तमाम नेता सामने आए और उन्होंने अपने तेवर दिखाते हुए कड़े शब्दों में सरकार की निंदा की है। जंतर मंतर को एक विरोध प्रदर्शन की जगह वाली लिस्ट से हटा देना सबसे बड़ा सवाल। इसी के साथ उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हमारा यह आंदोलन चलता रहेगा, चाहे कुछ महीने लगे कुछ साल चले। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि आपको अभी प्रोग्राम नहीं बताएंगे क्योंकि इससे सरप्राइज फैक्टर चला जाएगा और माहौल बना हुआ है। जंतर मंतर के प्रदर्शन स्थल नहीं रहने पर भी कई नेताओं का गुस्सा निकला ही। राहुल गांधी ने चाय पर चर्चा की तो बीजेपी ने इधर जेएनयू से बर्खास्त कांग्रेस सांसद के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया। यौन उत्पीड़न के आरोपी सांसद बिमोल अकोईजाम के खिलाफ बीजेपी की महिला सांसदों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर कानूनी कार्रवाई की मांग की। लेकिन हम फिलहाल आपको दिखा रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज क्या कहा है। कांग्रेस का प्रदर्शन सफल रहा, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहा है। दिल्ली में पहली बार इतनी संख्या में लोग जुटे और कांग्रेस का प्रदर्शन सफल रहा है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। और इसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि ज्ञानेश कुमार ने लोकतंत्र को कुचला है। जंतर मंतर को अब प्रोटेस्ट जोन से हटाने पर भी उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज कराई। संवैधानिक संस्थाओं को हाईजैक किया है, मोदी सरकार डरी हुई है, तेजस्वी यादव ने कहा। उसके बाद डी राजा ने भी सवाल खड़े किए और उन्होंने कहा बैठक में मुहिम को आगे बढ़ाने पर चर्चा हमारी हुई है और जंतर मंतर पर प्रदर्शन से रोक क्यों। सभी नेता ये कहते रहे कि सरकार डरी हुई है। सुप्रिया सुले उसके बाद आई और सुप्रिया सुले ने कहा कि हम पूरी ताकत से एक साथ हैं और एकजुट होकर। तो जो सवाल बार बार बीजेपी विपक्ष की एकजुटता को लेकर पूछती है या उठाती है, वो सुप्रिया सुले ने कहा कि संविधान को कुचला जा रहा है और हम गठबंधन के साथी हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी ये बयान आया, उन्होंने कहा कि हम गठबंधन के साथ हैं। संजय राउत ने कहा ज्ञानेश कुमार माफिया है। तो इंडिया गठबंधन के तमाम साथी आज एक मंच पर आए, ऐसे माफिया से निपटना हम जानते हैं। तो कुल मिलाकर आज विपक्ष के तमाम नेता एक के बाद एक बोलते चले गए और उन्होंने सरकार को जमकर घेरा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विपक्षी एकजुटता की तस्वीर दिखाने की कोशिश हुई है राहुल गांधी के घर पर चाय पर चर्चा और उसके बाद सीधा सरकार के खिलाफ हुंकार। तो आज हम यही चर्चा करेंगे क्योंकि एक तरफ सरकार पर विपक्ष का यह हमला है, राहुल गांधी के घर पर चर्चा है, चाय पर चर्चा, तो वहीं दूसरी तरफ महिला सम्मान के मुद्दे पर बीजेपी ने आज संभाल लिया है मोर्चा। महिला सांसदों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उनका यह आरोप है कि यौन उत्पीड़न के जो आरोपी हैं सांसद बिमोल अकोईजाम, उनके खिलाफ ये मोर्चा निकाला आज बीजेपी के सांसदों ने। अब उनका यह कहना है कि भाई जो इंटरनल कमेटी की रिपोर्ट है जेएनयू की, उसमें उनको दोषी पाकर बर्खास्त कर दिया गया है, तो क्यों नहीं कांग्रेस उनको हटाती है। उन्होंने राष्ट्रपति को भी ज्ञापन सौंपा। सवाल है कि क्या ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग का जवाब बिमोल अकोईजाम के इस्तीफे की मांग है। मतलब प्रोटेस्ट वर्सेस प्रोटेस्ट का खेल अब देश में चल रहा है। सवाल यह भी है कि स्मैश द पेट्रियार्की कहने वाले राहुल गांधी यौन उत्पीड़न के आरोपी सांसद पर मौन क्यों है। सीसी पर लड़ाई, महिला सम्मान पर आई, राहुल की चाय पर चर्चा, महिला सम्मान पर बीजेपी का मोर्चा। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें ये रिपोर्ट देखिए। छह अक्टूबर से लगातार सड़कों पर उतरने के बाद आज राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ चाय पर बैठे। चाय पर इस चर्चा का मकसद सीईसी के इस्तीफे की मांग पर तूफान खड़ा करने का है। विपक्ष का ऐलान है कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा।
4: मोदी, हु इज द मेन आर्किटेक्ट मिस्टर अमित शाह, हु इज द इम्प्लीमेंटर मिस्टर ज्ञानेश कुमार एंड अदर्स, दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट द नेट इज क्लोजिंग अराउंड देम. It is not going to be so simple that you can destroy the Indian Constitution and get away with it.
3: सीईसी ज्ञानेश कुमार को हटाने की रणनीति के तहत राहुल गांधी हर रोज नया मोर्चा खोलते हैं, लेकिन बीजेपी अब राहुल गांधी को यौन उत्पीड़न के आरोपी कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजाम को लेकर घेरने की कोशिश में है. बीजेपी की 16 महिला सांसदों के दस्तखत वाला ज्ञापन आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपा गया. इस ज्ञापन में राष्ट्रपति से अपील की गई है कि वो इस मामले को लोकसभा अध्यक्ष के संज्ञान में लाने के लिए लोकसभा की एथिक्स कमेटी को भेजें. आरोपी सांसद को संसद से निलंबित किए जाने की भी मांग की गई है. राष्ट्रपति को सौंपे ज्ञापन में कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए कहा गया कि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के आधार पर कांग्रेस ने सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है. इससे ये सवाल उठता है कि क्या महिला सम्मान और जवाबदेही राजनीतिक दलों के भीतर समान रूप से लागू होते हैं, खासकर तब जब आरोपी सांसद की पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से निकटता की चर्चा हो.
5: कांग्रेस का चरित्र ये बता रहा है कि वो किस तरह से लड़की हो लड़ सकती हूँ का नारा देते देते हम बच्चियों के साथ ही लड़ने लगे हैं.
6: बच्चे आए सामने, जेएनयू के 11 बच्चियां आई, उनके साथ अब खड़े नहीं हो पाए. रिपोर्टर को धक्का दिया, पुलिस कर्मचारी को धक्का दिया, किस हिसाब से ये स्मैश द पैट्रियार्की दिख रही है.
1: जो हमारी युवतियां उस कॉलेज की बहुत हिम्मत के साथ शिकायत की है, उनकी शिकायतों पे उनको किसी भी तरह के नुकसान न हो, क्योंकि जो वो कांग्रेस का सांसद है, कांग्रेस का प्रोटेक्शन है, प्रभावशाली व्यक्ति है और आज पवित्र सदन का वो सांसद सदस्य भी है, तो लोकसभा से भी उसकी उसको पद से निष्कासित करना चाहिए.
7: हमने मामाइन से यही प्रार्थना की है कि डॉक्टर बिमल को मेंबरशिप से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरह से हटाया जाए, बर्खास्त किया जाए, क्योंकि 11 बच्चियों को न्याय चाहिए. ना केवल 11 बच्चियों को, हम सभी महिलाओं को न्याय चाहिए.
3: बीजेपी महिला मोर्चा ने सोमवार को बिमोल अकोइजाम के खिलाफ कांग्रेस मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया था. सेक्सुअल फेवर के बदले नंबर बढ़ाने का दबाव बनाने की 11 छात्राओं की शिकायत सही पाए जाने पर जेएनयू ने बिमोल अकोइजाम को विश्वविद्यालय से बर्खास्त किया है. बिमोल अकोइजाम के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है. इनर मणिपुर सीट के सांसद बिमोल अकोइजाम पर कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन वो खुद आरोपों को राजनीतिक साजिश बता रहे हैं.
8: No, this is nothing but harassment. They know that once this khap panchayat style of doing by JNU, if it is challenged in a court of law, the court will take notice of the complete disregard for norms and rule and regulations. And BJP is using this because I know that I have spoken out. They expect Manipur or the Northeast in general to be silent, docile and, you know, submissive and all that. I am not used to that.
3: JNU के आरोपी प्रोफेसर के मामले के बीच बीजेपी एक गर्भवती महिला पत्रकार के आरोपों को भी जोर शोर से उठा रही है. आरोपों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी के प्रदर्शन के दौरान महिला पत्रकार को धक्का दिया गया.
9: ऐसे आप लोग धक्का मत दीजिए, राहुल जी, अरे देखिए धक्का मत
2: राहुल गांधी ने सबसे पहले मुझे पकड़ा, वीडियो भी है उसमें साफ साफ दिख रहा है कि और मुझे खींचा और मेरा जर्नलिस्ट, मेरा कैमरा पर्सन क्योंकि वो रिकॉर्ड कर रहा था, तो उसके राहुल गांधी ने तुरंत मेरे कैमरा पर्सन को भी धकेल दिया. राहुल गांधी ने खुद धक्का दिया मेरे कैमरा पर्सन को, पूरी तरह से नीचे दब गई. मुझे लगा कि मुझे सांस नहीं आएगी अब, और मुझे पता है कि वो गंदे लोग थे. वो राहुल गांधी ने मुझे धक्का दिया, मैं उठी हूँ, मैं चिल्ला रही हूँ कि एक जर्नलिस्ट के साथ ये बताओ, आई स्पीक अबाउट दिस, मैं नहीं चुप बैठूंगी. और उनके लोग नहीं थे सर, वो गुंडे थे. दे वर शाउटिंग राहुल गांधी जिंदाबाद. मैंने बोला कि ऐसे जिंदाबाद होगा राहुल गांधी का.
3: बीजेपी ने सोशल मीडिया पोस्ट में भी लिखा है कि कभी ऐसा नेता प्रतिपक्ष देखा है क्या जो महिला पुलिस के साथ गलत हरकत करता हो, जो अपने ही कार्यकर्ता को कोहनी मारता और धकेलता हो, जो एक पत्रकार को धकेलता हो.
10: कल का जो भद्दा व्यवहार था और स्वयं राहुल गांधी और उनके साथियों ने जिस प्रकार से एक पत्रकार बहन के साथ दुर्व्यवहार किया, लेकिन जिस तरीके से उसका धक्कम धक्की की, जमीन पे फेंका, फिर उन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, सिर्फ गुनाह क्या था कि उनका प्रोटेस्ट कवर कर रही थी, दो सवाल पूछ रही थी। ऐसा व्यवहार मैं नहीं मानता हूं देश के 140 करोड़ जनता कभी माफ करेगी।
3: बीजेपी और एनडीए के नेता सीईसी के खिलाफ राहुल गांधी के हंगामे पर भी पलटवार कर रहे हैं।
11: पिछले कई दिनों से इस देश में जिस तरह नौटंकी और ड्रामा केयर के देश भर में अराजकता कायम करने का प्रयास किया जा रहा है, जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है।
3: तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ ही देर पहले आपने राहुल गांधी और विपक्ष के तमाम नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी, जिसमें वो कह रहे हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त के मुद्दे पर वो लगातार सरकार को घेरते रहेंगे, चाहे महीने लगे या फिर साल। राधिका खेड़ा राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अखिलेश प्रताप सिंह प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ रहे हैं, राजश्री देवल एक्टिविस्ट है एबीवीपी से जुड़ी हुई है, राजेश्वर कांत दुबे ये भी एक्टिविस्ट है एबीवीपी से जुड़े हुए हैं, विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट के नेता है। इन सब से हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको सीधे लिए चलते हैं बासुरी स्वराज। इस वक्त हमारे साथ सांसद भारतीय जनता पार्टी की जुड़ रही हैं और आज आप भी गई राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने।
12: धन्यवाद अंजना जी,
3: धन्यवाद। लेकिन पहला सवाल आपसे यही है बासुरी जी कि अब कांग्रेस का यही कहना है कि वो गए राष्ट्रपति के पास ज्ञापन सौंपने तो आप लोग भी पहुंच गए ज्ञापन सौंपने के लिए। उनका ये सीधा सवाल है कि मतलब जो असल मुद्दा है मुख्य चुनाव आयोग का उससे आप लोग डिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, पूरे इशू को आप लोग डिफ्लेक्ट करना चाहते हैं और इसीलिए इस मुद्दे को आप लोग उठा रहे हैं, वरना ये मई का मुद्दा है उनका कहना है, पुराना मुद्दा है, उसको इस वक्त पर उछालने की क्या जरूरत है। बासुरी सर,
12: अंजना जी, इसके तीन पहलू हैं। सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी तथ्यों पर बात कर रही है, हम हवाई बातें नहीं कर रहे हैं। 9 अक्टूबर को जब बिमल अकोयजम जो सिटिंग सांसद हैं इनर मनुपुर के कांग्रेस पार्टी से और प्रोफेसर थे जेएनयू के, उनको नौकरी से इसलिए बर्खास्त करा गया क्योंकि एक इंटरनल कमेटी की रिपोर्ट ने यह पाया कि 11 छात्राओं ने जब सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट बिमल अकोयजम के खिलाफ लगाई थी उसमें सच्चाई थी, वो तथ्यित उसकी पुष्टि हो रही थी। इंटरनल कमिटी की रिपोर्ट में उनको गिल्टी पाकर नौकरी से बर्खास्त करा गया। तो बहुत शर्मसार करने वाली बात है कि कांग्रेस पार्टी जो खोखले नारे देती है स्मैश द पेट्रियार्की के, जब उन्हीं के सांसद की बात आती है तो वो इसको डिफ्लेक्शन कहके दरकिनार हो जा रहे हैं। और हैरान करने वाली बात है द डेफनिंग साइलेंस ऑफ श्री राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी, खड़गे जी एंड सोनिया गांधी जी। आपके देखिए बिमल अकोयजम जी की निकटता है राहुल गांधी जी के साथ, लेकिन संस्कृत में कहा जाता है मौनम स्वीकृति लक्षणम। क्या राहुल गांधी जी जो चुप्पी साधे हुए बिमल अकोयजम वाले मुद्दे पे, क्या वो बिमल अकोयजम के सेक्सुअल मिसकंडक्ट को कंडोन कर रहे हैं? क्या वो उनकी सहमति है इसमें? क्या 11 छात्राओं की गूंज राहुल गांधी जी के कानों तक नहीं पहुंची, या छात्राओं की गूंज केवल एक उनका आवरण है चीप कॉमेडी करने के लिए? दूसरी बात आती है ये लोग जो सीईसी वाला मुद्दा है, मैं बहुत स्पष्टता से एक बात कहना चाहूंगी। इस देश के देवतुल्य मतदाता और जनता ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 99 बार उनको अस्वीकार करा है। अब जब वो जनादेश के माध्यम से सत्ता धारण नहीं कर पा रहे तो इस देश में अराजकता फैला रहे।
3: ठीक है, लेकिन बासुरी जी,
12: अंजना जी, नवरात्र चल रहे हैं, दशहरा आने वाला है, दिवाली आने वाली है, आप भी जानती हैं कि हिंदुओं के लिए कितना बड़ा त्योहार है, कितनी ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी, कितनी आर्थिक गतिविधि बाजारों में होती है। आप जानते हैं इनके हर प्रोटेस्ट के कारण एक दिन में 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, क्योंकि चांदनी चौक और नई दिल्ली दोनों में, कनॉट प्लेस और चांदनी चौक, ये दोनों मार्केट्स को बंद करना पड़ा था।
3: ठीक है, मैं लौट रही हूं इस पर, लेकिन आप एक सेकंड इस पर बात करेंगे, हम लोग मुख्य चुनाव आयोग के मुद्दे पर बात करेंगे। मुझे ये बताइए कि बृजभूषण शरण सिंह, सीधा डायरेक्ट सवाल है, और बिमल अकोयजम के बीच में क्या अंतर है? क्या अंतर है, क्योंकि वहां पर भी ऐसा ही मामला था। ठीक है, आपने इस्तीफा तो नहीं लिया, वो सांसद बने रहे ना बीजेपी के, तो फिर अब यहां पर वो सांसद तो रहेंगे ना, एफआईआर दर्ज हुई है, जांच होने के बाद ही तो कोई एक्शन लिया जाएगा या पहले ही मुजरिम मान लिया जाए। आप लोगों ने तो नहीं माना था, और वहां तो ओलंपियन लड़कियों ने उन पर आरोप लगाया था।
12: नहीं, मैं आप धन्यवाद देती हूं आपको इस सवाल के लिए। बृजभूषण शरण के खिलाफ एक पूरा जुडिशियल ट्रायल हुआ है, एफआईआर हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, चार्जशीट हुई, फिर ट्रायल हुआ। आज वह शख्स अक्विटेड है बाय अ जुडिशियल कोर्ट। बिमल अकोइजम को गिल्टी पाया गया है जेएनयू की डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में। जेएनयू की इंटरनल कमिटी ने यह पाया है कि कितने संगीन आरोप थे, और उसके बाद अब एक एफआईआर उनके खिलाफ हुई है। मैं ये पूछना चाहती हूँ राहुल गांधी जी से, आप इन दोनों को इक्वेट कैसे कर सकते हैं? आज अंजना जी, बृजभूषण शरण एक अक्विटेड इंसान है बाय अ कोर्ट ऑफ दिस लैंड, और दूसरी तरफ है बिमल अकोइजम, जिन्हें गिल्टी पाकर नौकरी से तुरंत बर्खास्त करा है, और उस पर राहुल गांधी जी चुप्पी साधे हुए हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे।
3: पर ये बताइए ना बांसुरी जी, कि अब वो एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अब आप लोग एक प्रोटेस्ट पर निकल, अब यही खेल चलता रहेगा क्या देश में, प्रोटेस्ट वर्सेस प्रोटेस्ट? अब वो राष्ट्रपति के पास गए तो आप लोग भी राष्ट्रपति के पास एक मुद्दे पर ज्ञापन लेकर चले गए, अब ये यही चलता, इसी में उलझा रहे देश।
12: नहीं अंजना जी, मैं आपके माध्यम से इस तथ्य को साफ करना चाहूंगी। आज हम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, देश की महामहिम राष्ट्रपति, और हमारे देश का सौभाग्य है कि हमारे पास एक महिला राष्ट्रपति है, हम उनके ममत्व, उनके वात्सल्य की छाया में गए थे वहां पर, महिलाओं का मुद्दा उठाने के लिए गए थे, और भारतीय संसद की 15 भारतीय जनता पार्टी की सांसद हमारे साथ गई थी, महिलाओं की आवाज बन के गई थी। दैट इज नॉट अ प्रोटेस्ट, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है कि हम जाके राष्ट्रपति जी के सामने ज्ञापन देकर आए। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगी, बिल्कुल भी प्रोटेस्ट वर्सेस प्रोटेस्ट नहीं है। हमारा प्रोटेस्ट किस लिए था कल, जो भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा ने कल प्रोटेस्ट निकाला था, वो था उन 11 छात्राओं की आवाज बनने के लिए, उन बच्चियों को न्याय दिलवाने के लिए। राहुल गांधी जी और अरविंद केजरीवाल जी अपनी बी टीम के जरिए वो तो अराजकता का कंपटीशन कर रहे हैं। मैं दोबारा कह रही हूं, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, दोनों को बार बार इस देश के मतदाता ने नकारा है, और अब भ्रमित करने का प्रयास करा जा रहा है इस देश में। ये दोनों पार्टियां अराजकता फैलाने की कोशिश इसलिए कर रही हैं क्योंकि ये जनादेश के माध्यम से सत्ता धारण नहीं कर पाई हैं। और मुझे आप ये बताइए, जिस ज्ञानेश कुमार पर ये आरोप लगा रहे हैं, ऐसा तो फिर केरला में जब इनकी सरकार आई वो भी बर्खास्त होनी चाहिए।
3: लेकिन लेकिन बांसुरी जी, बांसुरी जी ज्ञानेश कुमार को बीजेपी क्यों डिफेंड कर रही है? बीजेपी क्यों डिफेंड करती है ज्ञानेश कुमार को? हो सकता है आपके भी वोटर्स का नाम कट रहा हो, डिफेंड क्यों करते हैं?
12: नहीं, बीजेपी उनको डिफेंड नहीं कर रही है, लेकिन बीजेपी इस बात को जरूर डिफेंड कर रही है कि वो राहुल गांधी जी को इस देश में अस्थिरता और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज पे इस तरह आक्षेप करने की अनुमति नहीं देगी। देखिए, विपक्ष का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी लोकतंत्र में, पर जिम्मेदाराना लोकतंत्र हो, जिम्मेदाराना भूमिका होनी चाहिए विपक्ष की, ये थोड़ी है। मुझे आप एक चीज बताइए, जब ये गए महामहिम राष्ट्रपति जी के पास, राहुल गांधी जी एक भी प्रूफ दे पाए? नहीं दे पाए। वो कभी तथ्यों पे तो बात ही नहीं करते, वो तो केवल एक भ्रांति फैला रहे हैं। जब हम आज बिमल अकोइजम के खिलाफ गए हैं राष्ट्रपति जी के पास
3: जी,
12: तो पूरी की पूरी जेएनयू की इंटरनल कमिटी की रिपोर्ट के आधार पर उसके बाद उनके पास गए हैं, और आप देखिएगा मीडिया में ही रिपोर्टेड है किस प्रकार की एलिगेशंस आई हैं, अनवेलकम फिजिकल कॉन्टैक्ट, यहां तक कि रात के 11:40 तक महिला छात्राओं के साथ वीआईवा एग्जामिनेशन करने की, किस प्रकार की मूवीज उन्होंने अपनी क्लासरूम में उन्होंने स्क्रीन करी है, ये तक मीडिया में रिपोर्ट आया है। हार्डकोर सेक्सुअल मिसकंडक्ट की एलिगेशंस आई हैं। हम तथ्यों पे बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी के पास अगर प्रूफ है तो उनको बोलिए कचहरी जाइए ना, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई पे प्रेशर डालने के लिए प्रोटेस्ट के माध्यम से वहां पर कूच क्यों कर रहे हैं? अदालत का दरवाजा खटखटाइए। और देखिए, रही बात एसआईआर की, तो प्रक्रिया इतनी फेयर है कि ऐसा नहीं कि केवल विपक्ष के साथियों को नोटिसेस गए हैं, हर किसी को नोटिसेस गए हैं। और एक मौका दिया जा रहा है, एसआईआर कोई नई इजाद तो है नहीं, ऐसा थोड़ी है कि कांग्रेस के काल में एसआईआर नहीं होती थी, लेकिन बस बहानेबाजी हो रही है, इस देश को भ्रमित करने का और अस्थिर करने का एक प्रयास किया जा रहा है।
3: पास्टर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज तक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। अब मुझे लगता है इस चर्चा को आगे लिए चलते हैं, और पहले राधिका जी, अखिलेश जी से रिएक्शन लेते हैं, क्योंकि आपकी सांसद जी काफी देर तक बोल गई हैं। अखिलेश जी आपके पास आ रहे हैं
13: जी।
3: आरोप बहुत गंभीर है जी। और जेएनयू की इंटरनल कमिटी ने पाया है कि 11 छात्राओं ने जो आरोप उन पर लगाए थे सेक्सुअल मिसकंडक्ट के, अब ऐसी स्थिति आए कि कांग्रेस एमपी के एक एमपी पर यह आरोप है कि प्रोफेसर के तौर पर मार्क्स फॉर सेक्सुअल फेवर्स, यानी आप सेक्सुअल फेवर्स दीजिए और मार्क्स ले जाइए, इतने गंभीर आरोप लगे हों, लेकिन आपकी पार्टी उनके साथ खड़ी है, इन 11 बेटियों के साथ नहीं। जबकि बृजभूषण शरण सिंह पर आप कह रहे थे कि देश की बेटियों के लिए आवाज बुलंद कीजिए, क्यों?
13: मैं इसका भी जवाब दूंगा। पहले जब जो मुख्य विषय पर आपने बात करने के लिए शुरुआत में बात करी, देखिए अंजना जी, इस देश में, इस देश के लोगों के, जनता के, आम जनता के पास अपने मन की सरकार चुनने का एक ही ताकत है, एक ही हथियार है, वो है मताधिकार का अधिकार। और उस मताधिकार के अधिकार के ही बल पे ये देश की जनता अपनी मनमाफिक सरकार चुनती है, या उसके मनमाफिक या देश के हितकारी न हो उस सरकार को हटाती है। तो अगर ये अधिकार भी जनता से छीन लिया जाएगा, इस अधिकार में भी बट्टा लग जाएगा और इस अधिकार को भी हाईजैक कर लिया जाएगा, तो कोई भी जीवंत लोकतंत्र में आस्था रखने वाला मतदाता घरों पे नहीं बैठा रहेगा, वो निकल करके अपने इस अधिकार की लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ने के लिए सामने निकल के आएगा। और यही कारण है कि आज इस देश में जो हमारा चुनाव आयोग है वो लोगों के मताधिकार का हनन कर रहा है, वो मत संहार कर रहा है। इसलिए लोग, पूरा विपक्ष इसके खिलाफ है कि आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं, और उसका लाभ बीजेपी और मोदी जी को मिल रहा है। आप देखिए किस तरह से सिलसिलेवार तरीके से इसको फुल प्रूफ बनाया गया इस मत को लूटने के लिए। पहले सिलेक्शन में दो प्रधानमंत्री और या सरकार और चुनाव सुप्रीम कोर्ट होता था और एक विपक्ष का नेता होता था, उसको इक्वल था, एक अंपायर के रूप में था, अब 2-1 कर दिया। वो बीजेपी का मंत्री और एक प्रधानमंत्री है, उनका प्रतिनिधि एक विपक्ष का नेता, कि कैसे वो अपना मनचाहा चुने।
3: फिर उसके बाद बिमोल पे आइए ना सर,
13: उसी पे उसमें भी आऊंगा, जरूर जवाब दूंगा। और उसके अलावा किस तरह से उसको, वो कुछ भी कृत्य करे उसको सेफ गार्ड करने के लिए कानून में परिवर्तन किया, जितने तरह की ट्रांसपेरेंसी होती थी चुनाव प्रक्रियाओं में, कोई किसी प्रकार का घोटाला घपला ना हो, उसके ट्रांसपेरेंसी वाली सारे नियमों को बदल के कानूनों को बदल दिया गया। पॉलिटिकल पार्टी आरोप लगाती थी तो लोग हवा उड़ा देते थे, अब तो 3 सदस्यीय चुनाव आयोग के 2 सदस्यों ने जब लिखित रूप में ये सारी जानकारियां कैबिनेट सेक्रेटरी को दी, जो कि बहुमत से निर्णय लेने वाला चुनाव आयोग के 2 सदस्य यदि कह रहे हैं तो बहुमत का ही निर्णय हुआ, और उसके खुलासे के बाद तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि किस प्रकार से चुनाव आयोग बीजेपी का एक पार्टी बन करके उसके चुनाव को हाईजैक करके उस बीजेपी को लाभ पहुंचाता रहा है। तो एक एक पल लोकतंत्र में जो हमारे चुनाव की प्रक्रिया वाली चुनाव आयोग है उसमें इस तरह के लोग यदि बैठे रहेंगे तो वो किस प्रकार से हमारा लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं, ये कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है?
3: बिमोल कोई जान,
13: अब देखिए आप जो कह रही हैं, किसी भी महिला के प्रति यदि कोई इस किसी भी प्रकार की अनीति होती है, कांग्रेस पार्टी उसके खिलाफ है, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये आज बीजेपी के लोग राष्ट्रपति के यहां जाकर के ये साबित कर दिए कि उनकी सरकार उनकी नहीं सुन रही है। भाई आप सत्ता में बैठे हैं, आप अपने गृह मंत्री के पास जाते, कार्रवाई करो, आपको कार्रवाई करने से कौन रोक रहा है? अरे भाई विपक्ष रोक नहीं रहा ना, आप राष्ट्रपति के यहां गए अपील कर गुहार लगाने, इसका माने आपकी सरकार, बीजेपी की सरकार आपकी नहीं सुन रही है।
3: ठीक है, चलिए राधिका जी जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं आपकी सरकार नहीं सुन रही है, क्या करिए जो कार्रवाई करनी है।
14: सभी को नमस्कार। अंजना जी, जब आपने सबसे पहला सवाल इसी पे पूछा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से, 3.5 मिनट उन्होंने दाएं बाएं हर चीज की बात करी, लेकिन उस सांसद के ऊपर महज 30 सेकंड बोले। तो मुझे बताएं अखिलेश जी, जब इतनी बड़ी कंप्लेंट आई है, कांग्रेस पार्टी का इतना वरिष्ठ सांसद जो इतना करीबी है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया जी के, तो आप लोगों की ICC तो बैठी होगी ना, इंटरनल कमेटी की मीटिंग हुई होगी, उसको समन किया गया होगा। जब JNU आपके कांग्रेस के इतने बड़े नेता को निकाल रहा है, तो आप लोगों के कान पे जू तक नहीं रहेगी। और इनको तो छोड़िए अंजना जी, यहां पे पूरा के पूरा एक ठगबंधन इकट्ठा हुआ, आदमी भी थे, औरत भी थी और छोटी एक लड़की भी थी, किसी के मुंह से एक शब्द नहीं लिखना। और आपका साधुवाद अंजना जी कि आप लोग इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, वरना कोई इस पर बात भी नहीं कर रहा। आधी आबादी है हम, लेकिन कोई हम पे बात नहीं करेगा। छात्रों की गूंज के लिए चेन्नई तक जाएंगे, कोटा जाएंगे, पूरा देश घूमेंगे, व्लॉगिंग करेंगे, बड़े बड़े वीडियो कॉमेडियंस बुलाएंगे, इटालियन प्राइम मिनिस्टर को बेइज्जत करेंगे। अपने घर से महज 11 किलोमीटर दूर जो JNU है, वहां की बेटियों की आवाज, उनकी गूंज राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और सोनिया जी के कानों में नहीं आई। और मैं आपके सामने एक जीता जाता उदाहरण हूं कि इंटरनल कुछ नहीं होता कांग्रेस पार्टी में, उस आदमी को CWC में भी बिठाया जाएगा, और हो सकता है कि कभी कहीं पे कोई और प्रात हुई तो उसको और ज्यादा सम्मानित किया जाएगा। तो ये कब तक चलता रहेगा बेटियों के साथ? विवेक श्रीवास्तव अखिलेश जी ने नहीं बोले कि हाँ हम कार्रवाई करेंगे।
3: विवेक श्रीवास्तव जी, आप लोगों को भी आवाज बुलंद करनी चाहिए। अगर JNU में एक प्रोफेसर पर इंटरनल कमिटी में इतने गंभीर आरोप सही पाए गए हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट के, ये तो यूनिवर्सिटीज के अंदर लड़कियों की सुरक्षा का सवाल है ना, कि भाई उस व्यवस्था में वो ट्रैप हो गई है।
15: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और हमें भी आवाज उठानी चाहिए, हम आवाज उठाएंगे भी। लेकिन यहाँ पे वाइस चांसलर से लेकर के जो भी इंक्वायरी कमेटी में बैठा हुआ था, सारे संघी थे। हमारा एलिगेशन है, हम चाहेंगे फ्री एंड फेयर असेसमेंट हो, जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह का इन लोगों ने किया, इनकी पार्टी ने, इनकी पुलिस ने, इनके गृह मंत्री ने किया, उनके खिलाफ FIR हुई है। Let the judicial process take place.
3: विवेक जी, विवेक जी, मैं usually सबको शुरू में लंबा बोलने देती हूँ, लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक काउंटर कर रही हूँ कि संघ की विचारधारा के, या संघ ही आपके शब्दों में VC और अन्य लोग थे, इसके लड़कियों के साथ ये होने दिया जाए, इसलिए रात में 11:40 तक उनको वो घर में बुला सकते हैं। और थीसिस, एक सेकेंड, PhD, यू आर सेइंग इट, यू आर रेजिंग अ क्वेश्चन, यू आर रेजिंग अ बाइनरी सर, दिस इज अ वेरी सीरियस इशू, इससे गंभीर कोई मुद्दा नहीं हो सकता है। अगर कॉलेजेस में, अपने ऑफिस में हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है, अगर उनको आगे बढ़ने के लिए सेक्सुअल कॉम्प्रोमाइज करने पड़ रहे हैं, इसकी गंभीरता आप समझते हैं सर? हाँ, इसकी गंभीरता समझते हैं?
15: तो आपको ब्रजभूषण शरण सिंह के केस में भी ये बोलना चाहिए था।
3: बिल्कुल बोला, हजार बार बोला, और मैंने शो किया उन तमाम लड़कियों के साथ, विनेश फोगाट के साथ मैंने शो किया, और पूरे स्टेडियम में, पूरे हमारे ऑडिटोरियम में बच्चियां भरी थी। मैंने सबको कहा, खड़े होकर आज गौरव भाटिया से सवाल करिए, और गौरव भाटिया के पास कोई जवाब नहीं था। सो डोंट यू क्वेश्चन मी ऑन दिस, ठीक है? नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, विवेक जी, क्या हम चाहते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटीज हमारी बच्चियों के लिए सुरक्षित हो, और क्या आपको नहीं लगता है कि इसमें सबको आवाज मिलानी चाहिए?
15: जी बिल्कुल। क्या आप चाहती हैं कि इस देश के अंदर कैंगरू कोर्ट चले, ट्रायल बाय मीडिया हो, और जस्टिस राधिका खेड़ा जिसको गिल्टी कहें वो गिल्टी हो जाए, या जस्टिस बासुरी स्वराज यहाँ पर आए और बोले ये आदमी गिल्टी है तो गिल्टी हो, या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ चले? ठीक है,
3: ये वही दलील दे रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने भी ब्रजभूषण शरण सिंह में दिया था, कि कोर्ट से डिसाइड होगा। वो लोग कहते थे कि उनको हटाइए, लेकिन आज वही बात ये कह रहे हैं जब इनके ऊपर आई है। आप एक स्टूडेंट है, लेकिन आप ABVP से जुड़ी हुई है, ये बताते हुए अपने दर्शकों को किस तरह से इस मुद्दे को उठाएंगे आप?
16: देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बता देना चाहूंगी, जो विवेक जी ने बात करी है, जो अखिलेश प्रताप जी ने बात करी है, मुद्दे से आप भटकिए मत। सबसे पहले यहाँ पे जो आप टेक्निकलिटीज का बात कर रहे हैं, वो बात की बात है। जो एलिगेशंस थे, जो अक्यूज है इसके अंदर बिमोल अकोइजम, वो प्रूव हो चुका है कि उसने सेक्सुअल हेरेसमेंट के अंदर एक बहुत ही, मतलब एक प्रोफेसर कौन ऐसा कैसे कर सकता है, जब स्टूडेंट्स जो है, जो छात्राएं हैं, उनको हम लोग, जो पेरेंट्स हैं, जो एकदम भेजते हैं कि हाँ ठीक है, एक विश्वास के साथ भेजते हैं कि आगे जाके हमारी बच्चियां जो है वो करियर के अंदर अच्छा करेगी, लेकिन वहां पे हम देखते हैं कि लेफ्ट पूरा शील्ड करता है, वहां पे जो एक सेक्सुअल हरेसमेंट परपेट्रेटर है, जो बिमोलोकोइजम है, उसको पूरा लेफ्ट ने शील्ड करा है, चाहे आप डिनाई करिए या आप समर्थन करिए, आप इस बात को जुटला नहीं सकते हैं विवेक जी, ठीक है। और उसी के अंदर मैं आपको बता देती हूँ कि लॉन्च पैड के जैसे आप जो ये आईसी है, जो यहाँ का लेफ्ट का जो स्टूडेंट यूनियन जो है, आप इसे एक लॉन्च पैड के जैसे यूज करते हैं और बाद में आप कांग्रेस पार्टी जाके ज्वाइन कर लेते हैं, तो आप लोग मत ही बताइए, आप लोग जो है आप लोगों के ड्यूअल स्टैंडर्ड्स हैं इस पूरे मुद्दे पे। और आप, मैं राहुल गांधी से यहाँ से सीधा क्वेश्चन कर रही हूँ, आपका इस मुद्दे पे क्यों नहीं आप चुप्पी साथ क्यों बैठे हैं,
17: राजेश कांदू एक भी स्टेटमेंट जी, जेएनयू से हमने दो स्टूडेंट्स बुलाए हैं, आप भी एबीवीपी से जुड़े हुए अपने दर्शकों को बताते हुए, क्योंकि एबीवीपी इस मुद्दे को वहां पर उठा रहा है, आपकी प्रतिक्रिया है?
18: बिल्कुल, जैसा लेफ्ट का रहता है ना कि लीपापोती करने का काम करते हैं, अपना होमवर्क नहीं करते हैं, विवेक जी ने भी अपना होमवर्क नहीं किया है। इन्होंने संगी टैग तो दे दिया, लेकिन इन्हें ये नहीं पता है कि उसी आईसी में तीन चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं और वो तीनों चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स आईसा एसएफआई के कैडर्स हैं, वही आईसा एसएफआई एनएसयूआई जिसको कैंपस में एंटी इंडिया सेक्सुअल असॉल्टर्स बोलते हैं, वही एनएसयूआई जिसको नारी सताओ यूनियन ऑफ इंडिया कहते हैं, वही एसएफआई जिसे सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। सबसे पहले मैं सल्यूट करूंगा उन 11 लड़कियों को, उन वॉरियर्स को, जिन्होंने जेएनयू जैसे कैंपस में जहां पे लेफ्ट के दबाव में कांग्रेस के इकोसिस्टम में कोई आवाज नहीं उठाता, उन्होंने ऐसे दरिंदे ऐसे बिमोल के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की। मैं इस टीवी के माध्यम से उनको सल्यूट
17: करूंगा। कमेटी के मेंबर्स में कौन कौन होता है?
18: इस कमेटी के मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो आईसा एसएफआई और एनएसयूआई के चुने हुए कैडर्स हैं, वो लड़कियां हैं और
17: उन्होंने भी दोषी करा दिया?
18: नहीं, उन्होंने उसमें लीपापोती करने का प्रयास किया, उन्होंने बार बार ऐसा किया कि मीटिंग्स में वो अपनी एब्सेंटी देती थी, एब्सटेन करती थी, उन्होंने लास्ट पेपर्स पे साइन तक नहीं किया। फाइनली वीसी ने इस चीज को ध्यान में रखते
17: हुए, तो इसी पर तो वो आरोप लगा रहे हैं कि एक तरफा जांच की
18: जी, एक तरफा जांच नहीं की, वही तो मैं कह रहा हूं कि उन आईसी कमिटी मेंबर्स ने सारे फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए, सारे एविडेंस को ध्यान में रखते हुए उसे झुटलाने की कोशिश की, उस पर लीपापोती करने की कोशिश की। क्यों? कारण मैं बता रहा हूं ना, अभी आपने देखा, जैसे मैं कह रहा हूं ना कि एक कैंपस में नारे फेमस है कि सारे रेपिस्ट भाई भाई, आईसा एसएफआई एनएसयूआई।
17: अब इसको आप लेफ्ट बैशिंग मोर्चा मत बनाइए,
18: बैशिंग मोर्चा नहीं बता रहा हूं,
17: दिस इज व्हाट यू आर डूइंग, आई एम सॉरी, एक सेकंड राजेश्वर जी, देखिए इसको आप लेफ्ट बैशिंग मोर्चा मत बनाइए, ना मेरे टीवी का स्पेस इसलिए है, क्योंकि मैंने सिर्फ ये शो इसलिए किया है कि मैं ये मानती हूं कि यूनिवर्सिटीज में ऐसे अनेकों प्रेडेटर्स घूमते हैं जो कि मार्क्स के बदले सेक्सुअल फेवर्स मानते हैं, और अगर 11 बच्चियों ने वाकई ईमानदारी से हिम्मत दिखाई है तो उनकी आवाज बुलंद होनी चाहिए, जैसे ओलंपियन बेटियों की हुई थी। ऐसा नहीं कि उनकी पॉलिटिकल लड़ाई में और पॉलिटिकल डिशुम में उनकी आवाज दब जाए। प्लीज स्टिक टू दिस पॉइंट। इन प्रोफेसर को लेकर कब से शिकायतें आ रही थी, क्योंकि एक बार टाइमलाइन भी अपने दर्शकों को दिखा दे। उनके खिलाफ शिकायतें सबसे पहले 18 मई को आई थी, जेएनयू छात्राओं ने यौन उत्पीड़न की शिकायत तब दर्ज की थी 16 जुलाई को, उससे, और मुझे लगता है कि 18 मई के आसपास ये जो पूरा बवाल था सरकार के खिलाफ वो इतना तेज नहीं था। तो उसके बाद जून के महीने में, क्योंकि अगर आपको याद हो तो जून के महीने में धीरे धीरे आंदोलन शुरू हुए, जुलाई में फिर धर्मेंद्र प्रधान का भी जब एक नीट के एग्जाम हो गए उसके बाद आंदोलन सड़कों पर जंतर मंतर में हुआ, उससे पहले इन लड़कियों ने, 11 लड़कियों ने कंप्लेंट दी थी। जल्दी से इस पर आपका रिएक्शन अखिलेश जी, इन लड़कियों ने 18 मई को पहले कंप्लेंट दी थी?
19: नहीं, आप खुद ही बता रही हैं कि कंप्लेंट से लेकर के इतना टाइम लगा, तो सारी व्यवस्था तो जो आज सत्ता में बैठे हैं उनको, उन्हें जल्दी करनी चाहिए, ये गंभीर मसला है। देखिए, आज विपक्ष पे आरोप लगाने से बजाय सत्तारूढ़ दल को, हम किसी भी प्रकार से कोई पक्षधर नहीं है जिसके देश ने क्राइम किया है, लेकिन कार्रवाई तो जो सत्ता में लोग बैठे हैं वही तो करेंगे, उन्हीं का प्रशासन करेगा। तुरंत करो, त्वरित करो, सख्त करो, कौन रोक रहा है आपको? आपको पूरा विपक्ष इसमें आपके साथ है, कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, लेकिन आपको सिर्फ आरोप लगाना है, न्यूज को इधर से उधर घुमाना है, जो एक इंडिया ब्लॉक एक मुद्दा लेके चल रहा है उसको थोड़ा सा डाइवर्ट करने के प्रयास के चक्कर में आप इतने बड़े इशू को,
17: एक सेकंड
19: बहुत, आप ये बड़ा मुद्दा है लड़कियों को छेड़छाड़ करने वाला, इसको आप डाइवर्जन के रूप में मत यूज करिए, इस पर आप कार्रवाई कराइए जो भी होना है।
17: बिल्कुल,
19: ये और ये लड़ाई भी बड़ी है जो
17: डिफ्लेक्शन के लिए ये मुद्दा नहीं यूज होना चाहिए, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए।
20: अंजना जी,
17: हाँ
20: अंजना जी,
14: कांग्रेस पार्टी की एक बहुत सशक्त नेता इस देश की प्रधानमंत्री रही है, इंदिरा गांधी जी। लॉन्गेस्ट सर्विंग कांग्रेस प्रेसिडेंट महिला सोनिया गांधी जी, उसके बाद उनकी बेटी अब कमान संभाल रही है राहुल गांधी के साथ, प्रियंका गांधी जी। लड़की हूं लड़ सकती हूं, महिला न्याय पहला न्याय था पांच न्याय में से जो कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी अपने 2024 के लोकसभा चुनाव में। आज स्मैश द पेट्रियार्की की बात होती है, छात्रों की गूंज के बात होती है। प्रियंका गांधी भी एक बेटी की माँ है, 11 बेटियों की कोई आवाज नहीं होगी, क्यों? क्योंकि आपका सांसद वहां इन्वॉल्व है।
17: पर सरकार आपकी है राधिका जी, और अगर FIR दर्ज हुई है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगा, वही मामला कोर्ट में आगे जाएगा। तो आपको ये सुनिश्चित करना है कि अगर बच्चियां ईमानदारी से हिम्मत दिखाती हैं तो उनकी आवाज आगे आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे कुलदीप सेंगर को डिफेंड करने बीजेपी वाले आ जाते थे, बृजभूषण शरण सिंह को डिफेंड करने वाले आ जाते थे, समाजवादी पार्टी से गायत्री प्रजापति को डिफेंड करने वाले आ जाते हैं, कांग्रेस पार्टी से अब बिमोल अगोयचाम को डिफेंड करने वाले लोग आ जाते हैं। ऐसे मसला नहीं महिलाओं की सुरक्षा का। मेरे शो में कल अभय दुबे थे, उन्होंने कहा कि उनको साजिश में फंसाया जा रहा है। अरे जांच तो हो जाने दीजिए, सच लाना लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है। आज रात 9 बजे रहिएगा मेरे साथ, ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाएंगे कॉकरोच जनता पार्टी के लोग नीतीश की पार्टी के दफ्तर से जंतर मंतर कैसे पहुंच गए। इसी के साथ साथ हम आपको आज ये भी दिखाएंगे कि राहुल गांधी की चाय में उबाल, क्या ज्ञानेश पर और बढ़ेगा बवाल। और साथ ही अंत में आपको दिखाएंगे आखिर में JNU में प्रोफेसर और कांग्रेस सांसद बिमोल अकोयजाम पर यौन शोषण के आरोपों पर ये चुप्पी क्यों। देखते रहिए आज तक।

0: your notes, there are some great talking points for your interview.
1: How's the hostel? Settled?
2: Yes, Mark, really nice.
1: कोई आ रहा है क्या?
3: तुम मॉम डैड वाली ड्यूटीज तो निभा ली, अब फिर से थोड़ा रोमांस हो जाए।
1: मयंक, फॉर रियल?
3: वन कैरेट फॉर माय वन ट्रू लव, नेचुरल डायमंड रियल लव सॉलिटेयर्स टू रीइग्नाइट योर न्यू सीजन ऑफ लव।
4: आगे आगे,
5: अरे उधर
4: उधर क्या?
5: करेक्ट करेक्ट,
6: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
7: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका मान, सर एक बार दो थमका लगाने बस।
8: मेरे पास एक आइडिया है।
7: क्या?
8: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा TMT बार से जो बना है,
9: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता,
10: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा TMT से बना है।
11: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही TMT बार से बना है।
12: कौन सी बनानी है?

0: मैडी, आई नीड टू ओपन अ सेविंग्स अकाउंट.
1: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो.
0: स्मॉल बैंक,
1: स्मॉल प्रिविलेज सेविंग्स अकाउंट, गरिमा सेविंग्स अकाउंट, मैक्सिमा बिजनेस, एज करंट अकाउंट, बिजनेस मैक्सिमा बिजनेस प्रिविलेज, आरडीएफ, देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट देम.
0: ओके
1: उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस.
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने.
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ.
4: सोच बदलो और बैंक भी.
5: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं. गोल्डी हिंग कण कण में जान.
6: इतने पेमेंट ऐप्स पर सेफ कौन सा?
7: तो स्विच टू भीम. एकदम सेफ और भरोसेमंद. रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं. पाओ 40 रुपए का कैशबैक 40 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर. भीम ऐप से करो पे.
8: इट्स अ माय वे.
9: बच्चों के लिए अलग टीवी रूम बना सकते हैं.
10: कैसा लगा आप दोनों को अपना ड्रीम होम?
11: आई लव इट. एब्सोल्युटली अमेजिंग. तुम एक काम करो, तुम मिठाई ऑर्डर कर लो.
12: मिठाई से पहले कुछ और हो जाए
11: क्या?
12: इनकी राय.
13: नई सोच की नींव में हम, हर नई उम्मीद में हम. गैलेंट निर्माण का रियल हीरो.
14: एक दो, एक श्राम.

0: सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ
1: एक हिंट तो देते।
2: माँ के पैरों की धूल माथे पर ले, मैं परिंदा खुले आसमान जहाँ जी तू सारा।
3: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
4: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
3: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
5: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
6: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
5: असली शहद, असली स्वाद।
7: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है, ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
8: ये है एक लेगेसी।
9: यू नो डिजाइन्स कितने, लाख से भी ज्यादा डोर,
10: और सारे हैं BIS हॉलमार्क सर्टिफाइड। खूबसूरत कारीगरी भी, हाई क्वालिटी भी।
11: एक परिवार, अटूट भरोसा।

0: in association with Canara Bank. Together we can.
1: Anmol Biscuits. Swad jo banaye har pal Anmol. Signature finest cardamom seeds. E3 HDMR. Ye rishta lamba chalega.
2: ये कौन से संविधान में लिखा है? क्या कभी चीफ जस्टिस किसी मोर्चे को सामने जाते हैं? मैं ये मानता हूं कि जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है वो बिल्कुल सही है। आपको ग्रीवियंस है, आप कोर्ट आइए, कोर्ट में लड़िए। मैं जो बार बार कहता हूं कि इनका संविधान पर विश्वास नहीं है, संविधान विरोधी लोग है, इन्होंने प्रूव कर दिया जब ये मोर्चा लेकर जाते हैं और चीफ जस्टिस ने लॉफुली वाइल डिस्चार्जिंग हिज कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज, संवैधानिक उनको जो ड्यूटीज दिए उसका डिस्चार्ज करते हुए उन्होंने कहा कि मैं किसी मोर्चे को नहीं मिल सकता, तो उनके खिलाफ भद्दी भद्दी गालियां ये लोग कह रहे हैं। ये भारत की संस्थाओं को, न्यायिक संस्थाओं को डिमोनाइज करना चाहते हैं। ये लोगों का विश्वास उनमें से उड़ जाए, इस प्रकार का षड्यंत्र कर रहे हैं।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार सर एक बार दो तुम थमका लगाने बस।
0: मेरे पास एक आइडिया है।
1: क्या?
0: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है
2: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता
3: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
4: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
2: कौन सी बनानी है?
5: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
6: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
7: सोच बदलो और बैंक भी।
8: बच्चों के लिए अलग टीवी रूम बना सकते हैं।
0: कैसा लगा आप दोनों को अपना ड्रीम होम?
9: आई लव इट, एब्सोल्युटली अमेजिंग। तुम एक काम करो, तुम मिठाई ऑर्डर कर लो।
10: मिठाई से पहले कुछ और हो जाए
9: क्या?
10: इनकी राय।
11: नई सोच की नींव में हम, हर नई उम्मीद में हम, गैलेंट निर्माण का रियल हीरो।
12: माँ के पैरों की धूल माथे पर ले मैं परिंदा खुले आसमान जहाँ जीत रू सारा।
13: उफ, ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है।
14: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
13: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपिवा डायफ्री जूस।
15: आ गया सोमवार और आ गए
16: चकमक चाचा।
15: हाँ चाचा, अखबार भाँच रहे हैं। चल रहा है, भैया के चले गए, दीदी पहुँच गई है, चीचा कब जाएंगे?
17: अरे भैया पुता सुता समस्या हम ले लेते हैं, ये सब तुम लोग का ऐसा है, हम अपना मुद्दा उठा चुके पुराने।
15: अच्छा, कब उठाए?
17: जेपी के टाइम पे मुद्दा उठाए।
15: अच्छा
17: हाँ, तो जहाँ वो मुद्दा जब हम ऐसा रख देते थे तो फिर रख देते थे फिर मुद्दा। ये नहीं तुम लोग इधर आए तो मतलब पुलिस आई इधर भागने लगे दन दन दन दन कर गया, ऐसा ये सब नहीं था अपना मामला
15: जी।
17: मुद्दा मजबूती से रखते थे।
15: हम तो सुने मुद्दा टूटा भी है।
17: सही बात है, जब कभी ऐसे प्रोवाइड चलती थी दर्द बिता है थोड़ा थोड़ा लेकिन दिल बोलता रखे था। हाँ एकदम मुद्दा मजबूती के साथ रखे, सरकार हिला दिया एकदम।
15: अच्छा
17: और क्या
15: आपका मतलब? हम लोग डर जाते हैं।
17: और क्या डर जाते हैं? बिल्कुल, जहाँ पुलिस सिटी नहीं बची उस भागने लगता।
15: बढ़िया, आप डरते नहीं है, पुलिस आ रही है।
17: किधर?
15: चाचा हम खेल गए अब।
18: अनिश्चितताओं से भरी इस दुनिया में भारत रिलायबिलिटी और स्टेबिलिटी का विश्वास देता है। इस साल अप्रैल जून क्वार्टर में भारत की ग्रोथ रेट 7.8% रही है और यह ग्रोथ मजबूत नींव पर खड़ी है। 12-13 साल पहले भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट जीडीपी के 4% से भी अधिक था। पिछले साल यह घटकर लगभग आधा प्रतिशत यानी 0.61% रह गया है। आज हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $700 बिलियन से अधिक है। हमारा बैंकिंग सिस्टम अनेक देशों में सबसे मजबूत स्थिति में है। साथियों, इसी मजबूती का परिणाम है कि भारत की सॉवरेन रेटिंग्स अपग्रेड की जा रही है। साथियों, आप सभी जानते हैं भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। भारत में 100 से ऊपर भाषाएं हैं, करीब 80,000 रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पब्लिकेशंस हैं, 1,000 से ज्यादा सैटेलाइट टीवी चैनल्स हैं और इतना ही नहीं, सोशल मीडिया के इस दौर में भारत में 500 मिलियन से अधिक यूट्यूब यूजर्स हैं, 500 मिलियन से ज्यादा इंस्टाग्राम यूजर्स हैं। हमारे यहां अलग अलग मुद्दों पर खुलकर बहस होती है, अलग अलग दृष्टिकोण पर जनता चर्चा करती है, और वर्तमान समय में इसमें जिसने एक बड़ी भूमिका निभाई है वो है डिजिटल पावर।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: नमस्कार, स्वागत है आपका आपके साथ में नेहा बाथम। शाम के 7 बजने वाले अगले आधे घंटे में दिनभर की तमाम बड़ी खबरें आप इस बुलेटिन में देखेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। इंडिया गठबंधन की चाय पर चर्चा के बाद बोले राहुल, शाह ज्ञानेश कुमार को नहीं छोड़ेंगे, लोकतंत्र को बचाना मकसद है। खड़गे तेजस्वी, संजय राउत ने सीईसी पर किया तीखा वार। सीईसी पर राहुल गांधी के आरोप को पीयूष गोयल ने बताया बेबुनियाद, कहा कांग्रेस चुनाव आयुक्तों को बनाती थी राज्यपाल। मंत्री नेता विपक्ष से पूछे 10 सवाल। जंतर मंतर को प्रदर्शन स्थली की सूची से हटाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, गुरुवार को होगी सुनवाई। विपक्ष ने भी सरकार पर बोला हमला। दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, यौन उत्पीड़न मामले में जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर और कांग्रेस सांसद के खिलाफ हल्ला बोल, राष्ट्रपति से गुहार। एल मुरुगन ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, केंद्रीय मंत्रिमंडल छोड़ने की मांग की अनुमति, कहा तमिलनाडु में करूंगा काम। और शो की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में राहुल गांधी के आवास पर इंडिया ब्लॉक ने चाय पर चर्चा की। बैठक के बाद विपक्षी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बकायदा कहा कि देश में लोकतंत्र को बर्बाद किया जा रहा है और ये लड़ाई अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही आंदोलन है। राहुल गांधी के अलावा विपक्षी दल के प्रतिनिधियों ने भी एकजुट है।
1: मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, मैंने परसिवियरेंस शब्द यूज किया कि ये जो हमारी टीम है ये रुकने वाली नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तीन महीने बाद नहीं तो छह महीने बाद नहीं तो एक साल, नहीं तो दो साल, ये रुकने वाली नहीं, ये एंड गोल तक जाएगी। कैसे जाएंगे वो हम आपको बता नहीं सकते, क्योंकि फिर आप को सारा मतलब सरप्राइज खत्म हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि आपके लिए और देश के लिए ये माहौल बना रहे, इंटरेस्टिंग रहे और सरप्राइजिंग रहे। मगर मैं आपको गारंटी देता हूं कि जिस प्रकार से हम सब ने मोबिलाइज किया, जिस एनर्जी से, जिस शक्ति से हमने मोबिलाइज किया, जिस यूनिटी के साथ हमने मोबिलाइज किया, उसी प्रकार से हम सब मिलकर लड़ते रहेंगे।
2: सब लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने जिस प्रकार से लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया है, साफ और साफ बीजेपी अमित शाह और मोदी जी के इशारे पे हम सब लोग एकजुट हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए, और इसके लिए जो कुर्बानी देना होगा हम सब लोग जो है मिलकर के देंगे। ये देश गांधी जी का देश है, ये देश लोहिया जी का देश है, ये देश भगत सिंह का देश है, ये देश कर्पूरी ठाकुर जी का देश है, और इस देश को जो लोग संवैधानिक संस्था है जो इस देश की, उसको हाईजैक करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो। लेकिन इलेक्शन कमीशन और ज्ञानू गुप्ता जी तो और आगे बढ़कर के चले गए 10 कदम। जिस हिसाब से एक कठपुतली की तरह ज्ञानेश गुप्ता जी ने जो काम किया है उसको जो है सजा जरूर मिलेगी, ये लोग बचने वाले लोग नहीं है।
3: ज्ञानेश कुमार एक माफिया है, ज्ञानेश कुमार एक ऐसा माफिया है जिसने पूरे सिस्टम का अपराधीकरण किया, और ऐसे माफिया से कैसा लड़ना है और कैसा निपटना है हमको मालूम है। 10-12 साल तक मोदी और शाह ने ये देश को डरा कर धमका कर रखा था, अब डरने की बारी उनकी है, अब डर कर बैठे हैं, पूरा 4 लाख आर्म फोर्सेस यहाँ लगा कर अंदर बैठे हैं। लेकिन ये जो संघर्ष है राहुल जी के लीडरशिप में वो जारी रहेगा, दिल्ली में रहेगा, स्टेट में रहेगा, हर शहर में रहेगा, और हम पूरे लोग यहाँ जो है एक साथ है और एक साथ रहेंगे।
0: उधर बीजेपी ने भी विपक्षी मंशा पर सवाल खड़े किए, सुनिए।
4: अगर वो सही माने में मानते हैं इलेक्शन कमीशन ने ईमानदार व्यवस्था नहीं रखी है तो क्यों रिजाइन करते हैं इनके 6 के 6 मुख्यमंत्री, तुरंत रिजाइन करना चाहिए। और ये कई लोग ये बात रख रहे हैं कि कांग्रेस तय करे, ऐसा नहीं हो सकता है। जहां जीते वहां तो सही काम हुआ, वहां इलेक्शन कमीशन ने पक्षपात नहीं किया, और जहां हारे वहां एसआईआर को गाली देना। श्री एमएस गिल चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे 1996 से 2001 तक, 5 वर्ष के लिए। और मजेदार बात, उनको पद्म विभूषण से नवाजा गया जब वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उस वक्त, यानी 2000 में, सन 2000 में सिटिंग सीईसी को पद्म विभूषण देना, क्या ये लालच नहीं है? क्या ये एक प्रकार से उनको रिश्वत देने का काम नहीं हुआ? और आप एक आप देखें तो ये सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है भारत का। ये उनकी चापलूसी कारनामों का एक प्रकार से रिवॉर्ड देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया।
0: वही देश के अलग अलग हिस्सों में आज मुख्य चुनाव आयुक्त गणेश कुमार खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ। सीजेपी के नेता जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना चाहते थे लेकिन उन्हें हिरासत में ले लिया गया। वहीं पटना और कोलकाता में जोरदार प्रदर्शन हुआ।
5: मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में जोरदार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सबसे पहले दिल्ली में जंतर मंतर की तस्वीरें देखिए। जंतर मंतर पर प्रदर्शन की मनाही के बावजूद सीजेपी के नेता सौरभ दास, आशुतोष राका और अजिंक्य शिंदे जंतर मंतर पर जाने की कोशिश करने लगे। बैरिकेड को बांध कर ये जंतर मंतर पहुंचना चाह रहे थे लेकिन पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया।
6: नरेंद्र मोदी को लगता है कि जंतर मंतर को डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट नहीं रखेंगे तो प्रोटेस्ट रुक जाएंगे, ऐसा नहीं है। जंतर मंतर अब पूरे देश में बनेगा। नरेंद्र मोदी को प्रॉब्लम जंतर मंतर एक लोकेशन से नहीं है, उनको प्रॉब्लम है प्रोटेस्ट से, ये हमें समझना पड़ेगा। एक डिक्टेटर को हमेशा प्रॉब्लम होती है प्रोटेस्ट से, द आइडिया ऑफ प्रोटेस्ट, उससे नरेंद्र मोदी को दिक्कत है।
5: जैसे विरोध की तस्वीरें दिल्ली में दिखी वैसी ही तस्वीरें पटना में दिखी। पटना में लेफ्ट के छात्र संगठन ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ हल्ला बोला।
7: सीसी ज्ञानेश कुमार और एसआईआर के सवाल को लेकर जो हंगामा अब तक आपने दिल्ली में देखा, लगभग उसी तरह की तस्वीर अब पटना में देखने को मिल रही है, क्योंकि पटना में जो लेफ्ट के छात्र संगठन है आईसा और साथ ही साथ आरवाईए, इन दो संगठनों ने आज राजभवन मार्च का ऐलान किया। और देखिए, गांधी मैदान से मार्च की शुरुआत हुई और अब जो कई छात्र हैं वो पहुंच गए हैं डाक बंगला चौराहे पर। यहां पर पुलिस ने जो बैरिकेड्स लगाए थे इस वक्त, उस पर जो लेफ्ट के छात्र संगठन के कार्यकर्ता हैं वो नजर आ रहे हैं।
5: अब कोलकाता की तस्वीरें देखिए, यहां ज्ञानेश कुमार के खिलाफ टीएमसी का आक्रोश फूट रहा है। टीएमसी के नेता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांग रहे हैं।
8: राजा बाजार ट्राम डिपो जहां हम इस समय खड़े हैं, यहां से इस रैली का रूट पार्क सर्कस तक जाना था लेकिन कोलकाता पुलिस की ओर से ये साफ कर दिया गया। कोलकाता पुलिस कमिश्नर ने भी आज साफ किया कि इस तरीके के रैली का कोई भी सूचना कोलकाता पुलिस को नहीं दी गई थी, लिहाजा इस रैली को परमिशन नहीं दिया जाएगा। बैरिकेडिंग लगाया गया है और जो समर्थक आए हैं उन समर्थकों को इस बैरिकेडिंग के अंदर रखा गया है।
5: मतलब कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विरोध की जो चिंगारी जलाई थी वो देश के अलग अलग हिस्सों में अब ज्वाला बन रही है। आज तक ब्यूरो।
0: उधर बीजेपी जेएनयू और महिलाओं के मुद्दे पर कांग्रेस पर लगातार हमलावर है। आज बीजेपी महिला सांसदों ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। वहीं सड़कों पर भी इस मुद्दे पर बीजेपी की ओर से जोरदार हंगामे के तौर पर देखा जा रहा है।
5: दिल्ली में सियासत का यह दूसरा मोर्चा है। कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजाम के खिलाफ यह गुस्सा फूटा है जहां उनके निशाने पर राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा हैं। जेएनयू से बर्खास्त किए गए बिमोल अकोइजम के खिलाफ बीजेपी महिला सांसदों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की।
9: मांग हमारी वही थी कि जो डॉक्टर बिमोल हैं उनके अगेंस्ट प्रूवन है कि 11 महिला बच्चियों को उन्होंने सेक्सुअली हैरेस किया और उनको निकाल दिया गया जेएनयू से, लेकिन आज भी वो एमपी बने हुए हैं और उनको एमपीशिप की बर्खास्त किया जाए और उनको हटाया जाए।
5: इनर मणिपुर से कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल पर जेएनयू की 11 छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल अकोइजम जेएनयू में प्रोफेसर थे, वहां की 11 छात्राओं ने उन पर यौन शोषण जैसे गंभीर इल्जाम लगाए। तमाम आरोपों के बाद जेएनयू ने आंतरिक जांच बिठाई उस जांच में अकोइजाम पर तमाम आरोप सही साबित पाए गए। उसी रिपोर्ट के आधार पर जेएनयू ने 9 अक्टूबर को उन्हें प्रोफेसर पद से हटा दिया। उसके दो दिन बाद यानी 11 अक्टूबर को आरोपी कांग्रेस सांसद के खिलाफ अलग अलग धाराओं में FIR भी दर्ज करा दी गई।
0: एक इंटरनल कमेटी ने गिल्टी पाया 11 छात्राओं की कंप्लेंट पर बिमल अकोइजम के खिलाफ। जितनी भी एलिगेशन सेक्सुअल हैरेसमेंट की थी उनमें सच्चाई पाई और इसीलिए उनको नौकरी से बर्खास्त करा। उस पर भी चुप्पी साधे हुए हैं राहुल गांधी।
5: उधर अंगोमचा बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं।
10: No, this is nothing but harassment. They know that once this Kha Panchayat style of doing by JNU, if it is challenged in a court of law, the court will take notice of the complete disregard for norms and rule and regulations. So they are trying to drag it to court, which will not also not stand. And I have said before, if you go into the merit of the case, in itself also people will get exposed. What is this so-called harassment allegations?
5: बहरहाल बीजेपी इस मुद्दे को लेकर लगातार सड़कों पर उतरी हुई है, जहां अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
0: इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, मंत्री परिषद में फेरबदल की आहट के बीच सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री एल मुरुगन ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। मुरुगन ने पीएम मोदी से आग्रह किया कि तमिलनाडु में काम करने का मौका दिया जाए। मुरुगन ने अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए अनुमति मांगी है। केंद्रीय मंत्री पद और राज्यसभा पद छोड़ने की पेशकश उन्होंने कर दी है। एल मुरुगन ने इस्तीफे की पेशकश की है। इस बारे में उन्होंने प्रधानमंत्री को जानकारी दे दी है। उनका कहना है कि अब आगे वो अन्य जिम्मेदारियां संभालना चाहते हैं और इसी बाबत उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी में अपने इस्तीफे की पेशकश की है। तमिलनाडु में काम करने का उन्हें मौका मिले। सूचना प्रसारण राज्य मंत्री है एल मुरुगन जब इस्तीफा पेश कर चुके।
11: I wrote a letter to Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji that I want to go to Tamil Nadu. So I want to strengthen my party to Tamil Nadu and also I want to prepare the ground for 2029 elections for the Tamil Nadu, because our Honorable Prime Ministers always he take our Tamil pride to the global level, and I want to relieve from minister. I request to our Honorable Minister, Honorable Prime Minister to relieve me and send for the state to strengthen the party.
0: वहीं यूपी में 2027 के चुनाव के लिए सभी दलों ने कमर कस ली है, लेकिन एक लड़ाई जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के बीच दिख रही है। अखिलेश यादव के चवन्नी वाले बयान पर जयंत ने करारा पलटवार किया।
12: सत्ताईस के समर को साधने के लिए सियासी जमातें समीकरण बैठा रही हैं, रैलियां हो रही हैं, मंथन हो रहे हैं, सम्मेलन हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच बिना कहे संदेश भी दिया जा रहा है। ऐसा ही एक संदेश जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव के लिए दिया है।
13: ना सोच समझ के अगर बोलोगे, 24 घंटे व्यंग में रहोगे, बातों को गंभीरता से नहीं लोगे, रिश्तों को निभाना नहीं सीखोगे तो कौन खड़ा होगा साथ।
12: जयंत चौधरी के बयान के पीछे अखिलेश का वो बयान सुनिए जिसमें उन्होंने जयंत चौधरी का बिना नाम लिए चवन्नी कहा था।
14: जाने कहां कहां से आ गए थे गठबंधन वाले, हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया तब भी हमें छोड़ के चले गए।
12: अब इसी बयान पर जयंत चौधरी ने करारा पलटवार किया है।
13: बात कीमत की थी, जो लोग मुझे एक चवन्नी भी नहीं मान रहे हैं, कह रहे हैं कि चवन्नी थूं, मैं उनको बताना चाहता हूं मैं तो चवन्नी भी नहीं, ब्रज रज के एक चुटकी लायक भी मैं अपने आप को नहीं मानता हूं, ब्रज रज की अहमियत।
12: मतलब ये कि समाजवादी पार्टी और RLD के बीच अखिलेश की बयानबाजी ने तल्खी बढ़ाई है। दूसरी तरफ अखिलेश भी अपने तीर तुक्के लगा रहे हैं। अब बीजेपी के प्लान 403 के जवाब में अखिलेश ने कहा है कि बीजेपी की 420 वो यूपी में नहीं चलने देंगे। कुल मिलाकर यूपी के समर में जुबानी जंग तेज है। आज तक ब्यूरो।
0: और पंजाब से आज एक सनसनीखेज तस्वीर सामने आई, जहां नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले समाज सेवी को सरेआम गोली मार दी गई, जिसने एक बार फिर चुनाव से पहले पंजाब की सियासत में उबाल ला दिया।
5: पंजाब के मानसा में फेसबुक लाइव में बहस के दौरान ये गोलीकांड की तस्वीरें। जिसमें नशे के खिलाफ बड़े स्तर पर सामाजिक मुहिम चलाने वाले मशहूर नशा विरोधी एक्टिविस्ट परविंदर छोटा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। छोटा केमिस्ट की दुकान पर नशा बेचने का आरोप लगाते हुए फेसबुक लाइव कर रहे थे। इसी दौरान केमिस्ट वाले ने उन्हें गोली मार दी और अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस मामले को आपसी रंजिश से जोड़ रही है।
15: रंजिशन इस व्यक्ति ने जो है उस पे फायरिंग करके जो है इस घटना को अंजाम दिया है।
5: वहीं परविंदर सिंह छोटा के परिवार का कहना है कि ड्रग्स के खिलाफ उनकी मुहिम के चलते छोटा की हत्या की गई।
16: नशा कौन बिकाऊंगा? वो पंजाब सरकार ने विजय सिंगले वर्गे मंत्री बिकाऊंगे।
5: मामले में एक बार फिर पंजाब में नशे पर सियासी बहस तेज हो गई है।
17: नशिया नु रोकण वास्ते संघर्ष कर रहा सी, सरकार नाल लड़ाई लड़ रहा सी, सरकार ते नशा बेचण वाले उन्हें बार बार दबा रहे सी, लेकिन अज आखर नूं उस दे गोलियां मार के मार दिता है। बहुत ही घिनौनी हरकत हुई है, सरकार वास्ते डुब के मरने वाली गल है।
18: गोलियां मार के कत्ल किया गया, उन्हें एक बारी फिर पंजाब दे विच माड़े लॉ एंड ऑर्डर की जिहड़ी तस्वीर है वो देश के सामने रख दिती। वो व्यक्ति जिहड़ा 5-6 साल तो नशियां दे खिलाफ जहाद खड़ा करके बैठा।
19: 3 म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हुए हैं। 2 म्युनिसिपैलिटी और 1 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में टोटल 104 सीटों में से 90 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड विजय प्राप्त किए। गांधीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो कि मेरे मत क्षेत्र के अंदर आता है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 44 में से 38 सीटों पर विजय प्राप्त करी। आम आदमी पार्टी ने 32 सीटें लड़ी और 32 की 32 सीटों पर जमानत जब्त कराई। और गुजरात में ये जो प्रचंड विजय आया है वो गुजरात के मतदाताओं के मूड का द्योतक है कि भारत का गुजरात का मतदाता आज भी नरेंद्र मोदी जी के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। गांधीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी ने 10% वोट की बढ़ोतरी की है गत चुनाव के बाद, और मैं ये बात स्पष्ट करना चाहता हूं और विशेषकर राहुल जी को पहुंचाना चाहता हूं कि 41 साल के बाद आज भी एक भी चुनाव कांग्रेस नहीं जीत पाई है। अंतिम चुनाव वो 41 साल के पहले 1985 में जीते थे, उसके बाद लगातार गुजरात में उनकी हार हो रही है। मैं राहुल जी को ये भी पूछना चाहता हूं कि क्या ये SIR का परिणाम है? भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता, मोदी जी की लोकप्रियता को आप SIR का परिणाम कहकर झुटलाते हो? आपको आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। एक बहुत बड़े सूबे में जहां आपका हमेशा शासन रहता था, वहां 41 साल से एक भी चुनाव आप नहीं जीत पाए। ये इनके लिए आत्मनिरीक्षण का बहुत बड़ा विषय है। अभी अभी देश भर में 3 राज्यों में उपचुनाव हुआ, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पांडिचेरी। मैं आज देश की जनता को ये भी बताना चाहता हूँ, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पांडिचेरी के चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट प्राप्त नहीं हुई है। नौगांव में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी 1,42,000 वोट से जीता, जो सिटिंग सीट कांग्रेस पार्टी के पास थी, भारतीय जनता पार्टी ने छीन ली है। नंदीग्राम में भाजपा का प्रत्याशी 76% वोटों के साथ 1,22,000 वोट की जंगी लीड के साथ जीता है। पश्चिम बंगाल रेजीनगर में भाजपा 75,000 से अधिक वोट से जीती है, हमने तृणमूल से ये सीट छीनी है और पुदुचेरी में एनडीए के एलआई एआईएनआरसी 8,482 वोट से हमारा प्रत्याशी जीता है एनडीए का, कांग्रेस को सिर्फ 22%। राजस्थान में भी जो स्थानीय इकाई के चुनाव निकाय के चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड विजय हुआ है। नगर निगम में 90% नगर निगम भारतीय जनता पार्टी ने कब्जे किए हैं। नगर परिषद में 66% नगर परिषद भारतीय जनता पार्टी ने कब्जे किए हैं और नगर पालिकाओं में 65% नगर पालिकाएं में भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड विजय हुआ है। ये चुनाव राहुल गांधी के लिए सबक है और राजस्थान में आम आदमी पार्टी ने 85% से अधिक वार्डों में अपनी जमानत जब्त की है। मैं राहुल गांधी जी को ये भी बताना चाहता हूं कि हमने त्रिपुरा में ग्राम समिति के जो चुनाव हुए उसमें 4600 सीटों में से 3248 सीटें और 900 सीटें कुल मिलाकर 77.5% मत हिस्सेदारी के साथ एनडीए लगभग 4000 से ज्यादा सीटों पर जीतने में कामयाब हुई है और 4600 सीटों में से कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 14 सीटें मिले हैं। और जो लोग बैलेट बॉक्स का बैलेट के मशीन का हवाला देते हैं उनको ये भी मैं बताना चाहता हूं कि चुनाव बैलेट पेपर के साथ हुए हैं। जो बैलेट का मशीन भाजपा को चुनाव जिताता है वो तर्क को भी सिरे से खारिज करता है। त्रिपुरा में 33 साल से कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री जीत नहीं पाया है। बंगाल में 54 साल से कांग्रेस पार्टी को कोई जीत हासिल नहीं हुई है। बंगाल, त्रिपुरा, गुजरात हमेशा कांग्रेस पार्टी 3-3 दशक, 4-4 दशक, 5-5 दशक से हारी है। मैं श्री राहुल गांधी जी को सीधा पूछना चाहता हूं कि क्या ये एसआईआर का परिणाम है? एसआईआर तो 24 के बाद चालू हुआ। आप जब से कांग्रेस के मुख्य नेता के रूप में आए हैं और बाद में अध्यक्ष के रूप में आए हैं, लीडर ऑपोजिशन के रूप में आए, कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव हारे। आपको आत्मचिंतन करने की जरूरत है। फैब्रिकेटेड मीडिया इवेंट, झूठ की गूंज कर आप देश की जनता का विश्वास हासिल नहीं कर सकते। पूरी 14 पार्टी का कैडर इकट्ठा कर 1.5 किलोमीटर के क्षेत्र में 8000 की भीड़ इकट्ठी कर आप देश की आवाज नहीं बन सकते हो। मेरा कांग्रेस पार्टी से निवेदन है कि देश की आवाज खेत खलियानों में, गांवों में, दूर सुदूर पहाड़ियों पर, जंगलों में और नदियों के किनारे भी है। आपकी वहां कोई रीच नहीं है। देश के कई सूबे ऐसे हैं, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, आपको कई दशकों तक कांग्रेस पार्टी को वहां की जनता ने नकारा है, हराया है। आज भी कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार की नकारात्मक पॉलिटिक्स कर रही है वो उनको फायदा नहीं करेगी। उनको जनता को समझना चाहिए, जनता का संपर्क करना चाहिए। मैं राहुल गांधी जी को बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी, एसआईआर के बहाने घुसपैठिया बचाने का आपकी जो कार्य योजना है उसको देश की जनता भली भांति समझ चुकी है और अब भारत की जनता आपके झांसे में आने वाली नहीं है। श्री राहुल जी और उनके साथियों को मैं ये भी बताना चाहता हूं कि 29 में प्रचंड हार के लिए फिर से एक बार मन बना लीजिए। 2029 के आम चुनाव में एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर आने वाला है और कांग्रेस की फिर से एक बार लगातार चौथी बार हार होने वाली है। इस देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है, बीजेपी के साथ है, एनडीए के साथ है। इस सत्य को आप झुठला नहीं सकते। आज मैं फिर से एक बार त्रिपुरा, राजस्थान, गुजरात, बंगाल और असम की जनता का भारतीय जनता पार्टी की ओर से हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि सारे अपप्रचार की आंधी के बीच में उन्होंने नरेंद्र मोदी जी पर और भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान पर एनडीए पर अपनी मोहर लगाई है, पसंदगी की मोहर लगाई है और सब राष्ट्रवादी ताकतों का संबल बढ़ाया है। मैं इनका मन पूर्वक धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से करता हूं।
0: तो अमित शाह को सुन रहे थे आप, उनका कहना था कि बंगाल, उड़ीसा, गुजरात में कांग्रेस हार रही है। अभी के जो नतीजे आए हैं उसके बारे में डिटेल्स वो देते हुए उन्होंने कहा कि राहुल की अगुवाई में लगातार कांग्रेस का खराब प्रदर्शन है। जगह जगह के उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि वहां पर कांग्रेस आ रही है जहां पर राहुल प्रमुख तौर पर बोलते हैं। 8000 की भीड़ देश की आवाज नहीं है जो सड़कों पर दिखाई दे रही है। जाहिर तौर पर उनका इशारा राहुल गांधी के प्रदर्शन पर था। बंगाल, उड़ीसा, गुजरात का उन्होंने उदाहरण दिया, वहां पर कांग्रेस हार गई है। कई ग्रामीण इलाकों में राहुल का कोई असर नहीं दिखता है, वहां पर लोग राहुल गांधी को जानते तक नहीं है। राहुल को जनता से संपर्क करना चाहिए। इस तरह से प्रदर्शन करके कुछ हासिल नहीं होगा, 8000 की भीड़ जुटाकर कुछ हासिल नहीं होगा। एसआर के बहाने घुसपैठिए बचा रहे हैं राहुल। रुकेंगे आज थोड़ी से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, टिकते रहिए आज तक।
20: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
21: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: आगे आगे
2: अरे उधर
1: उधर किधर करेक्ट करेक्ट
3: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: यार लोन भूल गया। मैरी
5: इट्स
4: जस्ट अ गुड बैंक ना।
6: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
4: स्मॉल फाइनेंस बैंक,
6: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन कार लोन, टू व्हीलर लोन।
7: There's nothing small about
4: us. Oh, Jeevan, nothing small about us.

0: Black and Blue. Based on your notes, there are some great talking points for your interview.
1: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार सर एक बार दो तीन थमका लगाने बस
2: मेरे पास एक आइडिया है।
1: क्या
2: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है
3: एक रॉकस्टार होता है अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता
4: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
5: मेरा ना सिंपल है एक लड़की है उसका भाई जेल में है लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
6: कौन सी बनानी है
7: SBI Celebrations Unlimited. इस festive season को बनाएं special. Car loan, personal loan, gold loan और loan against mutual funds पे special offers के साथ.
8: शादी है.
9: तो क्या बनवाना पसंद करेंगे आप?
8: बंद गला.
9: क्यों? उसे पसंद है?
10: सारा खेल फिटिंग का है. The Arvind Store.
11: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप

0: How's the hostel? Settled?
1: Yes, Mark, really nice.
0: कोई आ रहा है क्या?
2: तुम मॉम डैड वाली ड्यूटी तो निभाली, अब फिर से थोड़ा रोमांस ले।
0: मयंक, for real?
2: One carat for my one true love. Natural diamond, real love, solitaires to reignite your new season of love.
3: इतने पेमेंट ऐप्स पर सेफ कौन सा?
4: तो स्विच टू बीम, एकदम सेफ और भरोसेमंद। रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं, पाओ 40 रुपए का कैशबैक 40 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर। भीम ऐप से करो पे।
5: इट्स अ माय वे।
6: बच्चों के लिए अलग टीवी रूम बना सकते हैं।
7: कैसा लगा आप दोनों को अपना ड्रीम होम?
8: आई लव इट, एब्सोल्युटली अमेजिंग। तुम एक काम करो, तुम मिठाई ऑर्डर कर लो।
9: मिठाई से पहले कुछ और हो जाए
8: क्या?
9: इनकी राय।
10: नई सोच की नींव में हम, हर नई उम्मीद में हम, गैलेंट निर्माण का रियल हीरो।
11: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
12: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
11: असली शहद, असली स्वाद।
13: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
14: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
15: सोच बदलो और बैंक भी।
16: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
17: हर बार वही गोल्ड ज्वेलरी कैसे पहन सकती हूँ?
18: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
19: इन एसोसिएशन विद
20: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

पैसा हार के बहाने घुसपैठिए बचा रहे हैं राहुल, 2029 में करारी हार के लिए रहे हैं तैयार, देश की जनता को मोदी पर भरोसा। इंडिया गठबंधन की चाय पर चर्चा के बाद बोले राहुल, शाह ज्ञानेश कुमार को नहीं छोड़ेंगे, लोकतंत्र को बचाना मकसद है। खड़गे तेजस्वी, संजय राउत ने सीसी पर किया तीखा वार। आरोप को पीयूष गोयल ने बताया बेबुनियाद, कहा कांग्रेस चुनाव आयुक्तों को बताती थी राज्यपाल, मंत्री नेता विपक्ष से पूछे 10 सवाल।

0: केंद्रीय मंदिर मंडल छोड़ने की मांगी अनुमति, कहा तमिलनाडु में करूंगा कहा।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। आज विशेष में बात करेंगे जंतर मंतर की, जिसे कल ही सरकार ने प्रदर्शन के स्थल से हटा दिया है, यानी आप कोई भी जंतर मंतर प्रदर्शन नहीं कर पाएगा और इसको अब विपक्ष ने एक बड़ा मुद्दा बनाया है। आज दिल्ली में ही राहुल गांधी के घर पर जो इंडिया ब्लॉक में विपक्ष के नेताओं की बैठक हुई, उस पर जंतर मंतर का मुद्दा उठा। सभी विपक्षी पार्टियों ने जंतर मंतर को प्रदर्शन की जगह के तौर पर हटाने की निंदा की और इसके खिलाफ अब आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया। कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएमएल, आरजेडी, शिवसेना, यूबीडी समेत सभी पार्टियों के एकमत से जंतर मंतर को फिर से प्रदर्शन की जगह के तौर पर बहाल करने की मांग की गई। सबसे पहले आपको सुनाते हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और शिवसेना यूबीडी के संजय राउत क्या कह रहे
3: हैं। द वन मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी वॉज जंतर मंतर एंड नाउ द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड दैट जंतर मंतर कैन नो लॉन्गर बी यूज्ड टू एक्सप्रेस डेमोक्रेटिक फीलिंग्स। वेल, वी आर गोइंग टू चैलेंज दैट आइडिया। इट इज नॉट गोइंग टू बी सो सिंपल फॉर द गवर्नमेंट to decide that the Indian people will not fight for their voice.
4: डरे हुए लोग हैं और ये डर इनका दिखाता है कि जंतर मंतर को जो है अब प्रोटेस्ट जहां होना चाहिए था, जो होता रहा है, जिसका ऐतिहासिक महत्व रहा है, उसको बदल करके जो है दिल्ली के बॉर्डर पे जो है कर दिया गया है, ये इनका डर दिखाता है। तो हम सब लोग आगे इस लड़ाई को जारी रखेंगे, हम सब लोग मिलकर के लड़ेंगे और जीतेंगे, और जिन लोगों ने षड्यंत्र किया है, चाहे वो मोदी जी हो या ज्ञानेश गुप्ता हो या अमित शाह हो, वोट चोरी कराई है, फर्जी चुनाव कराया है, देश की जनता के सामने ये मामला उजागर हो गया है और हर एक व्यक्ति देश का अब इनसे हिसाब मांग रहा है।
5: और सर, क्या कार्पेट बॉम्बिंग, ये जो प्रोटेस्ट साइट है, इसको लेकर राहुल गांधी ने बोला कि हम लोग इसको अपोज करेंगे, जंतर मंतर को
6: करेंगे, हम जंतर मंतर में जाएंगे।
5: अच्छा।
6: हमारे भाषा में घुसेंगे।
5: अच्छा।
6: और जो लोकतंत्र का आत्मा वहां है, जो मार देते हैं जंतर मंतर में, हम उसको जिंदा करेंगे।
0: सवाल यह है कि जंतर मंतर को प्रोटेस्ट साइट की लिस्ट से डी नोटिफाई क्यों किया गया? पिछले 3 दशकों से जंतर मंतर हर छोटे बड़े प्रदर्शन का गवाह रहा, लेकिन अब सरकार ने इसे भी हटा दिया। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने उतरे विपक्ष को एक नया मुद्दा मिल गया और इस मुद्दे पर विपक्ष के साथ तमाम लेफ्ट पार्टीज भी खड़ी हुई दिख रही।
7: इफ द बीजेपी थिंक्स दैट इट कैन अटैक द फाउंडेशन ऑफ व्हाट इट मींस टू बी अ डेमोक्रेसी एंड देन when the people come on to the streets to protest and demand their voting rights, and then our right to protest can also be taken away from us and we will be quiet, then the BJP has something else on its head. They can compromise democracy, they can compromise what the constitution stands for, because they have never had a role in making India a democracy, they have never had a role in what the constitution stands for, but the common people of this country who have fought for.
8: जो संघर्ष करने के लिए एक designated जगह था जंतर मंतर, इनका चोरी भी करता है, वोट चोरी करता है, संघर्ष का जगह का चोरी करता है, जनतंत्र का चोरी करता है, इसका खिलाफ एकजुट हमारा संघर्ष आगे जाएगा। आप सबका मदद इसके लिए मांग करके मैं खत्म करता हूं।
9: जंतर मंतर को कल ही डीनोटिफाई किया गया, ये एक सरकार का हमें कहेंगे विंडिक्टिव डिसीजन है, क्योंकि जंतर मंतर से उनको मात खानी पड़ी और इसीलिए वो जंतर मंतर से ही पेंट छुड़ाना चाहते हैं, तो बिल्कुल हमारे लिए मंजूर नहीं है। जंतर मंतर पर हमारा दावा रहेगा बिल्कुल, और जो 1 नवंबर का तय हुआ था, मेरे ख्याल से कार्यक्रम है दिल्ली के लिए, और पूरे देश भर में अगले 2 महीने में 5-6 बड़ी बड़ी रैलियां हम लोग करेंगे।
0: अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसे देखकर आप ये समझिए कि सरकार ने जंतर मंतर को प्रदर्शन की जगह के तौर पर क्यों हटाया और दिल्ली में जिन तीन जगहों को प्रदर्शन के लिए दिया है उनकी क्या स्थिति है।
10: जुलाई में जब जंतर मंतर के आंदोलन से सरकार के एक मंत्री का इस्तीफा हुआ तो तभी से ये माना जा रहा था कि अब जंतर मंतर पर आंदोलन नहीं होगा और ऐसा ही हुआ है। सरकार ने जंतर मंतर को प्रदर्शन की जगहों से अलग कर दिया है और प्रदर्शनकारियों के लिए दिल्ली में तीन नई जगहें तय कर दी हैं। पहला है रामलीला मैदान जो जंतर मंतर से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। दूसरा है बुराड़ी का ग्राउंड जो यहां से 21 किलोमीटर दूर है और तीसरा है पूर्वी दिल्ली में शाहदरा का सीबीडी ग्राउंड जो जंतर मंतर से 12 किलोमीटर दूर है। लेकिन क्या इन मैदानों पर प्रदर्शन करना इतना आसान रहेगा? क्योंकि प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर इसलिए प्रदर्शन करने आते थे क्योंकि यहां से संसद भवन पास में है, सरकार के सभी बड़े दफ्तर बिल्कुल पास में है, प्रदर्शनकारी सीधे सरकार तक अपनी आवाज पहुंचा सकते थे, जैसा कि जुलाई में सीजेपी के प्रोटेस्ट में हुआ था। उस वक्त प्रदर्शनकारियों ने संसद मार्च भी कर दिया था जिसमें जमकर हिंसा हुई थी, लेकिन ये बात भी सही है कि इससे सरकार पर दबाव पड़ा था और इसीलिए आखिरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हुआ। अब अगर धरना प्रदर्शन की जगह दूर हो जहां से न संसद पास हो, न प्रधानमंत्री का घर, न राष्ट्रपति का आवास, न कोई सरकारी दफ्तर, तो सरकार को क्या फर्क पड़ेगा? अब ये इन दो ग्राउंड्स की तस्वीर आपके सामने है। एक है बुराड़ी का ग्राउंड जो जंतर मंतर से 21 किलोमीटर दूर है। यहाँ अगर कोई पार्टी, कोई सामाजिक संगठन प्रदर्शन करने जाएगा भी तो क्या सरकार उसकी सुनेगी? और यही सवाल शाहदरा के सीबीडी ग्राउंड के लिए भी है कि पूर्वी दिल्ली के इस ग्राउंड में प्रदर्शन करने कौन जाएगा और जो यहाँ जाएगा क्या उसकी आवाज सुनी जाएगी?
11: जंतर मंतर की जगह सरकार ने जो तीन मैदान दिए हैं कि अब यहाँ पर धरना प्रदर्शन होगा, उनमें से एक बुराड़ी भी है। अब बुराड़ी आप समझिए कि संसद भवन से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर, और मैदान कितना बड़ा, अगर आप देखिए इसकी क्षमता इतनी है कि 3 से 4 लाख लोग जो है इस मैदान में बैठ सकते हैं। आमतौर पर धार्मिक बड़े आयोजनों के लिए इस मैदान का इस्तेमाल होता है और इसीलिए यहां पर, लेकिन ये इतनी दूरी पर है कि बहुत सारे प्रदर्शनकारी या राजनीतिक दल अगर विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं तो सबसे पहले यहां आने के लिए जो क्षमता है वो बसों का सहारा, मेट्रो स्टेशन थोड़ी सी दूरी पर है, यहां आना। और दूसरा, जंतर मंतर पर 2000 की भीड़ 20 तो लगती है, लेकिन बुराड़ी मैदान पर अगर 1 लाख लोग भी बैठ जाएंगे तो भी ऐसा क्षमता लगता है कि 2 या 4 या 5 हजार लोग बैठे हैं। उसी के साथ साथ यहां पर क्या इतनी दूरी पर 17 किलोमीटर, क्योंकि जंतर मंतर पर बैठने का संदेश होता था कि वो इस नाम पर आते थे कि संसद मार्च करेंगे और फिर वहां से पार्लियामेंट सीट थाने जाते थे, क्या यहां से संसद मार्च की कोशिश भी की जा सकती है? 1 या 1.5 किलोमीटर के अंदर जो है उन्हें रखा जा सकता है। सुविधाओं के नाम पर बड़ी पार्किंग एरिया है, कितना भी बड़ा प्रोटेस्ट मार्च हो इस मैदान को भरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब यहां की एसओपी है कि मैदान तो उपलब्ध हो जाए, हो सकता आराम से, लेकिन क्या प्रदर्शन करने के लिए जो सामाजिक ग्रुप हैं, प्रेशर ग्रुप हैं और इसी के साथ जो राजनीतिक दल हैं, क्या वो बुराड़ी के मैदान में प्रदर्शन करने के लिए आएंगे?
10: धरना प्रदर्शन इसलिए करने पड़ते हैं ताकि सरकारों को अपनी आवाज सुनवा सके, और इन मैदानों से कौन सी सरकार आवाज सुनेगी? हाँ, रामलीला मैदान जंतर मंतर से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है और ये भी एक धरना स्थल है, लेकिन यहाँ दूसरी तरह की समस्याएं हैं। क्या यहाँ प्रदर्शन के लिए ग्राउंड खाली मिलेगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल दशहरा तक रामलीला मैदान इसलिए प्रदर्शन के लिए नहीं मिल सकता क्योंकि नवरात्रों के पर्व के चलते यहाँ रामलीला का मंचन हो रहा है। मैदान के हिस्से में मेला भी लगा हुआ है। अब विजयदशमी पर रावण दहन से पहले रामलीला मैदान किसी और कार्यक्रम के लिए उपलब्ध नहीं हो सकता।
11: ये ऐतिहासिक जंतर मंतर पर अब धरना मना है क्योंकि केंद्र सरकार ने उसे धरना स्थल पर जो जगह दी गई हुई थी, जो उसकी मान्यता थी, उसे रद्द कर दिया है। लेकिन अब ये कह दिया है कि दिल्ली के तीन जगहों पर धरना हो सकेगा, धरना प्रदर्शन सभाएं हो सकेंगी, उनमें से एक है दिल्ली का ये ऐतिहासिक रामलीला मैदान। ये रामलीला मैदान अगर इसकी जगह को समझें तो अब इसको लेकर के दरअसल विरोध कर रहे हैं व्यापारी कि जंतर मंतर से आपने धरना प्रदर्शन हटा दिया जिससे कारोबार सही होगा, उसका तो स्वागत है, लेकिन रामलीला मैदान को धरना स्थल एक तीन जगह जो दी गई है जिसमें पूर्वी दिल्ली बुराड़ी का मैदान और ये दिल्ली का रामलीला मैदान, इसको लेकर के व्यापारी नाराज है। वो किस लिए समझिए, ये पूरा रामलीला मैदान है, इस समय यहां पर रामलीला चल रही है, मेले लगे हुए हैं क्योंकि नवरात्रि दशहरा में मेला लगता है। इसी के साथ साथ अब इसके बगल में क्या है, यहां पर ये नगर निगम का सिविक सेंटर है, आप समझिए यहां से नगर निगम संचालित होता है, बीच में महानगर का जो जो एमटीएनएल है आप देख रहे हैं उसकी बिल्डिंग है, इसी के ठीक बगल में यहां पर अगर आप देखेंगे इस तरफ अस्पताल है, आंखों का अस्पताल है, बड़े सारे कई अस्पताल हैं। अब अगर 360 डिग्री आपको ले जाता हूं तो यहां पर आपको दिखाई देगा वर्धमान प्लाजा, ट्रेडर टावर है और इसी के साथ साथ यहां पर जो ट्रेड सेंटर है वो बनाया गया है।
10: आपको जानकर हैरानी होगी कि इस साल 2026 में सिर्फ 3 तारीखें खाली हैं जब मैदान उपलब्ध है, 29, 30 और 31 दिसंबर, यानी अगले ढाई महीने रामलीला मैदान पूरी तरह से बुक है। रामलीला मैदान पर प्रदर्शन करना भी महंगा होगा, यहां एक दिन की बुकिंग के लिए 1,21,000 रुपए खर्च करने होंगे। इसके अलावा 50,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट भी अलग से जमा करना होगा। इसके अलावा रामलीला मैदान में प्रदर्शन के लिए एमसीडी की अनुमति और दिल्ली पुलिस की एनओसी भी अनिवार्य है। और अगर ये सब कर भी लिया तो व्यापारी रामलीला मैदान को प्रदर्शन स्थल घोषित करने के विरोध में उतर आए हैं, क्योंकि व्यापारियों का कहना है कि रामलीला मैदान के आसपास दिल्ली का व्यापार हब है, सारे बड़े मार्केट्स हैं जहां से हर रोज अरबों का कारोबार होता है। रामलीला मैदान के आसपास कमला मार्केट, दरियागंज, चावड़ी बाजार, नया बाजार, पहाड़गंज, चांदनी चौक, सदर बाजार, खारी बावली, भगीरथ पैलेस, अजमेरी गेट, कश्मीरी गेट है। व्यापारियों का मानना है कि अगर यहां रोज धरना प्रदर्शन होंगे तो उनका व्यापार बुरी तरह से प्रभावित होगा।
11: ठीक इसके पीछे दरअसल ये दिल्ली 6 शुरू होता है। दिल्ली 6 सबसे पुराने बाजारों में से एक है। यहां से रास्ता जो है आप आगे पुरानी दिल्ली की ओर जाता है, चांदनी चौक की ओर जाता है, चावड़ी बाजार की ओर जाता है, तो ये पूरा इलाका बाजारों से घिरा हुआ है जहां पर रोज लाखों नहीं बल्कि करोड़ों का कारोबार होता है। व्यापारियों की चिंता ये है कि अगर इसे जो है आपने रामलीला मैदान को धरना स्थल घोषित कर दिया तो यहां सैकड़ों हजारों का जमावड़ा होगा, बड़े बड़े आंदोलन होंगे, जैसा कि पिछले समय में देखा गया है कि 10 दिन 12 दिन

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: यार लोन भूल गया मैरी।
3: इट्स
2: जस्ट अ गुड बैंक ना।
4: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
2: स्मॉल फाइनेंस बैंक।
4: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन कार लोन, टू व्हीलर लोन।
5: देयर्स नथिंग स्मॉल अबाउट
6: अस। उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।
7: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार सर एक बार दो ठुमका लगाने बस।
8: मेरे पास एक आइडिया है।
7: क्या?
8: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
9: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता,
10: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
11: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
12: कौन सी बनानी है?
13: शादी है
14: तो क्या बनवाना पसंद करेंगे आप?
13: बंद गला।
14: क्यों, उसे पसंद है?
15: सारा खेल फिटिंग का है।
16: दी अरविंद स्टोर।
17: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। Signature Finest Silver Elaichi, a premium product from Dilbaugh Group.

0: बच्चों के लिए अलग टीवी रूम बना सकते हैं।
1: कैसा लगा आप दोनों को अपना ड्रीम होम?
2: आई लव इट, एब्सोल्युटली अमेजिंग। तुम एक काम करो, तुम मिठाई ऑर्डर कर लो।
3: मिठाई से पहले कुछ और हो जाए
2: क्या?
3: इनकी राय।
4: नई सोच की नींव में हम, हर नई उम्मीद में हम, गैलेंट निर्माण का रियल हीरो।
5: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
6: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
7: सोच बदलो और बैंक भी।
8: हर बार वही गोल्ड ज्वेलरी कैसे पहन सकती हूँ? पर इस जमाने में नई नई गोल्ड ज्वेलरी खरीदना भी तो इम्प्रैक्टिकल है, तो फिर सेनको का ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज।
9: एंजॉय करें 0% डिडक्शन किसी भी ज्वेलर के गोल्ड ज्वेलरी एक्सचेंज पर और खरीदें अपने पसंदीदा सेंको गहने।
10: डायबिटीज की वजह से मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ता है,
11: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
10: मैं चैन की नींद सो पाता हूं। कपिवा डायट्री जूस।
12: लव एंड केयर, द वर्ल्ड्स फाइनेस्ट रेंज ऑफ रबर पेट टॉयज।
13: माँ के पैरों की धूल माथे पर लगे, परदेश की गलियों में अपने वतन की गीत सुनो।
14: श्राम

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार सर एक बार दो तीन ठुमका लगाने बस।
3: मेरे पास एक आइडिया है।
2: क्या?
3: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है
4: एक रॉकस्टार होता है अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता
5: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
6: मेरा ना सिंपल है एक लड़की है उसका भाई जेल में है लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
4: कौन सी बनानी है?
7: शादी है
8: तो क्या बनवाना पसंद करेंगे आप?
7: बंद गला।
8: क्यों उसे पसंद है?
9: सारा खेल फिटिंग का है। डियर विंस्टो
10: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर Signature Finest Silver Elaichi, a premium product from Dilbar Group.
11: बच्चों के लिए अलग टीवी रूम बना सकते हैं।
12: कैसा लगा आप दोनों को अपना ड्रीम होम?
13: I love it. Absolutely amazing. तुम एक काम करो तुम मिठाई ऑर्डर कर लो।
14: मिठाई से पहले कुछ और हो जाए।
13: क्या?
14: इनकी राय।
15: नई सोच की नींव में हम हर नई उम्मीद में हम गैलेंट निर्माण का रियल हीरो
16: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट वो भी हर महीने
17: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ
18: सोच बदलो और बैंक भी
8: डायबिटीज की वजह से मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ता है
19: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
8: अब मैं चैन की नींद सो पाता कपिवा डायट्री जूस
5: माँ के पैरों की धूल माथे पर लगा परदेश की गलियों में अपने वतन की गीत सुनो
13: एक तो विश्राम।

0: सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: जहां खबर वहां न्यूज तक, ग्राउंड रिपोर्ट से लेकर एक्सक्लूसिव कवरेज तक, खबरों का सच तथ्यों के साथ, जनता के सवालों से लेकर सत्ता के जवाबों तक, देश दुनिया की हर बड़ी खबर सिर्फ न्यूज तक पर।
3: राजस्थान की सियासत का सबसे बड़ा मंच, जहां होगी युवाओं के मन की बात और मिलेगा युवाओं के हर सवाल का जवाब, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के साथ। देखिए पंचायत राजस्थान 15 अक्टूबर दिन भर सिर्फ आज तक पर।
4: आ गया सोमवार और आ गए
5: चकमक चाचा।
4: हाँ चाचा, अखबार बांच रहे हैं।
6: टेस्ट
4: चल रहा है, भैया के चले गए, दीदी पहुंच गई है, चिचा कब जाएंगे?
6: अरे भैया प्रदर्श उत्तर में हिस्सा हम ले लेते हैं, ये सब तुम लोग का ऐसा है, हम अपना मुद्दा उठा चुके पुराने।
4: अच्छा, कब उठाए?
6: जेपी के टाइम पे मुद्दा उठाए।
4: अच्छा,
6: हाँ तो जहाँ वो मुद्दा जब हम ऐसा रख देते थे तो फिर रख देते थे फिर मुद्दा। ये नहीं तुम लोग तरह इधर आए तो मतलब पुलिस आई इधर भागने लगे, दन दन दन दन कर गया, ऐसा ये सब नहीं था अपना मामला
7: जे,
6: मुद्दा मजबूती से रखते थे।
4: हम तो सुने मुद्दा टूटा भी है
6: आपका भी था, सही बात है, जब कभी ऐसे कार्रवाई चलती थी दर्द पिता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन फिर बोलता रखे थे एकदम मुद्दा मजबूती के साथ रखे, सरकार हिला दिया एकदम।
4: अच्छा,
6: और क्या
4: आपका मतलब हम लोग डर जाते हैं?
6: और क्या डर जाते हैं, बिल्कुल, जहाँ पुलिस सिटी नहीं बची उस भागने लगता।
4: बढ़िया, आप डरते नहीं है, पुलिस आ रही है।
6: किधर?
4: चाचा हम खेल गए अब की।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: राहुल गांधी को अमित शाह का जवाब, कहा एसआईआर के बहाने घुसपैठियों को बचा रहे हैं राहुल, 2029 में भी करारी हार के लिए रहे तैयार, देश की जनता को मोदी पर भरोसा। इंडिया गठबंधन की चाय पर चर्चा के बाद बोले राहुल, शाह ज्ञानेश कुमार को नहीं छोड़ेंगे, लोकतंत्र को बचाना मकसद, खड़गे तेजस्वी संजय राउत ने सीसी पर तीखा वार किया। सीसी पर राहुल गांधी के आरोप को पीयूष गोयल ने बताया बेबुनियाद, कहा कांग्रेस चुनाव आयुक्तों को बनाती थी राज्यपाल और मंत्री, नेता विपक्ष से पूछे 10 सवाल। दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, यौन उत्पीड़न में जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर और कांग्रेस सांसद के खिलाफ हल्ला बोल, राष्ट्रपति से भी गुहार। एल मुरुगन ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, केंद्रीय मंत्रिमंडल छोड़ने की मांगी अनुमति, कहा तमिलनाडु में काम करूंगा।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 8 बज रहे हैं, वक्त है बड़ी खबरों से आपको खबरदार करने का। एफआईआर को लेकर कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, दोनों का रुख अलग अलग है, लेकिन सुर आक्रामक। विपक्ष के मार्च और प्रदर्शन के बाद सरकार की तरफ से गृहमंत्री अमित शाह ने आज मोर्चा संभाला। अमित शाह ने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए जो कुछ भी कहा, उसमें सबसे बड़ी बात यही थी कि वो चाहे जो कर लें 2029 में भी आएगा तो मोदी ही। इधर राहुल गांधी भी जंतर मंतर को लेकर नए रण की तैयारी कर रहे हैं। आखिर में एक चुनावी वादे की बात करेंगे जिसका इंतजार पिछले 4 साल से आंगनबाड़ी वर्कर्स कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात अमित शाह की, जिन्होंने राहुल गांधी का नाम लेते हुए कई बड़ी बातें आज कही हैं। इंडिया गठबंधन के मार्च को लेकर भी पहली बार उन्होंने बयान दिया है। अमित शाह ने इंडिया गठबंधन के मार्च को लेकर कहा कि 14 पार्टियों के 8,000 कार्यकर्ता इकट्ठा करके आप जनता की आवाज नहीं बन सकते। एसआईआर के विरोध को अमित शाह ने राहुल गांधी की घुसपैठिया बचाओ योजना बताया। गृहमंत्री ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि जब से वो नेता विपक्ष बने हैं, कांग्रेस की बुरी गत होती जा रही है। अमित शाह ने पूछा कि गुजरात में कांग्रेस 41 साल से क्यों हार रही है। कांग्रेस जो देश के सभी बड़े राज्यों की सत्ता से दशकों से बाहर है, इसकी वजह भी क्या एसआईआर है, यह अमित शाह ने पूछा। उन्होंने राहुल को कहा है कि 2029 में भी बीजेपी प्रचंड जीत दर्ज करेगी, हार के लिए तैयार वो हो जाए। अमित शाह ने त्रिपुरा में बैलेट के चुनाव को विपक्ष के एक और झूठ का पर्दाफाश बताया।
1: एसआईआर तो 24 के बाद चालू हुआ। आप जब से कांग्रेस के मुख्य नेता के रूप में आए हैं और बाद में अध्यक्ष के रूप में आए हैं, लीडर ऑपोजिशन के रूप में आए, कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव हारे। आपको आत्मचिंतन करने की जरूरत है। फैब्रिकेटेड मीडिया इवेंट, झूठ की गूंज कर आप देश की जनता का विश्वास हासिल नहीं कर सकते। पूरी 14 पार्टी का कैडर इकट्ठा कर 1.5 किलोमीटर के क्षेत्र में 8,000 की भीड़ इकट्ठी कर आप देश की आवाज नहीं बन सकते हो। मेरा कांग्रेस पार्टी से निवेदन है कि देश की आवाज खेत खलियानों में, गांवों में, दूर सुदूर पहाड़ियों पर, जंगलों में और नदियों के किनारे भी है। आपकी वहां कोई रीच नहीं है। देश के कई सूबे ऐसे हैं, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, आपको कई दशकों तक कांग्रेस पार्टी को वहां की जनता ने नकारा है, हराया है। आज भी कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार की नकारात्मक पॉलिटिक्स कर रही है, वो उनको फायदा नहीं करेगी। उनको जनता को समझना चाहिए, जनता का संपर्क करना चाहिए। मैं राहुल गांधी जी को बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी, एसआईआर के बहाने घुसपैठिया बचाने का आपकी जो कार्य योजना है, उसको देश की जनता भली भांति समझ चुकी है और अब भारत की जनता आपके झांसे में आने वाली नहीं है। श्री राहुल जी और उनके साथियों को मैं ये भी बताना चाहता हूं कि 29 में प्रचंड हार के लिए फिर से एक बार मन बना लीजिए। 2029 के आम चुनाव में एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर आने वाला है और कांग्रेस की फिर से एक बार लगातार चौथी बार हार होने वाली है। इस देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है, बीजेपी के साथ है।
0: अमित शाह की बातों से एक बात साफ है कि सरकार विपक्ष की एसआईआर पर मोर्चेबंदी को लेकर आक्रामक है। बीजेपी पूछ रही है कि गुजरात से जो कांग्रेस 41 साल से गायब है, उसकी वजह भी क्या एसआईआर है। सीधे राहुल गांधी का नाम लेकर अमित शाह ने जिस तरह से बात कही है, उससे वो जनता को बताने में लगे हैं कि कांग्रेस अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए एसआईआर का बहाना बना रही है।
1: और मैं ये बात स्पष्ट करना चाहता हूं और विशेषकर राहुल जी को पहुंचाना चाहता हूं कि 41 साल के बाद आज भी एक भी चुनाव कांग्रेस नहीं जीत पाई है। अंतिम चुनाव वो 41 साल के पहले 1985 में जीते थे, उसके बाद लगातार गुजरात में उनकी हार हो रही है। मैं राहुल जी को ये भी पूछना चाहता हूं कि क्या ये एसआईआर का परिणाम है? भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता, मोदी जी की लोकप्रियता को आप एसआईआर का परिणाम कहकर झुटलाते हो? आपको आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। एक बहुत बड़े सूबे में जहां आपका हमेशा शासन रहता था वहां 41 साल से एक भी चुनाव आप नहीं जीत पाए। ये इनके लिए आत्मनिरीक्षण का बहुत बड़ा विषय है। अभी अभी देश भर में तीन राज्यों में उपचुनाव हुआ, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पांडिचेरी। मैं आज देश की जनता को ये भी बताना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पांडिचेरी के चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट प्राप्त नहीं हुई है।
0: अमित शाह से पहले इंडिया गठबंधन की बैठक शाम को हुई। मीटिंग से निकलकर राहुल गांधी ने एक बार फिर कहा कि वो ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा लेकर ही रहेंगे। राहुल गांधी ने जंतर मंतर के डी नोटिफिकेशन को लेकर भी कहा कि सरकार के इस फैसले को वो स्वीकार नहीं करेंगे। अब सवाल यह है कि क्या प्रदर्शन की जगह को लेकर जंतर मंतर के आधार पर अब सरकार और विपक्ष में अगली सियासी लड़ाई होने वाली है।
2: ये जो हमारी टीम है ये रुकने वाली नहीं है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तीन महीने बाद नहीं तो छह महीने बाद नहीं तो एक साल नहीं तो दो साल, ये रुकने वाली नहीं, ये एंड गोल तक जाएगी।
3: राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष चुनाव आयोग के मामले में रुकने वाला नहीं। सुप्रीम कोर्ट तक मार्च के बाद इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने चाय पर मुलाकात की, जिसके बाद राहुल ने बताया कि आगे कई और सरप्राइज बाकी है।
2: कैसे जाएंगे वो हम आपको बता नहीं सकते, क्योंकि फिर आप को सारा मतलब सरप्राइज खत्म हो जाएगा, और हम चाहते हैं कि आपके लिए और देश के लिए ये माहौल बना रहे, इंटरेस्टिंग रहे और सरप्राइजिंग।
3: लेकिन राहुल गांधी ने जो सबसे बड़ी बात जंतर मंतर को लेकर कही, कहा कि इंडिया गठबंधन उस पर ताला लगाने की योजना को हरगिज लागू नहीं होने देगा।
2: द वन मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी वॉज जंतर मंतर, एंड नाउ द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड दैट जंतर मंतर कैन नो लॉन्गर बी यूज टू एक्सप्रेस डेमोक्रेटिक फीलिंग्स। वेल, वी आर गोइंग टू चैलेंज दैट आइडिया। इट इज नॉट गोइंग टू बी सो सिंपल फॉर द गवर्नमेंट टू डिसाइड दैट द इंडियन पीपल विल नॉट फाइट फॉर देयर वॉइस।
3: तो सवाल ये है कि जिस जंतर मंतर को दिल्ली पुलिस ने बंद कर रखा है, जिस जंतर मंतर पर इस वक्त सन्नाटा है, बैरिकेड्स लगे हैं, क्या अब वो सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध की वजह बनेगा?
2: वी आर ऑल स्टैंडिंग हियर टुगेदर एज वन। एज आई सेड यस्टरडे, देयर आर नो पैरेलल प्रोटेस्ट, देयर इज वन सिंगुलर प्रोटेस्ट, एंड द प्रोटेस्ट has one mission, restoration of democracy in India.
3: राहुल गांधी ने दूसरी बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट को लेकर यह कही कि वो उसका सम्मान करते हैं और वो उम्मीद करते हैं कि देश की सर्वोच्च अदालत अपना रोल निभाएगी।
2: We have extreme respect for the Supreme Court, for the Chief Justice of India, for the judicial system of India. They have a role to play. We hope they will play that role. But we are also political people. And no matter what happens, no matter which institution plays a role or does not play a role, political resistance will continue, people's resistance will continue, and it will triumph.
3: तो राहुल भले ही मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे को मिशन बता रहे हों, लेकिन इस पूरे आंदोलन का मकसद लोकतंत्र को उनके हिसाब से बर्बाद होने से बचाना है, जिसमें सारा विपक्ष उनके साथ है।
4: जो प्रोग्राम्स इंडिया गठबंधन की ओर से चलाया गया, राहुल जी और दूसरे नेता भी इसको बहुत ही गंभीरता से लेके जनता के समस्याओं को सुलझाने के लिए वो काम किए।
5: हम सब लोग एकजुट हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए, और इसके लिए जो कुर्बानी देना होगा हम सब लोग जो है मिलकर के देंगे।
6: राहुल जी के लीडरशिप में वो जारी रहेगा, दिल्ली में रहेगा, स्टेट में रहेगा, हर शहर में रहेगा, और हम पूरे लोग यहाँ जो है एक साथ है और एक साथ रहेंगे।
3: विपक्ष की इस बैठक में आईसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा भी शामिल थी। वो सुप्रीम कोर्ट तक इंडिया ब्लॉक के मार्च में भी राहुल और प्रियंका गांधी के साथ दिखी। नेहा बोरा इकलौती नेता थी जो प्रियंका गांधी के हाथ में हाथ डाले राहुल गांधी के साथ दिल्ली की सड़कों पर मार्च कर रही थी, जबकि वो वामपंथी छात्र संगठन की नेता है। इसलिए सवाल भी उठे कि नेहा बोरा की जगह कांग्रेस के छात्र और युवा मोर्चे का कोई नेता नेहा बोरा की जगह क्यों नहीं ले पाया।
7: इफ द बीजेपी थिंक्स दैट इट कैन अटैक द फाउंडेशन ऑफ व्हाट इट मींस टू बी अ डेमोक्रेसी एंड देन व्हेन द पीपल कम डाउन ऑन कम ऑन टू द स्ट्रीट्स टू प्रोटेस्ट एंड डिमांड देयर वोटिंग राइट्स एंड देन आवर राइट टू प्रोटेस्ट कैन ऑल्सो बी टेकन अवे फ्रॉम अस एंड वी विल बी क्वाइट देन द बीजेपी हैज समथिंग एल्स ऑन इट्स हेड।
3: तो जो कांग्रेस अभिजीत आशुतोष से दूरी बनाते दिख रही हो, उसके नेता का नेहा बोरा को इतनी तवज्जो देना सुर्खियां बनता है। लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि ज्ञानेश कुमार और एसआईआर के विरोध में आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए राहुल हर किसी का समर्थन लेने को तैयार है।
8: कांग्रेस के मार्च में नेहा बोरा जब राहुल और प्रियंका वाड्रा के साथ चल रही थी, उसी दौरान कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी मार्च में दिखे, जिसके आधार पर दावा हुआ कि राहुल गांधी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री को जबरन पीछे खींचा। बीजेपी इसे कर्नाटक के नेता मुख्यमंत्री का अपमान बता रही है। इस पूरे मामले पर डीके शिवकुमार ने आज पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है, कहा कि राहुल ने उनके साथ ऐसा कुछ नहीं किया। डीके शिवकुमार को धक्के वाले विजुअल हमने आपको दिखाए हैं आज तक से बातचीत में। इसके बाद डीके शिवकुमार ने बताया कि तस्वीरें देखकर भले ही ऐसा लग रहा है, लेकिन दरअसल राहुल गांधी उनसे ट्रक में जाने को कह रहे थे।
9: No one has pushed me. I just left this page. People were very strong. I fell down. So Rahul Gandhi was advising me, DK, be slow. Nothing. Why you will push me? No. He asked me to go to the vehicle, to stand in the vehicle.
10: Karnataka BJP is saying
9: insulting. No. They care. Karnataka BJP loves me, no? They love me a lot. That is why.
8: डीके शिवकुमार अपमान से मना कर रहे हैं, लेकिन असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने एक्स पर अपनी पोस्ट में इसे अपमान बताया। हेमंता भी कभी कांग्रेस में थे और राहुल के कथित अपमान करने को उन्हें पार्टी छोड़ने की वजह बताई। इसीलिए जब ये वीडियो सामने आया तो हेमंता ने अपने साथ हुए वाक्य का जिक्र करते हुए लिखा कि साल 2015 में एक असमिया होने के नाते मैंने अपमान सहने से इनकार कर दिया था। भगवान मुझ पर मेहरबान थे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, वो एक संवैधानिक पद पर है और एक ऐसे राज्य का चेहरा है जिसका इतिहास शानदार है, संस्कृति समृद्ध है और जिसे अपने राज्य पर गहरा गर्व है। क्या वो इस सार्वजनिक अपमान के आगे झुक जाएंगे? नया रूप अहंकार को छिपा नहीं सकता। आप चाहे जितने भी मुखौटे बदल लें, उसके पीछे का चेहरा वही रहता है। ये हेमंता बिस्व शर्मा की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया है।

0: सकते हैं।
1: भारतीय जनता पार्टी ने आज राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई अर्जी पर भी घेरा। सुप्रीम कोर्ट तक मार्च के बाद विपक्षी नेताओं ने जो अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लगाई उसमें 14 खामियां निकलने के बाद बीजेपी सीधे राहुल पर हमला बोलते हुए कहती है कि जो नेता एक अर्जी ढंग से नहीं लगा सकते वो देश क्या चलाएंगे।
2: जो व्यक्ति एनआरकी में बिलीव करे, झूठ और फरेब पे अपनी पूरी राजनीति करे, और जो पार्टी के नेता एक कोर्ट का एफिडेविट, कोर्ट का पेटिशन ठीक से नहीं फाइल कर पाते हैं, एक आईडी का जेरोक्स ठीक से भर नहीं सकते कोर्ट में, मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी का आईडी भी पढ़ा नहीं जा रहा है, 220 रुपए भी ठीक से कोर्ट फी नहीं पे की, ऑथराइजेशन भी मिसिंग है एफिडेविट में, मुझे लगता है ऐसी पार्टी और ऐसा नेता क्या देश को भविष्य देगा।
3: राहुल गांधी पर बीजेपी को हमले का ये मौका सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के खिलाफ विपक्ष की याचिका में मिली खामियों से मिला है। बीजेपी पूछ रही है कि जो नेता एक याचिका तक ठीक ढंग से नहीं भर सकता वो देश का क्या ही भला करेगा।
2: क्या देश के 140 करोड़ लोगों के आशा अपेक्षाओं को पूरा करेगा, क्या नेतृत्व विश्व के सामने देश का रखेगा, ये उन्होंने पूरी तरीके से अपने आप को बेनकाब करके चंद दिनों के अपने व्यवहार से पूरी तरीके से साबित कर दिया।
3: अब सवाल यह है कि सीईसी के खिलाफ जिस याचिका में 10 विपक्षी पार्टियों के 11 नेता याचिकाकर्ता बने उसमें एक दो नहीं बल्कि 14 खामियां कैसे रह गईं? सवाल यह है कि क्या कानूनी रूप से ये बड़ी चूक है या फिर मामला सिर्फ राजनीतिक नैरेटिव से जुड़ा है।
2: कानूनी वकीलों को इन्होंने पार्लियामेंट में राज्यसभा की सीटें दे रखी है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन फाइल करते हैं उसमें 14 कमजोरियां हैं, 14 डिफेक्ट्स कोर्ट ने सामने लाया है। यहां तक कि कोर्ट फी भी ठीक से नहीं भर सकते हैं, उसमें भी पैसे कम भरे हैं। मैं समझता हूं कांग्रेस अपनी नाकामियों के लिए खुद जिम्मेदार है, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का भविष्य अंधेरे में है, जनता भी देख चुकी है, कांग्रेस के नेता भी देख चुके हैं।
3: सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव समेत 11 विपक्षी नेताओं की तरफ से दायर याचिका में करीब 14 खामियां बताई हैं, जिनमें लिस्टिंग फॉर्म में प्रतिवादी का नाम और उनसे जुड़ी जानकारी का गलत होना, 9 याचिकाकर्ताओं के वकालतनामे नहीं मिलना, मल्लिकार्जुन खड़गे के पहचान पत्र की स्पष्ट कॉपी का न होना और कोर्ट फीस में 220 रुपए कम होना जैसी गलतियां शामिल हैं। जैसे ही ये खबर आई सवाल उठने शुरू हो गए कि जिस पार्टी के पास अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील हों वकालतनामे नहीं देने जैसी बुनियादी गलती कैसे हो गई।
4: राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सुप्रिया सुले, अखिलेश यादव और भी बहुत सारे नेता जो इंडिया ब्लॉक के नेता हैं, जो पक्षकार बने हैं इस याचिका में, 11 नेताओं के नाम बतौर पक्षकार याचिका में हैं, लेकिन 11 में से 9 लोगों का वकालतनामा, यानी कि जो कागज होता है कि हम वकील को ऑथराइज कर रहे हैं याचिका डालने के लिए, वो वकालतनामा ही याचिका के साथ दाखिल नहीं किया गया।
3: विपक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट तक पहली बार मार्च किया गया। राहुल गांधी के साथ इस मार्च में अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव समेत पूरी कांग्रेस पार्टी के नेता भी साथ दिखे। सुप्रीम कोर्ट में भी खड़गे और राहुल के साथ अखिलेश यादव दिखाई दिए, फिर भी जो याचिका दाखिल की गई उसमें 14 कमियां निकल आई। सबसे बड़ी कमी तो वकालतनामे नहीं देने जैसी है जिसे बीजेपी अब तूल दे रही है।
5: 14 खामियां पाई गई हैं, जब तक ये डिफेक्ट करेक्ट नहीं होगा तब तक याचिकाएं सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं की जा सकती हैं। रजिस्ट्री का कहना है कि वो इंतजार कर रहा है कि जब डिफेक्ट क्लियर किए जाएं, यानी डिफेक्ट करेक्ट किए जाएं, तो कानून में ऐसा है कि जब तक डिफेक्ट पूरी तरह से, जैसे ही याचिका दायर होती है तो एक डायरी नंबर मिलता है, और जैसे ही डिफेक्ट करेक्ट कर दिए जाते हैं उसके बाद केस नंबर मिल जाता है, और केस नंबर मिलने के साथ ही फिर सुनवाई के लिए याचिकाएं सूचीबद्ध की जाती हैं।
3: तो जिस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष लगातार सड़कों पर है, राष्ट्रपति से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा चुका है, उसके हिसाब से इतने गंभीर मामले में भी विपक्ष की तरफ से दायर की गई याचिका में खामियां निकलने से सुनवाई शुरू होने में देरी होगी। लेकिन सवाल यह है कि इसे विपक्ष के होमवर्क में कमी से जोड़ा जा सकता है। क्या याचिकाओं में खामियां निकलना आम बात है? कांग्रेस तो कम से कम यही मानती है।
0: हर पिटीशन में हर प्रकार के डिफेक्ट्स का एक चेक होता है, कॉमा फुल स्टॉप, कागज फीका, फोटोकॉपी फीका, वो जानते हैं ये सब, लेकिन अपनी इग्नोरेंस दिखा रहे हैं। इस प्रकार के बेहुदा ऑब्जेक्शंस देखे, उन्होंने एक भी आपको कुछ बताया एक सब्सटेंस का कोई भी विरोध, ये बोला कि उसमें जो लिखा है वो गलत है,
2: या तो बेवकूफी है, नासमझ है, और अगर बेवकूफ नासमझ है तो वास्तव में देश के लिए बड़ा खतरा है कि प्रमुख ऑपोजिशन पार्टी के लीडर है वो झूठ और फरेब के आधार पे थोड़ा बहुत अराजकता कर सकते हैं, लेकिन भारत को कोई ध्वस्त करने या भारत में तांडव के नाम पे लोगों को भ्रमित कर सके, मुझे नहीं लगता है इतनी कोई विश्वसनीयता राहुल गांधी के पास।
3: तो कांग्रेस कह रही है कि याचिका में खामियां नहीं, जिस मुद्दे के लिए याचिका दी है वो देखना चाहिए। वही बीजेपी से सीधे राहुल और कांग्रेस की नाकामी से जोड़कर हमले कर ये बता रही है कि एसआईआर के मामले पर दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे।
1: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और राजीव रंजन सिंह ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस और राहुल गांधी के चुनाव आयोग संबंधी आरोपों पर निशाना साधा। पीयूष गोयल ने दावा किया कि कांग्रेस का अपने पुराने फैसलों और चुनाव आयोग से जुड़े अधिकारियों की नियुक्ति का रिकॉर्ड उसके मौजूदा आरोपों से मेल नहीं खाता।
2: एसआईआर की वजह से कांग्रेस केरल में जीती, क्योंकि ये सब डुप्लीकेट नाम, मरे हुए लोगों के नाम, जो लोग वहां से शिफ्ट हो गए वो नाम निकल गए, तो कोई मैल प्रैक्टिस होने की संभावना नहीं थी केरल में। ये शशि थरूर जी का दावा है। रमेश चेन्नीथाला जी ने खुद कहा कि एसआईआर की वजह से ही आज कांग्रेस जीत पाई है केरल में, और केरल के मुख्यमंत्री स्वयं श्री वीडी सतीशन जी ने एसआईआर की तारीफ की है। अधीर रंजन चौधरी जी ने इलेक्शन कमीशन की तारीफ करी कि पश्चिम बंगाल के चुनाव उन्होंने अच्छी तरीके से लड़ाए, ईमानदार व्यवस्था से लड़े गए, और जो गलत काम ममता बैनर्जी जी करती थी उसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने भी किया और इलेक्शन कमीशन की तारीफ की। अब उनकी खुद की पार्टी बेबुनियाद और झूठे वोट चोरी के दावे ला रही है।
1: मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर दिल्ली से कोलकाता तक आज प्रदर्शन हुए। दिल्ली में सीजेपी नेताओं ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। वहीं पटना और कोलकाता में भी जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला।
3: मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में विपक्ष की तरफ से विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली में सबसे पहले कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं का वीडियो देखिए। 10 अक्टूबर को जंतर मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर सीजेपी नेता दिल्ली एयरपोर्ट से ही हिरासत में ले लिए गए। दिल्ली पुलिस की तैयारी ने जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन से उन्हें रोक दिया, लेकिन 3 दिन बाद सीजेपी नेता सौरभ दास, आशुतोष रंका और अजिंक्य शिंदे अपने समर्थकों के साथ पुलिस का घेरा तोड़ते हुए जंतर मंतर पर नारेबाजी करने पहुंच गए। ये वीडियो देखिए जिसमें सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत सीजेपी नेताओं को मौके पर पकड़ लिया। सीजेपी नेताओं के हिरासत में लिए जाने के बाद पार्टी की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया।
6: सब लोग हैं यहाँ पे।
7: वोटेज जंतर मंतर हैज बीन ब्रीच। इस्तीफा ज्ञानेश कुमार का जंतर मंतर पर ही होगा, जो उखाड़ने उखाड़ लो।
6: देखिए होम मिनिस्ट्री कौन होते है? हमारा जंतर मंतर ले जाने वाली जंतर मंतर डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट है एंड वी विल गेट द रेजिग्नेशन ऑफ ज्ञानेश कुमार फ्रॉम जंतर मंतर। जंतर मंतर।
8: जंतर मंतर पर प्रदर्शन से दिल्ली पुलिस ने रोक दिया है। अब जंतर मंतर निर्धारित प्रदर्शन स्थल की लिस्ट से हटा दिया गया है, मतलब जंतर मंतर अब प्रोटेस्ट साइट नहीं है। इसी के विरोध में सीजेपी के नेता सुरक्षा चक्रव्यूह को तोड़कर जंतर मंतर पहुंचे थे।
9: इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर के पीछे जो सर्विस रोड है जिसे जनपथ लेन कहते हैं उस जगह पर। यही वो रोड है जहां से सुबह सौरव दास आशुतोष राका अपने सहयोगियों के साथ एंटर किए थे। ये देखिए ये गेट है, ये गेट आमतौर पे खुला रहता है क्योंकि अंदर लोगों के घर है। ये देखिए यहाँ पर RWA जो अंदर जो लोग रहते हैं उन्होंने जो RWA बना रखी है उसका बोर्ड भी लगा है, तो यहाँ अंदर घर है, जनता दल यूनाइटेड का ऑफिस भी है, तो आमतौर पर ये गेट खुला रहता है और लोग यहाँ से आते जाते रहते हैं। लेकिन ये आम रास्ता नहीं है और आगे फिर गेट से ये कवर भी है, तो सुबह के वक्त यहीं से आशुतोष राका सौरव दास और उनके सपोर्टर्स एंट्री करते हैं। इस गेट से एंट्री करके वो आगे की तरफ जाते हैं और जंतर मंतर को जोड़ने वाला जो मेन गेट है उसको कवर करते उसको वो टाप जाते हैं, जैसा उन्होंने खुद वीडियो भी बनाया है। और यहां से जाते हुए आगे जाकर के गेट को फांदते हुए वो सारा वीडियो बनाया है और वहां पर पुलिस मौजूद रहती है, सिक्योरिटी कर्मी मौजूद रहते हैं और सभी को डिटेन कर लिया जाता है।
8: सुरक्षा एजेंसियों की रणनीति यही है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन पर रोक है, यानी सरकारी ताला लग चुका है, लिहाजा प्रदर्शनकारियों को जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। सीजेपी के संस्थापक ने अपने सहयोगियों के खिलाफ हुए एक्शन को लेकर सवाल उठाए हैं।
10: हमारी टीम आशुतोष रामका, सौरव दास और अजिंक्य जिसको लीड कर रहे थे आज वो सुबह जंतर मंतर पर गए और वहां जाकर उन्होंने तिरंगा लहराया। तिरंगा लहराना कब से वायलेशन हो गया? जो भी ये सोचता है तिरंगा लहराना जंतर मंतर पर वॉयलेशन है वो देशद्रोही है। और अगर सौरव दास, आशुतोष रामका, अजिंक्य शिंदे और इनके साथ जिन लोगों को गिरफ्तार कर किया गया है तिरंगा लहराने के लिए, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि कैसे आप किसी को तिरंगा लहराने के लिए अरेस्ट कर सकते हो? ये कौन सा देश है, ये कौन सा रूल है? हमारे देश में, भारत देश में तिरंगा लहराना कब से वॉयलेशन ऑफ लॉ हो गया? ये तानाशाह मानसिकता का सबसे बड़ा उदाहरण है। तानाशाह को नहीं चाहिए कि कोई जंतर मंतर पर जाकर तिरंगा लहराए, उन्हें लगता है कि पूरा देश उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है।
8: जंतर मंतर को लेकर दीपके ने सरकार को सीधा अल्टीमेटम दे दिया है। अल्टीमेटम यही है कि एक जंतर मंतर पर रोक लगेगी तो पूरी दिल्ली और देश को जंतर मंतर बना देंगे,
10: देश जंतर मंतर बनेगा। जंतर मंतर सिर्फ एक लोकेशन नहीं है, जंतर मंतर एक स्पिरिट है रेजिस्टेंस का और वो स्पिरिट हर किसी के अंदर जिंदा रहेगा।
8: दिल्ली जैसे विरोध की तस्वीरें पटना में भी दिखी, जहां लेफ्ट के छात्र संगठन ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रदर्शन किया।
11: सीसी ज्ञानेश कुमार और SIR के सवाल को लेकर जो हंगामा अब तक आपने दिल्ली में देखा, लगभग उसी तरह की तस्वीर अब पटना में देखने को मिल रही है। क्योंकि पटना में जो लेफ्ट के छात्र संगठन है ISA और साथ ही साथ RYA, इन दो संगठनों ने आज राजभवन मार्च का ऐलान किया और देखिए गांधी मैदान से मार्च की शुरुआत हुई और अब जो कई छात्र हैं वो पहुंच गए हैं डाक बंगला चौराहे पर। यहां पर पुलिस ने जो बैरिकेड्स लगाए थे इस वक्त उस पर जो लेफ्ट के छात्र संगठन के कार्यकर्ता हैं वो नजर आ रहे हैं।
8: इस हंगामे के दौरान उस समय अजीब स्थिति बन गई जब प्रदर्शनकारियों को जिस वज्र वाहन में बिठाया गया था उसकी चाबी लेकर कुछ छात्र फरार हो गए।
12: पटना में आज SIR को लेकर लेफ्ट छात्र संगठनों का आज प्रदर्शन था, बखूब बवाल हुआ। लेकिन एक फिर से बिहार में एक अनोखी तस्वीर, अनोखी घटना सामने आई है। ये वज्र वाहन है जहां पर छात्रों को डिटेन करके इसमें रखा गया था और बड़ी बात यह है कि इस वज्र वाहन की गाड़ी की चाबी लेकर के जो छात्र हैं वो भाग गए हैं। ये तस्वीर देखिए और इस वजह से इस गाड़ी को जो है यहीं पर लगाया गया है। ये तस्वीर देखिए, ये वज्र वाहन है और यहाँ पे जो गाड़ी की चाबी थी उसको लेकर के छात्र फरार हो गए हैं। ये बड़ी खबर बिहार से मैं आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर आज प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन में छात्रों को वज्र वाहन में जो है आज डिटेन किया गया था और इस डिटेन करने के बाद वज्र वाहन से पुलिस इन्हें लेकर के जाने वाली थी। इसी बीच इसका दरवाजा खुला था या शायद संभवतः खिड़की खुली थी और इसकी चाबी जो है वो चोरी हो गई है।
8: दिल्ली पटना की तरह कोलकाता में चुनाव आयुक्त के खिलाफ टीएमसी का आक्रोश फूटा। टीएमसी के नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगा।
13: चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के रेजिग्नेशन की मांग को लेकर आज कोलकाता के सड़कों पर आए हैं ममता फैक्शन की तृणमूल कांग्रेस। यहां राजा बाजार इलाके में आज ये लोग काफी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में यहां पर इकट्ठा हुए हैं और राजा बाजार ट्राम डिपो जहां हम इस समय खड़े हैं, यहां से इस रैली का रूट पार्क सर्कस तक जाना था, लेकिन कोलकाता पुलिस की ओर से ये साफ कर दिया गया। कोलकाता पुलिस कमिश्नर ने भी आज साफ किया कि इस तरीके के रैली का कोई भी सूचना कोलकाता पुलिस को नहीं दी गई थी।
1: जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश सीजेपी की नाकाम हुई तो राहुल गांधी ने संकेत दिया कि वो सरकार के इस फैसले का विरोध करेंगे। बड़ी बात यह है कि सरकार ने जो तीन जगहें प्रदर्शन के लिए तय की हैं उसमें रामलीला मैदान ही है जो संसद के सबसे करीब है, लेकिन वहां भी प्रदर्शन करना फिलहाल आसान नहीं लगता।
8: बुरारी ग्राउंड, शाहदरा का सीबीडी ग्राउंड और रामलीला मैदान, दिल्ली पुलिस ने धरना प्रदर्शन की जो तीन जगह बताई हैं, उसमें यही सबसे पास है। लेकिन क्या प्रदर्शन के लिए ये खाली होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि दशहरे तक रामलीला मैदान प्रदर्शन के लिए नहीं मिल सकता। इसकी वजह इस वक्त होने वाली रामलीला का मंचन है। मैदान में मेला भी लगा हुआ है, मतलब रामलीला मैदान विजयादशमी तक, रावण दहन से पहले तक बुक है।
14: ये ऐतिहासिक जंतर मंतर पर अब धरना मना है क्योंकि केंद्र सरकार ने उसे धरना स्थल पर जो जगह दी गई हुई थी, जो उसकी मान्यता थी, उसे रद्द कर दिया है। लेकिन अब ये कह दिया है कि दिल्ली के तीन जगहों पर धरना हो सकेगा, धरना प्रदर्शन सभाएं हो सकेंगी, उनमें से एक है दिल्ली का ये ऐतिहासिक रामलीला मैदान। ये रामलीला मैदान अगर इसकी जगह को समझें तो अब इसको लेकर के दरअसल विरोध कर रहे हैं व्यापारी कि जंतर मंतर से आपने धरना प्रदर्शन हटा दिया जिससे कारोबार सही होगा, उसका तो स्वागत है, लेकिन रामलीला मैदान को धरना स्थल एक तीन जगह जो दी गई है जिसमें पूर्वी दिल्ली बुराड़ी का मैदान और ये दिल्ली का रामलीला मैदान, इसको लेकर के व्यापारी नाराज है। वो किस लिए समझिए, ये पूरा रामलीला मैदान है, इस समय यहां पर रामलीला चल रही है, मेले लगे हुए हैं क्योंकि नवरात्रि दशहरा में मेला लगता है। इसी के साथ साथ अब इसके बगल में क्या है, यहां पर ये नगर निगम का सिविक सेंटर है, आप समझिए यहां से नगर निगम संचालित होता है। बीच में महानगर का जो MTNL है आप देख रहे हैं उसकी बिल्डिंग है। इसी के ठीक बगल में यहां पर अगर आप देखेंगे इस तरफ अस्पताल हैं, आंखों का अस्पताल है, बड़े सारे कई अस्पताल हैं। अब अगर 360 डिग्री आपको ले जाता हूं तो यहां पर आपको दिखाई देगा वर्धमान प्लाजा, ट्रेडर टावर है और इसी के साथ साथ यहां पर जो ट्रेड सेंटर है वो बनाया गया है।
8: इस साल 2026 में 29, 30 और 31 दिसंबर को रामलीला मैदान खाली है, मतलब अगले ढाई महीने रामलीला मैदान पूरी तरह से बुक है। रामलीला मैदान पर प्रदर्शन करना भी महंगा होगा, यहां एक दिन की बुकिंग के लिए 1,21,000 रुपए खर्च करने होंगे और इसके अलावा 50,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट भी अलग से जमा करने होंगे। इसके अलावा रामलीला मैदान में प्रदर्शन के लिए MCD की अनुमति और दिल्ली पुलिस की NOC भी अनिवार्य होगी। और अगर ये सब कर भी लिया तो व्यापारी रामलीला मैदान को प्रदर्शन स्थल घोषित करने के विरोध में उतर आए हैं, क्योंकि इससे रामलीला मैदान के आसपास दिल्ली के जो बड़े कारोबारी मार्केट हैं वो प्रभावित होंगे।
14: ठीक इसके पीछे दरअसल ये दिल्ली 6 शुरू होता है। दिल्ली 6 सबसे पुराने बाजारों में से एक है। यहां से रास्ता जो है आप आगे पुरानी दिल्ली की ओर जाता है, चांदनी चौक की ओर जाता है, चावड़ी बाजार की ओर जाता है, तो ये पूरा इलाका बाजारों से घिरा हुआ है जहां पर रोज लाखों नहीं बल्कि करोड़ों का कारोबार होता है। व्यापारियों की चिंता ये है कि अगर इसे जो है आपने रामलीला मैदान को धरना स्थल घोषित कर दिया तो यहां सैकड़ों हजारों का जमावड़ा होगा, बड़े बड़े आंदोलन होंगे, जैसा कि पिछले समय में देखा गया है कि 10 दिन 12 दिन बाबा रामदेव का आंदोलन चला, अन्ना आंदोलन चला जो कि सप्ताहों तक चलता रहता है। तो ऐसे में भीड़ जब यहां बढ़ेगी, यहां से लोग आगे मार्च करना चाहेंगे जाएंगे तो व्यापार खराब होगा, लोगों के चलते रास्ते बंद करने पड़ेंगे, डायवर्जन होंगे, तो कारोबार को सैकड़ों करोड़ की चपत लगेगी, जिसको लेकर के व्यापारियों ने नाराजगी जताई है। हम जिस रामलीला मैदान पर है इस समय नवरात्रि के चलते आप देखेंगे कि यहां रामलीला का मंचन हो रहा है, इस तरफ स्टेज लगा हुआ है और ठीक इसके पीछे यहां पर देखिए सैकड़ों लोगों के बैठने की व्यवस्था है और साथ ही मेला लगा हुआ है, कारोबार मेले का और लोगों के बचपन की यादें ताजा हो जाती है। इस रामलीला मैदान का अपना बहुत इतिहास रहा है, इस रामलीला मैदान ने बहुत सारे आंदोलन देखे हैं।
8: दिल्ली के इन्हीं व्यापारियों ने पहले सरकार को चिट्ठी लिखकर जंतर मंतर को प्रदर्शन लिस्ट से हटाने की मांग की थी और अब जब सरकार ने उनकी मांग मान ली और रामलीला मैदान को नया प्रदर्शन स्थल घोषित कर दिया तो अब व्यापारी नाराज हैं।
15: एक चीज को लेके हम व्यापारियों को आपत्ति है कि आपने रामलीला मैदान को प्रदर्शन स्थल की सूची में डाल दिया है। रामलीला मैदान के पास ही कमला मार्केट, दरियागंज और तमाम जो दिल्ली छह का एरिया है, चावड़ी बाजार, नया बाजार, पहाड़गंज, चांदनी चौक, सदर बाजार, कश्मीर गेट, लगभग 5 किलोमीटर के एरिया में तमाम जो दिल्ली छह है, जो बिजनेस हब है, दिल्ली का दिल है, वो रामलीला मैदान के आसपास ही आता है। तो अगर रामलीला मैदान में फिर से अगर धरने प्रदर्शन होंगे, बैरिकेटिंग लगेगी, मेट्रो स्टेशन बंद होंगे, तो दिल्ली छह का व्यापार ये प्रभावित होगा। चांदनी चौक, सदर बाजार, खारी बावली, नया बाजार, लाजपतरा मार्केट, भागीरथ प्लेस, कश्मीरी गेट, पहाड़गंज, अजमेरी गेट, दरियागंज, तो ये सारा प्रभावित होने से व्यापार फिर से प्रभावित होगा। तो हम मांग करते हैं फिर से गृह मंत्रालय से और दिल्ली पुलिस से कि आपने जो 3 स्थान चिन्हित किए हैं, इसमें से रामलीला मैदान को हटाया जाए, बुराड़ी मैदान रख लीजिए, सीबीडी ग्राउंड रख लीजिए और कोई बारी दिल्ली में एक जगह दे दीजिए।
16: मैं सरकार के इस फैसले से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता कि रामलीला ग्राउंड को चुना जाए प्रदर्शन के लिए, क्योंकि रामलीला ग्राउंड एक तो नई दिल्ली के बहुत पास है, दूसरा यहाँ पर सभी बड़ी बड़ी पार्टियों के दफ्तर हैं, तीसरा यहाँ पर ये सेंसिटिव एरिया है, आसपास जितना भी एरिया है यहाँ पर किसी तरह का कोई आंदोलन अगर उग्र रूप लेता है तो यहाँ पर अपना क्या कहते हैं दोनों समुदायों, कुछ समुदायों के बीच में जंग एकदम छिड़ सकती है। चौथा, यह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास है। पांचवा, यह होलसेल मार्केट है, जितनी भी दिल्ली की होलसेल मार्केट है जहां से पूरा व्यापार होता है, जिनके थ्रू पूरा जीएसटी की कलेक्शन होती है अधिकतर, वो सारी मार्केट इससे प्रभावित होंगी। अगर आजकल के माहौल में जैसा कि पिछले दिनों देखा गया है, जिसकी वजह से जंतर मंतर से ये हटाया गया है, उसको देखते हुए अगर भीड़ उग्र हो गई या भीड़ अधिक तादाद में आ गई किसी प्रदर्शन को लेकर के, तो यहाँ पर पूरा होल सेल व्यापार, जो थोक व्यापार है, वह खत्म हो जाएगा।
8: रामलीला मैदान में प्रदर्शन को लेकर इसी तरह की राय बाकी कारोबारियों की भी है, जिन्हें डर है कि प्रदर्शन से उनका व्यापार ठप हो जाएगा।
14: लीला मैदान से महज 300 मीटर आगे पूरे बाजारों का इलाका है, ट्रेड सेंटर है, कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस हैं, एस्टेब्लिशमेंट हैं, बैंक हैं, फिनांस हैं, सब कुछ यहां पर मौजूद है। और अब यहां बहुत सारे कारोबारी हैं जो दिहाड़ी मजदूर भी हैं, जिनकी रोज की कमाई है, उनकी चिंता इस बात की है कि अगर रोज रोज यहां पर धरने होने लगे, प्रदर्शन होने लगेंगे, तो हम कहां जाएंगे, इलाका व्यस्त हो जाएगा, प्रतिबंध लग जाएंगे, कभी रास्ते बंद होंगे, तो कामकाज पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा।
17: मैदान तो बहुत पास है,
14: कामकाज पर असर पड़ेगा,
17: बहुत ज्यादा असर पड़ेगा जी, बहुत ज्यादा।
14: आप लोगों को पता चल गया कि रामलीला
17: वो 3 ग्राउंड फिक्स करे, एक रामलीला, एक बुराड़ी का, एक और है जमुना पार्क का।
14: तो आप लोगों को भी चिंता हो रही है?
17: अब चिंता क्यों करेंगे, हमें तो रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना, कोई हमारी कोई नौकरी तो है नहीं है, तो सारी भीड़ यहीं आएगी बीजेपी वालों की।
8: आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक।
1: अब बात पंजाब की, जहां पर आंगनबाड़ी वर्कर सरकार को उनके किए वादे की याद दिला रहे हैं। आंगनबाड़ी वर्कर्स लगातार मुख्यमंत्री के शहर संगरूर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास से 1 किलोमीटर दूर रहने वाली आंगनबाड़ी वर्कर ने आज तक को बताया कि सरकार एक तरफ उनकी जिम्मेदारी बढ़ाती जा रही है, लेकिन उनसे किए वादे की सुध नहीं ले रही।
18: भगवंत मान के शहर संगरूर के उनके घर के बाहर आंगनबाड़ी वर्कर लगातार उन्हें उनकी पार्टी का किया वादा याद दिला रहे हैं।
19: असी इन्ने साल हो गए सरकार ना अपनी मंगा मनाउन वास्ते ही धरने मजारे कर दिया नू, पर आ पहली यार साडे ना इस तरह का मजाक, कोड़ा मजाक किया गया। क्या वेखो डंडे खोए असी, आ लुको लुको के निके निके डंडे पिछे कुड़िया नू कुटिया गया इन्हां डंडिया ना।
18: सीएम भगवंत मान को वादा याद दिलाने, अपने हालात से खबरदार करने के लिए संगरूर में ही आंगनवाड़ी वर्कर अपने बच्चों के साथ नेशनल हाईवे पर प्रदर्शन करते दिखी। हाईवे भी इन लोगों ने जैम किया, सीएम को एक बार फिर वादा याद दिलाया।
20: भगवंत मान ने सत्ता में आने से पहले अपना जो चुनाव मैनिफेस्टो था, जो चुनावी घोषणा पत्र था, उसमें गारंटी की थी कि आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर का मानदेय दुगुना किया जाएगा जब हम सत्ता में आएंगे, पर पंजाब की सरकार ने सत्ता में आने के बाद आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर के मानदेय में 1 रुपये का बढ़ोतरी भी नहीं किया है।
18: पंजाब के आंगनवाड़ी वर्करों का कहना है कि साल 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी की तरफ से उनकी हर मांग को पूरा करने का वादा किया गया था।
4: एक एक एक एक आंगनबाड़ी वर्कर और आशा वर्कर ये इंश्योर करे कि अपने अपने इलाके में अपने अपने क्षेत्र के अंदर हर घर का हर वोट आम आदमी पार्टी को डलवाना है। आप हर वोट डलवा दो, आपके सारे मसले हल करने की जिम्मेदारी मेरी।
18: भगवंत मान को उन्हीं की पार्टी का वादा याद दिलाने के लिए पंजाब की आंगनबाड़ी वर्कर कभी संगरूर में डीसी ऑफिस में जबरन घुस जाती हैं, तो कभी संगरूर में सीएम आवास के पास धरने पर बैठ जाती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं रहा।
20: अप्रैल 2022 का सुप्रीम कोर्ट का ग्रेच्युटी का ऑर्डर है, ट्रेड यूनियन एक्ट 1972 के तहत उनको वो मिलना चाहिए, उसको भी इम्प्लीमेंट नहीं किया है। वर्कर से सुपरवाइजर बनने के लिए लिस्टें बनी पड़ी हैं बड़े लंबे समय से, एक एक सुपरवाइजर के पास पांच पांच छह छह सर्कल का काम है, उनकी प्रमोशन की लिस्ट जारी नहीं कर रहे, वो रुकी पड़ी है। हेल्पर से वर्कर का प्रमोशन है वो रुका पड़ा है, और 51 साल के बाद भी आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर के अपने केंद्र की बिल्डिंग नहीं है, बिजली नहीं है, पीने का पानी नहीं है, बिजली के बिलों का प्रबंध नहीं है।
18: सोचिए पंजाब की जिन आंगनबाड़ी वर्करों के कंधे पर 6 साल के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पोषण से लेकर स्वास्थ्य टीकाकरण सर्वेक्षण रिकॉर्ड का रखरखाव किया जाता है, नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलवाया जाता है, वो आंगनबाड़ी वर्कर 6,000 रुपए महीने में किस तरह अपना घर चला रही हैं। उनके दर्द को सरकार के सामने लाने के लिए आज तक की टीम संगरूर में आंगनबाड़ी वर्करों के घर गई। हमारा सामना गुरमीत कौर से हुआ जो 2,500 रुपए महीने के किराए के घर में रहती हैं। बाकी बचे पैसों से ये अपना कैसे गुजारा करती होंगी सोचने लायक है।
21: जो आंगनबाड़ी वर्कर हैं पंजाब में, उनको एक महीने का 7,000 रुपए सरकार दे रही है। उनका कहना है कि जब ये सरकार सत्ता में आई थी तो उन्हें पंजाब सरकार से 5,000 रुपए महीना मिलता था, और उनके धरने में पहुंचे आज के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने उनसे वादा किया था कि उनकी सरकार आने पर उनकी जो आय है वो दुगनी की जाएगी। सानू
22: तो 6,000 देंदे ने जी, 6,000 जो भी सानू कदे घट पाउंदे ने कदे जमी नहीं पाउंदे, भी साडे हालात इन्ने माड़े हो रहे ने, मैं किराए ते रहनी आ।
18: दावा है कि पंजाब सरकार एक तरफ आंगनबाड़ी वर्करों की जिम्मेदारी बढ़ा रही है, लेकिन उनकी सैलरी से जुड़े वादों पर खामोश है। पंजाब के आंगनबाड़ी वर्करों की मांग है कि उनका मानदेय दुगना किया जाए, ग्रेच्युटी संबंधी सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू किया जाए, इंक्रीमेंट दुगना किया जाए, रिटायरमेंट के समय 5,00,000 रुपए एक्स ग्रेशिया राशि दी जाए, लंबित प्रमोशन प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए। विडंबना देखिए, संगरूर में गुरमीत कौर के घर से मुख्यमंत्री भगवंत मान के आवास की दूरी सिर्फ 1 किलोमीटर है, फिर भी उनकी पुकार मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच पा रही, जबकि कई बार मुख्यमंत्री के घर के बाहर गुरमीत कौर जैसी हजारों आंगनबाड़ी वर्कर प्रदर्शन करके थक चुकी है।
23: इस सरकार ने हमें सत्ता से आने से पहले बोला था कि आपका मानदेय दुगना कर देंगे, दुगना मतलब उस समय जो हमें पंजाब सरकार देती थी 5,000 देती थी, इन्होंने हमारा 10,000 करने का वादा किया था। 10,000 तो इन्होंने क्या करना था, ये तो जो अपना पूरा देती थी वो भी कम समय सिर्फ नहीं देती।
18: सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर भगवंत मान सरकार और उनके मंत्रियों से आंगनबाड़ी वर्कर कई बार मिल भी चुकी हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। हाँ, सरकार की तरफ से आशा वर्करों को बीमा की सुविधा जरूर दी गई है।
24: कल हमारी यूनियन के लीडर के साथ मीटिंग थी, तो हमने इन प्रिंसिपल हम इस पे सहमत हुए हैं कि उन सभी जितने भी आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं उनका 60,00,000 रुपए तक का इंश्योरेंस किया जाए, ताकि वो अपना उनके साथ कोई घटना होती है तो उनका परिवार जो है वो ठीक ढंग से रह पाए, तो उनका इलाज हो पाए, तो इसके लिए हमने 60,00,000 रुपए का इंश्योरेंस कराने को प्रवानगी दी है।
18: तो खबरदार करता सवाल सीधा है, क्या पंजाब सरकार आंगनबाड़ी वर्करों की मांग पर कोई ठोस फैसला लेगी, या फिर अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रही इन महिलाओं को आगे भी सड़कों पर उतरना पड़ेगा। फिलहाल आंगनबाड़ी वर्करों को सरकार के फैसले का इंतजार है। कुलवीर सिंह, संगरूर, आज तक।
1: थोड़ी देर के लिए एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप रहिए खबरदार।

0: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
2: Maddie, I need to open a savings account.
3: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो।
2: स्मॉल बैंक?
3: स्मॉल privilege savings account, garima savings account, maxima business, edge current account, business maxima business privilege, rdf, there's nothing small about them.
2: Okay.
3: Oh, jeevan, nothing small about us.
4: Biscuit. Pesh hai anmol butter baked biscuits, itna buttery ki dil pighal jaye.
5: खेती में पावर के साथ साथ काम में बारीकी भी जरूरी है, इसीलिए स्वराज प्रोटेक्ट, इसका पावर सेंस हाइड्रोलिक लिफ्ट जो भारी इंप्लीमेंट्स के साथ भी बुआई करे एकदम बारीकी से, भरोसा और टेक, मेरा स्वराज प्रोटेक्ट।
6: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार। सर एक बार दो थमका लगाने पर
7: मेरे पास एक आइडिया।
6: क्या?
7: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
8: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता,
9: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
10: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
8: कौन सी बनानी है?
11: हमारे नेबर मिस्टर कुमार बात बात पे कार मांगते रहते हैं।
10: वो इन लॉस को लाना है, कार मिल जाएगी।
12: अरे यार कुमार, अब तो अपनी कार ले लो यार।
13: कैनरा व्हीकल लोन से
10: अप टू 90% फाइनेंसिंग,
12: क्विक प्रोसेसिंग एंड नो प्री क्लोजर पेनल्टी।
14: कैनरा व्हीकल लोन, अपनी वाली गाड़ी के लिए।
15: आगे आगे,
10: अरे उधर
15: उधर, करेक्ट करेक्ट,
0: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: बच्चों के लिए अलग टीवी रूम बना सकते हैं।
1: कैसा लगा आप दोनों को अपना ड्रीम होम?
2: आई लव इट, एब्सोल्युटली अमेजिंग। तुम एक काम करो, तुम मिठाई ऑर्डर कर लो।
3: मिठाई से पहले कुछ और हो जाए
2: क्या?
3: इनकी राय।
4: नई सोच की नींव में हम, हर नई उम्मीद में हम, गैलेंट निर्माण का रियल हीरो।
5: बोलो ना बेटा, क्या चाहिए?
6: जूस या सोडा डाले या आटा, बोले ना बेटा क्या लेगा अभी फॉर यू फ्राई माय भेजा।
7: मजा नहीं आया,
8: इसे कैसे दिलाऊं मजा भगवान?
9: ये लो बस
10: अनमोल मजा, असली मजा तो यही है।
11: SBI Celebrations Unlimited इस festive season को बनाए special, car loan, personal

0: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
1: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाती, पर स्टेज नहीं हिलता,
2: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
3: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
1: कौन सी बनानी है?
4: हमारे नेबर मिस्टर कुमार बात बात पे कार मांगते रहते हैं।
3: वो इन लॉस को लाना है, कार मिल जाएगी।
5: अरे यार कुमार, अब तो अपनी कार ले लो यार।
6: कैनरा व्हीकल लोन से
3: अप टू 90% फाइनेंसिंग,
5: क्विक प्रोसेसिंग एंड नो प्री क्लोजर पेनल्टी।
7: कैनरा व्हीकल लोन, अपनी वाली गाड़ी के लिए।
8: आगे आगे, करेक्ट करेक्ट,
9: मिल गया।
10: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: बच्चों के लिए अलग टीवी रूम बना सकते हैं।
1: कैसा लगा आप दोनों को अपना ड्रीम होम?
2: आई लव इट, एब्सोल्युटली अमेजिंग। तुम एक काम करो, तुम मिठाई ऑर्डर कर लो।
3: मिठाई से पहले कुछ और हो जाए
2: क्या?
3: इनकी राय।
4: नई सोच की नींव में हम, हर नई उम्मीद में हम, गैलेट निर्माण का रियल हीरो।
5: बोलो ना बेटा, क्या चाहिए?
6: जूस या सोडा, डाले या आटा, बोले ना बेटा क्या लेगा अभी फॉर यू फ्राई माय भेजा।
7: मजा नहीं आया,
8: इसे कैसे दिलाऊं मजा भगवान?
9: ये लो बस।
10: अनमोल मजा, असली मजा तो यही है।
11: SBI Celebrations Unlimited. इस festive season को बनाए special car loan, personal loan, gold loan और loan against mutual funds पे special offers के साथ।
12: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
13: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
12: असली शहद, असली स्वाद।
14: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
15: इतने पेमेंट ऐप्स पर सेफ कौन सा?
16: तो स्विच टू बीम, एकदम सेफ और भरोसेमंद, रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं। पाओ 40 रुपए का कैशबैक 40 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर, भीम ऐप से करो पे।
17: इट्स द माय वे।
18: इस फेस्टिव सीजन हंडे सुपर डिलाइट डे सबके लिए लाए हैं डिलाइट। हंडे शोरूम आओ, अमेजिंग कार्स पे 1 लाख तक की अमेजिंग डील्स पाओ।
19: How's the hostel? Settled?
20: Yes, Mark, really nice.
19: कोई आ रहा है क्या?
21: तुम मॉम डैड वाली ड्यूटी तो निभाली, अब फिर से थोड़ा रोमांस है।
19: मयंक, फॉर रियल?
21: वन कैरेट फॉर माय वन ट्रू लव। नेचुरल डायमंड रियल लव सॉलिटेयर्स टू रीइग्नाइट योर न्यू सीजन ऑफ लव।
22: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।

0: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है।
1: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
0: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।

0: इसका नाम क्या रखेंगे?
1: ये भी ओनर से ही पूछ लेते हैं।
2: अरे भाई साहब, कब तक ओनर के डर में रहेंगे, शान से अपने घर में रहिए ना, विद कैनरा होम लोन।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: बच्चों के लिए अलग टीवी रूम बना सकते हैं।
7: कैसा लगा आप दोनों को अपना ड्रीम होम?
8: आई लव इट, एब्सोल्युटली अमेजिंग। तुम एक काम करो, तुम मिठाई ऑर्डर कर लो।
9: मिठाई से पहले कुछ और हो जाए
8: क्या?
9: इनकी राय।
10: नई सोच की नींव में हम, हर नई उम्मीद में हम, गैलेंट निर्माण का रियल हीरो।
11: बोलो ना बेटा, क्या चाहिए?
12: जूस या सोडा, डाले या आटा, बोले ना बेटा क्या लेगा अभी फॉर यू फ्राई माय भेजा।
13: मजा नहीं आया,
14: इसे कैसे दिलाऊं मजा भगवान?
15: ये लो बस।
16: अनमोल मजा, असली मजा तो यही है।
17: इस फेस्टिव सीजन हंडे सुपर डिलाइट डेज सबके लिए लाए हैं डिलाइट। हंडे शोरूम आओ, अमेजिंग कार्स पे 1,00,000 तक की अमेजिंग डील्स पाओ।
18: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है,
19: ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
3: ये है एक लेगेसी।
1: यू नो डिजाइन्स कितने हैं? 1,00,000 से भी ज्यादा डोज,
13: और सारे हैं BIS हॉलमार्क सर्टिफाइड। खूबसूरत कारीगरी भी, हाई क्वालिटी भी।
9: एक परिवार, अटूट भरोसा।
7: माँ के पैरों की धूल माथे पर ले, मैं परिंदा खुले आसमान जहाँ जीत रू सारा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: कभी कभी जब दो अलग स्वाद साथ मिलते हैं तब मजा ही कुछ और होता है, जैसे स्वीट एंड सॉल्टी अनमोल टू इन वन बिस्किट, दो स्वाद एक साथ, क्या बात।
2: यार ड्रिल करना पड़ेगा।
3: ड्रिल? नहीं नहीं, ओनर से पूछना पड़ेगा।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: चला
1: मैं?
3: अरे आजकल की लड़कियां प्लेन चला रही हैं।
4: चलो सखी उड़ ले।
5: अनमोल ड्रीम लाइट खस्ता बिस्किट।
2: अरे जल्दी सीख गई।
1: कल से प्लेन चलाना सीखूंगी।
5: स्वाद सपनों का।

0: in association with Canara Bank. Together we can.
1: Anmol Biscuits. Swad jo banaye har pal Anmol. Signature finest cardamom seeds.
2: E3 HDMR. Ye rishta lamba chalega.
3: विपक्ष ने इस मार्च को लोकतंत्र बचाओ मार्च नाम दिया। आवाज उठी चुनाव आयोग के खिलाफ, लेकिन अब सियासत शिव की बारात बनाम हुड़दंगियों की जमात वाली होने लगी है। एक दिन पहले राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक के नेता मार्च निकालते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। SIR और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ये बड़ा मोर्चा था। उस मार्च से पहले ही राहुल ने ऐसा बयान दिया जो विरोधियों को पलटवार का मौका दे गया। राहुल ने इंडिया गठबंधन के मार्च को शिव की बारात बताया तो शिवराज ने इसे अराजक हुड़दंगियों की जमात करार दिया।
4: मेरी सिस्टर कहती है मुझे कि प्लान करना चाहिए, तो मैंने सिस्टर से कहा तुम बात समझ नहीं रही हो, ये तांडव है, ये शिव का डांस है, इसमें कोई प्लानिंग नहीं होती। आज हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, कल कुछ और होगा, आइडिया वो ऊपर लिखा हुआ है, प्लान की कोई जरूरत नहीं है। ये डांस चल रहा है, ये शिव जी का डांस चल रहा है, इसमें शिव की बारात में कोई भी आ सकता है। जिस मैंने बोला गो बैक, देखिए ये शिव की बारात है, इसमें किसी को भी आना आ सकता है, कोई भी जीव आ सकता है, हम रोकेंगे नहीं।
5: इसलिए मैं बड़ी तकलीफ के साथ ही कह रहा हूं कि कांग्रेस अब देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ हाथ मिला रही है। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व पूरी तरह दिशाहीन है। अभी कह रहे थे कांग्रेस तो शिवजी की बारात है, ये राम का विरोध करने वाले शिवजी की बारात की बात कर रहे हैं, ये शिवजी की बारात नहीं है। अराजकता फैलाने वाले हुड़दंगियों की जमात है जो सड़कों पे अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही है।
3: बीजेपी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर अराजकता फैलाने के गंभीर आरोप लगाए हैं, तो विपक्ष ऐसे आरोपों से बेपरवाह है। सोमवार को ही विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दे दी जिसमें आयोग को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आगे देखिए ब्लैक एंड व्हाइट और हरदम रहिए खबरदार।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले आपको राहुल गांधी की चाय में उबाल और ज्ञानेश कुमार पर बढ़ते बवाल के बारे में बताएंगे। आज राहुल गांधी के आवास पर हुई बैठक के बाद विपक्ष के नेताओं ने साफ कहा कि ज्ञानेश का इस्तीफा सिर्फ एक मांग नहीं बल्कि उनका मिशन है। लेकिन विपक्ष का ये विरोध अपनी ही बनाई पिच पर क्या उलझ जाएगा, जिस याचिका को लेकर कल विपक्ष सीना तान कर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, आज उसमें 14 बड़ी कमियां निकल गई। 220 रुपए कम फीस से लेकर 8 दिग्गज नेताओं का वकालतनामा तक गायब मिला। आज गृहमंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि 8000 लोग पूरे देश की आवाज नहीं हो सकते। आज गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि 2029 के लोकसभा चुनाव में भी एनडीए प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेगा और कांग्रेस को लगातार चौथी बार हार का सामना करना पड़ेगा। वहीं आज दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए हाई वोल्टेज हंगामे को लेकर कई सवाल उठे। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर को छावनी में तब्दील कर रखा था। जब से जंतर मंतर को बीते दिन प्रोटेस्ट ग्राउंड की लिस्ट से हटा दिया गया है, वहां पर भारी बैरिकेडिंग की गई थी। सीजेपी के नेता लेकिन वहां पर पहुंच गए। आरोप है कि सीजेपी के नेता दीवार फांद कर सीधे जेडीयू के राष्ट्रीय मुख्यालय के अंदर घुसे और वहां से वो जंतर मंतर परिसर में कूद पड़े। एक तरफ जेडीयू इसे अराजकता बता रही है, विपक्ष इसे अंदर खाने की खिचड़ी करार दे रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक कहा कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, जहां हर मुद्दे पर खुलकर चर्चा होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने आंकड़ों के जरिए दुनिया को बताया कि भारत में 100 से ज्यादा भाषाएं, 80,000 से अधिक रजिस्टर्ड अखबार और 1,000 से ज्यादा सैटेलाइट टेलीविजन चैनल्स मौजूद हैं। यही नहीं, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर 50-50 करोड़ से ज्यादा यूजर्स का होना इस बात का प्रमाण है कि आज भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म हर नागरिक को खुली चर्चा और अभिव्यक्ति की ताकत दे रहा है।
1: सभी जानते हैं भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। भारत में 100 से ऊपर भाषाएं हैं, करीब 80,000 रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पब्लिकेशंस हैं, 1,000 से ज्यादा सैटेलाइट टीवी चैनल्स हैं।
0: एक और बड़ी खबर यह है कि केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और वो भी एक सोशल मीडिया पर पोस्ट करके। आज मुरुगन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये जानकारी दी कि वो अब तमिलनाडु में पार्टी को मजबूत करने और आगामी लोकसभा चुनाव पर ध्यान देना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने राज्यसभा सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया, तब जबकि उनका कार्यकाल अभी 3 साल बाकी है। उनका कार्यकाल साल 2030 तक चलना था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस्तीफा दे दिया राज्यसभा के पद से भी और इसी के साथ साथ मंत्री पद से भी। तो इस पर भी नजर रहेगी कि आखिर इसके पीछे असल कहानी क्या है। और अब आपको कांग्रेस सांसद और जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर अगोमचा बिमोल अकोयजाम पर लगे यौन शोषण के आरोपों के बारे में भी बताएंगे, जिसे लेकर पुलिस FIR दर्ज कर चुकी है। उन पर 11 छात्राओं ने यह आरोप लगाया है, बहुत गंभीर आरोप है, यौन उत्पीड़न का, मार्क्स के बदले सेक्सुअल फेवर्स का। आंतरिक जांच में उनके व्यवहार को संदिग्ध माना गया। एक इंटरनल कमिटी ने जिसने जांच की है इन आरोपों पर, उसने प्रोफेसर अगमचोई को दोषी माना और उनको जेएनयू से बर्खास्त कर दिया गया है, डिसमिसल। इसके अलावा FIR दर्ज होने के बाद भी कांग्रेस के बड़े नेताओं की इस मामले पर चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। आज बीजेपी महिला मोर्चा ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर इसी मुद्दे पर ज्ञापन सौंपा। और अगली खबर, साइबर हमले अब सिर्फ डेटा या कंप्यूटर तक सीमित नहीं है बल्कि ये थाली तक पहुंच चुके हैं। ये खबर हैरान भी करती है लेकिन परेशान भी करती है। फ्रांस में हैकर्स ने रिमोट के जरिए सुपरमार्केट्स के फ्रिज और डीप फ्रीजर का तापमान बढ़ाकर 50 डिग्री सेल्सियस तक कर दिया। बड़ी मात्रा में खाना, आइसक्रीम्स बर्बाद हुए, सुपरमार्केट्स की हालत थी। इस हमले ने दुनिया भर की सप्लाई चेन की सुरक्षा पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। हालांकि अभी तक यह पता नहीं है कि किसने ये किया, किस मकसद से किया और क्यों इतना बड़ा नुकसान किया। लेकिन जो वल्नरेबिलिटी है, यानी जो एक तरह से खतरा बना हुआ है कि अगर ऐसा कोई करे किसी देश में, तो सोचिए कितनी परेशानी होगी। अगली खबर, अजरबैजान, एक देश जहां 96% आबादी मुस्लिम है, लेकिन स्कूल्स और कॉलेजेस में हिजाब पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। नए नियमों के तहत हिजाब पहनने वाली छात्राओं और टीचर्स को स्कूल्स में एंट्री नहीं दी जा रही है, जिसके बाद वहां जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। सरकार इसे सेक्युलर शिक्षा नीति बता रही है, वहीं लोग इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला मान रहे हैं। ठीक ऐसे ही विवाद की गूंज भारत में भी सुनाई देती है। हिजाब का मुद्दा देश की अदालतों में आज भारत में लंबित है, ये देखिए।
2: Baxın, 140 saylı məktəbdə bizim uşağımızı içəri saldılar, hamılıqla birlikdə, hicablı, hicabsız. Sonra uşaqları hamısını çölə atdılar.
0: İdər Amerika ke New York airport par, Bangladesh ke antrim sarkar ke purv salahkar Muhammad Yunus ka zabardast virodh hua. Pradarshankariyon ne unhe gher kar aatankvadi tak keh diya. Bangladeshi pravasiyon ne Yunus par puliskarmiyon ki hatya, loktantr ko kuchalne aur alpsankhyakon par atyachar ke gambhir aarop lagaye. हंगामे के बाद यूनुस को कड़ी सुरक्षा के बीच वापस एयरपोर्ट के अंदर जाना पड़ा। और अगली खबर फिर भारत से, बिहार के शिवनारायणपुर रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से मोबाइल छीनकर भाग रहे एक चोर को यात्रियों ने खिड़की से ऐसा पकड़ा कि वो जिंदगी की भीख मांगने लगा। थोड़ी दूर तक चोर को घसीटने के बाद यात्रियों ने चलती ट्रेन से ही उसे प्लेटफॉर्म पर गिरा दिया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं।
3: यही यही काम बच गया तुम्हारा, यही सब करोगे तू? एकदम सही है, बढ़िया है, नहीं नहीं उसे छोड़िएगा नहीं।
0: तो ये पूरा मामला बिहार का है और इसको लेकर काफी चर्चा है। लेकिन एक और खबर जो हम सबकी जेब से जुड़ी हुई है, डिजिटल पेमेंट से जुड़ी हुई है, दिवाली से ठीक पहले देश के बाजार के लिए राहत भरी खबर है। व्यापारियों की धड़कने बढ़ाने वाली खबर थी, यूपीआई पर लगने वाले एमडीआर चार्ज को फिलहाल दिवाली के बाद तक के लिए तो टाल दिया गया है। इस बीच सितंबर में खुदरा महंगाई दर उछलकर 23 महीने के हाई यानी 5.5% 5.54% पर पहुंच गया है। लेकिन आज सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का जो विरोध प्रदर्शन हुआ, उसका नीतीश कुमार की जेडीयू से आखिर क्या कनेक्शन है। ये खबर बड़ी दिलचस्प है। आज अब कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका और सौरभ दास समेत कुछ प्रदर्शनकारी छिपते छिपाते जंतर मंतर के परिसर में आए तो सबसे पहला सवाल यही खड़ा हुआ कि वो वहां कैसे पहुंचे और कैसे पुलिस उन्हें रोक नहीं पाई। वो भी तब जब दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर को छावनी में दावा किया था कि छावनी में तब्दील किया हुआ है और पूरे जंतर मंतर के इलाके में भारी बैरिकेडिंग की गई थी। पुलिस वाले आपको तैनात दिख रहे हैं और हाई लेवल के बैरिकेड्स इस तरह के लगाकर तैयारी थी। 100 से ज्यादा तो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। जब इस पूरे मामले की जांच हुई तो यह पता चला कि प्रदर्शनकारी दरअसल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय मुख्यालय में मौजूद थे और उसी के गेट को फांद कर वो जंतर मंतर के परिसर तक पहुंचे। अभी तक की मिली जानकारी में यही दावा आ रहा है। इससे ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या जेडीयू के बड़े नेताओं या दफ्तर में मौजूद लोगों ने प्रदर्शनकारियों की मदद की और क्या उन्हीं की मदद से सीजेपी के नेता तब जंतर मंतर पर आ गए जब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सिर्फ एक दिन पहले इस जगह को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटा दिया था। ये सवाल बहुत गंभीर थे और जेडीयू इन सवालों पर इसलिए भी घिर रही थी क्योंकि वो इस वक्त एनडीए यानी मौजूदा केंद्र सरकार का हिस्सा है और बिहार में भी दोनों पार्टियां गठबंधन की सरकार चला रही हैं। और इस वक्त बड़ी खबर यही आ रही है कि सौरभ दास, आशुतोष रांका और अन्य पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जेडीयू दफ्तर का दरवाजा फांद कर ये घुसे थे और ऐसे में इनका वहां पर पहुंचने के बाद सीजेपी नेता दरवाजा फांद कर घुसे थे, इस आरोप में अब एफआईआर दर्ज की गई है। इन्हीं सारी वजहों से सोशल मीडिया पर यह बहस शुरू हो गई कि क्या जेडीयू ने कोई खेल किया, क्या अंदर खाने कोई खिचड़ी पक रही है। हालांकि इन सवालों और शक को दूर करने के लिए बीजेपी ने जेडीयू के साथ तत्काल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें जेडीयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पीयूष गोयल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और मंत्री केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने यह आरोप लगाया कि कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं का उनके दफ्तर में घुस आना अराजकता है और जेडीयू इस मामले में कार्रवाई पर विचार करेगी। सबसे बड़ा आरोप जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हर्षवर्धन सिंह ने लगाया। उनका आरोप है कि सीजेपी के नेताओं ने अवैध तरीके से उनके राष्ट्रीय दफ्तर में प्रवेश किया। यानी दावा है कि सीजेपी नेता मुख्य गेट से इजाजत लेकर जेडीयू के दफ्तर में नहीं आए। इसकी जगह वो जंतर मंतर रोड से ठीक पहले जंतर मंतर लेन में एक जो सरकारी क्वार्टर है उसमें दाखिल हुए, और वो ऐसा इसलिए भी कर पाए क्योंकि दावा है कि इस सरकारी क्वार्टर का पिछला गेट अक्सर खुला रहता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं ने इस दौरान सीजेपी की मदद की। हालांकि हम अब तक इन दावों की पुष्टि नहीं कर पाए हैं, लेकिन हम आपको इतना जरूर बता सकते हैं कि जंतर मंतर लेन के जिस सरकारी क्वार्टर में सीजेपी के नेता दाखिल हुए थे उसकी दीवार जेडीयू के दफ्तर से लगती है। आरोप है किसी दीवार को फांद कर आशुतोष रांका, सौरभ दास और उनके कुछ समर्थक जेडीयू के दफ्तर में दाखिल हुए। फिर इस दफ्तर का एक गेट जंतर मंतर के परिसर से लगता है, इसलिए ये नेता वहां पर पहुंचने में कामयाब हुए। देखिए

0: हालांकि आपको एक बार फिर से बता दें कि इस पूरी खबर पर एक नया अपडेट यह है कि अब इन नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है, सौरभ दास और इसी के साथ आशुतोष रांका पर। आगे इस मामले में पुलिस क्या इन्वेस्टिगेशन करती है, कैसे केस आगे जाता है, हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ये जंतर मंतर की आज की तस्वीरें हैं। अब जिस JDU दफ्तर से CJP के नेता जंतर मंतर के परिसर तक पहुंचे उसका पता 7 जंतर मंतर रोड है और इस घटना को लेकर JDU ने आपत्ति तो जताई है, लेकिन कई लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि जब पार्टी CJP के नेताओं पर अवैध तरीके से दफ्तर में घुसने का आरोप लगा रही है तो वो इस मामले में कानूनी कार्रवाई करने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठा रही।
1: पिछले कई दिनों से इस देश में जिस तरह नौटंकी और ड्रामा केयर के देश भर में अराजकता कायम करने का प्रयास किया जा रहा है, उसको नहीं लगता है कि इस देश की जनता कभी इसको स्वीकार करे।
2: इसका कोई मतलब नहीं निकलता है कि आप मेरे इलीगल तरीके से आप मेरे प्रमाइसेस में घुस के आप उस तरफ जाइए, ये तरीका ठीक नहीं है। ये आपके आपके मैच्योरनेस को दर्शाता है कि आप अभी मैच्योर नहीं हुए हैं। पहले अपनी पार्टी को मैच्योर करिए, अपने लोगों को समझाइए।
0: आज ही कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI के करीब 40 से 50 कार्यकर्ताओं का एक समूह अचानक जंतर मंतर की तरफ जाने वाली जनपद सड़क पर पहुंच गया। इन प्रदर्शनकारियों ने यह मांग की कि जंतर मंतर को वापस विरोध प्रदर्शन स्थल के रूप में बहाल किया जाए और अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी तो इसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन होगा। देखिए,
3: ये महिला पुलिस बदसलूकी कर रही है।
0: आज जब कांग्रेस और CJP के नेता जंतर मंतर पर सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं तब सरकार और BJP के नेता कांग्रेस को यह याद दिला रहे हैं कि उसने साल 1993 में खुद क्या किया था। उस वक्त दिल्ली में कई बड़े विरोध प्रदर्शन हो रहे थे जिनमें सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन अक्टूबर 1988 में हुआ था। तब भारतीय किसान यूनियन के नेता महेंद्र सिंह टिकैत के एक आह्वान पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लगभग 5 लाख किसान बोट क्लब पर आ गए थे और ये किसान सिर्फ नारेबाजी करने नहीं आए थे, वो अपने साथ ट्रैक्टर, बैलगाड़ी, गाय भैंस, खाट, चारपाई, हफ्तों का राशन पानी लेकर आए थे। उन्होंने पूरी सेंट्रल दिल्ली को एक विशाल छावनी और ग्रामीण रिहाइश में बदल दिया था। किसानों के इस शक्ति प्रदर्शन से सरकारें अभी संभली भी नहीं थी कि उसी वक्त देश में राम जन्मभूमि आंदोलन चरम पर पहुंच गया। साल 1992 में अयोध्या की घटना के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार को यह एहसास हुआ कि संसद भवन और भारत के प्रशासनिक मुख्यालयों के इतने नजदीक लाखों की अनियंत्रित भीड़ को इकट्ठा होने देना एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय जोखिम है। और बीजेपी आज इस मामले को इसीलिए उठा रही है ताकि वो कांग्रेस पार्टी को यह बता सके कि आपने भी पहले ऐसा किया था, क्योंकि अब पूरा बवाल इस बात पर आकर केंद्रित हो गया है कि जंतर मंतर को, जो कि इतने सालों से प्रोटेस्ट साइट बना हुआ था, उसको आपने प्रोटेस्ट साइट से क्यों हटा दिया। और उस वक्त पर इन्हीं सुरक्षा कारणों से चूंकि ऐसा हुजूम पहुंच गया था, कांग्रेस की सरकार ने बोट क्लब पर किसी भी तरह के बड़े सार्वजनिक जमावड़े और विरोध प्रदर्शनों पर पूरी तरह रोक लगा दी। इस फैसले के बाद साल 1993 में विरोध प्रदर्शनों को जंतर मंतर रोड की तरफ मोड़ दिया गया। अब क्योंकि मौजूदा केंद्र सरकार ने सुरक्षा कारणों को कोट किया है और यही सुरक्षा कारण कोट करते हुए उन्होंने जंतर मंतर को प्रदर्शन स्थल के रूप में डीनोटिफाई किया है, तो इस पर सरकार को विपक्ष घेर रहा है। आज राहुल गांधी ने भी सरकार के इस फैसले का विरोध किया। ये कहा कि वोट के साथ अब धरना स्थल भी छीने जा रहे हैं, धरना स्थल भी चुराए जा रहे हैं। सुनिए विपक्ष की जो रणनीति है वो समझिए।
4: द वन मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी वॉज जंतर मंतर एंड नाउ द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड दैट जंतर मंतर कैन नो लॉन्गर बी यूज्ड टू एक्सप्रेस डेमोक्रेटिक feelings. Well, we are going to challenge that idea. It is not going to be so simple for the government to decide that the Indian people will not fight for their voice.
0: और अब आप ये देखिए कि विपक्ष ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जो आंदोलन कर रहा है वो आगे और कहां तक जाएगा। आज विपक्ष की रणनीति बनी पूरी स्ट्रैटेजी और जगह थी राहुल गांधी का घर। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद आज राहुल गांधी के आवास पर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने चाय पर चर्चा बुलाई, जिसमें रणनीतिक रूप से तीन बड़े फैसले हुए हैं। तो क्या है विपक्ष की रणनीति? पहला फैसला यह हुआ कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जो अलग अलग आंदोलन चल रहे हैं उन्हें विपक्ष अभी एक ही आंदोलन की तरह प्रोजेक्ट करेगा, क्योंकि सीजेपी का भी विरोध आंदोलन हो रहा है, इधर ऐसा SFI, बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। आज राहुल गांधी ने खुद ये बात कही कि देश में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जितने भी विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं वो अलग नहीं है, एक है। ऐसे वक्त में आया है जब अलग अलग मोर्चों को लेकर कई सवाल उठ रहे थे। ये कहा जा रहा था कि इस मामले में विपक्षी दल और संगठनों के बीच एक रेस चल रही है। शायद यही कारण भी है कि चाय पर हुई इस चर्चा में छात्र संगठन आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा, योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण भी मौजूद रहे। और जब विपक्ष के तमाम नेता मीडिया के सामने आकर बयान दे रहे थे तब इन नेताओं को भी वहां बोलने दिया गया, यानी विपक्ष ने यहां अपनी रणनीति को समावेशी बनाया है। हालांकि बड़ा सवाल अब भी यही है कि क्या आम आदमी पार्टी और सीजेपी के नेता इस मुद्दे पर विपक्ष के साथ नजर आएंगे। दूसरा, प्रशांत भूषण का दावा है कि आने वाले दिनों में इस आंदोलन में किसान संगठनों के साथ सिविल सोसाइटी और ट्रेड यूनियन भी हिस्सा लेंगे। तीसरा, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा उनके लिए एक मांग या सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, ये उनके लिए एक मिशन है और ये मिशन इस्तीफे के साथ ही पूरा होगा। मेरी सहयोगी मौसमी सिंह बताती हैं कि राहुल गांधी इसे एक बहुत बड़े जन आंदोलन में बदलना चाहते हैं, यानी इसका मतलब यह हुआ कि आने वाले दिनों में आप विपक्ष को अनेकों बार सड़कों पर ऐसे आंदोलन करते देख सकते हैं और यह टकराव अब लंबा चलने वाला है। राहुल गांधी ने आज साफ साफ शब्दों में कहा कि इस तरह से कोई भी परिणाम दो दिन चार दिन सप्ताह में नहीं, महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकता है। तो आप समझिए कि ऐसे आंदोलन आने वाले चुनावों तक हो सकते हैं। सिर्फ यूपी की बात नहीं कर रही हूं मैं, 29 तक की बात राहुल गांधी ने वहां पर की है। एक और अहम बात यह है कि सभी विपक्षी नेताओं ने अपने बयानों में प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का नाम लिया और इससे आप ये समझ सकते हैं कि विपक्ष की लड़ाई सिर्फ ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की लड़ाई नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा राजनीतिक टकराव छिपा है। इसके अलावा जो लोग ये जानना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में विपक्ष या राहुल गांधी क्या करेंगे, कहां आंदोलन या रैली करेंगे, विपक्ष का एजेंडा क्या होगा, तो इसके बारे में किसी नेता ने खुलकर नहीं कहा। राहुल गांधी ने तो यहां तक कहा कि अगर हम आपको सब बता देंगे तो सरप्राइज नहीं बचेगा। शायद विपक्ष ऑर्गेनिक तरीके से अपने इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहता है। सुनिए,
4: जिस एनर्जी से, जिस शक्ति से हमने मोबिलाइज किया, जिस यूनिटी के साथ हमने मोबिलाइज किया, उसी प्रकार से हम सब मिलकर लड़ते रहेंगे।
5: शायद ही इतनी बड़ी संख्या में लोग कभी नहीं जुड़े दिल्ली में।
6: हम सब लोग एकजुट हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए, और इसके लिए जो कुर्बानी देना होगा हम सब लोग जो है मिलकर के देंगे।
7: अत्याचार इनके बढ़े, इन अत्याचारों के खिलाफ हम लड़ेंगे और जीतेंगे।
8: नैनेश कुमार एक ऐसा माफिया है जिसने पूरे सिस्टम का अपराधीकरण किया, और ऐसे माफिया से कैसा लड़ना है और कैसा निपटना है हमको मालूम है।
9: संविधान आज इस देश में खतरे में है, इसीलिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी।
10: वोट चोरी करता है, संघर्ष का जगह का चोरी करता है, जनतंत्र का चोरी करता है।
11: प्रोटेस्ट करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, उसको कोई नहीं रोक सकता।
0: तो इस बार विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभाला है। आज उन्होंने विपक्ष के इस आंदोलन को लेकर चार बड़ी बातें कही। पहला आरोप गृहमंत्री अमित शाह ने यह लगाया कि राहुल गांधी एसआईआर का विरोध घुसपैठियों को बचाने के लिए कर रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि कांग्रेस को चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाने से पहले यह सोचना चाहिए कि वो गुजरात में 41 साल, त्रिपुरा में 33 साल, पश्चिम बंगाल में 54 साल से कोई चुनाव क्यों नहीं जीती। तब तो ना एसआईआर था ना ये चुनाव आयोग, और वो मुख्य चुनाव आयुक्त जो बीजेपी ने अपॉइंट किया था। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि बैलेट पेपर से होने वाले चुनाव में भी बीजेपी ही जीती है। और चौथी बात उन्होंने ये कही कि 14 राजनीतिक पार्टियां 1.5 किलोमीटर के दायरे में 8,000 लोगों की भीड़ जुटाकर इस पूरे देश की आवाज नहीं बन सकती।
12: तो 24 के बाद चालू हुआ, आप जब से कांग्रेस के मुख्य नेता के रूप में आए हैं और बाद में अध्यक्ष के रूप में आए हैं, लीडर ऑपोजिशन के रूप में आए, कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव हारे। आपको आत्मचिंतन करने की जरूरत है। फैब्रिकेटेड मीडिया इवेंट, झूठ की गूंज कर आप देश की जनता का विश्वास हासिल नहीं कर सकते। पूरी 14 पार्टी का कैडर इकट्ठा कर 1.5 किलोमीटर के क्षेत्र में 8,000 की भीड़ इकट्ठी कर आप देश की आवाज नहीं बन सकते हो। मेरा कांग्रेस पार्टी से निवेदन है कि देश की आवाज खेत खलियानों में, गांवों में, दूर सुदूर पहाड़ियों पर, जंगलों में और नदियों के किनारे भी है। एसआईआर के बहाने घुसपैठिया बचाने का आपकी जो कार्य योजना है उसको देश की जनता भली भांति समझ चुकी है, और अब भारत की जनता आपके झांसे में आने वाली नहीं है। श्री राहुल जी और उनके साथियों को मैं ये भी बताना चाहता हूं कि 29 में प्रचंड हार के लिए फिर से एक बार मन बना लीजिए। 2029 के आम चुनाव में एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर आने वाला है।
0: खैर, आज आपने देखा देश के गृहमंत्री ने एक बार फिर से राहुल गांधी को खास तौर पर चैलेंज किया, और उन्होंने कहा कि 29 में भी हम ही जीतेंगे। खैर, आज विपक्षी दलों ने सिर्फ चाय पर चर्चा नहीं की बल्कि आज उस याचिका पर भी खूब विवाद हुआ जिसे विपक्ष के तमाम नेता एक दिन पहले खुद सुप्रीम कोर्ट दायर करने पहुंचे थे। कारण यह था कि आज इस याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध यानी लिस्ट ही नहीं किया गया। और जानते हैं लिस्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इनमें कुल 14 गलतियां थी, खामियां थी, जैसे याचिका के साथ जमा की गई अदालत की फीस में पैसे कम थे, 220 रुपए, और अदालत में इन मामलों को लेकर बहुत ही सख्ती बरती जाती है। दूसरा, ऐसी याचिका में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जो पहचान पत्र लगाया गया था वो स्पष्ट नहीं था। तीसरा, याचिका दायर करने वाले 11 में से 8 नेताओं का कोर्ट को वकालतनामा ही नहीं मिला। वकालतनामा वो दस्तावेज होता है जिसके जरिए कोई व्यक्ति अपने वकील को अदालत में उसकी ओर से मुकदमा लड़ने और याचिका दाखिल करने का अधिकार देता है। लेकिन इस याचिका में यह वकालतनामा 8 नेताओं ने लगाया ही नहीं था। इनमें अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, संजय राउत, सौगत रॉय, एम ए बेबी, डी राजा, महुआ माझी, सुप्रिया सुले और ईटी मोहम्मद बशीर का नाम शामिल है। और चौथी बड़ी गलती यह हुई कि इस याचिका में स्पष्ट नहीं किया गया कि विपक्षी नेताओं की शिकायत चुनाव आयोग के खिलाफ है या उनके व्यक्तिगत सदस्यों के खिलाफ है, और इस बारे में अब स्पष्टीकरण कोर्ट ने स्पष्टीकरण मांगा गया है। कुल 90 दिन यानी 3 महीने ने विपक्ष के नेताओं को दिए गए हैं जिसमें वो इन गलतियों को सुधार सकते हैं लेकिन बीजेपी इन गलतियों के बहाने विपक्ष को घेर रही है और ये कह रही है कि जो दल कोर्ट की याचिका तक ठीक से नहीं तैयार कर सकते वो देश कैसे चलाएंगे, देश की चुनावी व्यवस्था पर ज्ञान बांट रहे हैं। देखिए,
13: जो दल अपना अदालती फाइल तक ठीक से नहीं बना सकता है वह देश की चुनावी व्यवस्था पर ज्ञान बांट रहा है। इसलिए सड़क पर झूठी नौटंकी करना आसान है लेकिन अदालतों में तथ्यों और सबूतों की जरूरत होती है। हार की खीज में रची गई यह कानूनी पटकथा पहले दिन ही औंधे मुंह गिरी है।
0: खैर, ये राजनीति सिर्फ विपक्ष की याचिका को लेकर नहीं हो रही है बल्कि कल विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट तक जो मार्च निकाला उसमें भी कई घटनाएं हुई हैं जिसको लेकर बीजेपी उनको अब घेर रही है। अब तो ये एक सिलसिला बन चुका है, एक दिन प्रोटेस्ट होता है उसके वीडियोज आते हैं, फिर अगले दिन प्रोटेस्ट में बीजेपी कहती है कि देखो ये हुआ, वहीं कांग्रेस वाले कहते हैं देखो ये हुआ, तो एक पूरी कहानी चल पड़ी है। अब इस प्रदर्शन की कवरेज कर रही महिला पत्रकार ऋचा पराशर ने यह आरोप लगाया है और ये वीडियो प्रदीप भंडारी ने डाला था कि भीड़ के बीच राहुल गांधी ने उनका हाथ पकड़ा, उन्हें कोहनी से धक्का दिया और ये आरोप पत्रकार ने लगाया कि वो जमीन पर गिर गई। ये वीडियो पहले आप देखिए।
14: ये राहुल गांधी है, पत्रकार को ढकेल दिया, एक पत्रकार को ढकेल दिया गया यहाँ पर। मैं अपने घुटने के बल गिरी, मेरा माइक मेरे हाथ में नहीं है बट मेरे माइक मेरे कॉलर में है। I can't keep patience।
15: कोई नहीं ढकेला।
0: इस घटना के बाद बीजेपी नेताओं ने अस्पताल जाकर पत्रकार से मुलाकात की, ये भी कहा कि आज राहुल गांधी को देश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। सुनिए।
16: घुटनों के बल गिरी हूँ, पेट के बल गिरी हूँ और मेरे ऊपर मेरा कैमरा पर्सन गिरा, मेरा फोन है इधर सर, मेरा फोन पूरा टूट चुका है। अभी
17: कल का जो भद्दा व्यवहार और स्वयं राहुल गांधी और उनके साथियों ने जिस प्रकार से एक पत्रकार बहन के साथ दुर्व्यवहार किया, बहन 3 महीने प्रेग्नेंट थी, गर्भ से थी, बार बार कह रही थी कि संभल के मैं गर्भवती हूं, लेकिन जिस तरीके से उसको धक्कम धक्की की, जमीन पे फेंका, फिर उन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ा।
0: कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा है कि बीजेपी झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस का यह भी कहना है कि किसी भी वीडियो में ऐसा नहीं दिखता कि राहुल गांधी ने इस महिला पत्रकार को धक्का दिया या कोहनी मारी। हालांकि ये बात सिर्फ इस एक घटना की नहीं है, बीजेपी ने एक और वीडियो डाला है और उसके जरिए आरोप लगाया कि पैदल मार्च के दौरान राहुल गांधी ने कांग्रेस के ही एक कार्यकर्ता को आगे निकलने के लिए कोहनी मारी। देखिए। कुछ लोग ये आरोप भी लगा रहे हैं कि इस पैदल मार्च में कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का भी अपमान हुआ और जब वो राहुल गांधी से आगे चल रहे थे तब दावा है कि राहुल गांधी ने कुछ किया है। इस वीडियो में देखिए।
18: मैं सफेद टी शर्ट में राहुल गांधी नजर आ रहे हैं और उनके साथ कर्नाटक के सीएम डीके शिवकुमार मौजूद है।
0: इसी पैदल मार्च में जब भीड़ बेकाबू हो रही थी और लोग एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की कर रहे थे तब आरोप है कि राहुल गांधी ने भी अपने समर्थकों को धक्का देकर पीछे किया। इस वीडियो को अब बीजेपी बड़ा मुद्दा बना रही है। ये वाला देखिए।

तो ये वो वीडियो था जिस वीडियो में राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव की ट्रक से उतरने में मदद कर रहे थे। उन तस्वीरों को लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है और ये कह रही है कि यहां भी राहुल गांधी ने अपने सहयोगी नेताओं के साथ गलत किया। देखिए,

इधर सोशल मीडिया पर बीजेपी के समर्थक उन तस्वीरों पर सवाल उठा रहे हैं जिनमें प्रियंका गांधी वाड्रा सुप्रिया सुले प्रदर्शन के दौरान झूमते नजर आए। हालांकि विपक्षी दलों का और उनके प्रवक्ताओं का कहना है कि वो अपने काडर में जान फूंकने की कोशिश कर रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने की कोशिश कर रहे थे और जिस तरह से लोग वहां पर पहुंचे थे इस प्रोटेस्ट में उसको देखकर वो अपने कार्यकर्ताओं में नए सिरे से जान फूंकने की कोशिश कर रहे थे। कांग्रेस बीजेपी पर राहुल गांधी के खिलाफ दुष्प्रचार का आरोप लगा रही है। उसने इस पैदल मार्च के लिए के नए वीडियो जारी किए हैं और कहा है कि बीजेपी इसमें दिख रही भीड़ से डर गई है। देखिए

0: Blue. Have you seen Khadke ji?
1: जो लोग ये दावा कर रहे थे कि राहुल गांधी ने नेहा बोरा को अपने साथ मंच पर दिखाने के लिए एनएसयूआई की अनदेखी की, उन्हें भी कांग्रेस ने जवाब दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि नेहा बोरा के साथ ट्रक पर दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की कार्यकारी पार्षद जन्नत बिश्नोई भी मौजूद थी, जिन्होंने 104 सालों का इतिहास पलटकर एनएसयूआई की तरफ से ये पद हासिल किया है। देखिए, भारत में चल रहे इस आंदोलन के बीच फ्रांस के छात्र आंदोलन की काफी चर्चा हो रही है। इस चर्चा का बड़ा कारण है फॉक्स न्यूज की एक रिपोर्ट। ये रिपोर्ट इस बात की तरफ इशारा करती है कि फ्रांस में स्कूल्स के बजट में कटौती और शिक्षकों की कमी को लेकर आंदोलन शुरू हुआ। बाद में कई गैर छात्र संगठन शामिल हुए, जिससे फ्रांस के इस आंदोलन को दुनिया में व्यापक रूप से पहुंचाया गया। यही नहीं, इसमें फिलिस्तीन के नारों और झंडों ने भी जगह बना ली। फॉक्स न्यूज की ये रिपोर्ट में लिखा है कि छात्र आंदोलन से जुड़े 50 संगठनों की पहचान की गई, जिनमें सिर्फ संगठन छात्रों या युवाओं के निकले, जबकि जो बाकी 35 संगठन थे वो वामपंथी दलों के, मानवाधिकार समूहों के, अन्य संस्थाओं से जुड़े निकले, जिन पर कई गंभीर सवाल फ्रांस में जो राइट विंगर्स हैं वो उठा रहे हैं। ये रिपोर्ट कहती है कि फ्रांस की कम्युनिस्ट पार्टियां और मजदूर यूनियन प्रदर्शन में लोगों को जुटाने, हड़ताल का समर्थन करने में सक्रिय रहे। जो संगठन इस आंदोलन को चला रहे थे, उन्हें अमेरिकी मूल के कारोबारी नेविल रॉय सिंघम का भी समर्थन मिला है, और यहीं से पूरी कहानी घूमती है। नेविल रॉय सिंघम पर आरोप लगता है कि वो चाइना की छवि को अच्छा दिखाने के लिए कई संगठनों पर पैसा खर्च करते हैं, मदद पहुंचाते हैं। और भारत में भी एक मीडिया संस्थान की फंडिंग के आरोपों में अमेरिकी मूल के इस कारोबारी पर सवाल पहले उठ चुके हैं। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि उन्होंने ये तमाम आरोप लगाए हैं, लेकिन फॉक्स न्यूज की इस रिपोर्ट से यह साबित नहीं होता कि भारत में हो रहे आंदोलनों के पीछे कोई सांठगांठ है, या क्या वाकई ऐसे संगठन शामिल हैं। ये ऐसे आरोप हैं जिनके बारे में अब तक खुद पुलिस ने और सरकार ने कुछ नहीं कहा है। इसलिए हम भी यही कहेंगे कि फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट को भारत से जोड़कर देखना क्या इस वक्त पर सही है। जब तक हमारी जांच एजेंसियां इस मुद्दे पर अपनी जांच नहीं करती और वो नहीं बताती कि भाई क्या है, कौन है, किस कौन इसके पीछे है, या फिर किसी इंडिविजुअल के बारे में। और फ्रांस के मामले में एक बात ये समझनी होगी कि वहां आंदोलनों, क्रांतियों की एक साझा परंपरा रही है। ऐसे आंदोलनों में वहां सिविल जो सोसाइटी ग्रुप्स हैं, मजदूर यूनियन है, एनजीओ है, वो शामिल होते रहे। और एक पहलू इसमें यह भी जोड़ा जा रहा है। और अब आपको दिखाते हैं दिल्ली में हो रहे प्रदर्शनों को लेकर पाकिस्तान में क्या चर्चा है।
2: प्रोटेस्ट सोशल मीडिया की जीनत बन रहा है, वहां की स्टूडेंट्स की स्टेटमेंट्स, लेकिन अब की बार ऐसे लगता है कुछ मुख्तलिफ अंदाज में ये लोग सामने आ रहे हैं। और इसको जॉइन ध्रुव राठी कर रहे हैं, 33 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। फिर इंडियन एक्टर्स हैं, प्रकाश राज, वो भी हमें इसमें दिखाई दिए, सेठी साहब, और भी बहुत बड़े बड़े नाम। लेकिन आपको क्या लगता है कि अब की बार क्या नतीजे होंगे इस एहतजाज के, जो कल भी होने जा रहे हैं जंतर मंतर?
3: यहाँ दो तीन चीजें हो रही हैं इस वक्त। नरेंद्र मोदी इज इन ट्रबल। अच्छा, पहली ट्रबल तो यही कॉकरोच पार्टी, मगर फर्क यह है इस दफा ऑपोजिशन फुल फ्लेज्ड, 22 ऑपोजिशन पार्टीज लेड बाय राहुल गांधी, दे आर राइट बिहाइंड द कॉकरोच पार्टी। डिमांड वही है मोदी की रेजिग्नेशन, टू बिगिन विद इलेक्शन कमिश्नर की रेजिग्नेशन। और मैंने आपको पता पिछले हफ्ते कहा था कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा इलेक्शन कमिश्नर को बचाना। ये दिस इज अ वेरी बिग प्रोटेस्ट।
1: पंजाब में नशा एक ऐसी इंडस्ट्री बन गया है जिस पर न शासन का जोर चल रहा है न प्रशासन का। नशे के सौदागरों का एक ऐसा नेक्सस काम कर रहा है जिसको रोकने वालों को या तो आत्महत्या करनी पड़ती है या फिर वो सरेआम दिन दहाड़े सैकड़ों लोगों के सामने मारे जाते हैं। ये वीडियो दहलाने वाला है। मानसा में ऐसा ही हुआ। वहां पर एक एंटी ड्रग्स एक्टिविस्ट परविंदर सिंह झोटा को फार्मेसी चलाने वाले एक व्यक्ति ने खुलेआम सीधा गोली मार दी। आरोप है कि फार्मेसी चलाने वाला यह व्यक्ति नशे का कारोबार करता था और गैर कानूनी तरीके से लोगों को नशे की दवाइयां बेचता था। परविंदर सिंह झोटा को फार्मेसी वाले की इस हरकत के बारे में पता था और वो पिछले काफी समय से उसका विरोध कर रहा था, लेकिन आज जब उन्होंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया तब उसने उन्हें गोली मार दी। चालीस साल के परविंदर सिंह झोटा अपने क्षेत्र में नशे के कारोबार को लेकर आवाज उठाते रहे हैं। वो उन लोगों पर सवाल उठाते रहे हैं जो बच्चों, युवाओं, बुजुर्गों को हेरोइन या फिर गैर कानूनी नशे की गोलियां बेचते थे। परविंदर सिंह झोटा को पता था कि मानसा शहर के रेलवे फाटक के पास एक मेडिकल स्टोर है, जो मेडिकल स्टोर उसका मालिक अश्विनी लोगों को नशे की गोलियां वहां पर बेचता है। भाई जिस दुकान से मिलता है फिर वो बात तो फैल ही जाती है। उसको रोकने के लिए आज वो अपने कुछ साथियों के साथ मेडिकल स्टोर पर पहुंच गए थे। वहां पर मेडिकल स्टोर के मालिक अश्विनी के साथ उनकी बहस हो गई और फिर अश्विनी ने पिस्टल निकाल ली, फायरिंग कर दी। इस हमले के बाद परविंदर ने भागकर खुद को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन अश्विनी ने एक के बाद एक तीन फायर किए थे, जिसमें दो गोलियां परविंदर के पेट में और एक उनके पैर में लगी। गोली लगने के बाद परविंदर बहुत दूर तक भाग नहीं पाए और पास की एक दुकान में जाकर छिप गए, लेकिन वहां पर खून बहने की वजह से उनकी हालत खराब हो गई। आसपास के जितने लोग थे वो उन्हें अस्पताल तो ले गए, भर्ती भी करवाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
4: अश्विनी नाम का जो कमी शॉप ओनर है उसके वालों इस घटना को अंजाम दिया गया। उन्होंने वालों जो है अपने लाइसेंसड पिस्टल के राही जो है परविंदर झोटा जो कि एक एंटी ड्रग एक्टिविस्ट से और चंगे एक्टिविस्ट वजो मानसे काम कर रहे थे, उन्होंने जोड़ा है उन्होंने फायरिंग करके जोड़ा है इस घटना को अंजाम दिता।
1: पंजाब पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार करने के दावे किए हैं, लेकिन नशे के खिलाफ आवाज उठाने वालों के साथ पंजाब में जो कुछ हो रहा है उससे पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस और एक तरह से पूरी व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। पिछले महीने पंजाब के संगरूर से दो ऐसे मामले सामने आए थे जिसने राज्य में नशे की समस्या और पूरे देश का ध्यान खींचा। संगरूर में आपको याद होगा गुलजार सिंह, राज्य के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की सभा में उन्होंने नशे की बिक्री का मामला उठाया और आरोप है कि उसके बाद गुलजार सिंह को इतना टॉर्चर किया कि उन्होंने जहर खाकर जान दे दी, वीडियो बाकायदा बनाया। और इसी तरह का एक और मामला सामने आया जिसमें जग्गा सिंह नाम के एक व्यक्ति ने जहर खा लिया था और आरोप था कि उसने भी अपने गांव में नशे की बिक्री के खिलाफ आवाज उठाई थी। हालांकि सही समय पर इलाज मिलने पर जग्गा सिंह की जान बच गई। इस दोनों घटनाओं ने पंजाब में फल फूल रही नशे की इंडस्ट्री, उसके खिलाफ एक्शन में नाकाम हो रही पंजाब पुलिस पर सवाल उठाए। इन मामलों को लेकर विपक्षी पार्टियों ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को निशाने पर लिया। परविंदर सिंह झोटा के पिता तो अपने बेटे की हत्या के लिए सीधा पंजाब सरकार को जिम्मेदार बता रहे।
5: बर्खास्त करो, ये नशे छड़िया बटा रही है। मेरा बेटा परविंदर सिंह झोटा नशा तस्करा ने शहीद करता।
1: और अब हम जेएनयू में एक प्रोफेसर के महापाप के बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि इसकी चर्चा विपक्षी दलों के प्रदर्शनों के बीच दब गई है, लेकिन मामला बड़ा है। आरोप अभी एफआईआर में, जांच और जांच के बाद अदालत तक तो पहुंचेंगे, लेकिन सवाल यही है कि जेएनयू की इंटरनल कमेटी की रिपोर्ट में मणिपुर के कांग्रेस के सांसद और जेएनयू में समाज शास्त्र के प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकोईजॉम पर 11 लड़कियों के यौन उत्पीड़न का जो आरोप लगा था वो इंटरनल कमिटी में सही पाया गया और उसके बाद उनको वहां से बर्खास्त कर दिया गया है। आरोपों में दरअसल कहा गया है कि बिमोल अकोईजॉम जो हैं, उनसे पढ़ने आने वाली छात्राओं से अश्लील बातें करते थे और इशारे करते थे, अपने घर पर उनका यौन शोषण करते थे। पीड़ित लड़कियों ने बिमोल की इन हरकतों से परेशान होकर जेएनयू की आंतरिक जांच समिति से शिकायत की थी। इन शिकायतों के तुरंत बाद प्रोफेसर बिमोल अकोईजॉम को उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया था। जेएनयू आंतरिक समिति ने अपनी जांच में बिमोल अकोयजम पर लगाए गए आरोपों को सही पाया है। आंतरिक जांच समिति जो है उसकी अपील पर दिल्ली पुलिस ने बिमोल अकोयजम के खिलाफ FIR दर्ज की। उनके खिलाफ BNS की अलग अलग धाराओं में यौन उत्पीड़न, गलत मंशा से छूने, अश्लील बातें और इशारे करने, इसके अलावा महिला की गरिमा का अपमान करने का केस दर्ज किया गया है। कांग्रेस सांसद बिमोल की हरकतों को लेकर कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। ये ऐसी जानकारियां हैं जिसमें शिक्षक को छात्राओं ने भक्षक की तरह दिखाया। 16 वर्षों से JNU में पढ़ा रहे बिमोल अकोयजम पर आरोप है कि वो अपनी क्लास की छात्राओं को अच्छे नंबर देने के नाम पर सेक्सुअल फेवर्स मांगते थे। प्रोफेसर होने के साथ साथ बिमोल अकोयजम एक सांसद भी थे, इस वजह से छात्राएं उनसे डरती थी और आरोप है कि बिमोल ने इसी डर का फायदा उठाया। पीड़ित छात्राओं ने आरोप लगाया है कि बिमोल अकोयजम उनसे उनकी डेटिंग लाइफ के बारे में सवाल पूछते थे, वो अश्लील इशारे करके ये पूछते थे कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्या क्या करती हैं। सिर्फ यही नहीं, वो छात्राओं के व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी बहुत निजी जानकारियां जो है वो मांगते थे। छात्राओं ने ये भी आरोप लगाया है कि बिमोल मौखिक परीक्षा लेने के बहाने छात्राओं को अपने घर पर बुलाते थे, फिर देर रात तक रोक कर रखते थे, इस दौरान उनको जबरदस्ती छूने की कोशिश करते थे, अश्लील हरकतें करते थे। त्योहारों की सीजन में इस वक्त देश का बाजार और आम आदमी एक अजीब सी कश्मकश से गुजर रहा है। एक तरफ जहां दिवाली के ठीक मुहाने पर खड़े होकर महंगाई ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने UPI पर MDR टालकर बाजार को राहत देने की कोशिश की है। UPI पर लगने वाले MDR ने व्यापारियों से लेकर आम खरीदारों की धड़कनें बढ़ाई हुई थी। अभी 2 दिन बाद यानी 15 अक्टूबर से 2000 रुपए से ज्यादा के UPI ट्रांजैक्शन पर 0.4% का मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR लागू होने वाला था, लेकिन जैसे ही इसकी सुगबुगाहट शुरू हुई व्यापारियों के होश उड़ गए। चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री यानी CTI ने सरकार से कहा कि साल का सबसे बड़ा फेस्टिव सीजन सिर पर है, दशहरा, धनतेरस, दिवाली के वक्त में व्यापारियों पर यह वित्तीय चोट उनके कारोबार की कमर तोड़ देगी। और इसी के साथ हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार अंजना की विचारधारा, देखते रहिए आज तक।

0: क्रिकेट में हर खिलाड़ी का अलग रोल होता है। कोई विकेट कीपर, कोई फील्डर, कोई बॉलर, तो कोई बैट्समैन होता है। और जब सब एक साथ मिलकर खेलते हैं तब बनती है कंप्लीट टीम। जैसे पीएनबी वन ऐप, जिसमें फंड ट्रांसफर्स हो या अकाउंट ओपनिंग, लोन हो या एफडी, सब कुछ है जो बनाता है इसे कंप्लीट बैंकिंग ऐप।
1: पीएनबी वन ऐप, बैंकिंग का कैप्टन।

0: सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: हमारे निबर मिस्टर कुमार बात बात पे कार मांगते रहते हैं।
3: वो इन लॉस को लाना है, कार मिल जाएगी।
4: अरे यार कुमार, अब तो अपनी कार ले लो यार।
2: कैनरा व्हीकल लोन से
3: अप टू 90% फाइनेंसिंग,
4: क्विक प्रोसेसिंग एंड नो प्री क्लोजर पेनल्टी।
5: कैनरा व्हीकल लोन, अपनी वाली गाड़ी के लिए।

0: Look what I can be.
1: Based on your notes, there are some great talking points for your interview.
2: खेती में पावर के साथ साथ काम में बारीकी भी जरूरी है, इसीलिए स्वराज प्रोटेक्ट, इसका पावर सेंस हाइड्रोलिक लिफ्ट जो भारी इंप्लीमेंट्स के साथ भी बुआई करे एकदम बारीकी से। भरोसा और टेक, मेरा स्वराज प्रोटेक्ट।
3: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
4: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: SBI Celebrations Unlimited इस फेस्टिव सीजन को बनाए स्पेशल कार लोन, पर्सनल लोन, गोल्ड लोन और लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स पे स्पेशल ऑफर्स के साथ।

0: इस फेस्टिव सीजन हंडे सुपर डिलाइट डे सबके लिए लाए हैं डिलाइट। हंडे शोरूम आओ, अमेजिंग कार्स पे 1,00,000 तक की अमेजिंग डील्स पाओ।
1: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
2: How's the hostel? Settled?
3: Yes, Mom, really nice.
2: कोई आ रहा है क्या?
4: तुम मॉम डैड वाली ड्यूटीज तो निभा ली, अब फिर से थोड़ा रोमांस है।
2: मयंक, फॉर रियल?
4: वन कैरेट फॉर माय वन ट्रू लव। नेचुरल डायमंड रियल लव सॉलिटेयर्स टू रीइग्नाइट योर न्यू सीजन ऑफ लव।
5: यार ड्रिल करना पड़ेगा।
6: ड्रिल? नहीं नहीं, ऑनर से पूछना पड़ेगा।
7: इसका नाम क्या रखेंगे?
8: ये भी ओनर से ही पूछ लेते हैं।
9: अरे भाई साहब, कब तक ओनर के डर में रहेंगे? शान से अपने घर में रहिए ना, विद कैनरा होम लोन।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: इस फेस्टिव सीजन हंडे सुपर डिलाइट डे सबके लिए लाए हैं डिलाइट। हंडे शोरूम आओ, अमेजिंग कार्स पे 1,00,000 तक की अमेजिंग डील्स पाओ।
3: आ गया सोमवार और आ गए
4: चकमक चाचा।
3: आ चाचा, अखबार भाँच रहे हैं।
5: टेस्ट
3: चल रहा है, भैया के चले गए, दीदी पहुंच गई है, चिचा कब जाएंगे?
5: अरे भैया प्रोटेस्ट में हिस्सा हम ले लेते हैं, ये सब तुम लोग का ऐसा है, हम अपना मुद्दा उठा चुके पुराने।
3: अच्छा, कब उठाए?
5: जेपी के टाइम पे मुद्दा उठाए।
3: अच्छा
5: हाँ, तो जहाँ वो मुद्दा जब हम ऐसा रख देते थे तो फिर रख देते थे फिर मुद्दा। ये नहीं तुम लोग तरह इधर आए तो मतलब पुलिस आई इधर भागने लगे दन दन दन दन कर गया, ऐसा नहीं, ये सब नहीं था अपना मामला
6: जे,
5: मुद्दा मजबूती से रखते थे।
3: हम तो सुने मुद्दा टूटा भी है
5: आपका भी था, सही बात है, जब कभी ऐसे कार्रवाई चलती थी दर्द पिता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन फिर मुद्दा रखे थे हाँ, एकदम मुद्दा मजबूती के साथ रखे, सरकार हिला दिया एकदम।
3: अच्छा
5: और क्या
3: आपका मतलब, हम लोग डर जाते हैं?
5: और क्या डर जाते हैं, बिल्कुल, जहाँ पुलिस सिटी नहीं बची उस दिन भागने लगता हूँ।
3: बढ़िया, आप डरते नहीं है, पुलिस आ रही है।
5: किधर?
3: चाचा हम खेल गए अब की।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: दिल्ली के जंतर मंतर पर अब धरना नहीं, रामलीला मैदान में भी प्रदर्शन मुश्किल। अगले ढाई महीने तक बुकिंग फुल और फीस भी लाखों पार। दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर जंतर मंतर अब इतिहास बन गया है, क्योंकि जंतर मंतर को डी नोटिफाई कर दिया गया है, मतलब अब जंतर मंतर प्रदर्शन स्थल नहीं रहा। सरकार ने प्रदर्शन करने के लिए तीन जगह निर्धारित कर दी हैं। ये जगह हैं रामलीला मैदान, सीबीडी ग्राउंड, पुरानी मैदान। अब मसला यह है कि इन तीनों ग्राउंड को प्रदर्शन स्थल तो बना दिया गया, मगर दो मैदानों में कार्यक्रम चल रहा है। रामलीला मैदान और सीबीडी ग्राउंड में भी रामलीला की तैयारी हो रही है। बचा बुराड़ी का मैदान, वहाँ बारिश के बाद फिलहाल कहीं कहीं पानी भरा हुआ है।
1: हम जिस रामलीला मैदान पर हैं, इस समय नवरात्रि के चलते आप देखेंगे कि यहाँ रामलीला का मंचन हो रहा है। इस तरफ स्टेज लगा हुआ है और ठीक इसके पीछे यहाँ पर देखिए सैकड़ों लोगों के बैठने की व्यवस्था है और साथ ही मेला लगा हुआ है। कारोबार मेले का और लोगों के बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं। इस रामलीला मैदान का अपना बहुत इतिहास रहा है। इस रामलीला मैदान ने बहुत सारे आंदोलन देखे हैं, लेकिन अब इसे एक आंदोलन धरना प्रदर्शन स्थल घोषित किए जाने को लेकर के व्यापारी चिंता जता रहे हैं, स्थानीय लोगों में भी नाराजगी है और ऊपर से जंतर मंतर को जिसकी एक अपनी पहचान रही है कि वहां पर धरने प्रदर्शन होते थे जिसकी वजह से सरकार सत्ता तक आवाज पहुंचती थी, उसको लेकर के जो प्रदर्शनकारी हैं, जो सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते आवाज उठाते हैं, वो भी नाराज।
2: जिस वक्त सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीप के हिंगोली में अपनी दादी के अंतिम संस्कार में शामिल थे, उस वक्त सीजेपी के बाकी के नेता दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में धरने की परमिशन मांगने पहुंचे थे। उन्होंने पुलिस को अपनी चिट्ठी सौंप दी, लेकिन चिट्ठी सौंपने के बाद जब वो बाहर आए तो प्रशासन को सीधे सीधे 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया।
3: 24 घंटा टाइम ले लीजिए, लेकिन बॉल इज इन योर कोर्ट। आप बताइए किस दिन लोग डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट एट जंतर मंतर आ सकते हैं। फुल कोऑपरेशन के साथ पीसफुल तरीके से लोग गैदर होंगे एंड प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन प्रोटेस्ट तो जरूर होगा।
2: लेकिन अब मसला बदल गया है। सीजेपी जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना चाहती है, लेकिन जंतर मंतर को डिनोटिफाई कर दिया गया, मतलब अब जंतर मंतर प्रदर्शन स्थल नहीं रहा, मतलब सीजेपी वाले जंतर मंतर पर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। अलबत्ता सरकार ने प्रदर्शन करने के लिए तीन जगह निर्धारित कर दी हैं। ये जगह हैं रामलीला मैदान, सीबीडी ग्राउंड और पुराड़ी मैदान। अब मसला ये है कि इन तीनों ग्राउंड को प्रदर्शन ने स्थल तो बना दिया गया, मगर दो मैदानों में कार्यक्रम चल रहा है। रामलीला मैदान में रामलीला की तैयारी चल रही है, सीबीडी ग्राउंड में रामलीला की तैयारी हो रही है। बचा बुराड़ी का मैदान, जहां बारिश के बाद फिलहाल कहीं कहीं पानी भरा हुआ है। अब सवाल ये है कि प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कहां करेंगे। आज तक ब्यूरो।

0: दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं।
1: पहले भरपेट भोजन, बाद में आंदोलन।
2: डोंट ट्विस्ट।
0: क्या हुआ?
2: डोंट ट्विस्ट लप से।
0: हर आदमी में
2: होते हैं 10-20 आदमी, जब भी देखियो गौर से देखियो।
1: कितना घटिया था यार।
2: लप लप लप।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति ट्रूथ पेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और जो अध्याय खत्म हो चुका है उस पर बार बार रीटेक लेने से कहानी नहीं बदलती। नमस्कार।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति ट्रूथ पेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति ट्रूथ पेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: राहुल गांधी को अमित शाह का जवाब, कहा एसआईआर के बहाने घुसपैठियों को बचा रहे हैं राहुल, 2029 में भी करारी हार के लिए रहें तैयार, देश की जनता को मोदी पर भरोसा। इंडिया गठबंधन की चाय पर चर्चा के बाद बोले राहुल, शाह ज्ञानेश कुमार को नहीं छोड़ेंगे, लोकतंत्र को बचाना उद्देश्य, खड़गे तेजस्वी, संजय राउत ने सीईसी पर किया तीखा वार। दिल्ली में कांग्रेस ऑफिस के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, यौन उत्पीड़न में जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर और कांग्रेस सांसद के खिलाफ हल्ला बोल, राष्ट्रपति से भी गुहार। एल मुरुगन ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, केंद्रीय मंत्रिमंडल छोड़ने की मांगी अनुमति, कहा तमिलनाडु में करूंगा काम, संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू से मिले। और यमन के हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब को दी चेतावनी, कहा सना पर किसी भी हमले का रियाद को मिलेगा जवाब, भारतीय नागरिकों को एमईए ने सतर्क रहने को कहा।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं आज तक, और आप देख रहे हैं दस्तक। और आज दस्तक में बात ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नए प्लान की। 5 दिन विरोध प्रदर्शन करने के बाद राहुल गांधी के घर पर चाय पर चर्चा होती है। करीब 2 घंटे की इस बैठक के बाद जब राहुल और इंडिया गठबंधन वाले ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो ज्ञानेश कुमार के साथ साथ जंतर मंतर पर प्रदर्शन की रोक पर गरजते हैं। सभी ने एक सुर में कहा कि सरकार जंतर मंतर को प्रदर्शन स्थल से नहीं हटा सकती। इसके अलावा राहुल गांधी ने अगले प्लान का सरप्राइज देते हुए सीधे कहा कि ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा उनका मिशन है। देखिए,
1: ज्ञानेश कुमार के खिलाफ क्या है राहुल का सरप्राइज प्लान?
2: कैसे जाएंगे वो हम आपको बता नहीं सकते, क्योंकि फिर आप को सारा मतलब सरप्राइज खत्म हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि आपके लिए और देश के लिए ये माहौल बना रहे।
1: 5 दिन विरोध प्रदर्शन, 6 दिन इंडिया गठबंधन की चाय पर चर्चा, जंतर मंतर पर ही विरोध प्रदर्शन, इंडिया गठबंधन की नई कसम।
2: ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने जिस प्रकार से लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया है, साफ और साफ बीजेपी अमित शाह और मोदी जी के इशारे थे। हम सब लोग एकजुट हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए, और इसके लिए बहुत कुर्बानी देना होगा। हम सब लोग जो है मिलकर के देंगे।
3: ज्ञानेश कुमार एक ऐसा माफिया है जिसने पूरे सिस्टम का अपराधीकरण किया।
1: विपक्ष का ज्ञानेश हटाओ मार्च जारी रहेगा, लेकिन सरप्राइज के साथ।
4: आते इन्होंने संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करके चुनाव को प्रभावित किया है, और वोट चोरी का काम किया, घृणित काम किया।
5: वोट चोरी करता है, संघर्ष का जगह का चोरी करता है।
1: पहले सीईसी के खिलाफ शिव की बारात, अब नए प्लान पर चर्चा। 5 दिन तक दिल्ली की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के बाद हर कोई यही सोच रहा था कि क्या राहुल फिर से सरप्राइज देंगे, क्योंकि 12 अक्टूबर को जिस तरह से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस से लेकर इंडिया गठबंधन के दिग्गज नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट तक ज्ञानेश हटाओ मार्च निकाला, उसमें विपक्षी एकता भी दिखी और सड़कों पर कार्यकर्ताओं का हुजूम भी। पिछले कई दिनों का पैटर्न ऐसा ही था कि पहले राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने लंच किया, उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ तगड़ा विरोध प्रदर्शन किया। 13 अक्टूबर को भी जब राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के नेताओं को चाय पर बुलाया तो सबको लगा कि क्या फिर से ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कोई नया प्लान है, क्योंकि राहुल गांधी ने जो ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को शिव का तांडव और शिव की बारात का नाम दिया और सबको शिव की बारात में आने के लिए कहा, सबने सोचा क्या फिर से चाय के बाद विरोध प्रदर्शन का प्लान है। लेकिन जब राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने चाय पर चर्चा के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो राहुल गांधी ने विपक्ष के ज्ञानेश हटाओ मार्च पर एक और सरप्राइज दिया।
2: ये जो हमारी टीम है ये रुकने वाली नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये एंड गोल तक जाएगी। कैसे जाएंगे वो हम आपको बता नहीं सकते, क्योंकि फिर आप को सारा मतलब सरप्राइज खत्म हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि आपके लिए और देश के लिए ये माहौल बना रहे, इंटरेस्टिंग रहे और सरप्राइजिंग रहे। मगर मैं आपको गारंटी देता हूं कि जिस प्रकार से हम सब ने मोबिलाइज किया, जिस एनर्जी से, जिस शक्ति से हमने मोबिलाइज किया, जिस यूनिटी के साथ हमने मोबिलाइज किया, उसी प्रकार से हम सब मिलकर लड़ते रहेंगे।
1: 10 अक्टूबर को जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के ऐलान के बाद सरकार ने जंतर मंतर को आधिकारिक धरना प्रदर्शन स्थलों की सूची से ही हटा दिया। जी हां, न तो सरकार ने जंतर मंतर पर 10 अक्टूबर को सीजेपी को विरोध प्रदर्शन करने दिया और न ही आगे जंतर मंतर को धरना स्थल रहने दिया, और अब इंडिया गठबंधन ने कसम खाई है कि वो जंतर मंतर को वापस धरना प्रदर्शन के लिए लेकर ही रहेंगे।
6: ज्ञानू गुप्ता जी तो और आगे बढ़कर के चले गए 10 कदम। जिस हिसाब से एक कठपुतली की तरह ज्ञानेश गुप्ता जी ने जो काम किया है उसको जो है सजा जरूर मिलेगी। ये लोग बचने वाले लोग नहीं है, ये लोग डरे हुए लोग हैं और ये डर इनका दिखाता है कि जंतर मंतर को जो है अब प्रोटेस्ट जहां होना चाहिए था, जो होता रहा है, जिसका ऐतिहासिक महत्व रहा है, उसको बदल करके जो है दिल्ली के बॉर्डर पे जो है कर दिया गया है।
7: It has truly been revealed that the people who have actually committed treason against the people of this country is the BJP and the people who have facilitated this treason. The Election Commission of India and the CEC, Ganesh Kumar, needs to go.
5: इनका खिलाफ हमारा संघर्ष आगे जाता है और जो संघर्ष करने के लिए एक designated जगह था जंतर मंतर, इनका चोरी भी करता है।
8: We will not stop until Mr. Ganesh Kumar is removed and criminal proceedings are launched not just against Mr. Ganesh Kumar but against all the election officials of the Election Commission who have supervised elections in Haryana, Maharashtra, Bengal and Bihar.
1: अभी तक तो राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन वाले वोट चोरी और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एकजुटता और शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। अब जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के लिए भी एकता और ताकत दिखाने के लिए उतर पड़े हैं।
6: ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने जिस प्रकार से लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया है, साफ और साफ बीजेपी अमित शाह और मोदी जी के इशारे।
3: मोदी और शाह ने ये देश को डरा कर धमका कर रखा था, अब डरने की बारी उनकी है।
1: आपको बता दें कि भले ही आज राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन कांग्रेस की छात्र विंग NSUI और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर जरूर उतरे। दिल्ली के कनॉट प्लेस में NSUI के कार्यकर्ताओं ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हल्ला बोला तो पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जबकि यूपी के वाराणसी में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करने उतरे।
9: लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया ज्ञानेश कुमार ने।
10: एक ऐसा तानाशाह चुनाव आयोग है जो एक बराबर मिलकर जनता को, लोकतंत्र को लूटने का काम कर रहा है।
1: इसके अलावा पटना में लेफ्ट की छात्र विंग आयशा ने ज्ञानेश हटाओ मार्च निकाला, लेकिन पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग करके रोक लिया। लेकिन इस दौरान जब आयशा के छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया तो वो वज्र वाहन की चाबी लेकर ही भाग गए।
11: पटना में आज SIR को लेकर लेफ्ट छात्र संगठनों का आज प्रदर्शन था, बखूब बवाल हुआ, लेकिन एक फिर से बिहार में एक अनोखी तस्वीर, अनोखी घटना सामने आई है। ये वज्र वाहन है जहां पर छात्रों को डिटेन करके इसमें रखा गया था और बड़ी बात यह है कि इस वज्र वाहन की गाड़ी की चाबी लेकर के जो छात्र हैं वो भाग गए हैं। ये तस्वीर देखिए और इस वजह से इस गाड़ी को जो है यहीं पर लगाया गया है। ये तस्वीर देखिए, ये वज्र वाहन है और यहाँ पे जो गाड़ी की चाबी थी उसको लेकर के छात्र फरार हो गए हैं।
1: बंगाल में भी ममता बनर्जी की पार्टी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने उतरी, लेकिन यहाँ भी पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। आज तक ब्यूरो।
0: और आइए अब हम आपको दिखाएं कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर किस तरह से अटैक किया। वोट चोरी और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर करारा जवाब भी अमित शाह ने राहुल गांधी पर दिया, जमकर बरसे, कहा चुनाव तो आप जीतते नहीं।
12: SIR तो 24 के बाद चालू हुआ, आप जब से कांग्रेस के मुख्य नेता के रूप में आए हैं और बाद में अध्यक्ष के रूप में आए हैं, लीडर ऑपोजिशन के रूप में आए हैं, कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव हारी। आपको आत्मचिंतन करने की जरूरत है। फैब्रिकेटेड मीडिया इवेंट, झूठ की गूंज कर आप देश की जनता का विश्वास हासिल नहीं कर सकते। पूरी 14 पार्टी का कैडर इकट्ठा कर 1.5 किलोमीटर के क्षेत्र में 8,000 की भीड़ इकट्ठी कर आप देश की आवाज नहीं बन सकते हो। मेरा कांग्रेस पार्टी से निवेदन है कि देश की आवाज खेत खलियानों में, गांवों में, दूर सुदूर पहाड़ियों पर, जंगलों में और नदियों के किनारे भी है। आपकी वहां कोई रीच नहीं है। देश के कई सूबे ऐसे हैं, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, आपको कई दशकों तक कांग्रेस पार्टी को वहां की जनता ने नकारा है, हराया है। आज भी कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार की नकारात्मक पॉलिटिक्स कर रही है वो उनको फायदा नहीं करेगी। उनको जनता को समझना चाहिए, जनता का संपर्क करना चाहिए।
0: आपने देखा, राहुल गांधी की अगुवाई में इंडिया गठबंधन एकजुट है, तो दूसरी तरफ सीजेपी ने भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन पर रोक लगाई गई और उस रोक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पुलिस के सुरक्षा चक्र को और चक्रव्यूह को चकमा देते हुए सीजेपी के कई नेता जंतर मंतर तक पहुंच गए। पुलिस ने सौरभ दास समेत कई नेताओं को हिरासत में ले लिया। आइए आपको दिखाते हैं।
1: बीजेपी ने 10 अक्टूबर को जंतर मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन का ऐलान किया था। तैयारी पूरी थी, लेकिन सीजेपी के नेता और समर्थक सुरक्षा चक्रव्यूह को भेदने में नाकाम रहे। तीन दिन बाद सीजेपी के नेता सौरभ दास, आशुतोष रांका और अजिंक्य शिंदे अपने कुछ समर्थकों के साथ पुलिस का घेरा तोड़ने में कामयाब रहे। आप देख सकते हैं, सीजेपी के नेताओं ने सुरक्षा में सेंध लगा दी और जंतर मंतर पर नारेबाजी की। इस वीडियो में आपको कुछ सुरक्षा कर्मी भी नजर आएंगे जिन्होंने सीजेपी नेताओं को मौके पर पकड़ लिया। हिरासत में लिए जाने के बाद सीजेपी की तरफ से वीडियो जारी किया गया है।
13: सब लोग हैं यहाँ पे।
14: वोटेज जंतर मंतर हैज बीन ब्रीच। इस्तीफा ज्ञानेश कुमार का जंतर मंतर पर ही होगा, जो उखाड़ने हैं उखाड़ लो।
15: देखिए, होम मिनिस्ट्री कौन होती है हमारा जंतर मंतर ले जाने वाली? जंतर मंतर डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट है एंड वी विल गेट द रेजिग्नेशन ऑफ ज्ञानेश कुमार फ्रॉम जंतर मंतर। जंतर मंतर।
1: दरअसल जंतर मंतर पर अब प्रदर्शन नहीं हो सकते। सरकार ने सोमवार को इसे निर्धारित प्रदर्शन स्थल की लिस्ट से हटा दिया था। मतलब जंतर मंतर अब प्रोटेस्ट साइट नहीं है। इसी के विरोध में सीजेपी के नेता सुरक्षा चक्रव्यूह को तोड़कर जंतर मंतर पहुंचे थे।
16: इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर के पीछे जो सर्विस रोड है, जिसे जनपथ लेन कहते हैं, उस जगह पर। यही वो रोड है जहां से सुबह सौरभ दास, आशुतोष राका अपने सहयोगियों के साथ एंटर किए थे। ये देखिए, ये गेट है। ये गेट आमतौर पे खुला रहता है क्योंकि अंदर लोगों के घर है। ये देखिए, यहाँ पर आरडब्ल्यूए, जो अंदर जो लोग रहते हैं उन्होंने जो आरडब्ल्यूए बना रखी है उसका बोर्ड भी लगा है। तो यहाँ अंदर घर है, जनता दल यूनाइटेड का ऑफिस भी है। तो आमतौर पर ये गेट खुला रहता है और लोग यहाँ से आते जाते रहते हैं, लेकिन ये आम रास्ता नहीं है और आगे फिर गेट से ये कवर भी है। तो सुबह के वक्त यहीं से आशुतोष राका, सौरभ दास और उनके सपोर्टर्स एंट्री करते हैं। इस गेट से एंट्री करके वो आगे की तरफ जाते हैं और जंतर मंतर को जोड़ने वाला जो मेन गेट है उसको कवर करते, उसको वो टाप जाते हैं, जैसा उन्होंने खुद वीडियो भी बनाया है। और यहां से जाते हुए आगे जाकर के गेट को फांदते हुए वो सारा वीडियो बनाया है। और वहां पर पुलिस मौजूद रहती है, सिक्योरिटी कर्मी मौजूद रहते हैं और सभी को डिटेन कर लिया जाता है। अब इस गेट पर भी देखिए आप, यहां पर आपको केंद्रीय रिजर्व पुलिस के साथ दिल्ली पुलिस तैनात मिलेगी। इस रास्ते पर अब जो लोग यहां पर रहते हैं, जिनके अंदर घर है या फिर जो लोग अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके दफ्तर से जुड़े हैं, सिर्फ उन्हें ही इस रास्ते से आने जाने दिया जा रहा है।
1: सुरक्षा एजेंसियों की रणनीति यही है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन पर रोक है, यानी सरकारी ताला लग चुका है, लिहाजा प्रदर्शनकारियों को जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। सीजेपी के संस्थापक ने अपने सहयोगियों के खिलाफ हुए एक्शन को लेकर सवाल उठाए हैं।
17: हमारी टीम आशुतोष रामका, सौरभ दास और अजिंक्य जिसको लीड कर रहे थे, आज वो सुबह जंतर मंतर पर गए और वहां जाकर उन्होंने तिरंगा लहराया। तिरंगा लहराना कब से वायलेशन हो गया? जो भी ये सोचता है तिरंगा लहराना जंतर मंतर पर वॉयलेशन है, वो देशद्रोही है। और अगर सौरभ दास, आशुतोष रांका, अजिंक्य शिंदे और इनके साथ जिन लोगों को गिरफ्तार कर किया गया है तिरंगा लहराने के लिए, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि कैसे आप किसी को तिरंगा लहराने के लिए अरेस्ट कर सकते हो? ये कौन सा देश है, ये कौन सा रूल है? हमारे देश में, भारत देश में तिरंगा लहराना कब से वॉयलेशन ऑफ लॉ हो गया? ये तानाशाह मानसिकता का सबसे बड़ा उदाहरण है। तानाशाह को नहीं चाहिए कि कोई जंतर मंतर पर जाकर तिरंगा लहराए, उन्हें लगता है कि पूरा देश उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है।
18: जंतर मंतर को लेकर दिपके ने सरकार को सीधा अल्टीमेटम दिया है। अल्टीमेटम यही है कि एक जंतर मंतर पर रोक लगेगी तो पूरी दिल्ली और देश को जंतर मंतर बना देंगे,
17: पूरा देश जंतर मंतर बनेगा। जंतर मंतर सिर्फ एक लोकेशन नहीं है, जंतर मंतर एक स्पिरिट है रेजिस्टेंस का, और वो स्पिरिट हर किसी के अंदर जिंदा रहेगा।
18: भले ही जंतर मंतर को प्रदर्शन स्थल की लिस्ट से हटा दिया गया है, जंतर मंतर के बदले सरकार ने दिल्ली में ही 3 दूसरे स्थलों की लिस्ट रखी है, रामलीला मैदान, सीबीडी ग्राउंड, बुराड़ी मैदान। मतलब प्रदर्शन करना है तो अब प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर नहीं बल्कि इन इलाकों में जाना होगा। ऐसे में जंतर मंतर पर प्रदर्शन गैर कानूनी है। सीजेपी का दावा है कि जंतर मंतर पर लगे सरकारी ताले की चाबी उनके पास है, बहुत जल्द ये ताला खुलने वाला है, क्योंकि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सीजेपी का आंदोलन रुकने वाला नहीं है। सीजेपी की मांग यही है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को इस्तीफा देना होगा, ठीक वैसे ही जैसे पेपर लीक के मुद्दे पर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा था।
17: उन्होंने जंतर मंतर को डेजिग्नेटेड फुटेज साइट से हटा दिया है। नरेंद्र मोदी को लगता है कि जंतर मंतर को डेजिग्नेटेड फुटेज साइट नहीं रखेंगे तो प्रोटेस्ट रुक जाएंगे। ऐसा
19: दिल्ली में वोट चोरी को लेकर इंडिया गठबंधन और सीजेपी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी और उसके प्रमुख अखिलेश यादव ने वोटर लिस्ट पर सवाल उठा दिए हैं। आरोप यही है कि एसआईआर के बावजूद वोटर लिस्ट में फर्जी वोटर मौजूद हैं। फर्जी वोटरों को लेकर समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत भी की है, जमकर बरसे हैं अखिलेश यादव।
18: यूपी चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। एसआईआर और वोट चोरी के आरोपों के बीच समाजवादी पार्टी की तरफ से एक नया दावा किया गया है। दावा यही है कि उत्तर प्रदेश की 100 विधानसभा सीटों पर फर्जी वोटरों के नाम जोड़े गए हैं। सवाल यही है कि एसआईआर के बाद फर्जी वोटर कहां से आए?
20: देखिए, उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई, समाजवादी पार्टी के पीडीए प्रहरी ने लगातार सजगता से एसआईआर पे नजर रखी और बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में वोट कटने का काम हुआ, जिसको लेके भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी थी, भाजपा बेचैन थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान था कि 2.5 करोड़ से ज्यादा वोट कट गए, चिंतित थे। लेकिन उसके बाद जब फॉर्म 6 और फॉर्म 7 आया तो भाजपा की साजिश, चुनाव आयोग की साजिश के कारण लगातार उत्तर प्रदेश में फॉर्म 6 और फॉर्म 7 का दुरुपयोग करके लगातार वोटर्स को बढ़ाया जा रहा है।
18: समाजवादी पार्टी ने वोटर लिस्ट में फर्जी वोटरों को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की है। दावा यही है कि वोटर लिस्ट में फर्जी वोटरों के नाम पड़ताल के दौरान मिले हैं। समाजवादी पार्टी के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है।
21: देखिए, जब भी चुनाव नजदीक आता है या चुनाव होता है तो ये लोग अपने हार का कारण पहले ढूंढ लेते हैं कि जब हम हारेंगे तो हम क्या बोलेंगे, तो फिर हारेंगे तो बोल देंगे कि हम वोट में गड़बड़ी थी इसलिए हार गए। कभी एबीएम को बता देते हैं कि जो है एबीएम के कारण हम हार गए, तो इस तरह से ये अपनी हार का पहले से भूमिका तैयार कर रहे हैं।
18: दरअसल बीते कुछ दिनों से 16 लाख वोटर बहाए जाने के दावे सोशल मीडिया पर किए गए। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोपों पर यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी नवदीप रिडवा सफाई दे चुके हैं। दावा किया है कि फेक वोटरों को लेकर मिलने वाली शिकायतों पर एक्शन लिया गया है और लिया जाएगा, लेकिन इसे लेकर भ्रामक झूठ भी फैलाया जा रहा है।
22: एसआईआर के बाद हमारे पास कई ज्ञापन आए थे राजनीतिक दलों के, उसमें गलत नाम काटने का नहीं था, किसी समुदाय विशेष का काटने का शिकायत नहीं थी, शिकायत थी डुप्लीकेट नामों की, और जहां जहां डुप्लीकेट पाए गए उनका बकायदा डिलीशन किया गया है। कुछ का जो अब आएगी शिकायत उनके भी जांच होगी, तो ऐसा नहीं है कि कोई शिकायत और ज्ञापन हमारे पास आया और अनअटेंडेड या बिना इंक्वायरी के हमने रखा है।
23: एक बात तो साफ है, एक तरफ दिल्ली में चुनाव आयोग को लेकर घमासान शुरू हो चुका है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल अब कहीं भी मौका नहीं चूक रहे हैं जहां चुनाव आयोग से सवाल किए जा सके। समर श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
19: और आइए अब हम आपको दिखाते हैं बदलते भारत में कैसे रिलायंस का योगदान रहा है। हम आपको ये भी बता दें कि मुकेश अंबानी भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ ला रहे हैं। जियो प्लेटफॉर्म्स का आईपीओ करीब 3 दशक में रिलायंस का पहला इश्यू होगा।
2: 13 अक्टूबर से 15 अक्टूबर रिलायंस लोगों को समृद्ध होते भारत में अपना योगदान और विरासत को प्रदर्शित कर रहा है। रिलायंस दो महत्वपूर्ण विचारों का प्रतिनिधित्व करता है, पहला बड़े सपने देखने की हिम्मत और दूसरा उस सपने को साकार करने का संकल्प। रिलायंस की विरासत उस विश्वास पर आधारित है, जब कोई उद्योग बढ़ता है तो राष्ट्र और उस राष्ट्र के लोग साथ साथ बढ़ते हैं। रिलायंस का मानना है कि किसी भी कंपनी की सबसे बड़ी उपलब्धि सिर्फ अपने लिए सफलता बनाना नहीं बल्कि लाखों भारतीयों को इसमें शामिल होने का अवसर प्रदान करना है। धीरू भाई अंबानी की सोच भारत की क्षमता का भरपूर इस्तेमाल कर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की थी और अब इसी मंत्र पर मुकेश अंबानी भी चल रहे हैं।
19: दशक में एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, लौट कर आएंगे तो दशक के अगले हिस्से में आपको दिखाएंगे होती का बारूद, बंकर में सऊदी प्रिंस। आप देखते रहिए दशक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: इतने पेमेंट ऐप्स पर सेफ कौन सा?
1: तो स्विच टू भीम, एकदम सेफ और भरोसेमंद, रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं। पाओ 40 रुपए का कैशबैक 40 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर। भीम ऐप से करो पे।
2: इट्स अ माय वे।
3: बच्चों के लिए अलग टीवी रूम बना सकते हैं।
4: कैसा लगा आप दोनों को अपना ड्रीम होम?
5: आई लव इट, एब्सोल्युटली अमेजिंग। तुम एक काम करो, तुम मिठाई ऑर्डर कर लो।
6: मिठाई से पहले कुछ और हो जाए
5: क्या?
6: इनकी राय।
7: नई सोच की नींव में हम, हर नई उम्मीद में हम, गैलेंट निर्माण का रियल हीरो।
8: How's the hostel? Settled?
9: Yes, Mark, really nice.
8: कोई आ रहा है क्या?
10: तुम मॉम डैड वाली ड्यूटीज तो निभा ली, अब फिर से थोड़ा रोमांस ले।
8: मयंक, for real?
10: One carat for my one true love. Natural diamond, real love, solitaires. To reignite your new season of love.
11: AU करेंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
12: सोच बदलो और बैंक भी।
13: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
14: डायबिटीज मुझे बार बार थका देता है,
15: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
14: अब मुझे जल्दी थकान नहीं होती। कपीवा डायबिटीज जूस।
16: Love and Care, the world's finest range of rubber pet toys.
17: माँ के पैरों की धूल माथे पर लगे, परदेश की गलियों में अपने वतन की गीत सुनो।
18: वक्त के साथ कदम मिलाकर सेनको ने नए टेक्नोलॉजीज भी अपनाए, पर बिना अपने रूट्स को भूले।
19: टिन रूट्स की बुनियाद है 100% प्योर गोल्ड, ऑनेस्ट प्राइसिंग, कस्टमर फर्स्ट एटीट्यूड।
20: And Senco supports environment care for women empowerment.
21: एक परिवार, अटूट भरोसा।
22: In association with Canara Bank, together we can.
23: Anmol biscuits, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल। Signature finest cardamom seeds.
24: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
25: जहां जुर्म वहीं कहानी, जहां कहानी वहीं साजिश, जहां साजिश वहां क्राइम। जुर्म चाहे कितना ही उलझा हो, उसकी परतें हम सुलझाते हैं। देखिए क्राइम तक YouTube पर और बचिए हर क्राइम से।
26: राजस्थान की सियासत का सबसे बड़ा मंच, जहां होगी युवाओं के मन की बात और मिलेगा युवाओं के हर सवाल का जवाब। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के साथ देखिए पंचायत राजस्थान 15 अक्टूबर दिन भर सिर्फ आज तक पर।
27: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਲੈਣਗੇ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਲਏਗੀ?
28: पंजाब सरकार से किसानों की ये नाराजगी बद इंतजामी की वजह से है। बेमौसम बारिश में किसानों की मेहनत डूबी तो किसानों का गुस्सा सातवें आसमान तक पहुंच गया।
27: बोरियां रेफर थी, बोरियां तो पानी जा रहा है
29: जी।
27: बोरी कौन तुलाएगा? केड़ा शैलर वाला तुलाएगा? आरजे की करेगा, जिमीदार की करेगा? देखो कल ही इलेक्शन वास्ते कल ही मंडी पहले बंद की हुई थी, साढ़े यार्ड पास कर दो, मंडी च जगह नहीं हैगी, मंडी नुकसान बहुत हो रहा है। असि किसानों के फायदे यार्ड बनाए ने, ना कि आधे फायदे वास्ते। जे किसान की फसल रुलनी है तो सरकार जगह आप इंतजाम करे ना।
28: पानी के ऊपर तैरते हुए धान को समेटने की ये नौबत नहीं आती। अगर मंडी में पानी की निकासी का सही इंतजाम होता, लेकिन कुछ ही घंटों की बारिश में किसानों के सपने बह गए।
29: पर जो ये पानी की निकासी नहीं हुई ना, इसके लिए हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। 50 किलो माल है वो, देखो ये बोरी अपनी है, ये भी हाँ, ये बोरी अपनी है, वो भी अपनी है, वो भी है, कुछ सुगर साइड के पास पड़ा है जी, अब देख लो आपके सामने ही है, बहुत नुकसान।
0: तो पानी में
29: 6 महीने खेती की है जी, अब ये हाल है, अब क्या हाल है देखो।
28: पंजाब में बेमौसम की बारिश ने एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी की भी पोल खोल दी, जहां बेमौसम बारिश से बचाने तक के इंतजाम नहीं है। नतीजा, खुले आसमान के नीचे रखी धान की बोरियां भीग गईं। आपको धान की बोरियों पर दिख रहा ये तिरपाल भी किसानों ने लगाया है, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि किसान अपनी फसल पूरी तरह से बचाने में नाकाम रहे।
29: पता ही है, बहुत हालत खराब है, झोने के विच भी पानी पै जाना, जेडे थले भी तिरपाला दित्तियां ने उहदे विच भी पानी भर जाना, क्योंकि हुण किहड़े उच्चे थां ते पईआं ने, कोई नीवे थां ते ढेरी पई है, कोई उच्चे थां ते पई है, पानी ते थले बढ़ना ही बढ़ना है।
28: किसानों का आरोप है कि उनका ये नुकसान बच सकता था अगर तय वक्त पर 4 दिन पहले धान खरीद हो जाती। किसानों का ये भी आरोप है कि धान की खरीद के दौरान कटौती की जा रही है, प्रति क्विंटल 3 से 5 किलो तक धान काटा जा रहा है, इससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। मंडी में किसानों की मेहनत पानी में जाने के सवाल पर खन्ना मार्केट कमेटी के सचिव कमलदीप सिंह मान रहे हैं कि उन्होंने तो बारिश से फसल को बचाने के निर्देश पहले ही दे दिए थे।
1: मेरे वालों आड़तियों मुलाजमान नूं ते अपने सिविल विंग के अधिकारियों नूं लिखती ते जवानी तौर ते पहले ही हदायतां कीतियां होईयां सन, उन्हां वालों ये प्रबंध पुख्ता तौर ते कीते होए सन।
28: पंजाब जैसा हाल हरियाणा में भी दिखा, अंबाला में बारिश का पानी अनाज मंडी में भर गया, धान की बोरियां पानी में डूब गई, किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। अंबाला में किसानों का आरोप है कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण उन्हें नुकसान हुआ है।
2: रात सारी रात नहीं बैठे रहे, जगह नहीं थी, फिर आरती ने जगह बनवाई, फिर दोपहरा बरसात है 10 बजे
1: सारी
2: हटका, सारी लेबर पड़ेगी दोबारा।
0: नुकसान
2: तो काफी है।
28: किसान कह रहे हैं कि मंडी में सरकारी लापरवाही ने बर्बाद कर दिया, वहीं मंडी बोर्ड की तरफ से अब नालियां साफ करवाई जा रही हैं।
3: मंडी में जल भराव है, उसमें हमने कर्मचारी लगाए हुए हैं, जो भी नालियों में कहीं जीरी का कबाड़ वगैरह फंसा हुआ था उसको निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि किसान को की जीरी ना गिली हो और जो माल बोरियों में पैक है वो भी गिला ना।
28: इसे कहते हैं सांप निकल जाने के बाद लाठी पीटना। पंजाब और हरियाणा में किसान परेशान हैं, बारिश में उनका धान डूब गया और जिनकी जिम्मेदारी है वो अब आगे सब ठीक करने का दावा करते फिर रहे हैं। सवाल ये है कि किसान अब इस दावे का क्या करें।

0: दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं।
1: पहले भरपेट भोजन, बाद में आंदोलन।
2: डोंट ट्विस्ट।
0: क्या हुआ?
2: डोंट ट्विस्ट लप से।
0: हर आदमी में
2: होते हैं 10-20 आदमी, जब भी देखियो गौर से देखियो।
1: कितना घटिया था यार।
2: लप लप लप।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: जिसके कारण सऊदी अरब के प्रिंस इन दिनों सीक्रेट बंकर में छिपने को मजबूर हैं। आज हम सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सीक्रेट बंकर का सच आपको बताएंगे, प्रिंस सलमान के डर का कारण आपको बताएंगे। और खबर यही है कि प्रिंस सलमान को अपनी जान खतरे में नजर आ रही है। प्रिंस सलमान के डर का कारण कोई और नहीं बल्कि हूती विद्रोही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया कि हूतियों के हमले के बाद से ही प्रिंस सलमान अंडरग्राउंड है। कई दिनों से सार्वजनिक वो सामने नहीं आए। होतियों के डर से प्रिंस ऐसा कर रहे हैं। ये डर ऐसा है कि प्रिंस की लोकेशन को गुप्त रखा गया। सेना के कुछ चुनिंदा अफसरों को ही प्रिंस सलमान से मिलने की अनुमति है।

0: क्या सऊदी पर ईरान कर सकता है हमला? सऊदी पर हूतियों के हमले के पीछे का खेल। बंकर में छिपे सऊदी प्रिंस के डर की वजह। हूतियों के साथ ईरान, सऊदी अरब परेशान। ईरान की सीधी धमकी, जमीनी सेना है तैयार। क्या हूती बहाना है, सऊदी अरब है निशाना।
1: We've suffered greatly from this ideology these past 30.
0: Middle East ko paigham, Iran ka mind game. America aur Iran ke beech parde ke piche baatcheet ka dawa Qatar ne kiya, lekin vaarta ke beech Saudi Arab par Houthiyon ke hamle ke piche Iran ka mind game hai. Defense expert mante hain ki Saudi Arab ke bahane ab Iran Trump par lagatar dabav bahata ja raha hai, kyunki Iran ne America ka daav America ke khilaf chal diya hai.
2: We're the bully of the Middle East, but they are the bully no more. From the first day I entered the political arena, I've been unwavering. I will never allow Iran to have a nuclear weapon. Upon taking office last year, I immediately opened negotiations with Iran and offered them full economic cooperation in exchange for ending their nuclear program and support for terror, but they refused. They absolutely refused. That was a big mistake. Then in Operation Midnight Hammer, the U.S. military obliterated their nuclear program beneath mountains of rubble. And again, I urged Iran to make a deal, and again, they refused. The regime continued building a vast missile and drone stockpile that threatened the security of every American service member in the region and everyone else in the region.
0: दरअसल ईरान पर चाहे 2025 में इसराइल का हमला हो या फिर ईरान पर 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल का हमला, ये हमले तब हुए जब अमेरिका और ईरान बातचीत की टेबल पर थे, मतलब बातचीत की आड़ में ईरान पर निशाना साधा गया। ठीक यही दाव अब ईरान ने चल दिया है। पर्दे के पीछे अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन बातचीत के दौरान सऊदी पर हूती ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसा रहे हैं। ऐसे में अब शांति समझौते को लेकर अमेरिका पर बड़ा दबाव है। ये वही दबाव है जिसके चलते हूतियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई से ट्रंप ने अपने पैर पीछे खींच लिए हैं। दूसरी तरफ शाही महलों में रहने वाले सऊदी के प्रिंस सलमान यानी MBS सीक्रेट बंकर में छिपने को मजबूर हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हूतियों के हमले के डर से मोहम्मद बिन सलमान इन दिनों गुप्त बंकर में अंडरग्राउंड हैं। प्रिंस सलमान की लोकेशन को गुप्त रखा जा रहा है। प्रिंस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, खासतौर पर प्रिंस सलमान की सुरक्षा में स्पेशल गार्ड्स के दस्ते को तैनात किया गया है, क्योंकि हूतियों की मिसाइल की जद में रियाद है। वही रियाद जहां सऊदी का एयर डिफेंस सिस्टम हूतियों की मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहा। सुरक्षा कारणों से प्रिंस सलमान को सार्वजनिक तौर पर बाहर न जाने की सलाह दी गई है। बड़ी बात यह है कि आखिरी बार बीते मंगलवार को सार्वजनिक तौर पर प्रिंस सलमान नजर आए थे, मतलब प्रिंस सलमान पर भी हमला हो सकता है। ये खतरा उस वक्त बढ़ गया जब सऊदी अरब पर भीषण हमलों के बावजूद हूतियों के समर्थन में ईरान खुलकर खड़ा हो गया। पड़ोसी देशों को धैर्य और ठोस भाईचारे की नीति पर चलना चाहिए। ऐसे समझौते ईरान को रोक नहीं पाएंगे। सऊदी अरब को तुर्की और पाकिस्तान उसी तरह सुरक्षा नहीं दे पाएंगे जैसे अमेरिका नहीं दे पाया। सऊदी अरब अपनी नीतियां बदले ताकि दूसरों के आगे अपनी सुरक्षा के लिए गिड़गिड़ाना न पड़े। हमने भी पाकिस्तान और तुर्की को लेकर कई अफवाहें सुनी हैं और उम्मीद करते हैं कि वो सच न हो। इस क्षेत्र के देशों को अच्छी तरह पता है कि यमन में किसी भी तरह की दखल अंदाजी खतरनाक रुख अख्तियार कर सकती है। इस मामले में मक्का रक्षा समझौते का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ईरान ने सिर्फ हूतियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को लेकर अपनी लक्ष्मण रेखा नहीं खींची, बल्कि ये भी संकेत दिए हैं कि अगर सऊदी पर हूतियों के हमलों के बाद अमेरिका ने फिर से हमले शुरू किए तो ईरान जमीनी स्तर पर मिडल ईस्ट के देशों में घुसपैठ कर सकता है। अगर अमेरिका नए हमले शुरू करता है तो हम पड़ोसी देशों में सेना भेज सकते हैं। अब की बार ईरानी सेना की तैयारी कई फ्रंट पर युद्ध लड़ने की है। मिडल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी मुल्कों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सऊदी अरब के तेल ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। यूएई के अहम ठिकानों के साथ साथ क्षेत्रीय डेटा सेंटर और इंटरनेट केबल भी निशाने पर हैं। सऊदी अरब और यूएई के ठिकाने ईरान के हिट लिस्ट पर हैं, लेकिन ईरान ने ये साफ नहीं किया है कि किन देशों के खिलाफ अपनी जमीनी सेना को उतार सकता है। मतलब साफ है कि ईरान ने अमेरिका के साथ साथ मिडिल ईस्ट के देशों तक अपना बारूदी पैगाम पहुंचा दिया है। ईरान की धमकी के बीच हूतियों ने भी अमेरिका को बड़ी चेतावनी दी है। अगर अमेरिका यमन के खिलाफ आक्रामकता में शामिल होता है तो हम जवाबी कार्रवाई के फैसले पर विचार नहीं करेंगे, बल्कि अमेरिका और क्षेत्र में उसके सभी हितों को निशाना बनाते हुए त्वरित और करारा जवाब देंगे। कहीं नहीं अगर सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान हमारे खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई करता है तो उनके साथ भी वैसा ही बर्ताव किया जाएगा जैसा अभी सऊदी अरब के साथ किया जा रहा है। ईरान और हूतियों की धमकी का असर है कि सऊदी अरब ने इजराइल की तरफ से सैन्य मदद की पेशकश को ठुकरा दिया है। दरअसल हूतियों के खिलाफ सैन्य मदद का प्रस्ताव इजरायली सरकार की तरफ से सऊदी अरब के प्रिंस सलमान को भेजा गया था। इजरायली अखबार हारेट्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के कहने पर इजरायल ने सैन्य मदद का प्रस्ताव रखा था। नेतन्याहू की तरफ से अमेरिका की मध्यस्थता में यह संदेश मोहम्मद बिन सलमान को भेजा गया। प्रस्ताव में हूतियों के खिलाफ इजरायली सेना को शामिल किए जाने की बात कही गई। इस पर रियाद ने साफ कर दिया है कि वो इसराइल की मदद नहीं चाहता है। प्रिंस सलमान को डर है कि इसराइल की मदद लेने से सऊदी की जनता में नकारात्मक प्रतिक्रिया हो सकती है। जैसे ही सऊदी अरब ने इजरायली सैन्य मदद को ठुकराया, वैसे ही इसराइल के खिलाफ ईरान का बड़ा बयान सामने आया। ईरानी सांसद ने दावा किया कि हूतियों के बहाने ईरान पर इसराइल हमले का मौका तलाश रहा है, लेकिन ईरान पर इसराइल ने हमला किया तो इसराइली परमाणु सेंटर पर तबाही मचना तय है। नेतन्याहू 27 अक्टूबर को होने वाले चुनाव से पहले ईरान पर हमला कर सकते हैं। इसराइल का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नाकाम रहा तो दूसरे रास्ते खोजे जा रहे हैं। अगर ईरान पर बमबारी की जाती है तो जवाबी कार्रवाई की संभावना है और इसराइल के दिमोना एटमी सेंटर को निशाना बनाया जा सकता है। ईरान जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। बड़ी बात यह है कि फ्लाई दुबई कांड के बाद अमेरिका और इसराइल ने ईरान को कटघरे में खड़ा किया था। ट्रंप ने तो यहां तक दावा किया था कि हाईजैक की कोशिश के पीछे ईरानी साजिश थी। ट्रंप के इसी आरोप के बाद सऊदी अरब पर हूतियों ने अपने हमले तेज कर दिए, क्योंकि ये हमले ईरान की युद्ध नीति का हिस्सा हैं। अमेरिका या इसराइल दोबारा हमला करें, उससे पहले ही ईरान ने अपना बारूदी पैगाम ट्रंप तक पहुंचा दिया। यही वजह है कि सऊदी पर हूतियों के हमले के बावजूद अमेरिका मौन है, पाकिस्तान चुप है और कोई भी देश हूतियों के खिलाफ सैन्य एक्शन की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। आज तक ब्यूरो।
3: और अब खबर फ्रांस में फ्रिज बॉम्ब की। जी हां, फ्रिज बॉम्ब। ये सुनकर आपका चौंकना लाजमी है, लेकिन साइबर अटैक और हैकिंग की दुनिया में यह सबसे हैरान करने वाला मामला है। तो देखिए, फ्रांस की सुपरमार्केट में ऐसा साइबर अटैक हुआ कि हैकर्स ने सुपरमार्केट की 480 से अधिक दुकानों के रेफ्रिजरेटर्स हैक कर लिए और उनमें न सिर्फ धमाके किए बल्कि आग लगा दी। रेफ्रिजरेटर का तापमान बढ़कर 80 डिग्री सेल्सियस तक कर दिया और फ्रिज चलते चलते ओवन बन गए। फ्रोजन खाना पूरी तरह से खराब हो गया। तो आइए दिखाएं आपको आखिर कैसे हैकर्स ने चलते रेफ्रिजरेटर्स को बॉम्ब में बदल दिया।

0: फ्रांस में कैसे रेफ्रिजरेटर बन गए फ्रिज बम। फ्रांस के सुपरमार्केट्स में साइबर अटैक से दुनिया हैरान। चार सौ अस्सी से ज्यादा दुकानों में रेफ्रिजरेटर हैक, लग गई आग। कैसे चलता हुआ फ्रिज बन गया अवर, फ्रिज 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म। कैसे फ्रांस में रेफ्रिजरेटर हैक हुए और किसने किए, अब तक कंप्यूटर हैक, मोबाइल फोन हैक, बैंक अकाउंट हैक, वेबसाइट्स हैक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हैंडल को हैक करने के बारे में सुना था, लेकिन अब साइबर हैकर्स ने फ्रांस के अंदर रेफ्रिजरेटर हैक करके दुनिया को हैरान कर दिया है। जी हां, फ्रांस की सुपरमार्केट्स के रेफ्रिजरेटर हैकिंग और उनमें ब्लास्ट से लेकर आग लगने और तापमान 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की खबरें आई तो करोड़ों रुपयों का फ्रोजन खाना भी खराब हो गया। फ्रांस के सुपर स्टोर के डायरेक्टर ने रेफ्रिजरेटर पर साइबर अटैक की अपनी आंखों देखी कहानी सुनाई।
1: Malheureusement, cette nuit, monter les températures à 80 degrés, ce qui a fait fondre certains meubles. Donc, nous sommes désolés, aujourd'hui, on a une perte d'exploitation totale au niveau du frais et du surgelé. Donc, on tenait à s'excuser forcément auprès de notre clientèle. Jamais on n'aurait cru voir ça aujourd'hui dans notre milieu rural Intermarché Valais, mais voilà. Ce qui concerne le frais, ce n'est pas la peine de venir dans notre magasin aujourd'hui. Car nous sommes obligés de mettre tout à la poubelle, c'est une perte d'exploitation énorme et ça concerne 6 magasins.
0: बड़ी बात यह है कि ऐसा किसी एक सुपर स्टोर में नहीं हुआ, बल्कि फ्रांस में सैकड़ों सुपर मार्केट्स के रेफ्रिजरेशन सिस्टम पर बड़ा साइबर अटैक हुआ। इसमें 480 से ज्यादा दुकानों के फ्रिज और फ्रीजर्स का तापमान 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। फ्रांसीसी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हैकरों ने कई स्टोर्स के रेफ्रिजरेशन सिस्टम को डिफ्रॉस्टिंग मोड में डाल दिया, इससे ताजा और फ्रोजन खाना खराब हो गया। कई स्टोर्स में आग भी लग गई। फ्रांस की बड़ी रिटेल कंपनियों ने इसे अब तक का ऐसा पहला और बेहद गंभीर हमला बताया। फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू ने नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ANSSI को जांच के आदेश दिए हैं। फ्रांस दूसरे यूरोपीय देशों के साथ मिलकर ये भी जांच कर रहा है कि वहां और कंपनियां प्रभावित हुई हैं या नहीं। फ्रांस से पहले दुनिया उस वक्त भी चौंक गई थी जब मिडिल ईस्ट में युद्ध के दौरान इसराइल ने लेबनन में पेजर को बम में तब्दील कर दिया। हिजबुल्ला को जबरदस्त चोट देने वाले इस ऑपरेशन को इजरायली एजेंसी मोसाद ने अंजाम दिया था। इस ऑपरेशन में एडम फैन एक प्रमुख व्यक्ति थे। पेजर बम वाले हमले में 3,000 से भी ज्यादा लोग घायल हुए और घायलों में ईरान में लेबनन के राजदूत भी थे और लेबनन के सांसद भी, जिनकी एक आंख चली गई। इसके अलावा लेबनन के वो हिजबुल्ला लड़ाके भी इस हमले में गंभीर रूप से घायल हुए जो इसराइल के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। और अब फ्रांस में फ्रिज को बनाया बम। पहली बार रेफ्रिजरेटर हुए हैक, सबसे नया साइबर अटैक। आखिर रेफ्रिजरेटर को हैक करने का मकसद क्या है?

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी। मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।

0: बच्चों के लिए अलग टीवी रूम बना सकते हैं।
1: कैसा लगा आप दोनों को अपना ड्रीम होम?
2: I love it, absolutely amazing. तुम एक काम करो, तुम मिठाई ऑर्डर कर लो।
3: मिठाई से पहले कुछ और हो जाए
2: क्या?
3: इनकी राय।
4: नई सोच की नींव में हम, हर नई उम्मीद में हम, गैलेंट निर्माण का रियल हीरो।
5: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
6: सोच बदलो और बैंक भी।
7: ये डायबिटीज मुझे बार बार थका देता है,
8: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
7: अब मुझे जल्दी थकान नहीं होती। कपीवा डायफ्री जूस।
9: इन एसोसिएशन विद कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन।
10: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल। सिग्नेचर फाइनेस्ट कार्डमम सीड्स। E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
11: कांग्रेस इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता के ऊपर सवाल उठाती है, पर पूरी तरीके से नजरअंदाज करती है अपने खुद के काम को, अपने खुद के पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो NDA की सरकार ने इलेक्शन कमीशन को स्वावलंबी तरीके से देशहित और जनहित में अपने काम करने के लिए पूरी तरीके से ऑटोनॉमी दी है, और कोई भी इलेक्शन कमिश्नर जो अपॉइंट हुआ हो उसको कोई राजनीतिक लाभ दिए कभी भी देने का प्रयास नहीं किया, उनको अब ईमानदारी से काम करने दिया और जो कानूनी प्रावधान है उसके हिसाब से उनको कोई राजनीतिक पद देने का कभी गुनाह नहीं किया। लेकिन राहुल गांधी जी की अगर ट्रैक रिकॉर्ड को देखें, जिसको वो बड़ा कन्वीनियंटली नजरअंदाज कर देते हैं, तो उन्होंने एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पार्टी टिकट पे कैंडिडेट बनाया, एक को यूनियन कैबिनेट में लिया, दो इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को गवर्नर बनाया, और एक बार तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के कहने पे कि उनके नीचे काम करने वाला इलेक्शन कमिश्नर पूरी तरीके से कांग्रेस की एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, उसको निकालने से इनकार करते हैं।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आपसे कुछ क्षणों में वारदात लेकर हमारे साथी शम्स होंगे आपके साथ। आप देखते रहिए आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
2: बच्चों के लिए अलग टीवी रूम बना सकते हैं।
3: कैसे लगा आप दोनों को अपना ड्रीम होम?
4: आई लव इट, एब्सोल्युटली अमेजिंग। तुम एक काम करो, तुम मिठाई ऑर्डर कर लो।
5: मिठाई से पहले कुछ और हो जाए
4: क्या?
5: इनकी राय।
6: नई सोच की नींव में हम, हर नई उम्मीद में हम, गैलेंट निर्माण का रियल हीरो।
7: विपक्ष ने इस मार्च को लोकतंत्र बचाओ मार्च नाम दिया। आवाज उठी चुनाव आयोग के खिलाफ, लेकिन अब सियासत शिव की बारात बनाम हुड़दंगियों की जमात वाली होने लगी है। एक दिन पहले राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक के नेता मार्च निकालते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। SIR और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ये बड़ा मोर्चा था। उस मार्च से पहले ही राहुल ने ऐसा बयान दिया जो विरोधियों को पलटवार का मौका दे गया। राहुल ने इंडिया गठबंधन के मार्च को शिव की बारात बताया तो शिवराज ने इसे अराजक हुड़दंगियों की जमात करार दिया।
8: मेरी सिस्टर कहती है मुझे कि प्लान करना चाहिए, तो मैंने सिस्टर से कहा तुम बात समझ नहीं रही हो, ये तांडव है, ये शिव का डांस है, इसमें कोई प्लानिंग नहीं होती। आज हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, कल कुछ और होगा, आइडिया वो ऊपर लिखा हुआ है, प्लान की कोई जरूरत नहीं है। ये डांस चल रहा है, ये शिव जी का डांस चल रहा है, इसमें शिव की बारात में कोई भी आ सकता है। जिस मैंने बोला गो बैक, देखिए ये शिव की बारात है, इसमें किसी को भी आना आ सकता है, कोई भी जीव आ सकता है, हम रोकेंगे नहीं।
9: इसलिए मैं बड़ी तकलीफ के साथ ही कह रहा हूं कि कांग्रेस अब देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ हाथ मिला रही है। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व पूरी तरह दिशाहीन है। अभी कह रहे थे कांग्रेस तो शिवजी की बारात है, ये राम का विरोध करने वाले शिवजी की बारात की बात कर रहे हैं, ये शिवजी की बारात नहीं है। अराजकता फैलाने वाले हुड़दंगियों की जमात है जो सड़कों पे अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही है।
7: बीजेपी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर अराजकता फैलाने के गंभीर आरोप लगाए हैं, तो विपक्ष ऐसे आरोपों से बेपरवाह है। सोमवार को ही विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दे दी जिसमें आयोग को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
10: मैं पहले से ये कहता आ रहा हूँ कि राहुल गांधी भले ही संविधान दिखा रहे हैं, लेकिन उनका प्लान, उनकी मोडस ऑपरेंडी दूसरी है। संविधान सामने करके जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको बदनाम करना, उनके बारे में लोगों के मन में प्रश्न तैयार करना, लोगों का विश्वास संवैधानिक संस्थाओं से उड़ जाए, इस प्रकार की व्यवस्था तैयार करना, इस व्यवस्था को तैयार करके अराजकता यानी एनार्की और फिर एनार्की लाकर लोगों के मन में यह भावना तैयार करना कि संविधान में तैयार की हुई डेमोक्रेटिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था हमको न्याय नहीं दे सकती, और फिर ये सारी व्यवस्था को जो साम्यवादी व्यवस्था है, कम्युनिस्ट व्यवस्था है, उस व्यवस्था की ओर ले जाना, इस प्रकार का डिजाइन ये राहुल गांधी ने तैयार किया है।
3: दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं।
11: पहले भरपेट भोजन, बाद में आंदोलन। डोंट ट्विस्ट।
3: क्या हुआ?
11: डोंट ट्विस्ट लप से।
3: हर आदमी में
11: होते हैं 10-20 आदमी, जब भी देखियो गौर से देखियो।
12: कितना घटिया था यार।
11: लप लप लप।

राहुल गांधी को अमित शाह का जवाब, कहा एसआईआर के बहाने घुसपैठिए बचा रहे हैं राहुल, 2029 में भी करारी हार के लिए रहे तैयार, देश की जनता को मोदी पर भरोसा। इंडिया गठबंधन की चाय पर चर्चा के बाद बोले राहुल, शाह ज्ञानेश को नहीं छोड़ेंगे, लोकतंत्र को बचाना उद्देश्य, खड़गे तेजस्वी संजय राउत ने सीईसी पर किया तीखा वार। दिल्ली में कांग्रेस ऑफिस के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, यौन उत्पीड़न में जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर और कांग्रेस के सांसद के खिलाफ हल्ला बोल, राष्ट्रपति से गुहार। एल मुरुगन ने पीएम को लिखी चिट्ठी, केंद्रीय मंत्रिमंडल छोड़ने की मांगी अनुमति, कहा तमिलनाडु में करूंगा काम, संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू से मिले। और यमन के हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब को दी चेतावनी, कहा सेना पर किसी भी हमले का रियाद को मिलेगा जवाब, भारतीय नागरिकों को विदेश मंत्रालय ने सतर्क रहने को कहा।

नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। लखनऊ में 29 साल के एक नौजवान की अपने ही घर की चौथी मंजिल से गिरकर मौत हो जाती है। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब वो चौथी मंजिल से गिरा तब उसके जिस्म पर सिर्फ एक अंडरवेयर था। उसका पूरा चेहरा लिपस्टिक से रंगा हुआ था और शरीर पर जगह जगह सिगरेट से जलाए जाने के दाग थे। अब सवाल ये है कि क्या ऐसी हालत में वो नीचे कूद सकता था, और उससे भी बड़ा सवाल ये कि अगर वो खुद नहीं कूदा तो क्या उसे किसी ने धक्का दिया।

0: सबसे पहले एक अपार्टमेंट के सीसीटीवी कैमरे में कैद एक शख्स के ऊपर से नीचे गिरने की ये धुंधली सी तस्वीर। यूं चौथी मंजिल से नीचे गिरने से नौजवान कारोबारी की मौत और फिर उस मौत से जुड़ता एक मॉडल और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर का कनेक्शन। लखनऊ के एक कारोबारी की इस डेथ मिस्ट्री ने फिलहाल यूपी पुलिस को चक्कर घेरने में डाल रखा है। इस कहानी की शुरुआत होती है 9 अक्टूबर की शाम से। सीसीटीवी की ये दोनों तस्वीरें उसी वक्त की हैं। पहली तस्वीर थोड़ी धुंधली है लेकिन इस केस की यही सबसे अहम तस्वीर है। तस्वीर में कोई चीज एक फ्लैट से नीचे गिरती हुई दिखाई देती है जबकि दूसरी तस्वीर में कुछ लोग बड़ी तेजी से एक इमारत की सीढ़ियों से नीचे भागते हुए नजर आते हैं। ये दोनों तस्वीरें लखनऊ के हजरतगंज की अवध ग्रीन अपार्टमेंट की हैं। इस तस्वीर में शुरू में तो सब कुछ सामान्य नजर आता है लेकिन फिर फ्रेम के बिल्कुल आखिरी छोर पर अचानक से जैसे ही कोई चीज नीचे गिरती है वहां मौजूद लोगों के कदम ठिठक जाते हैं। देखते ही देखते पूरी सोसाइटी में चीख पुकार मच जाती है और लोग भागते हुए उस जगह की तरफ बढ़ते हैं जहां अभी अभी कोई चीज गिरी है। असल में ऊपर से नीचे गिरने वाली ये कोई बेजान चीज नहीं बल्कि लखनऊ का नौजवान कारोबारी शिवा शर्मा है जो एक फ्लैट की चौथी मंजिल से नीचे आ गिरा है। फोर्थ फ्लोर से नीचे गिरने की वजह से शिवा शर्मा की मौत हो जाती है और मौत की मुलजिम के तौर पर नाम आता है बेस्ट फेस ऑफ लखनऊ रही ग्लैमरस मॉडल श्रद्धा दुबे का। वही श्रद्धा दुबे जिसे लखनऊ में सोशल मीडिया से लेकर फैशन की दुनिया तक हर कोई जानता है और अकेले जिसके इंस्टाग्राम पर करीब 1.5 लाख फॉलोअर हैं। लेकिन महज 28 साल के करोड़पति कारोबारी शिवा की मौत से आखिर श्रद्धा दुबे का क्या कनेक्शन? क्या शिवा की मौत कोई हादसा है, सुसाइड है या फिर सोची समझी साजिश के तहत किया गया एक कत्ल? तो इस कहानी को समझने के लिए पीछे लौटना जरूरी है। रायबरेली की रहने वाली श्रद्धा दुबे पिछले कई सालों से लखनऊ में रहकर फैशन मॉडलिंग और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का काम कर रही है। श्रद्धा शादीशुदा है और उसे एक बेटा भी है मगर तलाक के बाद वो अकेली रहती है और बेटा अपने पिता के साथ। सूत्रों की माने तो करीब 4 महीने पहले उसकी मुलाकात लखनऊ में ही कैफे चलाने वाले कारोबारी शिवा शर्मा से होती है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इसके बाद से शिवा श्रद्धा के साथ इसी अपार्टमेंट में लिव इन में रहने लगता है लेकिन दोनों के रिश्ते का अंजाम 9 अक्टूबर की शाम को तब खौफनाक तरीके से सामने आता है जब शिवा अचानक चौथी मंजिल से नीचे गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। ऊपर से नीचे गिरने के बाद उसे श्रद्धा के ही कुछ करीबी लोग अस्पताल लेकर जाते हैं और श्रद्धा की बहन शिवा के घर वालों को खबर देती है मगर शिवा की जान नहीं बचाई जा सकती।
1: 8:30 बजे के आसपास मुझे रश्मि दुबे नाम की एक लड़की का कॉल आया कि शिवा शर्मा का एक्सीडेंट हो गया है और मैं हजरतगंज से राम मनोहर हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। जब हम लोग वहाँ पहुंचे तो वहाँ पता चला कि मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में लेके जाया गया है। जब मैं मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी पे पहुंची तो एम्बुलेंस के पास श्रद्धा दुबे नाम की लड़की का ड्राइवर सौरभ कश्यप खड़ा था और जो कि मुझे देखते साथ ही वहां से छोड़कर भाग गया। जब मैंने ड्राइवर से पूछने की कोशिश की तो ड्राइवर ने बताया कि मैं 3 घंटे से पहले राम मनोहर लोहिया और फिर यहां लेके आया हूं और इससे ज्यादा मुझे नहीं पता। तो जब एडमिट कराने के लिए अंदर लेके मैं गई तो डॉक्टर ने बताया कि डेथ हो चुकी है।
0: इस कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब डॉक्टर और पुलिस शिवा के शव का मुआयना करते हैं। सूत्रों की माने तो जब शिवा चौथी मंजिल से नीचे गिरा तब उसके शरीर पर सिवाय एक अंडरवियर के और कोई भी कपड़ा नहीं था। उसके चेहरे पर लिपस्टिक के जबकि जिस्म में जगह जगह मारपीट के और सिगरेट से दागे जाने के निशान मौजूद थे। ऐसे में शक है कि शिवा अपने आप या किसी एक्सीडेंट की वजह से नीचे नहीं गिरा बल्कि उसे ऊपर से गिराकर मार डाला गया। कम से कम शिवा की मां का तो कुछ ऐसा ही कहना है। उन्होंने इस सिलसिले में श्रद्धा और उसके करीबियों के खिलाफ अपने बेटे के कत्ल की एफआईआर दर्ज करवाई है।
1: मेरे बेटे के बदन पे काफी सारे मारपीट के निशान, कान से ब्लड, दोनों आंखें टूटी हुई थी, कान से काफी खून था, नाक थी, जबड़ा टूटा हुआ था, पूरे बदन पे सिगरेट से जलाने के निशान थे, पैर टूटा हुआ था, रिप्स टूटी हुई थी, रिप्स के पास काफी खरोंचों के निशान और चीजें थी।
2: लखनऊ के ही बालू अड्डे क्षेत्र में ग्रीन अपार्टमेंट है, जहां पर चौथी फ्लोर से एक शख्स की मौत हो जाती है गिरकर, ऐसा प्रथम दृश्यता प्रतीत होता है। लेकिन जब वहां पर लोग पहुंचते हैं आसपास बॉडी के, तो सिर्फ एक अंडरगारमेंट के साथ उसकी बॉडी पाई जाती है और बॉडी पर लिपस्टिक के निशान होते हैं, जिसको लेकर चौथी फ्लोर पर जब पता किया जाता है तो वहां पर श्रद्धा दुबे, जो बताया गया है कि गर्लफ्रेंड थी शिवा की, वहां पर साथ में लिव इन में रहता था। अब इस पूरे मामले पर अगर तफ्तीश करेंगे और जाते हैं तो पुलिस मामले की जांच करती है। शुरुआती जांच में सबसे बड़ा जो मील का पत्थर साबित होता है वो इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट होता है, यानी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ आता है कि उसके ऊपर 10-10 एंटीमार्टम चोट्स हैं, यानी कि ये एंटीमार्टम चोट्स मृतक की मरने से पहले उसको पीटा गया, ऐसा अब आरोप लगा। और साथ ही साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस बात का भी खुलासा कर दिया।
0: अब सवाल यह है कि अगर शिवा श्रद्धा के साथ लिव इन में रह रहा था और दोनों में अच्छे संबंध थे, तो फिर उसका कत्ल क्यों हुआ? क्यों वो श्रद्धा के फ्लैट की चौथी मंजिल से नीचे आ गिरा और कैसे उसके जिस्म पर मरने से पहले चोट के निशान आए? तो इसका जवाब शिवा की मां ने दिया। उनका कहना है कि श्रद्धा जब से शिवा की जिंदगी में आई थी, तब से उसे लगातार ब्लैकमेल कर पैसों की वसूली में लगी थी, वो उसके साथ मारपीट करती थी। कुछ इसी इरादे से उसने इस बार शिवा पर जुल्म ढाए और आखिरकार उसका कत्ल कर दिया।
1: ये श्रद्धा दुबे पिछले 4 महीने से मेरे बेटे को परेशान कर रही थी, बार बार टॉर्चर करती थी, मारती पीटती थी, धमकी देती थी कि इल्जाम लगा देंगी, बदनाम कर देंगी, और इस तरीके से कई बार ये मेरी दुकान पे भी आसपास घूमती नजर आई। ये मेरी रेकी करवा रही थी दुकान पे, ये मेरे आई लगभग 6-7 दिन पहले, और इन्होंने कहा कि बेटा अपना मुझे दे दीजिए, अदरवाइज मैं क्या अंजाम करूंगी, और ये आप सोच नहीं सकती हैं। बार बार पिछले 4-5 महीनों से ये इतना परेशान उस लड़के को कर रही थी, और ना जाने की स्थिति में ये घर तक आ जाती थी, घर के बाहर मेरे रेकी करवाती थी, इस तरह से ये सब कुछ करवा रही थी।
0: वैसे मौत के इस मामले में फिलहाल कई सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। मसलन 9 अक्टूबर की शाम को अवध ग्रीन अपार्टमेंट के उस फ्लैट में आखिर क्या हुआ? शिवा ने ऊपर से कूदकर खुदकुशी की या फिर उसे धकेला गया? आखिर ऊपर से नीचे गिरने के दौरान उसके जिस्म पर सिवाय अंडरवियर के बाकी कपड़े क्यों नहीं थे? अगर उसके साथ मारपीट ही हो रही थी तो फिर उसके चेहरे पर लिपस्टिक के निशान कैसे आए? जिस तरह शिवा के शरीर पर मारपीट और सिगरेट से दागे जाने के निशान मिले हैं, उससे लगता है कि उसे टॉर्चर किया जा रहा था। अगर ऐसा है तो इसमें कौन कौन लोग शामिल थे? आखिर हजरतगंज के उस फ्लैट में चल क्या रहा था? वहां से मिली शक्तिवर्धक दवाओं और टॉयज का आखिर क्या रहस्य है?
2: लखनऊ में जिस तरीके से कारोबारी शिवा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में बिल्डिंग से गिरकर मौत हुई, ऐसे में श्रद्धा दुबे जो मॉडल है, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं एक बड़ी अभिनेत्री भी मानती है, संदिग्ध पूरी तरीके से घेरे में है। सबसे बड़ी बात है कि जब कारोबारी शिवा शर्मा चौथी मंजिल से गिरता है, उस दौरान वो पूरी तरीके से बिना कपड़ों के होता है। यही नहीं, साथ ही साथ उसके चेहरे पर लिपस्टिक के निशान भी होते हैं, और पुलिस को जांच के दौरान कई ऐसी सेक्सवर्धक दवाएं जो हैं वो फ्लैट से मिलती हैं। अब इस पूरे मामले पर चूंकि इंस्टाग्राम पर इन्फ्लुएंसर होने के नाते वह लगातार लोगों से संपर्क में भी थी, फिर चाहे वो बड़े अधिकारी हों, नेता हों, क्रिकेटर हों, सभी से श्रद्धा दुबे का संपर्क था। अब इस पूरे मामले पर पुलिस की तफ्तीश लगातार आगे बढ़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके तार बड़ी जगह जुड़े नजर आते हैं।
0: वैसे इस वारदात के बाद से ही श्रद्धा दुबे अपने घर से गायब है। पहले उसकी लोकेशन लखनऊ में ही थी, फिर बताया गया कि वो कहीं दिल्ली में छुपी है, लेकिन अब पुलिस सूत्रों ने दावा किया है कि वो अपने कुछ साथियों के साथ बहराइच के रास्ते नेपाल चली गई है। पुलिस ने उसकी तलाश में लखनऊ में कई ठिकानों पर दबिश दी, और खासकर उन लोगों से पूछताछ की इस वारदात के दौरान या उसके बाद श्रद्धा जिनके संपर्क में थी।
2: श्रद्धा दुबे पर, उसके ड्राइवर, वकील पर और एक अन्य साथी पर मुकदमा दर्ज हो गया। साथ ही साथ उसकी जो बहन है वो भी संदिग्ध के घेरे में आई श्रद्धा दुबे की। अगर श्रद्धा दुबे की बात करें तो वो इंस्टाग्राम पर उसके लाखों फॉलोवर्स हैं। बताया गया उसका संबंध कई ब्यूरोक्रेट से है, कई नेताओं से है, कई क्रिकेट की हस्तियों से है उसका संबंध। कई फोटोज और वीडियोज ऐसे सामने आए जिसमें श्रद्धा दुबे को देखा गया। शिवा को किस तरीके से वह अपने साथ रखे थी ये भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि शिवा कारोबारी था, उसका रेस्टोरेंट था, उसका होटल था, अलीगंज लखनऊ में रहता था एक बहन और अपनी माँ के साथ में। लेकिन ग्रीन अपार्टमेंट जो बालू अड्डे पर है वहाँ पर वो चौथी फ्लोर पर लिव इन में रहता था ऐसा बताया गया। अलीगंज का शिवा लगातार संपर्क में था। कई चैट सामने आई है जिसमें श्रद्धा दुबे ने साफ किया है कि वह कह रही कि जैसा मेरे साथ हुआ है वैसा मैं तुम्हारे साथ करूंगी। मामला यहीं पर ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि श्रद्धा के बारे में बात करें तो सोशल मीडिया पर कई तरीके के लोगों के साथ पोस्टों, कई लोगों के साथ फोटो, पोस्टर और अन्य चीज़ें मिली हैं।
0: जाहिर है फिलहाल इस कहानी में सारे सवालों के जवाब श्रद्धा दुबे पर ही जाकर टिक गए हैं। जिस तरह से वो इस वारदात के बाद से ही फरार हो चुकी है, उसने मामले के रहस्य को और गहरा कर दिया है। आखिर श्रद्धा और शिवा के बीच ऐसा क्या चल रहा था जिसका अंजाम शिवा की चौथी मंजिल से नीचे गिरने से हुई मौत की सूरत में सामने आया, यही लाख टके का सवाल है। अंकित मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
3: हालांकि शिवा शर्मा की भी अपनी कहानी है। उस पर एक वक्त में यूपी पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था। वो पकड़ा गया और फिर जेल गया, लेकिन जेल से जमानत पर बाहर आ गया। हालांकि बाहर आने के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। शिवा के घर वालों का इल्जाम है कि श्रद्धा उसे वापस जेल भिजवाने के नाम पर पिछले कई दिनों से ब्लैकमेल कर रही थी।
0: लखनऊ के नौजवान कारोबारी शिवा शर्मा की मौत की मिस्ट्री काफी उलझी हुई है। शिवा की मौत बेशक उसकी मॉडल गर्लफ्रेंड श्रद्धा दुबे के फ्लैट में हुई हो, लेकिन ये भी सही है कि शिवा कुछ सालों से लगातार गुंडे बदमाशों के निशाने पर था और लोग उसे वसूली के लिए धमका रहे थे। लखनऊ के एक हिस्ट्री शीटर के साथ तो कई बार उसका आमना सामना हुआ और हिस्ट्री शीटर ने उसे जान से मारने की धमकी दी। शिवा की मां रंजना शर्मा ने हिस्ट्री शीटर ऋषभ राय के खिलाफ इस सिलसिले में केस भी दर्ज करवाया था। हालांकि ये भी सही है कि खुद शिवा पर भी फायरिंग करने और धमकी देने का इल्जाम था और वो जेल भी गया था। शिवा के बारे में आपको और जानकारी दें उससे पहले आइए आपको एक ऑडियो सुनाते हैं जिसमें हिस्ट्री शीटर ऋषभ राय शिवा को धमकी देता सुनाई दे रहा है।
4: हेलो,
5: हेलो
4: हेलो
5: भाई, नमस्कार।
4: नमस्कार भाई, कौन?
5: भाई ऋषभ बोल रहे हैं।
4: हाँ भाई बताओ।
5: भाई पहचान रहे?
4: हाँ यार पहचानेंगे कि नहीं?
5: नहीं नहीं पहचानेंगे भाई आप, तब जब हम आपको के साथ कुछ करवाएंगे तभी आप पहचानेंगे, ऐसे आप कहाँ पहचानेंगे? क्यों, क्या समझ रहे हैं?
4: हैं?
5: कुछ करवाएंगे आपके, जैसे बाल बहुत बड़े होंगे टकला अकला करवा दें आपको तब आप मानेंगे कि ऋषभ बोल रहे, कौन बोल रहे, तब आप पहचानेंगे, ऐसे कहाँ पहचानेंगे? क्यों क्यों भाई?
4: भाई सही बात है।
5: सही नहीं, तुम गलत फहमी में हो शिवा, समझे? तुम्हारी गलत तुम्हारी इतनी अच्छी गलत फहमी मैं दूर करूंगा कि तुमने सोचा नहीं होगा और तुमको लिख लो, बस तुम थोड़ा सा हाथ में नहीं आ रहे हो ना, हम भी अभी बाहर आ पा रहे हैं, बात समझ रहे हो? और बहुत जल्दी गलत फहमी तुम्हारी दूर करेंगे हम, ठीक?
4: किसी से अगर दूर होना उसको कुछ वो होता है, ठीक है भाई, तो वो चीज
5: वो हम तुमको बताएंगे वो क्या होता है नहीं होता है, वो हम तुमको बता, अभी फोन पे तुमको हम ज्यादा बताना सही नहीं, हम लोग कुछ करेंगे तभी समझ में आएगा, इसे तुम्हारी समझ में नहीं आएगा।
0: तो सुना आपने, इस ऑडियो के हिसाब से ऋषभ शिवा को जेल में बैठे बैठे फोन पर रंगदारी वसूली के लिए धमका रहा है। पिछले साल 11 अगस्त को लखनऊ के किसान बाजार में शिवा जब एक कैफे में बैठा था तब इसी ऋषभ ने अपने गुंडों के साथ वहां धावा बोला था और उसने शिवा के साथ मारपीट की थी, उसे पिस्टल निकाल कर धमकाया भी था। इसके बाद लखनऊ के ही गोमती नगर के एक क्लब में फायरिंग की वारदात में शिवा का नाम मुलजिम के तौर पर सामने आया। इस कांड के बाद शिवा फरार हो गया और उस पर पुलिस ने बाकायदा 50,000 रुपए का इनाम भी रखा। उसे बाद में एसटीएफ ने 13 अक्टूबर 2025 को बिहार से गिरफ्तार किया। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या शिवा की मौत के पीछे इन गैंगस्टर्स और उनकी धमकियों का भी कोई कनेक्शन है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन धमकीबाज गैंगस्टर्स के साथ श्रद्धा दुबे का भी कोई कनेक्शन था और उसी ने शिवा को हनी ट्रैप कर एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया और उससे वसूली की कोशिश करने लगी? शिवा की मां ने कुछ ऐसे ही इल्जाम लगाए।
2: अब इस पूरे मामले पर अगर बात करें तो यह हाई प्रोफाइल केस किस तरीके से श्रद्धा दुबे के आसपास घूम रहा है, क्योंकि क्या वजह है चौथी फ्लोर से शिवा की गिरने की, क्या वजह है कि वो नीचे गिरता है और उसकी मौत हो जाती है, क्यों उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे, ये कई अहम सवाल हैं। साथ ही साथ सवाल ये भी है कि कैसे श्रद्धा दुबे के साथ जब वो रहता है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किस तरीके की वो चोटें हैं जो मरने से पहले लगी। साथ ही साथ उसकी जो पसलियाँ थी वो टूटकर अंदर घुस जाती हैं, ये तक पोस्टमार्टम में आया है। अब ऐसे में कई सवाल खड़े किए हैं शिवा की यानी मृतक शिवा की बहन ने और उनकी माँ ने। इस पूरे मसले पर लगातार पुलिस की जांच चालू है, कई टीमें अलग अलग दिशा में छानबीन कर रही हैं और जानकारी कर रही हैं कि आखिर कौन कौन लोग इसमें शामिल हुए हैं। शिवा की माँ ने ये भी अंदेशा जताया है कि शिवा का किडनैप किया गया था और उसके बाद हनी ट्रैप में उसको फंसाया गया था और कई लग्जरी गाड़ियाँ, फ्लैट और बहुत सारे पैसे शिवा से लिए गए। यानी कि क्या इसके पीछे कोई हनी ट्रैप जैसा बड़ा गैंग काम कर रहा है या इसके पीछे श्रद्धा और शिवा के बीच की कोई ऐसी कड़ी है जिसको पुलिस अभी पहचानने में काफी दूर है।
0: श्रद्धा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थी और वो अक्सर ग्लैमरस रील्स बनाया करती थी। पुलिस को शक है कि श्रद्धा अपनी इन्हीं अदाओं से शिवा को अपने करीब लाने में कामयाब हुई, लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि उसने शिवा की जान ली। अंकित मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
3: तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
6: राजस्थान की सियासत का सबसे बड़ा मंच, जहां होगी युवाओं के मन की बात और मिलेगा युवाओं के हर सवाल का जवाब। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के साथ देखिए पंचायत राजस्थान 15 अक्टूबर दिन भर सिर्फ आज तक पर।

जम्मू में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें और रिहायशी इलाके पानी में डूबे नजर आए। आरएसपुरा के धान के खेतों में बारिश से फसल को नुकसान पहुंचा है। कटाई से पहले फसल बर्बाद होने से किसान परेशान हैं और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। पंजाब के फाजिल्का में अनाज मंडी में पानी भरने से धान की फसल भीग गई। पानी के बीच अपनी उपज बचाने के लिए किसान मशक्कत करते नजर आए। दिल्ली के किशनगढ़ में रामलीला मैदान में पानी भरने से मंच और कलाकारों का सामान भीग गया। वहीं नोएडा के सेक्टर 95 अंडरपास में पानी में फंसी कार से लोगों को शीशा तोड़कर बाहर निकलना पड़ा। सभी लोग सुरक्षित बताए गए। हिमाचल में बारिश के बाद मौसम साफ होने के साथ तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पहाड़ी इलाकों में ठंड बढ़ने लगी है। बारिश ने किसानों की फसल से लेकर शहरों की व्यवस्थाओं तक को प्रभावित किया है। अब नजरें राहत, मुआवजे और जल निकासी के इंतजामों पर हैं। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: पहाड़ी इलाका, आस्था का स्थल और उस पर कुदरत की बिखरती हुई सुंदरता, ये तीनों जब आपस में मिल जाएं तो नजारे ही अद्भुत हो जाते हैं। ऐसी ही कुछ तस्वीरें आई हैं सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब से, जहां मौसम ने अचानक करवट ली और शुरू हो गई शानदार बर्फबारी, जिसने पूरे नजारे को बेहद खूबसूरत बना दिया। देखते ही देखते हेमकुंड साहिब और आसपास का पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। जहां तक नजरें जा रही हैं, वहां तक बस बर्फी बर्फ बिखरी पड़ी है। बर्फबारी होने की वजह से इलाके का तापमान भी कम हो गया है। हेमकुंड साहिब में करीब आधा फीट तक बर्फ जम चुकी है, लेकिन मौसम की ये करवट श्रद्धालुओं के कदम नहीं रोक पा रही। कड़ाके की ठंड के बीच श्रद्धालु मत्था टेकने हेमकुंड साहिब पहुंच रहे हैं। चमोली के निचले इलाकों में बारिश की फुहारे हैं और ऊंचाई पर पहुंचते ही यही बारिश बर्फ के फाहों में बदल रही है। बद्रीनाथ धाम के आसपास के ऊंचे इलाकों में भी बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। हिमालय की चोटियां धीरे धीरे सफेद रंग में रंगने लगी हैं। रुक करते हैं बद्रीनाथ का। यहाँ के संतो पंथ मार्ग चक्र तीर्थ में इस सीजन की पहली बर्फबारी ने इलाके की सुंदरता बढ़ा दी है और मौसम का ये बदलता अंदाज बेहद खूबसूरत भी नजर आ रहा है। हेमकुंड साहिब में बर्फ जम रही है, बद्रीनाथ के पहाड़ सफेद हो रहे हैं और संतो पंथ के रास्ते पर सर्दियों की पहली दस्तक दिखाई दे रही है। मौसम बदल जरूर रहा है, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं दिख रही है, बल्कि कुदरत का ये खूबसूरत नजारा हर किसी को अपनी ओर खींच रहा है। दार्जिलिंग से लेकर सिक्किम तक मौसम की मेहरबानी देखने को मिल रही है। यहाँ के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश हो रही है। सिक्किम में पिछले दो दिनों से बारिश जारी है, जिससे मौसम कूल कूल बना हुआ है। उधर श्रीनगर के पास मुगल रोड की पीर की गली में भी हल्की बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद तापमान सिंगल डिजिट में पहुंच गया है। बदलते हुए मौसम के मिजाज का असर उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर सिक्किम तक दिख रहा है। कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी हो रही है। पहाड़ों की चोटियां सफेद चादर से ढकने लगी हैं और अभी से ही जाड़े के मौसम का एहसास होने लगा है। चमोली से कमल लेंसलोडी, दार्जिलिंग से कई संसारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: अक्टूबर में ही पहाड़ों पर सर्दी ने दस्तक दे दी है। हिमाचल लद्दाख सीमा पर शिंकुला टॉप में भारी बर्फबारी से 40 से ज्यादा गाड़ियां और करीब 25 बाइक सवार फंस गए। बर्फबारी से सड़क पर फिसलन बढ़ी और कई बाइक सवार गिर पड़े। केलोंग पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाला। कुल्लू और मनाली में बारिश से ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने 15 अक्टूबर तक हिमाचल के ज्यादातर इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया है। जम्मू में बेमौसम बारिश से कई इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। मेरठ में अचानक बारिश के साथ ओले गिरे, दोपहर में ही अंधेरा छा गया। करनाल में तेज बारिश से धान की फसल भीग गई, इससे किसानों को नुकसान की आशंका है। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानों में बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। अक्टूबर में ही सर्दी के तेवर दिखने लगे। कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा, जम्मू से मीर फरीद और मेरठ से उस्मान चौधरी के साथ कमलजीत करनाल आज तक। ये तबाही की तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें डराती हैं, खौफ पैदा करती हैं। नेपाल पर एक बार फिर कुदरत का कहर बना। ये तस्वीरें नेपाल के गोरखा जिले की हैं, जहां बूढ़ी गंडकी नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया। अचानक बढ़े पानी के बहाव ने नदी किनारे बसे इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते मकान बह गए और कई पुल तबाह हो गए। जिन घरों में कभी खुशियां बसती थी, वो अब पानी में समा चुके हैं। गोरखा के चुमनुबरी और धारचे इलाकों में बाढ़ का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है। सैलाब का कहर सिर्फ मकानों तक सीमित नहीं रहा, लोगों को जोड़ने वाले पुल भी पानी के तेज बहाव में बह गए। जानकारी के मुताबिक कुल 6 पुल नष्ट हुए हैं, जिनमें 2 मोटर योग्य और 4 सस्पेंशन ब्रिज शामिल हैं। अरुघाट, त्रिपुर सुंदरी और सोती मानबू के पुलों के साथ एक बेली ब्रिज भी तबाह हो गया। बूढ़ी गंडकी नदी के उफान से सालेरी, पयुका और जगत के नदी किनारे बसे इलाकों में भी कई मकान बह गए। पुल टूटने से अब प्रभावित इलाकों तक पहुंचना और राहत पहुंचाना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। अधिकारियों के मुताबिक रविवार सुबह करीब 4 बजे जिले के उत्तरी हिस्से में अचानक बाढ़ आई। तेज बहाव और पानी की गर्जना सुनकर चुमलिंग और लोकपा जैसी बस्तियों में रहने वाले लोग और पर्यटक जान बचाने के लिए सुरक्षित जगहों की ओर भागे। पानी का बहाव कभी धीमा पड़ता तो कभी अचानक तेज हो जाता। लोगों को सामान समेटने तक का मौका नहीं मिला और वे अपनी जान बचाने के लिए घर छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। अब प्रशासन ने बूढ़ी गंडकी नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित ऊंचाई वाले स्थानों पर जाने की चेतावनी दी। सबसे बड़ी चुनौती लोगों की जान बचाने और प्रभावित इलाकों तक मदद पहुंचाने की। नेपाल में एक बार फिर पानी का कहर, उजड़ते घर, टूटते पुल और जान बचाकर भागते लोग। कुदरत के इस कहर ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। आज तक ब्यूरो।

0: राहुल गांधी को अमित शाह का जवाब, एसआईआर के बहाने घुसपैठियों को बचा रहे हैं राहुल, 2029 में करारी हार के लिए तैयार रहें, देश की जनता को मोदी पर भरोसा। इंडिया गठबंधन की चाय पर चर्चा के बाद बोले राहुल, शाह ज्ञानेश को नहीं छोड़ेंगे, लोकतंत्र को बचाना उद्देश्य, खड़गे तेजस्वी राउत ने ज्ञानेश पर किया तीखा वार। दिल्ली में कांग्रेस ऑफिस के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, यौन उत्पीड़न में जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर कांग्रेस सांसद के खिलाफ हल्ला बोल, राष्ट्रपति से मिली। एल मुरुगन ने पीएम को लिखी चिट्ठी, मंत्रिमंडल छोड़ने की मानी अनुमति, कहा तमिलनाडु में करूंगा काम, रिजिजू से मिले। और बिहार के हाजीपुर में नाव पलटने से 11 लोगों की मौत, सम्राट चौधरी ने दुख व्यक्त किया, 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
0: दिल्ली के जंतर मंतर प्रोटेस्ट मामले में एफआईआर, सौरभ दास, आशुतोष समेत केस, जेडीयू ऑफिस में घुसने की शिकायत पर आरोप। संजय राउत का ज्ञानेश कुमार पर हमला, बोले माफियाएं पूरे सिस्टम का अपराधीकरण कर दिया, एसआईआर के खिलाफ इंडिया ब्लॉक का आंदोलन जारी। सुप्रिया सुले का ऐलान, इंडिया गठबंधन पूरी शक्ति से एकजुट, संविधान जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए, दिल्ली से गांव गांव तक आंदोलन। मुंबई प्रदर्शन में हिरासत के मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा बयान, कहा ब्लैंकेट ऑर्डर नहीं दे सकती, पुलिस कार्रवाई के विशिष्ट मामलों पर मांगे सबूत। सुनेत्रा परवार के पैनल का सोमेश्वर चीनी मिल चुनाव में क्लीन स्वीप, 21 सीटों पर जीत, विरोधी खाता भी नहीं खोल पाए। महाराष्ट्र में एफडीए की बड़ी कार्रवाई, संभाजीनगर में 23.5 लाख रुपए का 12,382 किलो संदिग्ध मिलावटी तेल जब्त, भीड़ में 6.5 लाख के खाद्य पदार्थ भी पकड़े गए। मुंबई में डोमिनोज पिज्जा समेत 3 फूड आउटलेट्स के लाइसेंस सस्पेंड, सुरक्षा नियमों का उल्लंघन, वेज नॉनवेज एक ही फ्रिज में रखा मिला। राजकोट में नवरात्र के दौरान क्षत्रिय राजपूत महिलाओं का अनोखा अंदाज, राजवी पैलेस में पारंपरिक तलवार रास का शौर्य। राजवी पैलेस में क्षत्रिय राजपूत महिलाओं ने तलवार रास से बांधा समा, बाइक और जीप चलाते हुए तलवारबाजी का हुनर दिखाया। जामनगर जिला जेल में नवरात्र की धूम, जेल की चार दीवारी के भीतर कैदियों ने माता रानी की आराधना के साथ खेला गरबा। वडोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस में शाही अंदाज में हेरिटेज गरबा, महारानी राधिका राजे, विदेशी राजनयिकों ने किया गरबा। महाराष्ट्र के लातूर में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन स्कूल की छात्र छात्राओं ने अमिताभ को दिया अनोखा तोहफा। बच्चों ने 2400 स्क्वायर फीट इलाके में 5 अलग अलग तरह के 600 किलो फूलों से बनाई अमिताभ की तस्वीर, 84वें जन्मदिन का तोहफा। स्कूली बच्चों, कर्मचारियों, विशेषज्ञ कलाकारों ने 4 दिन के बहाने से तैयार की कलाकृति, कविता को गाते हुए मनाया अमिताभ का बर्थडे। आज खेला जाएगा भारत वेस्ट इंडीज के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का 4था मुकाबला, इतिहास रचने उतरेंगे अर्शदीप, हैदराबाद में बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी, स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की बात की और उस पर अड़ गया। आज राहुल गांधी के घर पर विपक्षी नेताओं ने चाय पर चर्चा की, जहां ज्ञानेश कुमार और मोदी सरकार को घेरने के लिए सरप्राइज प्लान तैयार हुआ। बाद में इंडिया गठबंधन ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया कि विपक्ष जंतर मंतर को प्रोटेस्ट साइट से हटाने को अपना नया हथियार बनाएगा। वहीं आज गृहमंत्री अमित शाह ने एसआईआर के विरोध को राहुल गांधी की घुसपैठिया बचाओ योजना करार दिया है।

0: ज्ञानेश कुमार के खिलाफ क्या है राहुल का सरप्राइज प्लान?
1: और हम चाहते हैं कि आपके लिए और देश के लिए ये माहौल बना रहे, इंटरेस्टिंग रहे और सरप्राइजिंग रहे।
0: 5 दिन विरोध प्रदर्शन, 6ठे दिन इंडिया गठबंधन की चाय पर चर्चा।
2: इंडिया अलायंस की तरफ से हम पूरी ताकत से साथ है, और जो संविधान की हत्या हुई है और संविधान आज इस देश में खतरे में है, इसीलिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी, हम आंदोलन करते रहेंगे। और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान में हम सब भारतीयों को अधिकार दिया है, एक आदमी एक सरकार, उसे कुचलने की बहुत बड़ी भूल कर रही है, और इसके लिए इस खिलाफ, इस अन्याय और अत्याचार के खिलाफ हम पूरी ताकत से साथ है और लड़ते रहेंगे, और आंदोलन जारी रहेगा दिल्ली में लेके गली तक। एनसीपी एसपी और शिवसेना और हम सारे इंडिया अलायंस पूरी ताकत से साथ में रहेंगे और हर भारतीय को उसका अधिकार दे के रहेंगे।
0: जंतर मंतर पर ही विरोध प्रदर्शन, इंडिया गठबंधन की नई कसम।
3: राउत साहब, कैसी रही बैठक आप लोगों की?
4: बहुत ही बढ़िया, आपके भाषा में फ्रूटफुल। आगे वाली जो दिशा है आंदोलन की, उस बारे में चर्चा हुई, और ये जो लड़ाई चल रही है ये रुकेगी नहीं। दिल्ली में, दिल्ली से बाहर स्टेट्स में वो सजेशन है और उसके ऊपर अभी हम प्लानिंग करेंगे।
3: तो अभी त्योहार का सीजन है सर, क्या कुछ अभी एक
4: लोकतंत्र सबसे बड़ा त्योहार होता है, वही खत्म हो रहा है, लेकिन त्योहार है ये भी, उसके बारे में भी हमने ध्यान दिया है,
3: बात हुई है।
4: यस।
3: और सर, क्या कार्पेट बॉम्बिंग, ये जो प्रोटेस्ट साइट है, इसको लेकर राहुल गांधी ने बोला कि हम लोग इसको अपोज करेंगे, जंतर मंतर को
4: करेंगे, हम जंतर मंतर में जाएंगे।
3: अच्छा।
4: हमारी भाषा में घुसेंगे।
3: अच्छा।
4: और जो लोकतंत्र का आत्मा वहाँ है, जो मार देते हैं जंतर मंतर में, हम उसको जिंदा करेंगे।
3: बड़ी बात संजय राउत ये कहते हुए कि जंतर मंतर को जो डी नोटिफाई किया गया है, हम जंतर मंतर जाएंगे, जंतर मंतर घुसेंगे, उनके शब्दों में जो आत्मा है प्रोटेस्ट की उसको एक बार दोबारा जीवंत करेंगे, यानी कि बातों बातों में एक बड़ा संदेश देते हुए संजय राउत।
0: विपक्ष का ज्ञानेश हटाओ मार्च जारी रहेगा, लेकिन सरप्राइज के साथ। 5 दिन तक दिल्ली की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के बाद हर कोई यही सोच रहा था कि क्या राहुल फिर से सरप्राइज देंगे, क्योंकि 12 अक्टूबर को जिस तरह से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस से लेकर इंडिया गठबंधन के दिग्गज नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट तक ज्ञानेश हटाओ मार्च निकाला, उसमें विपक्षी एकता भी दिखी और सड़कों पर कार्यकर्ताओं का हुजूम भी। आज जब राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के नेताओं को चाय पर बुलाया तो सबको लगा कि क्या फिर से ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कोई नया प्लान है, क्योंकि राहुल गांधी ने जो ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को शिव का तांडव और शिव की बारात नाम दिया था।
5: प्लान की कोई जरूरत नहीं है, ये डांस चल रहा है, ये शिव जी का डांस चल रहा है, इसमें शिव की बारात में कोई भी आ सकता है।
0: लेकिन जब राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने चाय पर चर्चा के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो राहुल गांधी ने विपक्ष के ज्ञानेश हटाओ मार्च पर एक और सरप्राइज दे दिया।
1: ये जो हमारी टीम है ये रुकने वाली नहीं है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 3 महीने बाद, 3 महीने बाद नहीं तो 6 महीने बाद, 6 महीने बाद नहीं तो 1 साल, नहीं तो 2 साल, ये रुकने वाली नहीं, ये एंड गोल तक जाएगी।
6: आप संविधान के खिलाफ कितने भी मोर्चे निकालिए, हम बाबा साहब के संविधान को कुछ होने नहीं देंगे, हम उसको इस प्रकार से आपको बिगाड़ने नहीं देंगे। इस प्रकार से संविधान के खिलाफ ये जो गतिविधियां हैं, इसको देश सहन नहीं करेगा, चाहे कुछ हो जाए, ये संविधान और ये लोकतंत्र बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर हम लगाएंगे, ये मैं राहुल गांधी जी को चेतावनी देना चाहूंगा।
0: अभी तक तो राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन वाले वोट चोरी और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एकजुटता और शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे, अब जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के लिए भी एकता और ताकत दिखाने के लिए उतर पड़े हैं।
7: अब डर कर बैठे हैं, पूरा 4 लाख आर्म फोर्सेस यहां लगाकर अंदर बैठे हैं, लेकिन ये जो संघर्ष है राहुल जी के लीडरशिप में वो जारी रहेगा, दिल्ली में रहेगा, स्टेट में रहेगा, हर शहर में रहेगा और हम पूरे लोग यहाँ जो है एक साथ है और एक साथ रहेंगे।
0: लेकिन आज गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया गठबंधन के मार्च को लेकर पहली बार बयान दिया। अमित शाह ने कहा कि 14 पार्टियों के 8000 कार्यकर्ता इकट्ठा करके आप जनता की आवाज नहीं बन सकते। वहीं SIR के विरोध को अमित शाह ने राहुल गांधी की घुसपैठिया बचाओ योजना करार दे दिया।
8: राहुल गांधी जी SIR के बहाने घुसपैठिया बचाने का आपकी जो कार्य योजना है उसको देश की जनता भली भांति समझ चुकी है और अब भारत की जनता आपके झांसे में आने वाली नहीं है। श्री राहुल जी और उनके साथियों को मैं ये भी बताना चाहता हूं कि 29 में प्रचंड हार के लिए फिर से एक बार मन बना लीजिए। 2029 के आम चुनाव में NDA प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर आने वाला है और कांग्रेस की फिर से एक बार लगातार चौथी बार हार होने वाली है।
9: दिल्ली पुलिस ने आज कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के मामले में FIR दर्ज कर ली, जिसमें CJP प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका के साथ कई अन्य लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया। ये लोग JDU ऑफिस के दरवाजे को फांद कर अंदर घुसे थे। पुलिस ने उसी शिकायत के आधार पर ट्रेसपासिंग का केस दर्ज किया। ये लोग जंतर मंतर को प्रोटेस्ट साइट से हटाने का विरोध कर रहे थे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने इन सभी को हिरासत में ले लिया था।
10: CJP ने 10 अक्टूबर को जंतर मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन का ऐलान किया था। तैयारी पूरी थी लेकिन CJP के नेता और समर्थक सुरक्षा चक्रव्यूह को भेदने में नाकाम रहे। 3 दिन बाद CJP के नेता सौरभ दास, आशुतोष रांका और अजिंक्य शिंदे अपने कुछ समर्थकों के साथ पुलिस का घेरा तोड़ने में कामयाब रहे। आप देख सकते हैं CJP के नेताओं ने सुरक्षा में सेंध लगा दी और जंतर मंतर पर नारेबाजी की। इस वीडियो में आपको कुछ सुरक्षा कर्मी भी नजर आएंगे जिन्होंने CJP नेताओं को मौके पर पकड़ लिया। हिरासत में लिए जाने के बाद CJP की तरफ से वीडियो जारी किया गया है।
11: सब लोग हैं यहाँ पे।
12: वोटेज जंतर मंतर हैज बीन ब्रीच्ड। इस्तीफा ज्ञानेश कुमार का जंतर मंतर पर ही होगा, जो उखाड़ने उखाड़ लो।
13: देखिए होम मिनिस्ट्री कौन होती है हमारा जंतर मंतर ले जाने वाली। जंतर मंतर डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट है एंड वी विल गेट द रेजिग्नेशन ऑफ ज्ञानेश कुमार फ्रॉम जंतर मंतर। जंतर मंतर।
10: दरअसल जंतर मंतर पर अब प्रदर्शन नहीं हो सकते। सरकार ने सोमवार को इसे निर्धारित प्रदर्शन स्थल की लिस्ट से हटा दिया था। मतलब जंतर मंतर अब प्रोटेस्ट साइट नहीं है। इसी के विरोध में CJP के नेता सुरक्षा चक्रव्यूह को तोड़कर जंतर मंतर पहुंचे थे।
14: इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर के पीछे जो सर्विस रोड है जिसे जनपथ लेन कहते हैं उस जगह पर। यही वो रोड है जहां से सुबह सौरभ दास, आशुतोष राका अपने सहयोगियों के साथ एंटर किए थे। ये देखिए ये गेट है, ये गेट आमतौर पे खुला रहता है क्योंकि अंदर लोगों के घर है। ये देखिए यहाँ पर RWA जो अंदर जो लोग रहते हैं उन्होंने जो RWA बना रखी है उसका बोर्ड भी लगा है। तो यहाँ अंदर घर है, जनता दल यूनाइटेड का ऑफिस भी है, तो आमतौर पर ये गेट खुला रहता है और लोग यहाँ से आते जाते रहते हैं। लेकिन ये आम रास्ता नहीं है और आगे फिर गेट से ये कवर भी है। तो सुबह के वक्त यहीं से आशुतोष राका, सौरभ दास और उनके सपोर्टर्स एंट्री करते हैं। इस गेट से एंट्री करके वो आगे की तरफ जाते हैं और जंतर मंतर को जोड़ने वाला जो मेन गेट है उसको कवर करते हैं, उसको वो टाप जाते हैं, जैसा उन्होंने खुद वीडियो भी बनाया है। और यहां से जाते हुए आगे जाकर के गेट को फांदते हुए वो सारा वीडियो बनाया है और वहां पर पुलिस मौजूद रहती है, सिक्योरिटी कर्मी मौजूद रहते हैं और सभी को डिटेन कर लिया जाता है। अब इस गेट पर भी देखिए आप, यहां पर आपको केंद्रीय रिजर्व पुलिस के साथ दिल्ली पुलिस तैनात मिलेगी। इस रास्ते पर अब जो लोग यहां पर रहते हैं जिनके अंदर घर है या फिर जो लोग अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके दफ्तर से जुड़े हैं, सिर्फ उन्हें ही इस रास्ते से आने जाने दिया जा रहा है।
10: सुरक्षा एजेंसियों की रणनीति यही है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन पर रोक है, यानी सरकारी ताला लग चुका है, लिहाजा प्रदर्शनकारियों को जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। सीजेपी के संस्थापक ने अपने सहयोगियों के खिलाफ हुए एक्शन को लेकर सवाल उठाए हैं।
15: हमारी टीम आशुतोष राम का, सौरभ दास और अजिंक्य जिसको लीड कर रहे थे, आज वो सुबह जंतर मंतर पर गए और वहां जाकर उन्होंने तिरंगा लहराया। तिरंगा लहराना कब से वॉयलेशन हो गया? जो भी ये सोचता है तिरंगा लहराना जंतर मंतर पर वॉयलेशन है, वो देशद्रोही है। और अगर सौरभ दास, आशुतोष राम का, अजिंक्य शिंदे और इनके साथ जिन लोगों को गिरफ्तार कर किया गया है तिरंगा लहराने के लिए, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि कैसे आप किसी को तिरंगा लहराने के लिए अरेस्ट कर सकते हो? ये कौन सा देश है, ये कौन सा रूल है? हमारे देश में, भारत देश में तिरंगा लहराना कब से वॉयलेशन ऑफ लॉ हो गया? ये तानाशाह मानसिकता का सबसे बड़ा उदाहरण है। तानाशाह को नहीं चाहिए कि कोई जंतर मंतर पर जाकर तिरंगा लहराए, उन्हें लगता है कि पूरा देश उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है।
10: जंतर मंतर को लेकर दिपके ने सरकार को सीधा अल्टीमेटम दिया है। अल्टीमेटम यही है कि एक जंतर मंतर पर रोक लगेगी तो पूरी दिल्ली और देश को जंतर मंतर बना देंगे,
15: पूरा देश जंतर मंतर बनेगा। जंतर मंतर सिर्फ एक लोकेशन नहीं है, जंतर मंतर एक स्पिरिट है रेजिस्टेंस का, और वो स्पिरिट हर किसी के अंदर जिंदा रहेगा।
10: भले ही जंतर मंतर को प्रदर्शन स्थल की लिस्ट से हटा दिया गया है, जंतर मंतर के बदले सरकार ने दिल्ली में ही 3 दूसरे स्थलों की लिस्ट रखी है, रामलीला मैदान, सीबीडी ग्राउंड, बुराड़ी मैदान। मतलब प्रदर्शन करना है तो अब प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर नहीं बल्कि इन इलाकों में जाना होगा। ऐसे में जंतर मंतर पर प्रदर्शन गैर कानूनी है। सीजेपी का
9: मुंबई मेट्रो में बहुत जल्द दोबारा होते हैं उपस्थित। आप देखते रहिए आज तक।

0: गया सोमवार और आ गए
1: चकमक चाचा।
0: हाँ चाचा, अखबार बांच रहे हैं। चल रहा है, भैया के चले गए, दीदी पहुंच गई है, चिचा कब जाएंगे?
2: अरे भैया, दस में हिस्सा दे लेते हैं, ये सब तुम लोग का ऐसा, हम अपना मुद्दा उठा चुके पुराने।
0: अच्छा, कब उठाए?
2: जेपी के टाइम पे मुद्दा उठाए।
0: अच्छा
2: हाँ, तो जहाँ वो मुद्दा जब हम ऐसा रख देते थे तो फिर रख देते थे फिर मुद्दा। ये नहीं तुम लोग तरह इधर आए तो मतलब पुलिस आई इधर भागने लगे, दन दन दन दन कर गया, ऐसा ये सब नहीं था अपना मामला
3: जी।
2: मुद्दा मजबूती से रखते थे।
0: हम तो सुने मुद्दा टूटा भी है।
2: टूटा भी था, सही बात है, जब कभी ऐसे कार्रवाई चलती थी दर्द होता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन फिर बोलता रखे था हाँ, एकदम मुद्दा मजबूती के साथ रखे, सरकार हिला दिया एकदम।
0: अच्छा
2: और क्या
0: आपका मतलब, हम लोग डर जाते हैं?
2: और क्या डर जाते हैं, बिल्कुल, जहाँ पुलिस सिटी नहीं बची उस भागने लगता।
0: बढ़िया, आप डरते नहीं है।

0: आ गया सोमवार और आ गए
1: चकमक चाचा।
0: हाँ चाचा, अखबार भाँच रहे हैं।
2: टेस्ट
0: चल रहा है, भैया के चले गए, दीदी पहुंच गई है, चिचा कब जाएंगे?
2: अरे भैया प्रोटेस्ट में हिस्सा हम ले लेते हैं, ये सब तुम लोग का ऐसा, हम अपना मुद्दा उठा चुके पुराने।
3: अच्छा, कब उठाए?
2: जेपी के टाइम पे मुद्दा उठा है।
3: अच्छा
2: हाँ, तो जहाँ वो मुद्दा जब हम ऐसा रख देते थे तो फिर रख देते थे फिर मुद्दा। ये नहीं तुम लोग इधर आए तो मतलब पुलिस आई इधर भागने लगे दन दन दन दन कर गया, ऐसा ये सब नहीं था अपना मामला
4: जी,
2: मुद्दा मजबूती से रखते थे।
0: हम तो सुने मुद्दा टूटा भी है
2: आपका। सही बात है, जब कभी ऐसे कार्रवाई चलती थी दर्द भीता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन फिर मुद्दा रखे थे एकदम मुद्दा मजबूती के साथ रखे, सरकार हिला दिया एकदम।
3: अच्छा
2: और क्या
3: आपका मतलब, हम लोग डर जाते हैं?
2: और क्या डर जाते हैं, बिल्कुल यहाँ पुलिस सिटी नहीं बची उसमें भागने लगता हूँ।
0: बढ़िया, आप डरते नहीं है, पुलिस आ रही है
2: किधर?
0: चाचा हम खेल गए अब की।

0: दिल्ली के जंतर मंतर पर अब धरना नहीं, रामलीला मैदान में भी प्रदर्शन मुश्किल। अगले ढाई महीने तक बुकिंग फुल और फीस भी लाखों पार। दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर जंतर मंतर अब इतिहास बन गया है, क्योंकि जंतर मंतर को डी नोटिफाई कर दिया गया है, मतलब अब जंतर मंतर प्रदर्शन स्थल नहीं रहा। सरकार ने प्रदर्शन करने के लिए तीन जगह निर्धारित कर दी हैं। ये जगह हैं रामलीला मैदान, सीबीडी ग्राउंड, पुरानी मैदान। अब मसला यह है कि इन तीनों ग्राउंड को प्रदर्शन स्थल तो बना दिया गया, मगर दो मैदानों में कार्यक्रम चल रहा है। रामलीला मैदान और सीबीडी ग्राउंड में भी रामलीला की तैयारी हो रही है। बचा भुराड़ी का मैदान, वहाँ बारिश के बाद फिलहाल कहीं कहीं पानी भरा हुआ है।
1: हम जिस रामलीला मैदान पर हैं, इस समय नवरात्रि के चलते आप देखेंगे कि यहाँ रामलीला का मंचन हो रहा है। इस तरफ स्टेज लगा हुआ है और ठीक इसके पीछे यहाँ पर देखिए सैकड़ों लोगों के बैठने की व्यवस्था है और साथ ही मेला लगा हुआ है। कारोबार मेले का और लोगों के बचपन की यादें ताजा हो जाती है। इस रामलीला मैदान का अपना बहुत इतिहास रहा है। इस रामलीला मैदान ने बहुत सारे आंदोलन देखे हैं, लेकिन अब इसे एक आंदोलन धरना प्रदर्शन स्थल घोषित किए जाने को लेकर के व्यापारी चिंता जता रहे हैं, स्थानीय लोगों में भी नाराजगी है और ऊपर से जंतर मंतर को जिसकी एक अपनी पहचान रही है कि वहां पर धरने प्रदर्शन होते थे जिसकी वजह से सरकार सत्ता तक आवाज पहुंचती थी, उसको लेकर के जो प्रदर्शनकारी हैं, जो सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते आवाज उठाते हैं, वो भी नाराज है।

0: दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं।
1: पहले भरपेट भोजन, बाद में आंदोलन।
2: डोंट ट्विस्ट।
0: क्या हुआ?
2: डोंट ट्विस्ट लप से।
0: हर आदमी में
2: होते हैं 10-20 आदमी, जब भी देखियो गौर से देखियो।
1: कितना घटिया था यार। हाँ।
2: लप लप लप।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: स्वागत एक बार फिर से आपका मुंबई मेट्रो में। अमिताभ बच्चन के 84वें जन्मदिन के अवसर पर महाराष्ट्र के लातूर से एक बेहद विशेष अनोखा तोहफा आया। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन स्कूल के छात्र छात्राओं ने अपने हुनर और मेहनत से अमिताभ की एक भव्य तस्वीर तैयार की। विशेष बात यह रही कि इस तस्वीर को बनाने के लिए 5 अलग अलग तरह के फूलों का इस्तेमाल किया गया। करीब 600 किलो फूलों से 2400 स्क्वायर फीट के इलाके में अमिताभ बच्चन की शानदार तस्वीर उकेरी गई। तैयार की गई इस कलाकृति को बनाने में स्कूली बच्चों, स्कूल के कर्मचारियों और विशेषज्ञ कलाकारों ने लगातार 4 दिन तक मेहनत की।

0: तब जाकर ये तस्वीर तैयार हुई है। मुंबई मेट्रो में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: जिस वक्त सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीप के हिंगोली में अपनी दादी के अंतिम संस्कार में शामिल थे, उस वक्त सीजेपी के बाकी के नेता दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में धरने की परमिशन मांगने पहुंचे थे। उन्होंने पुलिस को अपनी चिट्ठी सौंप दी, लेकिन चिट्ठी सौंपने के बाद जब वो बाहर आए तो प्रशासन को सीधे सीधे 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया।
1: 24 घंटा टाइम ले लीजिए, लेकिन बॉल इज इन योर कोर्ट। आप बताइए किस दिन लोग डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट एट जंतर मंतर आ सकते हैं। फुल कोऑपरेशन के साथ पीसफुल तरीके से लोग गैदर होंगे एंड प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन प्रोटेस्ट तो जरूर होगा।
0: लेकिन अब मसला बदल गया है। सीजेपी जंतर मंत्र पर प्रदर्शन करना चाहती है, लेकिन जंतर मंत्र को डिनोटिफाई कर दिया गया, मतलब अब जंतर मंत्र प्रदर्शन स्थल नहीं रहा, मतलब सीजेपी वाले जंतर मंत्र पर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। अलबत्ता सरकार ने प्रदर्शन करने के लिए 3 जगह निर्धारित कर दी हैं। ये जगह हैं रामलीला मैदान, सीबीडी ग्राउंड और पुराड़ी मैदान। अब मसला ये है कि इन तीनों ग्राउंड को प्रदर्शन स्थल तो बना दिया गया, मगर 2 मैदानों में कार्यक्रम चल रहा है। रामलीला मैदान में रामलीला की तैयारी चल रही है, सीबीडी ग्राउंड में रामलीला की तैयारी हो रही है। बचा बुराड़ी का मैदान, जहां बारिश के बाद फिलहाल कहीं कहीं पानी भरा हुआ है। अब सवाल ये है कि प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कहां करेंगे। आज तक ब्यूरो।
2: साथियों, आप सभी जानते हैं भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। भारत में 100 से ऊपर भाषाएं हैं, करीब 80,000 रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पब्लिकेशंस हैं, 1,000 से ज्यादा सैटेलाइट टीवी चैनल्स हैं, और इतना ही नहीं, सोशल मीडिया के इस दौर में भारत में 500 मिलियन से अधिक यूट्यूब यूजर्स हैं, 500 मिलियन से ज्यादा इंस्टाग्राम यूजर्स हैं। हमारे यहां अलग अलग मुद्दों पर खुलकर बहस होती है, अलग अलग दृष्टिकोण पर जनता चर्चा करती है, और वर्तमान समय में इसमें जिसने एक बड़ी भूमिका निभाई है वो है डिजिटल पावर।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: आप महामहिम राष्ट्रपति जी के पास गए, वहां पर भी आपको कहा गया कि शिकायत के साथ सबूत दीजिए, तो आप बगले झांकने लगे, भाग गए, चुप्पी साध ली। और सुप्रीम कोर्ट ने तो श्रीमान राहुल गांधी जी से साफ साफ कह दिया कि कोर्ट को आप अपनी राजनीति का रणक्षेत्र नहीं बना सकते। इनका फंडा बहुत क्लियर है, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का, राज नहीं तो अराजकता फैला दो।
2: सत्ता में रहते हुए जिन्होंने देश को लगातार लूटा है, वह चोरी की बात कर रहे हैं। बार बार बार बार जिनको जनता ने हराया है, उनको तो आत्मचिंतन करना चाहिए, लेकिन हार हार के इतने कुंठित हो गए हैं कि अब धमकी देने पर उतर आए हैं, अमर्यादित आचरण कर रहे हैं। लोकतंत्र में विरोध की भी मर्यादा होती है, और विशेषकर जब कोई नेता प्रतिपक्ष जैसे पद पर हो, हार की खींच कुंठा में बदल रही है और संतुलन बिगड़ रहा है, हर किसी को धमकियां दी जा रही है।
3: अच्छा, आजकल हमें इंफॉर्मेशन सब जगह से मिल रही है। ज्ञानेश कुमार जी, हम जानते हैं आपकी क्या हालत है, हम जानते हैं कि आप रात को सो नहीं पाते हो, और आप घबराइए मत, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। आप, मैं आपको डायरेक्टली कह रहा हूं, आप बचोगे नहीं एज इलेक्शन कमिश्नर, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो हो रहा है, ये लाखों लोग जो हैं, ये आपके बारे में, आपके बिहेवियर के बारे में सवाल पूछ रहे हैं, और ये रुकेंगे नहीं। रुकेंगे क्यों नहीं? क्योंकि आपके सामने भी लोग हैं, और उन तक पहुंचने के लिए हमें आपको हटाना है।
2: एक के बाद एक चुनाव हारना और उसकी खींच आंदोलन करके सड़क पे निकालना, ये कांग्रेस की नियति बन गई है, और चुनाव की हार का दोष भी कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं पर मढ़ने का पाप करती है। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस के मित्रों से, कांग्रेस की हार का कारण चुनाव आयोग नहीं है, कांग्रेस की हार का कारण स्वयं कांग्रेस का विचार शून्य नेतृत्व है।
4: दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं।
5: पहले भरपेट भोजन, बाद में आंदोलन।
6: डोंट ट्विस्ट।
4: क्या हुआ?
6: डोंट ट्विस्ट लप से।
4: हर आदमी में
6: होते हैं 10-20 आदमी, जब भी देखियो गौर से देखियो।
5: कितना घटिया था यार।
6: लप लप लप।

0: राहुल को अमित शाह का जवाब, एसआईआर के बहाने घुसपैठियों को बचा रहे हैं, 2029 में करारी हार के लिए रहे तैयार, देश की जनता को मोदी पर भरोसा। इंडिया गठबंधन की चाय पर चर्चा के बाद बोले राहुल, शाह ज्ञानेश को नहीं छोड़ेंगे, लोकतंत्र को बचाना उद्देश्य, खड़गे तेजस्वी राउत ने ज्ञानेश पर किया तीखा वार। दिल्ली में कांग्रेस ऑफिस के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, यौन उत्पीड़न में जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर कांग्रेस सांसद के खिलाफ फल्ला बोल, राष्ट्रपति से गुहार। एल मुरुगन ने पीएम को लिखी चिट्ठी, मंत्रिमंडल छोड़ने की मांगी अनुमति, कहा तमिलनाडु में काम करूंगा, रिजिजू से मिले। और बिहार के हाजीपुर में गंगा नदी में पलटी नाव, 14 लोगों की मौत, सीएम ने रेस्क्यू के दिए निर्देश, पीएमओ ने 2-2 लाख के मुआवजे की घोषणा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। मध्य रात्रि के 12 बज रहे हैं, बेहद गंभीर खबर बिहार के हाजीपुर से आ रही है, नाव पलटने से हाजीपुर में 14 लोगों की मौत की यह खबर है। गंगा नदी में यह हादसा हुआ है, वहां पर एक नाव पलट गई है। इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है, मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत तेज कर देने के निर्देश दिए हैं और ये कुल 15 से 20 लोग इस नाव में सवार थे। रोहित सिंह हमारे संवाददाता और जानकारी के साथ हमारे साथ। रोहित, क्या हुआ, कहां नाव जा रही थी, कितने लोग थे, क्या स्थिति है अभी?
1: सही, देखिए घटना आज वैशाली जिले के राघोपुर इलाके में हुई है, जहां पर तकरीबन ये बताया जा रहा है कि 8 बजे के रात की घटना है, जब गांव के लोग जो हैं वो एक भोज के खाने के लिए निकटतम गांव में गए थे नदी पार करके उस नाव पर बैठकर, और वापसी के दौरान ही नाव जो है वो पलट गई, जिसमें अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि 14 लोगों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि ज्यादातर इनमें बच्चे हैं जिनकी मौत हुई है, और 6 जो लोग हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है और 3 लोगों को जो है वो सुरक्षित निकाला गया है। तो एक बड़ा नाव हादसा जो है वो घटा है।
0: रोहित, इसका मतलब ज्यादा लोग थे, कुल कितने लोग थे इस नाव पर सवार?
1: बिल्कुल, जिस तरीके से घटना घटी है, माना जा रहा है तकरीबन 25 से 30 लोग जो है इस नाव पर सवार थे, और यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रशासन की बड़ी लापरवाही भी सामने आ रही है, क्योंकि शाम में 5 बजे के बाद नाव का परिचालन, यानी शाम या रात में नाव का परिचालन पूरी तरीके से बाधित बंद है, यानी कि आप नहीं कर सकते हैं, चला सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर रात के वक्त में नाव का परिचालन चल रहा था तो ये भी बड़ा सवाल है कि क्यों इतनी बड़ी लापरवाही हुई जिसके वजह से इतनी बड़ी घटना घटी है, जिसमें अभी तक 14 लोगों की मौत हो गई है।
0: रोहित, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री ने राहत और बचाव का कार्य जारी रखने, उसे तेजी से करने के निर्देश दिए, मतलब कुछ लोग और भी हैं जिनकी तलाश चल रही है अभी?
1: मुख्यमंत्री ने भी इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पे अपना बयान जारी किया है। तेजस्वी यादव जो उस इलाके के विधायक भी हैं, उन्होंने भी जो है तेजी से राहत और बचाव कार्य चलाने की बात कही है, और सम्राट चौधरी ने मृतक के परिवारों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का भी ऐलान किया है और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। लेकिन बड़ा,
0: रोहित एक सेकंड आपको रोक रहे हैं, आपने तेजस्वी का उल्लेख किया, वहीं के विधायक बताया, तो हम तेजस्वी यादव की बात भी सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाएं, देखिए ये पीएमओ प्रधानमंत्री के ऑफिस की तरफ से ट्वीट किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है इन जिंदगियों के खोने पर, 14 लोगों की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2-2 लाख रुपए की सहायता या का भी उल्लेख इसमें किया गया है। ट्वीट में भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से 2-2 लाख रुपए की इन्हें मदद भी की गई है जो लोग नहीं रहे। और अब तेजस्वी यादव की बात भी हम सुनवा देते हैं, तेजस्वी यादव ने इस हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए क्या कहा है।
2: नमस्कार, आज बेहद दुखद खबर आ रही है मेरे विधानसभा क्षेत्र राघोपुर से। अभी हम दिल्ली में थे और आप सब लोग जान रहे हैं कि दिल्ली में इलेक्शन कमिश्नर जो सीईसी हैं ज्ञानेश कुमार, उनके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट चल रहा है। जिस हिसाब से वोट की चोरी हुई है, फर्जी चुनाव हुए हैं। आज पता चला अभी थोड़ी देर पहले हमको इस घटना के बारे में, जो राघोपुर दियारा क्षेत्र में रामपुर जंक्शन में ये घटना हुई है। कुछ बच्चे नाव से भोज खाने के लिए गए थे, वापस लौटते दौरान जो है नाव पलटने से काफी लोगों की जानें गई हैं। लगभग संख्या 30 लोगों की बताई जा रही है, ज्यादातर बच्चे हैं उसमें। 14 अब तक जो है लाशें बरामद की गई है, 6 को जो है रेफर किया गया अस्पताल में और 3 जो है वो सुरक्षित है। हमारी जिलाधिकारी से भी बात हुई है, आपदा विभाग के जो सचिव हैं उनसे भी बात की गई है और हमने आग्रह किया है कि ज्यादा से ज्यादा रेस्क्यू टीम जो है भेजा जाए NDRF।
0: और अब देखिए देश और दुनिया की 100 महत्वपूर्ण खबरें नॉनस्टॉप 100 में।

राहुल गांधी को अमित शाह का जवाब, कहा एसआईआर के बहाने घुसपैठियों को बचा रहे हैं राहुल। अमित शाह बोली 2029 में भी करारी हार के लिए तैयार रहे राहुल, देश की जनता को कांग्रेस पर नहीं मोदी पर भरोसा। इंडिया गठबंधन की चाय पर चर्चा के बाद बोले राहुल, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार को नहीं छोड़ेंगे, लोकतंत्र को बचाना उद्देश्य। खड़गे का दावा, दिल्ली में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में जुटे युवा और आम नागरिक, पीएम पर लगाया वोट चोरी का आरोप। तेजस्वी यादव बोले, हम लोग एकजुट होकर लड़ने के लिए तैयार, इस प्रोटेस्ट ने दिल्ली को बदल दिया। संजय राउत का सीसी ज्ञानेश कुमार पर तीखा हमला, बोले माफिया है, पूरे सिस्टम का अपराधीकरण ज्ञानेश कुमार ने कर दिया, एसआईआर के खिलाफ आंदोलन जारी रहे। सुप्रिया सुले का ऐलान, इंडिया गठबंधन पूरी शक्ति से एकजुट, संविधान जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए दिल्ली से गांव गांव तक आंदोलन। दिल्ली के जंतर मंतर प्रोटेस्ट मामले में एफआईआर दर्ज, सौरभ दास आतुशोध समेत अन्य पर केस, जेडीयू ऑफिस में घुसने की शिकायत पर ट्रेस पासिंग का आरोप। एल मुरुगन ने पीएम को लिखी चिट्ठी, केंद्रीय मंत्रिमंडल की छोड़ने की मांगी अनुमति, कहा तमिलनाडु में काम करूंगा, रिजिजू से मिले। वोट चोरी के आरोप पर आपका 15 अक्टूबर को दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन, ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे एसआईआर रद्द करने की मांग। विपक्ष के प्रदर्शन पर बीजेपी का वार, पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल पर साधा निशान। राहुल पर बोले गोयल, कर रहे हैं बचकानी हरकत, ईमानदारी से चुनाव आयोग ने किया काम। विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीयूष बोले, कांग्रेस अपने दावे के प्रमाण दे। कनॉट प्लेस पर एनसीआई का प्रदर्शन, ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग। अचानक ही कनॉट प्लेस पर पहुंचे थे प्रदर्शनकारी, पुलिस ने सभी को हिरासत में लिया। प्रतिबंध के बावजूद कॉकरोच जनता पार्टी के नेता आशुतोष रांका, सौरभ दास और अजिंक्य शिंदे ने जंतर मंतर जाने की कोशिश की, पुलिस ने हिरासत में लिया। सीजेपी समर्थकों के साथ जंतर मंतर पहुंचे और नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस ने सभी को पकड़ लिया। पुलिस ने जंतर मंतर के पास बैरिकेडिंग की, सभी गेट्स बंद, लेकिन ऊपर से चढ़कर जंतर मंतर पहुंचे ये लोग। जंतर मंतर पर अब प्रदर्शन आप नहीं कर सकते, केंद्र सरकार ने निर्धारित प्रदर्शन स्थल की लिस्ट से जंतर मंतर को हटा दिया। अभिजीत दीपके का बयान, कहा उन्हें लगता है कि जंतर मंतर अब विरोध प्रदर्शन का स्थल नहीं रहेगा और ये बंद हो जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना, जन विश्वास की हत्या और लोकतंत्र की हत्या बताया। महिला पत्रकारों से मारपीट पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई, दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को अगली सुनवाई पर बुलाया। यूनियन में 11 छात्राओं से यौन शोषण के आरोप में घिरे कांग्रेस के सांसद अंगोमचा बिमोल के खिलाफ बीजेपी का मोर्चा, राष्ट्रपति से मिली महिला सांसद। बिमोल ने जेएनयू प्रशासन की कार्रवाई की आलोचना की, बोले विश्वविद्यालय का प्रशासनिक तरीका खाप पंचायत जैसा, नियमों रेगुलेशंस की पूरी तरह से अनदेखी। कांग्रेस सांसद ने वीसी पर उठाए सवाल, ये मुझे फंसाने की साजिश, मीडिया के सामने वीसी बोल रहे हैं झूठ। नारी सुरक्षा को लेकर योगी का बयान, अब बेटी की इज्जत पर हाथ डालने वालों का अगले चौराहे पर कट जाता है यमलोक का टिकट। प्रयागराज में गरीबों को मिलेंगे पक्के मकान, माफिया अतीक के गढ़ में बनेगा पद्म आवास, योगी जल्द करेंगे भूमि पूजन। अतीक के घर के पास 602 फ्लैट्स की आवासीय सोसाइटी, पीडीए की टीम ने जमीन का निरीक्षण किया, साफ सफाई करवा दी। नई दिल्ली में बिम्स्टेक गृह मंत्रियों की बैठक में अमित शाह शामिल, आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराई। अमित शाह ने आतंकवादियों को पनाह देने, भर्ती करने, पड़ोसी देशों के खिलाफ गतिविधियां चलाने की कोई गुंजाइश न छोड़ने की अपील। मुंबई प्रदर्शन मामले में हिरासत में बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा बयान, कहा ब्लैंकेट ऑर्डर नहीं दे सकते, पुलिस कार्रवाई के मामलों पर मांगे सबूत। सुनेत्रा पवार के पैनल का सोमेश्वर चीनी मिल चुनाव में क्लीन स्वीप, सभी 21 सीटों पर जीती, विरोधी पैनल खाता तक नहीं खोल पाया। महाराष्ट्र में एफडीए की बड़ी कार्रवाई, छत्रपति संभाजीनगर में 23.5 लाख रुपए के 12,382 किलो संदिग्ध मिलावटी तेल को जब्त किया गया। बीड में 4.5 लाख के खाद्य पदार्थ भी पकड़े गए। मुंबई में डोमिनोज समेत 3 फूड आउटलेट्स के लाइसेंस सस्पेंड किए गए, वेज नॉनवेज खाना एक ही फ्रीजर में मिला। डीयू में 5,889 करोड़ की लागत से बनेंगे नए हॉस्टल, 21,895 छात्रों को मिलेगा घर। गुरुग्राम के फर्रुख नगर में भीषण हादसा, बस ट्रैक्टर की टक्कर में 2 टुकड़े, ड्राइवर गंभीर रूप से घायल।
मेरठ में नीला ड्रम कांड का आज होगा सजा का ऐलान, बेटी से मिलने को बेचैन मुस्कान। इंदौर में कैफे के बाहर दो पक्षों में मारपीट, वीडियो वायरल, जांच शुरू। झांसी में कार की टक्कर के बाद सड़क पर बरसी बेल्टें, कई लोगों ने युवक को घेर कर पीटा। बेगूसराय में महिला डॉक्टर पर एसिड अटैक, पड़ोसी गिरफ्तार। लुधियाना में तेज रफ्तार कार का कहर, कार मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, एक नौजवान की मौत, डैशबोर्ड में रिकॉर्ड हुई घटना। ठाणे के दीवा में भीषण आग, ऑटो रिक्शा समेत 22 दोपहिया वाहन जलकर हुए खाक। ग्रेटर नोएडा की जहांगीरपुर में दिन दहाड़े युवक की हत्या, दौड़ा दौड़ा कर मारी थी 6 गोलियां। उन्नाव में दीवार के विवाद में महिलाओं को लाठी डंडों से दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, 4 गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के श्योपुर में भाई ने मोबाइल छीने स्कूल जाने को कहा तो 60 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गया भाई। पटना में कंटेनर की टक्कर, 20 फीट नीचे गड्ढे में गिरा पटना में ऑटो, एक लड़की समेत 2 की मौत। टोंक में मकान में पार्टी के दौरान हंगामा, तलवार चाकू से हमला, 2 गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में 11,000 वोल्ट के तार की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत, खेत में गई थी महिला। बिजनौर में हाई टेंशन लाइन में मुर्गी फार्म में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। इंदौर में तेज रफ्तार कार का कहर, 19 साल के युवक की मौत, 2 घायल। सिवनी में घर में वॉशिंग मशीन के अंदर बैठा था 7 फीट लंबा सांप, लोग डरे। देहरादून में बेकाबू ट्रक दुकान में घुसा, लोगों ने भागकर जान बचाई। भागलपुर में खुली ट्रेन से मोबाइल झपटना पड़ा भारी, यात्रियों ने पकड़ा हाथ, प्लेटफॉर्म पर दूर तक घिसटता रहा चोर। भोपाल में कपड़े की दुकान में युवक की हार्ट अटैक से मौत, सीसीटीवी में कैद। देहरादून में फर्जी एग्रीमेंट दिखाकर हॉस्टल से 30 लाख का सामान चुराया, 4 गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग और आसपास के इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी, चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर। कश्मीर के बूटतपथी इलाके में ताजा बर्फबारी से पहाड़ों का दृश्य बदला, सफेद से ढक गई वादियां। कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद मौसम बदला, तापमान गिरा, बड़ी ठंड। कश्मीर में मौसम बदला, मैदानी इलाकों में बारिश, सोनभद्र की पहाड़ियों पर ताजा बर्फबारी। बर्फबारी से बड़ी ठंड, कश्मीर के मैदानी इलाकों में बारिश के बाद तापमान गिरा। देश में पहली बार ग्लेशियर झील पर स्वदेशी अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित, 2 घंटे पहले मिल जाएगी बाढ़ की चेतावनी। 8 करोड़ का सिस्टम, 61 लाख में तैयार। राजकोट की गिनीज बुक रिकॉर्ड होल्डर मिनिएचर आर्टिस्ट कैप्टन स्मिथ मच्छार के लिए बनाई दुनिया की सबसे छोटी हनुमान चालीसा। वडोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस में शाही अंदाज में हेरिटेज गरबा, महारानी राधिका राजे, विदेशी राजनयिकों ने किया गरबा। बिहार के बेगूसराय में दुनिया का सबसे ऊंचा दुर्गा मंदिर, 221 फीट ऊंचे 11 मंजिला सिद्धपीठ बड़की दुर्गा मंदिर की अनोखी महिमा। 1914 से चली आ रही है मां दुर्गा की अनूठी परंपरा, बीहट के सिद्धपीठ बड़की दुर्गा मंदिर में 10 दिनों तक भव्य आरती। गुजरात के राजकोट में नवरात्र के दौरान क्षत्रिय राजपूत महिलाओं का अनोखा अंदाज, राजवी पैलेस में पारंपरिक तलवार रास का शौर्य। राजवी पैलेस में क्षत्रिय राजपूत महिलाओं ने बांधा समा, बाइक और जीप चलाते हुए तलवारबाजी का हुनर दिखाया। जामनगर जिला जेल में नवरात्र की धूम, जेल के चार दीवार के भीतर कैदियों ने माता रानी की आराधना के साथ खेला गरबा। नवरात्रि के रंग में जामनगर जिला जेल कैदियों के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम। झांसी में नवरात्र पर सीजन का पहला गरबा डांडिया आयोजित, 1,000 महिला पुरुषों ने पारंपरिक परिधानों में किया गरबा और डांडिया। कोलकाता के कालीघाट में मिलन संघ दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन, उद्घाटन में पूर्व मुख्यमंत्री ममता हुई शामिल। लातूर में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन स्कूल के छात्र छात्राओं ने अमिताभ को दिया बर्थडे का अनोखा तोहफा। 2400 स्क्वायर फीट इलाके में 5 अलग अलग तरह की 600 किलो फूल से बनाई अमिताभ की तस्वीर, 84वें जन्मदिन का तोहफा। बच्चों, कर्मचारियों, कलाकारों ने 4 दिन की मेहनत से तैयार की कलाकृति और अमिताभ को बर्थडे गिफ्ट दिया। आज खेला जाएगा भारत वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का 4था मैच, इतिहास रचने उतरेंगे अर्शदीप, हैदराबाद में बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड।
रजनी द जेलर 2 का ट्रेलर रिलीज, 15 अक्टूबर को होगी फिल्म रिलीज। रश्मिका मंदाना, विजय देवरकोंडा ने रणबाली के रिलीज से पहले सीएम विजय से मुलाकात की, विजय की तारीफ की। तिरुपति बालाजी के दरबार पहुंचे विजय देवरकोंडा और रश्मिका, भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। सैफ अली खान ने इंस्टाग्राम पर पटौदी लाइब्रेरी की झलक दिखाई, कैप्शन में लिखा पटौदी लाइब्रेरी, किताबों को उनके कवर से आंकते। फिल्म गाड़ी का धर्मशाला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रीमियर, 29 अक्टूबर से शुरुआत। बीते एक वर्ष में सरकार के नजर में रहने वाले 42 जरूरी सामानों में 41 के रिटेल दाम बढ़े, प्याज, चीनी, सल्फर ऑयल के दाम सबसे अधिक बढ़े, आलू के दाम में केवल कमी आई। IMF ने 2026-27 के लिए भारत की GDP ग्रोथ अनुमान 6.4% से बढ़ाकर 7% की। मजबूत घरेलू मांग, सर्विस सेक्टर का मिला सहारा, महंगे क्रूड ऑयल को बताया चुनौती। बैन एंड कंपनी के अनुसार दूसरी तिमाही में भारत में जॉब पोस्टिंग्स सबसे कम, 5% घटी, अमेरिका जर्मनी में सबसे अधिक गिरावट, AI से जुड़ी जॉब्स में 30 उछाल। केंद्र ने राज्यों से कहा अस्पतालों में सेवाओं सुविधाओं का प्राइस साफ किया जाए, मरीजों को इलाज से पहले खर्च जानने में मदद मिले। ऑनलाइन बिकने वाले खानों के सामान पर एक्सपायरी डेट और बैच नंबर की जानकारी दिखाना जरूरी, इस कदम से भ्रामक दावों पर लगेगी रोक। 24-25 के मुकाबले 13 IT कंपनीज में घटकर आधे से भी कम हुए, 8 टेक कंपनियों की प्रक्रिया रुकने से H1B पर काम कर रहे भारतीयों में बढ़ी चिंता। प्राय के अनुसार जून के अंत में देश में इंटरनेट सब्सक्राइबर्स की संख्या 111 करोड़ के पार निकली, इंटरनेट इस्तेमाल विस्तार के साथ ब्रॉडबैंड ग्राहक भी बढ़े। जोस्टल के अनुसार अक्टूबर दिसंबर में ट्रैवल बुकिंग्स में 50% का उछाल, त्योहारी सीजन में ट्रिप के लोगों ने बनाए प्लान। UP रेरा ने घर खरीदारों से बिल्डर्स के बताए किसी भी खाते में पैसा जमा न करने की अपील की, पोर्टल पर प्रोजेक्ट के कलेक्शन अकाउंट में ही पैसा जमा करने के निर्देश। नोएडा अथॉरिटी ने 48 EV चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए ITI लिमिटेड के साथ करार किया, अलग अलग लोकेशन पर लगेंगे स्टेशन। जेलेंस्की बोले ट्रंप की घोषणा के बाद यूक्रेन ने 2 दिन तक रूसी तेल रिफाइनरीज, ऊर्जा ठिकानों पर हमले नहीं किए। ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड, नॉर्वे के विदेश मंत्रियों ने वॉरसो सिक्योरिटी पर फोरम पर रूस पर साधा निशाना, रूस की जब्त संपत्तियों को वापस लौटाने की अफवाहों को गलत बताया। यूक्रेन के लवीव में रूस ने बड़ा हमला किया, रिहायशी इमारतें तबाह हुई, कारें क्षतिग्रस्त हुई, रूसी सेना का भीषण हमला, खार्किव में भी 4 की मौत हुई, 15 घायल हुए। बल्गारिया के पास काला सागर में यूक्रेन के जहाजों पर ड्रोन से हमला, चेल्सी 3 नाम का जहाज डूबा, सभी सदस्यों का रेस्क्यू किया गया। फ्रांस ने रूसी तेल टैंकर को जब्त किया, मैक्रों ने दी इसकी जानकारी, कहा द्वीप के पास हमने की कार्रवाई। सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन का दावा, रियाद के उत्तर में 3 ड्रोन को हमने नष्ट किया, सऊदी अरब ने किया हमला, हमले से नाराज हुती विद्रोहियों ने दी धमकी। हुतियों के लगातार हमलों से परेशान सऊदी अरब ने जारी की चेतावनी, हिंदी समेत 6 भाषाओं में ये चेतावनी। ईरान ने अमेरिका समेत पश्चिमी देशों पर साधा निशाना, ईरानी एयरलाइन समेत देश पर लगाए गए दूसरे प्रतिबंध इस बात का साक्ष्य कि विदेशी शक्तियां ईरान के लोगों को निशाना बना रही हैं। राजधानी पेरिस समेत सेंट डेनिस और नांत में छात्रों का बड़ा प्रदर्शन, पुलिस छात्रों के बीच जमकर झड़प। दक्षिण कोरिया के इंचियोन में सुपरमार्केट में चाकूबाजी, 59 वर्षीय व्यक्ति ने 8 लोगों पर हमला किया।

0: मैं जिनाम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले आपको राहुल गांधी की चाय में उबाल और ज्ञानेश कुमार पर बढ़ते बवाल के बारे में बताएंगे। आज राहुल गांधी के आवास पर हुई बैठक के बाद विपक्ष के नेताओं ने साफ कहा कि ज्ञानेश का इस्तीफा सिर्फ एक मांग नहीं बल्कि उनका मिशन है, लेकिन विपक्ष का ये विरोध अपनी ही बनाई पिच पर क्या उलझ जाएगा, जिस याचिका को लेकर कल विपक्ष सीना तान कर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, आज उसमें 14 बड़ी कमियां निकल गई। 220 रुपए कम फीस से लेकर 8 दिग्गज नेताओं का वकालतनामा तक गायब मिला। आज गृहमंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि 8000 लोग पूरे देश की आवाज नहीं हो सकते। आज गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि 2029 के लोकसभा चुनाव में भी एनडीए प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेगा और कांग्रेस को लगातार चौथी बार हार का सामना करना पड़ेगा। वहीं आज दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए हाई वोल्टेज हंगामे को लेकर कई सवाल उठे। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर को छावनी में तब्दील कर रखा था। जब से जंतर मंतर को बीते दिन प्रोटेस्ट ग्राउंड की लिस्ट से हटा दिया गया है, वहां पर भारी बैरिकेडिंग की गई थी। सीजेपी के नेता लेकिन वहां पर पहुंच गए। आरोप है कि सीजेपी के नेता दीवार फांद कर सीधे जेडीयू के राष्ट्रीय मुख्यालय के अंदर घुसे और वहां से वो जंतर मंतर परिसर में कूद पड़े। एक तरफ जेडीयू इसे अराजकता बता रही है, विपक्ष इसे अंदर खाने की खिचड़ी करार दे रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक कहा कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, जहां हर मुद्दे पर खुलकर चर्चा होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने आंकड़ों के जरिए दुनिया को बताया कि भारत में 100 से ज्यादा भाषाएं, 80,000 से अधिक रजिस्टर्ड अखबार और 1,000 से ज्यादा सैटेलाइट टेलीविजन चैनल्स मौजूद हैं। यही नहीं, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर 50-50 करोड़ से ज्यादा यूजर्स का होना इस बात का प्रमाण है कि आज भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म हर नागरिक को खुली चर्चा और अभिव्यक्ति की ताकत दे रहा है।
1: सभी जानते हैं भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। भारत में 100 से ऊपर भाषाएं हैं, करीब 80,000 रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पब्लिकेशंस है, 1,000 से ज्यादा सैटेलाइट टीवी चैनल्स है।
0: एक और बड़ी खबर यह है कि केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और वो भी एक सोशल मीडिया पर पोस्ट करके। आज मुरुगन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये जानकारी दी कि वो अब तमिलनाडु में पार्टी को मजबूत करने और आगामी लोकसभा चुनाव पर ध्यान देना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने राज्यसभा सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया, तब जबकि उनका कार्यकाल अभी 3 साल बाकी है। उनका कार्यकाल साल 2030 तक चलना था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस्तीफा दे दिया राज्यसभा के पद से भी और इसी के साथ साथ मंत्री पद से भी। तो इस पर भी नजर रहेगी कि आखिर इसके पीछे असल कहानी क्या है। और अब आपको कांग्रेस सांसद और जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर अगोमचा बिमोल अकोयजाम पर लगे यौन शोषण के आरोपों के बारे में भी बताएंगे, जिसे लेकर पुलिस FIR दर्ज कर चुकी है। उन पर 11 छात्राओं ने यह आरोप लगाया है, बहुत गंभीर आरोप है यौन उत्पीड़न का, मार्क्स के बदले सेक्सुअल फेवर्स का। आंतरिक जांच में उनके व्यवहार को संदिग्ध माना गया। एक इंटरनल कमिटी ने जिसने जांच की है इन आरोपों पर, उसने प्रोफेसर अगमचोई को दोषी माना और उनको जेएनयू से बर्खास्त कर दिया गया है, डिसमिसल। इसके अलावा FIR दर्ज होने के बाद भी कांग्रेस के बड़े नेताओं की इस मामले पर चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। आज बीजेपी महिला मोर्चा ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर इसी मुद्दे पर ज्ञापन सौंपा। और अगली खबर, साइबर हमले अब सिर्फ डेटा या कंप्यूटर तक सीमित नहीं है बल्कि ये थाली तक पहुंच चुके हैं। ये खबर हैरान भी करती है लेकिन परेशान भी करती है। फ्रांस में हैकर्स ने रिमोट के जरिए सुपरमार्केट्स के फ्रिज और डीप फ्रीजर का तापमान बढ़ाकर 50 डिग्री सेल्सियस तक कर दिया। बड़ी मात्रा में खाना, आइसक्रीम्स बर्बाद हुए, सुपरमार्केट्स की हालत थी। इस हमले ने दुनिया भर की सप्लाई चेन की सुरक्षा पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। हालांकि अभी तक यह पता नहीं है कि किसने ये किया, किस मकसद से किया और क्यों इतना बड़ा नुकसान किया, लेकिन जो वल्नरेबिलिटी है, यानी जो एक तरह से खतरा बना हुआ है कि अगर ऐसा कोई करे किसी देश में, तो सोचिए कितनी परेशानी होगी। अगली खबर, अजरबैजान एक देश जहां 96% आबादी मुस्लिम है, लेकिन स्कूल्स और कॉलेजेस में हिजाब पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। नए नियमों के तहत हिजाब पहनने वाली छात्राओं और टीचर्स को स्कूल्स में एंट्री नहीं दी जा रही है, जिसके बाद वहां जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। सरकार इसे सेक्युलर शिक्षा नीति बता रही है, वहीं लोग इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला मान रहे हैं। ठीक ऐसे ही विवाद की गूंज भारत में भी सुनाई देती है। हिजाब का मुद्दा देश की अदालतों में आज भारत में लंबित है, ये देखिए।
2: Baxın, 140 saylı məktəbdə bizim uşağımızı içəri saldılar, hamılıqla birlikdə, hicablı, hicabsız. Sonra uşaqları hamısını çölə atdılar.
0: İdər Amerika के न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के पूर्व सलाहकार मोहम्मद यूनुस का जबरदस्त विरोध हुआ। प्रदर्शनकारियों ने उन्हें घेरकर आतंकवादी तक कह दिया। बांग्लादेशी प्रवासियों ने यूनुस पर पुलिसकर्मियों की हत्या, लोकतंत्र को कुचलने और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के गंभीर आरोप लगाए। हंगामे के बाद यूनुस को कड़ी सुरक्षा के बीच वापस एयरपोर्ट के अंदर जाना पड़ा। और अगली खबर, फिर भारत से। बिहार के शिवनारायणपुर रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से मोबाइल छीनकर भाग रहे एक चोर को यात्रियों ने खिड़की से ऐसा पकड़ा कि वो जिंदगी की भीख मांगने लगा। थोड़ी दूर तक चोर को घसीटने के बाद यात्रियों ने चलती ट्रेन से ही उसे प्लेटफॉर्म पर गिरा दिया, जिससे उसे गंभीर चोटें आई।
3: यही काम बच गया तुम्हारा, यही सब करोगे तुम, एकदम सही है, बढ़िया है, नहीं नहीं उसे छोड़िएगा नहीं।
0: तो ये पूरा मामला बिहार का है और इसको लेकर काफी चर्चा है। लेकिन एक और खबर जो हम सबकी जेब से जुड़ी हुई है, डिजिटल पेमेंट से जुड़ी हुई है, दिवाली से ठीक पहले देश के बाजार के लिए राहत भरी खबर है। व्यापारियों की धड़कने बढ़ाने वाली खबर थी, यूपीआई पर लगने वाले एमडीआर चार्ज को फिलहाल दिवाली के बाद तक के लिए तो टाल दिया गया है। इस बीच सितंबर में खुदरा महंगाई दर उछलकर 23 महीने के हाई यानी 5.5% 5.54% पर पहुंच गया है। लेकिन आज सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का जो विरोध प्रदर्शन हुआ, उसका नीतीश कुमार की जेडीयू से आखिर क्या कनेक्शन है। ये खबर बड़ी दिलचस्प है। आज अब कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका और सौरभ दास समेत कुछ प्रदर्शनकारी छिपते छिपाते जंतर मंतर के परिसर में आए तो सबसे पहला सवाल यही खड़ा हुआ कि वो वहां कैसे पहुंचे और कैसे पुलिस उन्हें रोक नहीं पाई। वो भी तब जब दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर को छावनी में दावा किया था कि छावनी में तब्दील किया हुआ है, और पूरे जंतर मंतर के इलाके में भारी बैरिकेडिंग की गई थी, पुलिस वाले आपको तैनात दिख रहे हैं और हाई लेवल के बैरिकेड्स इस तरह के लगाकर तैयारी थी, 100 से ज्यादा तो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। जब इस पूरे मामले की जांच हुई तो यह पता चला कि प्रदर्शनकारी दरअसल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय मुख्यालय में मौजूद थे और उसी के गेट को फांद कर वो जंतर मंतर के परिसर तक पहुंचे। अभी तक की मिली जानकारी में यही दावा आ रहा है। इससे ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या जेडीयू के बड़े नेताओं या दफ्तर में मौजूद लोगों ने प्रदर्शनकारियों की मदद की, और क्या उन्हीं की मदद से सीजेपी के नेता तब जंतर मंतर पर आ गए जब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सिर्फ एक दिन पहले इस जगह को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटा दिया था। ये सवाल बहुत गंभीर थे और जेडीयू इन सवालों पर इसलिए भी घिर रही थी क्योंकि वो इस वक्त एनडीए यानी मौजूदा केंद्र सरकार का हिस्सा है और बिहार में भी दोनों पार्टियां गठबंधन की सरकार चला रही है। और इस वक्त बड़ी खबर यही आ रही है कि सौरभ दास, आशुतोष रांका और अन्य पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जेडीयू दफ्तर का दरवाजा फांद कर ये घुसे थे और ऐसे में इनका वहां पर पहुंचने के बाद सीजेपी नेता दरवाजा फांद कर घुसे थे, इस आरोप में अब एफआईआर दर्ज की गई है। इन्हीं सारी वजहों से सोशल मीडिया पर यह बहस शुरू हो गई कि क्या जेडीयू ने कोई खेल किया, क्या अंदर खाने कोई खिचड़ी पक रही है। हालांकि इन सवालों और शक को दूर करने के लिए बीजेपी ने जेडीयू के साथ तत्काल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें जेडीयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पीयूष गोयल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने यह आरोप लगाया कि कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं का उनके दफ्तर में घुस आना अराजकता है और जेडीयू इस मामले में कार्रवाई पर विचार करेगी। सबसे बड़ा आरोप जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हर्षवर्धन सिंह ने लगाया। उनका आरोप है कि सीजेपी के नेताओं ने अवैध तरीके से उनके राष्ट्रीय दफ्तर में प्रवेश किया। यानी दावा है कि सीजेपी नेता मुख्य गेट से इजाजत लेकर जेडीयू के दफ्तर में नहीं आए। इसकी जगह वो जंतर मंतर रोड से ठीक पहले जंतर मंतर लेन में एक जो सरकारी क्वार्टर है उसमें दाखिल हुए, और वो ऐसा इसलिए भी कर पाए क्योंकि दावा है कि इस सरकारी क्वार्टर का पिछला गेट अक्सर खुला रहता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं ने इस दौरान सीजेपी की मदद की। हालांकि हम अब तक इन दावों की पुष्टि नहीं कर पाए हैं, लेकिन हम आपको इतना जरूर बता सकते हैं कि जंतर मंतर लेन के जिस सरकारी क्वार्टर में सीजेपी के नेता दाखिल हुए थे उसकी दीवार जेडीयू के दफ्तर से लगती है। आरोप है किसी दीवार को फांदकर आशुतोष रांका, सौरभ दास और उनके कुछ समर्थक जेडीयू के दफ्तर में दाखिल हुए। फिर इस दफ्तर का एक गेट जंतर मंतर के परिसर से लगता है, इसलिए ये नेता वहां पर पहुंचने में कामयाब हुए। देखिए

0: हालांकि आपको एक बार फिर से बता दें कि इस पूरी खबर पर एक नया अपडेट यह है कि अब इन नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, सौरभ दास और इसी के साथ आशुतोष रांका पर। आगे इस मामले में पुलिस क्या इन्वेस्टिगेशन करती है, कैसे केस आगे जाता है, हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये जंतर मंतर की आज की तस्वीरें हैं। अब जिस जेडीयू दफ्तर से सीजेपी के नेता जंतर मंतर के परिसर तक पहुंचे उसका पता 7 जंतर मंतर रोड है। और इस घटना को लेकर जेडीयू ने आपत्ति तो जताई है, लेकिन कई लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि जब पार्टी सीजेपी के नेताओं पर अवैध तरीके से दफ्तर में घुसने का आरोप लगा रही है तो वो इस मामले में कानूनी कार्रवाई करने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठा रही।
1: पिछले कई दिनों से इस देश में जिस तरह नौटंकी और ड्रामा केयर के देश भर में अराजकता कायम करने का प्रयास किया जा रहा है, उसको नहीं लगता है कि इस देश की जनता कभी इसको स्वीकार करे।
2: इसका कोई मतलब नहीं निकलता है कि आप मेरे इलीगल तरीके से आप मेरे प्रमाइसेस में घुस के आप उस तरफ जाइए, ये तरीका ठीक नहीं है। ये आपके आपके मेच्योर्डनेस को दर्शाता है कि आप अभी मेच्योर्ड नहीं हुए हैं। पहले अपनी पार्टी को मेच्योर्ड करिए, अपने लोगों को समझाइए।
0: आज ही कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई के करीब 40 से 50 कार्यकर्ताओं का एक समूह अचानक जंतर मंतर की तरफ जाने वाली जनपद सड़क पर पहुंच गया। इन प्रदर्शनकारियों ने यह मांग की कि जंतर मंतर को वापस विरोध प्रदर्शन स्थल के रूप में बहाल किया जाए और अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी तो इसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन होगा। देखिए
3: ये महिला पुलिस बदसलूकी कर रही है।
0: आज जब कांग्रेस और सीजेपी के नेता जंतर मंतर पर सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं तब सरकार और बीजेपी के नेता कांग्रेस को यह याद दिला रहे हैं कि उसने साल 1993 में खुद क्या किया था। उस वक्त दिल्ली में कई बड़े विरोध प्रदर्शन हो रहे थे जिनमें सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन अक्टूबर 1988 में हुआ था। तब भारतीय किसान यूनियन के नेता महेंद्र सिंह टिकैत के एक आह्वान पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लगभग 5 लाख किसान बोट क्लब पर आ गए थे और ये किसान सिर्फ नारेबाजी करने नहीं आए थे, वो अपने साथ ट्रैक्टर, बैलगाड़ी, गाय भैंस, खाट, चारपाई, हफ्तों का राशन पानी लेकर आए थे। उन्होंने पूरी सेंट्रल दिल्ली को एक विशाल छावनी और ग्रामीण रिहाइश में बदल दिया था। किसानों के इस शक्ति प्रदर्शन से सरकारें अभी संभली भी नहीं थी कि उसी वक्त देश में राम जन्मभूमि आंदोलन चरम पर पहुंच गया। साल 1992 में अयोध्या की घटना के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार को यह एहसास हुआ कि संसद भवन और भारत के प्रशासनिक मुख्यालयों के इतने नजदीक लाखों की अनियंत्रित भीड़ को इकट्ठा होने देना एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय जोखिम है। और बीजेपी आज इस मामले को इसीलिए उठा रही है ताकि वो कांग्रेस पार्टी को ये बता सके कि आपने भी पहले ऐसा किया था, क्योंकि अब पूरा बवाल इस बात पर आकर केंद्रित हो गया है कि जंतर मंतर को, जो कि इतने सालों से प्रोटेस्ट साइट बना हुआ था, उसको आपने प्रोटेस्ट साइट से क्यों हटा दिया। और उस वक्त पर इन्हीं सुरक्षा कारणों से चूंकि ऐसा हुजूम पहुंच गया था, कांग्रेस की सरकार ने बोट क्लब पर किसी भी तरह के बड़े सार्वजनिक जमावड़े और विरोध प्रदर्शनों पर पूरी तरह रोक लगा दी। इस फैसले के बाद साल 1993 में विरोध प्रदर्शनों को जंतर मंतर रोड की तरफ मोड़ दिया गया। अब क्योंकि मौजूदा केंद्र सरकार ने सुरक्षा कारणों को कोट किया है और यही सुरक्षा कारण कोट करते हुए उन्होंने जंतर मंतर को प्रदर्शन स्थल के रूप में डीनोटिफाई किया है, तो इस पर सरकार को विपक्ष घेर रहा है। आज राहुल गांधी ने भी सरकार के इस फैसले का विरोध किया। ये कहा कि वोट के साथ अब धरना स्थल भी छीने जा रहे हैं, धरना स्थल भी चुराए जा रहे हैं। सुनिए विपक्ष की जो रणनीति है वो समझिए।
4: द वन मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी वॉज जंतर मंतर, एंड नाउ द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड दैट जंतर मंतर कैन नो लॉन्गर बी यूज्ड टू एक्सप्रेस डेमोक्रेटिक फीलिंग्स। वेल, वी आर गोइंग टू चैलेंज दैट आइडिया। इट इज नॉट गोइंग टू बी सो सिंपल फॉर द गवर्नमेंट टू डिसाइड दैट द इंडियन पीपल विल नॉट फाइट फॉर देयर वॉइस।
0: और अब आप ये देखिए कि विपक्ष ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जो आंदोलन कर रहा है वो आगे और कहां तक जाएगा। आज विपक्ष की रणनीति बनी पूरी स्ट्रैटेजी, और जगह थी राहुल गांधी का घर। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद आज राहुल गांधी के आवास पर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने चाय पर चर्चा बुलाई, जिसमें रणनीतिक रूप से तीन बड़े फैसले हुए हैं। तो क्या है विपक्ष की रणनीति? पहला फैसला यह हुआ कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जो अलग अलग आंदोलन चल रहे हैं उन्हें विपक्ष अभी एक ही आंदोलन की तरह प्रोजेक्ट करेगा, क्योंकि सीजेपी का भी विरोध आंदोलन हो रहा है। इधर आयसा, एसएफआई, बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। आज राहुल गांधी ने खुद ये बात कही कि देश में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जितने भी विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं वो अलग नहीं है, एक है। ऐसे वक्त में आया है जब अलग अलग मोर्चों को लेकर कई सवाल उठ रहे थे। ये कहा जा रहा था कि इस मामले में विपक्षी दल और संगठनों के बीच एक रेस चल रही है। शायद यही कारण भी है कि चाय पर हुई इस चर्चा में छात्र संगठन आयसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा, योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण भी मौजूद रहे। और जब विपक्ष के तमाम नेता मीडिया के सामने आकर बयान दे रहे थे तब इन नेताओं को भी वहां बोलने दिया गया, यानी विपक्ष ने यहां अपनी रणनीति को समावेशी बनाया है। हालांकि बड़ा सवाल अब भी यही है कि क्या आम आदमी पार्टी और सीजेपी के नेता इस मुद्दे पर विपक्ष के साथ नजर आएंगे। दूसरा, प्रशांत भूषण का दावा है कि आने वाले दिनों में इस आंदोलन में किसान संगठनों के साथ सिविल सोसाइटी और ट्रेड यूनियन भी हिस्सा लेंगे। तीसरा, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा उनके लिए एक मांग या सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, ये उनके लिए एक मिशन है और ये मिशन इस्तीफे के साथ ही पूरा होगा। मेरी सहयोगी मौसमी सिंह बताती हैं कि राहुल गांधी इसे एक बहुत बड़े जन आंदोलन में बदलना चाहते हैं, यानी इसका मतलब यह हुआ कि आने वाले दिनों में आप विपक्ष को अनेकों बार सड़कों पर ऐसे आंदोलन करते देख सकते हैं और यह टकराव अब लंबा चलने वाला है। राहुल गांधी ने आज साफ साफ शब्दों में कहा कि इस तरह से कोई भी परिणाम दो दिन, चार दिन, सप्ताह में नहीं, महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकता है। तो आप समझिए कि ऐसे आंदोलन आने वाले चुनावों तक हो सकते हैं। सिर्फ यूपी की बात नहीं कर रही हूं मैं, 29 तक की बात राहुल गांधी ने वहां पर की है। एक और अहम बात यह है कि सभी विपक्षी नेताओं ने अपने बयानों में प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का नाम लिया, और इससे आप ये समझ सकते हैं कि विपक्ष की लड़ाई सिर्फ ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की लड़ाई नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा राजनीतिक टकराव छिपा है। इसके अलावा जो लोग ये जानना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में विपक्ष या राहुल गांधी क्या करेंगे, कहां आंदोलन या रैली करेंगे, विपक्ष का एजेंडा क्या होगा, तो इसके बारे में किसी नेता ने खुलकर नहीं कहा। राहुल गांधी ने तो यहां तक कहा कि अगर हम आपको सब बता देंगे तो सरप्राइज नहीं बचेगा। शायद विपक्ष ऑर्गेनिक तरीके से अपने इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहता है। सुनिए,
4: जिस एनर्जी से, जिस शक्ति से हमने मोबिलाइज किया, जिस यूनिटी के साथ हमने मोबिलाइज किया, उसी प्रकार से हम सब मिलकर लड़ते रहेंगे।
5: शायद ही इतनी बड़ी संख्या में लोग कभी नहीं जुड़े दिल्ली में।
6: हम सब लोग एकजुट हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए, और इसके लिए जो कुर्बानी देना होगा हम सब लोग जो है मिलकर के देंगे।
7: अत्याचार इनके बढ़े, इन अत्याचारों के खिलाफ हम लड़ेंगे और जीतेंगे।
8: नैनेश कुमार एक ऐसा माफिया है जिसने पूरे सिस्टम का अपराधीकरण किया, और ऐसे माफिया से कैसा लड़ना है और कैसा निपटना है हमको मालूम है।
9: संविधान आज इस देश में खतरे में है, इसीलिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी।
7: वोट चोरी करता है, संघर्ष का जगह का चोरी करता है, जनतंत्र का चोरी करता है।
10: प्रोटेस्ट करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, उसको कोई नहीं रोक सकता।
0: तो इस बार विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभाला है। आज उन्होंने विपक्ष के इस आंदोलन को लेकर चार बड़ी बातें कही। पहला आरोप गृहमंत्री अमित शाह ने यह लगाया कि राहुल गांधी एसआईआर का विरोध घुसपैठियों को बचाने के लिए कर रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि कांग्रेस को चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाने से पहले यह सोचना चाहिए कि वो गुजरात में 41 साल, त्रिपुरा में 33 साल, पश्चिम बंगाल में 54 साल से कोई चुनाव क्यों नहीं जीते। तब तो ना एसआईआर था न ये चुनाव आयोग, और वो मुख्य चुनाव आयोग जो बीजेपी ने अपॉइंट किया था। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि बैलेट पेपर से होने वाले चुनाव में भी बीजेपी ही जीती है। और चौथी बात उन्होंने ये कही कि 14 राजनीतिक पार्टियां 1.5 किलोमीटर के दायरे में 8,000 लोगों की भीड़ जुटाकर इस पूरे देश की आवाज नहीं बन सकती।
11: तो 24 के बाद चालू हुआ, आप जब से कांग्रेस के मुख्य नेता के रूप में आए हैं और बाद में अध्यक्ष के रूप में आए हैं, लीडर ऑपोजिशन के रूप में आए, कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव हारे। आपको आत्मचिंतन करने की जरूरत है। फैब्रिकेटेड मीडिया इवेंट, झूठ की गूंज कर आप देश की जनता का विश्वास हासिल नहीं कर सकते। पूरी 14 पार्टी का कैडर इकट्ठा कर 1.5 किलोमीटर के क्षेत्र में 8,000 की भीड़ इकट्ठी कर आप देश की आवाज नहीं बन सकते हो। मेरा कांग्रेस पार्टी से निवेदन है कि देश की आवाज खेत खलियानों में, गांवों में, दूर सुदूर पहाड़ियों पर, जंगलों में और नदियों के किनारे भी है। एसआईआर के बहाने घुसपैठिया बचाने का आपकी जो कार्य योजना है उसको देश की जनता भली भांति समझ चुकी है, और अब भारत की जनता आपके झांसे में आने वाली नहीं है। श्री राहुल जी और उनके साथियों को मैं ये भी बताना चाहता हूं कि 29 में प्रचंड हार के लिए फिर से एक बार मन बना लीजिए। 2029 के आम चुनाव में एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर आने वाला है।
0: खैर, आज आपने देखा देश के गृहमंत्री ने एक बार फिर से राहुल गांधी को खास तौर पर चैलेंज किया, और उन्होंने कहा कि 29 में भी हम ही जीतेंगे। खैर, आज विपक्षी दलों ने सिर्फ चाय पर चर्चा नहीं की, बल्कि आज उस याचिका पर भी खूब विवाद हुआ जिसे विपक्ष के तमाम नेता एक दिन पहले खुद सुप्रीम कोर्ट दायर करने पहुंचे थे। कारण यह था कि आज इस याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध यानी लिस्ट ही नहीं किया गया। और जानते हैं लिस्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इनमें कुल 14 गलतियां थी।

0: madam, you know, madam, what are you doing, madam? You need to have a hold of the
1: ये राहुल गांधी है, पत्रकार को ढकेल दिया, एक पत्रकार को ढकेल दिया गया यहाँ पर। मैं अपने घुटने के बल गिरूं, मेरा माइक मेरे हाथ में नहीं है, बट मेरे माइक मेरे कॉलर पे है। I can't keep patience. Threw me out.
2: कोई नहीं ढकेला।
1: अच्छा कोई नहीं है।
3: इस घटना के बाद बीजेपी नेताओं ने अस्पताल जाकर पत्रकार से मुलाकात की। ये भी कहा कि आज राहुल गांधी को देश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। सुनिए।
4: घुटनों के बल गिरी हूँ, पेट के बल गिरी हूँ और मेरे ऊपर मेरा कैमरा पर्सन गिरा है। मेरा फोन है इधर सर, मेरा फोन पूरा टूट चुका है। अभी
5: कल का जो भद्दा व्यवहार था और स्वयं राहुल गांधी और उनके साथियों ने जिस प्रकार से एक पत्रकार बहन के साथ दुर्व्यवहार किया, बहन 3 महीने प्रेग्नेंट थी, गर्भ से थी, बार बार कह रही थी कि संभल के मैं गर्भवती हूं, लेकिन जिस तरीके से उसका धक्कम धक्की की, जमीन पे फेंका, फिर उन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ा।
3: कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा है कि बीजेपी झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस का यह भी कहना है कि किसी भी वीडियो में ऐसा नहीं दिखता कि राहुल गांधी ने इस महिला पत्रकार को धक्का दिया या कोहनी मारी। हालांकि ये बात सिर्फ इस एक घटना की नहीं है, बीजेपी ने एक और वीडियो डाला है और उसके जरिए आरोप लगाया कि पैदल मार्च के दौरान राहुल गांधी ने कांग्रेस के ही एक कार्यकर्ता को आगे निकलने के लिए कोहनी मारी। देखिए, कुछ लोग ये आरोप भी लगा रहे हैं कि इस पैदल मार्च में कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का भी अपमान हुआ और जब वो राहुल गांधी से आगे चल रहे थे तब दावा है कि राहुल गांधी ने कुछ किया है। इस वीडियो में देखिए,
6: मैं सफेद टी शर्ट में राहुल गांधी नजर आ रहे हैं और उनके साथ कर्नाटक के सीएम डीके शिवकुमार मौजूद है।
3: इसी पैदल मार्च में जब भीड़ बेकाबू हो रही थी और लोग एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की कर रहे थे तब आरोप है कि राहुल गांधी ने भी अपने समर्थकों को धक्का देकर पीछे किया। इस वीडियो को अब बीजेपी बड़ा मुद्दा बना रही है। ये वाला देखिए।

तो ये वो वीडियो था जिस वीडियो में राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव की ट्रक से उतरने में मदद कर रहे थे। उन तस्वीरों को लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है और ये कह रही है कि यहां भी राहुल गांधी ने अपने सहयोगी नेताओं के साथ गलत किया। देखिए,

इधर सोशल मीडिया पर बीजेपी के समर्थक उन तस्वीरों पर सवाल उठा रहे हैं जिनमें प्रियंका गांधी वाड्रा सुप्रिया सुले प्रदर्शन के दौरान झूमते नजर आए। हालांकि विपक्षी दलों का और उनके प्रवक्ताओं का कहना है

वो अपने काडर में जान फूंकने की कोशिश कर रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने की कोशिश कर रहे थे और जिस तरह से लोग वहां पर पहुंचे थे इस प्रोटेस्ट में उसको देखकर वो अपने कार्यकर्ताओं में नए सिरे से जान फूंकने की कोशिश कर रहे थे। कांग्रेस बीजेपी पर राहुल गांधी के खिलाफ दुष्प्रचार का आरोप लगा रही है। उसने इस पैदल मार्च के लिए के नए वीडियो जारी किए हैं और कहा है कि बीजेपी इसमें दिख रही भीड़ से डर गई है। देखिए

0: Senu, have you seen Khargeji?
1: जो लोग ये दावा कर रहे थे कि राहुल गांधी ने नेहा बोरा को अपने साथ मंच पर दिखाने के लिए एनएसयूआई की अनदेखी की, उन्हें भी कांग्रेस ने जवाब दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि नेहा बोरा के साथ ट्रक पर दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की कार्यकारी पार्षद जन्नत बिश्नोई भी मौजूद थी, जिन्होंने 104 सालों का इतिहास पलटकर एनएसयूआई की तरफ से ये पद हासिल किया है। देखिए, भारत में चल रहे इस आंदोलन के बीच फ्रांस के छात्र आंदोलन की काफी चर्चा हो रही है। इस चर्चा का बड़ा कारण है फॉक्स न्यूज की एक रिपोर्ट। ये रिपोर्ट इस बात की तरफ इशारा करती है कि फ्रांस में स्कूल्स के बजट में कटौती और शिक्षकों की कमी को लेकर आंदोलन शुरू हुआ। बाद में कई गैर छात्र संगठन शामिल हुए, जिससे फ्रांस के इस आंदोलन को दुनिया में व्यापक रूप से पहुंचाया गया। यही नहीं, इसमें फिलिस्तीन के नारों और झंडों ने भी जगह बना ली। फॉक्स न्यूज की ये रिपोर्ट में लिखा है कि छात्र आंदोलन से जुड़े 50 संगठनों की पहचान की गई, जिनमें सिर्फ संगठन छात्रों या युवाओं के निकले, जबकि जो बाकी 35 संगठन थे वो वामपंथी दलों के, मानवाधिकार समूहों के, अन्य संस्थाओं से जुड़े निकले, जिन पर कई गंभीर सवाल फ्रांस में जो राइट विंगर्स हैं वो उठा रहे हैं। ये रिपोर्ट कहती है कि फ्रांस की कम्युनिस्ट पार्टियां और मजदूर यूनियन प्रदर्शन में लोगों को जुटाने, हड़ताल का समर्थन करने में सक्रिय रहे। जो संगठन इस आंदोलन को चला रहे थे, उन्हें अमेरिकी मूल के कारोबारी नेविल रॉय सिंघम का भी समर्थन मिला है, और यहीं से पूरी कहानी घूमती है। नेविल रॉय सिंघम पर आरोप लगता है कि वो चाइना की छवि को अच्छा दिखाने के लिए कई संगठनों पर पैसा खर्च करते हैं, मदद पहुंचाते हैं। और भारत में भी एक मीडिया संस्थान की फंडिंग के आरोपों में अमेरिकी मूल के इस कारोबारी पर सवाल पहले उठ चुके हैं। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि उन्होंने ये तमाम आरोप लगाए हैं, लेकिन फॉक्स न्यूज की इस रिपोर्ट से ये साबित नहीं होता कि भारत में हो रहे आंदोलनों के पीछे कोई सांठगांठ है, या क्या वाकई ऐसे संगठन शामिल हैं। ये ऐसे आरोप हैं जिनके बारे में अब तक खुद पुलिस ने और सरकार ने कुछ नहीं कहा है। इसलिए हम भी यही कहेंगे कि फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट को भारत से जोड़कर देखना क्या इस वक्त पर सही है। जब तक हमारी जांच एजेंसियां इस मुद्दे पर अपनी जांच नहीं करती और वो नहीं बताती कि भाई क्या है, कौन है, किस कौन इसके पीछे है, या फिर किसी इंडिविजुअल के बारे में। और फ्रांस के मामले में एक बात ये समझनी होगी कि वहां आंदोलनों, क्रांतियों की एक साझा परंपरा रही है। ऐसे आंदोलनों में वहां सिविल जो सोसाइटी ग्रुप्स हैं, मजदूर यूनियन है, एनजीओ है, वो शामिल होते रहे। और एक पहलू इसमें यह भी जोड़ा जा रहा है। और अब आपको दिखाते हैं दिल्ली में हो रहे प्रदर्शनों को लेकर पाकिस्तान में क्या चर्चा है।
2: प्रोटेस्ट सोशल मीडिया की जीनत बन रहा है, वहां की स्टूडेंट्स की स्टेटमेंट्स, लेकिन अब की बार ऐसे लगता है कुछ मुख्तलिफ अंदाज में ये लोग सामने आ रहे हैं। और इसको ज्वाइन ध्रुव राठी कर रहे हैं, 33 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। फिर इंडियन एक्टर्स हैं, प्रकाश राज, वो भी हमें इसमें दिखाई दिए, सेठी साहब और भी बहुत बड़े बड़े नाम। लेकिन आपको क्या लगता है कि अब की बार क्या नतीजे होंगे इस एहतजाज के, जो कल भी होने जा रहे हैं जंतर मंतर?
3: यहाँ दो तीन चीजें हो रही हैं इस वक्त। नरेंद्र मोदी इज इन ट्रबल। अच्छा, पहली ट्रबल तो यही कॉकरोच पार्टी, मगर फर्क यह है इस दफा ऑपोजिशन फुल फ्लेज्ड, 22 ऑपोजिशन पार्टीज लेड बाय राहुल गांधी, दे आर राइट बिहाइंड द कॉकरोच पार्टी। डिमांड वही है मोदी की रेजिग्नेशन, टू बिगिन विद इलेक्शन कमिश्नर की रेजिग्नेशन। और मैंने आपको पता पिछले हफ्ते कहा था कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा इलेक्शन कमिश्नर को बचाना। ये दिस इज अ वेरी बिग प्रोटेस्ट।
1: पंजाब में नशा एक ऐसी इंडस्ट्री बन गया है जिस पर न शासन का जोर चल रहा है न प्रशासन का। नशे के सौदागरों का एक ऐसा नेक्सस काम कर रहा है जिसको रोकने वालों को या तो आत्महत्या करनी पड़ती है या फिर वो सरेआम दिन दहाड़े सैकड़ों लोगों के सामने मारे जाते हैं। ये वीडियो दहलाने वाला है। मानसा में ऐसा ही हुआ। वहां पर एक एंटी ड्रग्स एक्टिविस्ट परविंदर सिंह झोटा को फार्मेसी चलाने वाले एक व्यक्ति ने खुलेआम सीधा गोली मार दी। आरोप है कि फार्मेसी चलाने वाला यह व्यक्ति नशे का कारोबार करता था और गैर कानूनी तरीके से लोगों को नशे की दवाइयां बेचता था। परविंदर सिंह झोटा को फार्मेसी वाले की इस हरकत के बारे में पता था और वो पिछले काफी समय से उसका विरोध कर रहा था, लेकिन आज जब उन्होंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया तब उसने उन्हें गोली मार दी। चालीस साल के परविंदर सिंह झोटा अपने क्षेत्र में नशे के कारोबार को लेकर आवाज उठाते रहे हैं। वो उन लोगों पर सवाल उठाते रहे जो बच्चों, युवाओं, बुजुर्गों को हेरोइन या फिर गैर कानूनी नशे की गोलियां बेचते थे। परविंदर सिंह झोटा को पता था कि मानसा शहर के रेलवे फाटक के पास एक मेडिकल स्टोर है, जो मेडिकल स्टोर उसका मालिक अश्विनी लोगों को नशे की गोलियां वहां पर बेचता है। भाई जिस दुकान से मिलता है फिर वो बात तो फैल ही जाती है। उसको रोकने के लिए आज वो अपने कुछ साथियों के साथ मेडिकल स्टोर पर पहुंच गए थे। वहां पर मेडिकल स्टोर के मालिक अश्विनी के साथ उनकी बहस हो गई और फिर अश्विनी ने पिस्टल निकाल ली, फायरिंग कर दी। इस हमले के बाद परविंदर ने भागकर खुद को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन अश्विनी ने एक के बाद एक तीन फायर किए थे, जिसमें दो गोलियां परविंदर के पेट में और एक उनके पैर में लगी। गोली लगने के बाद परविंदर बहुत दूर तक भाग नहीं पाए और पास की एक दुकान में जाकर छिप गए, लेकिन वहां पर खून बहने की वजह से उनकी हालत खराब हो गई। आसपास के जितने लोग थे वो उन्हें अस्पताल तो ले गए, भर्ती भी करवाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
4: अश्विनी नाम का जिहड़ा कमी शॉप ओनर है उहदे वल्लों इस घटना नूं अंजाम दिता गया। उन्हां वल्लों जिहड़ा हैगा अपने लाइसेंसड पिस्टल दे राहीं जिहड़ा हैगा परविंदर झोटा जिहड़े कि एक एंटी ड्रग एक्टिविस्ट सीगे और चंगे एक्टिविस्ट वजो मानसे च काम कर रहे सी, उहनां नूं जिहड़ा हैगा उहनां ते फायरिंग करके जिहड़ा हैगा इस घटना नूं अंजाम दिता।
1: पंजाब पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार करने के दावे किए हैं, लेकिन नशे के खिलाफ आवाज उठाने वालों के साथ पंजाब में जो कुछ हो रहा है उससे पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस और एक तरह से पूरी व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। पिछले महीने पंजाब के संगरूर से दो ऐसे मामले सामने आए थे जिसने राज्य में नशे की समस्या और पूरे देश का ध्यान खींचा। संगरूर में आपको याद होगा गुलजार सिंह, राज्य के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की सभा में उन्होंने नशे की बिक्री का मामला उठाया और आरोप है कि उसके बाद गुलजार सिंह को इतना टॉर्चर किया कि उन्होंने जहर खाकर जान दे दी, वीडियो बाकायदा बनाया। और इसी तरह का एक और मामला सामने आया जिसमें जग्गा सिंह नाम के एक व्यक्ति ने जहर खा लिया था और आरोप था कि उसने भी अपने गांव में नशे की बिक्री के खिलाफ आवाज उठाई थी। हालांकि सही समय पर इलाज मिलने पर जग्गा सिंह की जान बच गई। इस दोनों घटनाओं ने पंजाब में फल फूल रही नशे की इंडस्ट्री, उसके खिलाफ एक्शन में नाकाम हो रही पंजाब पुलिस पर सवाल उठाए। इन मामलों को लेकर विपक्षी पार्टियों ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को निशाने पर लिया। परविंदर सिंह झोटा के पिता तो अपने बेटे की हत्या के लिए सीधा पंजाब सरकार को जिम्मेदार बता रहे।
5: बर्खास्त करो, ये नशे छड़ियां बटा रही है। मेरा बेटा परविंदर सिंह झोटा नशा तस्करा ने शहीद करता।
1: और अब हम जेएनयू में एक प्रोफेसर के महापाप के बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि इसकी चर्चा विपक्षी दलों के प्रदर्शनों के बीच दब गई है, लेकिन मामला बड़ा है। आरोप अभी एफआईआर में, जांच और जांच के बाद अदालत तक तो पहुंचेंगे, लेकिन सवाल यही है कि जेएनयू की इंटरनल कमेटी की रिपोर्ट में मणिपुर के कांग्रेस के सांसद और जेएनयू में समाज शास्त्र के प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकोईजॉम पर 11 लड़कियों के यौन उत्पीड़न का जो आरोप लगा था वो इंटरनल कमिटी में सही पाया गया और उसके बाद उनको वहां से बर्खास्त कर दिया गया है। आरोपों में दरअसल कहा गया है कि बिमोल अकोईजॉम जो हैं, उनसे पढ़ने आने वाली छात्राओं से अश्लील बातें करते थे और इशारे करते थे, अपने घर पर उनका यौन शोषण करते थे। पीड़ित लड़कियों ने बिमोल की इन हरकतों से परेशान होकर जेएनयू की आंतरिक जांच समिति से शिकायत की थी। इन शिकायतों के तुरंत बाद प्रोफेसर बिमोल अकोईजॉम को उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया था। जेएनयू आंतरिक समिति ने अपनी जांच में बिमोल अकोयजम पर लगाए गए आरोपों को सही पाया है। आंतरिक जांच समिति जो है उसकी अपील पर दिल्ली पुलिस ने बिमोल अकोयजम के खिलाफ FIR दर्ज की। उनके खिलाफ BNS की अलग अलग धाराओं में यौन उत्पीड़न, गलत मंशा से छूने, अश्लील बातें और इशारे करने, इसके अलावा महिला की गरिमा का अपमान करने का केस दर्ज किया गया है। कांग्रेस सांसद बिमोल की हरकतों को लेकर कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। ये ऐसी जानकारियां हैं जिसमें शिक्षक को छात्राओं ने भक्षक की तरह दिखाया। 16 वर्षों से JNU में पढ़ा रहे बिमोल अकोयजम पर आरोप है कि वो अपनी क्लास की छात्राओं को अच्छे नंबर देने के नाम पर सेक्सुअल फेवर्स मांगते थे। प्रोफेसर होने के साथ साथ बिमोल अकोयजम एक सांसद भी थे, इस वजह से छात्राएं उनसे डरती थी और आरोप है कि बिमोल ने इसी डर का फायदा उठाया। पीड़ित छात्राओं ने आरोप लगाया है कि बिमोल अकोयजम उनसे उनकी डेटिंग लाइफ के बारे में सवाल पूछते थे। वो अश्लील इशारे करके ये पूछते थे कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्या क्या करती हैं। सिर्फ यही नहीं, वो छात्राओं के व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी बहुत निजी जानकारियां जो है वो मांगते थे। छात्राओं ने ये भी आरोप लगाया है कि बिमोल मौखिक परीक्षा लेने के बहाने छात्राओं को अपने घर पर बुलाते थे, फिर देर रात तक रोक कर रखते थे। इस दौरान उनको जबरदस्ती छूने की कोशिश करते थे, अश्लील हरकतें करते थे। त्योहारों की सीजन में इस वक्त देश का बाजार और आम आदमी एक अजीब सी कश्मकश से गुजर रहा है। एक तरफ जहां दिवाली के ठीक मुहाने पर खड़े होकर महंगाई ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने UPI पर MDR टालकर बाजार को राहत देने की कोशिश की है। UPI पर लगने वाले MDR ने व्यापारियों से लेकर आम खरीदारों की धड़कने बढ़ाई हुई थी। अभी 2 दिन बाद यानी 15 अक्टूबर से 2000 रुपए से ज्यादा के UPI ट्रांजैक्शन पर 0.4% का मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR लागू होने वाला था, लेकिन जैसे ही इसकी सुगबुगाहट शुरू हुई व्यापारियों के होश उड़ गए। चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री यानी CTI ने सरकार से कहा कि साल का सबसे बड़ा फेस्टिव सीजन सिर पर है, दशहरा, धनतेरस, दिवाली के वक्त में व्यापारियों पर यह वित्तीय चोट उनके कारोबार की कमर तोड़ देगी। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जो अध्याय खत्म हो चुका है उस पर बार बार रीटेक लेने से कहानी नहीं बदलती। नमस्कार।

0: पांच दिन विरोध प्रदर्शन करने के बाद राहुल गांधी के घर चाय पर चर्चा होती है। करीब दो घंटे की बैठक के बाद जब राहुल और इंडिया गठबंधन वाले ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो ज्ञानेश कुमार के साथ साथ जंतर मंतर पर प्रदर्शन की रोक पर गरजते हैं। सबने एक सुर में कहा कि सरकार जंतर मंतर को प्रदर्शन स्थल से नहीं हटा सकती। इसके अलावा राहुल ने अगले प्लान का सरप्राइज देते हुए सीधे कहा कि ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा उनका मिशन है।
1: ज्ञानेश कुमार के खिलाफ क्या है राहुल का सरप्राइज प्लान?
2: कैसे जाएंगे वो हम आपको बता नहीं सकते, क्योंकि फिर आपको सारा मतलब सरप्राइज खत्म हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि आपके लिए और देश के लिए ये माहौल बना रहे।
1: पांच दिन विरोध प्रदर्शन, छठे दिन इंडिया गठबंधन की चाय पर चर्चा। जंतर मंतर पर ही विरोध प्रदर्शन, इंडिया गठबंधन की नई कसम।
2: ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने जिस प्रकार से लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया है, साफ और साफ बीजेपी अमित शाह और मोदी जी के इशारे थे। हम सब लोग एकजुट हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए, और इसके लिए बहुत कुर्बानी देना होगा। हम सब लोग जो है मिलकर के देंगे।
3: ज्ञानेश कुमार एक ऐसा माफिया है जिसने पूरे सिस्टम का अपराधीकरण किया।
1: विपक्ष का ज्ञानेश हटाओ मार्च जारी रहेगा, लेकिन सरप्राइज के साथ।
4: आते इन्होंने संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करके चुनाव को प्रभावित किया है, और वोट चोरी का काम किया, घृणित काम किया।
5: वोट चोरी करता है, संघर्ष का जगह का चोरी करता है।
1: पहले सीईसी के खिलाफ शिव की बारात, अब नए प्लान पर चर्चा। पांच दिन तक दिल्ली की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के बाद हर कोई यही सोच रहा था कि क्या राहुल फिर से सरप्राइज देंगे, क्योंकि 12 अक्टूबर को जिस तरह से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस से लेकर इंडिया गठबंधन के दिग्गज नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट तक ज्ञानेश हटाओ मार्च निकाला, उसमें विपक्षी एकता भी दिखी और सड़कों पर कार्यकर्ताओं का हुजूम भी। पिछले कई दिनों का पैटर्न ऐसा ही था कि पहले राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने लंच किया, उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ तगड़ा विरोध प्रदर्शन किया। 13 अक्टूबर को भी जब राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के नेताओं को चाय पर बुलाया तो सबको लगा कि क्या फिर से ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कोई नया प्लान है, क्योंकि राहुल गांधी ने जो ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को शिव का तांडव और शिव की बारात का नाम दिया और सबको शिव की बारात में आने के लिए कहा, सबने सोचा क्या फिर से चाय के बाद विरोध प्रदर्शन का प्लान है। लेकिन जब राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने चाय पर चर्चा के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो राहुल गांधी ने विपक्ष के ज्ञानेश हटाओ मार्च पर एक और सरप्राइज दिया।
2: ये जो हमारी टीम है ये रुकने वाली नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये एंड गोल तक जाएगी। कैसे जाएंगे वो हम आपको बता नहीं सकते, क्योंकि फिर आप को सारा मतलब सरप्राइज खत्म हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि आपके लिए और देश के लिए ये माहौल बना रहे, इंटरेस्टिंग रहे और सरप्राइजिंग रहे। मगर मैं आपको गारंटी देता हूं कि जिस प्रकार से हम सब ने मोबिलाइज किया, जिस एनर्जी से, जिस शक्ति से हमने मोबिलाइज किया, जिस यूनिटी के साथ हमने मोबिलाइज किया, उसी प्रकार से हम सब मिलकर लड़ते रहेंगे।
1: 10 अक्टूबर को जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के ऐलान के बाद सरकार ने जंतर मंतर को आधिकारिक धरना प्रदर्शन स्थलों की सूची से ही हटा दिया। जी हां, न तो सरकार ने जंतर मंतर पर 10 अक्टूबर को सीजेपी को विरोध प्रदर्शन करने दिया और न ही आगे जंतर मंतर को धरना स्थल रहने दिया, और अब इंडिया गठबंधन ने कसम खाई है कि वो जंतर मंतर को वापस धरना प्रदर्शन के लिए लेकर ही रहेंगे।
2: ज्ञानू गुप्ता जी तो और आगे बढ़कर के चले गए 10 कदम। जिस हिसाब से एक कठपुतली की तरह ज्ञानेश गुप्ता जी ने जो काम किया है उसको जो है सजा जरूर मिलेगी। ये लोग बचने वाले लोग नहीं हैं,
6: ये लोग डरे हुए लोग हैं और ये डर इनका दिखाता है कि जंतर मंतर को जो है अब प्रोटेस्ट जहां होना चाहिए था, जो होता रहा है, जिसका ऐतिहासिक महत्व रहा है, उसको बदल करके जो है दिल्ली के बॉर्डर पे जो है कर दिया गया है।
7: It has truly been revealed that the people who have actually committed treason against the people of this country is the BJP and the people who have facilitated this treason. The Election Commission of India and the CEC, Yanesh Kumar, needs to go.
5: इनका खिलाफ हमारा संघर्ष आगे जाता है और जो संघर्ष करने के लिए एक डेसिग्नेटेड जगह था जंतर मंतर, इनका चोरी भी करता है।
8: We will not stop until Mr. Gyanesh Kumar is removed and criminal proceedings are launched not just against Mr. Gyanesh Kumar but against all the election officials of the Election Commission who have supervised elections in Haryana, Maharashtra, Bengal and Bihar.
1: अभी तक तो राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन वाले वोट चोरी और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एकजुटता और शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। अब जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के लिए भी एकता और ताकत दिखाने के लिए उतर पड़े हैं।
6: ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने जिस प्रकार से लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया है, साफ और साफ बीजेपी अमित शाह और मोदी जी के इशारे।
3: मोदी और शाह ने ये देश को डरा कर धमका कर रखा था, अब डरने की बारी उनकी है।
1: आपको बता दें कि भले ही आज राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन कांग्रेस की छात्र विंग NSUI और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर जरूर उतरे। दिल्ली के कनॉट प्लेस में NSUI के कार्यकर्ताओं ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हल्ला बोला तो पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जबकि यूपी के वाराणसी में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करने उतरे।
9: लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया ज्ञानेश कुमार ने।
10: एक ऐसा तानाशाह चुनाव आयोग है जो एक बराबर मिलकर जनता को, लोकतंत्र को लूटने का काम कर रहा है।
1: इसके अलावा पटना में लेफ्ट की छात्र विंग आयशा ने ज्ञानेश हटाओ मार्च निकाला, लेकिन पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग करके रोक लिया। लेकिन इस दौरान जब आयशा के छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया तो वो वज्र वाहन की चाबी लेकर ही भाग गए।
11: पटना में आज SIR को लेकर लेफ्ट छात्र संगठनों का आज प्रदर्शन था, बखूब बवाल हुआ। लेकिन एक फिर से बिहार में एक अनोखी तस्वीर, अनोखी घटना सामने आई है। ये वज्र वाहन है जहां पर छात्रों को डिटेन करके इसमें रखा गया था, और बड़ी बात यह है कि इस वज्र वाहन की गाड़ी की चाबी लेकर के जो छात्र हैं वो भाग गए हैं। ये तस्वीर देखिए, और इस वजह से इस गाड़ी को जो है यहीं पर लगाया गया है। ये तस्वीर देखिए, ये वज्र वाहन है और यहाँ पे जो गाड़ी की चाबी थी उसको लेकर के छात्र फरार हो गए हैं।
1: बंगाल में भी ममता बनर्जी की पार्टी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने उतरी, लेकिन यहाँ भी पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। आज तक ब्यूरो।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर अटैक किया, वोट चोरी और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर करारा जवाब भी दिया।
12: SIR तो 24 के बाद चालू हुआ। आप जब से कांग्रेस के मुख्य नेता के रूप में आए हैं और बाद में अध्यक्ष के रूप में आए हैं, लीडर ऑपोजिशन के रूप में आए, कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव हारे। आपको आत्मचिंतन करने की जरूरत है। फैब्रिकेटेड मीडिया इवेंट, झूठ की गूंज कर आप देश की जनता का विश्वास हासिल नहीं कर सकते। पूरी 14 पार्टी का कैडर इकट्ठा कर 1.5 किलोमीटर के क्षेत्र में 8,000 की भीड़ इकट्ठी कर आप देश की आवाज नहीं बन सकते हो। मेरा कांग्रेस पार्टी से निवेदन है कि देश की आवाज खेत खलियानों में, गांवों में, दूर सुदूर पहाड़ियों पर, जंगलों में और नदियों के किनारे भी है। आपकी वहां कोई रीच नहीं है। देश के कई सूबे ऐसे हैं, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, आपको कई दशकों तक कांग्रेस पार्टी को वहां की जनता ने नकारा है, हराया है। आज भी कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार की नकारात्मक पॉलिटिक्स कर रही है वो उनको फायदा नहीं करेगी। उनको जनता को समझना चाहिए, जनता का संपर्क करना चाहिए।
0: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और राजीव रंजन सिंह ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस और राहुल गांधी के चुनाव आयोग संबंधी आरोपों पर निशाना साधा। गोयल ने दावा किया कि कांग्रेस का अपने पुराने निर्णय और चुनाव आयोग से जुड़े अधिकारियों की नियुक्ति का रिकॉर्ड उसके मौजूदा आरोप से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता।
13: SIR की वजह से कांग्रेस केरल में जीती, क्योंकि ये सब डुप्लीकेट नाम, मरे हुए लोगों के नाम, जो लोग वहां से शिफ्ट हो गए वो नाम निकल गए, तो कोई मैल प्रैक्टिस होने की संभावना नहीं थी केरल में। ये शशि थरूर जी का दावा है। रमेश चेन्नीथाला जी ने खुद कहा कि SIR की वजह से ही आज कांग्रेस जीत पाई है केरल में, और केरल के मुख्यमंत्री स्वयं श्री VD सतीशन जी ने SIR की तारीफ की है। अधीर रंजन चौधरी जी ने इलेक्शन कमीशन की तारीफ करी कि पश्चिम बंगाल के चुनाव उन्होंने अच्छी तरीके से लड़ाए, ईमानदार व्यवस्था से लड़े गए, और जो गलत काम ममता बैनर्जी जी करती थी उसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने भी किया और इलेक्शन कमीशन की तारीफ की। अब उनकी खुद की पार्टी बेबुनियाद और झूठे वोट चोरी के दावे ला रही है।
0: बीजेपी JNU और महिलाओं के मुद्दे पर कांग्रेस पर लगातार हमले कर रही है। बीजेपी की महिला सांसदों ने राष्ट्रपति से मुलाकात की, सड़कों पर भी इस मुद्दे पर बीजेपी की ओर से जोरदार हंगामा या प्रदर्शन देखने को मिल रहा।
14: दिल्ली में सियासत का यह दूसरा मोर्चा है। कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजाम के खिलाफ ये गुस्सा फूटा है, जहां उनके निशाने पर राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा हैं। JNU से बर्खास्त किए गए बिमोल अकोइजम के खिलाफ बीजेपी महिला सांसदों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की।
15: मांग हमारी वही थी कि जो डॉक्टर बिमोल हैं, उनके अगेंस्ट प्रूवन है कि 11 महिला बच्चियों को उन्होंने सेक्सुअली हैरेस किया और उनको निकाल दिया गया JNU से, लेकिन आज भी वो MP बने हुए हैं और उनको MPship की बर्खास्त किया जाए और उनको हटाया जाए।
14: इनर मणिपुर से कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल पर JNU की 11 छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल अकोइजाम JNU में प्रोफेसर थे, वहां की 11 छात्राओं ने उन पर यौन शोषण जैसे गंभीर इल्जाम लगाए। तमाम आरोपों के बाद JNU ने आंतरिक जांच बिठाई, उस जांच में अकोइजाम पर तमाम आरोप सही साबित पाए गए। उसी रिपोर्ट के आधार पर JNU ने 9 अक्टूबर को उन्हें प्रोफेसर पद से हटा दिया। उसके दो दिन बाद यानी 11 अक्टूबर को आरोपी कांग्रेस सांसद के खिलाफ अलग अलग धाराओं में FIR भी दर्ज करा दी गई।
16: एक इंटरनल कमिटी ने गिल्टी पाया 11 छात्राओं की कंप्लेंट पर बिमल अकोइजम के खिलाफ। जितनी भी एलिगेशन सेक्सुअल हैरेसमेंट की थी उनमें सच्चाई पाई और इसीलिए उनको नौकरी से बर्खास्त करा, उस पर भी चुप्पी साधे हुए हैं राहुल गांधी।
14: उधर अंगोमचा बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं।
17: No, this is nothing but harassment. They know that once this kha panchayat style of doing by JNU, if it is challenged in a court of law, the court will take notice of the complete disregard for norms and rule and regulations. So they are trying to drag it to court, which will not also not stand. And I have said before, if you go into the merit of the case, in itself also people will get exposed. What is this so-called harassment allegations?
14: बहरहाल बीजेपी इस मुद्दे को लेकर लगातार सड़कों पर उतरी हुई है, जहां अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
0: दिल्ली में वोट चोरी को लेकर इंडिया गठबंधन और CJP ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी ने वोटर लिस्ट पर सवाल उठा दिए। आरोप यही है कि SIR के बावजूद वोटर लिस्ट में फर्जी वोटर उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। फर्जी वोटरों को लेकर समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत भी की है।
1: यूपी चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। SIR और वोट चोरी के आरोपों के बीच समाजवादी पार्टी की तरफ से एक नया दावा किया गया है। दावा यही है कि उत्तर प्रदेश की 100 विधानसभा सीटों पर फर्जी वोटरों के नाम जोड़े गए हैं। सवाल यही है कि SIR के बाद फर्जी वोटर कहां से आए।
18: देखिए उत्तर प्रदेश में एफआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई, समाजवादी पार्टी के पीडीए प्रहरी ने लगातार सजगता से एफआईआर पे नजर रखी और बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में वोट कटने का काम हुआ, जिसको लेके भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी थी, भाजपा बेचैन थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान था कि 2.5 करोड़ से ज्यादा वोट कट गए, चिंतित थे। लेकिन उसके बाद जब फॉर्म 6 और फॉर्म 7 आया तो भाजपा की साजिश, चुनाव आयोग की साजिश के कारण लगातार उत्तर प्रदेश में फॉर्म 6 और फॉर्म 7 का दुरुपयोग करके लगातार वोटर्स को बढ़ाया जा रहा है।
1: समाजवादी पार्टी ने वोटर लिस्ट में फर्जी वोटरों को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की है। दावा यही है कि वोटर लिस्ट में फर्जी वोटरों के नाम पड़ताल के दौरान मिले हैं। समाजवादी पार्टी के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है।
19: देखिए जब भी चुनाव नजदीक आता है या चुनाव होता है तो ये लोग अपने हार का कारण पहले ढूंढ लेते हैं कि जब हम हारेंगे तो हम क्या बोलेंगे, तो फिर हारेंगे तो बोल देंगे कि हम वोट में गड़बड़ी थी इसलिए हार गए। कभी एबीएम को बता देते हैं कि जो है एबीएम के कारण हम हार गए। तो इस तरह से ये अपनी हार का पहले से भूमिका तैयार कर रहे हैं।
1: दरअसल बीते कुछ दिनों से 16 लाख वोटर बहाए जाने के दावे सोशल मीडिया पर किए गए। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोपों पर यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी नवदीप रिडवा सफाई दे चुके हैं। दावा किया है कि फेक वोटरों को लेकर मिलने वाली शिकायतों पर एक्शन लिया गया है और लिया जाएगा, लेकिन इसे लेकर भ्रामक झूठ भी फैलाया जा रहा है।
20: एसआर के बाद हमारे पास कई ज्ञापन आए थे राजनीतिक दलों के, उसमें गलत नाम काटने का नहीं था, किसी समुदाय विशेष का काटने का शिकायत नहीं थी, शिकायत थी डुप्लीकेट नामों की, और जहां जहां डुप्लीकेट पाए गए उनका बकायदा डिलीशन किया गया है। कुछ का जो अब आएगी शिकायत उनके भी जांच होगी। तो ऐसा नहीं है कि कोई शिकायत और ज्ञापन हमारे पास आया और अनअटेंडेड या बिना इंक्वायरी के हमने रखा है।
21: एक बात तो साफ है, एक तरफ दिल्ली में चुनाव आयोग को लेकर घमासान शुरू हो चुका है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल अब कहीं भी मौका नहीं चूक रहे हैं जहां चुनाव आयोग से सवाल किए जा सके। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: पंजाब से एक सनसनीखेज तस्वीर सामने आई जहां नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले समाजसेवी को सरेआम गोली मार दी गई, जिसने एक बार फिर चुनाव से पहले पंजाब की राजनीति को तेज कर दिया।
22: पंजाब के मानसा में फेसबुक लाइव में बहस के दौरान ये गोलीकांड की तस्वीरें हैं। जिसमें नशे के खिलाफ बड़े स्तर पर सामाजिक मुहिम चलाने वाले मशहूर नशा विरोधी एक्टिविस्ट परविंदर छोटा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। छोटा केमिस्ट की दुकान पर नशा बेचने का आरोप लगाते हुए फेसबुक लाइव कर रहे थे। इसी दौरान केमिस्ट वाले ने उन्हें गोली मार दी और अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस मामले को आपसी रंजिश से जोड़ रही है।
23: रंजिशन इस व्यक्ति ने जो है उस पे फायरिंग करके जो है इस घटना को अंजाम दिया है।
22: वहीं परविंदर सिंह छोटा के परिवार का कहना है कि ड्रग्स के खिलाफ उनकी मुहिम के चलते छोटा की हत्या की गई।
24: नशा कौन बिकामा है? वो पंजाब सरकार ने विजय सिंगले वर्गे मंत्री बिकामे ने।
22: मामले में एक बार फिर पंजाब में नशे पर सियासी बहस तेज हो गई है।
25: नशियां नु रोकण वास्ते संघर्ष कर रहा सी, सरकार नाल लड़ाई लड़ रहा सी, सरकार ते नशा बेचण वाले उनु बार बार दबा रहे सी, लेकिन अज आखर नु उस दे गोलियां मार के मार दिता है। बहुत ही घिनौनी हरकत हुई है, सरकार वास्ते डुब के मरने वाली गल है।
26: गोलियां मार के कत्ल किया गया, उन्हें एक बारी फिर पंजाब दे विच माड़े ला एंड ऑर्डर की जिहड़ी तस्वीर है वो देश के सामने रख दी। वह व्यक्ति जिहड़ा 5-6 साल तो नशियां दे खिलाफ जहाद खड़ा करके बैठा सी।
27: अभी इन्वेस्टिगेशन सामने आएगी, कोई भी व्यक्ति जो कानून अपने हाथ में लेगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
22: घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इस हत्या के पीछे क्या वजह है इसे लेकर पुलिस की जांच जारी है। इस हत्याकांड के विरोध में मानसा में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। परविंदर छोटा के समर्थकों की ओर से मानसा के 12 हाटा चौक पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। विरोध के चलते बाजार भी बंद कर दिया गया है। वहीं इस मामले में परविंदर छोटा के अलावा 4 अन्य लोग भी घायल हुए हैं। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो।
0: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज

0: राहुल को अमित शाह का जवाब, एसआईआर के बहाने घुसपैठियों को बचा रहे हैं। 2029 में करारी हार के लिए रहे तैयार, देश की जनता को मोदी पर भरोसा। इंडिया गठबंधन की चाय पर चर्चा के बाद बोले राहुल, शाह ज्ञानेश को नहीं छोड़ेंगे, लोकतंत्र को बचाना उद्देश्य। खड़गे तेजस्वी राउत ने ज्ञानेश पर किया तीखा वार। दिल्ली में कांग्रेस ऑफिस के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, यौन उत्पीड़न में जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर कांग्रेस सांसद के खिलाफ फल्ला बोल, राष्ट्रपति से गुहार। एल मुरुगन ने पीएम को लिखी चिट्ठी, मंत्रिमंडल छोड़ने की मांगी अनुमति, कहा तमिलनाडु में काम करूंगा, रिजिजू से मिले। और बिहार के हाजीपुर में गंगा नदी में पलटी नाव, 14 लोगों की मौत, सीएम ने रेस्क्यू के दिए निर्देश, पीएमओ ने 2-2 लाख के मुआवजे की घोषणा। पांच दिन विरोध प्रदर्शन करने के बाद राहुल गांधी के घर चाय पर चर्चा होती है। करीब 2 घंटे की बैठक के बाद जब राहुल और इंडिया गठबंधन वाले ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो ज्ञानेश कुमार के साथ साथ जंतर मंतर पर प्रदर्शन की रोक पर गरजते हैं। सबने एक सुर में कहा कि सरकार जंतर मंतर को प्रदर्शन स्थल से नहीं हटा सकती। इसके अलावा राहुल ने अगले प्लान का सरप्राइज देते हुए सीधे कहा कि ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा उनका मिशन है।
1: ज्ञानेश कुमार के खिलाफ क्या है राहुल का सरप्राइज प्लान?
2: कैसे जाएंगे वो हम आपको बता नहीं सकते, क्योंकि फिर आप को सारा मतलब सरप्राइज खत्म हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि आपके लिए और देश के लिए ये माहौल बना रहे।
1: 5 दिन विरोध प्रदर्शन, 6ठे दिन इंडिया गठबंधन की चाय पर चर्चा, जंतर मंतर पर ही विरोध प्रदर्शन, इंडिया गठबंधन की नई कसम।
2: ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने जिस प्रकार से लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया है, साफ और साफ बीजेपी अमित शाह और मोदी जी के इशारे, हम सब लोग एकजुट हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए, और इसके लिए बहुत कुर्बानी देना होगा, हम सब लोग जो है मिलकर के देंगे।
3: ज्ञानेश कुमार एक ऐसा माफिया है जिसने पूरे सिस्टम का अपराधीकरण किया।
1: विपक्ष का ज्ञानेश हटाओ मार्च जारी रहेगा, लेकिन सरप्राइज के साथ।
4: अतः इन्होंने संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करके चुनाव को प्रभावित किया है और वोट चोरी का काम किया, घृणित काम किया।
5: वोट चोरी करता है, संघर्ष का जगह का चोरी करता है।
1: पहले सीईसी के खिलाफ शिव की बारात, अब नए प्लान पर चर्चा। 5 दिन तक दिल्ली की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के बाद हर कोई यही सोच रहा था कि क्या राहुल फिर से सरप्राइज देंगे, क्योंकि 12 अक्टूबर को जिस तरह से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस से लेकर इंडिया गठबंधन के दिग्गज नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट तक ज्ञानेश हटाओ मार्च निकाला, उसमें विपक्षी एकता भी दिखी और सड़कों पर कार्यकर्ताओं का हुजूम भी। पिछले कई दिनों का पैटर्न ऐसा ही था कि पहले राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने लंच किया, उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ तगड़ा विरोध प्रदर्शन किया। 13 अक्टूबर को भी जब राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के नेताओं को चाय पर बुलाया तो सबको लगा कि क्या फिर से ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कोई नया प्लान है, क्योंकि राहुल गांधी ने जो ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को शिव का तांडव और शिव की बारात का नाम दिया और सबको शिव की बारात में आने के लिए कहा, सबने सोचा क्या फिर से चाय के बाद विरोध प्रदर्शन का प्लान है। लेकिन जब राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने चाय पर चर्चा के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो राहुल गांधी ने विपक्ष के ज्ञानेश हटाओ मार्च पर एक और सरप्राइज दिया।
2: ये जो हमारी टीम है ये रुकने वाली नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये एंड गोल तक जाएगी। कैसे जाएंगे वो हम आपको बता नहीं सकते, क्योंकि फिर आप को सारा मतलब सरप्राइज खत्म हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि आपके लिए और देश के लिए ये माहौल बना रहे, इंटरेस्टिंग रहे और सरप्राइजिंग रहे।
6: मगर मैं आपको गारंटी देता हूं कि जिस प्रकार से हम सब ने मोबिलाइज किया, जिस एनर्जी से, जिस शक्ति से हमने मोबिलाइज किया, जिस यूनिटी के साथ हमने मोबिलाइज किया, उसी प्रकार से हम सब मिलकर लड़ते रहेंगे।
7: 10 अक्टूबर को जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के ऐलान के बाद सरकार ने जंतर मंतर को आधिकारिक धरना प्रदर्शन स्थलों की सूची से ही हटा दिया। जी हां, न तो सरकार ने जंतर मंतर पर 10 अक्टूबर को सीजेपी को विरोध प्रदर्शन करने दिया और न ही आगे जंतर मंतर को धरना स्थल रहने दिया। और अब इंडिया गठबंधन ने कसम खाई है कि वो जंतर मंतर को वापस धरना प्रदर्शन के लिए लेकर ही रहेंगे।
2: ज्ञानू गुप्ता जी तो और आगे बढ़कर के चले गए 10 कदम। जिस हिसाब से एक कठपुतली की तरह ज्ञानेश गुप्ता जी ने जो काम किया है उसको जो है सजा जरूर मिलेगी। ये लोग बचने वाले लोग नहीं हैं, ये लोग डरे हुए लोग हैं। और ये डर इनका दिखाता है कि जंतर मंतर को जो है अब प्रोटेस्ट जहां होना चाहिए था, जो होता रहा है, जिसका ऐतिहासिक महत्व रहा है, उसको बदल करके जो है दिल्ली के बॉर्डर पे जो है कर दिया गया है।
8: It is truly, it has truly been revealed that the people who have actually committed treason against the people of this country is the BJP and the people who have facilitated this treason. The Election Commission of India and the CEC, Ganesh Kumar, needs to go.
5: Inka khilaf hamara sangharsh aage jata hai. Aur jo sangharsh karne ke liye ek designated jagah tha Jantar Mantar. Inka chori bhi karta hai.
9: We will not stop until Mr. Ganesh Kumar is removed and criminal proceedings are launched not just against Mr. Ganesh Kumar but against all the election officials of the Election Commission who have supervised elections in Haryana, Maharashtra, Bengal and Bihar.
7: अभी तक तो राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन वाले वोट चोरी और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एकजुटता और शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। अब जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के लिए भी एकता और ताकत दिखाने के लिए उतर पड़े हैं।
2: ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने जिस प्रकार से लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया है, साफ और साफ बीजेपी, अमित शाह और मोदी जी के इशारे पे।
3: मोदी और शाह ने ये देश को डरा कर धमका कर रखा था, अब डरने की बारी उनकी है।
7: आपको बता दें कि भले ही आज राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन कांग्रेस की छात्र विंग NSUI और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर जरूर उतरे। दिल्ली के कनॉट प्लेस में NSUI के कार्यकर्ताओं ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हल्ला बोला तो पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जबकि यूपी के वाराणसी में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करने उतरे।
10: लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया ज्ञानेश कुमार ने।
11: एक ऐसा तानाशाह चुनाव आयोग है जो एक बराबर मिलकर जनता को, लोकतंत्र को लूटने का काम कर रहा है।
7: इसके अलावा पटना में लेफ्ट की छात्र विंग आयशा ने ज्ञानेश हटाओ मार्च निकाला, लेकिन पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग करके रोक लिया। लेकिन इस दौरान जब आयशा के छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया तो वो वज्र वाहन की चाबी लेकर ही भाग गए।
12: पटना में आज SIR को लेकर लेफ्ट छात्र संगठनों का आज प्रदर्शन था, बखूब बवाल हुआ। लेकिन एक फिर से बिहार में एक अनोखी तस्वीर, अनोखी घटना सामने आई है। ये वज्र वाहन है जहां पर छात्रों को डिटेन करके इसमें रखा गया था। और बड़ी बात यह है कि इस वज्र वाहन की गाड़ी की चाबी लेकर के जो छात्र हैं वो भाग गए हैं। ये तस्वीर देखिए, और इस वजह से इस गाड़ी को जो है यहीं पर लगाया गया है। ये तस्वीर देखिए, ये वज्र वाहन है और यहाँ पे जो गाड़ी की चाबी थी उसको लेकर के छात्र फरार हो गए हैं।
7: बंगाल में भी ममता बनर्जी की पार्टी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने उतरी, लेकिन यहाँ भी पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। आज तक ब्यूरो।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर अटैक किया, वोट चोरी और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर करारा जवाब भी दिया।
13: SIR तो 24 के बाद चालू हुआ। आप जब से कांग्रेस के मुख्य नेता के रूप में आए हैं और बाद में अध्यक्ष के रूप में आए हैं, लीडर ऑपोजिशन के रूप में आए, कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव हारी। आपको आत्मचिंतन करने की जरूरत है। फैब्रिकेटेड मीडिया इवेंट, झूठ की गूंज कर आप देश की जनता का विश्वास हासिल नहीं कर सकते। पूरी 14 पार्टी का कैडर इकट्ठा कर 1.5 किलोमीटर के क्षेत्र में 8,000 की भीड़ इकट्ठी कर आप देश की आवाज नहीं बन सकते हो। मेरा कांग्रेस पार्टी से निवेदन है कि देश की आवाज खेत खलियानों में, गांवों में, दूर सुदूर पहाड़ियों पर, जंगलों में और नदियों के किनारे भी है। आपकी वहां कोई रीच नहीं है। देश के कई सूबे ऐसे हैं, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, आपको कई दशकों तक कांग्रेस पार्टी को वहां की जनता ने नकारा है, हराया है। आज भी कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार की नकारात्मक पॉलिटिक्स कर रही है वो उनको फायदा नहीं करेगी। उनको जनता को समझना चाहिए, जनता का संपर्क करना चाहिए।
0: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और राजीव रंजन सिंह ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस और राहुल गांधी के चुनाव आयोग संबंधी आरोपों पर निशाना साधा। गोयल ने दावा किया कि कांग्रेस का अपने पुराने निर्णय और चुनाव आयोग से जुड़े अधिकारियों की नियुक्ति का रिकॉर्ड उसके मौजूदा आरोप से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता।
14: SIR की वजह से कांग्रेस केरल में जीती, क्योंकि ये सब डुप्लीकेट नाम, मरे हुए लोगों के नाम, जो लोग वहां से शिफ्ट हो गए वो नाम निकल गए, तो कोई मैल प्रैक्टिस होने की संभावना नहीं थी केरल में। ये शशि थरूर जी का दावा है। रमेश चेन्नीथाला जी ने खुद कहा कि SIR की वजह से ही आज कांग्रेस जीत पाई है केरल में, और केरल के मुख्यमंत्री स्वयं श्री VD सतीशन जी ने SIR की तारीफ की है। अधीर रंजन चौधरी जी ने इलेक्शन कमीशन की तारीफ करी कि पश्चिम बंगाल के चुनाव उन्होंने अच्छी तरीके से लड़ाए, ईमानदार व्यवस्था से लड़े गए, और जो गलत काम ममता बैनर्जी जी करती थी उसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने भी किया और इलेक्शन कमीशन की तारीफ की। अब उनकी खुद की पार्टी बेबुनियाद और झूठे वोट चोरी के दावे ला रही है।
0: बीजेपी JNU और महिलाओं के मुद्दे पर कांग्रेस पर लगातार हमले कर रही है। बीजेपी की महिला सांसदों ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। सड़कों पर भी इस मुद्दे पर बीजेपी की ओर से जोरदार हंगामा या प्रदर्शन देखने को मिल रहा है।
15: दिल्ली में सियासत का यह दूसरा मोर्चा है। कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजाम के खिलाफ ये गुस्सा फूटा है, जहां उनके निशाने पर राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा हैं। JNU से बर्खास्त किए गए बिमोल अकोइजम के खिलाफ बीजेपी महिला सांसदों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की।
16: मांग हमारी वही थी कि जो डॉक्टर बिमोल हैं, उनके अगेंस्ट प्रूवन है कि 11 महिला बच्चियों को उन्होंने सेक्सुअली हैरेस किया और उनको निकाल दिया गया JNU से, लेकिन आज भी वो MP बने हुए हैं और उनको MPship की बर्खास्त किया जाए और उनको हटाया जाए।
15: इनर मणिपुर से कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल पर JNU की 11 छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल अकोइजम JNU में प्रोफेसर थे, वहां की 11 छात्राओं ने उन पर यौन शोषण जैसे गंभीर इल्जाम लगाए। तमाम आरोपों के बाद JNU ने आंतरिक जाँच बिठाई। उस जाँच में अकोइजम पर तमाम आरोप सही साबित पाए गए। उसी रिपोर्ट के आधार पर JNU ने 9 अक्टूबर को उन्हें प्रोफेसर पद से हटा दिया। उसके दो दिन बाद यानी 11 अक्टूबर को आरोपी कांग्रेस सांसद के खिलाफ अलग अलग धाराओं में FIR भी दर्ज करा दी गई।
17: एक इंटरनल कमेटी ने गिल्टी पाया 11 छात्राओं की कंप्लेंट पर बिमल अकोइजम के खिलाफ। जितनी भी एलिगेशन सेक्सुअल हैरेसमेंट की थी उनमें सच्चाई पाई और इसीलिए उनको नौकरी से बर्खास्त करा। उस पर भी चुप्पी साधे हुए हैं राहुल गांधी।
15: उधर अंगोमचा बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं।
18: No, this is nothing but harassment. They know that once this khap panchayat style of doing by JNU, if it is challenged in a court of law, the court will take notice of the complete disregard for norms and rules and regulations. So they are trying to drag it to court, which will not also not stand. And I have said before, if you go into the merit of the case, in itself also people will get exposed. What is this so-called harassment allegations?
15: बहरहाल बीजेपी इस मुद्दे को लेकर लगातार सड़कों पर उतरी हुई है, जहां अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
0: दिल्ली में वोट चोरी को लेकर इंडिया गठबंधन और सीजेपी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी ने वोटर लिस्ट पर सवाल उठा दिए। आरोप यही है कि एसआईआर के बावजूद वोटर लिस्ट में फर्जी वोटर उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। फर्जी वोटरों को लेकर समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत भी की है।
7: यूपी चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। एसआईआर और वोट चोरी के आरोपों के बीच समाजवादी पार्टी की तरफ से एक नया दावा किया गया है। दावा यही है कि उत्तर प्रदेश की 100 विधानसभा सीटों पर फर्जी वोटरों के नाम जोड़े गए हैं। सवाल यही है कि एसआईआर के बाद फर्जी वोटर कहां से आए।
19: देखिए, उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई, समाजवादी पार्टी के पीडीए प्रहरी ने लगातार सजगता से एसआईआर पे नजर रखी और बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में वोट कटने का काम हुआ, जिसको लेके भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी थी, भाजपा बेचैन थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान था कि 2.5 करोड़ से ज्यादा वोट कट गए, चिंतित थे। लेकिन उसके बाद जब फॉर्म 6 और फॉर्म 7 आया तो भाजपा की साजिश, चुनाव आयोग की साजिश के कारण लगातार उत्तर प्रदेश में फॉर्म 6 और फॉर्म 7 का दुरुपयोग करके लगातार वोटर्स को बढ़ाया जा रहा है।
7: समाजवादी पार्टी ने वोटर लिस्ट में फर्जी वोटरों को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की है। दावा यही है कि वोटर लिस्ट में फर्जी वोटरों के नाम पड़ताल के दौरान मिले हैं। समाजवादी पार्टी के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है।
20: देखिए, जब भी चुनाव नजदीक आता है या चुनाव होता है तो ये लोग अपने हार का कारण पहले ढूंढ लेते हैं कि जब हम हारेंगे तो हम क्या बोलेंगे, तो फिर हारेंगे तो बोल देखें कि हम वोट में गड़बड़ी थी इसलिए हार गए। कभी एबीएम को बता देते हैं कि जो है एबीएम के कारण हम हार गए। तो इस तरह से ये अपनी हार का पहले से भूमिका तैयार कर रहे हैं।
7: दरअसल बीते कुछ दिनों से 16 लाख वोटर बहाए जाने के दावे सोशल मीडिया पर किए गए। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोपों पर यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी नवदीप रिडवा सफाई दे चुके हैं। दावा किया है कि फेक वोटरों को लेकर मिलने वाली शिकायतों पर एक्शन लिया गया है और लिया जाएगा, लेकिन इसे लेकर भ्रामक झूठ भी फैलाया जा रहा है।
21: एसआईआर के बाद हमारे पास कई ज्ञापन आए थे राजनीतिक दलों के, उसमें गलत नाम काटने का नहीं था, किसी समुदाय विशेष का काटने का शिकायत नहीं थी। शिकायत थी डुप्लीकेट नामों की, और जहां जहां डुप्लीकेट पाए गए उनका बकायदा डिलीशन किया गया है। कुछ का जो अब आएगी शिकायत उनके भी जांच होगी। तो ऐसा नहीं है कि कोई शिकायत और ज्ञापन हमारे पास आया और अनअटेंडेड या बिना इंक्वायरी के हमने रखा है।
22: एक बात तो साफ है, एक तरफ दिल्ली में चुनाव आयोग को लेकर घमासान शुरू हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल अब कहीं भी मौका नहीं चूक रहे हैं जहां चुनाव आयोग से सवाल किए जा सके। समर श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: पंजाब से एक सनसनीखेज तस्वीर सामने आई, जहां नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले समाजसेवी को सरेआम गोली मार दी गई, जिसने एक बार फिर चुनाव से पहले पंजाब की राजनीति को तेज कर दिया।
15: पंजाब के मानसा में फेसबुक लाइव में बहस के दौरान ये गोलीकांड की तस्वीरें हैं। जिसमें नशे के खिलाफ बड़े स्तर पर सामाजिक मुहिम चलाने वाले मशहूर नशा विरोधी एक्टिविस्ट परविंदर छोटा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। छोटा एक केमिस्ट की दुकान पर नशा बेचने का आरोप लगाते हुए फेसबुक लाइव कर रहे थे। इसी दौरान केमिस्ट वाले ने उन्हें गोली मार दी और अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस मामले को आपसी रंजिश से जोड़ रही है।
23: रंजिशन इस व्यक्ति ने जो है उस पे फायरिंग करके जो है इस घटना को अंजाम दिया है।
15: वहीं परविंदर सिंह छोटा के परिवार का कहना है कि ड्रग्स के खिलाफ उनकी मुहिम के चलते छोटा की हत्या की गई।
24: नशा कौन बिकामा है? वो पंजाब सरकार ने विजय सिंह के वर्गे मंत्री बिकामे ने।
15: मामले में एक बार फिर पंजाब में नशे पर सियासी बहस तेज हो गई है।
25: नशियां नु रोकण वास्ते संघर्ष कर रहा सी, सरकार नाल लड़ाई लड़ रहा सी। सरकार ते नशा बेचण वाले उनु बार बार दबा रहे सी, लेकिन अज आखर नु उस दे गोलियां मार के मार दिता है। बहुत ही घिनौनी हरकत हुई है, सरकार वास्ते डुब के मरने वाली गल है।
26: गोलियां मार के कत्ल किया गया,
1: ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਹਾਦ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ।
4: ਅਭੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਮੇ ਲੇਗਾ ਉਸਕੇ ਉੱਪਰ ਸਖਤ ਸੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਜਾਏਗੀ।
15: घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इस हत्या के पीछे क्या वजह है इसे लेकर पुलिस की जांच जारी है। इस हत्याकांड के विरोध में मानसा में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। परविंदर झोटा के समर्थकों की ओर से मानसा के 12 हाटा चौक पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। विरोध के चलते बाजार भी बंद कर दिया गया है। वहीं इस मामले में परविंदर झोटा के अलावा 4 अन्य लोग भी घायल हुए हैं। चंडीगढ़ से कमलजीत संधु के साथ आज तक ब्यूरो।
0: सऊदी अरब के प्रिंस इन दिनों सीक्रेट बंकर में छिपने को मजबूर हैं। खबर यह है कि प्रिंस सलमान को अपनी जान का खतरा है। प्रिंस के डर का कारण कोई और नहीं बल्कि हूती विद्रोही हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया कि हूतियों के हमले के बाद से ही प्रिंस सलमान अंडरग्राउंड हैं, कई दिनों से सार्वजनिक तौर पर नजर नहीं आए।

0: क्या सऊदी पर ईरान कर सकता है हमला? सऊदी पर हूतियों के हमले के पीछे का खेल। बंकर में छिपे सऊदी प्रिंस के डर की वजह। हूतियों के साथ ईरान, सऊदी अरब परेशान। ईरान की सीधी धमकी, जमीनी सेना है तैयार। क्या हूती बहाना है, सऊदी अरब है निशाना।
1: We've suffered greatly from this ideology these past 30.
0: Middle East ko paigham, Iran ka mind game. America aur Iran ke beech parde ke piche baatcheet ka dawa Qatar ne kiya. Lekin vaarta ke beech Saudi Arab par Houthiyon ke hamle ke piche Iran ka mind game hai. Defense expert mante hain ki Saudi Arab ke bahane ab Iran Trump par lagatar dabav bahata ja raha hai kyunki Iran ne America ka daav America ke khilaf chal diya hai.
2: We're the bully of the Middle East, but they are the bully no more. From the first day I entered the political arena, I've been unwavering. I will never allow Iran to have a nuclear weapon. Upon taking office last year, I immediately opened negotiations with Iran and offered them full economic cooperation in exchange for ending their nuclear program and support for terror, but they refused. They absolutely refused. That was a big mistake. Then in Operation Midnight Hammer, the U.S. military obliterated their nuclear program beneath mountains of rubble. And again, I urged Iran to make a deal, and again, they refused. The regime continued building a vast missile and drone stockpile that threatened the security of every American service member in the region and everyone else in the region.
0: दरअसल ईरान पर चाहे 2025 में इसराइल का हमला हो या फिर ईरान पर 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल का हमला, ये हमले तब हुए जब अमेरिका और ईरान बातचीत की टेबल पर थे, मतलब बातचीत की आड़ में ईरान पर निशाना साधा गया। ठीक यही दाव अब ईरान ने चल दिया है। पर्दे के पीछे अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन बातचीत के दौरान सऊदी पर हूती ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसा रहे हैं। ऐसे में अब शांति समझौते को लेकर अमेरिका पर बड़ा दबाव है। ये वही दबाव है जिसके चलते हूतियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई से ट्रंप ने अपने पैर पीछे खींच लिए हैं। दूसरी तरफ शाही महलों में रहने वाले सऊदी के प्रिंस सलमान यानी MBS सीक्रेट बंकर में छिपने को मजबूर हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हूतियों के हमले के डर से मोहम्मद बिन सलमान इन दिनों गुप्त बंकर में अंडरग्राउंड हैं। प्रिंस सलमान की लोकेशन को गुप्त रखा जा रहा है। प्रिंस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खासतौर पर प्रिंस सलमान की सुरक्षा में स्पेशल गार्ड्स के दस्ते को तैनात किया गया है क्योंकि हूतियों की मिसाइल की जद में रियाद है। वही रियाद जहां सऊदी का एयर डिफेंस सिस्टम हूतियों की मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहा। सुरक्षा कारणों से प्रिंस सलमान को सार्वजनिक तौर पर बाहर न जाने की सलाह दी गई है। बड़ी बात यह है कि आखिरी बार बीते मंगलवार को सार्वजनिक तौर पर प्रिंस सलमान नजर आए थे, मतलब प्रिंस सलमान पर भी हमला हो सकता है। ये खतरा उस वक्त बढ़ गया जब सऊदी अरब पर भीषण हमलों के बावजूद हूतियों के समर्थन में ईरान खुलकर खड़ा हो गया। पड़ोसी देशों को धैर्य और ठोस भाईचारे की नीति पर चलना चाहिए। ऐसे समझौते ईरान को रोक नहीं पाएंगे। सऊदी अरब को तुर्की और पाकिस्तान उसी तरह सुरक्षा नहीं दे पाएंगे जैसे अमेरिका नहीं दे पाया। सऊदी अरब अपनी नीतियां बदले ताकि दूसरों के आगे अपनी सुरक्षा के लिए गिड़गिड़ाना न पड़े। हमने भी पाकिस्तान और तुर्की को लेकर कई अफवाहें सुनी हैं और उम्मीद करते हैं कि वो सच न हो। इस क्षेत्र के देशों को अच्छी तरह पता है कि यमन में किसी भी तरह की दखल अंदाजी खतरनाक रुख अख्तियार कर सकती है। इस मामले में मक्का रक्षा समझौते का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ईरान ने सिर्फ हूतियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को लेकर अपनी लक्ष्मण रेखा नहीं खींची, बल्कि ये भी संकेत दिए हैं कि अगर सऊदी पर हूतियों के हमलों के बाद अमेरिका ने फिर से हमले शुरू किए तो ईरान जमीनी स्तर पर मिडल ईस्ट के देशों में घुसपैठ कर सकता है।

0: सकता है। अगर अमेरिका नए हमले शुरू करता है तो हम पड़ोसी देशों में सेना भेज सकते हैं। अब की बार ईरानी सेना की तैयारी कई फ्रंट पर युद्ध लड़ने की है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी मुल्कों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सऊदी अरब के तेल ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। यूएई के अहम ठिकानों के साथ साथ क्षेत्रीय डेटा सेंटर और इंटरनेट केबल भी निशाने पर हैं। सऊदी अरब और यूएई के ठिकाने ईरान की हिट लिस्ट पर हैं, लेकिन ईरान ने ये साफ नहीं किया है कि किन देशों के खिलाफ अपनी जमीनी सेना को उतार सकता है। मतलब साफ है कि ईरान ने अमेरिका के साथ साथ मिडिल ईस्ट के देशों तक अपना बारूदी पैगाम पहुंचा दिया है। ईरान की धमकी के बीच हूतियों ने भी अमेरिका को बड़ी चेतावनी दी है। अगर अमेरिका यमन के खिलाफ आक्रामकता में शामिल होता है तो हम जवाबी कार्रवाई के फैसले पर विचार नहीं करेंगे, बल्कि अमेरिका और क्षेत्र में उसके सभी हितों को निशाना बनाते हुए त्वरित और करारा जवाब देंगे। कहीं नहीं अगर सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान हमारे खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई करता है तो उनके साथ भी वैसा ही बर्ताव किया जाएगा जैसा अभी सऊदी अरब के साथ किया जा रहा है। ईरान और हूतियों की धमकी का असर है कि सऊदी अरब ने इजराइल की तरफ से सैन्य मदद की पेशकश को ठुकरा दिया है। दरअसल हूतियों के खिलाफ सैन्य मदद का प्रस्ताव इजरायली सरकार की तरफ से सऊदी अरब के प्रिंस सलमान को भेजा गया था। इजरायली अखबार हारेट्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के कहने पर इजरायल ने सैन्य मदद का प्रस्ताव रखा था। नेतन्याहू की तरफ से अमेरिका की मध्यस्थता में यह संदेश मोहम्मद बिन सलमान को भेजा गया। प्रस्ताव में हूतियों के खिलाफ इजरायली सेना को शामिल किए जाने की बात कही गई। इस पर रियाद ने साफ कर दिया है कि वो इसराइल की मदद नहीं चाहता है। प्रिंस सलमान को डर है कि इसराइल की मदद लेने से सऊदी की जनता में नकारात्मक प्रतिक्रिया हो सकती है। जैसे ही सऊदी अरब ने इजरायली सैन्य मदद को ठुकराया, वैसे ही इसराइल के खिलाफ ईरान का बड़ा बयान सामने आया। ईरानी सांसद ने दावा किया कि हूतियों के बहाने ईरान पर इसराइल हमले का मौका तलाश रहा है, लेकिन ईरान पर इसराइल ने हमला किया तो इसराइली परमाणु सेंटर पर तबाही मचना तय है। नेतन्याहू 27 अक्टूबर को होने वाले चुनाव से पहले ईरान पर हमला कर सकते हैं। इसराइल का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नाकाम रहा तो दूसरे रास्ते खोजे जा रहे हैं। अगर ईरान पर बमबारी की जाती है तो जवाबी कार्रवाई की संभावना है और इसराइल के दिमोना एटमी सेंटर को निशाना बनाया जा सकता है। ईरान जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। बड़ी बात यह है कि फ्लाई दुबई कांड के बाद अमेरिका और इसराइल ने ईरान को कटघरे में खड़ा किया था। ट्रंप ने तो यहां तक दावा किया था कि हाईजैक की कोशिश के पीछे ईरानी साजिश थी। ट्रंप के इसी आरोप के बाद सऊदी अरब पर हूतियों ने अपने हमले तेज कर दिए, क्योंकि ये हमले ईरान की युद्ध नीति का हिस्सा हैं। अमेरिका या इसराइल दोबारा हमला करें उससे पहले ही ईरान ने अपना बारूदी पैगाम ट्रंप तक पहुंचा दिया। यही वजह है कि सऊदी पर हूतियों के हमले के बावजूद अमेरिका मौन है, पाकिस्तान चुप है और कोई भी देश हूतियों के खिलाफ सैन्य एक्शन की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। आज तक ब्यूरो।
1: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज

0: राहुल को अमित शाह का जवाब, एसआईआर के बहाने घुसपैठियों को बचा रहे हैं। 2029 में करारी हार के लिए रहे तैयार, देश की जनता को मोदी पर भरोसा। इंडिया गठबंधन की चाय पर चर्चा के बाद बोले राहुल, शाह ज्ञानेश को नहीं छोड़ेंगे, लोकतंत्र को बचाना उद्देश्य। खड़गे तेजस्वी राउत ने ज्ञानेश पर किया तीखा वार। दिल्ली में कांग्रेस ऑफिस के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, यौन उत्पीड़न में जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर कांग्रेस सांसद के खिलाफ फल्ला बोल, राष्ट्रपति से गुहार। एल मुरुगन ने पीएम को लिखी चिट्ठी, मंत्रिमंडल छोड़ने की मांगी अनुमति, कहा तमिलनाडु में काम करूंगा, रिजिजू से मिले। और बिहार के हाजीपुर में गंगा नदी में पलटी नाव, 14 लोगों की मौत, सीएम ने रेस्क्यू के दिए निर्देश, पीएमओ ने 2-2 लाख के मुआवजे की घोषणा। पांच दिन विरोध प्रदर्शन करने के बाद राहुल गांधी के घर चाय पर चर्चा होती है। करीब 2 घंटे की बैठक के बाद जब राहुल और इंडिया गठबंधन वाले ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो ज्ञानेश कुमार के साथ साथ जंतर मंतर पर प्रदर्शन की रोक पर गरजते हैं। सबने एक सुर में कहा कि सरकार जंतर मंतर को प्रदर्शन स्थल से नहीं हटा सकती। इसके अलावा राहुल ने अगले प्लान का सरप्राइज देते हुए सीधे कहा कि ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा उनका मिशन है।
1: ज्ञानेश कुमार के खिलाफ क्या है राहुल का सरप्राइज प्लान?
2: कैसे जाएंगे वो हम आपको बता नहीं सकते, क्योंकि फिर आप तो सारा मतलब सरप्राइज खत्म हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि आपके लिए और देश के लिए ये माहौल बना रहे।
1: 5 दिन विरोध प्रदर्शन, 6ठे दिन इंडिया गठबंधन की चाय पर चर्चा, जंतर मंतर पर ही विरोध प्रदर्शन, इंडिया गठबंधन की नई कसम।
2: ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने जिस प्रकार से लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया है, साफ और साफ बीजेपी अमित शाह और मोदी जी के इशारे से हम सब लोग एकजुट हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए, और इसके लिए बहुत कुर्बानी देना होगा, हम सब लोग जो है मिलकर के देंगे।
3: ज्ञानेश कुमार एक ऐसा माफिया है जिसने पूरे सिस्टम का अपराधीकरण किया।
1: विपक्ष का ज्ञानेश हटाओ मार्च जारी रहेगा, लेकिन सरप्राइज के साथ।
4: आतंक इन्होंने संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करके चुनाव को प्रभावित किया है, और वोट चोरी का काम क्या, घृणित काम क्या,
5: वोट चोरी करता है, संघर्ष का जगह का चोरी करता है।
1: पहले सीईसी के खिलाफ शिव की बारात, अब नए प्लान पर चर्चा। 5 दिन तक दिल्ली की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के बाद हर कोई यही सोच रहा था कि क्या राहुल फिर से सरप्राइज देंगे, क्योंकि 12 अक्टूबर को जिस तरह से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस से लेकर इंडिया गठबंधन के दिग्गज नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट तक ज्ञानेश हटाओ मार्च निकाला, उसमें विपक्षी एकता भी दिखी और सड़कों पर कार्यकर्ताओं का हुजूम भी। पिछले कई दिनों का पैटर्न ऐसा ही था कि पहले राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने लंच किया, उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ तगड़ा विरोध प्रदर्शन किया। 13 अक्टूबर को भी जब राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के नेताओं को चाय पर बुलाया तो सबको लगा कि क्या फिर से ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कोई नया प्लान है, क्योंकि राहुल गांधी ने जो ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को शिव का तांडव और शिव की बारात का नाम दिया और सबको शिव की बारात में आने के लिए कहा, सबने सोचा क्या फिर से चाय के बाद विरोध प्रदर्शन का प्लान है। लेकिन जब राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने चाय पर चर्चा के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो राहुल गांधी ने विपक्ष के ज्ञानेश हटाओ मार्च पर एक और सरप्राइज दिया।
2: ये जो हमारी टीम है ये रुकने वाली नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये एंड गोल तक जाएगी। कैसे जाएंगे वो हम आपको बता नहीं सकते, क्योंकि फिर आप को सारा मतलब सरप्राइज खत्म हो जाएगा, और हम चाहते हैं कि आपके लिए और देश के लिए ये माहौल बना रहे, इंटरेस्टिंग रहे और सरप्राइजिंग रहे।
6: मगर मैं आपको गारंटी देता हूं कि जिस प्रकार से हम सब ने मोबिलाइज किया, जिस एनर्जी से, जिस शक्ति से हमने मोबिलाइज किया, जिस यूनिटी के साथ हमने मोबिलाइज किया, उसी प्रकार से हम सब मिलकर लड़ते रहेंगे।
7: 10 अक्टूबर को जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के ऐलान के बाद सरकार ने जंतर मंतर को आधिकारिक धरना प्रदर्शन स्थलों की सूची से ही हटा दिया। जी हाँ, न तो सरकार ने जंतर मंतर पर 10 अक्टूबर को सीजेपी को विरोध प्रदर्शन करने दिया और न ही आगे जंतर मंतर को धरना स्थल रहने दिया। और अब इंडिया गठबंधन ने कसम खाई है कि वो जंतर मंतर को वापस धरना प्रदर्शन के लिए लेकर ही रहेंगे।
2: ज्ञानू गुप्ता जी तो और आगे बढ़कर के चले गए 10 कदम। जिस हिसाब से एक कठपुतली की तरह ज्ञानेश गुप्ता जी ने जो काम किया है उसको जो है सजा जरूर मिलेगी। ये लोग बचने वाले लोग नहीं हैं, ये लोग डरे हुए लोग हैं। और ये डर इनका दिखाता है कि जंतर मंतर को जो है अब प्रोटेस्ट जहां होना चाहिए था, जो होता रहा है, जिसका ऐतिहासिक महत्व रहा है, उसको बदल करके जो है दिल्ली के बॉर्डर पे जो है कर दिया गया है।
8: It is truly, it has truly been revealed that the people who have actually committed treason against the people of this country is the BJP and the people who have facilitated this treason. The Election Commission of India and the CEC, Ganesh Kumar, needs to go.
5: Inka khilaf hamara sangharsh aage jata hai. Aur jo sangharsh karne ke liye ek designated jagah tha Jantar Mandir. Inka chori bhi karta hai.
9: We will not stop until Mr. Ganesh Kumar is removed and criminal proceedings are launched not just against Mr. Ganesh Kumar but against all the election officials of the Election Commission who have supervised elections in Haryana, Maharashtra, Bengal and Bihar.
7: अभी तक तो राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन वाले वोट चोरी और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एकजुटता और शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। अब जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के लिए भी एकता और ताकत दिखाने के लिए उतर पड़े हैं।
2: ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने जिस प्रकार से लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया है, साफ और साफ बीजेपी, अमित शाह और मोदी जी के इशारे।
3: मोदी और शाह ने इस देश को डरा कर धमका कर रखा था, अब डरने की बारी उनकी है।
7: आपको बता दें कि भले ही आज राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन कांग्रेस की छात्र विंग NSUI और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर जरूर उतरे। दिल्ली के कनॉट प्लेस में NSUI के कार्यकर्ताओं ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हल्ला बोला तो पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जबकि यूपी के वाराणसी में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करने उतरे।
10: लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया ज्ञानेश कुमार ने।
11: एक ऐसा तानाशाह चुनाव आयोग है जो एक बराबर मिलकर जनता को, लोकतंत्र को लूटने का काम कर रहा है।
7: इसके अलावा पटना में लेफ्ट की छात्र विंग आयशा ने ज्ञानेश हटाओ मार्च निकाला, लेकिन पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग करके रोक लिया। लेकिन इस दौरान जब आयशा के छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया तो वो वज्र वाहन की चाबी लेकर ही भाग गए।
12: पटना में आज SIR को लेकर लेफ्ट छात्र संगठनों का आज प्रदर्शन था, बखूब बवाल हुआ। लेकिन एक फिर से बिहार में एक अनोखी तस्वीर, अनोखी घटना सामने आई है। ये वज्र वाहन है जहां पर छात्रों को डिटेन करके इसमें रखा गया था। और बड़ी बात यह है कि इस वज्र वाहन की गाड़ी की चाबी लेकर के जो छात्र हैं वो भाग गए हैं, ये तस्वीर देखिए। और इस वजह से इस गाड़ी को जो है यहीं पर लगाया गया है, ये तस्वीर देखिए, ये वज्र वाहन है। और यहाँ पे जो गाड़ी की चाबी थी उसको लेकर के छात्र फरार हो गए हैं।
7: बंगाल में भी ममता बनर्जी की पार्टी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने उतरी, लेकिन यहाँ भी पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। आज तक ब्यूरो।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर अटैक किया, वोट चोरी और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर करारा जवाब भी दिया।
13: SIR तो 24 के बाद चालू हुआ। आप जब से कांग्रेस के मुख्य नेता के रूप में आए हैं और बाद में अध्यक्ष के रूप में आए हैं, लीडर ऑपोजिशन के रूप में आए, कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव हारे। आपको आत्मचिंतन करने की जरूरत है। फैब्रिकेटेड मीडिया इवेंट, झूठ की गूंज कर आप देश की जनता का विश्वास हासिल नहीं कर सकते। पूरी 14 पार्टी का कैडर इकट्ठा कर 1.5 किलोमीटर के क्षेत्र में 8,000 की भीड़ इकट्ठी कर आप देश की आवाज नहीं बन सकते हो। मेरा कांग्रेस पार्टी से निवेदन है कि देश की आवाज खेत खलियानों में, गांवों में, दूर सुदूर पहाड़ियों पर, जंगलों में और नदियों के किनारे भी है। आपकी वहां कोई रीच नहीं है। देश के कई सूबे ऐसे हैं, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, आपको कई दशकों तक कांग्रेस पार्टी को वहां की जनता ने नकारा है, हराया है। आज भी कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार की नकारात्मक पॉलिटिक्स कर रही है वो उनको फायदा नहीं करेगी। उनको जनता को समझना चाहिए, जनता का संपर्क करना चाहिए।
0: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और राजीव रंजन सिंह ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस और राहुल गांधी के चुनाव आयोग संबंधी आरोपों पर निशाना साधा। गोयल ने दावा किया कि कांग्रेस का अपने पुराने निर्णय और चुनाव आयोग से जुड़े अधिकारियों की नियुक्ति का रिकॉर्ड उसके मौजूदा आरोप से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता।
14: SIR की वजह से कांग्रेस केरल में जीती, क्योंकि ये सब डुप्लीकेट नाम, मरे हुए लोगों के नाम, जो लोग वहां से शिफ्ट हो गए वो नाम निकल गए, तो कोई मैल प्रैक्टिस होने की संभावना नहीं थी केरल में। ये शशि थरूर जी का दावा है। रमेश चेन्नीथाला जी ने खुद कहा कि SIR की वजह से ही आज कांग्रेस जीत पाई है केरल में, और केरल के मुख्यमंत्री स्वयं श्री VD सतीशन जी ने SIR की तारीफ की है। अधीर रंजन चौधरी जी ने इलेक्शन कमीशन की तारीफ करी कि पश्चिम बंगाल के चुनाव उन्होंने अच्छी तरीके से लड़ाए, ईमानदार व्यवस्था से लड़े गए, और जो गलत काम ममता बनर्जी जी करती थी उसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने भी किया और इलेक्शन कमीशन की तारीफ की। अब उनकी खुद की पार्टी बेबुनियाद और झूठे वोट चोरी के दावे ला रही है।
0: और आइए अब हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसे देखकर आप ये समझ पाएंगे कि सरकार ने जंतर मंतर को प्रदर्शन की जगह के तौर पर से क्यों हटाया और दिल्ली में जिन 3 जगहों को प्रदर्शन के लिए चुना गया उनकी इस समय क्या स्थिति है।
15: जुलाई में जब जंतर मंतर के आंदोलन से सरकार के एक मंत्री का इस्तीफा हुआ तो तभी से ये माना जा रहा था कि अब जंतर मंतर पर आंदोलन नहीं होगा, और ऐसा ही हुआ है। सरकार ने जंतर मंतर को प्रदर्शन की जगहों से अलग कर दिया है और प्रदर्शनकारियों के लिए दिल्ली में 3 नई जगहें तय कर दी हैं। पहला है रामलीला मैदान, जो जंतर मंतर से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। दूसरा है बुराड़ी का ग्राउंड, जो यहां से 21 किलोमीटर दूर है। और तीसरा है पूर्वी दिल्ली में शाहदरा का CBD ग्राउंड, जो जंतर मंतर से 12 किलोमीटर दूर है। लेकिन क्या इन मैदानों पर प्रदर्शन करना इतना आसान रहेगा? क्योंकि प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर इसलिए प्रदर्शन करने आते थे क्योंकि यहां से संसद भवन पास में है, सरकार के सभी बड़े दफ्तर बिल्कुल पास में है, प्रदर्शनकारी सीधे सरकार तक अपनी आवाज पहुंचा सकते थे, जैसा कि जुलाई में CJP के प्रोटेस्ट में हुआ था। उस वक्त प्रदर्शनकारियों ने संसद मार्च भी कर दिया था जिसमें जमकर हिंसा हुई थी, लेकिन ये बात भी सही है कि इससे सरकार पर दबाव पड़ा था और इसीलिए आखिरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हुआ। अब अगर धरना प्रदर्शन की जगह दूर हो, जहां से न संसद पास हो, न प्रधानमंत्री का घर, न राष्ट्रपति का आवास, न कोई सरकारी दफ्तर, तो सरकार को क्या फर्क पड़ेगा? अब ये इन 2 ग्राउंड्स की तस्वीर आपके सामने है। एक है बुराड़ी का ग्राउंड, जो जंतर मंतर से 21 किलोमीटर दूर है। यहां अगर कोई पार्टी, कोई सामाजिक संगठन प्रदर्शन करने जाएगा भी तो क्या सरकार उसकी सुनेगी? और यही सवाल शाहदरा के CBD ग्राउंड के लिए भी है कि पूर्वी दिल्ली के इस ग्राउंड में प्रदर्शन करने कौन जाएगा, और जो यहां जाएगा क्या उसकी आवाज सुनी जाएगी?
16: जंतर मंतर की जगह सरकार ने जो तीन मैदान दिए हैं कि अब यहां पर धरना प्रदर्शन होगा, उनमें से एक बुराड़ी भी है। अब बुराड़ी आप समझिए कि संसद भवन से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर, और मैदान कितना बड़ा, अगर आप देखिए इसकी क्षमता इतनी है कि 3 से 4 लाख लोग जो है इस मैदान में बैठ सकते हैं। आमतौर पर धार्मिक बड़े आयोजनों के लिए इस मैदान का इस्तेमाल होता है, और इसीलिए यहां पर, लेकिन ये इतनी दूरी पर है कि बहुत सारे प्रदर्शनकारी या राजनीतिक दल अगर विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं तो सबसे पहले यहां आने के लिए जो क्षमता है वो बसों का सहारा, मेट्रो स्टेशन थोड़ी सी दूरी पर है, यहां आना। और दूसरा, जंतर मंतर पर 2000 की भीड़ 20 तो लगती है, लेकिन बुराड़ी मैदान पर अगर 1 लाख लोग भी बैठ जाएंगे तो भी ऐसा क्षमता लगता है कि 2 या 4 या 5 हजार लोग बैठे हैं। उसी के साथ साथ यहां पर क्या इतनी दूरी पर 17 किलोमीटर, क्योंकि जंतर मंतर पर बैठने का संदेश होता था कि वो इस नाम पर आते थे कि संसद मार्च करेंगे और फिर वहां से पार्लियामेंट सीट थाने जाते थे, क्या यहां से संसद मार्च की कोशिश भी की जा सकती है? 1 या 1.5 किलोमीटर के अंदर जो है उन्हें रखा जा सकता है। सुविधाओं के नाम पर बड़ी पार्किंग एरिया है, कितना भी बड़ा प्रोटेस्ट मार्च हो इस मैदान को भरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब यहां की एसओपी है कि मैदान तो उपलब्ध हो जाए, हो सकता आराम से, लेकिन क्या प्रदर्शन करने के लिए जो सामाजिक ग्रुप हैं, प्रेशर ग्रुप हैं, और इसी के साथ जो राजनीतिक दल हैं, क्या वो बुराड़ी के मैदान में प्रदर्शन करने के लिए आएंगे?
15: धरना प्रदर्शन इसलिए करने पड़ते हैं ताकि सरकारों को अपनी आवाज सुनवा सके, और इन मैदानों से कौन सी सरकार आवाज सुनेगी? हाँ, रामलीला मैदान जंतर मंतर से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है और ये भी एक धरना स्थल है, लेकिन यहाँ दूसरी तरह की समस्याएं हैं। क्या यहाँ प्रदर्शन के लिए ग्राउंड खाली मिलेगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल दशहरा तक रामलीला मैदान इसलिए प्रदर्शन के लिए नहीं मिल सकता क्योंकि नवरात्रों के पर्व के चलते यहाँ रामलीला का मंचन हो रहा है। मैदान के हिस्से में मेला भी लगा हुआ है। अब विजयदशमी पर रावण दहन से पहले रामलीला मैदान किसी और कार्यक्रम के लिए उपलब्ध नहीं हो सकता।
16: ये ऐतिहासिक जंतर मंतर पर अब धरना मना है क्योंकि केंद्र सरकार ने उसे धरना स्थल पर जो जगह दी गई हुई थी, जो उसकी मान्यता थी, उसे रद्द कर दिया है। लेकिन अब ये कह दिया है कि दिल्ली के 3 जगहों पर धरना हो सकेगा, धरना प्रदर्शन सभाएं हो सकेंगी, उनमें से एक है दिल्ली का ये ऐतिहासिक रामलीला मैदान। ये रामलीला मैदान अगर इसकी जगह को समझें तो अब इसको लेकर के दरअसल विरोध कर रहे हैं व्यापारी कि जंतर मंतर से आपने धरना प्रदर्शन हटा दिया जिससे कारोबार सही होगा, उसका तो स्वागत है, लेकिन रामलीला मैदान को धरना स्थल एक 3 जगह जो दी गई है जिसमें पूर्वी दिल्ली बुराड़ी का मैदान और ये दिल्ली का रामलीला मैदान, इसको लेकर के व्यापारी नाराज है। वो किस लिए समझिए, ये पूरा रामलीला मैदान है, इस समय यहां पर रामलीला चल रही है, मेले लगे हुए हैं क्योंकि नवरात्रि दशहरा में मेला लगता है। इसी के साथ साथ अब इसके बगल में क्या है, यहां पर यह नगर निगम का सिविक सेंटर है, आप समझिए यहां से नगर निगम संचालित होता है। बीच में महानगर का जो MTNL है आप देख रहे हैं उसकी बिल्डिंग है। इसी के ठीक बगल में यहां पर अगर आप देखेंगे इस तरफ अस्पताल है, आंखों का अस्पताल है, बड़े सारे कई अस्पताल हैं। अब अगर 360 डिग्री आपको ले जाता हूं तो यहां पर आपको दिखाई देगा वर्धमान प्लाजा, ट्रेडर टावर है, और इसी के साथ साथ यहां पर जो ट्रेड सेंटर है वो बनाया गया है।
15: आपको जानकर हैरानी होगी कि इस साल 2026 में सिर्फ 3 तारीखें खाली हैं जब मैदान उपलब्ध है, 29, 30 और 31 दिसंबर, यानी अगले 2.5 महीने रामलीला मैदान पूरी तरह से बुक है। रामलीला मैदान पर प्रदर्शन करना भी महंगा होगा, यहां 1 दिन की बुकिंग के लिए 1,21,000 रुपए खर्च करने होंगे। इसके अलावा 50,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट भी अलग से जमा करना होगा। इसके अलावा रामलीला मैदान में प्रदर्शन के लिए MCD की अनुमति और दिल्ली पुलिस की NOC भी अनिवार्य है। और अगर ये सब कर भी लिया तो व्यापारी रामलीला मैदान को प्रदर्शन स्थल घोषित करने के विरोध में उतर आए हैं, क्योंकि व्यापारियों का कहना है कि रामलीला मैदान के आसपास दिल्ली का व्यापार हब है, सारे बड़े मार्केट्स हैं जहां से हर रोज अरबों का कारोबार होता है। रामलीला मैदान के आसपास कमला मार्केट, दरियागंज, चावड़ी बाजार, नया बाजार, पहाड़गंज, चांदनी चौक, सदर बाजार, खारी बावली, भगीरथ पैलेस, अजमेरी गेट, कश्मीरी गेट है। व्यापारियों का मानना है कि अगर यहां रोज धरना प्रदर्शन होंगे तो उनका व्यापार बुरी तरह से प्रभावित होगा।
16: ठीक इसके पीछे दरअसल ये दिल्ली 6 शुरू होता है। दिल्ली 6 सबसे पुराने बाजारों में से एक है। यहां से रास्ता जो है आप आगे पुरानी दिल्ली की ओर जाता है, चांदनी चौक की ओर जाता है, चावड़ी बाजार की ओर जाता है, तो ये पूरा इलाका बाजारों से घिरा हुआ है जहां पर रोज लाखों नहीं बल्कि करोड़ों का कारोबार होता है। व्यापारियों की चिंता ये है कि अगर इसे जो है आपने रामलीला मैदान को धरना स्थल घोषित कर दिया तो यहां सैकड़ों हजारों का जमावड़ा होगा, बड़े बड़े आंदोलन होंगे, जैसा कि पिछले समय में देखा गया है कि 10 दिन 12 दिन बाबा रामदेव का आंदोलन चला, अन्ना आंदोलन चला, जो कि सप्ताहों तक चलता रहता है। तो ऐसे में भीड़ जब यहां बढ़ेगी, यहां से लोग आगे मार्च करना चाहेंगे, जाएंगे, तो व्यापार खराब होगा, लोगों के चलते रास्ते बंद करने पड़ेंगे, डायवर्जन होंगे, तो कारोबार को सैकड़ों करोड़ की चपत लगेगी, जिसको लेकर के व्यापारियों ने नाराजगी जताई है। हम जिस रामलीला मैदान पर है इस समय नवरात्रि के चलते आप देखेंगे कि यहां रामलीला का मंचन हो रहा है, इस तरफ स्टेज लगा हुआ है और ठीक इसके पीछे यहां पर देखिए सैकड़ों लोगों के बैठने की व्यवस्था है और साथ ही मेला लगा हुआ है। कारोबार मेले का और लोगों के बचपन की यादें ताजा हो जाती है। इस रामलीला मैदान का अपना बहुत इतिहास रहा है, इस रामलीला मैदान ने बहुत सारे आंदोलन देखे हैं।
15: दिल्ली के इन्हीं व्यापारियों ने पहले सरकार को चिट्ठी लिखकर जंतर मंतर को प्रदर्शन स्थल की लिस्ट से हटाने की मांग की थी और अब जब सरकार ने उनकी मांग मान ली और रामलीला मैदान को नया प्रदर्शन स्थल घोषित कर दिया तो अब ये व्यापारी नाराज हैं।
17: लेकिन एक चीज को लेके हम व्यापारियों को आपत्ति है कि आपने रामलीला मैदान को प्रदर्शन स्थल की सूची में डाल दिया है। रामलीला मैदान के पास ही कमला मार्केट, दरियागंज और तमाम जो दिल्ली छह का एरिया है, चावड़ी बाजार, नया बाजार, पहाड़गंज, चांदनी चौक, सदर बाजार, कश्मीर गेट, लगभग 5 किलोमीटर के एरिया में तमाम जो दिल्ली छह है, जो बिजनेस हब है, दिल्ली का दिल है, वो रामलीला मैदान के आसपास ही आता है। तो अगर रामलीला मैदान में फिर से अगर धरने प्रदर्शन होंगे, बैरिकेटिंग लगेगी, मेट्रो स्टेशन बंद होंगे तो दिल्ली छह का व्यापार ये प्रभावित होगा। सानी चौक, सदर बाजार, खारी बावली, नया बाजार, लाजपतरा मार्केट, भागीरथ प्लेस, कश्मीरी गेट, पहाड़गंज, अजमेरी गेट, दरियागंज, तो ये सारा प्रभावित होने से व्यापार फिर से प्रभावित होगा। तो हम मांग करते हैं फिर से गृह मंत्रालय से और दिल्ली पुलिस से कि आपने जो तीन स्थान चिन्हित किए हैं इसमें से रामलीला मैदान को हटाया जाए, बुराड़ी मैदान रख लीजिए, सीबीडी ग्राउंड रख लीजिए और कोई बारी दिल्ली में एक जगह दे दीजिए।
18: मैं सरकार के इस फैसले से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता कि रामलीला ग्राउंड को चुना जाए प्रदर्शन के लिए, क्योंकि रामलीला ग्राउंड एक तो नई दिल्ली के बहुत पास है, दूसरा यहाँ पर सभी बड़ी बड़ी पार्टियों के दफ्तर हैं, तीसरा यहाँ पर ये सेंसिटिव एरिया है, आसपास जितना भी एरिया है यहाँ पर किसी तरह का कोई आंदोलन अगर उग्र रूप लेता है तो यहाँ पर अपना क्या कहते हैं दोनों समुदायों, कुछ समुदायों के बीच में जंग एकदम छिड़ सकती है। चौथा, यह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास है। पांचवा, यह होलसेल मार्केट है, जितनी भी दिल्ली की होलसेल मार्केट है जहां से पूरा व्यापार होता है, जिनके थ्रू पूरा जीएसटी की कलेक्शन होती है अधिकतर, वो सारी मार्केट इससे प्रभावित होंगी। अगर आजकल के माहौल में जैसा कि पिछले दिनों देखा गया है जिसकी वजह से जंतर मंतर से ये हटाया गया है, उसको देखते हुए अगर भीड़ उग्र हो गई या भीड़ अधिक तादाद में आ गई किसी प्रदर्शन को लेकर के, तो यहाँ पर पूरा होल सेल व्यापार, जो थोक व्यापार है, वह खत्म हो जाएगा।
15: ऐसा नहीं है कि रामलीला मैदान के इन इलाकों में सिर्फ बड़े व्यापारी या बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान ही हैं। यह बात सही है कि यह पूरा इलाका थोक मार्केट है। कपड़ों से लेकर गहनों तक, मसालों से लेकर ड्राई फ्रूट तक और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स तक, यह हिंदुस्तान के सबसे बड़े थोक मार्केट में से एक है। लेकिन यहां और छोटे दुकानदार और कामगार भी हैं, उन्हें भी डर लग रहा है कि उनका कारोबार ठप हो जाएगा।
16: लीला मैदान से महज 300 मीटर आगे पूरे बाजारों का इलाका है, ट्रेड सेंटर है, कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस हैं, एस्टेब्लिशमेंट हैं, बैंक हैं, फिनांस हैं, सब कुछ यहां पर मौजूद है। और अब यहां बहुत सारे कारोबारी हैं जो दिहाड़ी मजदूर भी हैं, जिनकी रोज की कमाई है, उनकी चिंता इस बात की है कि अगर रोज रोज यहां पर धरने होने लगे, प्रदर्शन होने लगेंगे तो हम कहां जाएंगे, इलाका व्यस्त हो जाएगा, प्रतिबंध लग जाएंगे, कभी रास्ते बंद होंगे तो कामकाज पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा।
19: मैदान तो बहुत पास है,
16: कामकाज पर असर पड़ेगा,
19: बहुत ज्यादा असर पड़ेगा जी, बहुत ज्यादा।
16: आप लोगों को पता चल गया कि रामलीला
19: वो तीन ग्राउंड फिक्स करे, एक रामलीला, एक बुराड़ी का है, एक और है जमुना पार्क का।
16: तो आप लोगों को भी चिंता हो रही है?
19: अब चिंता हो रहे हैं, हमें तो रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना, कोई हमारी कोई नौकरी तो है नहीं है, तो सारी भीड़ यही आएगी बीजेपी वालों की।
15: आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: बीजेपी जेएनयू और महिलाओं के मुद्दे पर कांग्रेस पर लगातार हमले कर रही है। बीजेपी की महिला सांसदों ने राष्ट्रपति से मुलाकात की, सड़कों पर भी इस मुद्दे पर बीजेपी की ओर से जोरदार हंगामा या प्रदर्शन देखने को मिल रहा है।
20: दिल्ली में सियासत का यह दूसरा मोर्चा है। कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजाम के खिलाफ ये गुस्सा फूटा है, जहां उनके निशाने पर राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा हैं। जेएनयू से बर्खास्त किए गए बिमोल अकोइजम के खिलाफ बीजेपी महिला सांसदों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की।
4: मांग हमारी वही थी कि जो डॉक्टर बिमल हैं उनके अगेंस्ट प्रूवन है कि 11 महिला बच्चियों को उन्होंने सेक्सुअली हैरेस किया और उनको निकाल दिया गया जेएनयू से, लेकिन आज भी वो एमपी बने हुए हैं और उनको एमपीशिप की बर्खास्त किया जाए और उनको हटाया जाए।
20: इनर मणिपुर से कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल पर जेएनयू की 11 छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल अकोइजाम जेएनयू में प्रोफेसर थे, वहां की 11 छात्राओं ने उन पर यौन शोषण जैसे गंभीर इल्जाम लगाए। तमाम आरोपों के बाद जेएनयू ने आंतरिक जांच बिठाई, उस जांच में अकोइजाम पर तमाम आरोप सही साबित पाए गए। उसी रिपोर्ट के आधार पर जेएनयू ने 9 अक्टूबर को उन्हें प्रोफेसर पद से हटा दिया। उसके दो दिन बाद यानी 11 अक्टूबर को आरोपी कांग्रेस सांसद के खिलाफ अलग अलग धाराओं में FIR भी दर्ज करा दी गई।
21: एक इंटरनल कमेटी ने गिल्टी पाया 11 छात्राओं की कंप्लेंट पर बिमल अकोइजम के खिलाफ। जितनी भी एलिगेशन सेक्सुअल हैरेसमेंट की थी उनमें सच्चाई पाई और इसीलिए उनको नौकरी से बर्खास्त करा, उस पर भी चुप्पी साधे हुए हैं राहुल गांधी।
20: उधर अंगोमचा बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं।
22: No, this is nothing but harassment. They know that once this khap panchayat style of doing by JNU, if it is challenged in a court of law, the court will take notice of the complete disregard for norms and rule and regulations. So they are trying to drag it to court, which will not also not stand. And I have said before, if you go into the merit of the case, in itself also people will get exposed. What is this so-called harassment allegations?
20: बहरहाल बीजेपी इस मुद्दे को लेकर लगातार सड़कों पर उतरी हुई है, जहां अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
0: दिल्ली में वोट चोरी को लेकर इंडिया गठबंधन और CJP ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी ने वोटर लिस्ट पर सवाल उठा दिए। आरोप यही है कि SIR के बावजूद वोटर लिस्ट में फर्जी वोटर उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। फर्जी वोटरों को लेकर समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत भी की है।
7: यूपी चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। SIR और वोट चोरी के आरोपों के बीच समाजवादी पार्टी की तरफ से एक नया दावा किया गया है। दावा यही है कि उत्तर प्रदेश की 100 विधानसभा सीटों पर फर्जी वोटरों के नाम जोड़े गए हैं। सवाल यही है कि SIR के बाद फर्जी वोटर कहां से आए।
23: देखिए, उत्तर प्रदेश में SIR की प्रक्रिया शुरू हुई, समाजवादी पार्टी के PDA प्रहरी ने लगातार सजगता से SIR पे नजर रखी और बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में वोट कटने का काम हुआ, जिसको लेके भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी थी, भाजपा बेचैन थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान था कि 2.5 करोड़ से ज्यादा वोट कट गए, चिंतित थे। लेकिन उसके बाद जब फॉर्म 6 और फॉर्म 7 आया तो भाजपा की साजिश, चुनाव आयोग की साजिश के कारण लगातार उत्तर प्रदेश में फॉर्म 6 और फॉर्म 7 का दुरुपयोग करके लगातार वोटर्स को बढ़ाया जा रहा है।
7: समाजवादी पार्टी ने वोटर लिस्ट में फर्जी वोटरों को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की है। दावा यही है कि वोटर लिस्ट में फर्जी वोटरों के नाम पड़ताल के दौरान मिले हैं। समाजवादी पार्टी के आरोप पर BJP ने पलटवार किया है।
24: देखिए, जब भी चुनाव नजदीक आता है या चुनाव होता है तो ये लोग अपने हार का कारण पहले ढूंढ लेते हैं कि जब हम हारेंगे तो हम क्या बोलेंगे, तो फिर हारेंगे तो बोल देखें कि हम वोट में गड़बड़ी थी इसलिए हार गए। कभी ABM को बता देते हैं कि जो है ABM के कारण हम हार गए। तो इस तरह से ये अपनी हार का पहले से भूमिका तैयार कर रहे हैं।
7: दरअसल बीते कुछ दिनों से 16 लाख वोटर बहाए जाने के दावे सोशल मीडिया पर किए गए। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोपों पर यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी नवदीप रिडवा सफाई दे चुके हैं। दावा किया है कि फेक वोटरों को लेकर मिलने वाली शिकायतों पर एक्शन लिया गया है और लिया जाएगा, लेकिन इसे लेकर भ्रामक झूठ भी फैलाया जा रहा है।
25: SIR के बाद हमारे पास कई ज्ञापन आए थे राजनीतिक दलों के, उसमें गलत नाम काटने का नहीं था, किसी समुदाय विशेष का काटने का शिकायत नहीं थी। शिकायत थी डुप्लीकेट नामों की और जहां जहां डुप्लीकेट पाए गए उनका बकायदा डिलीशन किया गया है। कुछ का जो अब आएगी शिकायत उनके भी जांच होगी। तो ऐसा नहीं है कि कोई शिकायत और ज्ञापन हमारे पास आया और अनअटेंडेड या बिना इंक्वायरी के हमने रखा है।
26: एक बात तो साफ है, एक तरफ दिल्ली में चुनाव आयोग को लेकर घमासान शुरू हो चुका है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल अब कहीं भी मौका नहीं चूक रहे हैं जहां चुनाव आयोग से सवाल किए जा सके। समर श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: राहुल को अमित शाह का जवाब, एसआईआर के बहाने घुसपैठियों को बचा रहे हैं। 2029 में करारी हार के लिए रहे तैयार, देश की जनता को मोदी पर भरोसा। इंडिया गठबंधन की चाय पर चर्चा के बाद बोले राहुल, शाह ज्ञानेश को नहीं छोड़ेंगे, लोकतंत्र को बचाना उद्देश्य। खड़गे तेजस्वी राउत ने ज्ञानेश पर किया तीखा वार। दिल्ली में कांग्रेस ऑफिस के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, यौन उत्पीड़न में जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर कांग्रेस सांसद के खिलाफ फल्ला बोल, राष्ट्रपति से गुहार। एल मुरुगन ने पीएम को लिखी चिट्ठी, मंत्रिमंडल छोड़ने की मांगी अनुमति, कहा तमिलनाडु में काम करूंगा, रिजिजू से मिले। और बिहार के हाजीपुर में गंगा नदी में पलटी नाव, 14 लोगों की मौत, सीएम ने रेस्क्यू के दिए निर्देश, पीएमओ ने 2-2 लाख के मुआवजे की घोषणा। पांच दिन विरोध प्रदर्शन करने के बाद राहुल गांधी के घर चाय पर चर्चा होती है। करीब 2 घंटे की बैठक के बाद जब राहुल और इंडिया गठबंधन वाले ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो ज्ञानेश कुमार के साथ साथ जंतर मंतर पर प्रदर्शन की रोक पर गरजते हैं। सबने एक सुर में कहा कि सरकार जंतर मंतर को प्रदर्शन स्थल से नहीं हटा सकती। इसके अलावा राहुल ने अगले प्लान का सरप्राइज देते हुए सीधे कहा कि ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा उनका मिशन है।
1: ज्ञानेश कुमार के खिलाफ क्या है राहुल का सरप्राइज प्लान?
2: कैसे जाएंगे वो हम आपको बता नहीं सकते, क्योंकि फिर आपको सारा मतलब सरप्राइज खत्म हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि आपके लिए और देश के लिए ये माहौल बना रहे।
1: 5 दिन विरोध प्रदर्शन, 6ठे दिन इंडिया गठबंधन की चाय पर चर्चा, जंतर मंतर पर ही विरोध प्रदर्शन, इंडिया गठबंधन की नई कसम।
2: ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने जिस प्रकार से लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया है, साफ और साफ बीजेपी अमित शाह और मोदी जी के इशारे से हम सब लोग एकजुट हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए, और इसके लिए बहुत कुर्बानी देना होगा। हम सब लोग जो है मिलकर के देंगे।
3: ज्ञानेश कुमार एक ऐसा माफिया है जिसने पूरे सिस्टम का अपराधीकरण किया।
1: विपक्ष का ज्ञानेश हटाओ मार्च जारी रहेगा, लेकिन सरप्राइज के साथ।
4: आते इन्होंने संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करके चुनाव को प्रभावित किया है और वोट चोरी का काम किया, घृणित काम किया।
5: वोट चोरी करता है, संघर्ष का जगह का चोरी करता है।
1: पहले सीईसी के खिलाफ शिव की बारात, अब नए प्लान पर चर्चा। 5 दिन तक दिल्ली की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के बाद हर कोई यही सोच रहा था कि क्या राहुल फिर से सरप्राइज देंगे, क्योंकि 12 अक्टूबर को जिस तरह से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस से लेकर इंडिया गठबंधन के दिग्गज नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट तक ज्ञानेश हटाओ मार्च निकाला, उसमें विपक्षी एकता भी दिखी और सड़कों पर कार्यकर्ताओं का हुजूम भी। पिछले कई दिनों का पैटर्न ऐसा ही था कि पहले राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने लंच किया, उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ तगड़ा विरोध प्रदर्शन किया। 13 अक्टूबर को भी जब राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के नेताओं को चाय पर बुलाया तो सबको लगा कि क्या फिर से ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कोई नया प्लान है, क्योंकि राहुल गांधी ने जो ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को शिव का तांडव और शिव की बारात का नाम दिया और सबको शिव की बारात में आने के लिए कहा, सबने सोचा क्या फिर से चाय के बाद विरोध प्रदर्शन का प्लान है। लेकिन जब राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने चाय पर चर्चा के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो राहुल गांधी ने विपक्ष के ज्ञानेश हटाओ मार्च पर एक और सरप्राइज दिया।
2: ये जो हमारी टीम है ये रुकने वाली नहीं है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये एंड गोल तक जाएगी। कैसे जाएंगे वो हम आपको बता नहीं सकते, क्योंकि फिर आप को सारा मतलब सरप्राइज खत्म हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि आपके लिए और देश के लिए ये माहौल बना रहे, इंटरेस्टिंग रहे और सरप्राइजिंग रहे।
6: मगर मैं आपको गारंटी देता हूं कि जिस प्रकार से हम सब ने मोबिलाइज किया, जिस एनर्जी से, जिस शक्ति से हमने मोबिलाइज किया, जिस यूनिटी के साथ हमने मोबिलाइज किया, उसी प्रकार से हम सब मिलकर लड़ते रहेंगे।
7: 10 अक्टूबर को जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के ऐलान के बाद सरकार ने जंतर मंतर को आधिकारिक धरना प्रदर्शन स्थलों की सूची से ही हटा दिया। जी हां, न तो सरकार ने जंतर मंतर पर 10 अक्टूबर को सीजेपी को विरोध प्रदर्शन करने दिया और न ही आगे जंतर मंतर को धरना स्थल रहने दिया। और अब इंडिया गठबंधन ने कसम खाई है कि वो जंतर मंतर को वापस धरना प्रदर्शन के लिए लेकर ही रहेंगे।
2: ज्ञानू गुप्ता जी तो और आगे बढ़कर के चले गए 10 कदम। जिस हिसाब से एक कठपुतली की तरह ज्ञानेश गुप्ता जी ने जो काम किया है उसको जो है सजा जरूर मिलेगी। ये लोग बचने वाले लोग नहीं हैं, ये लोग डरे हुए लोग हैं और ये डर इनका दिखाता है कि जंतर मंतर को जो है अब प्रोटेस्ट जहां होना चाहिए था, जो होता रहा है, जिसका ऐतिहासिक महत्व रहा है, उसको बदल करके जो है दिल्ली के बॉर्डर पे जो है कर दिया गया है।
8: It is truly, it has truly been revealed that the people who have actually committed treason against the people of this country is the BJP and the people who have facilitated this treason. The Election Commission of India and the CEC, Ganesh Kumar, needs to go.
5: इनका खिलाफ हमारा संघर्ष आगे जाता है और जो संघर्ष करने के लिए एक डेसिग्नेटेड जगह था जंतर मंतर, इनका चोरी भी करता है।
9: We will not stop until Mr. Ganesh Kumar is removed and criminal proceedings are launched not just against Mr. Ganesh Kumar but against all the election officials of the Election Commission who have supervised elections in Haryana, Maharashtra, Bengal and Bihar.
7: अभी तक तो राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन वाले वोट चोरी और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एकजुटता और शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। अब जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के लिए भी एकता और ताकत दिखाने के लिए उतर पड़े हैं।
2: ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने जिस प्रकार से लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया है, साफ और साफ बीजेपी अमित शाह और मोदी जी के इशारे थे।
3: मोदी और शाह ने ये देश को डराकर धमकाकर रखा था, अब डरने की बारी उनकी है।
7: आपको बता दें कि भले ही आज राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन कांग्रेस की छात्र विंग NSUI और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर जरूर उतरे। दिल्ली के कनॉट प्लेस में NSUI के कार्यकर्ताओं ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हल्ला बोला तो पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जबकि यूपी के वाराणसी में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करने उतरे।
10: लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया ज्ञानेश कुमार ने।
11: एक ऐसा तानाशाह चुनाव आयोग है जो एक बराबर मिलके जनता को, लोकतंत्र को लूटने का काम कर रहा है।
7: इसके अलावा पटना में लेफ्ट की छात्र विंग आयशा ने ज्ञानेश हटाओ मार्च निकाला, लेकिन पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग करके रोक लिया। लेकिन इस दौरान जब आयशा के छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया तो वो वज्र वाहन की चाबी लेकर ही भाग गए।
12: पटना में आज SIR को लेकर लेफ्ट छात्र संगठनों का आज प्रदर्शन था, बखूब बवाल हुआ। लेकिन एक फिर से बिहार में एक अनोखी तस्वीर, अनोखी घटना सामने आई है। ये वज्र वाहन है जहां पर छात्रों को डिटेन करके इसमें रखा गया था और बड़ी बात यह है कि इस वज्र वाहन की गाड़ी की चाबी लेकर के जो छात्र हैं वो भाग गए हैं। ये तस्वीर देखिए और इस वजह से इस गाड़ी को जो है यहीं पर लगाया गया है। ये तस्वीर देखिए, ये वज्र वाहन है और यहाँ पे जो गाड़ी की चाबी थी उसको लेकर के छात्र फरार हो गए हैं।
7: बंगाल में भी ममता बनर्जी की पार्टी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने उतरी, लेकिन यहाँ भी पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। आज तक ब्यूरो।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर अटैक किया, वोट चोरी और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर करारा जवाब भी दिया।
13: SIR तो 24 के बाद चालू हुआ, आप जब से कांग्रेस के मुख्य नेता के रूप में आए हैं और बाद में अध्यक्ष के रूप में आए हैं, लीडर ऑपोजिशन के रूप में आए, कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव हारी। आपको आत्मचिंतन करने की जरूरत है। फैब्रिकेटेड मीडिया इवेंट, झूठ की गूंज कर आप देश की जनता का विश्वास हासिल नहीं कर सकते। पूरी 14 पार्टी का कैडर इकट्ठा कर 1.5 किलोमीटर के क्षेत्र में 8,000 की भीड़ इकट्ठी कर आप देश की आवाज नहीं बन सकते हो। मेरा कांग्रेस पार्टी से निवेदन है कि देश की आवाज खेत खलियानों में, गांवों में, दूर सुदूर पहाड़ियों पर, जंगलों में और नदियों के किनारे भी है। आपकी वहां कोई रीच नहीं है। देश के कई सूबे ऐसे हैं, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, आपको कई दशकों तक कांग्रेस पार्टी को वहां की जनता ने नकारा है, हराया है। आज भी कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार की नकारात्मक पॉलिटिक्स कर रही है वो उनको फायदा नहीं करेगी। उनको जनता को समझना चाहिए, जनता का संपर्क करना चाहिए।
0: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और राजीव रंजन सिंह ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस और राहुल गांधी के चुनाव आयोग संबंधी आरोपों पर निशाना साधा। गोयल ने दावा किया कि कांग्रेस का अपने पुराने निर्णय और चुनाव आयोग से जुड़े अधिकारियों की नियुक्ति का रिकॉर्ड उसके मौजूदा आरोप से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता।
14: SIR की वजह से कांग्रेस केरल में जीती, क्योंकि ये सब डुप्लीकेट नाम, मरे हुए लोगों के नाम, जो लोग वहां से शिफ्ट हो गए वो नाम निकल गए, तो कोई मैल प्रैक्टिस होने की संभावना नहीं थी केरल में। ये शशि थरूर जी का दावा है। रमेश चेन्नीथाला जी ने खुद कहा कि SIR की वजह से ही आज कांग्रेस जीत पाई है केरल में, और केरल के मुख्यमंत्री स्वयं श्री VD सतीशन जी ने SIR की तारीफ की है। अधीर रंजन चौधरी जी ने इलेक्शन कमीशन की तारीफ करी कि पश्चिम बंगाल के चुनाव उन्होंने अच्छी तरीके से लड़ाए, ईमानदार व्यवस्था से लड़े गए, और जो गलत काम ममता बैनर्जी जी करती थी उसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने भी किया और इलेक्शन कमीशन की तारीफ की। अब उनकी खुद की पार्टी बेबुनियाद और झूठे वोट चोरी के दावे ला रही है।
0: बीजेपी JNU और महिलाओं के मुद्दे पर कांग्रेस पर लगातार हमले कर रही है। बीजेपी की महिला सांसदों ने राष्ट्रपति से मुलाकात की, सड़कों पर भी इस मुद्दे पर बीजेपी की ओर से जोरदार हंगामा या प्रदर्शन देखने को मिल रहा।
15: दिल्ली में सियासत का यह दूसरा मोर्चा है। कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजाम के खिलाफ ये गुस्सा फूटा है, जहां उनके निशाने पर राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा हैं। JNU से बर्खास्त किए गए बिमोल अकोइजम के खिलाफ बीजेपी महिला सांसदों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की।
16: मांग हमारी वही थी कि जो डॉक्टर बिमोल हैं, उनके अगेंस्ट प्रूवन है कि 11 महिला बच्चियों को उन्होंने सेक्सुअली हैरेस किया और उनको निकाल दिया गया JNU से, लेकिन आज भी वो MP बने हुए हैं और उनको MPship की बर्खास्त किया जाए और उनको हटाया जाए।
15: इनर मणिपुर से कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल पर JNU की 11 छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल अकोइजम JNU में प्रोफेसर थे, वहां की 11 छात्राओं ने उन पर यौन शोषण जैसे गंभीर इल्जाम लगाए। तमाम आरोपों के बाद JNU ने आंतरिक जांच बिठाई, उस जांच में अकोइजम पर तमाम आरोप सही साबित पाए गए। उसी रिपोर्ट के आधार पर JNU ने 9 अक्टूबर को उन्हें प्रोफेसर पद से हटा दिया। उसके दो दिन बाद यानी 11 अक्टूबर को आरोपी कांग्रेस सांसद के खिलाफ अलग अलग धाराओं में FIR भी दर्ज करा दी गई।
17: एक इंटरनल कमेटी ने गिल्टी पाया 11 छात्राओं की कंप्लेंट पर बिमल अकोइजम के खिलाफ। जितनी भी एलिगेशन सेक्सुअल हैरेसमेंट की थी उनमें सच्चाई पाई और इसीलिए उनको नौकरी से बर्खास्त करा। उस पर भी चुप्पी साधे हुए हैं राहुल गांधी।
15: उधर अंगोमचा बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं।
18: No, this is nothing but harassment. They know that once this kha panchayat style of doing by JNU, if it is challenged in a court of law, the court will take notice of the complete disregard for norms and rule and regulations. So they are trying to drag it to court, which will not also not stand. And I have said before, if you go into the merit of the case, in itself also people will get exposed. What is this so-called harassment allegations?
15: बहरहाल बीजेपी इस मुद्दे को लेकर लगातार सड़कों पर उतरी हुई है, जहां अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
0: दिल्ली में वोट चोरी को लेकर इंडिया गठबंधन और सीजेपी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी ने वोटर लिस्ट पर सवाल उठा दिए। आरोप यही है कि एसआईआर के बावजूद वोटर लिस्ट में फर्जी वोटर उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। फर्जी वोटरों को लेकर समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत भी की है।
7: यूपी चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। एसआईआर और वोट चोरी के आरोपों के बीच समाजवादी पार्टी की तरफ से एक नया दावा किया गया है। दावा यही है कि उत्तर प्रदेश की 100 विधानसभा सीटों पर फर्जी वोटरों के नाम जोड़े गए हैं। सवाल यही है कि एसआईआर के बाद फर्जी वोटर कहां से आए।
19: देखिए, उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई। समाजवादी पार्टी के पीडीए प्रहरी ने लगातार सजगता से एसआईआर पे नजर रखी और बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में वोट कटने का काम हुआ, जिसको लेके भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी थी, भाजपा बेचैन थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान था कि 2.5 करोड़ से ज्यादा वोट कट गए, चिंतित थे। लेकिन उसके बाद जब फॉर्म 6 और फॉर्म 7 आया तो भाजपा की साजिश, चुनाव आयोग की साजिश के कारण लगातार उत्तर प्रदेश में फॉर्म 6 और फॉर्म 7 का दुरुपयोग करके लगातार वोटर्स को बढ़ाया जा रहा है।
7: समाजवादी पार्टी ने वोटर लिस्ट में फर्जी वोटरों को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की है। दावा यही है कि वोटर लिस्ट में फर्जी वोटरों के नाम पड़ताल के दौरान मिले हैं। समाजवादी पार्टी के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है।
20: देखिए, जब भी चुनाव नजदीक आता है या चुनाव होता है तो ये लोग अपने हार का कारण पहले ढूंढ लेते हैं कि जब हम हारेंगे तो हम क्या बोलेंगे। तो फिर हारेंगे तो बोल देंगे कि हम वोट में गड़बड़ी थी इसलिए हार गए। कभी एबीएम को बता देते हैं कि जो है एबीएम के कारण हम हार गए। तो इस तरह से ये अपनी हार का पहले से भूमिका तैयार कर रहे हैं।
7: दरअसल बीते कुछ दिनों से 16 लाख वोटर बढ़ाए जाने के दावे सोशल मीडिया पर किए गए। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोपों पर यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी नवदीप रिडवा सफाई दे चुके हैं। दावा किया है कि फेक वोटरों को लेकर मिलने वाली शिकायतों पर एक्शन लिया गया है और लिया जाएगा, लेकिन इसे लेकर भ्रामक झूठ भी फैलाया जा रहा है।
21: एसआईआर के बाद हमारे पास कई ज्ञापन आए थे राजनीतिक दलों के, उसमें गलत नाम काटने का नहीं था, किसी समुदाय विशेष का काटने का शिकायत नहीं थी। शिकायत थी डुप्लीकेट नामों की, और जहां जहां डुप्लीकेट पाए गए उनका बकायदा डिलीशन किया गया है। कुछ का जो अब आएगी शिकायत उनके भी जांच होगी। तो ऐसा नहीं है कि कोई शिकायत और ज्ञापन हमारे पास आया और अनअटेंडेड या बिना इंक्वायरी के हमने रखा है।
22: एक बात तो साफ है, एक तरफ दिल्ली में चुनाव आयोग को लेकर घमासान शुरू हो चुका है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल अब कहीं भी मौका नहीं चूक रहे हैं जहां चुनाव आयोग से सवाल किए जा सके। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: पंजाब से एक सनसनीखेज तस्वीर सामने आई जहां नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले समाजसेवी को सरेआम गोली मार दी गई, जिसने एक बार फिर चुनाव से पहले पंजाब की राजनीति को तेज कर दिया।
15: पंजाब के मानसा में फेसबुक लाइव में बहस के दौरान ये गोलीकांड की तस्वीरें हैं। जिसमें नशे के खिलाफ बड़े स्तर पर सामाजिक मुहिम चलाने वाले मशहूर नशा विरोधी एक्टिविस्ट परविंदर छोटा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। छोटा एक केमिस्ट की दुकान पर नशा बेचने का आरोप लगाते हुए फेसबुक लाइव कर रहे थे। इसी दौरान केमिस्ट वाले ने उन्हें गोली मार दी और अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस मामले को आपसी रंजिश से जोड़ रही है।
23: रंजिशन इस व्यक्ति ने जो है उस पर फायरिंग करके जो है इस घटना को अंजाम दिया है।
15: वहीं परविंदर सिंह छोटा के परिवार का कहना है कि ड्रग्स के खिलाफ उनकी मुहिम के चलते छोटा की हत्या की गई।
24: नशा कौन वो पंजाब सरकार ने विजय सिंगले वर्गे मंत्री ने।
15: मामले में एक बार फिर पंजाब में नशे पर सियासी बहस तेज हो गई है।
25: नशिया नु रोकण वास्ते संघर्ष कर रहा सी, सरकार नाल लड़ाई लड़ रहा सी, सरकार ते नशा बेचण वाले उन्हों बार बार दबा रहे सी, लेकिन अज आखर नु उस दे गोलियां मार के मार दिता है। बहुत ही घिनौनी हरकत हुई है, सरकार वास्ते डुब के मरने वाली गल है।
26: गोलियां मार के कत्ल किया गया,
1: ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਹਾਦ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ।
4: ਅਭੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਮੇ ਲੇਗਾ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਸਖ਼ਤ ਸੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਜਾਏਗੀ।
15: घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इस हत्या के पीछे क्या वजह है इसे लेकर पुलिस की जांच जारी है। इस हत्याकांड के विरोध में मानसा में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। परविंदर झोटा के समर्थकों की ओर से मानसा के 12 हाटा चौक पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। विरोध के चलते बाजार भी बंद कर दिया गया है। वहीं इस मामले में परविंदर झोटा के अलावा

प्रिंस इन दिनों सीक्रेट बंकर में छिपने को मजबूर है। खबर यह है कि प्रिंस सलमान को अपनी जान का खतरा है। प्रिंस के डर का कारण कोई और नहीं बल्कि हूती विद्रोही हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया कि हूतियों के हमले के बाद से ही प्रिंस सलमान अंडरग्राउंड हैं, कई दिनों से सार्वजनिक तौर पर नजर नहीं आए।

0: क्या सऊदी पर ईरान कर सकता है हमला? सऊदी पर हूतियों के हमले के पीछे का खेल। बंकर में छिपे सऊदी प्रिंस के डर की वजह। हूतियों के साथ ईरान, सऊदी अरब परेशान। ईरान की सीधी धमकी, जमीनी सेना है तैयार। क्या हूती बहाना है, सऊदी अरब है निशाना।
1: We've suffered greatly from this ideology these past 30.
0: Middle East ko paigham, Iran ka mind game. अमेरिका और ईरान के बीच पर्दे के पीछे बातचीत का दावा कतर ने किया, लेकिन वार्ता के बीच सऊदी अरब पर हूतियों के हमले के पीछे ईरान का माइंड गेम है। डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि सऊदी अरब के बहाने अब ईरान ट्रंप पर लगातार दबाव बढ़ाता जा रहा है, क्योंकि ईरान ने अमेरिका का दांव अमेरिका के खिलाफ चल दिया है।
2: Unwavering, I will never allow Iran to have a nuclear weapon. Upon taking office last year, I immediately opened negotiations with Iran and offered them full economic cooperation in exchange for ending their nuclear program and support for terror, but they refused. They absolutely refused. That was a big mistake. Then in Operation Midnight Hammer, the U.S. military obliterated their nuclear program beneath mountains of rubble. And again, I urged Iran to make a deal, and again, they refused. The regime continued building a vast missile and drone stockpile that threatened the security of every American service member in the region and everyone else in the region.
0: दरअसल ईरान पर चाहे 2025 में इज़राइल का हमला हो या फिर ईरान पर 28 फरवरी को अमेरिका और इज़राइल का हमला, ये हमले तब हुए जब अमेरिका और ईरान बातचीत की टेबल पर थे, मतलब बातचीत की आड़ में ईरान पर निशाना साधा गया। ठीक यही दाव अब ईरान ने चल दिया है। पर्दे के पीछे अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन बातचीत के दौरान सऊदी पर हूती ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसा रहे हैं। ऐसे में अब शांति समझौते को लेकर अमेरिका पर बड़ा दबाव है। ये वही दबाव है जिसके चलते हूतियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई से ट्रंप ने अपने पैर पीछे खींच लिए हैं।
2: Attack. So we'll make a decision. We move very quick.
0: दूसरी तरफ शाही महलों में रहने वाले सऊदी के प्रिंस सलमान यानी MBS सीक्रेट बंकर में छिपने को मजबूर हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हूतियों के हमले के डर से मोहम्मद बिन सलमान इन दिनों गुप्त बंकर में अंडरग्राउंड हैं। प्रिंस सलमान की लोकेशन को गुप्त रखा जा रहा है। प्रिंस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, खासतौर पर प्रिंस सलमान की सुरक्षा में स्पेशल गार्ड्स के दस्ते को तैनात किया गया है, क्योंकि हूतियों की मिसाइल की जद में रियाद है। वही रियाद जहां सऊदी का एयर डिफेंस सिस्टम हूतियों की मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहा। सुरक्षा कारणों से प्रिंस सलमान को सार्वजनिक तौर पर बाहर न जाने की सलाह दी गई है। बड़ी बात यह है कि आखिरी बार बीते मंगलवार को सार्वजनिक तौर पर प्रिंस सलमान नजर आए थे, मतलब प्रिंस सलमान पर भी हमला हो सकता है। ये खतरा उस वक्त बढ़ गया जब सऊदी अरब पर भीषण हमलों के बावजूद हूतियों के समर्थन में ईरान खुलकर खड़ा हो गया। पड़ोसी देशों को धैर्य और ठोस भाईचारे की नीति पर चलना चाहिए। ऐसे समझौते ईरान को रोक नहीं पाएंगे। सऊदी अरब को तुर्की और पाकिस्तान उसी तरह सुरक्षा नहीं दे पाएंगे जैसे अमेरिका नहीं दे पाया। सऊदी अरब अपनी नीतियां बदले ताकि दूसरों के आगे अपनी सुरक्षा के लिए गिड़गिड़ाना न पड़े। हमने भी पाकिस्तान और तुर्की को लेकर कई अफवाहें

0: सुनी है और उम्मीद करते हैं कि वो सच न हो। इस क्षेत्र के देशों को अच्छी तरह पता है कि यमन में किसी भी तरह की दखल अंदाजी खतरनाक रुख अख्तियार कर सकती है। इस मामले में मक्का रक्षा समझौते का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ईरान ने सिर्फ हूतियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को लेकर अपनी लक्ष्मण रेखा नहीं खींची, बल्कि ये भी संकेत दिए हैं कि अगर सऊदी पर हूतियों के हमलों के बाद अमेरिका ने फिर से हमले शुरू किए तो ईरान जमीनी स्तर पर मिडल ईस्ट के देशों में घुसपैठ कर सकता है। अगर अमेरिका नए हमले शुरू करता है तो हम पड़ोसी देशों में सेना भेज सकते हैं। अब की बार ईरानी सेना की तैयारी कई फ्रंट पर युद्ध लड़ने की है। मिडल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी मुल्कों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सऊदी अरब के तेल ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। यूएई के अहम ठिकानों के साथ साथ क्षेत्रीय डेटा सेंटर और इंटरनेट केबल भी निशाने पर हैं। सऊदी अरब और यूएई के ठिकाने ईरान की हिट लिस्ट पर हैं, लेकिन ईरान ने ये साफ नहीं किया है कि किन देशों के खिलाफ अपनी जमीनी सेना को उतार सकता है। मतलब साफ है कि ईरान ने अमेरिका के साथ साथ मिडल ईस्ट के देशों तक अपना बारूदी पैगाम पहुँचा दिया है। ईरान की धमकी के बीच हूतियों ने भी अमेरिका को बड़ी चेतावनी दी है। अगर अमेरिका यमन के खिलाफ आक्रामकता में शामिल होता है तो हम जवाबी कार्रवाई के फैसले पर विचार नहीं करेंगे, बल्कि अमेरिका और क्षेत्र में उसके सभी हितों को निशाना बनाते हुए त्वरित और करारा जवाब देंगे। कहीं नहीं अगर सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान हमारे खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई करता है तो उनके साथ भी वैसा ही बर्ताव किया जाएगा जैसा अभी सऊदी अरब के साथ किया जा रहा है। ईरान और हूतियों की धमकी का असर है कि सऊदी अरब ने इसराइल की तरफ से सैन्य मदद की पेशकश को ठुकरा दिया है। दरअसल हूतियों के खिलाफ सैन्य मदद का प्रस्ताव इसराइली सरकार की तरफ से सऊदी अरब के प्रिंस सलमान को भेजा गया था। इसराइली अखबार हारेट्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के कहने पर इसराइल ने सैन्य मदद का प्रस्ताव रखा था। नेतन्याहू की तरफ से अमेरिका की मध्यस्थता में ये संदेश मोहम्मद बिन सलमान को भेजा गया। प्रस्ताव में हूतियों के खिलाफ इसराइली सेना को शामिल किए जाने की बात कही गई। इस पर रियाद ने साफ कर दिया है कि वो इसराइल की मदद नहीं चाहता है। प्रिंस सलमान को डर है कि इसराइल की मदद लेने से सऊदी की जनता में नकारात्मक प्रतिक्रिया हो सकती है। जैसे ही सऊदी अरब ने इसराइली सैन्य मदद को ठुकराया, वैसे ही इसराइल के खिलाफ ईरान का बड़ा बयान सामने आया। ईरानी सांसद ने दावा किया कि हूतियों के बहाने ईरान पर इसराइल हमले का मौका तलाश रहा है, लेकिन ईरान पर इसराइल ने हमला किया तो इसराइली परमाणु सेंटर पर तबाही मचना तय है। नेतन्याहू 27 अक्टूबर को होने वाले चुनाव से पहले ईरान पर हमला कर सकते हैं। इसराइल का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नाकाम रहा तो दूसरे रास्ते खोजे जा रहे हैं। अगर ईरान पर बमबारी की जाती है तो जवाबी कार्रवाई की संभावना है और इसराइल के दिमोना एटमी सेंटर को निशाना बनाया जा सकता है। ईरान जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। बड़ी बात यह है कि फ्लाई दुबई कांड के बाद अमेरिका और इसराइल ने ईरान को कटघरे में खड़ा किया था। ट्रंप ने तो यहां तक दावा किया था कि हाईजैक की कोशिश के पीछे ईरानी साजिश थी। ट्रंप के इसी आरोप के बाद सऊदी अरब पर हूतियों ने अपने हमले तेज कर दिए, क्योंकि ये हमले ईरान की युद्ध नीति का हिस्सा है। अमेरिका या इसराइल दोबारा हमला करें, उससे पहले ही ईरान ने अपना बारूदी पैगाम ट्रंप तक पहुंचा दिया। यही वजह है कि सऊदी पर हूतियों के हमले के बावजूद अमेरिका मौन है, पाकिस्तान चुप है और कोई भी देश हूतियों के खिलाफ सैन्य एक्शन की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। आज तक ब्यूरो।
1: बहुत छोटा सा ब्रेक, प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज

0: राहुल को अमित शाह का जवाब, एसआईआर के बहाने घुसपैठियों को बचा रहे हैं, 2029 में करारी हार के लिए रहे तैयार, देश की जनता को मोदी पर भरोसा। इंडिया गठबंधन की चाय पर चर्चा के बाद बोले राहुल, शाह ज्ञानेश को नहीं छोड़ेंगे, लोकतंत्र को बचाना उद्देश्य, खड़गे तेजस्वी राउत ने ज्ञानेश पर किया तीखा वार। दिल्ली में कांग्रेस ऑफिस के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, यौन उत्पीड़न में जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर कांग्रेस सांसद के खिलाफ फल्ला बोल, राष्ट्रपति से गुहार। एल मुरुगन ने पीएम को लिखी चिट्ठी, मंत्रिमंडल छोड़ने की मांगी अनुमति, कहा तमिलनाडु में काम करूंगा, रिजिजू से मिले। और बिहार के हाजीपुर में गंगा नदी में पलटी नाव, 14 लोगों की मौत, सीएम ने रेस्क्यू के दिए निर्देश, पीएमओ ने 2-2 लाख के मुआवजे की घोषणा। पांच दिन विरोध प्रदर्शन करने के बाद राहुल गांधी के घर चाय पर चर्चा होती है। करीब 2 घंटे की बैठक के बाद जब राहुल और इंडिया गठबंधन वाले ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो ज्ञानेश कुमार के साथ साथ जंतर मंतर पर प्रदर्शन की रोक पर गरजते हैं। सबने एक सुर में कहा कि सरकार जंतर मंतर को प्रदर्शन स्थल से नहीं हटा सकती। इसके अलावा राहुल ने अगले प्लान का सरप्राइज देते हुए सीधे कहा कि ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा उनका मिशन है।
1: ज्ञानेश कुमार के खिलाफ क्या है राहुल का सरप्राइज प्लान?
2: कैसे जाएंगे वो हम आपको बता नहीं सकते, क्योंकि फिर आप तो सारा मतलब सरप्राइज खत्म हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि आपके लिए और देश के लिए ये माहौल बना रहे।
1: 5 दिन विरोध प्रदर्शन, 6ठे दिन इंडिया गठबंधन की चाय पर चर्चा, जंतर मंतर पर ही विरोध प्रदर्शन, इंडिया गठबंधन की नई कसम।
2: ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने जिस प्रकार से लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया है, साफ और साफ बीजेपी अमित शाह और मोदी जी के इशारे, हम सब लोग एकजुट हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए, और इसके लिए बहुत कुर्बानी देना होगा, हम सब लोग जो है मिलकर के देंगे।
3: ज्ञानेश कुमार एक ऐसा माफिया है जिसने पूरे सिस्टम का अपराधीकरण किया।
1: विपक्ष का ज्ञानेश हटाओ मार्च जारी रहेगा, लेकिन सरप्राइज के साथ।
4: अतः इन्होंने संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करके चुनाव को प्रभावित किया है और वोट चोरी का काम किया, घृणित काम किया।
5: वोट चोरी करता है, संघर्ष का जगह का चोरी करता है।
1: पहले सीईसी के खिलाफ शिव की बारात, अब नए प्लान पर चर्चा। 5 दिन तक दिल्ली की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के बाद हर कोई यही सोच रहा था कि क्या राहुल फिर से सरप्राइज देंगे, क्योंकि 12 अक्टूबर को जिस तरह से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस से लेकर इंडिया गठबंधन के दिग्गज नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट तक ज्ञानेश हटाओ मार्च निकाला, उसमें विपक्षी एकता भी दिखी और सड़कों पर कार्यकर्ताओं का हुजूम भी। पिछले कई दिनों का पैटर्न ऐसा ही था कि पहले राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने लंच किया, उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ तगड़ा विरोध प्रदर्शन किया। 13 अक्टूबर को भी जब राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के नेताओं को चाय पर बुलाया तो सबको लगा कि क्या फिर से ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कोई नया प्लान है, क्योंकि राहुल गांधी ने जो ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को शिव का तांडव और शिव की बारात का नाम दिया और सबको शिव की बारात में आने के लिए कहा, सबने सोचा क्या फिर से चाय के बाद विरोध प्रदर्शन का प्लान है। लेकिन जब राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने चाय पर चर्चा के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो राहुल गांधी ने विपक्ष के ज्ञानेश हटाओ मार्च पर एक और सरप्राइज दिया।
2: ये जो हमारी टीम है ये रुकने वाली नहीं है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये एंड गोल तक जाएगी। कैसे जाएंगे वो हम आपको बता नहीं सकते, क्योंकि फिर आप को सारा मतलब सरप्राइज खत्म हो जाएगा, और हम चाहते हैं कि आपके लिए और देश के लिए ये माहौल बना रहे, इंटरेस्टिंग रहे और सरप्राइजिंग रहे।
6: मगर मैं आपको गारंटी देता हूं कि जिस प्रकार से हम सब ने मोबिलाइज किया, जिस एनर्जी से, जिस शक्ति से हमने मोबिलाइज किया, जिस यूनिटी के साथ हमने मोबिलाइज किया, उसी प्रकार से हम सब मिलकर लड़ते रहेंगे।
7: 10 अक्टूबर को जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के ऐलान के बाद सरकार ने जंतर मंतर को आधिकारिक धरना प्रदर्शन स्थलों की सूची से ही हटा दिया। जी हां, न तो सरकार ने जंतर मंतर पर 10 अक्टूबर को सीजेपी को विरोध प्रदर्शन करने दिया और न ही आगे जंतर मंतर को धरना स्थल रहने दिया। और अब इंडिया गठबंधन ने कसम खाई है कि वो जंतर मंतर को वापस धरना प्रदर्शन के लिए लेकर ही रहेंगे।
2: ज्ञानू गुप्ता जी तो और आगे बढ़कर के चले गए 10 कदम। जिस हिसाब से एक कठपुतली की तरह ज्ञानेश गुप्ता जी ने जो काम किया है उसको जो है सजा जरूर मिलेगी। ये लोग बचने वाले लोग नहीं हैं, ये लोग डरे हुए लोग हैं और ये डर इनका दिखाता है कि जंतर मंतर को जो है अब प्रोटेस्ट जहां होना चाहिए था, जो होता रहा है, जिसका ऐतिहासिक महत्व रहा है, उसको बदल करके जो है दिल्ली के बॉर्डर पे जो है कर दिया गया है।
8: It is truly, it has truly been revealed that the people who have actually committed treason against the people of this country is the BJP and the people who have facilitated this treason. The Election Commission of India and the CEC, Ganesh Kumar, needs to go.
5: Inka khilaf hamara sangharsh aage jata hai. Team se. Aur jo sangharsh karne ke liye ek designated jagah tha Jantar Mandir. Inka chori bhi karta hai.
9: We will not stop until Mr. Ganesh Kumar is removed and criminal proceedings are launched not just against Mr. Ganesh Kumar but against all the election officials of the Election Commission who have supervised elections in Haryana, Maharashtra, Bengal and Bihar.
7: अभी तक तो राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन वाले वोट चोरी और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एकजुटता और शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। अब जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के लिए भी एकता और ताकत दिखाने के लिए उतर पड़े हैं।
2: ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने जिस प्रकार से लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया है, साफ और साफ बीजेपी, अमित शाह और मोदी जी के इशारे पे।
3: मोदी और शाह ने इस देश को डरा कर धमका कर रखा था, अब डरने की बारी उनकी है।
7: आपको बता दें कि भले ही आज राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन कांग्रेस की छात्र विंग NSUI और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर जरूर उतरे। दिल्ली के कनॉट प्लेस में NSUI के कार्यकर्ताओं ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हल्ला बोला तो पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जबकि यूपी के वाराणसी में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करने उतरे।
10: लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया ज्ञानेश कुमार ने।
11: एक ऐसा तानाशाह चुनाव आयोग है जो एक बराबर मिलकर जनता को, लोकतंत्र को लूटने का काम कर रहा है।
7: इसके अलावा पटना में लेफ्ट की छात्र विंग आयशा ने ज्ञानेश हटाओ मार्च निकाला, लेकिन पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग करके रोक लिया। लेकिन इस दौरान जब आयशा के छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया तो वो वज्र वाहन की चाबी लेकर ही भाग गए।
12: पटना में आज SIR को लेकर लेफ्ट छात्र संगठनों का आज प्रदर्शन था, बखूब बवाल हुआ, लेकिन एक फिर से बिहार में एक अनोखी तस्वीर, अनोखी घटना सामने आई है। ये वज्र वाहन है जहां पर छात्रों को डिटेन करके इसमें रखा गया था, और बड़ी बात यह है कि इस वज्र वाहन की गाड़ी की चाबी लेकर के जो छात्र हैं वो भाग गए हैं। ये तस्वीर देखिए, और इस वजह से इस गाड़ी को जो है यहीं पर लगाया गया है। ये तस्वीर देखिए, ये वज्र वाहन है और यहाँ पे जो गाड़ी की चाबी थी उसको लेकर के छात्र फरार हो गए हैं।
7: बंगाल में भी ममता बनर्जी की पार्टी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने उतरी, लेकिन यहाँ भी पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। आज तक ब्यूरो।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर अटैक किया, वोट चोरी और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर करारा जवाब भी दिया।
13: SIR तो 24 के बाद चालू हुआ, आप जब से कांग्रेस के मुख्य नेता के रूप में आए हैं और बाद में अध्यक्ष के रूप में आए हैं, लीडर ऑपोजिशन के रूप में आए, कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव हारी, आपको आत्मचिंतन करने की जरूरत है। फैब्रिकेटेड मीडिया इवेंट, झूठ की गूंज कर आप देश की जनता का विश्वास हासिल नहीं कर सकते। पूरी 14 पार्टी का कैडर इकट्ठा कर 1.5 किलोमीटर के क्षेत्र में 8,000 की भीड़ इकट्ठी कर आप देश की आवाज नहीं बन सकते हो। मेरा कांग्रेस पार्टी से निवेदन है कि देश की आवाज खेत खलियानों में, गांवों में, दूर सुदूर पहाड़ियों पर, जंगलों में और नदियों के किनारे भी है। आपकी वहां कोई रीच नहीं है। देश के कई सूबे ऐसे हैं, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, आपको कई दशकों तक कांग्रेस पार्टी को वहां की जनता ने नकारा है, हराया है। आज भी कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार की नकारात्मक पॉलिटिक्स कर रही है वो उनको फायदा नहीं करेगी। उनको जनता को समझना चाहिए, जनता का संपर्क करना चाहिए।
0: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और राजीव रंजन सिंह ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस और राहुल गांधी के चुनाव आयोग संबंधी आरोपों पर निशाना साधा। गोयल ने दावा किया कि कांग्रेस का अपने पुराने निर्णय और चुनाव आयोग से जुड़े अधिकारियों की नियुक्ति का रिकॉर्ड उसके मौजूदा आरोप से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता।
14: SIR की वजह से कांग्रेस केरल में जीती, क्योंकि ये सब डुप्लीकेट नाम, मरे हुए लोगों के नाम, जो लोग वहां से शिफ्ट हो गए वो नाम निकल गए, तो कोई मैल प्रैक्टिस होने की संभावना नहीं थी केरल में। ये शशि थरूर जी का दावा है। रमेश चेन्नीथाला जी ने खुद कहा कि SIR की वजह से ही आज कांग्रेस जीत पाई है केरल में, और केरल के मुख्यमंत्री स्वयं श्री VD सतीशन जी ने SIR की तारीफ की है। अधीर रंजन चौधरी जी ने इलेक्शन कमीशन की तारीफ करी कि पश्चिम बंगाल के चुनाव उन्होंने अच्छी तरीके से लड़ाए, ईमानदार व्यवस्था से लड़े गए, और जो गलत काम ममता बैनर्जी जी करती थी उसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने भी किया और इलेक्शन कमीशन की तारीफ की। अब उनकी खुद की पार्टी बेबुनियाद और झूठे वोट चोरी के दावे ला रही है।
0: और आइए अब हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसे देखकर आप ये समझ पाएंगे कि सरकार ने जंतर मंतर को प्रदर्शन की जगह के तौर पर से क्यों हटाया और दिल्ली में जिन 3 जगहों को प्रदर्शन के लिए चुना गया उनकी इस समय क्या स्थिति है।
15: जुलाई में जब जंतर मंतर के आंदोलन से सरकार के एक मंत्री का इस्तीफा हुआ तो तभी से ये माना जा रहा था कि अब जंतर मंतर पर आंदोलन नहीं होगा, और ऐसा ही हुआ है। सरकार ने जंतर मंतर को प्रदर्शन की जगहों से अलग कर दिया है और प्रदर्शनकारियों के लिए दिल्ली में 3 नई जगहें तय कर दी हैं। पहला है रामलीला मैदान, जो जंतर मंतर से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। दूसरा है बुराड़ी का ग्राउंड, जो यहां से 21 किलोमीटर दूर है। और तीसरा है पूर्वी दिल्ली में शाहदरा का CBD ग्राउंड, जो जंतर मंतर से 12 किलोमीटर दूर है। लेकिन क्या इन मैदानों पर प्रदर्शन करना इतना आसान रहेगा? क्योंकि प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर इसलिए प्रदर्शन करने आते थे क्योंकि यहां से संसद भवन पास में है, सरकार के सभी बड़े दफ्तर बिल्कुल पास में है, प्रदर्शनकारी सीधे सरकार तक अपनी आवाज पहुंचा सकते थे, जैसा कि जुलाई में CJP के प्रोटेस्ट में हुआ था। उस वक्त प्रदर्शनकारियों ने संसद मार्च भी कर दिया था जिसमें जमकर हिंसा हुई थी, लेकिन यह बात भी सही है कि इससे सरकार पर दबाव पड़ा था और इसीलिए आखिरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हुआ। अब अगर धरना प्रदर्शन की जगह दूर हो, जहां से न संसद पास हो, न प्रधानमंत्री का घर, न राष्ट्रपति का आवास, न कोई सरकारी दफ्तर, तो सरकार को क्या फर्क पड़ेगा? अब ये इन 2 ग्राउंड्स की तस्वीर आपके सामने है। एक है बुराड़ी का ग्राउंड, जो जंतर मंतर से 21 किलोमीटर दूर है। यहाँ अगर कोई पार्टी, कोई सामाजिक संगठन प्रदर्शन करने जाएगा भी तो क्या सरकार उसकी सुनेगी? और यही सवाल शाहदरा के CBD ग्राउंड के लिए भी है कि पूर्वी दिल्ली के इस ग्राउंड में प्रदर्शन करने कौन जाएगा, और जो यहाँ जाएगा क्या उसकी आवाज सुनी जाएगी?
16: जंतर मंतर की जगह सरकार ने जो तीन मैदान दिए हैं कि अब यहां पर धरना प्रदर्शन होगा, उनमें से एक बुराड़ी भी है। अब बुराड़ी आप समझिए कि संसद भवन से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर, और मैदान कितना बड़ा, अगर आप देखिए इसकी क्षमता इतनी है कि 3 से 4 लाख लोग जो है इस मैदान में बैठ सकते हैं। आमतौर पर धार्मिक बड़े आयोजनों के लिए इस मैदान का इस्तेमाल होता है और इसीलिए यहां पर, लेकिन ये इतनी दूरी पर है कि बहुत सारे प्रदर्शनकारी या राजनीतिक दल अगर विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं तो सबसे पहले यहां आने के लिए जो क्षमता है वो बसों का सहारा है, मेट्रो स्टेशन थोड़ी सी दूरी पर है, यहां आना। और दूसरा, जंतर मंतर पर 2000 की भीड़ 20 तो लगती है, लेकिन बुराड़ी मैदान पर अगर 1 लाख लोग भी बैठ जाएंगे तो भी ऐसा क्षमता लगता है कि 2 या 4 या 5 हजार लोग बैठे हैं। उसी के साथ साथ यहां पर क्या इतनी दूरी पर 17 किलोमीटर, क्योंकि जंतर मंतर पर बैठने का संदेश होता था कि वो इस नाम पर आते थे कि संसद मार्च करेंगे और फिर वहां से पार्लियामेंट सीट थाने जाते थे, क्या यहां से संसद मार्च की कोशिश भी की जा सकती है? 1 या 1.5 किलोमीटर के अंदर जो है उन्हें रखा जा सकता है। सुविधाओं के नाम पर बड़ी पार्किंग एरिया है, कितना भी बड़ा प्रोटेस्ट मार्च हो इस मैदान को भरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब यहां की एसओपी है कि मैदान तो उपलब्ध हो सकता आराम से, लेकिन क्या प्रदर्शन करने के लिए जो सामाजिक ग्रुप हैं, प्रेशर ग्रुप हैं और इसी के साथ जो राजनीतिक दल हैं, क्या वो बुराड़ी के मैदान में प्रदर्शन करने के लिए आएंगे?
15: धरना प्रदर्शन इसलिए करने पड़ते हैं ताकि सरकारों को अपनी आवाज सुनवा सके, और इन मैदानों से कौन सी सरकार आवाज सुनेगी? हां, रामलीला मैदान जंतर मंतर से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है और यह भी एक धरना स्थल है, लेकिन यहां दूसरी तरह की समस्याएं हैं। क्या यहां प्रदर्शन के लिए ग्राउंड खाली मिलेगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल दशहरा तक रामलीला मैदान इसलिए प्रदर्शन के लिए नहीं मिल सकता क्योंकि नवरात्रों के पर्व के चलते यहां रामलीला का मंचन हो रहा है। मैदान के हिस्से में मेला भी लगा हुआ है। अब विजयदशमी पर रावण दहन से पहले रामलीला मैदान किसी और कार्यक्रम के लिए उपलब्ध नहीं हो सकता।
16: ये ऐतिहासिक जंतर मंतर पर अब धरना मना है क्योंकि केंद्र सरकार ने उसे धरना स्थल पर जो जगह दी गई हुई थी, जो उसकी मान्यता थी, उसे रद्द कर दिया है। लेकिन अब ये कह दिया है कि दिल्ली के 3 जगहों पर धरना हो सकेगा, धरना प्रदर्शन सभाएं हो सकेंगी, उनमें से एक है दिल्ली का ये ऐतिहासिक रामलीला मैदान। ये रामलीला मैदान अगर इसकी जगह को समझे तो अब इसको लेकर के दरअसल विरोध कर रहे हैं व्यापारी कि जंतर मंतर से आपने धरना प्रदर्शन हटा दिया जिससे कारोबार सही होगा, उसका तो स्वागत है, लेकिन रामलीला मैदान को धरना स्थल एक 3 जगह जो दी गई है जिसमें पूर्वी दिल्ली बुराड़ी का मैदान और ये दिल्ली का रामलीला मैदान, इसको लेकर के व्यापारी नाराज है। वो किस लिए समझिए, ये पूरा रामलीला मैदान है, इस समय यहां पर रामलीला चल रही है, मेले लगे हुए हैं क्योंकि नवरात्रि दशहरा में मेला लगता है। इसी के साथ साथ अब इसके बगल में क्या है, यहां पर ये नगर निगम का सिविक सेंटर है, आप समझिए यहां से नगर निगम संचालित होता है। बीच में महानगर का जो MTNL है आप देख रहे हैं उसकी बिल्डिंग है। इसी के ठीक बगल में यहां पर अगर आप देखेंगे इस तरफ अस्पताल है, आंखों का अस्पताल है, बड़े सारे कई अस्पताल हैं। अब अगर 360 डिग्री आपको ले जाता हूं तो यहां पर आपको दिखाई देगा वर्धमान प्लाजा, ट्रेडर टावर है और इसी के साथ साथ यहां पर जो ट्रेड सेंटर है वो बनाया गया है।
15: आपको जानकर हैरानी होगी कि इस साल 2026 में सिर्फ 3 तारीखें खाली हैं जब मैदान उपलब्ध है, 29, 30 और 31 दिसंबर, यानी अगले 2.5 महीने रामलीला मैदान पूरी तरह से बुक है। रामलीला मैदान पर प्रदर्शन करना भी महंगा होगा, यहां एक दिन की बुकिंग के लिए 1,21,000 रुपए खर्च करने होंगे। इसके अलावा 50,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट भी अलग से जमा करना होगा। इसके अलावा रामलीला मैदान में प्रदर्शन के लिए MCD की अनुमति और दिल्ली पुलिस की NOC भी अनिवार्य है। और अगर ये सब कर भी लिया तो व्यापारी रामलीला मैदान को प्रदर्शन स्थल घोषित करने के विरोध में उतर आए हैं, क्योंकि व्यापारियों का कहना है कि रामलीला मैदान के आसपास दिल्ली का व्यापार हब है, सारे बड़े मार्केट्स हैं जहां से हर रोज अरबों का कारोबार होता है। रामलीला मैदान के आसपास कमला मार्केट, दरियागंज, चावड़ी बाजार, नया बाजार, पहाड़गंज, चांदनी चौक, सदर बाजार, खारी बागली, भगीरथ पैलेस, अजमेरी गेट, कश्मीरी गेट है। व्यापारियों का मानना है कि अगर यहां रोज धरना प्रदर्शन होंगे तो उनका व्यापार बुरी तरह से प्रभावित होगा।
16: ठीक इसके पीछे दरअसल ये दिल्ली 6 शुरू होता है। दिल्ली 6 सबसे पुराने बाजारों में से एक है। यहां से रास्ता जो है आप आगे पुरानी दिल्ली की ओर जाता है, चांदनी चौक की ओर जाता है, चावड़ी बाजार की ओर जाता है, तो ये पूरा इलाका बाजारों से घिरा हुआ है जहां पर रोज लाखों नहीं बल्कि करोड़ों का कारोबार होता है। व्यापारियों की चिंता ये है कि अगर इसे जो है आपने रामलीला मैदान को धरना स्थल घोषित कर दिया तो यहां सैकड़ों हजारों का जमावड़ा होगा, बड़े बड़े आंदोलन होंगे, जैसा कि पिछले समय में देखा गया है कि 10 दिन 12 दिन बाबा रामदेव का आंदोलन चला, धरना आंदोलन चला जो कि सप्ताहों तक चलता रहता है, तो ऐसे में भीड़ जब यहाँ बढ़ेगी, यहाँ से लोग आगे मार्च करना चाहेंगे जाएंगे, तो व्यापार खराब होगा, लोगों के चलते रास्ते बंद करने पड़ेंगे, डायवर्जन होंगे, तो कारोबार को सैकड़ों करोड़ की चपत लगेगी, जिसको लेकर के व्यापारियों ने नाराजगी जताई है। हम जिस रामलीला मैदान पर है, इस समय नवरात्रि के चलते आप देखेंगे कि यहाँ रामलीला का मंचन हो रहा है, इस तरफ स्टेज लगा हुआ है और ठीक इसके पीछे यहाँ पर देखिए सैकड़ों लोगों के बैठने की व्यवस्था है और साथ ही मेला लगा हुआ है। कारोबार मेले का और लोगों के बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं। इस रामलीला मैदान का अपना बहुत इतिहास रहा है, इस रामलीला मैदान ने बहुत सारे आंदोलन देखे हैं।
15: दिल्ली के इन्हीं व्यापारियों ने पहले सरकार को चिट्ठी लिखकर जंतर मंतर को प्रदर्शन स्थल की लिस्ट से हटाने की मांग की थी और अब जब सरकार ने उनकी मांग मान ली और रामलीला मैदान को नया प्रदर्शन स्थल घोषित कर दिया तो अब ये व्यापारी नाराज हैं।
17: लेकिन एक चीज को लेके हम व्यापारियों को आपत्ति है कि आपने रामलीला मैदान को प्रदर्शन स्थल की सूची में डाल दिया है। रामलीला मैदान के पास ही कमला मार्केट, दरियागंज और तमाम जो दिल्ली छह का एरिया है, चावड़ी बाजार, नया बाजार, पहाड़गंज, चांदनी चौक, सदर बाजार, कश्मीर गेट, लगभग 5 किलोमीटर के एरिए में तमाम जो दिल्ली छह है, जो बिजनेस हब है, दिल्ली का दिल है, वो रामलीला मैदान के आसपास ही आता है। तो अगर रामलीला मैदान में फिर से अगर धरने प्रदर्शन होंगे, बैरिकेटिंग लगेगी, मेट्रो स्टेशन बंद होंगे, तो दिल्ली छह का व्यापार ये प्रभावित होगा। चांदनी चौक, सदर बाजार, खारी बावली, नया बाजार, लाजपतराय मार्केट, भागीरथ प्लेस, कश्मीरी गेट, पहाड़गंज, अजमेरी गेट, दरियागंज, तो ये सारा प्रभावित होने से व्यापार फिर से प्रभावित होगा। तो हम मांग करते हैं फिर से गृह मंत्रालय से और दिल्ली पुलिस से कि आपने जो तीन स्थान चिन्हित किए हैं इसमें से रामलीला मैदान को हटाया जाए, बुराड़ी मैदान रख लीजिए, सीबीडी ग्राउंड रख लीजिए और कोई बारी दिल्ली में एक जगह दे दीजिए।
18: मैं सरकार के इस फैसले से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता कि रामलीला ग्राउंड को चुना जाए प्रदर्शन के लिए, क्योंकि रामलीला ग्राउंड एक तो नई दिल्ली के बहुत पास है, दूसरा यहाँ पर सभी बड़ी बड़ी पार्टियों के दफ्तर हैं, तीसरा यहाँ पर ये सेंसिटिव एरिया है, आसपास जितना भी एरिया है यहाँ पर किसी तरह का कोई आंदोलन अगर उग्र रूप लेता है तो यहाँ पर अपना क्या कहते हैं दोनों समुदायों, कुछ समुदायों के बीच में जंग एकदम छिड़ सकती है। चौथा, यह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास है। पांचवा, यह होलसेल मार्केट है, जितनी भी दिल्ली की होलसेल मार्केट है जहां से पूरा व्यापार होता है, जिनके थ्रू पूरा जीएसटी की कलेक्शन होती है अधिकतर, वो सारी मार्केट इससे प्रभावित होंगी। अगर आजकल के माहौल में जैसा कि पिछले दिनों देखा गया है जिसकी वजह से जंतर मंतर से ये हटाया गया है, उसको देखते हुए अगर भीड़ उग्र हो गई या भीड़ अधिक तादाद में आ गई किसी प्रदर्शन को लेकर के, तो यहाँ पर पूरा होल सेल व्यापार, जो थोक व्यापार है, वह खत्म हो जाएगा।
15: ऐसा नहीं है कि रामलीला मैदान के इन इलाकों में सिर्फ बड़े व्यापारी या बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान ही हैं। ये बात सही है कि ये पूरा इलाका थोक मार्केट है। कपड़ों से लेकर गहनों तक, मसालों से लेकर ड्राई फ्रूट तक और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स तक, ये हिंदुस्तान के सबसे बड़े थोक मार्केट में से एक है। लेकिन यहाँ और छोटे दुकानदार और कामगार भी हैं, उन्हें भी डर लग रहा है कि उनका कारोबार ठप हो जाएगा।
16: लीला मैदान से महज 300 मीटर आगे पूरे बाजारों का इलाका है, ट्रेड सेंटर है, कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस हैं, एस्टेब्लिशमेंट हैं, बैंक हैं, फिनांस हैं, सब कुछ यहां पर मौजूद है। और अब यहां बहुत सारे कारोबारी हैं जो दिहाड़ी मजदूर भी हैं, जिनकी रोज की कमाई है, उनकी चिंता इस बात की है कि अगर रोज रोज यहां पर धरने होने लगे, प्रदर्शन होने लगेंगे तो हम कहां जाएंगे, इलाका व्यस्त हो जाएगा, प्रतिबंध लग जाएंगे, कभी रास्ते बंद होंगे तो कामकाज पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा।
19: मैदान तो बहुत पास है,
16: कामकाज पर असर पड़ेगा,
19: बहुत ज्यादा असर पड़ेगा जी, बहुत ज्यादा।
16: आप लोगों को पता चल गया कि रामलीला
19: वो तीन ग्राउंड फिक्स करे, एक रामलीला, एक बुराड़ी का है, एक और है जमुना पार का
16: भी। तो आप लोगों को भी चिंता हो रही है?
19: अब चिंता तो करेंगे, हमें तो रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना, कोई हमारी कोई नौकरी तो है नहीं है, तो सारी भीड़ यहीं आएगी बीजेपी वालों की।
15: आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: बीजेपी जेएनयू और महिलाओं के मुद्दे पर कांग्रेस पर लगातार हमले कर रही है। बीजेपी की महिला सांसदों ने राष्ट्रपति से मुलाकात की, सड़कों पर भी इस मुद्दे पर बीजेपी की ओर से जोरदार हंगामा या प्रदर्शन देखने को मिला।
20: दिल्ली में सियासत का यह दूसरा मोर्चा है। कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजाम के खिलाफ ये गुस्सा फूटा है, जहां उनके निशाने पर राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा हैं। जेएनयू से बर्खास्त किए गए बिमोल अकोइजम के खिलाफ बीजेपी महिला सांसदों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की।
4: मांग हमारी वही थी कि जो डॉक्टर बिमल हैं, उनके अगेंस्ट प्रूवन है कि 11 महिला बच्चियों को उन्होंने सेक्सुअली हैरेस किया और उनको निकाल दिया गया जेएनयू से, लेकिन आज भी वो एमपी बने हुए हैं और उनको एमपीशिप की बर्खास्त किया जाए और उनको हटाया जाए।
20: इनर मणिपुर से कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल पर जेएनयू की 11 छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल अकोइजम जेएनयू में प्रोफेसर थे, वहाँ की 11 छात्राओं ने उन पर यौन शोषण जैसे गंभीर इल्जाम लगाए। तमाम आरोपों के बाद जेएनयू ने आंतरिक जांच बिठाई, उस जांच में अकोइजम पर तमाम आरोप सही साबित पाए गए। उसी रिपोर्ट के आधार पर जेएनयू ने 9 अक्टूबर को उन्हें प्रोफेसर पद से हटा दिया। उसके दो दिन बाद यानी 11 अक्टूबर को आरोपी कांग्रेस सांसद के खिलाफ अलग अलग धाराओं में FIR भी दर्ज करा दी गई।
21: एक इंटरनल कमेटी ने गिल्टी पाया 11 छात्राओं की कंप्लेंट पर बिमल अकोइजम के खिलाफ। जितनी भी एलिगेशन सेक्सुअल हैरेसमेंट की थी उनमें सच्चाई पाई और इसीलिए उनको नौकरी से बर्खास्त करा, उस पर भी चुप्पी साधे हुए हैं राहुल गांधी।
20: उधर अंगोमचा बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं।
22: No, this is nothing but harassment. They know that once this khap panchayat style of doing by JNU, if it is challenged in a court of law, the court will take notice of the complete disregard for norms and rule and regulations. So they are trying to drag it to a court, which will not also not stand. And I have said before, if you go into the merit of the case, in itself also people will get exposed. What is this so-called harassment allegations?
20: बहरहाल बीजेपी इस मुद्दे को लेकर लगातार सड़कों पर उतरी हुई है, जहां अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
0: दिल्ली में वोट चोरी को लेकर इंडिया गठबंधन और CJP ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी ने वोटर लिस्ट पर सवाल उठा दिए। आरोप यही है कि SIR के बावजूद वोटर लिस्ट में फर्जी वोटर उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। फर्जी वोटरों को लेकर समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत भी की है।
23: यूपी चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। SIR और वोट चोरी के आरोपों के बीच समाजवादी पार्टी की तरफ से एक नया दावा किया गया है। दावा यही है कि उत्तर प्रदेश की 100 विधानसभा सीटों पर फर्जी वोटरों के नाम जोड़े गए हैं। सवाल यही है कि SIR के बाद फर्जी वोटर कहां से आए।
24: देखिए, उत्तर प्रदेश में SIR की प्रक्रिया शुरू हुई, समाजवादी पार्टी के PDA प्रहरी ने लगातार सजगता से SIR पे नजर रखी और बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में वोट कटने का काम हुआ जिसको लेके भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी थी, भाजपा बेचैन थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान था कि 2.5 करोड़ से ज्यादा वोट कट गए, चिंतित थे। लेकिन उसके बाद जब उत्तर प्रदेश में फॉर्म 6 और फॉर्म 7 का दुरुपयोग करके लगातार वोटर्स को बढ़ाया जा रहा है।
23: समाजवादी पार्टी ने वोटर लिस्ट में फर्जी वोटरों को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की है। दावा यही है कि वोटर लिस्ट में फर्जी वोटरों के नाम पड़ताल के दौरान मिले हैं। समाजवादी पार्टी के आरोप पर BJP ने पलटवार किया है।
25: देखिए, जब भी चुनाव नजदीक आता है या चुनाव होता है तो ये लोग अपने हार का कारण पहले ढूंढ लेते हैं कि जब हम हारेंगे तो हम क्या बोलेंगे, तो फिर हारेंगे तो बोल देखें कि हम वोट में गड़बड़ी थी इसलिए हार गए। कभी ABM को बता देते हैं कि जो है ABM के कारण हम हार गए। तो इस तरह से ये अपनी हार का पहले से भूमिका तैयार कर रहे हैं।
23: दरअसल बीते कुछ दिनों से 16 लाख वोटर बहाए जाने के दावे सोशल मीडिया पर किए गए। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोपों पर यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी नवदीप रिडवा सफाई दे चुके हैं। दावा किया है कि फेक वोटरों को लेकर मिलने वाली शिकायतों पर एक्शन लिया गया है और लिया जाएगा, लेकिन इसे लेकर भ्रामक झूठ भी फैलाया जा रहा है।
26: SIR के बाद हमारे पास कई ज्ञापन आए थे राजनीतिक दलों के, उसमें गलत नाम काटने का नहीं था, किसी समुदाय विशेष का काटने का शिकायत नहीं थी। शिकायत थी डुप्लीकेट नामों की और जहां जहां डुप्लीकेट पाए गए उनका बकायदा डिलीशन किया गया है। कुछ का जो अब आएगी शिकायत उनके भी जांच होगी। तो ऐसा नहीं है कि कोई शिकायत और ज्ञापन हमारे पास आया और अनअटेंडेड या बिना इंक्वायरी के हमने रखा है।
27: एक बात तो साफ है,
1: एक तरफ दिल्ली में चुनाव आयोग को लेकर घमासान शुरू हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल अब कहीं भी मौका नहीं चूक रहे हैं जहां चुनाव आयोग से सवाल किए जा सके। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: राहुल को अमित शाह का जवाब, एसआईआर के बहाने घुसपैठियों को बचा रहे हैं। 2029 में करारी हार के लिए रहे तैयार, देश की जनता को मोदी पर भरोसा। इंडिया गठबंधन की चाय पर चर्चा के बाद बोले राहुल, शाह ज्ञानेश को नहीं छोड़ेंगे, लोकतंत्र को बचाना उद्देश्य। खड़गे तेजस्वी राउत ने ज्ञानेश पर किया तीखा वार। दिल्ली में कांग्रेस ऑफिस के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, यौन उत्पीड़न में जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर कांग्रेस सांसद के खिलाफ फल्ला बोल, राष्ट्रपति से गुहार। एल मुरुगन ने पीएम को लिखी चिट्ठी, मंत्रिमंडल छोड़ने की मांगी अनुमति, कहा तमिलनाडु में काम करूंगा, रिजिजू से मिले। और बिहार के हाजीपुर में गंगा नदी में पलटी नाव, 14 लोगों की मौत, सीएम ने रेस्क्यू के दिए निर्देश, पीएमओ ने 2-2 लाख के मुआवजे की घोषणा। पांच दिन विरोध प्रदर्शन करने के बाद राहुल गांधी के घर चाय पर चर्चा होती है। करीब 2 घंटे की बैठक के बाद जब राहुल और इंडिया गठबंधन वाले ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो ज्ञानेश कुमार के साथ साथ जंतर मंतर पर प्रदर्शन की रोक पर गरजते हैं। सबने एक सुर में कहा कि सरकार जंतर मंतर को प्रदर्शन स्थल से नहीं हटा सकती। इसके अलावा राहुल ने अगले प्लान का सरप्राइज देते हुए सीधे कहा कि ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा उनका मिशन है।
1: ज्ञानेश कुमार के खिलाफ क्या है राहुल का सरप्राइज प्लान?
2: कैसे जाएंगे वो हम आपको बता नहीं सकते, क्योंकि फिर आप को सारा मतलब सरप्राइज खत्म हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि आपके लिए और देश के लिए ये माहौल बना रहे।
1: 5 दिन विरोध प्रदर्शन, 6ठे दिन इंडिया गठबंधन की चाय पर चर्चा, जंतर मंतर पर ही विरोध प्रदर्शन, इंडिया गठबंधन की नई कसम।
2: ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने जिस प्रकार से लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया है, साफ और साफ बीजेपी अमित शाह और मोदी जी के इशारे, हम सब लोग एकजुट हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए, और इसके लिए बहुत कुर्बानी देना होगा, हम सब लोग जो है मिलकर के देंगे।
3: ज्ञानेश कुमार एक ऐसा माफिया है जिसने पूरे सिस्टम का अपराधीकरण किया।
1: विपक्ष का ज्ञानेश हटाओ मार्च जारी रहेगा, लेकिन सरप्राइज के साथ।
4: अतः इन्होंने संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करके चुनाव को प्रभावित किया है और वोट चोरी का काम किया, घृणित काम किया।
5: वोट चोरी करता है, संघर्ष का जगह का चोरी करता है।
1: पहले सीईसी के खिलाफ शिव की बारात, अब नए प्लान पर चर्चा। 5 दिन तक दिल्ली की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के बाद हर कोई यही सोच रहा था कि क्या राहुल फिर से सरप्राइज देंगे, क्योंकि 12 अक्टूबर को जिस तरह से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस से लेकर इंडिया गठबंधन के दिग्गज नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट तक ज्ञानेश हटाओ मार्च निकाला, उसमें विपक्षी एकता भी दिखी और सड़कों पर कार्यकर्ताओं का हुजूम भी। पिछले कई दिनों का पैटर्न ऐसा ही था कि पहले राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने लंच किया, उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ तगड़ा विरोध प्रदर्शन किया। 13 अक्टूबर को भी जब राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के नेताओं को चाय पर बुलाया तो सबको लगा कि क्या फिर से ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कोई नया प्लान है, क्योंकि राहुल गांधी ने जो ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को शिव का तांडव और शिव की बारात का नाम दिया और सबको शिव की बारात में आने के लिए कहा, सबने सोचा क्या फिर से चाय के बाद विरोध प्रदर्शन का प्लान है। लेकिन जब राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने चाय पर चर्चा के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो राहुल गांधी ने विपक्ष के ज्ञानेश हटाओ मार्च पर एक और सरप्राइज दिया।
2: ये जो हमारी टीम है ये रुकने वाली नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये एंड गोल तक जाएगी। कैसे जाएंगे वो हम आपको बता नहीं सकते, क्योंकि फिर आप को सारा मतलब सरप्राइज खत्म हो जाएगा, और हम चाहते हैं कि आपके लिए और देश के लिए ये माहौल बना रहे, इंटरेस्टिंग रहे और सरप्राइजिंग रहे।
6: मगर मैं आपको गारंटी देता हूं कि जिस प्रकार से हम सब ने मोबिलाइज किया, जिस एनर्जी से, जिस शक्ति से हमने मोबिलाइज किया, जिस यूनिटी के साथ हमने मोबिलाइज किया, उसी प्रकार से हम सब मिलकर लड़ते रहेंगे।
7: 10 अक्टूबर को जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के ऐलान के बाद सरकार ने जंतर मंतर को आधिकारिक धरना प्रदर्शन स्थलों की सूची से ही हटा दिया। जी हाँ, न तो सरकार ने जंतर मंतर पर 10 अक्टूबर को सीजेपी को विरोध प्रदर्शन करने दिया और न ही आगे जंतर मंतर को धरना स्थल रहने दिया। और अब इंडिया गठबंधन ने कसम खाई है कि वो जंतर मंतर को वापस धरना प्रदर्शन के लिए लेकर ही रहेंगे।
2: ज्ञानू गुप्ता जी तो और आगे बढ़कर के चले गए 10 कदम। जिस हिसाब से एक कठपुतली की तरह ज्ञानेश गुप्ता जी ने जो काम किया है उसको जो है सजा जरूर मिलेगी। ये लोग बचने वाले लोग नहीं हैं, ये लोग डरे हुए लोग हैं। और ये डर इनका दिखाता है कि जंतर मंतर को जो है अब प्रोटेस्ट जहां होना चाहिए था, जो होता रहा है, जिसका ऐतिहासिक महत्व रहा है, उसको बदल करके जो है दिल्ली के बॉर्डर पे जो है कर दिया गया है।
8: It is truly, it has truly been revealed that the people who have actually committed treason against the people of this country is the BJP and the people who have facilitated this treason. The Election Commission of India and the CEC, Ganesh Kumar, needs to go.
5: Inka khilaf hamara sangharsh aage jata hai. Aur jo sangharsh karne ke liye ek designated jagah tha Jantar Mantar. Inka chori bhi karta hai.
9: We will not stop until Mr. Ganesh Kumar is removed and criminal proceedings are launched not just against Mr. Ganesh Kumar but against all the election officials of the Election Commission who have supervised elections in Haryana, Maharashtra, Bengal and Bihar.
7: अभी तक तो राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन वाले वोट चोरी और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एकजुटता और शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। अब जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के लिए भी एकता और ताकत दिखाने के लिए उतर पड़े हैं।
2: ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने जिस प्रकार से लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया है, साफ और साफ बीजेपी, अमित शाह और मोदी जी के इशारे।
3: मोदी और शाह ने इस देश को डरा कर धमका कर रखा था, अब डरने की बारी उनकी है।
7: आपको बता दें कि भले ही आज राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन कांग्रेस की छात्र विंग NSUI और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर जरूर उतरे। दिल्ली के कनॉट प्लेस में NSUI के कार्यकर्ताओं ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हल्ला बोला तो पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जबकि यूपी के वाराणसी में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करने उतरे।
10: लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया ज्ञानेश कुमार ने।
11: एक ऐसा तानाशाह चुनाव आयोग है जो एक बराबर मिलकर जनता को, लोकतंत्र को लूटने का काम कर रहा है।
7: इसके अलावा पटना में लेफ्ट की छात्र विंग आयशा ने ज्ञानेश हटाओ मार्च निकाला, लेकिन पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग करके रोक लिया। लेकिन इस दौरान जब आयशा के छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया तो वो वज्र वाहन की चाबी लेकर ही भाग गए।
12: पटना में आज SIR को लेकर लेफ्ट छात्र संगठनों का आज प्रदर्शन था, बखूब बवाल हुआ। लेकिन एक फिर से बिहार में एक अनोखी तस्वीर, अनोखी घटना सामने आई है। ये वज्र वाहन है जहां पर छात्रों को डिटेन करके इसमें रखा गया था। और बड़ी बात यह है कि इस वज्र वाहन की गाड़ी की चाबी लेकर के जो छात्र हैं वो भाग गए हैं। ये तस्वीर देखिए, और इस वजह से इस गाड़ी को जो है यहीं पर लगाया गया है। ये तस्वीर देखिए, ये वज्र वाहन है और यहाँ पे जो गाड़ी की चाबी थी उसको लेकर के छात्र फरार हो गए हैं।
7: बंगाल में भी ममता बनर्जी की पार्टी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने उतरी, लेकिन यहाँ भी पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। आज तक ब्यूरो।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर अटैक किया, वोट चोरी और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर करारा जवाब भी दिया।
13: SIR तो 24 के बाद चालू हुआ। आप जब से कांग्रेस के मुख्य नेता के रूप में आए हैं और बाद में अध्यक्ष के रूप में आए हैं, लीडर ऑपोजिशन के रूप में आए, कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव हारी। आपको आत्मचिंतन करने की जरूरत है। फैब्रिकेटेड मीडिया इवेंट, झूठ की गूंज कर आप देश की जनता का विश्वास हासिल नहीं कर सकते। पूरी 14 पार्टी का कैडर इकट्ठा कर 1.5 किलोमीटर के क्षेत्र में 8,000 की भीड़ इकट्ठी कर आप देश की आवाज नहीं बन सकते हो। मेरा कांग्रेस पार्टी से निवेदन है कि देश की आवाज खेत खलियानों में, गांवों में, दूर सुदूर पहाड़ियों पर, जंगलों में और नदियों के किनारे भी है। आपकी वहां कोई रीच नहीं है। देश के कई सूबे ऐसे हैं, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, आपको कई दशकों तक कांग्रेस पार्टी को वहां की जनता ने नकारा है, हराया है। आज भी कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार की नकारात्मक पॉलिटिक्स कर रही है वो उनको फायदा नहीं करेगी। उनको जनता को समझना चाहिए, जनता का संपर्क करना चाहिए।
0: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और राजीव रंजन सिंह ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस और राहुल गांधी के चुनाव आयोग संबंधी आरोपों पर निशाना साधा। गोयल ने दावा किया कि कांग्रेस का अपने पुराने निर्णय और चुनाव आयोग से जुड़े अधिकारियों की नियुक्ति का रिकॉर्ड उसके मौजूदा आरोप से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता।
14: SIR की वजह से कांग्रेस केरल में जीती, क्योंकि ये सब डुप्लीकेट नाम, मरे हुए लोगों के नाम, जो लोग वहां से शिफ्ट हो गए वो नाम निकल गए, तो कोई मैल प्रैक्टिस होने की संभावना नहीं थी केरल में। ये शशि थरूर जी का दावा है। रमेश चेन्नीथाला जी ने खुद कहा कि SIR की वजह से ही आज कांग्रेस जीत पाई है केरल में, और केरल के मुख्यमंत्री स्वयं श्री VD सतीशन जी ने SIR की तारीफ की है। आधीर रंजन चौधरी जी ने इलेक्शन कमीशन की तारीफ करी कि पश्चिम बंगाल के चुनाव उन्होंने अच्छी तरीके से लड़ाए, ईमानदार व्यवस्था से लड़े गए, और जो गलत काम ममता बैनर्जी जी करती थी उसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने भी किया और इलेक्शन कमीशन की तारीफ की। अब उनकी खुद की पार्टी बेबुनियाद और झूठे वोट चोरी के दावे ला रही है।
0: बीजेपी JNU और महिलाओं के मुद्दे पर कांग्रेस पर लगातार हमले कर रही है। बीजेपी की महिला सांसदों ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। सड़कों पर भी इस मुद्दे पर बीजेपी की ओर से जोरदार हंगामा या प्रदर्शन देखने को मिल रहा है।
15: सियासत का यह दूसरा मोर्चा है। कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजाम के खिलाफ ये गुस्सा फूटा है, जहां उनके निशाने पर राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा हैं। JNU से बर्खास्त किए गए बिमोल अकोइजम के खिलाफ बीजेपी महिला सांसदों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की।
16: मांग हमारी वही थी कि जो डॉक्टर बिमोल है उनके अगेंस्ट प्रूवन है कि 11 महिला बच्चियों को उन्होंने सेक्सुअली हैरेस किया और उनको निकाल दिया गया JNU से, लेकिन आज भी वो MP बने हुए हैं और उनको MP की बर्खास्त किया जाए और उनको हटाया जाए।
15: इनर मणिपुर से कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल पर JNU की 11 छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल अकोइजाम JNU में प्रोफेसर थे, वहां की 11 छात्राओं ने उन पर यौन शोषण जैसे गंभीर इल्जाम लगाए। तमाम आरोपों के बाद JNU ने आंतरिक जांच बिठाई। उस जांच में अकोइजाम पर तमाम आरोप सही साबित पाए गए। उसी रिपोर्ट के आधार पर JNU ने 9 अक्टूबर को उन्हें प्रोफेसर पद से हटा दिया। उसके दो दिन बाद यानी 11 अक्टूबर को आरोपी कांग्रेस सांसद के खिलाफ अलग अलग धाराओं में FIR भी दर्ज करा दी गई।
17: एक इंटरनल कमिटी ने गिल्टी पाया 11 छात्राओं की कंप्लेंट पर बिमल अकोइजम के खिलाफ। जितनी भी एलिगेशन सेक्सुअल हैरेसमेंट की थी उनमें सच्चाई पाई और इसीलिए उनको नौकरी से बर्खास्त करा। उस पर भी चुप्पी साधे हुए हैं राहुल गांधी।
15: उधर अंगोमचा बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं।
18: No, this is nothing but harassment. They know that once this khap panchayat style of doing by JNU, if it is challenged in a court of law, the court will take notice of the complete disregard for norms and rules and regulations. So they are trying to drag it to court. Which will not also not stand. And I have said before, if you go into the merit of the case, in itself also people will get exposed. What is this so-called harassment allegations?
15: बहरहाल बीजेपी इस मुद्दे को लेकर लगातार सड़कों पर उतरी हुई है, जहां अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
0: दिल्ली में वोट चोरी को लेकर इंडिया गठबंधन और सीजेपी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी ने वोटर लिस्ट पर सवाल उठा दिए। आरोप यही है कि एसआईआर के बावजूद वोटर लिस्ट में फर्जी वोटर उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। फर्जी वोटरों को लेकर समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत भी की है।
7: यूपी चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। एसआईआर और वोट चोरी के आरोपों के बीच समाजवादी पार्टी की तरफ से एक नया दावा किया गया है। दावा यही है कि उत्तर प्रदेश की 100 विधानसभा सीटों पर फर्जी वोटरों के नाम जोड़े गए हैं। सवाल यही है कि एसआईआर के बाद फर्जी वोटर कहां से आए।
19: देखिए, उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई। समाजवादी पार्टी के पीडीए प्रहरी ने लगातार सजगता से एसआईआर पे नजर रखी और बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में वोट कटने का काम हुआ, जिसको लेके भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी थी, भाजपा बेचैन थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान था कि 2.5 करोड़ से ज्यादा वोट कट गए, चिंतित थे। लेकिन उसके बाद जब फॉर्म 6 और फॉर्म 7 आया तो भाजपा की साजिश, चुनाव आयोग की साजिश के कारण लगातार उत्तर प्रदेश में फॉर्म 6 और फॉर्म 7 का दुरुपयोग करके लगातार वोटर्स को बढ़ाया जा रहा है।
7: समाजवादी पार्टी ने वोटर लिस्ट में फर्जी वोटरों को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की है। दावा यही है कि वोटर लिस्ट में फर्जी वोटरों के नाम पड़ताल के दौरान मिले हैं। समाजवादी पार्टी के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है।
20: देखिए, जब भी चुनाव नजदीक आता है या चुनाव होता है तो ये लोग अपने हार का कारण पहले ढूंढ लेते हैं कि जब हम हारेंगे तो हम क्या बोलेंगे। तो फिर हारेंगे तो बोल देंगे कि हम वोट में गड़बड़ी थी इसलिए हार गए। कभी एबीएम को बता देते हैं कि जो है एबीएम के कारण हम हार गए। तो इस तरह से ये अपनी हार का पहले से भूमिका तैयार कर रहे हैं।
7: दरअसल बीते कुछ दिनों से 16 लाख वोटर बहाए जाने के दावे सोशल मीडिया पर किए गए। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोपों पर यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी नवदीप रिडवा सफाई दे चुके हैं। दावा किया है कि फेक वोटरों को लेकर मिलने वाली शिकायतों पर एक्शन लिया गया है और लिया जाएगा, लेकिन इसे लेकर भ्रामक झूठ भी फैलाया जा रहा है।
21: एसआईआर के बाद हमारे पास कई ज्ञापन आए थे राजनीतिक दलों के, उसमें गलत नाम काटने का नहीं था, किसी समुदाय विशेष का काटने का शिकायत नहीं थी। शिकायत थी डुप्लीकेट नामों की, और जहां जहां डुप्लीकेट पाए गए उनका बकायदा डिलीशन किया गया है। कुछ का जो अब आएगी शिकायत उनके भी जांच होगी। तो ऐसा नहीं है कि कोई शिकायत और ज्ञापन हमारे पास आया और अनअटेंडेड या बिना इंक्वायरी के हमने रखा है।
22: एक बात तो साफ है, एक तरफ दिल्ली में चुनाव आयोग को लेकर घमासान शुरू हो चुका है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल अब कहीं भी मौका नहीं चूक रहे हैं जहां चुनाव आयोग से सवाल किए जा सके। समर श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: पंजाब से एक सनसनीखेज तस्वीर सामने आई, जहां नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले समाजसेवी को सरेआम गोली मार दी गई, जिसने एक बार फिर चुनाव से पहले पंजाब की राजनीति को तेज कर दिया।
15: पंजाब के मानसा में फेसबुक लाइव में बहस के दौरान ये गोलीकांड की तस्वीरें। जिसमें नशे के खिलाफ बड़े स्तर पर सामाजिक मुहिम चलाने वाले मशहूर नशा विरोधी एक्टिविस्ट परविंदर छोटा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। छोटा एक केमिस्ट की दुकान पर नशा बेचने का आरोप लगाते हुए फेसबुक लाइव कर रहे थे। इसी दौरान केमिस्ट वाले ने उन्हें गोली मार दी और अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस मामले को आपसी रंजिश से जोड़ रही है।
23: रंजिशन इस व्यक्ति ने जो है उस पर फायरिंग करके जो है इस घटना को अंजाम दिया है।
15: वहीं परविंदर सिंह छोटा के परिवार का कहना है कि ड्रग्स के खिलाफ उनकी मुहिम के चलते छोटा की हत्या की गई।
24: नशा कौन बेचता है? पंजाब सरकार ने विजय सिंगले वर्गे मंत्री बनाए।
15: मामले में एक बार फिर पंजाब में नशे पर सियासी बहस तेज हो गई है।
25: नशिया नु रोकण वास्ते संघर्ष कर रहा सी, सरकार नाल लड़ाई लड़ रहा सी, सरकार ते नशा बेचण वाले उनु बार बार दबा रहे सी, लेकिन अज आखर नु उस दे गोलियां मार के मार दिता है। बहुत ही घिनौनी हरकत हुई है, सरकार वास्ते डुब के मरने वाली गल है।
26: गोलियां मार के कत्ल किया गया,
1: ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਹਾਦ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ।

0: पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इस हत्या के पीछे क्या वजह है, इसे लेकर पुलिस की जांच जारी है। इस हत्याकांड के विरोध में मानसा में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। परविंदर झोटा के समर्थकों की ओर से मानसा के 12 हाटा चौक पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। विरोध के चलते बाजार भी बंद कर दिया गया है। वहीं इस मामले में परविंदर झोटा के अलावा 4 अन्य लोग भी घायल हुए हैं। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो।
1: सऊदी अरब के प्रिंस इन दिनों सीक्रेट बंकर में छिपने को मजबूर है। खबर यह है कि प्रिंस सलमान को अपनी जान का खतरा है। प्रिंस के डर का कारण कोई और नहीं बल्कि हूती विद्रोही हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया कि हूतियों के हमले के बाद से ही प्रिंस सलमान अंडरग्राउंड हैं, कई दिनों से सार्वजनिक तौर पर नजर नहीं आए।

0: क्या सऊदी पर ईरान कर सकता है हमला? सऊदी पर हूतियों के हमले के पीछे का खेल। बंकर में छिपे सऊदी प्रिंस के डर की वजह। हूतियों के साथ ईरान, सऊदी अरब परेशान। ईरान की सीधी धमकी, जमीनी सेना है तैयार। क्या हूती बहाना है, सऊदी अरब है निशाना?
1: We've suffered greatly from this ideology these past 30.
0: Middle East को पैगाम, ईरान का माइंड गेम। अमेरिका और ईरान के बीच पर्दे के पीछे बातचीत का दावा कतर ने किया, लेकिन वार्ता के बीच सऊदी अरब पर हूतियों के हमले के पीछे ईरान का माइंड गेम है। डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि सऊदी अरब के बहाने अब ईरान ट्रंप पर लगातार दबाव बढ़ाता जा रहा है, क्योंकि ईरान ने अमेरिका का दांव अमेरिका के खिलाफ चल दिया है।
2: Unwavering, I will never allow Iran to have a nuclear weapon. Upon taking office last year, I immediately opened negotiations with Iran and offered them full economic cooperation in exchange for ending their nuclear program and support for terror, but they refused. They absolutely refused. That was a big mistake. Then in Operation Midnight Hammer, the U.S. military obliterated their nuclear program beneath mountains of rubble. And again, I urged Iran to make a deal, and again, they refused. The regime continued building a vast missile and drone stockpile that threatened the security of every American service member in the region and everyone else in the region.
0: दरअसल ईरान पर चाहे 2025 में इजराइल का हमला हो या फिर ईरान पर 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल का हमला, ये हमले तब हुए जब अमेरिका और ईरान बातचीत की टेबल पर थे, मतलब बातचीत की आड़ में ईरान पर निशाना साधा गया। ठीक यही दाव अब ईरान ने चल दिया है। पर्दे के पीछे अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन बातचीत के दौरान सऊदी पर हूती ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसा रहे हैं। ऐसे में अब शांति समझौते को लेकर अमेरिका पर बड़ा दबाव है। ये वही दबाव है जिसके चलते हूतियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई से ट्रंप ने अपने पैर पीछे खींच लिए हैं।
3: Whether to join the Saudi strikes on the Houthis?
4: We may. We're going to look at it.
3: How soon?
4: We just found out about the recent attack, so we'll make a decision. We move very quick.
0: दूसरी तरफ शाही महलों में रहने वाले सऊदी के प्रिंस सलमान यानी MBS सीक्रेट बंकर में छिपने को मजबूर हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हूतियों के हमले के डर से मोहम्मद बिन सलमान इन दिनों गुप्त बंकर में अंडरग्राउंड हैं। प्रिंस सलमान की लोकेशन को गुप्त रखा जा रहा है। प्रिंस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, खासतौर पर प्रिंस सलमान की सुरक्षा में स्पेशल गार्ड्स के दस्ते को तैनात किया गया है, क्योंकि हूतियों की मिसाइल की जद में रियाद है। वही रियाद जहां सऊदी का एयर डिफेंस सिस्टम हूतियों की मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहा। सुरक्षा कारणों से प्रिंस सलमान को सार्वजनिक तौर पर बाहर न जाने की सलाह दी गई है। बड़ी बात यह है कि आखिरी बार बीते मंगलवार को सार्वजनिक तौर पर प्रिंस सलमान नजर आए थे।

0: मतलब प्रिंस सलमान पर भी हमला हो सकता है। ये खतरा उस वक्त बढ़ गया जब सऊदी अरब पर भीषण हमलों के बावजूद हुतियों के समर्थन में ईरान खुलकर खड़ा हो गया। पड़ोसी देशों को धैर्य और ठोस भाईचारे की नीति पर चलना चाहिए। ऐसे समझौते ईरान को रोक नहीं पाएंगे। सऊदी अरब को तुर्की और पाकिस्तान उसी तरह सुरक्षा नहीं दे पाएंगे जैसे अमेरिका नहीं दे पाया। सऊदी अरब अपनी नीतियां बदले ताकि दूसरों के आगे अपनी सुरक्षा के लिए गिड़गिड़ाना न पड़े। हमने भी पाकिस्तान और तुर्की को लेकर कई अफवाहें सुनी हैं और उम्मीद करते हैं कि वो सच न हो। इस क्षेत्र के देशों को अच्छी तरह पता है कि यमन में किसी भी तरह की दखल अंदाजी खतरनाक रुख अख्तियार कर सकती है। इस मामले में मक्का रक्षा समझौते का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ईरान ने सिर्फ हूतियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को लेकर अपनी लक्ष्मण रेखा नहीं खींची बल्कि ये भी संकेत दिए हैं कि अगर सऊदी पर हूतियों के हमलों के बाद अमेरिका ने फिर से हमले शुरू किए तो ईरान जमीनी स्तर पर मिडल ईस्ट के देशों में घुसपैठ कर सकता है। अगर अमेरिका नए हमले शुरू करता है तो हम पड़ोसी देशों में सेना भेज सकते हैं। अब की बार ईरानी सेना की तैयारी कई फ्रंट पर युद्ध लड़ने की है। मिडल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी मुल्कों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सऊदी अरब के तेल ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। यूएई के अहम ठिकानों के साथ साथ क्षेत्रीय डेटा सेंटर और इंटरनेट केबल भी निशाने पर हैं। सऊदी अरब और यूएई के ठिकाने ईरान के हिट लिस्ट पर हैं, लेकिन ईरान ने ये साफ नहीं किया है कि किन देशों के खिलाफ अपनी जमीनी सेना को उतार सकता है। मतलब साफ है कि ईरान ने अमेरिका के साथ साथ मिडल ईस्ट के देशों तक अपना बारूदी पैगाम पहुँचा दिया है। ईरान की धमकी के बीच हूतियों ने भी अमेरिका को बड़ी चेतावनी दी है। अगर अमेरिका यमन के खिलाफ आक्रामकता में शामिल होता है तो हम जवाबी कार्रवाई के फैसले पर विचार नहीं करेंगे बल्कि अमेरिका और क्षेत्र में उसके सभी हितों को निशाना बनाते हुए त्वरित और करारा जवाब देंगे। कहीं नहीं अगर सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान हमारे खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई करता है तो उनके साथ भी वैसा ही बर्ताव किया जाएगा जैसा अभी सऊदी अरब के साथ किया जा रहा है। ईरान और हूतियों की धमकी का असर है कि सऊदी अरब ने इजराइल की तरफ से सैन्य मदद की पेशकश को ठुकरा दिया है। दरअसल हूतियों के खिलाफ सैन्य मदद का प्रस्ताव इजरायली सरकार की तरफ से सऊदी अरब के प्रिंस सलमान को भेजा गया था। इजरायली अखबार हारेट्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के कहने पर इजरायल ने सैन्य मदद का प्रस्ताव रखा था। नेतन्याहू की तरफ से अमेरिका की मध्यस्थता में ये संदेश मोहम्मद बिन सलमान को भेजा गया। प्रस्ताव में हूतियों के खिलाफ इजरायली सेना को शामिल किए जाने की बात कही गई। इस पर रियाद ने साफ कर दिया है कि वो इसराइल की मदद नहीं चाहता है। प्रिंस सलमान को डर है कि इसराइल की मदद लेने से सऊदी की जनता में नकारात्मक प्रतिक्रिया हो सकती है। जैसे ही सऊदी अरब ने इजरायली सैन्य मदद को ठुकराया वैसे ही इसराइल के खिलाफ ईरान का बड़ा बयान सामने आया। ईरानी सांसद ने दावा किया कि हूतियों के बहाने ईरान पर इसराइल हमले का मौका तलाश रहा है, लेकिन ईरान पर इसराइल ने हमला किया तो इसराइली परमाणु सेंटर पर तबाही मचना तय है। नेतन्याहू 27 अक्टूबर को होने वाले चुनाव से पहले ईरान पर हमला कर सकते हैं। इसराइल का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नाकाम रहा तो दूसरे रास्ते खोजे जा रहे हैं। अगर ईरान पर बमबारी की जाती है तो जवाबी कार्रवाई की संभावना है और इसराइल के दिमोना एपी सेंटर को निशाना बनाया जा सकता है। ईरान जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। बड़ी बात यह है कि फ्लाई दुबई कांड के बाद अमेरिका और इसराइल ने ईरान को कटघरे में खड़ा किया था। ट्रंप ने तो यहाँ तक दावा किया था कि हाईजैक की कोशिश के पीछे ईरानी साजिश थी। ट्रंप के इसी आरोप के बाद सऊदी अरब पर हूतियों ने अपने हमले तेज कर दिए क्योंकि ये हमले ईरान की युद्ध नीति का हिस्सा है। अमेरिका या इसराइल दोबारा हमला करें उससे पहले ही ईरान ने अपना बारूदी पैगाम ट्रंप तक पहुंचा दिया। यही वजह है कि सऊदी पर हूतियों के हमले के बावजूद अमेरिका मौन है, पाकिस्तान चुप है और कोई भी देश हूतियों के खिलाफ सैन्य एक्शन की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। आज तक ब्यूरो।
1: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज

0: राहुल को अमित शाह का जवाब, एसआईआर के बहाने घुसपैठियों को बचा रहे हैं। 2029 में करारी हार के लिए रहे तैयार, देश की जनता को मोदी पर भरोसा। इंडिया गठबंधन की चाय पर चर्चा के बाद बोले राहुल, शाह ज्ञानेश को नहीं छोड़ेंगे, लोकतंत्र को बचाना उद्देश्य। खड़गे तेजस्वी राउत ने ज्ञानेश पर किया तीखा वार। दिल्ली में कांग्रेस ऑफिस के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, यौन उत्पीड़न में जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर, कांग्रेस सांसद के खिलाफ फल्ला बोल, राष्ट्रपति से गुहार। एल मुरुगन ने पीएम को लिखी चिट्ठी, मंत्रिमंडल छोड़ने की मांगी अनुमति, कहा तमिलनाडु में काम करूंगा, रिजिजू से मिले। और बिहार के हाजीपुर में गंगा नदी में पलटी नाव, 14 लोगों की मौत, सीएम ने रेस्क्यू के दिए निर्देश, पीएमओ ने 2-2 लाख के मुआवजे की घोषणा। पांच दिन विरोध प्रदर्शन करने के बाद राहुल गांधी के घर चाय पर चर्चा होती है। करीब 2 घंटे की बैठक के बाद जब राहुल और इंडिया गठबंधन वाले ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो ज्ञानेश कुमार के साथ साथ जंतर मंतर पर प्रदर्शन की रोक पर गरजते हैं। सबने एक सुर में कहा कि सरकार जंतर मंतर को प्रदर्शन स्थल से नहीं हटा सकती। इसके अलावा राहुल ने अगले प्लान का सरप्राइज देते हुए सीधे कहा कि ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा उनका मिशन है।
1: ज्ञानेश कुमार के खिलाफ क्या है राहुल का सरप्राइज प्लान?
2: कैसे जाएंगे वो हम आपको बता नहीं सकते, क्योंकि फिर आप को सारा मतलब सरप्राइज खत्म हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि आपके लिए और देश के लिए ये माहौल बना रहे।
1: 5 दिन विरोध प्रदर्शन, 6ठे दिन इंडिया गठबंधन की चाय पर चर्चा, जंतर मंतर पर ही विरोध प्रदर्शन, इंडिया गठबंधन की नई कसम।
2: ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने जिस प्रकार से लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया है, साफ और साफ बीजेपी अमित शाह और मोदी जी के इशारे से हम सब लोग एकजुट हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए, और इसके लिए बहुत कुर्बानी देना होगा। हम सब लोग जो है मिलकर के देंगे।
3: ज्ञानेश कुमार एक ऐसा माफिया है जिसने पूरे सिस्टम का अपराधीकरण किया।
1: विपक्ष का ज्ञानेश हटाओ मार्च जारी रहेगा, लेकिन सरप्राइज के साथ।
4: आते इन्होंने संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करके चुनाव को प्रभावित किया है और वोट चोरी का काम किया, घृणित काम किया।
5: वोट चोरी करता है, संघर्ष का जगह का चोरी करता है।
1: पहले सीईसी के खिलाफ शिव की बारात, अब नए प्लान पर चर्चा। 5 दिन तक दिल्ली की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के बाद हर कोई यही सोच रहा था कि क्या राहुल फिर से सरप्राइज देंगे, क्योंकि 12 अक्टूबर को जिस तरह से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस से लेकर इंडिया गठबंधन के दिग्गज नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट तक ज्ञानेश हटाओ मार्च निकाला, उसमें विपक्षी एकता भी दिखी और सड़कों पर कार्यकर्ताओं का हुजूम भी। पिछले कई दिनों का पैटर्न ऐसा ही था कि पहले राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने लंच किया, उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ तगड़ा विरोध प्रदर्शन किया। 13 अक्टूबर को भी जब राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के नेताओं को चाय पर बुलाया तो सबको लगा कि क्या फिर से ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कोई नया प्लान है, क्योंकि राहुल गांधी ने जो ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को शिव का तांडव और शिव की बारात का नाम दिया और सबको शिव की बारात में आने के लिए कहा, सबने सोचा क्या फिर से चाय के बाद विरोध प्रदर्शन का प्लान है। लेकिन जब राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने चाय पर चर्चा के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो राहुल गांधी ने विपक्ष के ज्ञानेश हटाओ मार्च पर एक और सरप्राइज दिया।
2: ये जो हमारी टीम है ये रुकने वाली नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये एंड गोल तक जाएगी। कैसे जाएंगे वो हम आपको बता नहीं सकते, क्योंकि फिर आप को सारा मतलब सरप्राइज खत्म हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि आपके लिए और देश के लिए ये माहौल बना रहे, इंटरेस्टिंग रहे और सरप्राइजिंग रहे।
6: मगर मैं आपको गारंटी देता हूं कि जिस प्रकार से हम सब ने मोबिलाइज किया, जिस एनर्जी से, जिस शक्ति से हमने मोबिलाइज किया, जिस यूनिटी के साथ हमने मोबिलाइज किया, उसी प्रकार से हम सब मिलकर लड़ते रहेंगे।
7: 10 अक्टूबर को जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के ऐलान के बाद सरकार ने जंतर मंतर को आधिकारिक धरना प्रदर्शन स्थलों की सूची से ही हटा दिया। जी हां, न तो सरकार ने जंतर मंतर पर 10 अक्टूबर को सीजेपी को विरोध प्रदर्शन करने दिया और न ही आगे जंतर मंतर को धरना स्थल रहने दिया। और अब इंडिया गठबंधन ने कसम खाई है कि वो जंतर मंतर को वापस धरना प्रदर्शन के लिए लेकर ही रहेंगे।
2: ज्ञानू गुप्ता जी तो और आगे बढ़कर के चले गए 10 कदम। जिस हिसाब से एक कठपुतली की तरह ज्ञानेश गुप्ता जी ने जो काम किया है उसको जो है सजा जरूर मिलेगी। ये लोग बचने वाले लोग नहीं हैं, ये लोग डरे हुए लोग हैं और ये डर इनका दिखाता है कि जंतर मंतर को जो है अब प्रोटेस्ट जहां होना चाहिए था, जो होता रहा है, जिसका ऐतिहासिक महत्व रहा है, उसको बदल करके जो है दिल्ली के बॉर्डर पे जो है कर दिया गया है।
8: It is truly, it has truly been revealed that the people who have actually committed treason against the people of this country is the BJP and the people who have facilitated this treason. The Election Commission of India and the CEC, Ganesh Kumar, needs to go.
5: इनका खिलाफ हमारा संघर्ष आगे जाता है और जो संघर्ष करने के लिए एक डेसिग्नेटेड जगह था जंतर मंतर, इनका चोरी भी करता है।
9: We will not stop until Mr. Ganesh Kumar is removed and criminal proceedings are launched not just against Mr. Ganesh Kumar but against all the election officials of the Election Commission who have supervised elections in Haryana, Maharashtra, Bengal and Bihar.
7: अभी तक तो राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन वाले वोट चोरी और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एकजुटता और शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। अब जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के लिए भी एकता और ताकत दिखाने के लिए उतर पड़े हैं।
2: ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने जिस प्रकार से लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया है, साफ और साफ बीजेपी अमित शाह और मोदी जी के इशारे थे।
3: मोदी और शाह ने ये देश को डराकर धमकाकर रखा था, अब डरने की बारी उनकी है।
7: आपको बता दें कि भले ही आज राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन कांग्रेस की छात्र विंग NSUI और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर जरूर उतरे। दिल्ली के कनॉट प्लेस में NSUI के कार्यकर्ताओं ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हल्ला बोला तो पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जबकि यूपी के वाराणसी में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करने उतरे।
10: लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया ज्ञानेश कुमार ने।
11: एक ऐसा तानाशाह चुनाव आयोग है जो एक बराबर मिलकर जनता को, लोकतंत्र को लूटने का काम कर रहा है।
7: इसके अलावा पटना में लेफ्ट की छात्र विंग आयशा ने ज्ञानेश हटाओ मार्च निकाला, लेकिन पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग करके रोक लिया। लेकिन इस दौरान जब आयशा के छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया तो वो वज्र वाहन की चाबी लेकर ही भाग गए।
12: पटना में आज SIR को लेकर लेफ्ट छात्र संगठनों का आज प्रदर्शन था, बखूब बवाल हुआ। लेकिन एक फिर से बिहार में एक अनोखी तस्वीर, अनोखी घटना सामने आई है। ये वज्र वाहन है जहां पर छात्रों को डिटेन करके इसमें रखा गया था और बड़ी बात यह है कि इस वज्र वाहन की गाड़ी की चाबी लेकर के जो छात्र हैं वो भाग गए हैं। ये तस्वीर देखिए और इस वजह से इस गाड़ी को जो है यहीं पर लगाया गया है। ये तस्वीर देखिए, ये वज्र वाहन है और यहाँ पे जो गाड़ी की चाबी थी उसको लेकर के छात्र फरार हो गए हैं।
7: बंगाल में भी ममता बनर्जी की पार्टी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने उतरी, लेकिन यहाँ भी पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। आज तक ब्यूरो।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर अटैक किया, वोट चोरी और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर करारा जवाब भी दिया।
13: SIR तो 24 के बाद चालू हुआ। आप जब से कांग्रेस के मुख्य नेता के रूप में आए हैं और बाद में अध्यक्ष के रूप में आए हैं, लीडर ऑपोजिशन के रूप में आए, कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव हारी। आपको आत्मचिंतन करने की जरूरत है। फैब्रिकेटेड मीडिया इवेंट, झूठ की गूंज कर आप देश की जनता का विश्वास हासिल नहीं कर सकते। पूरी 14 पार्टी का कैडर इकट्ठा कर 1.5 किलोमीटर के क्षेत्र में 8,000 की भीड़ इकट्ठी कर आप देश की आवाज नहीं बन सकते हो। मेरा कांग्रेस पार्टी से निवेदन है कि देश की आवाज खेत खलियानों में, गांवों में, दूर सुदूर पहाड़ियों पर, जंगलों में और नदियों के किनारे भी है। आपकी वहां कोई रीच नहीं है। देश के कई सूबे ऐसे हैं, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, आपको कई दशकों तक कांग्रेस पार्टी को वहां की जनता ने नकारा है, हराया है। आज भी कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार की नकारात्मक पॉलिटिक्स कर रही है वो उनको फायदा नहीं करेगी। उनको जनता को समझना चाहिए, जनता का संपर्क करना चाहिए।
0: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और राजीव रंजन सिंह ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस और राहुल गांधी के चुनाव आयोग संबंधी आरोपों पर निशाना साधा। गोयल ने दावा किया कि कांग्रेस का अपने पुराने निर्णय और चुनाव आयोग से जुड़े अधिकारियों की नियुक्ति का रिकॉर्ड उसके मौजूदा आरोप से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता।
14: SIR की वजह से कांग्रेस केरल में जीती, क्योंकि ये सब डुप्लीकेट नाम, मरे हुए लोगों के नाम, जो लोग वहां से शिफ्ट हो गए वो नाम निकल गए, तो कोई मैल प्रैक्टिस होने की संभावना नहीं थी केरल में। ये शशि थरूर जी का दावा है। रमेश चेन्नीथाला जी ने खुद कहा कि SIR की वजह से ही आज कांग्रेस जीत पाई है केरल में, और केरल के मुख्यमंत्री स्वयं श्री VD सतीशन जी ने SIR की तारीफ की है। अधीर रंजन चौधरी जी ने इलेक्शन कमीशन की तारीफ करी कि पश्चिम बंगाल के चुनाव उन्होंने अच्छी तरीके से लड़ाए, ईमानदार व्यवस्था से लड़े गए, और जो गलत काम ममता बैनर्जी जी करती थी उसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने भी किया और इलेक्शन कमीशन की तारीफ की। अब उनकी खुद की पार्टी बेबुनियाद और झूठे वोट चोरी के दावे ला रही है।
0: और आइए अब हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसे देखकर आप ये समझ पाएंगे कि सरकार ने जंतर मंतर को प्रदर्शन की जगह के तौर पर से क्यों हटाया और दिल्ली में जिन 3 जगहों को प्रदर्शन के लिए चुना गया उनकी इस समय क्या स्थिति है।
15: जुलाई में जब जंतर मंतर के आंदोलन से सरकार के एक मंत्री का इस्तीफा हुआ तो तभी से यह माना जा रहा था कि अब जंतर मंतर पर आंदोलन नहीं होगा, और ऐसा ही हुआ है। सरकार ने जंतर मंतर को प्रदर्शन की जगहों से अलग कर दिया है और प्रदर्शनकारियों के लिए दिल्ली में 3 नई जगहें तय कर दी हैं। पहला है रामलीला मैदान, जो जंतर मंतर से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। दूसरा है बुराड़ी का ग्राउंड, जो यहां से 21 किलोमीटर दूर है। और तीसरा है पूर्वी दिल्ली में शाहदरा का CBD ग्राउंड, जो जंतर मंतर से 12 किलोमीटर दूर है। लेकिन क्या इन मैदानों पर प्रदर्शन करना इतना आसान रहेगा? क्योंकि प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर इसलिए प्रदर्शन करने आते थे क्योंकि यहां से संसद भवन पास में है, सरकार के सभी बड़े दफ्तर बिल्कुल पास में है, प्रदर्शनकारी सीधे सरकार तक अपनी आवाज पहुंचा सकते थे, जैसा कि जुलाई में CJP के प्रोटेस्ट में हुआ था। उस वक्त प्रदर्शनकारियों ने संसद मार्च भी कर दिया था जिसमें जमकर हिंसा हुई थी, लेकिन यह बात भी सही है कि इससे सरकार पर दबाव पड़ा था और इसीलिए आखिरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हुआ। अब अगर धरना प्रदर्शन की जगह दूर हो, जहां से न संसद पास हो, न प्रधानमंत्री का घर, न राष्ट्रपति का आवास, न कोई सरकारी दफ्तर, तो सरकार को क्या फर्क पड़ेगा? अब ये इन 2 ग्राउंड्स की तस्वीर आपके सामने है। एक है बुराड़ी का ग्राउंड, जो जंतर मंतर से 21 किलोमीटर दूर है। यहां अगर कोई पार्टी, कोई सामाजिक संगठन प्रदर्शन करने जाएगा भी तो क्या सरकार उसकी सुनेगी? और यही सवाल शाहदरा के CBD ग्राउंड के लिए भी है कि पूर्वी दिल्ली के इस ग्राउंड में प्रदर्शन करने कौन जाएगा, और जो यहां जाएगा क्या उसकी आवाज सुनी जाएगी?
16: जंतर मंतर की जगह सरकार ने जो तीन मैदान दिए हैं कि अब यहाँ पर धरना प्रदर्शन होगा, उनमें से एक बुराड़ी भी है। अब बुराड़ी आप समझिए कि संसद भवन से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर, और मैदान कितना बड़ा, अगर आप देखिए इसकी क्षमता इतनी है कि 3 से 4 लाख लोग जो है इस मैदान में बैठ सकते हैं। आमतौर पर धार्मिक बड़े आयोजनों के लिए इस मैदान का इस्तेमाल होता है, और इसीलिए यहां पर, लेकिन ये इतनी दूरी पर है कि बहुत सारे प्रदर्शनकारी या राजनीतिक दल अगर विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं तो सबसे पहले यहां आने के लिए जो क्षमता है वो बसों का सहारा, मेट्रो स्टेशन थोड़ी सी दूरी पर है, यहां आना। और दूसरा, जंतर मंतर पर 2000 की भीड़ 20 तो लगती है, लेकिन बुराड़ी मैदान पर अगर 1 लाख लोग भी बैठ जाएंगे तो भी ऐसा क्षमता लगता है कि 2 या 4 या 5 हजार लोग बैठे हैं। उसी के साथ साथ यहां पर क्या इतनी दूरी पर 17 किलोमीटर, क्योंकि जंतर मंतर पर बैठने का संदेश होता था कि वो इस नाम पर आते थे कि संसद मार्च करेंगे और फिर वहां से पार्लियामेंट सीट थाने जाते थे, क्या यहां से संसद मार्च की कोशिश भी की जा सकती है? 1 या 1.5 किलोमीटर के अंदर जो है उन्हें रखा जा सकता है। सुविधाओं के नाम पर बड़ी पार्किंग एरिया है, कितना भी बड़ा प्रोटेस्ट मार्च हो इस मैदान को भरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब यहां की एसओपी है कि मैदान तो उपलब्ध हो सकता है आराम से, लेकिन क्या प्रदर्शन करने के लिए जो सामाजिक ग्रुप है, प्रेशर ग्रुप है, और इसी के साथ जो राजनीतिक दल है, क्या वो बुराड़ी के मैदान में प्रदर्शन करने के लिए आएंगे?
15: धरना प्रदर्शन इसलिए करने पड़ते हैं ताकि सरकारों को अपनी आवाज सुनवा सके, और इन मैदानों से कौन सी सरकार आवाज सुनेगी? हाँ, रामलीला मैदान जंतर मंतर से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है और ये भी एक धरना स्थल है, लेकिन यहाँ दूसरी तरह की समस्याएं हैं। क्या यहाँ प्रदर्शन के लिए ग्राउंड खाली मिलेगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल दशहरा तक रामलीला मैदान इसलिए प्रदर्शन के लिए नहीं मिल सकता क्योंकि नवरात्रों के पर्व के चलते यहां रामलीला का मंचन हो रहा है। मैदान के हिस्से में मेला भी लगा हुआ है। अब विजयदशमी पर रावण दहन से पहले रामलीला मैदान किसी और कार्यक्रम के लिए उपलब्ध नहीं हो सकता।
16: ये ऐतिहासिक जंतर मंतर पर अब धरना मना है क्योंकि केंद्र सरकार ने उसे धरना स्थल पर जो जगह दी गई हुई थी, जो उसकी मान्यता थी, उसे रद्द कर दिया है। लेकिन अब ये कह दिया है कि दिल्ली के 3 जगहों पर धरना हो सकेगा, धरना प्रदर्शन सभाएं हो सकेंगी, उनमें से एक है दिल्ली का ये ऐतिहासिक रामलीला मैदान। ये रामलीला मैदान अगर इसकी जगह को समझें तो अब इसको लेकर के दरअसल विरोध कर रहे हैं व्यापारी कि जंतर मंतर से आपने धरना प्रदर्शन हटा दिया जिससे कारोबार सही होगा, उसका तो स्वागत है, लेकिन रामलीला मैदान को धरना स्थल एक 3 जगह जो दी गई है जिसमें पूर्वी दिल्ली बुराड़ी का मैदान और ये दिल्ली का रामलीला मैदान, इसको लेकर के व्यापारी नाराज है। वो किस लिए समझिए, ये पूरा रामलीला मैदान है, इस समय यहां पर रामलीला चल रही है, मेले लगे हुए हैं क्योंकि नवरात्रि दशहरा में मेला लगता है। इसी के साथ साथ अब इसके बगल में क्या है, यहां पर ये नगर निगम का सिविक सेंटर है, आप समझिए यहां से नगर निगम संचालित होता है। बीच में महानगर का जो MTNL है आप देख रहे हैं उसकी बिल्डिंग है। इसी के ठीक बगल में यहां पर अगर आप देखेंगे इस तरफ अस्पताल है, आंखों का अस्पताल है, बड़े सारे कई अस्पताल हैं। अब अगर 360 डिग्री आपको ले जाता हूं तो यहां पर आपको दिखाई देगा वर्धमान प्लाजा, ट्रेडर टावर है, और इसी के साथ साथ यहां पर जो ट्रेड सेंटर है वो बनाया गया है।
15: आपको जानकर हैरानी होगी कि इस साल 2026 में सिर्फ 3 तारीखें खाली हैं जब मैदान उपलब्ध है, 29, 30 और 31 दिसंबर, यानी अगले 2.5 महीने रामलीला मैदान पूरी तरह से बुक है। रामलीला मैदान पर प्रदर्शन करना भी महंगा होगा, यहां एक दिन की बुकिंग के लिए 1,21,000 रुपए खर्च करने होंगे। इसके अलावा 50,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट भी अलग से जमा करना होगा। इसके अलावा रामलीला मैदान में प्रदर्शन के लिए MCD की अनुमति और दिल्ली पुलिस की NOC भी अनिवार्य है। और अगर ये सब कर भी लिया तो व्यापारी रामलीला मैदान को प्रदर्शन स्थल घोषित करने के विरोध में उतर आए हैं, क्योंकि व्यापारियों का कहना है कि रामलीला मैदान के आसपास दिल्ली का व्यापार हब है, सारे बड़े मार्केट्स हैं जहां से हर रोज अरबों का कारोबार होता है। रामलीला मैदान के आसपास कमला मार्केट, दरियागंज, चावड़ी बाजार, नया बाजार, पहाड़गंज, चांदनी चौक, सदर बाजार, खारी बावली, भगीरथ पैलेस, अजमेरी गेट, कश्मीरी गेट है। व्यापारियों का मानना है कि अगर यहां रोज धरना प्रदर्शन होंगे तो उनका व्यापार बुरी तरह से प्रभावित होगा।
16: ठीक इसके पीछे दरअसल ये दिल्ली 6 शुरू होता है। दिल्ली 6 सबसे पुराने बाजारों में से एक है। यहां से रास्ता जो है आप आगे पुरानी दिल्ली की ओर जाता है, चांदनी चौक की ओर जाता है, चावड़ी बाजार की ओर जाता है, तो ये पूरा इलाका बाजारों से घिरा हुआ है जहां पर रोज लाखों नहीं बल्कि करोड़ों का कारोबार होता है। व्यापारियों की चिंता ये है कि अगर इसे जो है आपने रामलीला मैदान को धरना स्थल घोषित कर दिया तो यहां सैकड़ों हजारों का जमावड़ा होगा, बड़े बड़े आंदोलन होंगे, जैसा कि पिछले समय में देखा गया है कि 10 दिन 12 दिन बाबा रामदेव का आंदोलन चला, अन्ना आंदोलन चला, जो कि सप्ताहों तक चलता रहता है। तो ऐसे में भीड़ जब यहां बढ़ेगी, यहां से लोग आगे मार्च करना चाहेंगे, जाएंगे करेंगे तो व्यापार खराब होगा, लोगों के चलते रास्ते बंद करने पड़ेंगे, डायवर्जन होंगे, तो कारोबार को सैकड़ों करोड़ की चपत लगेगी, जिसको लेकर के व्यापारियों ने नाराजगी जताई है। हम जिस रामलीला मैदान पर है इस समय नवरात्रि के चलते आप देखेंगे कि यहां रामलीला का मंचन हो रहा है, इस तरफ स्टेज लगा हुआ है और ठीक इसके पीछे यहां पर देखिए सैकड़ों लोगों के बैठने की व्यवस्था है और साथ ही मेला लगा हुआ है। कारोबार मेले का और लोगों के बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं। इस रामलीला मैदान का अपना बहुत इतिहास रहा है, इस रामलीला मैदान ने बहुत सारे आंदोलन देखे हैं।
15: दिल्ली के इन्हीं व्यापारियों ने पहले सरकार को चिट्ठी लिखकर जंतर मंतर को प्रदर्शन स्थल की लिस्ट से हटाने की मांग की थी और अब जब सरकार ने उनकी मांग मान ली और रामलीला मैदान को नया प्रदर्शन स्थल घोषित कर दिया तो अब ये व्यापारी नाराज हैं।
17: लेकिन एक चीज को लेके हम व्यापारियों को आपत्ति है कि आपने रामलीला मैदान को प्रदर्शन स्थल की सूची में डाल दिया है। रामलीला मैदान के पास ही कमला मार्केट, दरियागंज और तमाम जो दिल्ली छह का एरिया है, चावड़ी बाजार, नया बाजार, पहाड़गंज, चांदनी चौक, सदर बाजार, कश्मीर गेट, लगभग 5 किलोमीटर के एरिया में तमाम जो दिल्ली छह है, जो बिजनेस हब है, दिल्ली का दिल है, वो रामलीला मैदान के आसपास ही आता है। तो अगर रामलीला मैदान में फिर से अगर धरने प्रदर्शन होंगे, बैरिकेटिंग लगेगी, मेट्रो स्टेशन बंद होंगे तो दिल्ली छह का व्यापार ये प्रभावित होगा। चांदनी चौक, सदर बाजार, खारी बावली, नया बाजार, लाजपतरा मार्केट, भागीरथ प्लेस, कश्मीरी गेट, पहाड़गंज, अजमेरी गेट, दरियागंज, तो ये सारा प्रभावित होने से व्यापार फिर से प्रभावित होगा। तो हम मांग करते हैं फिर से गृह मंत्रालय से और दिल्ली पुलिस से कि आपने जो तीन स्थान चिन्हित किए हैं इसमें से रामलीला मैदान को हटाया जाए, बुराड़ी मैदान रख लीजिए, सीबीडी ग्राउंड रख लीजिए और कोई बारी दिल्ली में एक जगह दे दीजिए।
18: मैं सरकार के इस फैसले से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता कि रामलीला ग्राउंड को चुना जाए प्रदर्शन के लिए, क्योंकि रामलीला ग्राउंड एक तो नई दिल्ली के बहुत पास है, दूसरा यहाँ पर सभी बड़ी बड़ी पार्टियों के दफ्तर हैं, तीसरा यहाँ पर ये सेंसिटिव एरिया है, आसपास जितना भी एरिया है यहाँ पर किसी तरह का कोई आंदोलन अगर उग्र रूप लेता है तो यहाँ पर अपना क्या कहते हैं दोनों समुदायों, कुछ समुदायों के बीच में जंग एकदम छिड़ सकती है। चौथा, यह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास है। पांचवा, यह होलसेल मार्केट है, जितनी भी दिल्ली की होलसेल मार्केट है जहां से पूरा व्यापार होता है, जिनके थ्रू पूरा जीएसटी की कलेक्शन होती है अधिकतर, वो सारी मार्केट इससे प्रभावित होंगी। अगर आजकल के माहौल में जैसा कि पिछले दिनों देखा गया है जिसकी वजह से जंतर मंतर से यह हटाया गया है, उसको देखते हुए अगर भीड़ उग्र हो गई या भीड़ अधिक तादाद में आ गई किसी प्रदर्शन को लेकर के, तो यहाँ पर पूरा होल सेल व्यापार जो थोक व्यापार है वह खत्म हो जाएगा।
15: ऐसा नहीं है कि रामलीला मैदान के इन इलाकों में सिर्फ बड़े व्यापारी या बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान ही हैं। यह बात सही है कि यह पूरा इलाका थोक मार्केट है। कपड़ों से लेकर गहनों तक, मसालों से लेकर ड्राई फ्रूट तक और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स तक, यह हिंदुस्तान के सबसे बड़े थोक मार्केट में से एक है। लेकिन यहाँ और छोटे दुकानदार और कामगार भी हैं, उन्हें भी डर लग रहा है कि उनका कारोबार ठप हो जाएगा।
16: लीला मैदान से महज 300 मीटर आगे पूरे बाजारों का इलाका है, ट्रेड सेंटर है, कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस हैं, एस्टेब्लिशमेंट हैं, बैंक हैं, फिनांस हैं, सब कुछ यहां पर मौजूद है। और अब यहां बहुत सारे कारोबारी हैं जो दिहाड़ी मजदूर भी हैं, जिनकी रोज की कमाई, उनकी चिंता इस बात की है कि अगर रोज रोज यहां पर धरने होने लगे, प्रदर्शन होने लगेंगे तो हम कहां जाएंगे, इलाका व्यस्त हो जाएगा, प्रतिबंध लग जाएंगे, कभी रास्ते बंद होंगे तो कामकाज पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा।
19: मैदान तो बहुत पास है,
16: कामकाज पर असर पड़ेगा,
19: बहुत ज्यादा असर पड़ेगा जी, बहुत ज्यादा।
16: आप लोगों को पता चल गया कि रामलीला
19: वो तीन ग्राउंड फिक्स करे, एक रामलीला, एक बुराड़ी का है, एक और है जमुना पार्क का।
16: तो आप लोगों को भी चिंता हो रही है?
19: अब चिंता क्यों करेंगे, हमें तो रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना, कोई हमारी कोई नौकरी तो है नहीं है, तो सारी भीड़ यहीं आएगी बीजेपी वालों की।
15: आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: बीजेपी जेएनयू और महिलाओं के मुद्दे पर कांग्रेस पर लगातार हमले कर रही है। बीजेपी की महिला सांसदों ने राष्ट्रपति से मुलाकात की, सड़कों पर भी इस मुद्दे पर बीजेपी की ओर से जोरदार हंगामा या प्रदर्शन देखने को मिल रहा।
20: दिल्ली में सियासत का यह दूसरा मोर्चा है। कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजाम के खिलाफ ये गुस्सा फूटा है, जहां उनके निशाने पर राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा हैं। जेएनयू से बर्खास्त किए गए बिमोल अकोइजम के खिलाफ बीजेपी महिला सांसदों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की।
4: मांग हमारी वही थी कि जो डॉक्टर बिमल हैं उनके अगेंस्ट प्रूवन है कि 11 महिला बच्चियों को उन्होंने सेक्सुअली हैरेस किया और उनको निकाल दिया गया जेएनयू से, लेकिन आज भी वो एमपी बने हुए हैं और उनको एमपी शिप की बर्खास्त किया जाए और उनको हटाया जाए।
20: इनर मणिपुर से कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल पर जेएनयू की 11 छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल अकोइजाम जेएनयू में प्रोफेसर थे, वहां की 11 छात्राओं ने उन पर यौन शोषण जैसे गंभीर इल्जाम लगाए। तमाम आरोपों के बाद जेएनयू ने आंतरिक जांच बिठाई, उस जांच में अकोइजाम पर तमाम आरोप सही साबित पाए गए। उसी रिपोर्ट के आधार पर जेएनयू ने 9 अक्टूबर को उन्हें प्रोफेसर पद से हटा दिया। उसके दो दिन बाद यानी 11 अक्टूबर को आरोपी कांग्रेस सांसद के खिलाफ अलग अलग धाराओं में FIR भी दर्ज करा दी गई।
21: एक इंटरनल कमेटी ने गिल्टी पाया 11 छात्राओं की कंप्लेंट पर बिमल अकोइजम के खिलाफ, जितनी भी एलिगेशन सेक्सुअल हैरेसमेंट की थी उनमें सच्चाई पाई और इसीलिए उनको नौकरी से बर्खास्त करा, उस पर भी चुप्पी साधे हुए हैं राहुल गांधी।
20: उधर अंगोमचा बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं।
22: No, this is nothing but harassment. They know that once this khap panchayat style of doing by JNU, if it is challenged in a court of law, the court will take notice of the complete disregard for norms and rule and regulations. So they are trying to drag it to court, which will not also not stand. And I have said before, if you go into the merit of the case, in itself also people will get exposed. What is this so-called harassment allegations?
20: बहरहाल बीजेपी इस मुद्दे को लेकर लगातार सड़कों पर उतरी हुई है, जहां अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
0: पंजाब से एक सनसनीखेज तस्वीर सामने आई, जहां नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले समाज सेवी को सरेआम गोली मार दी गई, जिसने एक बार फिर चुनाव से पहले पंजाब की राजनीति को तेज कर दिया।
20: पंजाब के मानसा में फेसबुक लाइव में बहस के दौरान ये गोलीकांड की तस्वीरें हैं। जिसमें नशे के खिलाफ बड़े स्तर पर सामाजिक मुहिम चलाने वाले मशहूर नशा विरोधी एक्टिविस्ट परविंदर झोटा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। झोटा एक केमिस्ट की दुकान पर नशा बेचने का आरोप लगाते हुए फेसबुक लाइव कर रहे थे। इसी दौरान केमिस्ट वाले ने उन्हें गोली मार दी और अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस मामले को आपसी रंजिश से जोड़ रही है।
23: रंजिशन इस व्यक्ति ने जो है उस पे फायरिंग करके जो है इस घटना को अंजाम दिया है।
20: वहीं परविंदर सिंह झोटा के परिवार का कहना है कि ड्रग्स के खिलाफ उनकी मुहिम के चलते झोटा की हत्या की गई।
24: नशा कौन बिकामा? वो पंजाब सरकार ने विजय सिंगले वर्गे मंत्री बिकामे ने।
20: मामले में एक बार फिर पंजाब में नशे पर सियासी बहस तेज हो गई है।
25: नशिया नु रोकण वास्ते संघर्ष कर रहा सी, सरकार नाल लड़ाई लड़ रहा सी, सरकार ते नशा बेचण वाले उन्हें बार बार दबा रहे सी, लेकिन अज आखर नु उस दे गोलियां मार के मार दिता है। बहुत ही घिनौनी हरकत हुई है, सरकार वास्ते डुब के मरने वाली गल है।
26: गोलियां मार के कत्ल किया गया, उन्हें एक बार फिर पंजाब दे विच माड़े लॉ एंड ऑर्डर की जिहड़ी तस्वीर है वो देश के सामने रख दी। वो व्यक्ति जिहड़ा 5-6 साल तो नशियां दे खिलाफ जहाद खड़ा करके बैठा सी।
27: अभी इन्वेस्टिगेशन सामने आएगी, कोई भी व्यक्ति जो कानून अपने हाथ में लेगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
20: घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इस हत्या के पीछे क्या वजह है, इसे लेकर पुलिस की जांच जारी है। इस हत्याकांड के विरोध में मानसा में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। परविंदर झोटा के समर्थकों की ओर से मानसा के 12 हाटा चौक पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। विरोध के चलते बाजार भी बंद कर दिया गया है। वहीं इस मामले में परविंदर झोटा के अलावा 4 अन्य लोग भी घायल हुए हैं। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो।
0: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज

0: राहुल को अमित शाह का जवाब, एसआईआर के बहाने घुसपैठियों को बचा रहे हैं। 2029 में करारी हार के लिए रहे तैयार, देश की जनता को मोदी पर भरोसा। इंडिया गठबंधन की चाय पर चर्चा के बाद बोले राहुल, शाह ज्ञानेश को नहीं छोड़ेंगे, लोकतंत्र को बचाना उद्देश्य। खड़गे तेजस्वी राउत ने ज्ञानेश पर किया तीखा वार। दिल्ली में कांग्रेस ऑफिस के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, यौन उत्पीड़न में जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर कांग्रेस सांसद के खिलाफ फल्ला बोल, राष्ट्रपति से गुहार। एल मुरुगन ने पीएम को लिखी चिट्ठी, मंत्रिमंडल छोड़ने की मांगी अनुमति, कहा तमिलनाडु में काम करूंगा, रिजिजू से मिले। और बिहार के हाजीपुर में गंगा नदी में पलटी नाव, 14 लोगों की मौत, सीएम ने रेस्क्यू के दिए निर्देश, पीएमओ ने 2-2 लाख के मुआवजे की घोषणा। पांच दिन विरोध प्रदर्शन करने के बाद राहुल गांधी के घर चाय पर चर्चा होती है। करीब 2 घंटे की बैठक के बाद जब राहुल और इंडिया गठबंधन वाले ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो ज्ञानेश कुमार के साथ साथ जंतर मंतर पर प्रदर्शन की रोक पर गरजते हैं। सबने एक सुर में कहा कि सरकार जंतर मंतर को प्रदर्शन स्थल से नहीं हटा सकती। इसके अलावा राहुल ने अगले प्लान का सरप्राइज देते हुए सीधे कहा कि ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा उनका मिशन है।
1: ज्ञानेश कुमार के खिलाफ क्या है राहुल का सरप्राइज प्लान?
2: कैसे जाएंगे वो हम आपको बता नहीं सकते, क्योंकि फिर आप को सारा मतलब सरप्राइज खत्म हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि आपके लिए और देश के लिए ये माहौल बना रहे।
1: 5 दिन विरोध प्रदर्शन, 6ठे दिन इंडिया गठबंधन की चाय पर चर्चा, जंतर मंतर पर ही विरोध प्रदर्शन, इंडिया गठबंधन की नई कसम।
3: ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने जिस प्रकार से लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया है, साफ और साफ बीजेपी अमित शाह और मोदी जी के इशारे थे। हम सब लोग एकजुट हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए, और इसके लिए बहुत कुर्बानी देना होगा। हम सब लोग जो है मिलकर के देंगे।
4: ज्ञानेश कुमार एक ऐसा माफिया है जिसने पूरे सिस्टम का अपराधीकरण किया।
1: विपक्ष का ज्ञानेश हटाओ मार्च जारी रहेगा, लेकिन सरप्राइज के साथ।
5: आते इन्होंने संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करके चुनाव को प्रभावित किया है, और वोट चोरी का काम किया, घृणित काम किया।
6: वोट चोरी करता है, संघर्ष का जगह का चोरी करता है।
1: पहले सीईसी के खिलाफ शिव की बारात, अब नए प्लान पर चर्चा। 5 दिन तक दिल्ली की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के बाद हर कोई यही सोच रहा था कि क्या राहुल फिर से सरप्राइज देंगे, क्योंकि 12 अक्टूबर को जिस तरह से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस से लेकर इंडिया गठबंधन के दिग्गज नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट तक ज्ञानेश हटाओ मार्च निकाला, उसमें विपक्षी एकता भी दिखी और सड़कों पर कार्यकर्ताओं का हुजूम भी। पिछले कई दिनों का पैटर्न ऐसा ही था कि पहले राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने लंच किया, उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ तगड़ा विरोध प्रदर्शन किया। 13 अक्टूबर को भी जब राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के नेताओं को चाय पर बुलाया तो सबको लगा कि क्या फिर से ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कोई नया प्लान है, क्योंकि राहुल गांधी ने जो ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को शिव का तांडव और शिव की बारात का नाम दिया और सबको शिव की बारात में आने के लिए कहा, सबने सोचा क्या फिर से चाय के बाद विरोध प्रदर्शन का प्लान है। लेकिन जब राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने चाय पर चर्चा के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो राहुल गांधी ने विपक्ष के ज्ञानेश हटाओ मार्च पर एक और सरप्राइज दिया।
2: ये जो हमारी टीम है ये रुकने वाली नहीं है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये एंड गोल तक जाएगी। कैसे जाएंगे वो हम आपको बता नहीं सकते, क्योंकि फिर आप को सारा मतलब सरप्राइज खत्म हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि आपके लिए और देश के लिए ये माहौल बना रहे, इंटरेस्टिंग रहे और सरप्राइजिंग रहे। मगर मैं आपको गारंटी देता हूं कि जिस प्रकार से हम सब ने मोबिलाइज किया, जिस एनर्जी से, जिस शक्ति से हमने मोबिलाइज किया, जिस यूनिटी के साथ हमने मोबिलाइज किया, उसी प्रकार से हम सब मिलकर लड़ते रहेंगे।
1: 10 अक्टूबर को जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के ऐलान के बाद सरकार ने जंतर मंतर को आधिकारिक धरना प्रदर्शन स्थलों की सूची से ही हटा दिया। जी हाँ, न तो सरकार ने जंतर मंतर पर 10 अक्टूबर को सीजेपी को विरोध प्रदर्शन करने दिया और न ही आगे जंतर मंतर को धरना स्थल रहने दिया। और अब इंडिया गठबंधन ने कसम खाई है कि वो जंतर मंतर को वापस धरना प्रदर्शन के लिए लेकर ही रहेंगे।
3: ज्ञानू गुप्ता जी तो और आगे बढ़कर के चले गए 10 कदम। जिस हिसाब से एक कठपुतली की तरह ज्ञानेश गुप्ता जी ने जो काम किया है उसको जो है सजा जरूर मिलेगी। ये लोग बचने वाले लोग नहीं हैं, ये लोग डरे हुए लोग हैं और ये डर इनका दिखाता है कि जंतर मंतर को जो है अब प्रोटेस्ट जहां होना चाहिए था, जो होता रहा है, जिसका ऐतिहासिक महत्व रहा है, उसको बदल करके जो है दिल्ली के बॉर्डर पे जो है कर दिया गया है।
7: It is truly, it has truly been revealed that the people who have actually committed treason against the people of this country is the BJP and the people who have facilitated this treason. The Election Commission of India and the CEC, Ganesh Kumar, needs to go.
6: इनका खिलाफ हमारा संघर्ष आगे जाता है और जो संघर्ष करने के लिए एक डेसिग्नेटेड जगह था जंतर मंतर, इनका चोरी भी करता है।
8: We will not stop until Mr. Ganesh Kumar is removed and criminal proceedings are launched not just against Mr. Ganesh Kumar but against all the election officials of the Election Commission who have supervised elections in Haryana, Maharashtra, Bengal and Bihar.
1: अभी तक तो राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन वाले वोट चोरी और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एकजुटता और शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। अब जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के लिए भी एकता और ताकत दिखाने के लिए उतर पड़े हैं।
3: ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने जिस प्रकार से लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया है, साफ और साफ बीजेपी अमित शाह और मोदी जी के इशारे थे।
4: मोदी और शाह ने इस देश को डराकर धमकाकर रखा था, अब डरने की बारी उनकी है।
1: आपको बता दें कि भले ही आज राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन कांग्रेस की छात्र विंग NSUI और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर जरूर उतरे। दिल्ली के कनॉट प्लेस में NSUI के कार्यकर्ताओं ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हल्ला बोला तो पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जबकि यूपी के वाराणसी में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करने उतरे।
9: लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया ज्ञानेश कुमार ने।
10: एक ऐसा तानाशाह चुनाव आयोग है जो एक बराबर मिलकर जनता को, लोकतंत्र को लूटने का काम कर रहा है।
1: इसके अलावा पटना में लेफ्ट की छात्र विंग आयसा ने ज्ञानेश हटाओ मार्च निकाला, लेकिन पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग करके रोक लिया। लेकिन इस दौरान जब आयसा के छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया तो वो वज्र वाहन की चाबी लेकर ही भाग गए।
11: पटना में आज SIR को लेकर लेफ्ट छात्र संगठनों का आज प्रदर्शन था, बखूब बवाल हुआ। लेकिन एक फिर से बिहार में एक अनोखी तस्वीर, अनोखी घटना सामने आई है। ये वज्र वाहन है जहां पर छात्रों को डिटेन करके इसमें रखा गया था और बड़ी बात यह है कि इस वज्र वाहन की गाड़ी की चाबी लेकर के जो छात्र हैं वो भाग गए हैं। ये तस्वीर देखिए और इस वजह से इस गाड़ी को जो है यहीं पर लगाया गया है। ये तस्वीर देखिए, ये वज्र वाहन है और यहाँ पे जो गाड़ी की चाबी थी उसको लेकर के छात्र फरार हो गए हैं।
1: बंगाल में भी ममता बनर्जी की पार्टी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने उतरी, लेकिन यहाँ भी पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। आज तक ब्यूरो।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर अटैक किया, वोट चोरी और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर करारा जवाब भी दिया।
12: SIR तो 24 के बाद चालू हुआ। आप जब से कांग्रेस के मुख्य नेता के रूप में आए हैं और बाद में अध्यक्ष के रूप में आए हैं, लीडर ऑपोजिशन के रूप में आए, कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव हारी। आपको आत्मचिंतन करने की जरूरत है। फैब्रिकेटेड मीडिया इवेंट, झूठ की गूंज कर आप देश की जनता का विश्वास हासिल नहीं कर सकते। पूरी 14 पार्टी का कैडर इकट्ठा कर 1.5 किलोमीटर के क्षेत्र में 8,000 की भीड़ इकट्ठी कर आप देश की आवाज नहीं बन सकते हो। मेरा कांग्रेस पार्टी से निवेदन है कि देश की आवाज खेत खलियानों में, गांवों में, दूर सुदूर पहाड़ियों पर, जंगलों में और नदियों के किनारे भी है। आपकी वहां कोई रीच नहीं है। देश के कई सूबे ऐसे हैं, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, आपको कई दशकों तक कांग्रेस पार्टी को वहां की जनता ने नकारा है, हराया है। आज भी कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार की नकारात्मक पॉलिटिक्स कर रही है वो उनको फायदा नहीं करेगी। उनको जनता को समझना चाहिए, जनता का संपर्क करना चाहिए।
0: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और राजीव रंजन सिंह ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस और राहुल गांधी के चुनाव आयोग संबंधी आरोपों पर निशाना साधा। गोयल ने दावा किया कि कांग्रेस का अपने पुराने निर्णय और चुनाव आयोग से जुड़े अधिकारियों की नियुक्ति का रिकॉर्ड उसके मौजूदा आरोप से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता।
13: SIR की वजह से कांग्रेस केरल में जीती, क्योंकि ये सब डुप्लीकेट नाम, मरे हुए लोगों के नाम, जो लोग वहां से शिफ्ट हो गए वो नाम निकल गए, तो कोई मैल प्रैक्टिस होने की संभावना नहीं थी केरल में। ये शशि थरूर जी का दावा है। रमेश चेन्नीथाला जी ने खुद कहा कि SIR की वजह से ही आज कांग्रेस जीत पाई है केरल में, और केरल के मुख्यमंत्री स्वयं श्री VD सतीशन जी ने SIR की तारीफ की है। अधीर रंजन चौधरी जी ने इलेक्शन कमीशन की तारीफ करी कि पश्चिम बंगाल के चुनाव उन्होंने अच्छी तरीके से लड़ाए, ईमानदार व्यवस्था से लड़े गए, और जो गलत काम ममता बैनर्जी जी करती थी उसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने भी किया और इलेक्शन कमीशन की तारीफ की। अब उनकी खुद की पार्टी बेबुनियाद और झूठे वोट चोरी के दावे ला रही है।
0: बीजेपी JNU और महिलाओं के मुद्दे पर कांग्रेस पर लगातार हमले कर रही है। बीजेपी की महिला सांसदों ने राष्ट्रपति से मुलाकात की, सड़कों पर भी इस मुद्दे पर बीजेपी की ओर से जोरदार हंगामा या प्रदर्शन देखने को मिल रहा।
14: दिल्ली में सियासत का यह दूसरा मोर्चा है। कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजाम के खिलाफ ये गुस्सा फूटा है, जहां उनके निशाने पर राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा हैं। JNU से बर्खास्त किए गए बिमोल अकोइजम के खिलाफ बीजेपी महिला सांसदों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की।
15: मांग हमारी वही थी कि जो डॉक्टर बिमोल हैं, उनके अगेंस्ट प्रूवन है कि 11 महिला बच्चियों को उन्होंने सेक्सुअली हैरेस किया और उनको निकाल दिया गया JNU से, लेकिन आज भी वो MP बने हुए हैं और उनको MPship की बर्खास्त किया जाए और उनको हटाया जाए।
14: इनर मणिपुर से कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल पर JNU की 11 छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल अकोइजाम JNU में प्रोफेसर थे, वहां की 11 छात्राओं ने उन पर यौन शोषण जैसे गंभीर इल्जाम लगाए। तमाम आरोपों के बाद JNU ने आंतरिक जांच बिठाई, उस जांच में अकोइजाम पर तमाम आरोप सही साबित पाए गए। उसी रिपोर्ट के आधार पर JNU ने 9 अक्टूबर को उन्हें प्रोफेसर पद से हटा दिया। उसके दो दिन बाद यानी 11 अक्टूबर को आरोपी कांग्रेस सांसद के खिलाफ अलग अलग धाराओं में FIR भी दर्ज करा दी गई।
16: एक इंटरनल कमिटी ने गिल्टी पाया 11 छात्राओं की कंप्लेंट पर बिमल अकोइजम के खिलाफ। जितनी भी एलिगेशन सेक्सुअल हैरेसमेंट की थी उनमें सच्चाई पाई और इसीलिए उनको नौकरी से बर्खास्त करा। उस पर भी चुप्पी साधे हुए हैं राहुल गांधी।
14: उधर अंगोमचा बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं।
17: No, this is nothing but harassment. They know that once this kha panchayat style of doing by JNU, if it is challenged in a court of law, the court will take notice of the complete disregard for norms and rule and regulations. So they are trying to drag it to court, which will not also not stand. And I have said before, if you go into the merit of the case, in itself also people will get exposed. What is this so-called harassment allegations?
14: बहरहाल बीजेपी इस मुद्दे को लेकर लगातार सड़कों पर उतरी हुई है, जहां अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
0: दिल्ली में वोट चोरी को लेकर इंडिया गठबंधन और सीजेपी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी ने वोटर लिस्ट पर सवाल उठा दिए। आरोप यही है कि एसआईआर के बावजूद वोटर लिस्ट में फर्जी वोटर उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। फर्जी वोटरों को लेकर समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत भी की है।
1: यूपी चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। एसआईआर और वोट चोरी के आरोपों के बीच समाजवादी पार्टी की तरफ से एक नया दावा किया गया है। दावा यही है कि उत्तर प्रदेश की 100 विधानसभा सीटों पर फर्जी वोटरों के नाम जोड़े गए हैं। सवाल यही है कि एसआईआर के बाद फर्जी वोटर कहां से आए।
18: देखिए, उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई। समाजवादी पार्टी के पीडीए प्रहरी ने लगातार सजगता से एसआईआर पर नजर रखी और बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में वोट कटने का काम हुआ, जिसको लेके भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी थी, भाजपा बेचैन थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान था कि 2.5 करोड़ से ज्यादा वोट कट गए, चिंतित थे। लेकिन उसके बाद जब फॉर्म 6 और फॉर्म 7 आया तो भाजपा की साजिश, चुनाव आयोग की साजिश के कारण लगातार उत्तर प्रदेश में फॉर्म 6 और फॉर्म 7 का दुरुपयोग करके लगातार वोटर्स को बढ़ाया जा रहा है।
1: समाजवादी पार्टी ने वोटर लिस्ट में फर्जी वोटरों को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की है। दावा यही है कि वोटर लिस्ट में फर्जी वोटरों के नाम पड़ताल के दौरान मिले हैं। समाजवादी पार्टी के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है।
19: देखिए, जब भी चुनाव नजदीक आता है या चुनाव होता है तो ये लोग अपने हार का कारण पहले ढूंढ लेते हैं कि जब हम हारेंगे तो हम क्या बोलेंगे। तो फिर हारेंगे तो बोल देंगे कि हम वोट में गड़बड़ी थी इसलिए हार गए। कभी एबीएम को बता देते हैं कि जो है एबीएम के कारण हम हार गए। तो इस तरह से ये अपनी हार का पहले से भूमिका तैयार कर रहे हैं।
1: दरअसल बीते कुछ दिनों से 16 लाख वोटर बहाए जाने के दावे सोशल मीडिया पर किए गए। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोपों पर यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी नवदीप रिडवा सफाई दे चुके हैं। दावा किया है कि फेक वोटरों को लेकर मिलने वाली शिकायतों पर एक्शन लिया गया है और लिया जाएगा, लेकिन इसे लेकर भ्रामक झूठ भी फैलाया जा रहा है।
20: एसआईआर के बाद हमारे पास कई ज्ञापन आए थे राजनीतिक दलों के, उसमें गलत नाम काटने का नहीं था, किसी समुदाय विशेष का काटने का शिकायत नहीं थी। शिकायत थी डुप्लीकेट नामों की, और जहां जहां डुप्लीकेट पाए गए उनका बकायदा डिलीशन किया गया है। कुछ का जो अब आएगी शिकायत उनके भी जांच होगी। तो ऐसा नहीं है कि कोई शिकायत और ज्ञापन हमारे पास आया और अनअटेंडेड या बिना इंक्वायरी के हमने रखा है।
21: एक बात तो साफ है, एक तरफ दिल्ली में चुनाव आयोग को लेकर घमासान शुरू हो चुका है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल अब कहीं भी मौका नहीं चूक रहे हैं जहां चुनाव आयोग से सवाल किए जा सके। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: पंजाब से एक सनसनीखेज तस्वीर सामने आई, जहां नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले समाजसेवी को सरेआम गोली मार दी गई, जिसने एक बार फिर चुनाव से पहले पंजाब की राजनीति को तेज कर दिया।
14: पंजाब के मानसा में फेसबुक लाइव में बहस के दौरान ये गोलीकांड की तस्वीरें हैं। जिसमें नशे के खिलाफ बड़े स्तर पर सामाजिक मुहिम चलाने वाले मशहूर नशा विरोधी एक्टिविस्ट परविंदर छोटा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। छोटा एक केमिस्ट की दुकान पर नशा बेचने का आरोप लगाते हुए फेसबुक लाइव कर रहे थे। इसी दौरान केमिस्ट वाले ने उन्हें गोली मार दी और अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस मामले को आपसी रंजिश से जोड़ रही है।
22: रंजिशन इस व्यक्ति ने जो है उस पर फायरिंग करके जो है इस घटना को अंजाम दिया है।
14: वहीं परविंदर सिंह छोटा के परिवार का कहना है कि ड्रग्स के खिलाफ उनकी मुहिम के चलते छोटा की हत्या की गई।
23: नशा कौन वो पंजाब सरकार ने विजय सिंगले वर्गे मंत्री ने।
14: मामले में एक बार फिर पंजाब में नशे पर सियासी बहस तेज हो गई है।
24: नशिया नु रोकण वास्ते संघर्ष कर रहा सी, सरकार नाल लड़ाई लड़ रहा सी, सरकार ते नशा बेचण वाले उन्हों बार बार दबा रहे सी, लेकिन अज आखर नु उस दे गोलियां मार के मार दिता है। बहुत ही घिनौनी हरकत हुई है, सरकार वास्ते डुब के मरने वाली गल है।
25: गोलियां मार के कत्ल किया गया,
2: ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ।

0: घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इस हत्या के पीछे क्या वजह है, इसे लेकर पुलिस की जांच जारी है। इस हत्याकांड के विरोध में मानसा में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। परविंदर छोटा के समर्थकों की ओर से मानसा के 12 हाटा चौक पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। विरोध के चलते बाजार भी बंद कर दिया गया है। वहीं इस मामले में परविंदर छोटा के अलावा 4 अन्य लोग भी घायल हुए हैं। चंडीगढ़ से कमलजीत संधु के साथ आज तक ब्यूरो।
1: सऊदी अरब के प्रिंस इन दिनों सीक्रेट बंकर में छिपने को मजबूर है। खबर यह है कि प्रिंस सलमान को अपनी जान का खतरा है। प्रिंस के डर का कारण कोई और नहीं बल्कि हूती विद्रोही हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया कि हूतियों के हमले के बाद से ही प्रिंस सलमान अंडरग्राउंड हैं, कई दिनों से सार्वजनिक तौर पर नजर नहीं आए।

0: क्या सऊदी पर ईरान कर सकता है हमला? सऊदी पर हूतियों के हमले के पीछे का खेल। बंकर में छिपे सऊदी प्रिंस के डर की वजह। हूतियों के साथ ईरान, सऊदी अरब परेशान। ईरान की सीधी धमकी, जमीनी सेना है तैयार। क्या हूती बहाना है, सऊदी अरब है निशाना?
1: We've suffered greatly from this ideology these past 30.
0: Middle East ko paigham, Iran ka mind game. अमेरिका और ईरान के बीच पर्दे के पीछे बातचीत का दावा कतर ने किया, लेकिन वार्ता के बीच सऊदी अरब पर हूतियों के हमले के पीछे ईरान का माइंड गेम है। डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि सऊदी अरब के बहाने अब ईरान ट्रंप पर लगातार दबाव बढ़ाता जा रहा है, क्योंकि ईरान ने अमेरिका का दाव अमेरिका के खिलाफ चल दिया है।
2: Unwavering, I will never allow Iran to have a nuclear weapon. Upon taking office last year, I immediately opened negotiations with Iran and offered them full economic cooperation in exchange for ending their nuclear program and support for terror, but they refused. They absolutely refused. That was a big mistake. Then in Operation Midnight Hammer, the U.S. military obliterated their nuclear program beneath mountains of rubble. And again, I urged Iran to make a deal, and again, they refused. The regime continued building a vast missile and drone stockpile that threatened the security of every American service member in the region and everyone else in the region.
0: दरअसल ईरान पर चाहे 2025 में इज़राइल का हमला हो या फिर ईरान पर 28 फरवरी को अमेरिका और इज़राइल का हमला, ये हमले तब हुए जब अमेरिका और ईरान बातचीत की टेबल पर थे, मतलब बातचीत की आड़ में ईरान पर निशाना साधा गया। ठीक यही दाव अब ईरान ने चल दिया है। पर्दे के पीछे अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन बातचीत के दौरान सऊदी पर हूती ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसा रहे हैं। ऐसे में अब शांति समझौते को लेकर अमेरिका पर बड़ा दबाव है। ये वही दबाव है जिसके चलते हूतियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई से ट्रंप ने अपने पैर पीछे खींच लिए हैं।
2: Attack. So we'll make a decision. We move very quick.
0: दूसरी तरफ शाही महलों में रहने वाले सऊदी के प्रिंस सलमान यानी MBS सीक्रेट बंकर में छिपने को मजबूर हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हूतियों के हमले के डर से मोहम्मद बिन सलमान इन दिनों गुप्त बंकर में अंडरग्राउंड हैं। प्रिंस सलमान की लोकेशन को गुप्त रखा जा रहा है। प्रिंस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, खासतौर पर प्रिंस सलमान की सुरक्षा में स्पेशल गार्ड्स के दस्ते को तैनात किया गया है, क्योंकि हूतियों की मिसाइल की जद में रियाद है। वही रियाद जहां सऊदी का एयर डिफेंस सिस्टम हूतियों की मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहा। सुरक्षा कारणों से प्रिंस सलमान को सार्वजनिक तौर पर बाहर न जाने की सलाह दी गई है। बड़ी बात यह है कि आखिरी बार बीते मंगलवार को सार्वजनिक तौर पर

0: प्रिंस सलमान नजर आए थे, मतलब प्रिंस सलमान पर भी हमला हो सकता है। ये खतरा उस वक्त बढ़ गया जब सऊदी अरब पर भीषण हमलों के बावजूद हूतियों के समर्थन में ईरान खुलकर खड़ा हो गया। पड़ोसी देशों को धैर्य और ठोस भाईचारे की नीति पर चलना चाहिए। ऐसे समझौते ईरान को रोक नहीं पाएंगे। सऊदी अरब को तुर्की और पाकिस्तान उसी तरह सुरक्षा नहीं दे पाएंगे जैसे अमेरिका नहीं दे पाया। सऊदी अरब अपनी नीतियां बदले ताकि दूसरों के आगे अपनी सुरक्षा के लिए गिड़गिड़ाना न पड़े। हमने भी पाकिस्तान और तुर्की को लेकर कई अफवाहें सुनी हैं और उम्मीद करते हैं कि वो सच न हो। इस क्षेत्र के देशों को अच्छी तरह पता है कि यमन में किसी भी तरह की दखल अंदाजी खतरनाक रुख अख्तियार कर सकती है। इस मामले में मक्का रक्षा समझौते का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ईरान ने सिर्फ हूतियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को लेकर अपनी लक्ष्मण रेखा नहीं खींची, बल्कि ये भी संकेत दिए हैं कि अगर सऊदी पर हूतियों के हमलों के बाद अमेरिका ने फिर से हमले शुरू किए तो ईरान जमीनी स्तर पर मिडल ईस्ट के देशों में घुसपैठ कर सकता है। अगर अमेरिका नए हमले शुरू करता है तो हम पड़ोसी देशों में सेना भेज सकते हैं। अब की बार ईरानी सेना की तैयारी कई फ्रंट पर युद्ध लड़ने की है। मिडल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी मुल्कों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सऊदी अरब के तेल ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। यूएई के अहम ठिकानों के साथ साथ क्षेत्रीय डेटा सेंटर और इंटरनेट केबल भी निशाने पर हैं। सऊदी अरब और यूएई के ठिकाने ईरान के हिट लिस्ट पर हैं, लेकिन ईरान ने ये साफ नहीं किया है कि किन देशों के खिलाफ अपनी जमीनी सेना को उतार सकता है। मतलब साफ है कि ईरान ने अमेरिका के साथ साथ मिडल ईस्ट के देशों तक अपना बारूदी पैगाम पहुंचा दिया है। ईरान की धमकी के बीच हूतियों ने भी अमेरिका को बड़ी चेतावनी दी है। अगर अमेरिका यमन के खिलाफ आक्रामकता में शामिल होता है तो हम जवाबी कार्रवाई के फैसले पर विचार नहीं करेंगे, बल्कि अमेरिका और क्षेत्र में उसके सभी हितों को निशाना बनाते हुए त्वरित और करारा जवाब देंगे। कहीं नहीं अगर सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान हमारे खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई करता है तो उनके साथ भी वैसा ही बर्ताव किया जाएगा जैसा अभी सऊदी अरब के साथ किया जा रहा है। ईरान और हूतियों की धमकी का असर है कि सऊदी अरब ने इजराइल की तरफ से सैन्य मदद की पेशकश को ठुकरा दिया है। दरअसल हूतियों के खिलाफ सैन्य मदद का प्रस्ताव इजरायली सरकार की तरफ से सऊदी अरब के प्रिंस सलमान को भेजा गया था। इजरायली अखबार हारेट्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के कहने पर इजरायल ने सैन्य मदद का प्रस्ताव रखा था। नेतन्याहू की तरफ से अमेरिका की मध्यस्थता में यह संदेश मोहम्मद बिन सलमान को भेजा गया। प्रस्ताव में हूतियों के खिलाफ इजरायली सेना को शामिल किए जाने की बात कही गई। इस पर रियाद ने साफ कर दिया है कि वो इसराइल की मदद नहीं चाहता है। प्रिंस सलमान को डर है कि इसराइल की मदद लेने से सऊदी की जनता में नकारात्मक प्रतिक्रिया हो सकती है। जैसे ही सऊदी अरब ने इजरायली सैन्य मदद को ठुकराया, वैसे ही इजरायल के खिलाफ ईरान का बड़ा बयान सामने आया। ईरानी सांसद ने दावा किया कि हूतियों के बहाने ईरान पर इजरायल हमले का मौका तलाश रहा है, लेकिन ईरान पर इजरायल ने हमला किया तो इजरायली परमाणु सेंटर पर तबाही मचना तय है। नेतन्याहू 27 अक्टूबर को होने वाले चुनाव से पहले ईरान पर हमला कर सकते हैं। इसराइल का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नाकाम रहा तो दूसरे रास्ते खोजे जा रहे हैं। अगर ईरान पर बमबारी की जाती है तो जवाबी कार्रवाई की संभावना है और इसराइल के दिमोना एटमी सेंटर को निशाना बनाया जा सकता है। ईरान जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। बड़ी बात यह है कि फ्लाई दुबई कांड के बाद अमेरिका और इसराइल ने ईरान को कटघरे में खड़ा किया था। ट्रंप ने तो यहां तक दावा किया था कि हाईजैक की कोशिश के पीछे ईरानी साजिश थी। ट्रंप के इसी आरोप के बाद सऊदी अरब पर हूतियों ने अपने हमले तेज कर दिए, क्योंकि ये हमले ईरान की युद्ध नीति का हिस्सा है। अमेरिका या इसराइल दोबारा हमला करें उससे पहले ही ईरान ने अपना बारूदी पैगाम ट्रंप तक पहुंचा दिया। यही वजह है कि सऊदी पर हूतियों के हमले के बावजूद अमेरिका मौन है, पाकिस्तान चुप है और कोई भी देश हूतियों के खिलाफ सैन्य एक्शन की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। आज तक ब्यूरो।
1: बहुत छोटा सा ब्रेक, प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज

0: राहुल को अमित शाह का जवाब, एसआईआर के बहाने घुसपैठियों को बचा रहे हैं। 2029 में करारी हार के लिए रहे तैयार, देश की जनता को मोदी पर भरोसा। इंडिया गठबंधन की चाय पर चर्चा के बाद बोले राहुल, शाह ज्ञानेश को नहीं छोड़ेंगे, लोकतंत्र को बचाना उद्देश्य। खड़गे तेजस्वी राउत ने ज्ञानेश पर किया तीखा वार। दिल्ली में कांग्रेस ऑफिस के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, यौन उत्पीड़न में जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर कांग्रेस सांसद के खिलाफ फल्ला बोल, राष्ट्रपति से गुहार। एल मुरुगन ने पीएम को लिखी चिट्ठी, मंत्रिमंडल छोड़ने की मांगी अनुमति, कहा तमिलनाडु में काम करूंगा, रिजिजू से मिले। और बिहार के हाजीपुर में गंगा नदी में पलटी नाव, 14 लोगों की मौत, सीएम ने रेस्क्यू के दिए निर्देश, पीएमओ ने 2-2 लाख के मुआवजे की घोषणा। पांच दिन विरोध प्रदर्शन करने के बाद राहुल गांधी के घर चाय पर चर्चा होती है। करीब 2 घंटे की बैठक के बाद जब राहुल और इंडिया गठबंधन वाले ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो ज्ञानेश कुमार के साथ साथ जंतर मंतर पर प्रदर्शन की रोक पर गरजते हैं। सबने एक सुर में कहा कि सरकार जंतर मंतर को प्रदर्शन स्थल से नहीं हटा सकती। इसके अलावा राहुल ने अगले प्लान का सरप्राइज देते हुए सीधे कहा कि ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा उनका मिशन है।
1: ज्ञानेश कुमार के खिलाफ क्या है राहुल का सरप्राइज प्लान?
2: कैसे जाएंगे वो हम आपको बता नहीं सकते, क्योंकि फिर आप तो सारा मतलब सरप्राइज खत्म हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि आपके लिए और देश के लिए ये माहौल बना रहे।
1: 5 दिन विरोध प्रदर्शन, 6ठे दिन इंडिया गठबंधन की चाय पर चर्चा, जंतर मंतर पर ही विरोध प्रदर्शन, इंडिया गठबंधन की नई कसम।
2: नरेश कुमार गुप्ता जी ने जिस प्रकार से लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया है, साफ और साफ बीजेपी अमित शाह और मोदी जी के इशारे, हम सब लोग एकजुट हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए, और इसके लिए बहुत कुर्बानी देना होगा, हम सब लोग जो है मिलकर के देंगे।
3: ज्ञानेश कुमार एक ऐसा माफिया है जिसने पूरे सिस्टम का अपराधीकरण किया।
1: विपक्ष का ज्ञानेश हटाओ मार्च जारी रहेगा, लेकिन सरप्राइज के साथ।
4: आते इन्होंने संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करके चुनाव को प्रभावित किया है और वोट चोरी का काम किया, घृणित काम किया,
5: वोट चोरी करता है, संघर्ष का जगह का चोरी करता है।
1: पहले सीईसी के खिलाफ शिव की बारात, अब नए प्लान पर चर्चा। 5 दिन तक दिल्ली की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के बाद हर कोई यही सोच रहा था कि क्या राहुल फिर से सरप्राइज देंगे, क्योंकि 12 अक्टूबर को जिस तरह से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस से लेकर इंडिया गठबंधन के दिग्गज नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट तक ज्ञानेश हटाओ मार्च निकाला, उसमें विपक्षी एकता भी दिखी और सड़कों पर कार्यकर्ताओं का हुजूम भी। पिछले कई दिनों का पैटर्न ऐसा ही था कि पहले राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने लंच किया, उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ तगड़ा विरोध प्रदर्शन किया। 13 अक्टूबर को भी जब राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के नेताओं को चाय पर बुलाया तो सबको लगा कि क्या फिर से ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कोई नया प्लान है, क्योंकि राहुल गांधी ने जो ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को शिव का तांडव और शिव की बारात का नाम दिया और सबको शिव की बारात में आने के लिए कहा, सबने सोचा क्या फिर से चाय के बाद विरोध प्रदर्शन का प्लान है। लेकिन जब राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने चाय पर चर्चा के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो राहुल गांधी ने विपक्ष के ज्ञानेश हटाओ मार्च पर एक और सरप्राइज दिया।
2: ये जो हमारी टीम है ये रुकने वाली नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये एंड गोल तक जाएगी। कैसे जाएंगे वो हम आपको बता नहीं सकते, क्योंकि फिर आप को सारा मतलब सरप्राइज खत्म हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि आपके लिए और देश के लिए ये माहौल बना रहे, इंटरेस्टिंग रहे और सरप्राइजिंग रहे।
6: मगर मैं आपको गारंटी देता हूं कि जिस प्रकार से हम सब ने मोबिलाइज किया, जिस एनर्जी से, जिस शक्ति से हमने मोबिलाइज किया, जिस यूनिटी के साथ हमने मोबिलाइज किया, उसी प्रकार से हम सब मिलकर लड़ते रहेंगे।
7: 10 अक्टूबर को जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के ऐलान के बाद सरकार ने जंतर मंतर को आधिकारिक धरना प्रदर्शन स्थलों की सूची से ही हटा दिया। जी हां, न तो सरकार ने जंतर मंतर पर 10 अक्टूबर को सीजेपी को विरोध प्रदर्शन करने दिया और न ही आगे जंतर मंतर को धरना स्थल रहने दिया। और अब इंडिया गठबंधन ने कसम खाई है कि वो जंतर मंतर को वापस धरना प्रदर्शन के लिए लेकर ही रहेंगे।
2: ज्ञानू गुप्ता जी तो और आगे बढ़कर के चले गए 10 कदम। जिस हिसाब से एक कठपुतली की तरह ज्ञानेश गुप्ता जी ने जो काम किया है उसको जो है सजा जरूर मिलेगी। ये लोग बचने वाले लोग नहीं हैं, ये लोग डरे हुए लोग हैं और ये डर इनका दिखाता है कि जंतर मंतर को जो है अब प्रोटेस्ट जहां होना चाहिए था, जो होता रहा है, जिसका ऐतिहासिक महत्व रहा है, उसको बदल करके जो है दिल्ली के बॉर्डर पे जो है कर दिया गया है।
8: It is truly, it has truly been revealed that the people who have actually committed treason against the people of this country is the BJP and the people who have facilitated this treason. The Election Commission of India and the CEC, Yanesh Kumar, needs to go.
5: Inka khilaf hamara sangharsh aage jata hai. Aur jo sangharsh karne ke liye ek designated jagah tha jantar mandir. Inka chori bhi karta hai.
9: We will not stop until Mr. Gyanesh Kumar is removed and criminal proceedings are launched not just against Mr. Gyanesh Kumar but against all the election officials of the Election Commission who have supervised elections in Haryana, Maharashtra, Bengal and Bihar.
7: अभी तक तो राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन वाले वोट चोरी और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एकजुटता और शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। अब जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के लिए भी एकता और ताकत दिखाने के लिए उतर पड़े हैं।
2: ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने जिस प्रकार से लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया है, साफ और साफ बीजेपी, अमित शाह और मोदी जी के इशारे पे।
3: मोदी और शाह ने ये देश को डरा कर धमका कर रखा था, अब डरने की बारी उनकी है।
7: आपको बता दें कि भले ही आज राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन कांग्रेस की छात्र विंग NSUI और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर जरूर उतरे। दिल्ली के कनॉट प्लेस में NSUI के कार्यकर्ताओं ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हल्ला बोला तो पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जबकि यूपी के वाराणसी में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करने उतरे।
10: लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया ज्ञानेश कुमार ने।
11: एक ऐसा तानाशाह चुनाव आयोग है जो एक बराबर मिलकर जनता को, लोकतंत्र को लूटने का काम कर रहा है।
7: इसके अलावा पटना में लेफ्ट की छात्र विंग आयशा ने ज्ञानेश हटाओ मार्च निकाला, लेकिन पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग करके रोक लिया। लेकिन इस दौरान जब आयशा के छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया तो वो वज्र वाहन की चाबी लेकर ही भाग गए।
12: पटना में आज SIR को लेकर लेफ्ट छात्र संगठनों का आज प्रदर्शन था, बखूब बवाल हुआ। लेकिन एक फिर से बिहार में एक अनोखी तस्वीर, अनोखी घटना सामने आई है। ये वज्र वाहन है जहां पर छात्रों को डिटेन करके इसमें रखा गया था, और बड़ी बात यह है कि इस वज्र वाहन की गाड़ी की चाबी लेकर के जो छात्र हैं वो भाग गए हैं। ये तस्वीर देखिए, और इस वजह से इस गाड़ी को जो है यहीं पर लगाया गया है। ये तस्वीर देखिए, ये वज्र वाहन है और यहाँ पे जो गाड़ी की चाबी थी उसको लेकर के छात्र फरार हो गए हैं।
7: बंगाल में भी ममता बनर्जी की पार्टी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने उतरी, लेकिन यहाँ भी पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। आज तक ब्यूरो।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर अटैक किया, वोट चोरी और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर करारा जवाब भी दिया।
13: SIR तो 24 के बाद चालू हुआ। आप जब से कांग्रेस के मुख्य नेता के रूप में आए हैं और बाद में अध्यक्ष के रूप में आए हैं, लीडर ऑपोजिशन के रूप में आए, कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव हारी। आपको आत्मचिंतन करने की जरूरत है। फैब्रिकेटेड मीडिया इवेंट, झूठ की गूंज कर आप देश की जनता का विश्वास हासिल नहीं कर सकते। पूरी 14 पार्टी का कैडर इकट्ठा कर 1.5 किलोमीटर के क्षेत्र में 8,000 की भीड़ इकट्ठी कर आप देश की आवाज नहीं बन सकते हो। मेरा कांग्रेस पार्टी से निवेदन है कि देश की आवाज खेत खलियानों में, गांवों में, दूर सुदूर पहाड़ियों पर, जंगलों में और नदियों के किनारे भी है। आपकी वहां कोई रीच नहीं है। देश के कई सूबे ऐसे हैं, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, आपको कई दशकों तक कांग्रेस पार्टी को वहां की जनता ने नकारा है, हराया है। आज भी कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार की नकारात्मक पॉलिटिक्स कर रही है वो उनको फायदा नहीं करेगी। उनको जनता को समझना चाहिए, जनता का संपर्क करना चाहिए।
0: और आइए अब हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसे देखकर आप ये समझ पाएंगे कि सरकार ने जंतर मंतर को प्रदर्शन की जगह के तौर पर से क्यों हटाया और दिल्ली में जिन 3 जगहों को प्रदर्शन के लिए चुना गया उनकी इस समय क्या स्थिति है।
14: जुलाई में जब जंतर मंतर के आंदोलन से सरकार के एक मंत्री का इस्तीफा हुआ तो तभी से ये माना जा रहा था कि अब जंतर मंतर पर आंदोलन नहीं होगा और ऐसा ही हुआ है। सरकार ने जंतर मंतर को प्रदर्शन की जगहों से अलग कर दिया है और प्रदर्शनकारियों के लिए दिल्ली में 3 नई जगहें तय कर दी हैं। पहला है रामलीला मैदान जो जंतर मंतर से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। दूसरा है बुराड़ी का ग्राउंड जो यहां से 21 किलोमीटर दूर है और तीसरा है पूर्वी दिल्ली में शाहदरा का सीबीडी ग्राउंड जो जंतर मंतर से 12 किलोमीटर दूर है। लेकिन क्या इन मैदानों पर प्रदर्शन करना इतना आसान रहेगा? क्योंकि प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर इसलिए प्रदर्शन करने आते थे क्योंकि यहां से संसद भवन पास में है, सरकार के सभी बड़े दफ्तर बिल्कुल पास में है, प्रदर्शनकारी सीधे सरकार तक अपनी आवाज पहुंचा सकते थे, जैसा कि जुलाई में सीजेपी के प्रोटेस्ट में हुआ था। उस वक्त प्रदर्शनकारियों ने संसद मार्च भी कर दिया था जिसमें जमकर हिंसा हुई थी। लेकिन यह बात भी सही है कि इससे सरकार पर दबाव पड़ा था और इसीलिए आखिरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हुआ। अब अगर धरना प्रदर्शन की जगह दूर हो जहां से न संसद पास हो, न प्रधानमंत्री का घर, न राष्ट्रपति का आवास, न कोई सरकारी दफ्तर, तो सरकार को क्या फर्क पड़ेगा? अब ये इन 2 ग्राउंड्स की तस्वीर आपके सामने है। एक है बुराड़ी का ग्राउंड जो जंतर मंतर से 21 किलोमीटर दूर है। यहां अगर कोई पार्टी, कोई सामाजिक संगठन प्रदर्शन करने जाएगा भी तो क्या सरकार उसकी सुनेगी? और यही सवाल शाहदरा के सीबीडी ग्राउंड के लिए भी है कि पूर्वी दिल्ली के इस ग्राउंड में प्रदर्शन करने कौन जाएगा और जो यहां जाएगा क्या उसकी आवाज सुनी जाएगी?
15: जंतर मंतर की जगह सरकार ने जो 3 मैदान दिए हैं कि अब यहां पर धरना प्रदर्शन होगा उनमें से एक बुराड़ी भी है। अब बुराड़ी आप समझिए कि संसद भवन से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर और मैदान कितना बड़ा, अगर आप देखिए इसकी क्षमता इतनी है कि 3 से 4 लाख लोग जो है इस मैदान में बैठ सकते हैं। आमतौर पर धार्मिक बड़े आयोजनों के लिए इस मैदान का इस्तेमाल होता है और इसीलिए यहां पर, लेकिन ये इतनी दूरी पर है कि बहुत सारे प्रदर्शनकारी या राजनीतिक दल अगर विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं तो सबसे पहले यहां आने के लिए जो क्षमता है वो बसों का सहारा है, मेट्रो स्टेशन थोड़ी सी दूरी पर है, यहां आना। और दूसरा, जंतर मंतर पर 2,000 की भीड़ 20 तो लगती है, लेकिन बुराड़ी मैदान पर अगर 1 लाख लोग भी बैठ जाएंगे तो भी ऐसा क्षमता लगता है कि 2 या 4 या 5 हजार लोग बैठे हैं। उसी के साथ साथ यहां पर क्या इतनी दूरी पर 17 किलोमीटर, क्योंकि जंतर मंतर पर बैठने का संदेश होता था कि वो इस नाम पर आते थे कि संसद मार्च करेंगे और फिर वहां से पार्लियामेंट सीट थाने जाते थे, क्या यहां से संसद मार्च की कोशिश भी की जा सकती है? 1 या 1.5 किलोमीटर के अंदर जो है उन्हें रखा जा सकता है। सुविधाओं के नाम पर बड़ी पार्किंग एरिया है, कितना भी बड़ा प्रोटेस्ट मार्च हो इस मैदान को भरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब यहां की एसओपी है कि मैदान तो उपलब्ध हो सकता है आराम से, लेकिन क्या प्रदर्शन करने के लिए जो सामाजिक ग्रुप हैं, प्रेशर ग्रुप हैं और इसी के साथ जो राजनीतिक दल हैं, क्या वो बुराड़ी के मैदान में प्रदर्शन करने के लिए आएंगे?
14: धरना प्रदर्शन इसलिए करने पड़ते हैं ताकि सरकारों को अपनी आवाज सुनवा सके और इन मैदानों से कौन सी सरकार आवाज सुनेगी? हां, रामलीला मैदान जंतर मंतर से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है और यह भी एक धरना स्थल है, लेकिन यहां दूसरी तरह की समस्याएं हैं। क्या यहां प्रदर्शन के लिए ग्राउंड खाली मिलेगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल दशहरा तक रामलीला मैदान इसलिए प्रदर्शन के लिए नहीं मिल सकता क्योंकि नवरात्रों के पर्व के चलते यहां रामलीला का मंचन हो रहा है। मैदान के हिस्से में मेला भी लगा हुआ है। अब विजयदशमी पर रावण दहन से पहले रामलीला मैदान किसी और कार्यक्रम के लिए उपलब्ध नहीं हो सकता।
15: ये ऐतिहासिक जंतर मंतर पर अब धरना मना है क्योंकि केंद्र सरकार ने उसे धरना स्थल पर जो जगह दी गई हुई थी, जो उसकी मान्यता थी, उसे रद्द कर दिया है। लेकिन अब ये कह दिया है कि दिल्ली के 3 जगहों पर धरना हो सकेगा, धरना प्रदर्शन सभाएं हो सकेंगी, उनमें से एक है दिल्ली का ये ऐतिहासिक रामलीला मैदान। ये रामलीला मैदान अगर इसकी जगह को समझे तो अब इसको लेकर के दरअसल विरोध कर रहे हैं व्यापारी कि जंतर मंतर से आपने धरना प्रदर्शन हटा दिया जिससे कारोबार सही होगा, उसका तो स्वागत है, लेकिन रामलीला मैदान को धरना स्थल एक 3 जगह जो दी गई है जिसमें पूर्वी दिल्ली बुराड़ी का मैदान और ये दिल्ली का रामलीला मैदान, इसको लेकर के व्यापारी नाराज है। वो किस लिए समझिए, ये पूरा रामलीला मैदान है, इस समय यहां पर रामलीला चल रही है, मेले लगे हुए हैं क्योंकि नवरात्रि दशहरा में मेला लगता है। इसी के साथ साथ अब इसके बगल में क्या है, यहां पर ये नगर निगम का सिविक सेंटर है, आप समझिए यहां से नगर निगम संचालित होता है। बीच में महानगर का जो MTNL है आप देख रहे हैं उसकी बिल्डिंग है। इसी के ठीक बगल में यहां पर अगर आप देखेंगे इस तरफ अस्पताल है, आंखों का अस्पताल है, बड़े सारे कई अस्पताल हैं। अब अगर 360 डिग्री आपको ले जाता हूं तो यहां पर आपको दिखाई देगा वर्धमान प्लाजा, ट्रेडर टावर है और इसी के साथ साथ यहां पर जो ट्रेड सेंटर है वो बनाया गया है।
14: आपको जानकर हैरानी होगी कि इस साल 2026 में सिर्फ 3 तारीखें खाली हैं जब मैदान उपलब्ध है, 29, 30 और 31 दिसंबर, यानी अगले 2.5 महीने रामलीला मैदान पूरी तरह से बुक है। रामलीला मैदान पर प्रदर्शन करना भी महंगा होगा, यहां एक दिन की बुकिंग के लिए 1,21,000 रुपए खर्च करने होंगे। इसके अलावा 50,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट भी अलग से जमा करना होगा। इसके अलावा रामलीला मैदान में प्रदर्शन के लिए MCD की अनुमति और दिल्ली पुलिस की NOC भी अनिवार्य है। और अगर ये सब कर भी लिया तो व्यापारी रामलीला मैदान को प्रदर्शन स्थल घोषित करने के विरोध में उतर आए हैं क्योंकि व्यापारियों का कहना है कि रामलीला मैदान के आसपास दिल्ली का व्यापार हब है, सारे बड़े मार्केट्स हैं जहां से हर रोज अरबों का कारोबार होता है। रामलीला मैदान के आसपास कमला मार्केट, दरियागंज, चावड़ी बाजार, नया बाजार, पहाड़गंज, चांदनी चौक, सदर बाजार, खारी बागली, भगीरथ पैलेस, अजमेरी गेट, कश्मीरी गेट है। व्यापारियों का मानना है कि अगर यहां रोज धरना प्रदर्शन होंगे तो उनका व्यापार बुरी तरह से प्रभावित होगा।
15: ठीक इसके पीछे दरअसल ये दिल्ली 6 शुरू होता है। दिल्ली 6 सबसे पुराने बाजारों में से एक है। यहां से रास्ता जो है आप आगे पुरानी दिल्ली की ओर जाता है, चांदनी चौक की ओर जाता है, चावड़ी बाजार की ओर जाता है, तो ये पूरा इलाका बाजारों से घिरा हुआ है जहां पर रोज लाखों नहीं बल्कि करोड़ों का कारोबार होता है। व्यापारियों की चिंता ये है कि अगर इसे जो है आपने रामलीला मैदान को धरना स्थल घोषित कर दिया तो यहां सैकड़ों हजारों का जमावड़ा होगा, बड़े बड़े आंदोलन होंगे, जैसा कि पिछले समय में देखा गया है कि 10 दिन 12 दिन बाबा रामदेव का आंदोलन चला, अन्ना आंदोलन चला जो कि सप्ताहों तक चलता रहता है। तो ऐसे में भीड़ जब यहां बढ़ेगी, यहां से लोग आगे मार्च करना चाहेंगे जाएंगे तो व्यापार खराब होगा, लोगों के चलते रास्ते बंद करने पड़ेंगे, डायवर्जन होंगे, तो कारोबार को सैकड़ों करोड़ की चपत लगेगी जिसको लेकर के व्यापारियों ने नाराजगी जताई है। हम जिस रामलीला मैदान पर हैं इस समय नवरात्रि के चलते आप देखेंगे कि यहां रामलीला का मंचन हो रहा है, इस तरफ स्टेज लगा हुआ है और ठीक इसके पीछे यहां पर देखिए सैकड़ों लोगों के बैठने की व्यवस्था है और साथ ही मेला लगा हुआ है। कारोबार मेले का और लोगों के बचपन की यादें ताजा हो जाती है। इस रामलीला मैदान का अपना बहुत इतिहास रहा है, इस रामलीला मैदान ने बहुत सारे आंदोलन देखे हैं।
14: दिल्ली के इन्हीं व्यापारियों ने पहले सरकार को चिट्ठी लिखकर जंतर मंतर को प्रदर्शन स्थल की लिस्ट से हटाने की मांग की थी और अब जब सरकार ने उनकी मांग मान ली और रामलीला मैदान को नया प्रदर्शन स्थल घोषित कर दिया तो अब ये व्यापारी नाराज हैं।
16: लेकिन एक चीज को लेके हम व्यापारियों को आपत्ति है कि आपने रामलीला मैदान को प्रदर्शन स्थल की सूची में डाल दिया है। रामलीला मैदान के पास ही कमला मार्केट, दरियागंज और तमाम जो दिल्ली 6 का एरिया है, चावड़ी बाजार, नया बाजार, पहाड़गंज, चांदनी चौक, सदर बाजार, कश्मीरी गेट, लगभग 5 किलोमीटर के एरिए में तमाम जो दिल्ली 6 है, जो बिजनेस हब है, दिल्ली का दिल है, वो रामलीला मैदान के आसपास ही आता है। तो अगर रामलीला मैदान में फिर से अगर धरने प्रदर्शन होंगे, बैरिकेटिंग लगेगी, मेट्रो स्टेशन बंद होंगे तो दिल्ली 6 का व्यापार ये प्रभावित होगा। चांदनी चौक, सदर बाजार, खारी बावली, नया बाजार, लाजपतराय मार्केट, भागीरथ प्लेस, कश्मीरी गेट, पहाड़गंज, अजमेरी गेट, दरियागंज, तो ये सारा प्रभावित होने से व्यापार फिर से प्रभावित होगा। तो हम मांग करते हैं फिर से गृह मंत्रालय से और दिल्ली पुलिस से कि आपने जो 3 स्थान चिन्हित किए हैं इसमें से रामलीला मैदान को हटाया जाए, बुराड़ी मैदान रख लीजिए, CBD ग्राउंड रख लीजिए और कोई बारी दिल्ली में एक जगह दे दीजिए।
17: मैं सरकार के इस फैसले से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता कि रामलीला ग्राउंड को चुना जाए प्रदर्शन के लिए, क्योंकि रामलीला ग्राउंड एक तो नई दिल्ली के बहुत पास है, दूसरा यहाँ पर सभी बड़ी बड़ी पार्टियों के दफ्तर हैं, तीसरा यहाँ पर ये सेंसिटिव एरिया है, आसपास जितना भी एरिया है यहाँ पर किसी तरह का कोई आंदोलन अगर उग्र रूप लेता है तो यहाँ पर अपना क्या कहते हैं दोनों समुदायों कुछ समुदायों के बीच में जंग एकदम छिड़ सकती है। चौथा यह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास है। पांचवा यह होलसेल मार्केटें, जितनी भी दिल्ली की होलसेल मार्केट है जहां से पूरा व्यापार होता है, जिनके थ्रू पूरा जीएसटी की कलेक्शन होती है अधिकतर, वो सारी मार्केट इससे प्रभावित होंगी। अगर आजकल के माहौल में जैसा कि पिछले दिनों देखा गया है जिसकी वजह से जंतर मंतर से ये हटाया गया है उसको देखते हुए अगर भीड़ उग्र हो गई या भीड़ अधिक तादाद में आ गई किसी प्रदर्शन को लेकर के, तो यहाँ पर पूरा होल सेल व्यापार जो थोक व्यापार है वह खत्म हो जाएगा।
14: ऐसा नहीं है कि रामलीला मैदान के इन इलाकों में सिर्फ बड़े व्यापारी या बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान ही हैं। यह बात सही है कि यह पूरा इलाका थोक मार्केट है। कपड़ों से लेकर गहनों तक, मसालों से लेकर ड्राई फ्रूट तक और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स तक, यह हिंदुस्तान के सबसे बड़े थोक मार्केट में से एक है। लेकिन यहाँ और छोटे दुकानदार और कामगार भी हैं, उन्हें भी डर लग रहा है कि उनका कारोबार ठप हो जाएगा।
15: लीला मैदान से महज 300 मीटर आगे पूरे बाजारों का इलाका है, ट्रेड सेंटर है, कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस हैं, एस्टेब्लिशमेंट हैं, बैंक हैं, फिनांस हैं, सब कुछ यहां पर मौजूद है। और अब यहां बहुत सारे कारोबारी हैं जो दिहाड़ी मजदूर भी हैं, जिनकी रोज की कमाई है, उनकी चिंता इस बात की है कि अगर रोज रोज यहां पर धरने होने लगे, प्रदर्शन होने लगेंगे तो हम कहां जाएंगे, इलाका व्यस्त हो जाएगा, प्रतिबंध लग जाएंगे, कभी रास्ते बंद होंगे तो कामकाज पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा।
3: मैदान तो बहुत पास है,
15: कामकाज पर असर पड़ेगा,
3: बहुत ज्यादा असर पड़ेगा जी, बहुत ज्यादा।
15: आप लोगों को पता चल गया कि रामलीला
3: वो तीन ग्राउंड फिक्स करे, एक रामलीला, एक बुराड़ी का है, एक और है जमुना पार का।
15: आप लोगों को भी चिंता हो रही है?
3: अब चिंता तो करेंगे, हमें तो रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना, कोई हमारी कोई नौकरी तो है नहीं है, तो सारी भीड़ यहीं आएगी बीजेपी वालों की।
14: आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: बीजेपी जेएनयू और महिलाओं के मुद्दे पर कांग्रेस पर लगातार हमले कर रही है। बीजेपी की महिला सांसदों ने राष्ट्रपति से मुलाकात की, सड़कों पर भी इस मुद्दे पर बीजेपी की ओर से जोरदार हंगामा या प्रदर्शन देखने को मिल रहा।
18: दिल्ली में सियासत का यह दूसरा मोर्चा है। कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजाम के खिलाफ ये गुस्सा फूटा है, जहां उनके निशाने पर राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा हैं। जेएनयू से बर्खास्त किए गए बिमोल अकोइजम के खिलाफ बीजेपी महिला सांसदों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की।
19: मांग हमारी वही थी कि जो डॉक्टर बिमोल हैं, उनके अगेंस्ट प्रूवन है कि 11 महिला बच्चियों को उन्होंने सेक्सुअली हैरेस किया और उनको निकाल दिया गया जेएनयू से, लेकिन आज भी वो एमपी बने हुए हैं और उनको एमपीशिप की बर्खास्त किया जाए और उनको हटाया जाए।
18: इनर मणिपुर से कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल पर जेएनयू की 11 छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल अकोइजाम जेएनयू में प्रोफेसर थे, वहां की 11 छात्राओं ने उन पर यौन शोषण जैसे गंभीर इल्जाम लगाए। तमाम आरोपों के बाद जेएनयू ने आंतरिक जाँच बिठाई, उस जाँच में अकोइजाम पर तमाम आरोप सही साबित पाए गए। उसी रिपोर्ट के आधार पर जेएनयू ने 9 अक्टूबर को उन्हें प्रोफेसर पद से हटा दिया। उसके दो दिन बाद यानी 11 अक्टूबर को आरोपी कांग्रेस सांसद के खिलाफ अलग अलग धाराओं में एफआईआर भी दर्ज करा दी गई।
20: एक इंटरनल कमेटी ने गिल्टी पाया 11 छात्राओं की कंप्लेंट पर बिमल अकोइजम के खिलाफ, जितनी भी एलिगेशन सेक्सुअल हैरेसमेंट की थी उनमें सच्चाई पाई और इसीलिए उनको नौकरी से बर्खास्त करा, उस पर भी चुप्पी साधे हुए हैं राहुल गांधी।
18: उधर अंगोमचा बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं।
21: No, this is nothing but harassment. They know that once this khap panchayat style of doing by JNU, if it is challenged in a court of law, the court will take notice of the complete disregard for norms and rule and regulations. So they are trying to drag it to court, which will not also not stand. And I have said before, if you go into the merit of the case, in itself also people will get exposed. What is this so-called harassment allegations?
18: बहरहाल बीजेपी इस मुद्दे को लेकर लगातार सड़कों पर उतरी हुई है, जहां अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
0: दिल्ली में वोट चोरी को लेकर इंडिया गठबंधन और सीजेपी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी ने वोटर लिस्ट पर सवाल उठा दिए। आरोप यही है कि एसआईआर के बावजूद वोटर लिस्ट में फर्जी वोटर उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। फर्जी वोटरों को लेकर समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत भी की है।
7: यूपी चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। एसआईआर और वोट चोरी के आरोपों के बीच समाजवादी पार्टी की तरफ से एक नया दावा किया गया है। दावा यही है कि उत्तर प्रदेश की 100 विधानसभा सीटों पर फर्जी वोटरों के नाम जोड़े गए हैं। सवाल यही है कि एसआईआर के बाद फर्जी वोटर कहां से आए।
1: देखिए, उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई, समाजवादी पार्टी के पीडीए प्रहरी ने लगातार सजगता से एसआईआर पे नजर रखी और बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में वोट कटने का काम हुआ, जिसको लेके भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी थी।
0: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: कौन है माता भुवनेश्वरी? क्या है माता भुवनेश्वरी का पूजा विधान? माता भुवनेश्वरी की पूजा से मिलेंगे कौन से वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
1: राजस्थान की सियासत का सबसे बड़ा मंच, जहां होगी युवाओं के मन की बात और मिलेगा युवाओं के हर सवाल का जवाब। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ देखिए पंचायत राजस्थान 15 अक्टूबर दिन भर सिर्फ आज तक पर।

राहुल को अमित शाह का जवाब, एसआईआर के बहाने घुसपैठियों को बचा रहे हैं। 2029 में करारी हार के लिए रहे तैयार, देश की जनता को मोदी पर भरोसा। इंडिया गठबंधन की चाय पर चर्चा के बाद बोले राहुल, शाह ज्ञानेश को नहीं छोड़ेंगे, लोकतंत्र को बचाना उद्देश्य। खड़गे तेजस्वी राउत ने ज्ञानेश पर किया तीखा वार। दिल्ली में कांग्रेस ऑफिस के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, यौन उत्पीड़न में जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर कांग्रेस सांसद के खिलाफ फल्ला बोल, राष्ट्रपति से गुहार। एल मुरुगन ने पीएम को लिखी चिट्ठी, मंत्रिमंडल छोड़ने की मांगी अनुमति, कहा तमिलनाडु में काम करूंगा, रिजिजू से मिले। और बिहार के हाजीपुर में गंगा नदी में पलटी नाव, 14 लोगों की मौत, सीएम ने रेस्क्यू के दिए निर्देश, पीएमओ ने 2-2 लाख के मुआवजे की घोषणा। पांच दिन विरोध प्रदर्शन करने के बाद राहुल गांधी के घर चाय पर चर्चा होती है। करीब 2 घंटे की बैठक के बाद जब राहुल और इंडिया गठबंधन वाले ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो ज्ञानेश कुमार के साथ साथ जंतर मंतर पर प्रदर्शन की रोक पर गरजते हैं। सबने एक सुर में कहा कि सरकार जंतर मंतर को प्रदर्शन स्थल से नहीं हटा सकती। इसके अलावा राहुल